0: पीएनबी कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जहां टिन्नू यादव की तरह यूपी पुलिस के वायरलेस डिपार्टमेंट के आरएमओ अर्जुन देव की भूमिका पर भी रिपोर्ट में सामने आई है। जिस कमरे में नोट गिने जाते थे और चोरी हो रही थी, उसका कंट्रोल आरएमओ को दिया गया था। अर्जुन देव का पिछले 17 सालों से ट्रांसफर नहीं किया गया, जिसकी वजह उसका चंपत राय से करीबी होना बताया जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
1: भले ट्रस्ट ने चंपत राय का इस्तीफा मंजूर ना किया हो, लेकिन इस पूरे मामले में चंपत राय को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष भी चंपत राय को लेकर सवाल पूछ रहा है।
0: क्या राम भक्तों से धोखा करने वाली इस जांच की आंच बड़े चेहरों तक पहुंचेगी? क्या चंपत राय से सवाल किए जाएंगे? क्या चढ़ावा चोरी के इस पूरे खेल में चंपत राय की जिम्मेदारी तय होगी, या फिर चंद मोहरों को बलि का बकरा बनाकर मामले की लीपापोती कर दी जाएगी?
2: ये सवाल भी महत्वपूर्ण है कि क्या छोटे कर्मचारी अकेले सीसीटीवी बंद कर हजारों करोड़ के चढ़ावे में हेराफेरी कर सकते हैं, या इसके पीछे कुछ बड़े लोगों की मिलीभगत है। इस मामले में जांच के नाम पर लीपापोती करने की जगह पारदर्शी तरीके से जांच हो और जो भी लोग इसमें शामिल हैं, उन्हें कड़ी सजा मिले।
3: हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई, बड़े लोग जो इसमें शामिल हैं, इन छोटे छोटे लोगों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, बड़े लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो बड़े बड़े नाम इसके अंदर शामिल हैं, तभी लोगों के को थोड़ा सा सुकून मिलेगा। लेकिन इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी जिन लोगों ने भी चोरी की उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
0: चंपत राय पर ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी, उनकी नाक के नीचे चढ़ावे की चोरी का पूरा खेल खेला गया। मामला बाहर आया तो चंपत राय की चुप्पी पर सवाल खड़े हुए। 28 दिन बाद इस्तीफे की खबर आई, लेकिन क्या सिर्फ इस्तीफे से चंपत राय पाक साफ साबित हो जाते हैं?
4: तो जब उन्होंने शिकायत की चंपत राय जी से कि साहब बड़ा गड़बड़ हो रहा है इसमें, तो लेखाधिकारी को हटा दिया, यानी कि चंपत राय जी की शह से ये हो रहा है।
0: हालांकि चंपत राय के पुराने साथी अभी भी उनके बचाव में हैं।
5: कभी कभी ऐसा होता है कि चंदन के वृक्ष पे भी सर्प लिपटे होते हैं जो अपने विष का त्याग नहीं कर पाते। आसपास वाले लोगों ने इस तरह का दुराचरण किया कि एक ऐसे व्यक्ति को भी प्रश्नों के कटघरे में आज हम खड़ा देख रहे हैं, जो देख के अच्छा नहीं लग रहा।
6: जिन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है, पूरे अपने जीवन को तपस्या में लगाया है, उनके लिए धन और वैभव यदि रहता तो बहुत पहले पा जाते।
0: एसआईटी की जांच जारी है, लेकिन अब तक उनकी जांच में ट्रस्ट कमेटी के 14 लोगों में से किसी का भी नाम सामने नहीं आया है। आज तक ब्यूरो।
1: मंदिर अब 2027 चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि अगर 2027 में उनकी सरकार आती है तो अयोध्या को शानदार तरीके से डेवलप तो करेंगे और साथ ही साथ जांच भी करवाएंगे। तो वहीं बीजेपी ने अखिलेश यादव के इन तमाम दावों को सपना बताया।
7: इन्होंने तो रावण ने तो केवल माता जानकी जी की चोरी की थी, राम मंदिर के दान पात्र ने लाखों लोगों की श्रद्धा चोरी की।
8: राम मंदिर पर हो रहे खुलासे से साधु से लेकर राम भक्तों तक में आक्रोश है। वहीं विपक्ष पूरी जांच पर ही सवाल खड़े कर रहा है।
9: सरकार को झुक करके उन्हें एसआईटी बनानी पड़ी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है कि एसआईटी बनी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई, और उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है, पूरे देश की जनता दुखी है और जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है।
3: मैं योगी जी को कहना चाहता हूँ कि जो चंदा चोर है वो योगी जी के खिलाफ भी षड्यंत्र रच रहे हैं, योगी जी को भी कुर्सी से हटाने की तैयारी है, योगी जी को भी सीएम से हटाने की तैयारी है। तो मैं योगी जी को कहना चाहता हूँ वो इस महापाप में शामिल ना हो। जो हम लोगों का संघर्ष है कि जिन लोगों ने डकैती डाली है भगवान श्री राम के घर में, उनको फांसी दी जाए, इस संघर्ष में योगी जी भी अपना साथ।
8: उधर योगी आदित्यनाथ जनता को भरोसा दे रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
10: सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो, राम भक्तों के साथ उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें।
8: साफ है, राम मंदिर चंदा चोरी का शोर अब चुनावी मंचों पर गूंजने वाला है। अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि वो अयोध्या को नए तरीके से विकसित करेंगे, जहां दुनिया भर के श्रद्धालु सच्ची आध्यात्मिकता की अनुभूति करेंगे।
9: मुख्यमंत्री तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं, अगर गिरफ्तारी हुई है, अगर गिरफ्तारी हुई है और जो सूचना मिल रही है कि इतने लाख रुपए निकले, कभी कंडों में निकले, कुछ ऐसे जेवरात हैं, लोगों ने सिंधी समाज ने आरोप लगाया कि हमने तो इतनी चांदी की शिला दी थी, या आप मान लीजिए डायमंड दिया था या गुप्त दान था, तो ये आस्था की साथ जो खिलवाड़ किया है वो प्रभु श्री राम कभी उन लोगों को माफ नहीं कर सकते।
8: इस बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भगवान राम के दर्शन की तस्वीर साझा की तो कांग्रेस ने उस पर सवाल खड़े कर दिए। राम सबके हैं, फिर भाजपा सरकार की दोहरी नीति क्यों? अयोध्या में अरविंद केजरीवाल के लिए कैमरे और विशेष छूट, लेकिन कांग्रेस के नेताओं और आम श्रद्धालुओं के लिए कड़े नियम। कुछ दिन पहले जब मैंने दर्शन किए तब व्यवस्था अलग थी। बहरहाल राम मंदिर चंदा चोरी के मामले की गूंज इतनी आसानी से थमने वाली नहीं है। इस मुद्दे की पहली अग्नि परीक्षा 2027 के यूपी चुनाव में होगी, जहां जनता तय करेगी कि वो जांच से कितनी संतुष्ट नजर आई। आज तक ब्यूरो।
1: बात भ्रष्टाचार से जुड़ी एक और खबर की, जहां लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नीट पेपर लीक का मामला भी शांत भी नहीं हुआ था कि महाराष्ट्र में एक और पेपर लीक हो गया, जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। इस मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने एसआईटी जांच का ऐलान किया है।
8: महाराष्ट्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी का पेपर करीब 24 घंटे पहले लीक हो गया। महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल ने इसके बाद परीक्षा स्थगित कर दी है।
11: प्रश्न पत्रिका लीक हो गई है, ऐसा थाने भिवंडी में हुआ, पुनः एफआईआर हो गई है। हमारे परीक्षा परिषद के अध्यक्ष और आयुक्त दोनों भी वहाँ। रजिस्ट्रेशन फिर से करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स को, अगली तारीख हम दे देंगे।
8: एग्जाम रविवार को होना था। पुलिस के मुताबिक पेपर लीक की सूचना के बाद ठाणे के भिवंडी इलाकों के कई जगहों पर छापेमारी की गई। इसके बाद एग्जामिनेशन काउंसिल के अफसरों को बुलाया गया और जब्त पेपर को वेरीफाई कराया गया। जांच में पता चला है कि 1.5 करोड़ में पेपर बेचा जा रहा था।
12: पेपर आने वाले थे वो उनके ताबे में मिले। शिक्षण विभाग के जो सीनियर ऑफिसर है उनको कॉन्टेक्ट करने के बाद ये वेरीफाई हुआ, उन्होंने भी वही कहा, रिपोर्ट दिया कि ये वही पेपर है, इसलिए उन लोगों को हिरासत में लिया है, पेपर जब्त किया है, उनके पास से कुछ मोबाइल, कुछ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये भी जब्त किए हैं।
8: परीक्षा में 4,28,000 से ज्यादा उम्मीदवार शामिल होने वाले थे। ऐसे में अब एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत तेज हो गई है।
13: ये सरकार की नाकामयाबी है, ठीक ढंग से एग्जाम भी नहीं ले सकते। अगर तुमको ठीक ढंग से एग्जाम भी लेना नहीं आता है तो सरकार करके उस कुर्सी पर बैठने का अधिकार ये सरकार के पास है क्या?
14: समय रहते पेपर लीक का ये प्रकरण पकड़ लिया और उस एग्जाम को स्थगित कर दिया। एग्जाम होने के बाद अगर पेपर लीक का पता चलता तो पता नहीं कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता।
15: जो मेंटल प्रेशर है बच्चों के ऊपर बहुत बढ़ जाता है और कभी कभार जैसे नीट में 22 बच्चों ने वहां पे आत्महत्या की, और वही चीज अगर इसमें होगी तो उसके लिए पूर्णपणे ये सरकार जिम्मेदार होगा। सरकार ने जिम्मेदारी लेके जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है, मंत्री हो या कोई भी हो, उसका राजीनामा लेना चाहिए, हम सबकी मांगनी है।
8: महाराष्ट्र में टीचर बनने के लिए या जो पहले से सरकारी टीचर हैं उनके लिए भी टीईटी जरूरी है, लेकिन नीट के बाद अब टीईटी पेपर लीक ने एक बार फिर पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
1: मुंबई में मुहर्रम जुलूस से पहले एक बहुत बड़ी साजिश का दावा सामने आया है। भाईखला पुलिस ने एक संदिग्ध शख्स को गिरफ्तार कर लगभग 14,900 कैप्सूल जब्त किए हैं। पुलिस का कहना है कि जांच में इन कैप्सूल में जिंक फॉस्फाइड मिलने की बात सामने आई। एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने के बाद मामला सामने आया। आरोपी से पूछताछ जारी है। जानकारी के मुताबिक आरोपी बीबीए ग्रेजुएट है और पुणे में पेंट का कारोबार करता है। यह आरोपी ईरान और इराक भी जा चुका है। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या इसके तार किसी आतंकी संगठन से जुड़े थे या इसके पीछे इसका कोई अन्य मकसद था। फिलहाल किसी आतंकी कनेक्शन की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जांच जारी है। अब बात एक ऐसे हत्याकांड की जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। आखिर सिया ने केतन का कत्ल क्यों किया? क्या वो शादी के लिए इनकार नहीं कर सकती थी? ऐसे तमाम सवाल हैं जो किसी को हजम नहीं हो रहे हैं। अब सिया और चेतन के बीच में क्रिकेट का कनेक्शन सामने आया है।
16: क्या परिवार को चेतन और सिया के अफेयर की जानकारी थी? क्या सिया ने केतन के साथ शादी का विरोध किया था? क्या परिवार सिया की शादी जबरन केतन से कराना चाहता था? आखिर 19 साल की उम्र में सिया की शादी की जल्दबाजी परिवार को क्यों थी? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस तलाश रही है, जिसे लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस पूरे खेल में पुलिस की जांच की सुई सिया के भाई की ओर भी घूम रही है। पुणे पुलिस ने इस मामले में सिया के भाई साहिल गोयल से भी पूछताछ की है। लगभग 10 घंटे तक उससे सवाल जवाब किए। सिया का भाई साहिल और चेतन चौधरी एक दूसरे को जानते हैं। दोनों एक साथ क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट के मैदान पर ही पहली बार सिया और चेतन चौधरी की मुलाकात हुई थी। फिर 2025 में दिवाली की पार्टी में सिया और चेतन दोबारा मिले, जिसके बाद दोनों की दोस्ती गहरी हुई और बात आगे बढ़ गई।
17: चेतन और साहिल एक दूसरे को जानते थे, वो साथ में क्रिकेट भी खेलते थे और वो दोनों दोस्त भी थे।
16: यानी सिया के भाई को चेतन और सिया के बीच चल रही दोस्ती की जानकारी थी, क्योंकि खबरों की माने तो सिया के भाई के साथ मैच देखने जाती थी, जिसकी वजह कहीं ना कहीं चेतन से मुलाकात को माना जा रहा है। हालांकि सिया के परिवार ने दावा किया है कि उन्हें उसके अफेयर के बारे में या उसके प्रेमी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। परिवार तो अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी बेटी ने ऐसा कुछ किया है।
18: अग्रवाल फैमिली का इस पूरे मामले में कहना है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो बातें शुरू से आपको पता थी, जैसे कि चेतन चौधरी जो है उसकी एंट्री होना और सिया के उसके साथ कुछ लव अफेयर होना। क्या आप पहचानते हो चौधरी को?
19: नहीं, मैंने आज तक कभी उसे देखा भी नहीं और कभी बातचीत भी नहीं हुई।
18: आप पहचानते नहीं थे? आप भी नहीं पहचानते?
19: नहीं थी, पहचानते नहीं।
18: वैसे सिया की माँ भी हमारे साथ है। मुझे पूछना था कि चेतन और सिया एक दूसरे के साथ इतने दिनों से दोनों फ्रेंड्स हैं, साथ में घूमते थे, स्टोरीज कुछ कुछ दिख रही है सोशल मीडिया पे।
20: वो लोग मैच में मिले थे, एक मार्केट यार्ड का मैच चालू था।
18: हाँ।
20: उस मैच में दोनों का फ्रेंड हुआ था।
19: हाँ। मेरा साहिल।
20: उस टाइम पे ये मिले थे। हाँ। उसके बाद कोई बात नहीं।
18: हाँ।
20: उसके बाद कोई उनका वो नहीं था, क्योंकि हमने जो बेटी का रिश्ता किया उससे पूछ के किया था 10 बार कि सिया तेरा हमको शादी करनी है बेटा, तो तुझे केतन जी पसंद है ना और करना है क्या आगे? तो बोले ठीक है मम्मी जी, मुझे सब पसंद है और मैं करना चाहती हूँ करके, और मेरा किसी के साथ कुछ नहीं है।
16: इस बीच केस की जांच कर रही पुणे पुलिस ने खुलासा किया है कि सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी, इसी वजह से उसने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन की हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम भी दिया। जांच में पता चला है कि सिया का मानना था कि अगर केतन की हत्या कर दी जाए तो उन्हें शादी के बारे में सोचने से पहले कम से कम 3 साल और मिल जाएंगे। पुलिस को शक है कि चेतन चौधरी भी सिया से शादी करने से पहले 2-3 साल का और समय चाहता था। जांच में पता चला है कि अरेंज मैरिज के टूटने पर समाज में बदनामी के डर से सिया और चेतन ने मिलकर केतन अग्रवाल को रास्ते से हटाने की साजिश रची। हालांकि सिया का परिवार अभी भी दावा कर रहा है कि उसे ऐसी कोई जानकारी नहीं थी।
20: ये कुछ बता नहीं था, जब से उसकी सगाई हुई ना वो केतन के साथ ही घूमती फिरती थी और जो भी था वो दोनों साथ में ही रहते थे।
16: एक और अहम बात सामने आई है, वो ये है कि फरवरी में सगाई से पहले सिया गोयल और चेतन चौधरी अपने दोस्तों के साथ उदयपुर घूमने गए थे। बताया जाता है कि जनवरी में दोनों राजस्थान गए थे और एक ग्रुप ट्रिप के तहत वहां 5 दिन रुके थे। चेतन मूल रूप से राजस्थान के रहने वाला है, लेकिन परिवार बार बार कह रहा है कि उन्हें इस तरह की कोई जानकारी नहीं थी।
2: सब गोयल्स को ये सब कुछ पता था और इन्होंने ही हमारे लड़के को ट्रैप किया है।
19: ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फैमिली हम बहुत अच्छी है और हमारे पूरे फैमिली में ये संस्कार किसी में भी नहीं है। और अगर ऐसा कुछ भी पाया तो मैं तो कहता हूँ कि हमारी पूरी गोयल फैमिली को आप कुछ भी अंडर डाल दो, मुझे चलेगा, फांसी की सजा दे दो।
20: अगर किसी गोयल फैमिली में किसी को भी पता हो इस बात की बच्चों का ऐसे था, तो अगर आपको रिएक्शन लेना हो तो हम सबको फांसी लगा दीजिए, आप पूरी गोयल फैमिली का।
16: बहरहाल इतना साफ है कि चेतन और सिया का भाई एक दूसरे को जानते थे। अब परिवार को इसकी कितनी जानकारी थी, इसका सच आना अभी बाकी है। आज तक ब्यूरो।
1: अलीब एक आखिर हत्या की प्लानिंग किसकी थी? सिया ने चेतन को हत्या के लिए तैयार किया या फिर पूरा प्लान चेतन का ही था? इस मामले में दोनों के मोबाइल फोन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिससे जो डेटा है वो डिलीट कर दिया गया है।

0: आखिर केतन के मर्डर की साजिश कब रची गई? आखिर कब से केतन को मारने का प्लान था? किसने केतन की हत्या का आइडिया दिया? लोहगढ़ जाने का प्लान किसका था? अभी कई सवाल हैं जो सिया और चेतन के अंदर दबे हुए हैं, जिन्हें पुलिस को बाहर निकालना है। इस मामले में सबसे अहम कड़ी है दोनों का मोबाइल, जिससे कई जानकारियां सामने आ सकती हैं। जैसे सिया और चेतन के बीच कब से बातचीत चल रही थी, दोनों के बीच किस तरह की बातचीत हो रही थी, क्या मर्डर के प्लानिंग की बात भी फोन के जरिए की गई? जांच ने तब एक नया मोड़ लिया जब जांचकर्ताओं को पता चला कि आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी ने कथित तौर पर अपने फोन से अपनी डिजिटल बातचीत मिटा दी थी। पुलिस के मुताबिक दोनों ही डिवाइस से व्हाट्सएप चैट, इंस्टाग्राम एक्टिविटी और अन्य डिलीट किए गए डेटा की फॉरेंसिक एनालिसिस के जरिए जांच की जा रही है। जांचकर्ताओं को शक है कि चैट को लोहगढ़ की घटना से पहले और बाद में डिलीट किया गया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपियों ने न केवल बातचीत हटाई है बल्कि उसे अपने डिवाइस से रिसाइकल बिन से भी साफ कर दिया, जिससे फॉरेंसिक रिकवरी जरूरी हो गई।
1: जो उसका मोबाइल हमने ताबे में लिया पंचनामे से, और अभी हम उसका एफएसएल को भेजेंगे और उसका जो भी डाटा है उसमें हम एनालिसिस करेंगे।
2: बताया जा रहा है कि उसकी जो चैटिंग है वो डिलीट की गई है, कुछ इस सामने आया है ऐसा कुछ?
1: अभी तक तो हमारे अभी पंचनामे से क्या है, हम एफएसएल में वो क्यूरी वो पूछ।
0: कॉल डिटेल रिकॉर्ड से दोनों के बीच बातचीत संपर्क का पता चला है। सिया गोयल और चेतन चौधरी ने जनवरी से लेकर अब तक 2004 कॉल किए, जिनकी कुल अवधि लगभग 238 घंटे थी। मोबाइल से साफ हो सकता है कि आखिर लोहगढ़ जाने का प्लान किसका था। हालांकि सिया के पिता प्रवीण गोयल और मां पूजा गोयल का दावा है कि 18 जून को लोहगढ़ जाने का प्लान सिया का नहीं था, केतन ने ही वीडियो कॉल करके सिया को लोहगढ़ बुलाया था। सिया के परिजन यहां तक दावा कर रहे हैं कि अगर सिया ने कुछ भी गलत किया है तो उसे भी लोहगढ़ किले से धक्का दे दो।
3: मैं तो कहता हूं अगर इसमें जो भी आरोपी हो, जो भी, जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है, अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूंगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहां से धक्का दे के उसे भी खत्म कर दिया जाए। अब इससे ज्यादा एक बाप और कुछ नहीं बोल सकता।
4: अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहां से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहां से ही उस दोषी को गिराया जाए। जो भी दोषी निकले, मेरी बेटी चाहे उसमें दोषी हो, ठीक है, उसे फांसी की सजा दो या लोहगढ़ जाके वहीं से ही गिरा दे।
5: इमीडिएटली उसने फिर बोला 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है, जबकि 19 तारीख को उसका बर्थडे था, महाबलेश्वर में हम सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन उसने बोला नहीं, मेरे दोस्त कुछ मेरी पार्टी रखना चाहते हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं, केतन को उसने ऐसा कन्वेंस किया कि कुछ भी कर, अपन बर्थडे बैश अपने को वहां करना है। उसने फिर उसके मम्मी में उसके केतन के मम्मी को भी रात को फोन किया वीडियो कॉलिंग पे कि आप समझाओ कि हमको जाना है वहां पे, तो उसके हिसाब से फिर हमने बोला कोई बात नहीं, चलो बर्थडे है तो जाके आ जाएंगे।
0: शुरुआत में चेतन चौधरी ने दावा किया था कि वो घटना के समय चट्टान के पास मौजूद नहीं था, लेकिन पूछताछ के दौरान उसके बयान में लगातार विरोधाभास सामने आया। उसके बाद दोनों आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार किया और पूरी घटना का क्रम पुलिस को बता दिया।
2: जो उनको जब लोहगढ़ पर ये तीनों मौजूद थे तब केतन की हत्या की गई, कुछ इशारों में हुआ था और उसके बाद ये हत्या हुई थी।
1: जो भी अभी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है उन दोनों में इशारों में कम्युनिकेशन था और दोनों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया।
0: एक थ्योरी ये भी आ रही है कि केतन विग लगाता था, और ये भी पता चला है कि सिया केतन के विग लगाने को पसंद नहीं करती थी, तो क्या इसी वजह से सिया की केतन के लिए नफरत बढ़ी थी? लेकिन हत्या की ये वजह तो नहीं हो सकती कि विग लगाना पसंद नहीं आया तो मार दिया।
6: केतन एक छोटा पैच लगाता था, लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था, उनको सबको बताया गया था। सर ये क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का? अगर नहीं पसंद था तो इनकार कर देते थे ना।
0: अब सवाल ये है कि सच क्या है, हत्या की वजह क्या रही? क्योंकि सिया तो केतन के सामने बहुत खुश नजर आती थी। ये भी पता चला है कि दोनों परिवार एक दूसरे को पिछले 45-50 सालों से जानते थे, इसीलिए दोनों ने बच्चों की शादी तय की।
7: जिनसे ये रिश्ता हुआ है उनको हम 45-50 साल से जानते हैं, कुछ रिश्तेदारी भी है उसमें, ज़्यादा चौकसी भी नहीं होती, रिश्तेदारी है 50 साल से जानते हैं, फिर भी उनकी तरफ से ही डिमांड आई कि भाई आप हमारी बच्चे से शादी करो। हमने उनको ये भी बताया कि भाई तुम्हारी बच्चे 20 साल की अभी हुई नहीं है और इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, बाद में कर लेना, ठहर जाओ या और किसी से कर दो। उन्हें आओ आओ बोले गए, रिश्ता पक्का हो गया।
0: अब पुणे पुलिस ने सिया के माता पिता से भी पूछताछ की है। इससे पहले सिया के भाई से 10 घंटों तक सवाल जवाब भी किए गए थे। ओमकार वाबले, पुणे आज तक। अब उज्जैन की जहां से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, एक युवक के प्यार के इजहार पर मना करना युवती को भारी पड़ गया। सिर्फ अरे आशिक ने चाकू से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया।
8: एक तरफा प्यार का खौफनाक अंजाम, सिर्फ अरे युवक ने युवती पर चाकू से ताबड़तोड़ 14 बार कर दिए। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि बेखौफ युवक ने महज 10 सेकंड में युवती पर 14 वार कर दिए। युवती चीखती रही लेकिन युवक रुका नहीं।
9: वो घटनास्थल पर आया, बालिका से बातचीत करी और बातचीत करते करते थोड़ी देर बाद उसने उसके ऊपर चाकू से मल्टीपल वार किए। बालिका को भी हमने एसएन कृष्णा अस्पताल में रेफर हुई थी तो वहां भर्ती है और हमने वहां देखने भी गया था और उसका ऑपरेशन कराया जा रहा है।
8: पुलिस ने मामले पर तुरंत एक्शन लिया और आरोपी सुनील को गिरफ्तार कर लिया।
9: आरोपी को टीम ने गिरफ्तार किया है और इस दौरान वो भागने के प्रयास में उसके पैर में चोट आई है, उसका पैर बुरी तरह जख्मी है तो उसको भी इलाजरत इलाज कराया जा रहा है। एक बार इलाज हो जाए उसके बाद उससे उसके जो इंटेंशन है उसके संबंध में पूछताछ की जाएगी।
8: जांच में सामने आया है कि दोनों की मुलाकात इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। आरोपी युवती से एक तरफा प्रेम करता था और जब युवती ने उससे दूरी बनाई तो उसने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। आज तक ब्यूरो।
0: रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर तेज हुई तकरार। अखिलेश के हमले के बाद बीजेपी के बचाव में आया आरएसएस। कहा एसआईटी जांच के बाद सियासत की जरूरत नहीं, संसद में मुद्दा उठाएगी समाजवादी पार्टी। महाराष्ट्र में टीटी पेपर लीक पर सियासी उबाल। राहुल और प्रियंका ने सरकार को घेरा। कहा शिक्षा परीक्षा व्यवस्था को बनाया वसूली का सिस्टम, जांच के लिए एसआईटी का गठन। टीएमसी के बागी नेताओं के खिलाफ ममता गुट ने पुलिस में दर्ज करवा दी है शिकायत। गलत पहचान बताने, फर्जीवाड़े और पार्टी के नाम का इस्तेमाल का आरोप। 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत। राष्ट्रीय दिवस समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। विपक्षीय वार्ता में रिश्तों की मजबूती पर होगी बात। और पाकिस्तान के कराची में धमाके में और फायरिंग के बाद अफरा तफरी। रेंजर हेडक्वार्टर पर सुसाइड अटैक। अब तक 5 की मौत, कई घायल।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा लगातार अब जोर पकड़ता जा रहा है और ट्रस्ट की अगली बैठक होनी है 11 जुलाई को, और इस बैठक में ट्रस्ट के नए महासचिव की नियुक्ति पर चर्चा होने की उम्मीदें हैं और ट्रस्ट के सदस्य के तौर पर डॉक्टर अनिल मिश्रा के उत्तराधिकारी को चुनने पर भी विचार किया जा सकता है। इससे पहले राम मंदिर की एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें चंपत राय को लेकर बयान भी सामने आया है। बयान में कहा यह गया है कि चंपत राय ने इस्तीफे की पेशकश की है लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया, इस पर विचार किया जा रहा है।

0: चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से बयान जारी किया गया, जिसमें पूरे मामले में दुख जताया गया। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की गई। वहीं जनता से अपील की गई कि वो किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। लेकिन सबसे बड़ी बात, राम मंदिर की ओर से बताया गया कि चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया है। 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई तो उनसे जुड़ी कई सच्चाई सामने आई। इन आरोपियों में से एक रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू का रिश्तेदार मनीष यादव बार बार चोरी करता दिखा था। सीसीटीवी में उसके खिलाफ तमाम सबूत हैं, फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं की गई। चंपत राय के ड्राइवर रामशंकर ने ही मनीष को नौकरी दिलवाई थी। 7 आरोपियों से करीब 80 लाख की बरामदगी की गई है।
1: 8 एक्यूज थे, उसमें से 7 लोगों के पास से 79,85,493 रुपए बरामद हुए हैं, अलग अलग अमाउंट के रूप में।
0: 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से बरामद होने की बात सामने आ रही है।
2: टिन्नू यादव के इस हॉस्टल से ही, दुर्गापुरी कॉलोनी का ये अयोध्या में ही दुर्गापुरी कॉलोनी ये हॉस्टल है, और इस हॉस्टल में यूं तो यहाँ अयोध्या विश्वविद्यालय के आसपास के कॉलेज के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर 2 कमरे हैं जो टिन्नू यादव ने अपने निजी यूज के लिए रखे हैं। कहने को तो दोनों कमरे पूजा घर है, उसका अपना कमरे उनके कब्जे में है, लेकिन कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद, जब गुरुवार देर रात टिन्नू यादव को अयोध्या पुलिस ने FIR दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया, तो शुक्रवार की सुबह उसको यहां लाया गया, और पुलिस के अनुसार जो दस्तावेज जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है कि लगभग 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से बरामद हुए हैं।
0: इस मामले में एक गिरफ्तारी अनुकल्प मिश्रा की भी हुई है, जिसकी देखरेख में नोटों की गिनती की जाती थी। अनुकल्प मिश्रा ने 2 साल पहले 40 लाख का एक घर लिया था, जहां आज तक की टीम पहुंची।
3: क्या आप क्या कहना चाहेंगे?
4: मेरे भाई को फंसाया जा रहा है। नेहा मेरी कुछ नहीं है, उनसे शादी हुई थी चाचा की 10 साल से, उनका केस चल रहा है, उनका मैटर चाचा चाची का है, वो अलग जाने।
0: उधर अनुकल्प के रिश्तेदार पैसों को लेकर शक जाहिर कर रहे हैं।
5: ये जब से राम मंदिर में काम कर रहे हैं, तभी से अचानक मैंने इनको बढ़ते देखा।
6: अच्छा,
5: पहले नहीं ऐसा था। हम जब शादी करके गए थे तो नॉर्मल कंडीशन में लोग जी रहे थे, लेकिन अब मुझे 2-3 साल से कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ते दिखे लोग।
2: क्या पैसा बढ़ गया?
5: हाँ, पैसा भी। हाँ, और वहाँ गांव में मतलब फार्म हाउस भी बनवाया, और अभी हाल में भागवत करवाए हैं, जिसमें उन्होंने बहुत अथाह रुपया खर्चा किया है।
0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में सीसीटीवी कंट्रोल

0: यूपी पुलिस के वायरलेस डिपार्टमेंट के आरएमओ अर्जुन देव की भूमिका पर भी रिपोर्ट में सामने आई है। जिस कमरे में नोट गिने जाते थे और चोरी हो रही थी, उसका कंट्रोल आरएमओ को दिया गया था। अर्जुन देव का पिछले 17 सालों से ट्रांसफर नहीं किया गया, जिसकी वजह उसका चंपत राय से करीबी होना बताया जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
1: भले ही ट्रस्ट ने चंपत राय का इस्तीफा मंजूर न किया हो, लेकिन पूरे मामले में चंपत राय को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष भी अब चंपत राय को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहा है।
0: क्या राम भक्तों से धोखा करने वाली इस जांच की आंच बड़े चेहरों तक पहुंचेगी? क्या चंपत राय से सवाल किए जाएंगे? क्या चढ़ावा चोरी के इस पूरे खेल में चंपत राय की जिम्मेदारी तय होगी, या फिर चंद मोहरों को बलि का बकरा बनाकर मामले की लीपापोती कर दी जाएगी?
2: ये सवाल भी महत्वपूर्ण है कि क्या छोटे कर्मचारी अकेले सीसीटीवी बंद कर हजारों करोड़ के चढ़ावे में हेराफेरी कर सकते हैं, या इसके पीछे कुछ बड़े लोगों की मिलीभगत है। इस मामले में जांच के नाम पर लीपापोती करने की जगह पारदर्शी तरीके से जांच हो और जो भी लोग इसमें शामिल हैं, उन्हें कड़ी सजा मिले।
3: हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई, बड़े लोग जो इसमें शामिल हैं, इन छोटे छोटे लोगों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, बड़े लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो बड़े बड़े नाम इसके अंदर शामिल हैं, तभी लोगों के को थोड़ा सा सुकून मिलेगा। लेकिन इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी जिन लोगों ने भी चोरी की, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
0: चंपत राय पर ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी, उनकी नाक के नीचे चढ़ावे की चोरी का पूरा खेल खेला गया। मामला बाहर आया तो चंपत राय की चुप्पी पर सवाल खड़े हुए। 28 दिन बाद इस्तीफे की खबर आई, लेकिन क्या सिर्फ इस्तीफे से चंपत राय पाक साफ साबित हो जाते हैं?
4: तो जब उन्होंने शिकायत की चंपत राय जी से कि साहब बड़ा गड़बड़ हो रहा है इसमें, तो लेखाधिकारी को हटा दिया, यानी कि चंपत राय जी की शह सही हो रहा है।
0: हालांकि चंपत राय के पुराने साथी अभी भी उनके बचाव में हैं।
5: कभी कभी ऐसा होता है कि चंदन के वृक्ष पे भी सर्प लिपटे होते हैं, जो अपने विष का त्याग नहीं कर पाते। आसपास वाले लोगों ने इस तरह का दुराचरण किया कि एक ऐसे व्यक्ति को भी प्रश्नों के कटघरे में आज हम खड़ा देख रहे हैं, जो देख के अच्छा नहीं लग रहा।
6: जिन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है, पूरे अपने जीवन को तपस्या में लगाया है, उनके लिए धन और वैभव यदि रहता तो बहुत पहले पा जाते।
0: एसआईटी की जांच जारी है, लेकिन अब तक उनकी जांच में ट्रस्ट कमेटी के 14 लोगों में से किसी का भी नाम सामने नहीं आया है। आज तक ब्यूरो।
1: राम मंदिर अब 2027 में चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि अगर 27 में उनकी सरकार आती है तो अयोध्या को शानदार तरीके से डेवलप किया जाएगा, और वहीं बीजेपी अखिलेश के दावों को सपना बता रही है।
7: इन्होंने तो, रावण ने तो केवल माता जानकी जी की चोरी की थी, राम मंदिर के दान पात्र में लाखों लोगों की श्रद्धा चोरी हुई।
8: राम मंदिर पर हो रहे खुलासे से साधु से लेकर राम भक्तों तक में आक्रोश है, वहीं विपक्ष पूरी जांच पर ही सवाल खड़े कर रहा है।
9: सरकार को झुक करके उन्हें एसआईटी बनानी पड़ी, और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई, ये भी एक प्रश्न है कि एसआईटी बनी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई, और उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है, पूरे देश की जनता दुखी है, और जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है।
3: मैं योगी जी को कहना चाहता हूँ कि जो चंदा चोर है वो योगी जी के खिलाफ भी षड्यंत्र रच रहे हैं, योगी जी को भी कुर्सी से हटाने की तैयारी है, योगी जी को भी सीएम से हटाने की तैयारी है। तो मैं योगी जी को कहना चाहता हूँ वो इस महापाप में शामिल ना हो। जो हम लोगों का संघर्ष है कि जिन लोगों ने डकैती डाली है भगवान श्री राम के घर में, उनको फांसी दी जाए, इस संघर्ष में योगी जी भी अपना साथ।
8: उधर योगी आदित्यनाथ जनता को भरोसा दे रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
10: सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो, राम भक्तों के साथ उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो।

0: एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें।
1: साफ है, राम मंदिर चंदा चोरी का शोर अब चुनावी मंचों पर गूंजने वाला है। अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि वो अयोध्या को नए तरीके से विकसित करेंगे, जहां दुनिया भर के श्रद्धालु सच्ची आध्यात्मिकता की अनुभूति करेंगे।
2: मुख्यमंत्री तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं, अगर गिरफ्तारी हुई है और जो सूचना मिल रही है कि इतने लाख रुपए निकले, कभी कंडों में निकले, कुछ ऐसे जेवरात हैं, लोगों ने, सिंधी समाज ने आरोप लगाया कि हमने तो इतनी चांदी की शिला दी थी, या आप मान लीजिए डायमंड दिया था या गुप्त दान था, तो ये आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया है वो प्रभु श्री राम कभी उन लोगों को माफ नहीं कर सकते।
1: इस बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भगवान राम के दर्शन की तस्वीर साझा की तो कांग्रेस ने उस पर सवाल खड़े कर दिए। राम सबके हैं, फिर भाजपा सरकार की दोहरी नीति क्यों? अयोध्या में अरविंद केजरीवाल के लिए कैमरे और विशेष छूट, लेकिन कांग्रेस के नेताओं और आम श्रद्धालुओं के लिए कड़े नियम। कुछ दिन पहले जब मैंने दर्शन किए तब व्यवस्था अलग थी। बहरहाल, राम मंदिर चंदा चोरी के मामले की गूंज इतनी आसानी से थमने वाली नहीं है। इस मुद्दे की पहली अग्नि परीक्षा 2027 के यूपी चुनाव में होगी, जहां जनता तय करेगी कि वो जांच से कितनी संतुष्ट नजर आएगी। आज तक ब्यूरो।
3: अब बात करेंगे भ्रष्टाचार से जुड़ी एक और बड़ी और अहम खबर की, जहां लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नीट पेपर लीक का मामला भी शांत भी नहीं हुआ था, जब महाराष्ट्र में एक और पेपर लीक ने पूरे सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं इस मामले में अब महाराष्ट्र के सीएम ने जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है।
1: महाराष्ट्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी का पेपर करीब 24 घंटे पहले लीक हो गया। महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल ने इसके बाद परीक्षा स्थगित कर दी है।
4: प्रश्न पत्रिका लीक हो गई है, ऐसा थाने भिवंडी में हुआ, एफआईआर हो गई है, हमारे परीक्षा परिषद के अध्यक्ष और आयुक्त दोनों भी वहाँ। रजिस्ट्रेशन फिर से करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स को, अगली तारीख हम दे देंगे।
1: एग्जाम रविवार को होना था। पुलिस के मुताबिक पेपर लीक की सूचना के बाद ठाणे के भिवंडी इलाकों के कई जगहों पर छापेमारी की गई। इसके बाद एग्जामिनेशन काउंसिल के अफसरों को बुलाया गया और जब्त पेपर को वेरीफाई कराया गया। जांच में पता चला है कि 1.5 करोड़ में पेपर बेचा जा रहा था।
5: पेपर आने वाले थे वो उनके ताबे में मिले। शिक्षण विभाग के जो सीनियर ऑफिसर है उनको कॉन्टेक्ट करने के बाद ये वेरीफाई हुआ, उन्होंने भी वही कहा, रिपोर्ट दिया कि ये वही पेपर है, इसलिए उन लोगों को हिरासत में लिया है, पेपर जब्त किया है, उनके पास से कुछ मोबाइल, कुछ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये भी जब्त किए हैं।
1: परीक्षा में 4,28,000 से ज्यादा उम्मीदवार शामिल होने वाले थे। ऐसे में अब एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत तेज हो गई है।
6: ये सरकार की नाकामयाबी है, ठीक ढंग से एग्जाम भी नहीं ले सकते। अगर तुमको ठीक ढंग से एग्जाम भी लेना नहीं आता है तो सरकार करके उस कुर्सी पर बैठने का अधिकार ये सरकार के पास है क्या?
7: समय रहते पेपर लीक का ये प्रकरण पकड़ लिया और उस एग्जाम को स्थगित कर दिया। एग्जाम होने के बाद अगर पेपर लीक का पता चलता तो पता नहीं कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता।
8: जो मेंटल प्रेशर है बच्चों के ऊपर बहुत बढ़ जाता है, और कभी कभार जैसे लीक में 22 बच्चों ने वहां पे आत्महत्या की, और वही चीज अगर इसमें होगी तो उसके लिए पूर्णपणे ये सरकार जिम्मेदार होगा। सरकार ने जिम्मेदारी लेके जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है, मंत्री हो या कोई भी हो, उसका राजीनामा लेना चाहिए, हम सबकी मांगनी है।
1: महाराष्ट्र में टीचर बनने के लिए या जो पहले से सरकारी टीचर हैं, उनके लिए भी टीईटी जरूरी है, लेकिन नीट के बाद अब टीईटी पेपर लीक ने एक बार फिर पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
3: मुंबई में मोहर्रम जुलूस से पहले एक बड़ी साजिश का दावा सामने आया है। भायखला पुलिस ने एक संदिग्ध शख्स को गिरफ्तार करके लगभग 14,900 कैप्सूल जब्त कर लिए हैं। पुलिस का कहना यह है कि जांच में इन कैप्सूलों में जिंक फॉस्फाइड मिलने की बात सामने आई है। एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने के बाद मामला सामने आया और आरोपी से पूछताछ जारी है। जानकारी के मुताबिक आरोपी बीबीए ग्रेजुएट है और पुणे में पेंट का काम करता है। आरोपी ईरान और इराक भी जा चुका है। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या इसके तार किसी आतंकी संगठन के साथ जुड़े हुए थे या इसके पीछे था कोई अन्य मकसद। फिलहाल किसी आतंकी कनेक्शन की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और जांच लगातार जारी है। अब बात एक ऐसे हत्याकांड के बारे में जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया और हिलाकर रख दिया। आखिर सिया ने केतन का कत्ल क्यों किया? क्या वो शादी के लिए मना नहीं कर सकती थी? सबसे बड़ा सवाल और यही सवाल सबके मन में है। ऐसे तमाम सवाल हैं जो किसी को हजम नहीं हो पा रहे। अब सिया और चेतन के बीच क्रिकेट का कनेक्शन भी सामने आया है।
9: क्या परिवार को चेतन और सिया के अफेयर की जानकारी थी? क्या सिया ने केतन के साथ शादी का विरोध किया था? क्या परिवार सिया की शादी जबरन केतन से कराना चाहता था? आखिर 19 साल की उम्र में सिया की शादी की जल्दबाजी परिवार को क्यों थी? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस तलाश रही है, जिसे लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस पूरे खेल में पुलिस की जांच की सुई सिया के भाई की ओर भी घूम रही है। पुणे पुलिस ने इस मामले में सिया के भाई साहिल गोयल से भी पूछताछ की है। लगभग 10 घंटे तक उससे सवाल जवाब किए। सिया का भाई साहिल और चेतन चौधरी एक दूसरे को जानते हैं। दोनों एक साथ क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट के मैदान पर ही पहली बार सिया और चेतन चौधरी की मुलाकात हुई थी। फिर 2025 में दिवाली की पार्टी में सिया और चेतन दोबारा मिले, जिसके बाद दोनों की दोस्ती गहरी हुई और बात आगे बढ़ गई।
10: चेतन और साहिल एक दूसरे को जानते थे, वो साथ में क्रिकेट भी खेलते थे और वो दोनों दोस्त भी थे।
9: यानी सिया के भाई को चेतन और सिया के बीच चल रही दोस्ती की जानकारी थी, क्योंकि खबरों की माने तो सिया के भाई के साथ मैच देखने जाती थी, जिसकी वजह कहीं ना कहीं चेतन से मुलाकात को माना जा रहा है। हालांकि सिया के परिवार ने दावा किया है कि उन्हें उसके अफेयर के बारे में या उसके प्रेमी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। परिवार तो अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी बेटी ने ऐसा कुछ किया है।
11: अग्रवाल फैमिली का इस पूरे मामले में कहना है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो बातें शुरू से आपको पता थी, जैसे कि चेतन चौधरी जो है उसकी एंट्री होना और सिया के उसके साथ कुछ लव अफेयर होना। क्या आप पहचानते हो चौधरी को?
12: नहीं, मैंने आज तक कभी उससे देखा भी नहीं और कभी बातचीत भी नहीं हुई।
11: आप पहचानते नहीं थे? आप भी नहीं पहचानते?
12: नहीं थी, पहचानते नहीं।
11: वैसे सिया की माँ भी हमारे साथ है। मुझे पूछना था कि चेतन और सिया एक दूसरे के साथ इतने दिनों से दोनों फ्रेंड्स है, साथ में घूमते थे, स्टोरीज कुछ कुछ दिख रही है सोशल मीडिया पे।
13: वो लोग मैच में मिले थे, एक मार्केट यार्ड का मैच चालू था।
11: हाँ।
13: उस मैच में दोनों का फ्रेंड हुआ था।
12: हाँ। मेरा तो साहिल।
13: उस टाइम पे ये मिले थे। हाँ। उसके बाद कोई बात नहीं।
11: हाँ।
13: उसके बाद कोई उनका वो नहीं था, क्योंकि हमने जो बेटी का रिश्ता किया उससे पूछ के किया था 10 बार कि सिया तेरा हमको शादी करनी है बेटा, तो तुझे केतन जी पसंद है ना और करना है क्या आगे? तो बोले ठीक है मम्मी जी, मुझे सब पसंद है और मैं करना चाहती हूँ करके, और मेरा किसी के साथ कुछ नहीं है।
9: इस बीच केस की जांच कर रहे पुणे पुलिस ने खुलासा किया है कि सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी, इसी वजह से उसने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन की हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम भी दिया। जांच में पता चला है कि सिया का मानना था कि अगर केतन की हत्या कर दी जाए तो उन्हें शादी के बारे में सोचने से पहले कम से कम 3 साल और मिल जाएंगे। पुलिस को शक है कि चेतन चौधरी भी सिया से शादी करने से पहले 2-3 साल का और समय चाहता था। जांच में पता चला है कि अरेंज मैरिज के टूटने पर समाज में बदनामी के डर से सिया और चेतन ने मिलकर केतन अग्रवाल को रास्ते से हटाने की साजिश रची। हालांकि सिया का परिवार अभी भी दावा कर रहा है कि उसे ऐसी कोई जानकारी नहीं थी।
13: ये कुछ बताएं था, जब से उसकी सगाई हुई ना वो केतन के साथ ही घूमती फिरती थी और जो भी था वो दोनों साथ में ही रहते थे।
9: एक और अहम बात सामने आई है, वो ये है कि फरवरी में सगाई से पहले सिया गोयल और चेतन चौधरी अपने दोस्तों के साथ उदयपुर घूमने गए थे। बताया जाता है कि जनवरी में दोनों राजस्थान गए थे और एक ग्रुप ट्रिप के तहत वहां 5 दिन रुके थे। चेतन मूल रूप से राजस्थान के रहने वाला है लेकिन परिवार बार बार कह रहा है कि उन्हें इस तरह की कोई जानकारी नहीं थी।
11: सब गोयल्स को ये सब कुछ पता था और इन्होंने ही हमारे लड़के को ट्रैप किया है।
12: ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फैमिली हम बहुत अच्छी है और हमारे पूरे फैमिली में ये संस्कार किसी में भी नहीं है। और अगर ऐसा कुछ भी पाया तो मैं तो कहता हूँ कि हमारी पूरी गोयल फैमिली को आप कुछ भी अंडर डाल दो मुझे चलेगा, फांसी की सजा दे दो।
13: अगर किसी गोयल फैमिली में किसी को भी पता हो ये बात कि बच्चों का ऐसे था तो अगर आपको रिएक्शन लेना हो तो हम सबको फांसी लगा दीजिए आप पूरी गोयल फैमिली को।
9: बहरहाल इतना साफ है कि चेतन और सिया का भाई एक दूसरे को जानते थे। अब परिवार को इसकी कितनी जानकारी थी इसका सच आना अभी बाकी है। आज तक ब्यूरो।
3: पाकिस्तान के कराची में शनिवार देर रात हुई सिक्योरिटी माने जाने वाले सिंध रेंजर्स मुख्यालय के पास बड़ा आतंकी हमला हुआ है। धमाकों के बाद करीब आधे घंटे तक सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी होती रही और इस हमले में 5 लोगों की जान चली गई जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा भी किया है।
14: पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची शनिवार को एक बड़े धमाके से दहल उठी। शहर के व्यस्त यूनिवर्सिटी रोड इलाके में अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ। इसके ठीक बाद पूरे इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। यह घटना गुलिस्तान इस जौहर इलाके में हुई। यह क्षेत्र बेहद संवेदनशील माना जाता है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इस हमले में 4 लोगों की मौत हुई है, 3 अन्य घायल हुए हैं। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मृतकों में आम नागरिक शामिल है या सुरक्षा बलों के जवान। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि 5 हमलावर भी मारे गए हैं, जिनमें 3 सुरक्षा बलों की जवाबी कार्यवाही में और 2 आत्मघाती विस्फोट में मारे गए। रिपोर्ट्स के अनुसार एक आत्मघाती हमलावर ने रेंजर्स परिसर के पास खुद को विस्फोट से उड़ा दिया। इसके बाद 2 और धमाकों की आवाज सुनाई दी। इसी दौरान बाकी हमलावरों ने गोलीबारी शुरू कर दी। हमला उस इलाके में हुआ जहां कराची विश्वविद्यालय समेत कई संस्थान और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठान मौजूद हैं। स्थानीय मीडिया के अनुसार प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमात उल अहरार ने इस हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। संगठन का कहना है कि हमले में उसके 9 लड़ाके शामिल थे। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र रूप से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। घटना के बाद पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। भारी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सिंध के मुख्यमंत्री सैयद मुराद अली शाह ने घटना की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। वहीं सुरक्षा एजेंसियां पूरे हमले के नेटवर्क और हमलावरों के संबंधों की जाँच कर रही है। कराची का यह इलाका पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित इलाकों में माना जाता है। ऐसे में रेंजर्स मुख्यालय के पास हुआ यह हमला सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। अब जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती पूरे आतंकी नेटवर्क का पता लगाना और इस हमले के पीछे कौन कौन शामिल था। आज तक ब्यूरो।
3: यह खबर है उज्जैन से, जहां दिल को दहलाने वाली वारदात सामने आई। युवक के प्यार के इजहार पर मना करना युवती को भारी पड़ गया। सिरफिरे आशिक ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला बोल दिया।
15: एक तरफा प्यार का खौफनाक अंजाम। सिरफिरे युवक ने युवती पर चाकू से ताबड़तोड़ 14 बार कर दिए। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि बेखौफ युवक ने महज 10 सेकंड में युवती पर 14 वार कर दिए। युवती चीखती रही लेकिन युवक रुका नहीं।
16: वो घटनास्थल पर आया, बालिका से बातचीत करी और बातचीत करते करते थोड़ी देर बाद उसने उसके ऊपर चाकू से मल्टीपल वार किए। बालिका को भी हमने एस एन कृष्णा अस्पताल में रेफर हुई थी तो वहाँ भर्ती है और हमने वहाँ देखने भी गया था और अभी उसका ऑपरेशन कराया जा रहा है।
15: पुलिस ने मामले पर तुरंत एक्शन लिया और आरोपी सुनील को गिरफ्तार कर लिया।
16: आरोपी को टीम ने गिरफ्तार किया है और इस दौरान वो भागने के प्रयास में उसके पैर में चोट आई है, उसका पैर बुरी तरह जख्मी है तो उसको भी इलाज कराया जा रहा है। एक बार इलाज हो जाए उसके बाद उससे उसके जो इंटेंशन है उसके संबंध में पूछताछ की जाएगी।
15: जांच में सामने आया है कि दोनों की मुलाकात इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। आरोपी युवती से एक तरफा प्रेम करता था और जब युवती ने उससे दूरी बनाई तो उसने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। आज तक ब्यूरो।
3: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
18: As world soccer hits the big stage, Fanatics Sportsbook is making every game day worth more. Earn up to 10% fan cash on your soccer bets, win or lose. That's real extra value you can unlock every match, all tournament long. And fan cash isn't just for betting. You can use it anywhere in the world of Fanatics. On game tickets, merchandise, collectibles, profit boosts, and more. One ecosystem, endless ways to spend. Plus, new customers get up to $1,000 in fan cash. That's $100 bet match every day for your first 10 days. The world is ready. Are you? Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Must be 21 plus. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET. CT, call 888-789-7777. MA, call 800-327-5050. NY, call 877-8-HOPE-NY. MD, visit mdgamblinghelp.org. Not available in all states. Terms apply. See Fanatics Sportsbook app.
19: कौन सा ग्रह काफी समय बीत जाने के बाद विवाह तोड़ सकता है? कौन सा ग्रह वैवाहिक जीवन में मुकदमेबाजी ले आता है और कौन से ग्रह वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाए रखते हैं? विवाह के बंधन को कैसे बनाएं मजबूत, जानिए मेरे साथ सिर्फ।
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
20: Now, the Bay Bridge spokesbirds.
21: Go to baybridge.com.
22: Spike, is that you inside a giant egg?
21: Otis, I'm hatching a plan to avoid Bay Bridge traffic.
22: Great idea, Spike. Does it involve baybridge.com?
21: You bet, Otis. Tell him, lady.
20: Hatch your plan for smooth travel when crossing the bay at baybridge.com. Get traffic info and live cameras all in one spot.
22: Baybridge.com. Now that's how you hatch a plan.
23: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
24: Teaching and learning is evolving. That evolution is powered by those who know how to merge technology with effective instruction. A master's degree in education technology and instructional design at WGU equips you with the skills you need to turn innovative thinking into real-world impact, so you can shape learning in academic or corporate settings. Learn more at wgu.edu.
18: As world soccer hits the big stage, Fanatics Sportsbook is making every game day worth more. Earn up to 10% fan cash on your soccer bets, win or lose. That's real extra value you can unlock every match, all tournament long. And fan cash isn't just for betting. You can use it anywhere in the world of Fanatics. On game tickets, merchandise, collectibles, profit boosts, and more. One ecosystem, endless ways to spend. Plus, new customers get up to $1,000 in fan cash. That's $100 bet matched every day for your first 10 days. The world is ready. Are you? Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Must be 21 plus. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET. CT, call 888-789-7777. MA, call 800-327-5050. NY, call 877-8-HOPE-NY. MD, visit mdgamblinghelp.org. Not available in all states. Terms apply. See Fanatics Sportsbook app.
17: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

पाकिस्तान के कराची में धमाका और फायरिंग से अफरातफरी। रेंजर्स हेडक्वार्टर पर सुइसाइड अटैक, अब तक 10 की मौत, काफी देर तक होती रही गोलीबारी। ईरान पर अमेरिकी हमले से मिडिल में फिर से तनाव। तेहरान में कुवैत और बहरीन पर दागी गई मिसाइल, ट्रंप पर लगाया सीज फायर तोड़ने के आरोप। शेल्स दौरे

में तेज हुई है तकरार। आरएसएस ने कहा एसआईटी जांच के बाद सियासत की जरूरत नहीं। अखिलेश बोले संसद में मॉनसून सत्र में उठाएंगे मुद्दा। महाराष्ट्र में टीटी पेपर लीक पर सियासी उबाल। राहुल और प्रियंका ने सरकार को घेरा, कहा शिक्षक परीक्षा को बनाया वसूली का सिस्टम, एसआईटी का गठन।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सबसे पहले आपको बता दें, पाकिस्तान के कराची में आत्मघाती हमले की खबर सामने आई है। जानकारी ये मिली है कि गुलिस्ताए जौहर इलाके में ब्लॉक 6 स्थित रेंजर्स हेडक्वार्टर में, यानी जो पाकिस्तानी रेंजर्स का मुख्यालय है, वहां जोरदार धमाकों के बाद काफी देर तक गोलीबारी की गई है। इस हमले में कुल 10 लोगों की जान चली गई है। 3 ऐसे और लोग बताए जा रहे हैं जो बुरी तरह से घायल हुए हैं। मरने वालों में 6 हमलावर बताए जा रहे हैं। 4 पाकिस्तानी सैनिकों की संख्या बताई जा रही है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि कराची हमले की जिम्मेदारी ली है जमात उल अरहार ने। आतंकी संगठन ने दावा यह किया है कि इस हमले को अंजाम देने में उनके 9 लड़ाके शामिल हैं। तो 9 लड़ाकों की मदद से इस पूरे के पूरे हमले को अंजाम दिया गया है। पाकिस्तानी रेंजर्स के मुख्यालय पर यह जबरदस्त हमला बोला गया है। और आपको बता दें कि आत्मघाती हमले के बाद जबरदस्त गोलीबारी की आवाजें आसपास लोगों ने सुनी है, जिसमें कुल 10 लोगों की जान चली गई है। 6 इसमें आतंकवादी बताए जा रहे हैं और 4 पाकिस्तानी सैनिक बताए जा रहे हैं। धमाके के बाद जब गोलीबारी की गई तो आसपास अफरा तफरी मच गई। जबरदस्त तरीके से लोग दहशत में नजर आए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस संगठन की तरफ से कहा गया है हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कि उसके 9 लड़ाके इस पूरे हमले में शामिल हैं और जमात उल अरहार इस संगठन का नाम है। कराची की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। स्थानीय जो मीडिया है उसका कहना है कि कुल 10 लोगों की इस हमले में जान चली गई है। तो पाकिस्तान के कराची में शनिवार देर रात हुई हाई सिक्योरिटी माने जाने वाले सिंध रेंजर्स मुख्यालय के पास एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। धमाकों के बाद करीब आधे घंटे तक सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में गोलीबारी होती रही। इस हमले में कुल 10 लोगों की अभी तक जान चली गई है। कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। एक आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है।
1: पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची शनिवार को एक बड़े धमाके से दहल उठी। शहर के व्यस्त यूनिवर्सिटी रोड इलाके में अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ। इसके ठीक बाद पूरे इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। यह घटना गुलिस्तान इस जौहर इलाके में हुई। यह क्षेत्र बेहद संवेदनशील माना जाता है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इस हमले में 4 लोगों की मौत हुई है, 3 अन्य घायल हुए हैं। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मृतकों में आम नागरिक शामिल है या सुरक्षा बलों के जवान। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि 5 हमलावर भी मारे गए हैं, जिनमें 3 सुरक्षा बलों की जवाबी कार्यवाही में और 2 आत्मघाती विस्फोट में मारे गए। रिपोर्ट्स के अनुसार एक आत्मघाती हमलावर ने रेंजर्स परिसर के पास खुद को विस्फोट से उड़ा दिया। इसके बाद 2 और धमाकों की आवाज सुनाई दी। इसी दौरान बाकी हमलावरों ने गोलीबारी शुरू कर दी। हमला उस इलाके में हुआ जहां कराची विश्वविद्यालय समेत कई संस्थान और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठान मौजूद हैं। स्थानीय मीडिया के अनुसार प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमात उल अहरार ने इस हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। संगठन का कहना है कि हमले में उसके 9 लड़ाके शामिल थे। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र रूप से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। घटना के बाद पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। भारी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सिंध के मुख्यमंत्री सैयद मुराद अली शाह ने घटना की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। वहीं सुरक्षा एजेंसियां पूरे हमले के नेटवर्क और हमलावरों के संबंधों की जाँच कर रही है। कराची का यह इलाका पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित इलाकों में माना जाता है। ऐसे में रेंजर्स मुख्यालय के पास हुआ यह हमला सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। अब जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती पूरे आतंकी नेटवर्क का पता लगाना और इस हमले के पीछे कौन कौन शामिल था। आज तक ब्यूरो।
0: और इसी बीच बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, मिली मिडिल ईस्ट से मध्य पूर्व में फिर से जंग छिड़ी हुई है। ईरान में कुवैत और बहरीन पर हमलावर हमले किए गए हैं और अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाकर ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। तो एक तरफ तो शांति वार्ता लगातार जारी है, अग्रीमेंट्स किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ फिर से लड़ाई शुरू होने की खबर है। ईरान ने कहा है कि पहले यूएस ने हमला बोला था और अब हम उसका जवाब दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी अशरफ वानी जुड़ गए हैं। अशरफ, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि अभी तक तो उम्मीद की जा रही थी कि सब कुछ ठीक है और सब ट्रैक पर आने लगा है।
2: बिल्कुल सब ठीक नहीं है शशि। दरअसल जो एमओयू अग्री हुआ है उसको अपने अंदाज से जो है दोनों देश पढ़ रहे हैं। एक तरफ जो है अमेरिका उसे पढ़कर ये सुना रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला है, जहां से जिसको मर्जी है वो जहाज वहां से चलाए। वहीं तरफ जब ईरान की एमओयू सुनते हैं या उसका मतलब समझते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये तय हुआ है कि जो ईरान की तरफ से तय किए गए रास्ते स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वहीं से जहाज भेजेंगे। तो इसी के चलते जो है हमने दो दिन पहले देखा, पहले एक जो जिसने ईरानी रास्ता जो है दरकिनार करके एक जहाज निकला था ओमान के साहिल से, उस पर जो है ईरान ने एक मिसाइल से, एक रॉकेट से हमला किया, प्रोजेक्टाइल से। उसके बाद उसमें थोड़ा नुकसान भी हुआ लेकिन क्रू को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उसकी जवाबी कार्रवाई में कल जो है अमेरिका ने दो तटों पर जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में हमले किए और उनका दावा था कि हमने रडार स्टेशन जो ईरान के हैं और जो उनका स्टोरेज है ड्रोन्स और मिसाइल्स का, उस पर हमला किया। उसके बाद जो है उसकी जवाबी कार्रवाई जो है ईरान ने की, एक और वेसल को निशाना बनाया और साथ ही साथ बहरीन में अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाया गया। उसकी जवाबी कार्रवाई अमेरिका ने की, फिर जो है साहेली तटों पर जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में है ईरान के उनके भंडारों पर, हथियार के भंडारों पर हमला किया। तो उसके जवाब में अब देखा जा रहा है कि अब कुवैत में भी हमला हुआ और बहरीन में भी अमरीकी बेस पर हमला हुआ है।
0: एक बार बिल्कुल अशरफ, मतलब मन में सवाल वही है कि एक बार फिर से जिस तरीके से ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है, दोनों ही तरफ से अटैक हो रहा है और जो पूरी दुनिया की नजरें थी कि चलिए दो महीने के लिए सीज फायर और तमाम चीजें ट्रैक पर आने लगी हैं, ऊर्जा संकट पूरी दुनिया में बना हुआ है और जिस तरह की दोनों ही तरफ से खबर है, अब आगे की क्या प्रक्रिया, क्या उम्मीद की जा सकती है?
2: किसी न किसी को अब तो ये देखना होगा कि किस हद तक जाएगा, क्योंकि हमको ये भी देखना होगा कि जो एमओयू में जिन बातों पर दोनों देश जो है सहमत हुए थे उनमें से ईरान का भी आरोप है कि अमेरिका खड़ा नहीं उतर रहा है, चाहे वो रिलीज ऑफ फंड की बात हो, चाहे वो लेबनान फ्रंट हो या फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज हो। वहीं पर जो है अमेरिका जो है वो चाहता है कि पूरी तरह से जो एमओयू साइन हुआ है उसमें कहीं सर पर भी नजर ना आए कि अमेरिका की हार हुई है इस युद्ध में। यही कारण शायद समझा जा रहा है कि एक बार फिर कोशिश है बातचीत के बीच में दबाव बढ़ाने की, लेकिन अगर ये दबाव ज्यादा बढ़ा अमेरिका की तरफ से ईरान, और ईरान ने साफ किया है कि वो हर हमले के लिए तैयार है और जवाबी कार्रवाई करेंगे, तो जाहिर है कि हालात और भी बिगड़ सकते हैं।
0: आप बने रहे अशरफ हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, जानकारी मिल रही है कि अमेरिका की तरफ से ईरान के भीतर 10 अलग अलग जगहों पर जबरदस्त हमले किए गए हैं। तो कहां पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी कि पूरी तरह से सीज फायर की जो तमाम शर्तें हैं दोनों ही देशों की तरफ से उसका पालन किया जाएगा और तमाम चीजें अब ट्रैक पर आने लगी हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा। एक बार फिर से दोनों ही देशों के बीच, हम कह सकते हैं कि तीनों ही देशों के बीच तनातनी बनी हुई है। अमेरिका और इसराइल एक बार फिर से ईरान पर हमलावर है और कहा यह जा रहा है कि तमाम शर्तों का उल्लंघन ईरान की तरफ से किया गया। जवाबी कार्रवाई में ईरान की तरफ से भी अलग अलग जगहों पर हमला किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अशरफ लगातार बने हुए। अशरफ, 10 अलग अलग जगहों पर अमेरिका की तरफ से हमले की खबर है।
2: बिल्कुल, पहले तो दो जगहों पर हमले किए थे, अब इनमें का दायरा जो है आज के इन हमलों में अमेरिका ने बढ़ाया है, क्योंकि वो मानता है कि जिस अंदाज से लगातार ईरान की तरफ से, खासतौर से आईआरजीसी की तरफ से स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही पर पूरी तरह से जो है एक तरह से कंट्रोल रखा गया है, वो जो है हजम नहीं हो रहा है अमेरिका को। क्योंकि एक बात तो थी जो आर्टिकल 5 था एमओयू का कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाएगा। ईरान का कहना है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया जाएगा लेकिन ईरानियन या आईआरजीसी के कंडीशन के मुताबिक, जो रास्ता तय उन्होंने किया है वही से जहाज भेजेंगे, जबकि जहाजों ने जो है दूसरे रास्ते चुने जिन पर हमले हुए। तो जाहिर है कि अभी भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज में सैकड़ों की तादाद में जहाज और सेलर्स फंसे पड़े
0: फंसे हुए हैं। वही बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए हम आपका रुख करेंगे। और आपको बता दें कि दोनों ही तरफ से एक बार फिर से जबरदस्त कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राम मंदिर के मामले में, क्योंकि हंगामा लगातार बना हुआ है राम मंदिर चढ़ावे को लेकर, जोर पकड़ता जा रहा है चोरी का मुद्दा। और अब ट्रस्ट की अगली बैठक होनी है 11 जुलाई को, इस बैठक में ट्रस्ट के नए महासचिव की नियुक्ति पर चर्चा होने की भी उम्मीद है। और ट्रस्ट के सदस्य के तौर पर डॉक्टर अनिल मिश्रा के उत्तराधिकारी को चुनने पर भी विचार किया जा सकता है। राम मंदिर की एक बड़ी बैठक हुई जिसमें चंपत राय को लेकर बयान भी सामने आया है। बयान में कहा यह गया है कि चंपत राय ने इस्तीफे की पेशकश की थी लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया और इस पर विचार किया जा रहा है।

0: चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से बयान जारी किया गया, जिसमें पूरे मामले में दुख जताया गया। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की गई। वहीं जनता से अपील की गई कि वो किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दे। लेकिन सबसे बड़ी बात, राम मंदिर की ओर से बताया गया कि चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया है। 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई तो उनसे जुड़ी कई सच्चाई सामने आई। इन आरोपियों में से एक रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू का रिश्तेदार मनीष यादव बार बार चोरी करता दिखा था। सीसीटीवी में उसके खिलाफ तमाम सबूत हैं, फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं की गई। चंपत राय के ड्राइवर रामशंकर ने ही मनीष को नौकरी दिलवाई थी। 7 आरोपियों से करीब 80 लाख की बरामदगी की गई है।
1: 8 एक्यूज्ड थे, उसमें से 7 लोगों के पास से 79,85,493 रुपए बरामद हुए हैं, अलग अलग अमाउंट के रूप में।
0: 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से बरामद होने की बात सामने आ रही है।
2: टिन्नू यादव के इस हॉस्टल से ही, दुर्गापुरी कॉलोनी का ये अयोध्या में ही दुर्गापुरी कॉलोनी ये हॉस्टल है, और इस हॉस्टल में यूं तो यहाँ अयोध्या विश्वविद्यालय के आसपास के कॉलेज के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर 2 कमरे हैं जो टिन्नू यादव ने अपने निजी यूज के लिए रखे हैं। कहने को तो दोनों कमरे पूजा घर है, उसका अपना कमरे उनके कब्जे में है, लेकिन कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद, जब गुरुवार देर रात टिन्नू यादव को अयोध्या पुलिस ने FIR दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया, तो शुक्रवार की सुबह उसको यहां लाया गया, और पुलिस के अनुसार जो दस्तावेज जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है कि लगभग 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से बरामद हुए हैं।
0: इस मामले में एक गिरफ्तारी अनुकल्प मिश्रा की भी हुई है, जिसकी देखरेख में नोटों की गिनती की जाती थी। अनुकल्प मिश्रा ने 2 साल पहले 40 लाख का एक घर लिया था, जहां आज तक की टीम पहुंची।
3: क्या आप क्या कहना चाहेंगी?
4: मेरे भाई को फंसाया जा रहा है। नेहा मेरी कुछ नहीं है, उनसे शादी हुई थी चाचा की, 10 साल से उनका केस चल रहा है, उनका मैटर चाचा चाची का है, वो अलग जाने।
0: उधर अनुकल्प के रिश्तेदार पैसों को लेकर शक जाहिर कर रहे हैं।
5: ये जब से राम मंदिर में काम कर रहे हैं, तभी से अचानक मैंने इनको बढ़ते देखा।
2: अच्छा,
5: पहले नहीं ऐसा था। हम जब शादी करके गए थे तो नॉर्मल कंडीशन में लोग जी रहे थे, लेकिन अब मुझे 2-3 साल से कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ते दिखे लोग।
2: क्या पैसा बढ़ गया?
5: हाँ, पैसा भी। हाँ, और वहाँ गांव में मतलब फार्म हाउस भी बनवाया, और अभी हाल में भागवत करवाए हैं, जिसमें उन्होंने बहुत अथाह रुपया खर्चा किया है।
0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में CCTV कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जहां टिन्नू यादव की तरह यूपी पुलिस के वायरलेस डिपार्टमेंट के RMO अर्जुन देव की भूमिका पर भी रिपोर्ट में सामने आई है। जिस कमरे में नोट गिने जाते थे और चोरी हो रही थी, उसका कंट्रोल RMO को दिया गया था। अर्जुन देव का पिछले 17 सालों से ट्रांसफर नहीं किया गया, जिसकी वजह उसका चंपत राय से करीबी होना बताया जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
6: भले ही ट्रस्ट ने चंपत राय का इस्तीफा मंजूर न किया हो, लेकिन पूरे मामले में चंपत राय को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष भी अब चंपत राय को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहा है।
0: क्या राम भक्तों से धोखा करने वाली इस जांच की आंच बड़े चेहरों तक पहुंचेगी? क्या चंपत राय से सवाल किए जाएंगे? क्या चढ़ावा चोरी के इस पूरे खेल में चंपत राय की जिम्मेदारी तय होगी, या फिर चंद मोहरों को बलि का पकड़ा बनाकर मामले की लीपापोती कर दी जाएगी?
7: ये सवाल भी महत्वपूर्ण है कि क्या छोटे कर्मचारी अकेले CCTV बंद कर हजारों करोड़ के चढ़ावे में हेराफेरी कर सकते हैं, या इसके पीछे कुछ बड़े लोगों की मिलीभगत है। इस मामले में जांच के नाम पर लीपापोती करने की जगह पारदर्शी तरीके से जांच हो, और जो भी लोग इसमें शामिल हैं, उन्हें कड़ी सजा मिले।
8: हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई, बड़े बड़े लोग जो इसमें शामिल हैं, इन छोटे छोटे लोगों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, बड़े लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, जो बड़े बड़े नाम इसके अंदर शामिल हैं, तभी लोगों के को थोड़ा सा सुकून मिलेगा। लेकिन इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी जिन लोगों ने भी चोरी की उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
0: चंपत राय पर ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी, उनकी नाक के नीचे चढ़ावे की चोरी का पूरा खेल खेला गया। मामला बाहर आया तो चंपत राय की चुप्पी पर सवाल खड़े हुए। 28 दिन बाद इस्तीफे की खबर आई, लेकिन क्या सिर्फ इस्तीफे से चंपक राय पाक साफ साबित हो जाते हैं?
9: तो जब उन्होंने शिकायत की चंपत राय जी से कि साहब बड़ा गड़बड़ हो रहा है इसमें, तो लेखाधिकारी को हटा दिया, यानी कि चंपत राय जी की शह से ये हो रहा है।
0: हालांकि चंपत राय के पुराने साथी अभी भी उनके बचाव में हैं।
10: कभी कभी ऐसा होता है कि चंदन के वृक्ष पे भी सर्प लिपटे होते हैं, जो अपने विष का त्याग नहीं कर पाते। आसपास वाले लोगों ने इस तरह का दुराचरण किया कि एक ऐसे व्यक्ति को भी प्रश्नों के कटघरे में आज हम खड़ा देख रहे हैं, जो देख के अच्छा नहीं लग रहा।
11: जिन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है, पूरे अपने जीवन को तपस्या में लगाया है, उनके लिए धन और वैभव यदि रहता तो बहुत पहले पा जाते।
0: एसआईटी की जांच जारी है, लेकिन अब तक उनकी जांच में ट्रस्ट कमेटी के 14 लोगों में से किसी का भी नाम सामने नहीं आया है। आज तक ब्यूरो।
6: राम मंदिर अब 2027 में चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि अगर 27 में उनकी सरकार आती है तो अयोध्या को शानदार तरीके से डेवलप किया जाएगा, और वहीं बीजेपी अखिलेश के दावों को सपना बता रही है।
12: इन्होंने तो रावण ने तो केवल माता जानकी जी की चोरी की थी, राम मंदिर के दान पात्र में लाखों लोगों की श्रद्धा चोरी हुई।
13: राम मंदिर पर हो रहे खुलासे से साधु से लेकर राम भक्तों तक में आक्रोश है। वहीं विपक्ष पूरी जांच पर ही सवाल खड़े कर रहा है।
14: सरकार को झुक करके उन्हें एसआईटी बनानी पड़ी, और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई ये भी एक प्रश्न है कि एसआईटी बनी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई, और उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है पूरे देश की जनता दुखी है, और जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है।
8: मैं योगी जी को कहना चाहता हूँ कि जो चंदा चोर हैं वो योगी जी के खिलाफ भी षड्यंत्र रच रहे हैं। योगी जी को भी कुर्सी से हटाने की तैयारी है, योगी जी को भी सीएम से हटाने की तैयारी है। तो मैं योगी जी को कहना चाहता हूँ वो इस महापाप में शामिल ना हो। जो हम लोगों का संघर्ष है कि जिन लोगों ने डकैती डाली है भगवान श्री राम के घर में, उनको फांसी दी जाए, इस संघर्ष में योगी जी भी अपना साथ।
13: उधर योगी आदित्यनाथ जनता को भरोसा दे रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
15: सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें।
13: साफ है राम मंदिर चंदा चोरी का शोर अब चुनावी मंचों पर गूंजने वाला है। अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि वो अयोध्या को नए तरीके से विकसित करेंगे, जहां दुनिया भर के श्रद्धालु सच्ची आध्यात्मिकता की अनुभूति करेंगे।
14: मुख्यमंत्री तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं, अगर गिरफ्तारी हुई है और जो सूचना मिल रही है कि इतने लाख रुपए निकले, कभी कंडों में निकले, कुछ ऐसे जेवरात हैं, लोगों ने सिंधी समाज ने आरोप लगाया कि हमने तो इतनी चांदी की शिला दी थी, या आप मान लीजिए डायमंड दिया था या गुप्त दान था, तो ये आस्था की साथ जो खिलवाड़ किया है वो प्रभु श्री राम कभी उन लोगों को माफ नहीं कर सकते।
13: इस बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भगवान राम के दर्शन की तस्वीर साझा की तो कांग्रेस ने उस पर सवाल खड़े कर दिए। राम सबके हैं, फिर भाजपा सरकार की दोहरी नीति क्यों? अयोध्या में अरविंद केजरीवाल के लिए कैमरे और विशेष छूट, लेकिन कांग्रेस के नेताओं और आम श्रद्धालुओं के लिए कड़े नियम। कुछ दिन पहले जब मैंने दर्शन किए तब व्यवस्था अलग थी। बहरहाल राम मंदिर चंदा चोरी के मामले की गूंज इतनी आसानी से थमने वाली नहीं है। इस मुद्दे की पहली अग्नि परीक्षा 2027 के यूपी चुनाव में होगी, जहां जनता तय करेगी कि वो जांच से कितनी संतुष्ट नजर आई। आज तक ब्यूरो।
6: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
17: कौन सा ग्रह काफी समय बीत जाने के बाद विवाह तोड़ सकता है? कौन सा ग्रह वैवाहिक जीवन में मुकदमेबाजी ले आता है और कौन से ग्रह वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाए रखते हैं, विवाह के बंधन को कैसे बनाए मजबूत, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
18: As world soccer hits the big stage, Fanatics Sportsbook is making every game day worth more. Earn up to 10% fan cash on your soccer bets, win or lose. That's real extra value you can unlock every match, all tournament long. And fan cash isn't just for betting. You can use it anywhere in the world of Fanatics. On game tickets, merchandise, collectibles, profit boosts, and more. One ecosystem, endless ways to spend. Plus, new customers get up to $1,000 in fan cash. That's $100 bet matched every day for your first 10 days. The world is ready. Are you? Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Must be 21 plus. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET. CT, call 888-789-7777. MA, call 800-327-5050. NY, call 877-8-HOPE-NY. MD, visit mdgamblinghelp.org. Not available in all states. Terms apply. See Fanatics Sportsbook app.
16: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
18: As world soccer hits the big stage, Fanatics Sportsbook is making every game day worth more. Earn up to 10% fan cash on your soccer bets, win or lose. That's real extra value you can unlock every match, all tournament long. And fan cash isn't just for betting. You can use it anywhere in the world of Fanatics. On game tickets, merchandise, collectibles, profit boosts, and more. One ecosystem, endless ways to spend. Plus, new customers get up to $1,000 in fan cash. That's $100 bet matched every day for your first 10 days. The world is ready. Are you? Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Must be 21 plus. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET. CT, call 888-789-7777. MA, call 800-327-5050. NY, call 877-8-HOPE-NY. MD, visit mdgamblinghelp.org. Not available in all states. Terms apply. See Fanatics Sportsbook app.
19: Sports fans, TuneIn Premium is the ultimate playbook. From live play-by-play of the biggest leagues all season long.
20: Lee looks for someone, finds the right someone.
19: To live sports talk radio to keep you in the game in between games.
21: Because people who all watch games, they hear the voice.
19: The sports action you crave comes alive with TuneIn Premium. Live games, fewer ads, endless action. Upgrade to premium to get in the game.
22: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: कौन सा ग्रह काफी समय बीत जाने के बाद विवाह तोड़ सकता है? कौन सा ग्रह वैवाहिक जीवन में मुकदमेबाजी ले आता है? और कौन से ग्रह वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाए रखते हैं? विवाह के बंधन को कैसे बनाएं मजबूत, जानिए मेरे साथ सिर्फ।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

घंटे में ईरान पर दूसरा अमेरिकी हमला। मिडिल ईस्ट में फिर से बड़ा तनाव। तेहरान ने कुवैत और बहरीन पर दागी मिसाइलें। ट्रंप पर लगाया सीज फायर तोड़ने का आरोप। सेशल्स दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत। आज राष्ट्रीय दिवस समारोह में शिरकत। द्विपक्षीय वार्ता में रिश्तों की मजबूती पर होगी बात। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर तेज हुई तकरार। आरएसएस ने कहा एसआईटी जांच के बाद सियासत की जरूरत नहीं। अखिलेश बोले संसद के मानसून सत्र में उठाएंगे मुद्दा। और महाराष्ट्र में टीईटी पेपर लीक पर सियासी उबाल। राहुल और प्रियंका ने सरकार को घेरा। कहा शिक्षा और परीक्षा को बनाया वसूली का सिस्टम। एसआईटी का गठन।

देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की समस्या अक्सर आती है, लेकिन कभी कभी इसमें विवाह टूट भी जाता है और कभी कभी विवाह बचा रहता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि विवाह के बंधन को किन उपायों से मजबूत करें ताकि वैवाहिक जीवन बेहतर रह सके। इसके अलावा बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

2026 दिन रविवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय शाम को 4:30 से लगभग 6 तक पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज विवाह के मजबूत बंधन की बात कर रहे हैं। किन ग्रहों से विवाह का बंधन जुड़ता है और मजबूत बना रहता है? देखिए, विवाह के लिए मुख्य रूप से दो ही ग्रह जिम्मेदार माने जाते हैं। ज्योतिष के दोनों आचार्य महिलाओं के विवाह के लिए बृहस्पति महत्वपूर्ण होता है और पुरुषों के विवाह के लिए शुक्र विवाह कारक माना जाता है। कुल मिलाकर देखें पुरुष को भी और स्त्री को भी तो वैवाहिक जीवन सबसे ज्यादा निर्भर करता है शुक्र के ऊपर। अगर कुंडली में शुक्र खराब हुआ तो वैवाहिक जीवन का बंधन, विवाह का बंधन मजबूत नहीं रह पाता। लेकिन अगर बृहस्पति ठीक है, थोड़ा भी बेहतर है, तो किसी न किसी तरह से विवाह का बंधन जुड़ा रहता है। यानी वैवाहिक जीवन के मामले में अगर बृहस्पति का आशीर्वाद आपकी कुंडली में है तो वो अंतिम समय तक आपके विवाह की रक्षा करेगा और आपके वैवाहिक जीवन को बचाए रखेगा।

चाहिए। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम में लापरवाही ना करें, महत्वपूर्ण निर्णय फिलहाल ना लें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, मानसिक चिंता दूर होगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। तो विवाह के बंधन को जोड़ने के लिए शुक्र और बृहस्पति जिम्मेदार होते हैं। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो विवाह के बंधन को तोड़ते हैं, सेपरेशन, अलगाव या डिवोर्स पैदा करते हैं। तो कौन से ग्रह विवाह के बंधन को तोड़ने के लिए जिम्मेदार होते हैं? मंगल रिश्तों का कारक होता है, भाई बहन और खून के रिश्तों से संबंध रखता है। मंगल के खराब होने पर रिश्तों में समस्या आ जाती है और अगर मंगल खराब हुआ तो ये समस्या विवाह टूटने से लेकर के मुकदमेबाजी तक चली जाती है। राहु अगर निगेटिव रोल प्ले करे तो अनावश्यक कारणों से विवाह टूटता है, बिना वजह के विवाह टूट जाता है, शक और वहम की वजह से। शनि के कारण काफी लंबे समय के बाद रिश्ते टूटते हैं, शादी के 15-15, 20-20 साल होने के बाद रिश्ते टूट जाते हैं। अगर बृहस्पति कमजोर हुआ, गड़बड़ हुआ तो अहंकार की वजह से, ईगो प्रॉब्लम की वजह से रिश्ते टूटते हैं, रिश्तों में दरार पैदा होती है। अगर शुक्र खराब हुआ तो अति महत्वाकांक्षा के कारण, ओवर एम्बिशन के कारण विवाह बहुत जल्दी टूटता है। जहां पर शादी तुरंत हुई और तुरंत टूट गई वहां पर इसके पीछे ज्यादातर शुक्र की भूमिका दिखाई देती है। विवाह के संबंधों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय
किया जाएगा।

अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, सेहत अच्छी बनी रहेगी, काम की अधिकता रहेगी। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। सिंह राशि, वाद विवाद से बचाव करें, संतान की चिंता हो सकती है, धन खर्च बढ़ा हुआ रहेगा। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।

सूचना प्राप्त होगी, करियर की समस्या हल होगी, लाभकारी यात्रा हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न श्वेता जी ने हमें लिखा है, गुड़गांव हरियाणा से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 19 मई 1994। जन्म का समय शाम के 6:10। जन्म स्थान है चंडीगढ़। ये कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है तो मेरे विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। श्वेता जी, आपकी कुंडली में आपके विवाह का समय चल रहा है साल 2026 के अंत में या 2027 के आरंभ में आपका विवाह होगा, आपकी अपनी इच्छा से जाने पहचाने व्यक्ति के साथ। विवाह आपका कुल मिला जुला के ठीक रहेगा और गुड़गांव या इसके आसपास ही होगा, बहुत दूर होने की संभावना नहीं बन रही है। एक ओपल बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब आपको बताते हैं कि अगर अलग अलग ग्रहों की वजह से आपके वैवाहिक जीवन में बाधा आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो इसको कैसे दूर करेंगे। अगर मंगल की वजह से आपके वैवाहिक जीवन में बाधा आ रही है तो नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करें। खास तौर से मंगलवार की शाम के समय सुंदर कांड का पाठ करें और मंगलवार को निर्धनों में हलवा पूरी बांटिएगा। राहु की वजह से अगर वैवाहिक जीवन में दिक्कत है, शक है, वहम है, बिना वजह के प्रॉब्लम आ रही है तो भगवान भैरव की उपासना करिएगा। काल भैरव अष्टक का रोज शाम को पाठ करिए और रविवार को मीठी चीज का और उड़द की दाल की बनी हुई वस्तुओं का दान करिएगा। अगर शनि की वजह से आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है, काफी उम्र बीतने के बाद भी समस्या है, तो शनि मंत्र का नियमित जप करिए। ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र को रोज शाम को जपिएगा। अगर बृहस्पति खराब है और बृहस्पति के कारण वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है तो शिव जी की उपासना करिएगा। रोज सवेरे शिवलिंग पर जल अर्पित करिए, अधिक से अधिक नमः शिवाय का जप करिए और शिव जी से कृपा करने की प्रार्थना करिए। अगर शुक्र की वजह से
वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है, पति पत्नी के बीच में बिल्कुल भी प्रेम नहीं रह गया है, तो श्री हरि और माता लक्ष्मी की उपासना करिएगा। खास तौर से नियमित रूप से माता लक्ष्मी की आरती करिएगा और शुक्रवार की शाम को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करिएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो शुक्र के खराब होने के बावजूद आपका वैवाहिक जीवन सुरक्षित बना रहेगा। वैवाहिक जीवन पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल।

काम पूरे होंगे लेकिन काम ज्यादा होगा, काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृश्चिक राशि, करियर में स्थिरता आएगी, धन का लाभ होगा, पारिवारिक समस्याएं दूर होंगी। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। धनु राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब आपको बताते हैं कि कौन से छोटे छोटे उपाय अगर नियमित रूप से किए जाएं तो पति पत्नी का वैवाहिक बंधन अटूट रहता है, वैवाहिक बंधन मजबूत रहता है। अपने शयन कक्ष का रंग हमेशा हल्का रंग रखिए, हल्का हरा रखें या हल्का गुलाबी रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। पति पत्नी अपने बेडरूम में या तो ताजे फूल रखें या रंग बिरंगे फूलों के चित्र लगाएं। जहां तक हो सके कमरे में लोहे का पलंग ना रखें, लकड़ी के पलंग का प्रयोग करना ज्यादा बेहतर होगा। शुक्रवार को चावल की खीर बनाकर भगवान शिव को शाम के समय भोग लगाएं और पति पत्नी साथ में इस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। हर शनिवार की रात के समय मुख्य द्वार पर निकलते समय लेफ्ट साइड की तरफ सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से परिवार में नकारात्मकता नहीं आएगी, पति पत्नी का स्वास्थ्य और प्रेम अच्छा बना रहेगा। पूजा स्थान पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र लगाएं और नियमित रूप से खास तौर से शुक्रवार को उनकी पूजा जरूर करें। भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं और माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल चढ़ाएं या दोनों को पीले फूल चढ़ाएं तो बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे,
सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा।

बन रहे हैं, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, वाहन सावधानी से चलाएं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का, तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि शाम के समय पूजा में शंख और घंटी नहीं बजानी चाहिए, क्या ऐसा है? देखिए, शाम की पूजा हो या सुबह की पूजा हो, शंख और घंटी आप बजा सकते हैं। पूजा के दौरान शंख बजा सकते हैं 3 बार, और जब आरती कर रहे हैं तब घंटी बजाना अच्छा होता है। लेकिन शाम की पूजा के समय भी शंख बजाइए, घंटी आरती के समय बजाइए, लेकिन बहुत रात हो जाने पर शंख नहीं बजाना चाहिए। सामान्यतः रात में 9 बजे के बाद शंख और घंटी का प्रयोग करना बहुत उचित नहीं है। उसके पहले जब आप संध्या की पूजा कर रहे हैं आप शंख और घंटी बजा सकते हैं। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 2, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। नंबर 3, करियर में लापरवाही ना करें। नंबर 4, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। नंबर 5, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे। नंबर 8, चोट चपेट से सावधान रहें। नंबर 9, स्थान परिवर्तन हो सकता है। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। आपके कर्ज और स्वास्थ्य की समस्या में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न संतोष जी ने हमें लिखा है और संतोष जी हमें मेल लिखते हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 26 अगस्त 1981। जन्म का समय 2:20। जन्म स्थान है बाराबंकी। मेल लिखते हैं लखनऊ से। संतोष जी कह रहे हैं कि काफी समय से मैं अपना मकान बनाने का प्रयास कर रहा हूं, तो मुझे संपत्ति का फायदा कब तक होगा, कब तक मैं अपना मकान बनवा पाऊंगा।
संतोष जी, आपकी कुंडली के हिसाब से मकान बनवाने का समय चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि जून जुलाई में आप अपने मकान को बनवाना शुरू कर देंगे। 6-8 महीने लगेंगे, अगले साल आप उसमें शिफ्ट कर पाएंगे और मकान आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको उसमें सफलता मिलेगी। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि कर्जा उतना ही लीजिएगा जितना कम से कम लेना पड़े, बहुत ज्यादा कर्ज लेने के चक्कर में मत पड़िएगा। सुबह और शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें और हर मंगलवार को गुड़ का या मिठाई का दान करें तो आपको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई बड़ी मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकले की सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पान का पत्ता खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ एक लाल फूल रख लीजिएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास जाना है इलाज के लिए तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, वस्त्र, तो लाल रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज के दिन किस राशि के व्यक्ति को सावधान रहना है और आज का दिन किसके लिए शुभ रहने वाला है। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा वृश्चिक राशि के लोगों के लिए। कार्यों में सफलता मिलेगी, चिंताएं दूर होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा कुंभ राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा। आज सावधान रहना होगा सिंह राशि के लोगों को। सेहत बिगड़ सकती है, तनाव बढ़ सकता है। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज चतुर्दशी तिथि है, रिक्तता है, इसलिए आज कोई भी नया और शुभ काम ना करें। आज किसी निर्धन व्यक्ति को जल और गुड़ का दान करें तो बहुत शुभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: ईरान के नए जहाज के हमले के बाद अमेरिका का जवाबी एक्शन, कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले, खाड़ी क्षेत्र में फिर बढ़ा युद्ध का खतरा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टैंकर पर ड्रोन हमले के बाद अमेरिकी सेना ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर की बमबारी, ईरान के ड्रोन और मिसाइल ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। अमेरिका ने सीज़फ़ायर तोड़ने के लगाया आरोप, ईरानी ड्रोन हमले के बाद कैंटोनमेंट में नए एयर स्ट्राइक्स किए गए। हॉर्मुज़ में ऑयल टैंकर पर हमले के बाद भड़का तनाव, ट्रंप बोले ईरान नहीं माना तो काम पूरा करेंगे। इजरायली हमले में हमास मिलिट्री विंग का डेप्यूटी कमांडर वलीद हनीये ढेर IDF ने दी है जानकारी। पाकिस्तान के कराची में धमाका और फायरिंग से अफरा तफरी मची, रेंजर्स हेडक्वार्टर में सुइसाइड हमले की आशंका, अब तक 10 की मौत, कई घायल। धमाके में 6 हमलावर और 4 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर। जमात उल अहरार ने कराची धमाके की जिम्मेदारी ली, कहा हमले में शामिल थे 9 लोग। रिपोर्ट्स के अनुसार एक आत्मघाती हमलावर ने रेंजर्स परिसर के पास खुद को विस्फोट से उड़ा लिया था, इसके बाद 2 और धमाके हुए और अफरा तफरी मच गई। इसी दौरान बाकी के हमलावरों ने गोलीबारी शुरू कर दी। हमला उस इलाके में किया गया जहां कराची विश्वविद्यालय समेत कई शैक्षणिक संस्थान और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठान मौजूद हैं। चढ़ावा चोरी मामले में मंदिर ट्रस्ट का कबूलनामा, चंपत राय और अनिल शाह का मिला इस्तीफा, अगली बैठक में त्यागपत्र पर फैसला लिया जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से बयान जारी, कहा घटनाओं से हम स्तब्ध हैं, आहत और बेहद दुखी भी। चढ़ावा चोरी मामले पर तेज हो गई तकरार, अखिलेश यादव का निशाना, कहा बीजेपी के लिए धर्म से पहले है धन। अखिलेश के हमले के बाद बीजेपी के बचाव में आया RS इंद्रेश कुमार ने कहा SIT जांच के बाद सियासत की जरूरत नहीं है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सरकार को घेरेगी समाजवादी पार्टी, संसद के आगामी सत्र में मुद्दा उठाएगी समाजवादी पार्टी। महाराष्ट्र में TET परीक्षा पेपर लीक, आज होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। TET परीक्षा लीक मामले में 3 लोगों पर मामला दर्ज, ठाणे में मिला प्रश्न पत्र। महाराष्ट्र में पेपर लीक मामले की जांच के लिए फडणवीस सरकार ने बनाई SIT, डिप्टी CM शिंदे ने कहा है नहीं बचेंगे गुनहगार। महाराष्ट्र पेपर लीक पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, कहा देश की शिक्षा परीक्षा व्यवस्था को वसूली का सिस्टम बना दिया गया है। प्रियंका गांधी ने युवाओं से आंदोलन की अपील की। उद्धव ठाकरे ने भी महाराष्ट्र की NDA सरकार को घेरा, कहा दिन के उजाले में लोकतंत्र की हो रही हत्या, सिर्फ उन्हें सिर्फ सत्ता से मतलब है। महाराष्ट्र की सियासी हलचल पर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, कहा यह ऑपरेशन टाइगर नहीं बल्कि ऑपरेशन देवेंद्र है। उद्धव ठाकरे का वार, कहा दिल्ली ने देवेंद्र फडणवीस के प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल होने से पहले उनके पर कतरने की तैयारियां कर ली गई। पुणे में केतन हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी सिया गोयल के पिता प्रवीण गोयल और मां पूजा गोयल से करीब 12 घंटे तक पूछताछ, सिया का भाई साहिल गोयल भी मौजूद था। पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा, पुलिस के मुताबिक केतन की हत्या से पहले दोनों ही आरोपी सिया और चेतन ने लोहागढ़ किले से धक्का देने का अभ्यास भी किया था। पुणे में केतन को न्याय दिलाने की मांग, सड़कों पर बड़ी संख्या में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च, केतन के पिता भी इसमें शामिल हुए। 3 दिन के सेशल्स दौरे पर राजधानी विक्टोरिया पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक्स हरमिनी से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। सेशल्स पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत हुआ, एयरपोर्ट पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। प्रधानमंत्री के दौरे में लोगों का उत्साह नजर आया, हाथों में तिरंगा लेकर पहुंचे थे लोग। प्रधानमंत्री ने लोगों से हाथ मिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। सेशल्स में प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया, कलाकारों ने ढोल नगाड़ों और पारंपरिक नृत्य के साथ स्वागत किया। सेशल्स में होटल पहुंचने पर भारतीय संस्कृति से स्वागत किया गया प्रधानमंत्री का, उतारी गई आरती, कलाकारों ने पेश किए लोक नृत्य। अकाल तख्त के सामने पेश होने से पहले पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायकों से आज मिलेंगे सीएम भगवंत मान। पंजाब के सभी सिख विधायकों और साथ ही बेअदबी रोधी कानून के सिलसिले में होना है पेश। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी पर उनके ही विभाग से करीब 1 करोड़ रुपए की सब्सिडी लेने के आरोपों को लेकर सियासत गर्म हुई। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर भागीरथ चौधरी पर हमलावर है, जांच की उठाई गई है मांग। अब इन आरोपों पर खुद केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने खुलकर अपनी बात रखी। विपक्ष के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। टीएमसी के बागी नेताओं के खिलाफ ममता गुट ने पुलिस में दर्ज करवा दी है शिकायत। गलत पहचान बताने फर्जीवाड़ा और पार्टी के नाम के इस्तेमाल का आरोप। सांसद दूल्हा सेन का बयान। दिल्ली और उत्तराखंड में आतंकी हमले का अलर्ट। धार्मिक और सरकारी जगहों की बढ़ाई गई है सुरक्षा। शिवसेना कोल्हापुर विधायक राजेश का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो 40 लाख रुपए का कमीशन लेकर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। दरभंगा में ताजिए विसर्जन के बाद हिंदू बस्ती पर हमला। लाठी डंडे मारकर कई दुकानों को तोड़फोड़ का वीडियो वायरल हुआ है। दरभंगा में घर के दरवाजे और कुर्सियों के साथ भी तोड़फोड़ की गई। कई लोग इसमें घायल हो गए। जयपुर में सीएम काफिला हादसे में झुलसी रेशु को राहत। सरकार उठाएगी इलाज का पूरा खर्च। गर्मी से बेहाल दिल्ली वालों के लिए राहत भरी खबर। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में बारिश और तेज हवाओं का जताया है अनुमान। आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद। साथ ही साथ गरज के साथ बारिश की संभावना। तेज सतही हवाएं चलने की भी उम्मीद। अगले 2 से 3 दिनों में तेज हो जाएगी मानसूनी गतिविधियां। मौसम वैज्ञानिकों का दावा 29 से 30 जून के बीच उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से सक्रिय हो सकता है मानसून। सबसे पहले पूर्वी यूपी में देखने को मिलेगा मानसून का असर। बढ़ेगा बारिश का दायरा। तापमान में 5 से 8 डिग्री तक गिरावट की संभावना। असम मेघालय अरुणाचल नागालैंड और सिक्किम समेत पूरे उत्तर भारत में मानसून की बारिश जारी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मानसून विस्तार के लिए परिस्थितियां पूरी तरह से अनुकूल हैं। हरिद्वार में नदीजी अंगदान संकल्प अभियान के लिए कार्यक्रम। हजारों लोगों ने एक साथ अंगदान का संकल्प लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम की शिरकत की। अंगदान को बताया मानव सेवा का सर्वोच्च कार्य। देश के 26 राज्यों में शांति कुंज गायत्री परिवार चलाएगा अंगदान का अभियान। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बताया पूरे गायत्री परिवार को बधाई का पात्र। राम भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी। अमृतसर में बनेगा सीता और लवकुश का भव्य मंदिर। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया। 1 अगस्त से पूरे पंजाब में भगवान राम पर आधारित हमारे राम का होगा आयोजन। भगवान राम और रावण के बीच के कई संवाद और घटनाएं भी दिखाई जाएंगी। जापान में होने वाली एशियाई खेलों में हिस्सा लेंगे नीरज चोपड़ा। एएफआई की ओर से की गई है पुष्टि। 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान के आईचिन आयोगा में किया जाएगा एशियाई गेम्स का आयोजन। गोल्ड मेडल बचाने के लिए मैदान में उतरेंगे नीरज। वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के बीच मुकाबला। लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जाएगा यह रोमांचक मैच। सेमीफाइनल में एंट्री के लिए भारत का यह मैच जीतना जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत मिलने पर मिल सकता है सेमीफाइनल का टिकट। करो या मरो के इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम का जोश है। 2025 वनडे वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया को हराकर पूरे उत्साह में है भारत। अलवर में 5 साल की बच्ची के ऊपर से गुजर गई कार। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। आरोपी मौके से फरार। बिजनौर में सरिया फैक्ट्री के पानी के टैंक में मिल गया शख्स का शव। पत्नी ने लगाया है हत्या का आरोप। दिल्ली के आदर्श नगर में एक होटल में एसआई ने महिला को जड़ा थप्पड़। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। एसआई लाइन हाजिर किया गया। सोनीपत में पुलिस लाइन से महज 100 मीटर की दूरी पर चोरी। जनरेटर की बैटरी ले उड़े चोर। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हरकत। झांसी में भीषण हादसा। 3 वाहन आपस में टकराए। 1500 लीटर दूध सड़क पर बहा। 5 घायल हुए। सीसीटीवी फुटेज सामने आई। अलीगढ़ में कार ने 2 बाइकों को टक्कर मारी थी। घटना में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। सोनीपत में ईंटों से भरे हुए ट्रक से टकरा गई थी कार। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत की खबर। अलवर में बिहार की रहने वाली युवती का मिला शव। 19 जून को घर से निकली थी मृतका। गोपालगंज में सिरकटा शव मिलने के बाद सनसनी। अवैध संबंधों के चलते की गई हत्या। सूरत में होटल में अकेला छोड़कर लेकर गुस्से में दोस्त ने दोस्त की हत्या कर डाली। हत्यारा दोस्त गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के भारत विहार में 8000 रुपए के विवाद में 23 साल के उजैर की पीट पीट कर हत्या। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बांदा में दुकानदार पर सोते समय एसिड अटैक। आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। फजिलका में नकली पुलिस गिरोह का पर्दाफाश। एक महिला समेत 4 की गिरफ्तारी। ग्वालियर में वारिस विवाद के बाद युवक ने लगाई आग, पेट्रोल डालकर आत्महत्या की कोशिश। झांसी में अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापा, चालू हालत में पोर्टेबल मशीन छोड़कर दो आरोपी फरार हुए। हैदराबाद में दर्दनाक हादसा, वैन ने 4 साल की मासूम को कुचल डाला, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है तस्वीरें। सूरत के बेस्तान में दर्दनाक हादसा, डंपर की चपेट में आने से मां और बेटी की मौत। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में धमाका, एक व्यक्ति की मौत हुई, 4 घायल। श्रीगंगानगर में पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आई 50 करोड़ की हीरोइन का भंडाफोड़ किया गया, 3 की गिरफ्तारी। गिरिडीह में वाहन में लगी थी भीषण आग, 4 ट्रांसफार्मर जलकर खाक। जामनगर के खंबालिया में आवारा कुत्तों का आतंक, दादा पोते पर हमला किया, सीसीटीवी फुटेज सामने आई। खेड़ा में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ, कई किलोमीटर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। अमृतसर पुलिस ने ड्रोन के जरिए हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया, 10 आधुनिक पिस्तौल बरामद, 4 की गिरफ्तारी। मुरैना में पति ने पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर डाली, घरेलू विवाद के बाद वारदात को अंजाम दिया। राजनाथ गांव में नशे में धुत चालक ने बच्ची को रौंदा, करीब 2 घंटे के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े की फिल्म द इंडिया स्टोरी का टीजर जारी, 24 जुलाई को रिलीज। वेब सीरीज मिर्जापुर की सफलता के बाद मिर्जापुर द मूवी का टीजर जारी किया गया, 4 सितंबर को रिलीज होगी। फिल्म मिर्जापुर में बबलू पंडित के किरदार में दिखेंगे वेब सीरीज पंचायत के सचिव जी जितेंद्र कुमार। गोवा के लग्जरी रिजॉर्ट में हुई एक्ट्रेस और राजनेता खुशबू सुंदर की बड़ी बेटी अवंतिका सुंदर की शादी, चिरंजीवी नागार्जुन वेंकटेश समेत कई सितारे पहुंचे। अवंतिका सुंदर की शादी में बॉलीवुड के कई सितारे शामिल हुए, सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल। एशिया प्रशांत महासागर में चीन और रूस ने सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया, दोनों देशों के लड़ाकू विमानों ने आसमान में दिखाई दागा। वेनेजुएला में भूकंप से तबाही के बाद ड्रोन तस्वीरें सामने आई, दुनिया के कई देशों ने भेजी रेस्क्यू टीम। जापान के कई हिस्सों में भारी बारिश और दोहरे तूफान का कहर। जर्मनी समेत यूरोप के कई हिस्सों में भीषण गर्मी ने बढ़ाई मुश्किलें, सारलैंड प्रांत में दर्ज किया गया रिकॉर्ड 41 डिग्री के पार तापमान। बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन पर ऑस्ट्रेलिया सरकार सख्त हुई, कानून तोड़ने वालों पर टेक कंपनियों पर 66 मिलियन का जुर्माना।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.
2: As world soccer hits the big stage, Fanatics Sportsbook is making every game day worth more. Earn up to 10% fan cash on your soccer bets, win or lose. That's real extra value you can unlock every match, all tournament long. FanCash isn't just for betting. You can use it anywhere in the world of Fanatics. On game tickets, merchandise, collectibles, profit boosts, and more. One ecosystem, endless ways to spend. Plus, new customers get up to $1,000 in FanCash. That's $100 bet matched every day for your first 10 days. The world is ready. Are you? Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Must be 21 plus. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET. CT, call 888-789-7777. MA, call 800-327-5050. NY, call 877-8-HOPE-NY. MD, visit mdgamblinghelp.org. Not available in all states. Terms apply. See Fanatic Sportsbook app.
3: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?

0: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
2: In association with Hind, बड़े आराम से Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
3: Vimal, बोलो जुबां केसरी।
4: Cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
5: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
6: आज तक ला रहा है आपके लिए वीडियो वाला पेपर, हर रोज सुबह आपके मोबाइल पर, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। इसे पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर epaper.aajtak.in टाइप करें या फिर स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड को स्कैन करें।

0: एक चांद जिसकी आंच में कई चेहरे जलते नजर आ रहे हैं। 25 जून 2026 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर FIR दर्ज की गई। शिकायत में आरोप है कि दान पेटियों से निकले चढ़ावे की गिनती के दौरान चोरी और गबन किया गया। FIR के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष जांच टीम की शुरुआती जांच में मौखिक, दस्तावेजी, इलेक्ट्रॉनिक और वित्तीय सबूत मिले। जांच में आरोप है कि संगठित तरीके से चढ़ावे की रकम और जेवरात की चोरी हुई। FIR में यह भी कहा गया है कि गिनती कक्ष में मौजूद कुछ ट्रस्ट और बैंक से जुड़े लोगों की भूमिका भी सामने आई है। सूत्रों की माने तो चढ़ावा चोरी मामले में पहली FIR के बाद बड़ा खुलासा सामने आया है। जांच के दौरान 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 तक उपलब्ध CCTV फुटेज की विस्तृत जांच की गई। सूत्रों के मुताबिक CCTV फुटेज में कुल 70 मौकों पर कथित चोरी गबन से जुड़ी गतिविधियां सामने आई हैं। सबसे बड़ी बात, अभी सिर्फ 3 महीने के CCTV सबूत मिले हैं, जो कि इन घटनाओं को जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। वहीं मंदिर में चढ़ावे को लेकर चांदी की ईंट के गायब होने की जांच भी SIT की ओर से की गई है। सूत्रों के अनुसार SIT की रिपोर्ट में 200 किलो चांदी की ईंटों की चोरी के दावे को गलत पाया गया है। जांच में सोशल मीडिया पर चांदी की ईंटों को लेकर किए गए कई दावों को भ्रामक बताया गया है। सूत्रों के मुताबिक दान में मिली चांदी की ईंटें गलाने के लिए भेजी गई थी। चांदी की ईंटें सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन को भेजे जाने का रिकॉर्ड भी जांच में मिला है। SIT की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि टिन्नू के पास बिना आधिकारिक आदेश के हुंडियों की चाबियां थीं। रिपोर्ट के अनुसार ट्रस्ट को काफी पहले ही चढ़ावा चोरी की आशंका हो गई थी। सितंबर 2024 और फरवरी 2025 में ट्रस्ट और स्टेट बैंक के अधिकारियों के बीच बैठक कर चढ़ावा गणना के लिए एक SOP तैयार की गई थी, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक SOP का पालन नहीं किया गया। आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव TV को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: Summer's a gift. The gift of days that last a little longer. A brighter state of mind. So gift yourself a new Kia at the Kia Summer Sticker Sales Event. With specially tagged vehicles including the Sorento, Sportage, Carnival, as well as the Niro Hybrid. All backed by a 10-year, 100,000-mile limited powertrain warranty. So the gift of summer can keep on giving for summers to come. Kia. Movement that inspires.
1: Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Event ends 7/6/26. See dealer for warranty details.
2: Shop the Sherwin-Williams 4th of July sale and get 30% off paints and stains June 26th through July 6th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
3: As world soccer hits the big stage, Fanatics Sportsbook is making every game day worth more. Earn up to 10% fan cash on your soccer bets, win or lose. That's real extra value you can unlock every match, all tournament long. And fan cash isn't just for betting. You can use it anywhere in the world of Fanatics. On game tickets, merchandise, collectibles, profit boosts, and more. One ecosystem, endless ways to spend. Plus, new customers get up to $1,000 in fan cash. That's $100 bet matched every day for your first 10 days. The world is ready. Are you? Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Must be 21 plus. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET. CT, call 888-789-7777. MA, call 800-327-5050. NY, call 877-8-HOPE-NY. MD, visit mdgamblinghelp.org. Not available in all states. Terms apply. See Fanatics Sportsbook app.
4: Hey, sports fans, TuneIn is bringing you live games, nonstop sports talk, and coverage from every angle. Follow your teams all season long with live games and never miss a single highlight. Listen to stations like ESPN Radio.
5: Swing and a foul out of play off to the left.
4: Big 12 Radio.
6: Levitt's playing stronger back there. Oh, he found Tyson.
4: Talk Sport.
7: Yes, Talk Sport listeners, when we win tomorrow evening, oh, you're going to feel all right.
4: And more. Search sports to find the stations covering your teams.
8: पर्दे में छिपे राज बेपर्दा होते जा रहे हैं, चोरों की कलई खुलती जा रही है। चढ़ावा चोरी का आरोप उन पर है जो राम भक्तों से मिलने वाले चढ़ावे के रखवाले बन बैठे थे। सब कुछ सेट था, चोरी कैसे करनी है, कैसे ठिकाने लगाना है, कैसे राम भक्तों की आंखों में धूल झोंकना है, सब कुछ। तभी तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि बार बार आस्था पर चोट की गई। पहली FIR के बाद चौंकाने वाले खुलासे हुए। खुलासे के मुताबिक सामने आया है कि चढ़ावे में 70 बार चोरी या गबन की गई। ये खुलासा 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 तक के CCTV फुटेज की जांच के बाद हुआ है। बात यहीं तक नहीं रुकती। मामले की जांच कर रही SIT के हवाले से सूत्रों ने जानकारी दी है कि पिछले 3 साल में ऑडिट में कई खामियां मिली हैं। जांच में हुंडियों की संख्या और अभिलेखों में कथित तौर पर अंतर पाया गया। ये भी सामने आया कि पर्याप्त CCTV कवरेज नहीं था, इस वजह से निगरानी प्रभावित हुई। अभिलेखों के रखरखाव की व्यवस्था में भारी कमियां थी। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली बेहद कमजोर पाई गई। खुलासा इस बात पर भी हुआ है कि SBI और ट्रस्ट के बीच सितंबर 2024 और फरवरी 2025 में चढ़ावे की गिनती के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार की गई थी, लेकिन उसका ढंग से पालन नहीं किया गया। लगातार उल्लंघन होता रहा। चढ़ावे की गिनती में SOP को अनदेखा किया जाता रहा। खुलासा ये भी हुआ है कि ट्रस्ट को काफी पहले ही चढ़ावा चोरी की आशंका हो गई थी। 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई तो उनसे जुड़ी कई सच्चाई सामने आई। इन आरोपियों में से एक रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू का रिश्तेदार मनीष कुमार यादव बार बार चोरी करता दिखा था। CCTV में उसके खिलाफ तमाम सबूत है, फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं की गई। चंपत राय के ड्राइवर रामशंकर ने ही मनीष को नौकरी दिलवाई थी। 7 आरोपियों से करीब 80 लाख की बरामदगी की गई है। सवाल उठे तो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया। सदस्य अनिल मिश्रा को भी पद छोड़ना पड़ा। भगवान राम के भक्तों की आस्था पर चोट हुई है। चढ़ावे की चोरी की गई है, जांच बिठा दी गई है, गिरफ्तारियां हो गई है, फिर भी विपक्ष हमले का मौका नहीं चूक रहा। अखिलेश यादव कह रहे हैं BJP का लंका कांड अयोध्या में ही हो गया, तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं अयोध्या में महाडकैती हुई है। केजरीवाल ने पूछा कि चोरी का पैसा गया कहां। चंदा चोरी करने वालों को केजरीवाल ने राक्षस बताते हुए कहा कि उन सभी को फांसी होनी चाहिए।
9: फर्जी FIR, फर्जी SIT, तो एक तरफ तो इतनी बड़ी महा डकैती हुई और दूसरी तरफ इसमें जितने बड़े बड़े राक्षस शामिल हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। ये एक तरह से सभी हिंदुओं के जले पे नमक छिड़कने वाली बात है। लोगों का कहना है कि उन्हें तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी जब तक इन चोरी करने वाले लोगों को, बड़े बड़े लोगों को सरेआम फांसी की सजा नहीं दी जाएगी।
10: उधर कांग्रेस ने इस मामले को संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सदन में उठाने का भी मन बना लिया है। पूरा विपक्ष एक आवाज में कह रहा है कि इस मामले को छिपाने और लीपापोती करने की बजाय इसकी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की जानी चाहिए। केजरीवाल ने सवाल उठाए तो मुख्यमंत्री योगी ने उन्हें आईना दिखाया तो समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
11: मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो, राम भक्तों के साथ उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो SIT को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो।
10: चढ़ावा चोरी के मामले की जारी तफ्तीश के बीच सियासत तेज है, लेकिन सवाल एक है कि आखिर बड़ी मछलियां जाल में कब फंसेंगी? मंदिर ट्रस्ट के बड़े चेहरों पर एक्शन कब होगा? आज तक ब्यूरो।
12: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

24 घंटे में दूसरी बार अमेरिका ने हॉर्मुज के पास 10 ईरानी ठिकानों पर बमबारी की। ईरान ने कुवैत से बहरीन तक अमेरिका के बेस पर बोला हमला। कराची के भीतर धमाका और फायरिंग से अफरा तफरी मची। रेंजर्स हेडक्वार्टर पर सुइसाइड अटैक, अब तक 10 की मौत। काफी देर तक होती रही गोलीबारी। शेल्स दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत। आज राष्ट्रीय दिवस समारोह में शिरकत। द्विपक्षीय वार्ता में रिश्तों पर मजबूती पर होगी बात। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में तेज हुई तकरार। आरएसएस ने कहा एसआईटी जांच के बाद सियासत की जरूरत नहीं। अखिलेश बोले संसद के मानसून सत्र में उठाएंगे मुद्दा। और महाराष्ट्र में टीईटी पेपर लीक पर सियासी उबाल। राहुल और प्रियंका ने सरकार को घेरा, कहा शिक्षा परीक्षा को बनाया गया वसूली का सिस्टम। एसआईटी का गठन।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। बुलेटिन की हम शुरुआत करें मिडिल ईस्ट की खबर के साथ, जहां एक बार फिर से जंग छिड़ गई है। जी हां, अमेरिका और ईरान के बीच 18 जून को हुए अंतरिम युद्ध विराम समझौते से महज 2 दिन के बाद ही तनाव एक बार फिर से खुलकर

0: प्लान अटैक हुआ, जिसके तहत पहले सुसाइड अटैक किया गया, मल्टीपल दो धमाके हुए जिससे जो सिक्योरिटी पर्सनल थे वो तितर बितर हो गए। उसके बाद फिर मिलिटेंट्स उतरते हैं और वो फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसके जवाब में फिर जो पाकिस्तानी रेंजर्स के जवान है उनकी तरफ से फायरिंग होती है। तकरीबन डेढ़ घंटे तक गोलीबारी होती है। जो मिलिटेंट्स थे उन्होंने पूरे इलाके को हाईजैक करके रखा, ड्रोन की मदद ली पाकिस्तान रेंजर्स ने, और कुल मिलाकर डेढ़ घंटे तक ये पूरी सब गोलीबारी हुई, जिसमें जो चार पाकिस्तान रेंजर्स के जवान है उनकी मौत हुई है और छह जो मिलिटेंट्स है उनकी मौत हुई है। सभी
1: बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो पाकिस्तान के कराची में शनिवार देर रात को हाई सिक्योरिटी माने जाने वाले सिंध रेंजर्स मुख्यालय के पास ये बड़ा आतंकी हमला हुआ था। धमाकों के बाद करीब आधे घंटे तक सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में गोलीबारी होती रही और इस हमले में 10 लोगों की जान चली गई है, जबकि कई लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। एक आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है।
2: पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची शनिवार को एक बड़े धमाके से दहल उठी। शहर के व्यस्त यूनिवर्सिटी रोड इलाके में अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ। इसके ठीक बाद पूरे इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। ये घटना गुलिस्तान ए जौहर इलाके में हुई। ये क्षेत्र बेहद संवेदनशील माना जाता है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इस हमले में 4 लोगों की मौत हुई है और 3 घायल हुए हैं। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मृतकों में आम नागरिक शामिल हैं या सुरक्षा बलों के जवान। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि 6 हमलावर भी मारे गए, जिनमें 3 सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में और 2 आत्मघाती विस्फोट में मारे गए। रिपोर्ट्स के अनुसार एक आत्मघाती हमलावर ने रेंजर्स परिसर के पास खुद को विस्फोट से उड़ा लिया। इसके बाद 2 और धमाकों की आवाज सुनाई दी। इसी दौरान बाकी हमलावरों ने गोलीबारी शुरू कर दी। हमला उस इलाके में हुआ जहां कराची विश्वविद्यालय समेत कई शैक्षणिक संस्थान और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठान मौजूद हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमात उल अहरार ने इस हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। संगठन का कहना है कि हमले में उसके 9 लड़ाके शामिल थे। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र रूप से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। घटना के बाद पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। भारी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सिंध के मुख्यमंत्री सैयद मुराद अली शाह ने घटना की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। वहीं सुरक्षा एजेंसियां पूरे हमले के नेटवर्क और हमलावरों के संबंधों की जांच कर रही हैं। कराची का यह इलाका पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित इलाकों में माना जाता है। ऐसे में रेंजर्स मुख्यालय के पास हुआ यह हमला सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। अब जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती पूरे आतंकी नेटवर्क का पता लगाना और यह जानना है कि इस हमले के पीछे कौन कौन शामिल था। आज तक ब्यूरो।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के सेशल्स दौरे के लिए वहां पहुंच गए और एयरपोर्ट पर उनका शानदार भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के निमंत्रण पर सुबह ही वहां के लिए रवाना हुए थे। सेशल्स पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी विक्टोरिया के नेशनल बोटेनिकल गार्डन भी पहुंचे, जहां उनके साथ राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी भी मौजूद थे। मोदी सेशल्स की आजादी के 50 साल पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि होंगे और इस मौके पर होने वाली भारतीय परेड में सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी हिस्सा लेंगे। मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा सेशल्स की नेशनल असेंबली को भी प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं। साथ ही साथ पीएम मोदी ने सेशल्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की है। कुछ और लोगों से वो मुलाकात करेंगे। मोदी का पिछले 11 साल में सेशल्स का यह है दूसरा दौरा। इससे पहले उन्होंने साल 2015 में इस देश की यात्रा की थी। सेशल्स का दौरा करने वाले वो इंदिरा गांधी के बाद दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री हैं। मुंबई में मुहर्रम जुलूस से पहले एक बड़ी साजिश का दावा सामने आया है। भायखला पुलिस ने एक संदिग्ध शख्स को गिरफ्तार करके लगभग 14,900 कैप्सूल जब्त किए हैं। पुलिस का कहना यह है कि इस जांच में इन कैप्सूलों में जिंक फॉस्फाइड मिलने की बात आई है सामने। एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद मामला सामने आया। आरोपी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। जानकारी ये मिली है कि आरोपी BBA ग्रेजुएट है और पुणे में पेंट का काम करता है। आरोपी ईरान और इराक भी जा चुका है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है कि क्या इसके तार किसी आतंकी संगठन से भी जुड़े हैं या इसके पीछे कोई अन्य मकसद था, कोई और साजिश थी। फिलहाल किसी आतंकी कनेक्शन की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई और जांच अभी भी जारी है।

0: तो जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो शख्स है जिसे पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया है और इसे पूछताछ जारी है।
1: उसने इस प्रोसेशन को टारगेट करने के लिए और साथ ही में लोगों को हानि पहुंचाने के लिए टोटल 30,000 कैप्सूल ऑर्डर की थी ऑनलाइन और साथ ही में 50 किलो जिंक फॉस्फाइड ऑर्डर किया था और प्रत्येक कैप्सूल में एक एक ग्राम जिंक फॉस्फाइड डाल के उसने इस पर्टिकुलर प्रोसेशन को टारगेट किया और वहां पे बहाना बनाया कि ये कैप्सूल पेन किलर की तरह काम करती है और प्रोसेशन में जाने वाले लोगों को ऐसा फंसा के उसने कैप्सूल बेचने की कोशिश करी। परंतु मुंबई पुलिस की सतर्कता और होशियारी और मेहनत की वजह से ये बड़ा हादसा टला है।
0: परीक्षा से एक दिन पहले महाराष्ट्र के ठाणे में शनिवार को टीटी का पेपर लीक होने के बाद हड़कंप मचा है। इसके बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने आज होने वाली परीक्षा को रद्द कर दिया है। महाराष्ट्र में आज टीटी की पेपर था, एग्जाम था, आयोजित की जानी थी, लेकिन पेपर लीक के बारे में सूचना मिलने के बाद पुलिस ने विभंडी में एक अभियान चलाया और संदिग्ध सामग्री को बरामद किया गया। इस मामले में कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है, जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन इस मामले पर अब सियासी घमासान भी छिड़ गया है।
2: महाराष्ट्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी का पेपर करीब परीक्षा के ठीक 24 घंटे पहले लीक हो गया। एग्जाम आज होना था, जिसके बाद महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल ने इसके बाद परीक्षा स्थगित कर दी है। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा, जबकि राज्य सरकार ने पेपर लीक की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी है।
3: प्रश्न पत्रिका लीक हो गई है, ऐसा थाने भिवंडी में हुआ, पुनः एफआईआर हो गई है। हमारे परीक्षा परिषद के अध्यक्ष और आयुक्त दोनों भी वहाँ पर। रजिस्ट्रेशन फिर से करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स को, अगली तारीख हम दे देंगे।
2: भिवंडी पुलिस ने परीक्षा का कथित प्रश्न पत्र बेचने आए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि आरोपी 1.5 करोड़ रुपए में पेपर बेचने की फिराक में थे। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास से टीईटी परीक्षा के 4 सेट प्रश्न पत्र बरामद किए गए हैं, साथ ही डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी जब्त किए गए हैं। फिलहाल ये जांच की जा रही है कि पेपर किसे और कहां बेचा जाना था। मामले का मुख्य आरोपी अभी फरार है, पुलिस ने उसकी तलाश में कई राज्यों में टीमें भेजी हैं। जांच के लिए डीसीपी, 2 एसीपी और 9 पुलिस निरीक्षकों की विशेष टीम बनाई गई है। पुलिस का कहना है कि संगठित गिरोह के एंगल से भी जांच की जा रही है। वहीं पेपर लीक के मामले को लेकर महाराष्ट्र की सियासत भी तेज हो गई है। मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि पेपर लीक युवाओं के भविष्य की चोरी है। प्रियंका गांधी ने इसे युवाओं के साथ धोखा बताते हुए आंदोलन की बात कही। वहीं उद्धव ठाकरे ने परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। मामले को लेकर उद्धव ठाकरे ने फडणवीस और बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला।
4: आज ठाण्यामध्ये एक पेपर फुटला है टीईटीचा, कोणालाच काही पडलेलं नाहीये। नीटचा पेपर फुटला, धर्मेंद्र प्रधाननी राजीनामा तर दिलाच पाहिजे, पण त्यातलं जे काही केंद्रबिंदू होतं ते आपल्या दुर्दैवाने आपल्या महाराष्ट्रातलं होतं। आणि असं म्हणतात की ते पकडलेले किंवा ज्यांच्यावरती आरोप आहेत ते सगळ्यांच्या परिवाराशी संबंधित होते।
2: महाराष्ट्र में टीचर बनने के लिए या जो पहले से सरकारी टीचर है उनके लिए भी टीईटी जरूरी है, लेकिन नीट के बाद अब टीईटी पेपर लीक ने एक बार फिर पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने की साजिश में और कौन कौन शामिल है, क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। इसका जवाब पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल लाखों अभ्यर्थियों की नजर जांच और नई परीक्षा तिथि पर टिकी हुई है। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात करेंगे पुणे के केतन मर्डर केस की। सिया के माता पिता से पुलिस ने 12 घंटे तक पूछताछ की है। केतन हत्याकांड में कल सुबह 11 बजे पुलिस ने सिया के माता पिता को बुलाया था और आधी रात तक पूछताछ की गई है। रात के करीब 12 बजे दोनों पुलिस स्टेशन से निकले थे और इस दौरान उनसे कई तरह के सवाल पूछे गए हैं। जानकारी यह है कि जो सिया का भाई है इस दौरान वो भी यहां मौजूद था। तो ये तमाम सवाल पूछे गए हैं कि सिया ने केतन से शादी के लिए जिद की थी क्या? क्या सिया की सहमति से ही केतन के साथ रिश्ता तय किया गया था? ये तमाम सवाल जो माता पिता से पूछे गए। दोनों कई बार साथ में घूमने गए, केतन भी मेरे बेटे जैसा था। इसके बारे में हालांकि बार बार सिया के माता पिता एक ही बात दोहरा रहे हैं। क्या आपको केतन की हत्या की साजिश के बारे में कोई जानकारी थी? तो माता पिता की तरफ से साफ साफ इनकार कर दिया गया। क्या सिया और चेतन के प्रेम संबंधों के बारे में कोई जानकारी थी? तो इसके जवाब में भी माता पिता की तरफ से ना ही कहा गया, क्योंकि वो न्यूज चैनल से भी लगातार वही बात कर रहे हैं कि उन्हें इस साजिश के बारे में कोई भनक नहीं थी। केतन अग्रवाल मामले में जांच तेज किए जाने के बाद पुलिस ने हत्या की आरोपी सिया गोयल के माता पिता और भाई से पूछताछ की है। अधिकारी डिलीट किए गए मोबाइल डेटा की भी जांच कर रहे हैं।
5: केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। इस मामले में मुख्य आरोपी सिया गोयल के माता पिता से करीब 12 घंटे तक गहन पूछताछ की गई। पुलिस ने परिवार से कई अहम सवाल पूछे जिनके जवाब अब जांच का अहम हिस्सा बन गए हैं। लोनावला ग्रामीण पुलिस ने केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच के तहत मुख्य आरोपी सिया गोयल के पिता प्रवीण गोयल और मां पूजा गोयल से करीब 12 घंटे तक पूछताछ की। दोनों सुबह करीब 11 बजे पुलिस थाने पहुंचे थे। पूछताछ के दौरान सिया का भाई साहिल गोयल भी मौजूद रहा। इससे पहले शुक्रवार को सिया के भाई साहिल गोयल से करीब 12 घंटे तक पूछताछ की गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उस पूछताछ में जान से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई थी, जिनके आधार पर आगे की कार्यवाही की जा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान प्रवीण गोयल और पूजा गोयल से पूछा गया कि क्या उन्होंने सिया पर केतन अग्रवाल से शादी करने का दबाव बनाया था। साथ ही यह भी जानने की कोशिश की गई कि क्या उन्हें सिया और चेतन चौधरी के कथित प्रेम संबंधों की जानकारी थी। सूत्रों के मुताबिक दोनों ने पुलिस को बताया कि उन्हें सिया और चेतन चौधरी के रिश्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि सिया और केतन अग्रवाल से शादी करने के लिए किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया गया था। इन बयानों का सत्यापन जांच के दौरान अन्य सबूतों और गवाहों के आधार पर किया जाएगा। पुलिस सूत्रों का कहना है कि जांच अभी भी जारी है और आने वाले दिनों में कुछ और करीबी लोगों से पूछताछ की जा सकती है। जांच एजेंसियां पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। आज तक ब्यूरो।
0: और इसी बीच बड़ी और अहम खबर आ रही है। पुणे पुलिस ने चेतन चौधरी की बाइक जब्त की है। चेतन जिस बाइक से 18 जून को लोहागढ़ गया था उसे जब्त कर लिया गया। साथ ही साथ चेतन के गैजेट्स भी पुलिस ने कब्जे में ले लिए हैं। उसका जो हेडफोन है, उसकी जो पूरी है, साथ ही साथ जो मास्क है, सब कुछ पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है और जांच के लिए भेज दिया गया है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते हैं आज।
6: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो। In association with
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
8: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
9: As world soccer hits the big stage, Fanatics Sportsbook is making every game day worth more. Earn up to 10% fan cash on your soccer bets, win or lose. That's real extra value you can unlock every match, all tournament long. And fan cash isn't just for betting. You can use it anywhere in the world of Fanatics. On game tickets, merchandise, collectibles, profit boosts, and more. One ecosystem, endless ways to spend. Plus, new customers get up to $1,000 in fan cash. That's $100 bet matched every day for your first 10 days. The world is ready. Are you? Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Must be 21 plus. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET. CT, call 888-789-7777. MA, call 800-327-5050. NY, call 877-8-HOPE-NY. MD, visit mdgamblinghelp.org. Not available in all states. Terms apply. See Fanatics Sportsbook app.
10: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
11: Jack, come home. It's supper time.
10: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
12: Hey, Jack, could you play that one song with the words?
10: Jack FM, playing what we want.
13: Sokudo.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
2: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
3: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
6: हमने तब भी सवाल किया था,
7: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
6: हम आज भी सवाल करते हैं,
7: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
6: ऑपरेशन अग्नि,
7: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
6: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
8: In association with
9: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
10: वैभव इंडिया खेलेंगे ये सबको पता था, इतनी जल्दी खेलेंगे ये नहीं पता था।
11: हाँ सर, बहुत खुश है सर, और आपको भी प्रणाम करते हैं सर। वैभव के लिए आप जो बोलते हैं का स्पोर्ट्स तक की क्या पर्स पर।
10: जी,
11: हम पूरा सर आपका देखते रहते हैं, तो आपका भी सर आशीर्वाद वैभव को लगा और हम लोग बहुत खुश हैं सर। इसी के लिए इतना मेहनत बच्चा किया था सर।

25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: Shop the Sherwin-Williams 4th of July sale and get 30% off paints and stains June 26th through July 6th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only, some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
1: As world soccer hits the big stage, Fanatics Sportsbook is making every game day worth more. Earn up to 10% fan cash on your soccer bets, win or lose. That's real extra value you can unlock every match, all tournament long. And fan cash isn't just for betting. You can use it anywhere in the world of Fanatics. On game tickets, merchandise, collectibles, profit boosts, and more. One ecosystem, endless ways to spend. Plus, new customers get up to $1,000 in fan cash. That's $100 bet matched every day for your first 10 days. The world is ready. Are you? Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Must be 21 plus. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET. CT, call 888-789-7777. MA, call 800-327-5050. NY, call 877-8-HOPE-NY. MD, visit mdgamblinghelp.org. Not available in all states. Terms apply. See Fanatics Sportsbook app.
2: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
4: हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल बोलो जुबान केसरी
5: इसमें है फाइबर बीटा ग्लूकोन प्रोटीन मैग्नीशियम तत्व इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है लायन ओट्स फैमिली सुपर एक्शन फैमिली
6: भारत और अमेरिका की दोस्ती गढ़ेगी नए आयाम अगले साल ट्रंप के भारत आने का ऐलान ट्रेड डील जल्द कई अहम समझौते चढ़ेंगे परवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति की ये तस्वीरें G7 शिखर सम्मेलन के दौरान की है दुनिया भर की निगाहों से होकर गुजरी इन तस्वीरों के अलग अलग मायने निकाले गए लेकिन भारत का एजेंडा बिल्कुल साफ था आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाना और भारत के कारोबार को बढ़ावा देने की हर मुमकिन कोशिश करना इन कोशिशों के साथ साथ अमेरिका के साथ उतार चढ़ाव वाले रिश्ते एक बार फिर पटरी पर लौटते दिखे अब इन्हीं रिश्तों को परवान चढ़ाने डोनाल्ड ट्रंप भारत आ रहे हैं जी हाँ एक बार फिर पाकिस्तान से लेकर दुनिया के कई देशों को परेशान करने वाली ये खबर सीधे अमेरिका से आई है विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बेहद मजबूत हैं और अगले साल की शुरुआत में राष्ट्रपति ट्रंप भारत का दौरा कर सकते हैं इतना ही नहीं इस अहम दौरे की तैयारियों के लिए खुद रूबियो इस साल के आखिर में भारत आएंगे
7: We're hoping that's what we're working towards sometime early next year to have the president come. And I think it's very positive. India is such a close partner and ally of the United States. And the relationship between the prime minister and the president couldn't be closer, which I think is really important in diplomacy. And I look forward to returning myself before the end of the year and setting up a presidential visit in the early parts of next year.
6: मोदी की जमकर तारीफ करते हुए रूबियो ने कहा कि भारत को ग्लोबल पावर बनाने में उन्होंने अहम किरदार निभाया है
7: Prime Minister Modi and what he's done. I mean, he leads a country that's making incredible gains economically and is really coming into its own as sort of a global power, a country that's increasingly accounted for on decisions being made on the global stage.
6: भारत में अमेरिकी राजदूत सर्गियो गोर ने भी साफ कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां ट्रंप जल्दी से जल्दी जाना चाहते हैं उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती दोनों देशों के रिश्तों की सबसे मजबूत नींव है फ्रांस में हुई मोदी ट्रंप की मुलाकात इसका एक उदाहरण है जब एक घंटे तक दोनों नेताओं ने व्यापार रक्षा और कई रणनीतिक मुद्दों पर बात की
8: President is very warm on India. I mean, you heard it even last week when we were together in France with the Prime Minister. He spoke very highly of India. Our relationship with India is very deep. It goes back a long time. And so it's something that the President holds, the Prime Minister and India in highest regards. He's always talked about the Prime Minister being a great friend of his personally. And he always reminds me of his first trip to India and the vibrancy that he saw there. It's something that he's never forgotten.
6: ट्रंप की दूसरी भारत यात्रा होगी। साल 2020 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान वो भारत आए थे जब नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया गया था। दूसरे कार्यकाल में उनका ये पहला दौरा होगा। इसकी अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि पाकिस्तान के साथ उनकी नजदीकियां और ईरान युद्ध के मद्देनजर भारत के साथ बदले कारोबारी रिश्तों पर पूरी दुनिया की नजर है। आज तक ब्यूरो।

अमेरिका ईरान के बीच टूटा सीज फायर हॉर्मुज के पास बड़े सैन्य हमले के खाड़ी में बढ़ गया है फिर से मिडिल ईस्ट तनाव। क्रूड ऑयल टैंकर पर ड्रोन हमले के बाद अमेरिका का जवाबी एक्शन, ईरान ने 10 सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई। हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव चरम पर है, व्यापारिक जहाज पर हमले के बाद अमेरिका का बड़ा सैन्य प्रहार। ईरान का पलटवार, खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला। सीजफायर के 10 दिन बाद ही बिगड़ गए हालात, अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमले के आरोप लगाते हुए आमने सामने। पाकिस्तान के कराची में धमाका और फायरिंग के बाद अफरा तफरी, रेंजर्स हेडक्वार्टर में सुसाइड हमले की आशंका, अब तक 10 की मौत, कई घायल। धमाके में 6 हमलावर और 4 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। जमात उल अरार ने जिम्मेदारी ली है, कहा हमले में शामिल थे हमारे 9 लड़ाके। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक आत्मघाती हमलावर ने रेंजर्स परिसर के पास खुद को विस्फोट से उड़ा लिया था, इसके बाद 2 और धमाकों की आवाजें सुनाई दी। इसी दौरान बाकी के हमलावरों ने गोलीबारी शुरू कर दी। हमला उस वक्त हुआ जब कराची विश्वविद्यालय समेत कई शैक्षणिक संस्थान और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठान इसी इलाके में मौजूद हैं। चढ़ावा चोरी मामले में राम मंदिर ट्रस्ट का कबूलनामा, चंपत राय और अनिल मिश्रा का मिला इस्तीफा, अगली बैठक में त्यागपत्र पर फैसला लिया जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से बयान जारी किया गया, कहा घटनाओं से हम स्तब्ध हैं, आहत हैं और बेहद दुखी। चढ़ावा चोरी मामले में तेज हुई तकरार, अखिलेश यादव का निशाना, कहा बीजेपी के लिए धर्म से पहले है धर्म। अखिलेश के हमले के बाद बीजेपी ने बचाव में आया आरएसएस, इंद्रेश कुमार ने कहा एसआईटी जांच के बाद सियासत की जरूरत नहीं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सरकार को घेरेगी समाजवादी पार्टी, संसद के आगामी सत्र में उठाएगी मुद्दा। महाराष्ट्र में टीईटी परीक्षा लीक मामले में आज परीक्षा को स्थगित करना पड़ा है। टीईटी परीक्षा पेपर लीक मामले में 3 लोगों पर मामला दर्ज किया गया, ठाणे में मिला है प्रश्न पत्र। महाराष्ट्र में पेपर लीक मामले में जांच के लिए फडणवीस सरकार ने बनाई एसआईटी, डिप्टी सीएम शिंदे ने कहा नहीं बचेंगे गुनहगार। महाराष्ट्र पेपर लीक पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, कहा देश की शिक्षा परीक्षा व्यवस्था को वसूली का सिस्टम बना दिया गया है, प्रियंका ने युवाओं से किया आंदोलन की अपील। उद्धव ठाकरे ने भी महाराष्ट्र की एनडीए सरकार को घेरा, कहा दिन के उजाले में लोकतंत्र की हो रही हत्या, उन्हें सिर्फ सत्ता से मतलब है। महाराष्ट्र में सियासी हलचल पर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, कहा यह ऑपरेशन टाइगर नहीं बल्कि ऑपरेशन देवेंद्र है। उद्धव ठाकरे का वार, कहा दिल्ली ने देवेंद्र फडणवीस के प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल होने से पहले उनके पर कतरने की तैयारियां कर ली। पुणे में खेतन हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी सिया गोयल के पिता प्रवीण गोयल और मां पूजा गोयल से करीब 12 घंटे तक पूछताछ, सिया का भाई साहिल भी मौजूद था। पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा, पुलिस के मुताबिक केतन की हत्या से पहले दोनों ही आरोपी सिया और चेतन ने लोहागढ़ किले से धक्का देने का अभ्यास भी किया था। पुणे में केतन को न्याय दिलाने की मांग, सड़कों पर उतर आए बड़ी संख्या में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, केतन के पिता भी इसमें शामिल हुए। 3 दिन के सेशल्स के दौरे पर पहुंचे हैं राजधानी विक्टोरिया प्रधानमंत्री मोदी, सेशल्स के राष्ट्रपति पेट्रिक हार्मनी ने प्रधानमंत्री मोदी की अगुवानी की। सेशल्स पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत, एयरपोर्ट पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। प्रधानमंत्री के दौरे पर लोगों में उत्साह नजर आया, हाथों में तिरंगा लेकर पहुंच गए थे अभिवादन करने के लिए, प्रधानमंत्री ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। सेशल्स में प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक तरीके से वेलकम किया गया, कलाकारों ने ढोल नगाड़ों और पारंपरिक नृत्य के साथ स्वागत किया। सेशल्स में होटल पहुंचने पर भारतीय संस्कृति से हुआ भारत प्रधानमंत्री का स्वागत, आरती उतारी गई, कलाकारों ने पेश किए लोक नृत्य। अकाल तख्त के सामने पेश होने से पहले पंजाब के आम आदमी पार्टी के विधायकों से आज मिलेंगे सीएम भगवंत मान, पंजाब के सभी सिख विधायकों को बेहद विरोधी कानून के सिलसिले में पेश होना होगा। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी पर उनके ही विभाग से करीब 1 करोड़ रुपए की सब्सिडी लेने के आरोपों के बाद सियासी सरगर्मी बढ़ी, विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर भागीरथ चौधरी पर हमलावर है, जांच की उठाई गई है मांग। तनाव सांसद निधि को लेकर ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर हमला, विकास कार्यों पर उठाए हैं सवाल। राजभर बोले सिर्फ यादव मुस्लिमों में आरक्षण का हक आया, अति पिछड़ों को डराना बंद करें समाजवादी पार्टी। दिल्ली और उत्तराखंड में आतंकी हमले का अलर्ट, धार्मिक और सरकारी जगहों की बढ़ाई गई सुरक्षा। शिवसेना कोल्हापुर विधायक राजेश का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो 40 लाख रुपए की कमीशन की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। दरभंगा में ताजे विसर्जन के दौरान भीड़ का हिंदू बस्ती पर हमला, लाठी डंडों से कई बार दुकानों और घरों में तोड़फोड़ की गई।
दरभंगा में घर के दरवाजों और कुर्सियों के साथ तोड़फोड़ की खबर सामने आई, कई लोग घायल भी हुए। मुंबई में लीक पेपर लीक के मामले में कांग्रेस नेता निखिल रूपाल रेल ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की, 21 छात्रों की मौत पर सरकार से जवाब तलब किया। गर्मी से बेहाल दिल्ली वालों के लिए राहत भरी खबर, मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में बारिश और तेज हवाओं का अनुमान जताया है। आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद, शाम तक गरज के साथ बारिश की संभावना, तेज हवाएं भी चलेंगी। अगले 2 से 3 दिनों तक तेज हो जाएगी मानसूनी गतिविधियां, मौसम वैज्ञानिकों का दावा, 29 से 30 जून के बीच उत्तर प्रदेश में पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा मानसून। सबसे पहले पूर्वी यूपी में देखने को मिलेगा मानसून का असर, बढ़ेगा बारिश का दायरा, तापमान में 5 से 8 डिग्री तक गिरावट। असम, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड और सिक्किम समेत पूरे पूर्वोत्तर में मानसून की बारिश जारी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मानसून विस्तार के लिए परिस्थितियां पूरी तरह से अनुकूल। हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय में दधीची अंगदान संकल्प अभियान, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और सीएम धामी की मौजूदगी में सैकड़ों लोगों ने अंगदान का संकल्प लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की, अंगदान को बताया मानव सेवा का सर्वोच्च कार्य। देश के 26 राज्यों में शांति कुंज गायत्री परिवार चलाएगा अंगदान का अभियान, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बताया पूरे गायत्री परिवार को बधाई का पात्र। राम भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी, अमृतसर में बनेगा सीता और लवकुश का भव्य मंदिर, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा। 1 जून से पूरे पंजाब में भारत भगवान राम पर आधारित हमारे राम का आयोजन होगा, भगवान राम और रावण के बीच के कई संवाद और घटनाएं दिखाई जाएंगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के सीएम के भगवंत मान अरविंद अमृतसर में आयोजित भजन संध्या के एक कार्यक्रम में शामिल हुए। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा, पंजाब के आध्यात्मिक विरासत को संरक्षित करने, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरित लोकसभा अभियान के तहत सामूहिक वृक्षारोपण कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की, हरित लोकसभा पर्यावरण संरक्षण और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने का अभियान शुरू किया गया है। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के मामले में प्रतियोगियों के लिए गुड न्यूज, 28 जून से चलेंगी 6 परीक्षा स्पेशल ट्रेनिंग। समस्तीपुर मंडल करेगा मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, पूर्णियाकोट और सुपौल के लिए पाटलिपुत्र की विशेष ट्रेनों का परिचालन, 65,000 से ज्यादा पदों के लिए होनी है परीक्षा। इस साल जापान में होने वाले एशियाई खेलों में हिस्सा लेंगे नीरज चोपड़ा, एएफआई की ओर से की गई है पुष्टि। 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान में आईची नायोगा में किया जाएगा एशियाई गेम्स का आयोजन, गोल्ड मेडल बचाने के लिए मैदान में उतरेंगे नीरज। वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के बीच मुकाबला, लॉर्ड्स के मैदान में खेला जाएगा रोमांचक मैच। सेमीफाइनल में एंट्री के लिए भारत का यह मैच जीतना जरूरी है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत मिलने पर मिल सकता है सेमीफाइनल का टिकट। करो या मरो की इस मुकाबले में भारतीय टीम का जोश हाई, 2025 वनडे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को हराकर पूरे उत्साह में है भारत। अलवर में 5 साल की बच्ची के ऊपर से गुजर गई कार घटना, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई आरोपी मौके से फरार हुआ। बिजनौर में सरिया फैक्ट्री के पानी के टैंकर में मिला शख्स का शव, पत्नी ने हत्या के आरोप लगाए। दिल्ली के आदर्श नगर में एक होटल में एसआई ने महिला को थप्पड़ मारा, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, एसआई को लाइन हाजिर किया गया। सोनीपत में पुलिस लाइन से महज 100 मीटर की दूरी पर जनरेटर की बैटरी ले उड़े थे चोर, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। झांसी में भीषण सड़क हादसा, 3 वाहन आपस में टकराए, 1500 लीटर दूध सड़क पर बह गया, 5 घायल हुए, इस घटना का फुटेज सामने आया। अलीगढ़ में एक कार ने 2 बाइकों को टक्कर मारी, घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सोनीपत में ईंटों से भरे हुए ट्रक से टकरा गई थी कार, 1 परिवार के 3 लोगों की मौत की खबर। अलवर में बिहार की रहने वाली युवती का मिला शव, 19 जून को घर से निकली थी मृतका। गोपालगंज में सिरकट आश्रम मिलने के बाद सनसनीखेज खुलासा, अवैध संबंधों के चलते की गई थी हत्या। सूरत में होटल में अकेला छोड़ने को लेकर गुस्से में दोस्त ने दोस्त की हत्या कर डाली, हत्यारा दोस्त गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के भारत विहार में 8,000 रुपयों से विवाद में 23 साल की उजैर को पीट पीट कर मार डाला गया, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कर्नाटक के तुमकुर में हाईवे पर कार धमाका, युवक की मौत हुई, 7 बैठी युवती पर चाकू से किया गया वार, तो वो चलती टैक्सी से कूदी, ड्राइवर भी जख्मी हुआ। तुमकुर कार में विस्फोट मामले की प्रारंभिक जांच में विस्फोटक ले जाने का संदेह है, पुलिस ने जांच शुरू की। भोपाल में फिल्मी स्टाइल में बच्चों को से भरी हुई स्कूल की वैन को बदमाशों ने रोका, ड्राइवर पर तलवार और चाकू से हमला बोला।
झांसी में अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापा डाला गया, चालू हालत में पोर्टेबल मशीन छोड़कर आरोपी फरार। हैदराबाद में दर्दनाक हादसा, वैन ने 4 साल के मासूम को कुचल डाला, घटना का फुटेज सामने आया। सूरत के बेस्ताल में दर्दनाक हादसा, डंपर की चपेट में आने से मां और बेटी की मौत हुई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में धमाका, एक व्यक्ति की मौत हुई, 4 गंभीर रूप से घायल हुए। श्रीगंगानगर में पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए 50 करोड़ की हीरोइन का भंडाफोड़ किया गया, महिला समेत 3 की गिरफ्तारी। गिरिडीह में वाहन में लगी थी भीषण आग, 4 ट्रांसफॉर्मर जलकर पूरी तरह से खाक हुए, अफरा तफरी मची। जामनगर के खंबालिया में आवारा कुत्तों का आतंक, दादा पोते पर किया गया हमला, सीसीटीवी फुटेज सामने आई। खेड़ा में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका, कई किलोमीटर तक सुनाई दी धमाके की गूंज। अमृतसर पुलिस ने ड्रोन के जरिए हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया, 10 आधुनिक पिस्तौल बरामद किए गए, 4 की गिरफ्तारी। मुरैना में पति ने पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर डाली, घरेलू विवाद के बाद वारदात को अंजाम दिया। राजनांदगांव में नशे में धुत ट्रक चालक ने बच्ची को रौंदा, करीब 2 घंटे के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े की फिल्म द इंडिया स्टोरी का टीजर जारी, 24 जुलाई को हिंदी, तमिल और तेलुगू में रिलीज की जाएगी। वेब सीरीज मिर्जापुर की सफलता के बाद मिर्जापुर द मूवी का टीजर जारी किया गया, 4 सितंबर को फिल्म रिलीज करने की तैयारियां। गुरमीत सिंह ने किया है फिल्म का निर्देशन। फिल्म मिर्जापुर में बबलू पंडित के किरदार में देखेंगे वेब सीरीज पंचायत के सचिव जी जितेंद्र कुमार, पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्यन्दु समेत कई और कलाकार। गोवा के लग्जरी रिजॉर्ट में हुई एक्ट्रेस और राजनेता खुशबू सुंदर की बड़ी बेटी अवंतिका सुंदर की शादी, चिरंजीवी नागार्जुन, वेंकटेश समेत कई सितारे शामिल हुए। अवंतिका सुंदर की शादी में बॉलीवुड के कई सितारे भी पहुंचे, सोशल मीडिया पर शेयर किया गया वीडियो जिसमें लंच करते हुए नजर आया अनिल कपूर, वेंकटेश और जैकी श्रॉफ। एशिया प्रशांत महासागर में चीन और रूस में सैन्य ताकत का प्रदर्शन, दोनों ही देशों के लड़ाकू विमानों ने आपस में दिखाई ताकत। वेनेजुएला में भूकंप से तबाही के बाद ड्रोन तस्वीरें सामने आई, दुनिया के कई देशों ने भेजी रेस्क्यू मदद। जापान के कई हिस्सों में भारी बारिश और दोहरे तूफान ने मचाई तबाही, यामागुची प्रांत में भूस्खलन की चपेट में आने से 2 मंजिला मकान गिरा, 3 घायल की लापता होने की खबर। जर्मनी समेत यूरोप के कई हिस्सों में भीषण गर्मी ने बढ़ाई है मुश्किलें, आयरलैंड प्रांत में दर्ज किया गया, स्कॉटलैंड प्रांत में दर्ज किया गया 41 के पार तापमान। बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन पर ऑस्ट्रेलिया सरकार हुई है सख्त, कानून तोड़ने वाले ट्रक कंपनियों पर लगाया गया 68 मिलियन का जुर्माना।

देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की समस्या अक्सर आती है, लेकिन कभी कभी इसमें विवाह टूट भी जाता है और कभी कभी विवाह बचा रहता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि विवाह के बंधन को किन उपायों से मजबूत करें ताकि वैवाहिक जीवन बेहतर रह सके। इसके अलावा बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 28 जून 2026 दिन रविवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय शाम को 4:30 से लगभग 6 तक, पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज विवाह के मजबूत बंधन की बात कर रहे हैं। किन ग्रहों से विवाह का बंधन जुड़ता है और मजबूत बना रहता है? देखिए, विवाह के लिए मुख्य रूप से दो ही ग्रह जिम्मेदार माने जाते हैं। ज्योतिष के दोनों आचार्य महिलाओं के विवाह के लिए बृहस्पति महत्वपूर्ण होता है और पुरुषों के विवाह के लिए शुक्र विवाह कारक माना जाता है। कुल मिलाकर देखें पुरुष को भी और स्त्री को भी तो वैवाहिक जीवन सबसे ज्यादा निर्भर करता है शुक्र के ऊपर। अगर कुंडली में शुक्र खराब हुआ तो वैवाहिक जीवन का बंधन, विवाह का बंधन मजबूत नहीं रह पाता। लेकिन अगर बृहस्पति ठीक है, थोड़ा भी बेहतर है, तो किसी न किसी तरह से विवाह का बंधन जुड़ा रहता है। यानी वैवाहिक जीवन के मामले में अगर बृहस्पति का आशीर्वाद आपकी कुंडली में है तो वो अंतिम समय तक आपके विवाह की रक्षा करेगा और आपके वैवाहिक जीवन को बचाए रखेगा। वैवाहिक जीवन पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को बहुत सावधान रहना चाहिए। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम में लापरवाही ना करें, महत्वपूर्ण निर्णय फिलहाल ना लें।
गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए

मिथुन राशि, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, मानसिक चिंता दूर होगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। तो विवाह के बंधन को जोड़ने के लिए शुक्र और बृहस्पति जिम्मेदार होते हैं। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो विवाह के बंधन को तोड़ते हैं, सेपरेशन, अलगाव या डिवोर्स पैदा करते हैं। तो कौन से ग्रह विवाह के बंधन को तोड़ने के लिए जिम्मेदार होते हैं? मंगल रिश्तों का कारक होता है, भाई बहन और खून के रिश्तों से संबंध रखता है। मंगल के खराब होने पर रिश्तों में समस्या आ जाती है, और अगर मंगल खराब हुआ तो ये समस्या विवाह टूटने से लेकर के मुकदमेबाजी तक चली जाती है। राहु अगर निगेटिव रोल प्ले करे तो अनावश्यक कारणों से विवाह टूटता है, बिना वजह के विवाह टूट जाता है, शक और वहम की वजह से। शनि के कारण काफी लंबे समय के बाद रिश्ते टूटते हैं, शादी के 15-15, 20-20 साल होने के बाद रिश्ते टूट जाते हैं। अगर बृहस्पति कमजोर हुआ, गड़बड़ हुआ, तो अहंकार की वजह से, ईगो प्रॉब्लम की वजह से रिश्ते टूटते हैं, रिश्तों में दरार पैदा होती है। अगर शुक्र खराब हुआ तो अति महत्वाकांक्षा के कारण, ओवर एम्बिशन के कारण विवाह बहुत जल्दी टूटता है। जहां पर शादी तुरंत हुई और तुरंत टूट गई, वहां पर इसके पीछे ज्यादातर शुक्र की भूमिका दिखाई देती है। विवाह के संबंधों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, सेहत अच्छी बनी रहेगी, काम की अधिकता रहेगी। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। सिंह राशि, वाद विवाद से बचाव करें, संतान की चिंता हो सकती है, धन खर्च बढ़ा हुआ रहेगा, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।

राशि कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, करियर की समस्या हल होगी, लाभकारी यात्रा हो सकती है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न श्वेता जी ने हमें लिखा है, गुड़गांव हरियाणा से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 19 मई 1994। जन्म का समय शाम के 6:10। जन्म स्थान है चंडीगढ़। ये कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है तो मेरे विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। श्वेता जी, आपकी कुंडली में आपके विवाह का समय चल रहा है साल 2026 के अंत में या 2027 के आरंभ में आपका विवाह होगा, आपकी अपनी इच्छा से जाने पहचाने व्यक्ति के साथ। विवाह आपका कुल मिला जुला के ठीक रहेगा और गुड़गांव या इसके आसपास ही होगा, बहुत दूर होने की संभावना नहीं बन रही है। एक ओपल बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब आपको बताते हैं कि अगर अलग अलग ग्रहों की वजह से आपके वैवाहिक जीवन में बाधा आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो इसको कैसे दूर करेंगे। अगर मंगल की वजह से आपके वैवाहिक जीवन में बाधा आ रही है तो नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करें, खास तौर से मंगलवार की शाम के समय सुंदर कांड का पाठ करें और मंगलवार को निर्धनों में हलवा पूरी बांटिएगा। राहु की वजह से अगर वैवाहिक जीवन में दिक्कत है, शक है, वहम है, बिना वजह के प्रॉब्लम आ रही है तो भगवान भैरव की उपासना करिएगा। काल भैरव अष्टक का रोज शाम को पाठ करिए और रविवार को मीठी चीज का और उड़द की दाल की बनी हुई वस्तुओं का दान करिएगा। अगर शनि की वजह से आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है, काफी उम्र बीतने के बाद भी समस्या है, तो शनि मंत्र का नियमित जप करिए, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र को रोज शाम को जपिएगा। अगर बृहस्पति खराब है और बृहस्पति के कारण वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है तो शिव जी की उपासना करिएगा, रोज सवेरे शिवलिंग पर जल अर्पित करिए, अधिक से अधिक नमः शिवाय का जप करिए और शिव जी से कृपा करने की प्रार्थना करिए। अगर शुक्र की वजह से
वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है, पति पत्नी के बीच में बिल्कुल भी प्रेम नहीं रह गया है, तो श्री हरि और माता लक्ष्मी की उपासना करिएगा। खास तौर से नियमित रूप से माता लक्ष्मी की आरती करिएगा और शुक्रवार की शाम को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करिएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो शुक्र के खराब होने के बावजूद आपका वैवाहिक जीवन सुरक्षित बना रहेगा। वैवाहिक जीवन पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, लेकिन काम ज्यादा

भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं और माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल चढ़ाएं या दोनों को पीले फूल चढ़ाएं तो बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा।

रहे हैं, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, वाहन सावधानी से चलाएं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का, तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि शाम के समय पूजा में शंख और घंटी नहीं बजानी चाहिए। क्या ऐसा है? देखिए, शाम की पूजा हो या सुबह की पूजा हो, शंख और घंटी आप बजा सकते हैं। पूजा के दौरान शंख बजा सकते हैं 3 बार, और जब आरती कर रहे हैं तब घंटी बजाना अच्छा होता है। लेकिन शाम की पूजा के समय भी शंख बजाइए, घंटी आरती के समय बजाइए, लेकिन बहुत रात हो जाने पर शंख नहीं बजाना चाहिए। सामान्यतः रात में 9 बजे के बाद शंख और घंटी का प्रयोग करना बहुत उचित नहीं है। उसके पहले जब आप संध्या की पूजा कर रहे हैं आप शंख और घंटी बजा सकते हैं। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 2, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। नंबर 3, करियर में लापरवाही ना करें। नंबर 4, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। नंबर 5, यात्रा के योग

बन रहे हैं। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे। नंबर 8, चोट चपेट से सावधान रहें। नंबर 9, स्थान परिवर्तन हो सकता है। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। आपके कर्ज और स्वास्थ्य की समस्या में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न संतोष जी ने हमें लिखा है और संतोष जी हमें मेल लिखते हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 26 अगस्त 1981। जन्म का समय 2:20। जन्म स्थान है बाराबंकी। मेल लिखते हैं लखनऊ से। संतोष जी कह रहे हैं कि काफी समय से मैं अपना मकान बनाने का प्रयास कर रहा हूं, तो मुझे संपत्ति का फायदा कब तक होगा, कब तक मैं अपना मकान बनवा पाऊंगा। संतोष जी, आपकी कुंडली के हिसाब से मकान बनवाने का समय चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि जून जुलाई में आप अपने मकान को बनवाना शुरू कर देंगे। 6-8 महीने लगेंगे, अगले साल आप उसमें शिफ्ट कर पाएंगे और मकान आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको उसमें सफलता मिलेगी। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि कर्जा उतना ही लीजिएगा जितना कम से कम लेना पड़े। बहुत ज्यादा कर्ज लेने के चक्कर में मत पड़िएगा। सुबह और शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें और हर मंगलवार को गुड़ का या मिठाई का दान करें तो आपको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई बड़ी मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलने की सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पान का पत्ता खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ एक लाल फूल रख लीजिएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास जाना है इलाज के लिए तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, वस्त्र, तो लाल रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज के दिन किस राशि के व्यक्ति को सावधान रहना है और आज का दिन किसके लिए शुभ रहने वाला है।

शुभ होगा वृश्चिक राशि के लोगों के लिए। कार्यों में सफलता मिलेगी, चिंताएं दूर होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा कुंभ राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा। आज सावधान रहना होगा सिंह राशि के लोगों को। सेहत बिगड़ सकती है, तनाव बढ़ सकता है। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज चतुर्दशी तिथि है, रिक्तता है, इसलिए आज कोई भी नया और शुभ काम ना करें। आज किसी निर्धन व्यक्ति को जल और गुड़ का दान करें तो बहुत शुभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
3: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: और एक बड़ी और अहम खबर लखनऊ से, जहां कोल्ड स्टोरेज में आग लग गई है। लखनऊ के चिन्हट में कोल्ड स्टोरेज में भीषण आग लगी है। दमकल की 6 गाड़ियां आग को बुझाने में लगी हुई हैं। अफरा तफरी मच गई थी, तुरंत ही दमकल कर्मियों को बुलाया गया। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कोल्ड स्टोरेज है, जहां जबरदस्त तरीके से आग ने तांडव मचाया है। कहा जा रहा है कि 6 गाड़ियां मौके के लिए पहुंच चुकी हैं, मौके पर रवाना हो चुकी हैं इस आग पर काबू पाने के लिए। हालांकि पूरी तरह से भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग लगने की वजह क्या रही है साफ नहीं हो पाया है। चिन्हट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ में कोल्ड स्टोरेज में जो आग लगी है उसकी तस्वीरें। अच्छी बात यह रही है कि समय रहते दमकल की गाड़ियां यहां पहुंची हुई हैं और आग को बुझाने का काम जारी है।
1: अरे रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए, रुक जाइए।
0: तो तस्वीरें देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आपकी तस्वीर आप देख सकते हैं, दूसरी तरफ काले धुएं का गुबार। और आपको बता दें कि इस आग को बुझाने के लिए 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। आग लगने की क्या वजह रही ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। हालांकि कहा जा रहा है कि कुछ और समय लगेगा इस आग पर पूरी तरह से काबू पाने में। अच्छी बात यह है कि समय पर दमकल की गाड़ियां यहां पहुंच गई थी और आग को बुझाने का काम शुरू कर दिया गया था।
1: अरे रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए, रुक जाइए।
0: और ये बड़ी खबर है, अब कर्नाटक में आपको बता दें कि टुमकुरु में एक कार में धमाका हुआ और उसके बाद उसमें भीषण आग लगी, जिसमें 30 साल के एक व्यक्ति के जिंदा जलने से उसकी मौत हो गई है। मृतक की पहचान हुई है बेंगलुरु में रहने वाले अंकोला के मूल निवासी नागेंद्र के तौर पर। रामिया नाम की महिला कैब ड्राइवर प्रवीण घायल हुए हैं इस पूरे घटनाक्रम में। पुलिस के मुताबिक नागेंद्र और राम्या रिलेशनशिप में थे, लेकिन दोनों के रिश्ते बिगड़ने के बाद नागेंद्र का राम्या के साथ झगड़ा हुआ। नागेंद्र ने उसे जबरदस्ती एक येलो बोट कैब में बिठा लिया। यात्रा के दौरान राम्या को धमकी दी और कहा कि वो उसे मार डालेगा और फिर खुद भी अपनी जान दे देगा। अब शक यह है कि उसने यात्रा के दौरान उसे पेट्रोल बॉम्ब भी दिखाया था। नागेंद्र ने कथित तौर पर चलती हुई कार के अंदर राम्या पर चाकू से हमला भी बोला। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, जिससे कि राम्या दरवाजा खोलकर सुरक्षित बाहर कूद पाई। और कुछ ही पलों के बाद, जी हां कुछ ही सेकंड्स के बाद कार में धमाका हुआ और आग पूरी तरह से कार में फैल गई, जिससे नागेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया यह कि गाड़ी से बॉम्ब जैसा विस्फोटक पदार्थ बरामद कर लिया गया है। कलनाबेला पुलिस ने मामला दर्ज किया है और धमाके की असल वजह और घटनाक्रम की जांच की जा रही है। तो अभी तक जो सामने आया है वो ये कि दोनों रिलेशनशिप में थे और नागेंद्र किसी बात से नाराज था। दोनों के बीच जब झगड़ा हुआ, जबरदस्ती कैब में बिठाकर नागेंद्र उसे ले जा रहा था। मारने की धमकियां दी गई थी, चाकुओं से जब हमला बोला तो ड्राइवर ने कार रोकी और राम्या बाहर कूद गई। और हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट के बारे में, जहां जंग एक बार फिर से शुरू हो गई है। जी हां, अमेरिका और ईरान के बीच 18 जून को हुए अंतरिम युद्ध विराम समझौते के महज 10 दिन के भीतर ही तनाव एक बार फिर से खुलकर सामने आ गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट में एक व्यापारिक जहाज पर कथित ड्रोन्स के हमले के बाद अमेरिका ने शुक्रवार को ईरान में मिसाइल, ड्रोन ठिकानों पर, तटीय रडार केंद्रों पर हमले किए हैं। आपको यह भी बता दें कि जवाब में ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला बोला। दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर युद्ध विराम तोड़ने के आरोप लगाए हैं। आपको यह भी बता दें कि ईरान के ड्रोन हमले के जवाब में यूएस नेवी और एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास ईरान के 10 सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त हमले बोले। हॉर्मुज के आसपास 10 जगहों पर यूएस का हमला किया गया है और आपको बता दें कि अलग अलग जगहों पर ईरान की तरफ से भी पलटवार किया गया है। जो सैन्य ठिकाने हैं अमेरिका के, उन पर हमला बोला गया है। ड्रोन्स और मिसाइलों से हमले किए जा रहे हैं। 10 दिन भी अभी युद्ध विराम को नहीं हुए, 2 महीने का जो समय दिया गया था। इसी बीच एक बार फिर से फुल फ्लेज्ड ये वॉर नजर आने लगी है। और यह खबर है पाकिस्तान के कराची से, जहां आत्मघाती हमले की खबर सामने आई है। जानकारी यह मिली कि गुलिस्तान जौहर इलाके में ब्लॉक 6 स्थित रेंजर्स हेडक्वार्टर में, जी हां पाकिस्तानी रेंजर्स का जो मुख्यालय है, उसके पास जोरदार धमाका हुआ। काफी देर तक उसके बाद गोलीबारी होती रही। इस हमले में कुल 10 लोगों की जान गई है, 3 लोग बुरी तरह से जख्मी है। मरने वालों में 6 हमलावर बताए जा रहे हैं और 4 पाकिस्तानी सैनिक। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची हमले की जिम्मेदारी ली है जमात उल अहरार ने। आतंकी संगठन ने दावा यह किया है कि इस हमले को अंजाम देने के लिए उसके 9 लड़ाके इस हमले में शामिल रहे हैं।
2: पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची शनिवार को एक बड़े धमाके से दहल उठी। शहर के व्यस्त यूनिवर्सिटी रोड इलाके में अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ। इसके ठीक बाद पूरे इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। ये घटना गुलिस्तान ए जौहर इलाके में हुई। ये क्षेत्र बेहद संवेदनशील माना जाता है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इस हमले में 4 लोगों की मौत हुई है और 3 घायल हुए हैं। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मृतकों में आम नागरिक शामिल हैं या सुरक्षा बलों के जवान। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि 6 हमलावर भी मारे गए, जिनमें 3 सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में और 2 आत्मघाती विस्फोट में मारे गए। रिपोर्ट्स के अनुसार एक आत्मघाती हमलावर ने रेंजर्स परिसर के पास खुद को विस्फोट से उड़ा लिया। इसके बाद 2 और धमाकों की आवाज सुनाई थी। इसी दौरान बाकी हमलावरों ने गोलीबारी शुरू कर दी। हमला उस इलाके में हुआ जहां कराची विश्वविद्यालय समेत कई शैक्षणिक संस्थान और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठान मौजूद हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमात उल अहरार ने इस हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। संगठन का कहना है कि हमले में उसके 9 लड़ाके शामिल थे। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र रूप से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। घटना के बाद पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। भारी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सिंध के मुख्यमंत्री सैयद मुराद अली शाह ने घटना की विस्तृत रिपोर्ट तलब की। वहीं सुरक्षा एजेंसियां पूरे हमले के नेटवर्क और हमलावरों के संबंधों की जांच कर रही हैं। कराची का यह इलाका पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित इलाकों में माना जाता है। ऐसे में रेंजर्स मुख्यालय के पास हुआ यह हमला सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। अब जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती पूरे आतंकी नेटवर्क का पता लगाना और यह जानना है कि इस हमले के पीछे कौन कौन शामिल था। आज तक ब्यूरो।
0: आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे पुणे में केतन मर्डर केस के बारे में, क्योंकि सिया के माता पिता से पुलिस ने 12 घंटे तक पूछताछ की है। केतन हत्याकांड में कल सुबह 11 बजे पुलिस ने सिया के माता पिता को बुलाया था और आधी रात तक पूछताछ की गई है। रात के करीब 12 बजे दोनों ही पुलिस स्टेशन से बाहर निकले। इस दौरान उनसे कई तरह के सवाल पूछे गए हैं। तो लगातार सिया पर शिकंजा पुलिस का कसता जा रहा है। तमाम चीजें बरामद कर ली गई हैं, यहां तक कि जो चेक्स डिलीट कर दिए गए थे जिनसे ढेर सारे खुलासे हो सकते हैं उन्हें भी वापस पाने की कोशिशें, रिट्रीव करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। सिया के माता पिता से लगभग 12 घंटे पूछताछ हुई है और आपको यह भी बता दें कि इस दौरान सिया का जो भाई है साहिल वो भी यहां मौजूद था। तो केतन अग्रवाल मामले में जांच लगातार तेज होती जा रही है और आपको यह भी बता दें कि जो सिया के माता पिता हैं लगभग 12 घंटे उनसे पूछताछ की गई है। क्या सिया और चेतन में प्रेम संबंध के बारे में आपको जानकारी थी? हमें इस बारे में कुछ नहीं पता था। सिया ने कभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी, कुछ भी नहीं बताया। माता पिता ने यही जवाब दिया है। क्या सिया ने चेतन से शादी की जिद की थी? दूसरा सवाल पुलिस का। सिया ने कभी नहीं कहा कि वो चेतन से शादी करना चाहती है। सूत्रों के हवाले से जो सवाल जवाब हुए, लगभग 12 घंटे जो पूछताछ हुई है, वो सवाल और वो जवाब हम आपको दिखा रहे हैं। क्या सिया की सहमति से केतन के साथ रिश्ता तय हुआ? जो सबके मन में सवाल है, जिसका जवाब यह था कि सिया की सहमति के बाद ही केतन से रिश्ता तय किया गया था। माता पिता दोनों की तरफ से प्रेस को भी यही लगातार जानकारी दी जा रही है और पुलिस को भी सेम बात बताई गई है कि मर्जी से सब कुछ चल रहा था। क्या सिया को केतन का स्वभाव पसंद नहीं था? दोनों कई बार साथ में घूमने गए, केतन भी मेरे घर आया, कोई शिकायत नहीं थी। बार बार परिवार का कहना ही है कि कोई शिकायत थी ही नहीं किसी भी तरह की। क्या आपको केतन की हत्या की साजिश के बारे में कोई जानकारी थी? हमें भरोसा नहीं होता कि सिया ऐसा कुछ कर सकती है। दोनों बेहद खुश थे, लगातार घूमने फिरने साथ साथ जाते थे और लंबी लंबी दोनों के बीच बातें हुआ करती थी। आपको बता दें कि माता पिता से पूछताछ की है, भाई साथ मौजूद था। लगभग रात के 12 बजे पुलिस स्टेशन से बाहर माता पिता निकले। करीब 12 घंटे तक ये पूछताछ की गई है। केतन अग्रवाल मामले में जांच तेज हो जा रही है और आपको बता दें कि पुलिस ने हत्या की आरोपी सिया के माता पिता और भाई से पूछताछ की है। अधिकारी डिलीट किए गए मोबाइल डेटा की भी जांच कर रहे हैं जिससे कि सुराग मिल पाए।
3: केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। इस मामले में मुख्य आरोपी सिया गोयल के माता पिता से करीब 12 घंटे तक गहन पूछताछ की गई। पुलिस ने परिवार से कई अहम सवाल पूछे जिनके जवाब अब जांच का अहम हिस्सा बन गए हैं। लोनावला ग्रामीण पुलिस ने केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच के तहत मुख्य आरोपी सिया गोयल के पिता प्रवीण गोयल और मां पूजा गोयल से करीब 12 घंटे तक पूछताछ की। दोनों सुबह करीब 11 बजे पुलिस थाने पहुंचे थे। पूछताछ के दौरान सिया का भाई साहिल गोयल भी मौजूद रहा। इससे पहले शुक्रवार को सिया के भाई साहिल गोयल से करीब 12 घंटे तक पूछताछ की गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उस पूछताछ में जान से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई थी, जिनके आधार पर आगे की कार्यवाही की जा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान प्रवीण गोयल और पूजा गोयल से पूछा गया कि क्या उन्होंने सिया पर केतन अग्रवाल से शादी करने का दबाव बनाया था। साथ ही यह भी जानने की कोशिश की गई कि क्या उन्हें सिया और चेतन चौधरी के कथित प्रेम संबंधों की जानकारी थी। सूत्रों के मुताबिक दोनों ने पुलिस को बताया कि उन्हें सिया और चेतन चौधरी के रिश्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि सिया और केतन अग्रवाल से शादी करने के लिए किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया गया था। इन बयानों का सत्यापन जांच के दौरान अन्य सबूतों और गवाहों के आधार पर किया जाएगा। पुलिस सूत्रों का कहना है कि जांच अभी भी जारी है और आने वाले दिनों में कुछ और करीबी लोगों से पूछताछ की जा सकती है। जांच एजेंसियां पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। आज तक ब्यूरो।
0: आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं हेडलाइंस।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

सेशल्स दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत, आज राष्ट्रीय दिवस समारोह में शिरकत, विपक्षीय वार्ता में रिश्तों की मजबूती पर होगी बात। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में तेज हुई तकरार, आरएसएस ने कहा एसआईटी जांच के बाद सियासत की जरूरत नहीं, अखिलेश बोले संसद के मानसून सत्र में उठाएंगे मुद्दा।

और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सबसे पहले आपको बता दें, केतन अग्रवाल मर्डर केस से जुड़ी हुई खबर है। पुणे पुलिस लोहागढ़ किले में सीन रिक्रिएट कर रही है। चेतन ओसिया के सामने पूरे घटनाक्रम को दोहराया जा रहा है, जिससे कि पता चल सके कि आखिर किस तरह साजिशन, कहां से एग्जैक्ट क्या लोकेशन थी जहां से धक्का मारा गया। तो आपको बता दें कि पुलिस यहां पहुंची हुई है और इस पूरे के पूरे सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है, इस घटनाक्रम को दोहराया जा रहा है चेतन और सिया के सामने। तो आपको बता दें कि पुलिस लोहगढ़ किले में मौजूद है और वहां चेतन और सिया भी मौजूद है। आगे बढ़ेंगे और अब आपको दिखाएंगे 100 शहर 100 खबर। अमेरिका ईरान के बीच टूटा सीज फायर हॉर्मुज के पास बड़े सैन्य हमले से खाड़ी में फिर से बढ़ गया है तनाव। क्रूड ऑयल टैंकर पर ड्रोन हमले के बाद अमेरिका का जवाबी एक्शन, ईरान के 10 सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव चरम पर है, व्यापारिक जहाज पर हमले के बाद अमेरिका का बड़ा सैन्य प्रहार। ईरान का पलटवार, खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला। सीजफायर के 10 दिन के बाद ही बिगड़ गए हालात, अमेरिका ईरान एक दूसरे पर हमले का आरोप लगाते हुए आमने सामने आए। पाकिस्तान के कराची में धमाका और फायरिंग से अफरा तफरी, रेंजर्स हेडक्वार्टर पर सुसाइड हमले की आशंका, अब तक 10 की मौत, कई घायल। धमाके में 6 हमलावर और 4 पाकिस्तानी सैनिक मारे जाने की खबर। जमात उल अरहार ने कराची धमाके की जिम्मेदारी ली, कहा हमले में शामिल थे हमारे 9 लड़ाके। रिपोर्ट्स के अनुसार एक आतंकवादी हमलावर ने रेंजर्स परिसर में खुद को विस्फोट से उड़ा लिया था, इसके बाद 2 और अलग अलग धमाकों की आवाजें सुनाई दी। इसी दौरान बाकी के हमलावरों ने गोलीबारी शुरू कर दी थी। हमला इलाके में हुआ, जिस इलाके में हुआ वहां कराची विश्वविद्यालय समेत कई शैक्षणिक संस्थान हैं। चढ़ावा चोरी मामले में राम मंदिर ट्रस्ट का कबूलनामा चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मिला, अगली बैठक में त्यागपत्र पर फैसला लिया जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से बयान जारी किया गया, कहा घटनाओं से हम स्तब्ध हैं, आहत और बेहद दुखी भी। चढ़ावा चोरी मामले पर तेज हो गई तकरार, अखिलेश यादव का निशाना, कहा बीजेपी के लिए धर्म से पहले है धन। अखिलेश के हमले के बाद बीजेपी ने बचाव में आया है आरएसएस, इंद्रेश कुमार ने कहा एसआईटी की जांच के बाद सियासत की जरूरत नहीं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सरकार को घेरेगी समाजवादी पार्टी, संसद के आगामी सत्र में मुद्दा उठाएगी समाजवादी पार्टी। महाराष्ट्र में जीटी परीक्षा पेपर लीक, आज होने वाली परीक्षा को स्थगित किया गया। ये टीटी परीक्षा पेपर लीक मामले में 3 लोगों पर मामला दर्ज, ठाणे में मिला प्रश्न पत्र। महाराष्ट्र में पेपर लीक मामले की जांच के लिए फडणवीस सरकार ने बनाई एसआईटी, डेप्यूटी सीएम शिंदे ने कहा नहीं बचेंगे गुनहगार। महाराष्ट्र पेपर लीक पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, कहा देश की शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को वसूली सिस्टम बना दिया गया है। प्रियंका गांधी ने युवाओं से आंदोलन की अपील की। उद्धव ठाकरे ने भी महाराष्ट्र की एनडीए सरकार को घेरा, कहा दिन के उजाले में लोकतंत्र की हो रही हत्या, सिर्फ उनको सत्ता से मतलब है। महाराष्ट्र में सियासी हलचल पर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, कहा यह ऑपरेशन टाइगर नहीं बल्कि ऑपरेशन देवेंद्र है। उद्धव ठाकरे का वार, कहा दिल्ली में देवेंद्र फडणवीस के प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल होने से पहले ही उनके पर कतरने की तैयारियां हैं। पुणे में केतन हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी सिया गोयल के पिता प्रवीण गोयल और मां पूजा गोयल से करीब 12 घंटे तक पूछताछ हुई, सिया का भाई साहिल गोयल भी मौजूद था। पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा, पुलिस के मुताबिक केतन की हत्या से पहले दोनों ही आरोपी सिया और चेतन ने लोहगढ़ किले से धक्का देने का अभ्यास किया था। पुणे में केतन को न्याय दिलाने की मांग, सड़कों पर बड़ी संख्या में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च, केतन के पिता भी शामिल हुए। 3 दिन के शिशल्स दौरे पर पहुंचे हैं विक्टोरिया प्रधानमंत्री मोदी, शिशल्स के राष्ट्रपति पेट्रिक हर्बनी ने प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी की। शिशल्स पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत हुआ, एयरपोर्ट पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। प्रधानमंत्री के दौरे पर लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आया, हाथों में तिरंगा लेकर पहुंचे थे लोग, प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर सबका अभिवादन स्वीकार किया। शिशल्स में प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक तरीके से किया गया वेलकम, कलाकारों ने ढोल नगाड़ों और पारंपरिक नृत्य के साथ स्वागत किया। शिशल्स में होटल पहुंचने पर भारतीय संस्कृति से हुआ प्रधानमंत्री का स्वागत, उतारी गई आरती, कलाकारों ने पेश किए लोक नृत्य।
अकाल तख्त के सामने पेश होने से पहले पंजाब के आम आदमी पार्टी विधायकों से आज मिलेंगे सीएम भगवंत मान। पंजाब के सभी सिख विधायकों को बेहद विरोधी कानून के सिलसिले में होना है पेश। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी पर उनके ही विभाग से करीब 1 करोड़ रुपए की सब्सिडी लेने के आरोपों को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हुई। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर भागीरथ चौधरी पर हमलावर है, जांच की उठाई गई है मांग। कन्नौज सांसद निधि को लेकर ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर हमला, विकास कार्यों पर उठाए हैं सवाल। राजभर बोले सिर्फ यादव मुस्लिमों के आरक्षण का खाया, आते पिछड़ों को डराना बंद करे समाजवादी पार्टी। केरल कृषि विश्वविद्यालय के कार्यवाहक वीसी की नियुक्ति पर विवाद, राज्यपाल ने सरकार की सूची से अलग नाम चुना। दिल्ली और उत्तराखंड में आतंकी हमले का अलर्ट, धार्मिक और सरकारी जगहों की बढ़ा दी गई है सुरक्षा। शिवसेना कोल्हापुर विधायक राजेश का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो 40 लाख रुपए का कमीशन लेकर बात करते नजर आए। जयपुर में सीएम काफिला हादसे में झुलसे रीशु को राहत, सरकार पूरे इलाज का खर्च उठाएगी। लखनऊ में चिनट स्थित कोल्ड स्टोरेज में भीषण आग लगी, दमकल की 6 गाड़ियां आग को बुझाने में जुटी। गर्मी से बेहद बेहाल दिल्ली वालों के लिए राहत भरी खबर है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में बारिश और तेज हवाओं का अनुमान जताया। आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है, शाम तक गरज के साथ बारिश की संभावना, तेज सतही हवाएं चलने के आसार। अगले 2 से 3 दिनों में तेज हो जाएगी मानसूनी गतिविधियां। मौसम वैज्ञानिकों का दावा, 29 से 30 जून के बीच उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से सक्रिय हो सकता है मानसून। सबसे पहले पूरी यूपी में देखने को मिलेगा मानसून का असर, बढ़ेगा बारिश का दायरा, तापमान में 5 से 8 डिग्री तक की गिरावट की संभावना। असम, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड और सिक्किम समेत पूरे पूर्वोत्तर में मानसून की बारिश जारी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मानसून विस्तार के लिए परिस्थितियां पूरी तरह से अनुकूल। हरिद्वार में देव संस्कृति महाविश्वविद्यालय में दधीची अंगदान संकल्प अभियान, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और सीएम धामी की मौजूदगी में सैकड़ों लोगों ने अंगदान का संकल्प लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की, अंगदान को बताया मानव सेवा का सर्वोच्च कार्य। देश के 26 राज्यों में शांति कुंज गायत्री परिवार चलाएगा अंगदान का अभियान, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बताया पूरे गायत्री परिवार को बधाई का पात्र। राम भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी, अमृतसर में बनाया जाएगा सीता और लवकुश का भव्य मंदिर, अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया। 1 अगस्त से पूरे पंजाब में भगवान राम पर आधारित हमारे राम का आयोजन किया जाएगा, भगवान राम और रावण के बीच के कई संवाद और घटनाएं दिखाई जाएंगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब के सीएम भगवंत मान अमृतसर में आयोजित भजन संध्या में शामिल हुए। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा, पंजाब की आध्यात्मिक विरासत को संरक्षित करने, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की हरित लोकसभा अभियान के तहत सामूहिक वृक्षारोपण कार्यक्रमों की समीक्षा, हरित लोकसभा पर्यावरण संरक्षण और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने का अभियान। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा प्रतियोगिता के लिए गुड न्यूज, 28 से चलेंगी 6 परीक्षा स्पेशल ट्रेनिंग। समस्तीपुर मंडल करेगा मधुबनी

0: world soccer hits the big stage, Fanatics Sportsbook is making every game day worth more. Earn up to 10% fan cash on your soccer bets, win or lose. That's real extra value you can unlock every match, all tournament long. And fan cash isn't just for betting. You can use it anywhere in the world of Fanatics. On game tickets, merchandise, collectibles, profit boosts, and more. One ecosystem, endless ways to spend. Plus, new customers get up to $1,000 in fan cash. That's $100 bet matched every day for your first 10 days. The world is ready. Are you? Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Must be 21 plus. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET. CT, call 888-789-7777. MA, call 800-327-5050. NY, call 877-8-HOPE-NY. MD, visit mdgamblinghelp.org. Not available in all states. Terms apply. See Fanatics Sportsbook app.
1: Hot Mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes, and real talk, no fluff, with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say, play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
2: खुलासे हुए हैं। खुलासे के मुताबिक सामने आया है कि चढ़ावे में 70 बार चोरी या गबन की गई। ये खुलासा 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 तक के सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद हुआ है। बात यहीं तक नहीं रुकती। मामले की जांच कर रही एसआईटी के हवाले से सूत्रों ने जानकारी दी है कि पिछले 3 साल में ऑडिट में कई खामियां मिली हैं। जांच में हुंडियों की संख्या और अभिलेखों में कथित तौर पर अंतर पाया गया। ये भी सामने आया कि पर्याप्त सीसीटीवी कवरेज नहीं था, इस वजह से निगरानी प्रभावित हुई। अभिलेखों के रखरखाव की व्यवस्था में भारी कमियां थी। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली बेहद कमजोर पाई गई। खुलासा इस बात पर भी हुआ है कि एसबीआई और ट्रस्ट के बीच सितंबर 2024 और फरवरी 2025 में चढ़ावे की गिनती के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार की गई थी, लेकिन उसका ढंग से पालन नहीं किया गया। लगातार उल्लंघन होता रहा। चढ़ावे की गिनती में एसओपी को अनदेखा किया जाता रहा। खुलासा ये भी हुआ है कि ट्रस्ट को काफी पहले ही चढ़ावा चोरी की आशंका हो गई थी। 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई तो उनसे जुड़ी कई सच्चाई सामने आई। इन आरोपियों में से एक रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू का रिश्तेदार मनीष कुमार यादव बार बार चोरी करता दिखा था। सीसीटीवी में उसके खिलाफ तमाम सबूत है, फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं की गई। चंपत राय के ड्राइवर रामशंकर ने ही मनीष को नौकरी दिलवाई थी। 7 आरोपियों से करीब 80 लाख की बरामदगी की गई है। सवाल उठे तो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया। सदस्य अनिल मिश्रा को भी पद छोड़ना पड़ा। भगवान राम के भक्तों की आस्था पर चोट हुई है। चढ़ावे की चोरी की गई है, जांच बिठा दी गई है, गिरफ्तारियां हो गई है, फिर भी विपक्ष हमले का मौका नहीं चूक रहा। अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी का लंका कांड अयोध्या में ही हो गया, तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं अयोध्या में महाडकैती हुई है। केजरीवाल ने पूछा कि चोरी का पैसा गया कहां। चंदा चोरी करने वालों को केजरीवाल ने राक्षस बताते हुए कहा कि उन सभी को फांसी होनी चाहिए।
3: फर्जी एफआईआर, फर्जी एसआईटी, तो एक तरफ तो इतनी बड़ी महाडकैती हुई और दूसरी तरफ इसमें जितने बड़े बड़े राक्षस शामिल हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। ये एक तरह से सभी हिंदुओं के जले पे नमक छिड़कने वाली बात है। लोगों का कहना है कि उन्हें तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी जब तक इन चोरी करने वाले लोगों को, बड़े बड़े लोगों को सरेआम फांसी की सजा नहीं दी जाएगी।
2: उधर कांग्रेस ने इस मामले को संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सदन में उठाने का भी मन बना लिया है। पूरा विपक्ष एक आवाज में कह रहा है कि इस मामले को छिपाने और लीपापोती करने की बजाय इसकी निष्पक्ष और पारदर्शी जाँच की जानी चाहिए। केजरीवाल ने सवाल उठाए तो मुख्यमंत्री योगी ने उन्हें आईना दिखाया, तो समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
4: मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो।

चढ़ावा चोरी के मामले की जारी तफ्तीश के बीच सियासत तेज है, लेकिन सवाल एक है कि आखिर बड़ी मछलियां जाल में कब फंसेंगी? मंदिर ट्रस्ट के बड़े चेहरों पर एक्शन कब होगा? आज तक ब्यूरो।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
4: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

में दूसरी बार अमेरिका ने हॉर्मुज के पास 10 ईरानी ठिकानों पर की बमबारी। ईरान ने कुवैत से बहरीन तक अमेरिकी बेस पर बोला हमला। सेशल्स दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति विवल राम कलावंस के साथ समुद्री सुरक्षा रक्षा सहयोग पर वार्ता। देर शाम राष्ट्रीय दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर जांच तेज। अयोध्या में टिन्नू यादव समेत आरोपियों के घरों पर छापेमारी। परिवार वालों से सवाल जवाब। केतन अग्रवाल हत्याकांड में जांच तेज। क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए आरोपी सिया और चेतन को लोहगढ़ किले तक ले गई पुलिस। कल माता पिता से 12 घंटे सवाल जवाब। त्योहार में जहरीली साजिश के खुलासे से मुंबई में हड़कंप। मोहर्रम के जुलूस से पहले भायखला में 14,900 जिंक फॉस्फाइड वाले कैप्सूल मिले। संदिग्ध से पूछताछ।

0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं वॉर रूम। आज के इस शो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बलूचिस्तान से लेकर पीओजेके तक पाकिस्तानी सरकार और फौज के खिलाफ वहां की आवाम सड़कों पर है। महरंग की गिरफ्तारी से लेकर कश्मीरियों के राशन पानी तक पाकिस्तान फौजी बूटों से शांति स्थापित करना चाह रहे हैं। लेकिन शायद अब बात बहुत आगे निकल चुकी है। बात होगी पाक फौज के पूर्व अधिकारी से, जो बता रहे हैं कि कैसे मुनीर और उसकी फौज के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और कैसे अपनी हत्या की झूठी खबर फैलवा रहा है जनरल मुनीर। क्यों पाकिस्तान बोल रहा है कि मोसाद की हिट लिस्ट में आसिम मुनीर का नाम था, लेकिन सवाल है कि उससे क्या फायदा है पाकिस्तान। इस शो में हम ये भी दिखाएंगे कि कैसे रेजीम चेंज करने चले थे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान में, लेकिन उसका असर अमेरिका पर हो रहा है, कैसे दो फाड़ में बट गया है अमेरिका और क्यों अपने ही नेताओं के बीच ट्रंप हो गए हैं बेगाने। दिखाएंगे ये भी कि कैसे अमेरिका के पीछे हटने के बाद भी इसराइल लगातार ईरान के प्रॉक्सी संगठनों पर हमलावर है और कह रहा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ईरान की कुद्स फोर्स इसराइल को हार की धमकी दे रही है, लेकिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि वो रुकने वाले नहीं हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी वॉर ब्रेकिंग, फिर देखिए हमारी रिपोर्ट।
1: इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से। अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा युद्ध शुरू हो चुका है। आरोप है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कार्गो शिप पर ड्रोन हमला किया है। ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दिया है कि अंजाम भुगतना होगा। अमेरिका ने ईरान के मिसाइल ड्रोन और राडार ठिकानों पर हमले किए। एक और बड़ी खबर बहरीन से है। ईरान ने शनिवार

0: था उस पे ड्रोन ने से हमला किया ईरान ने। तो कहीं ना कहीं ईरान ये दिखा रहा है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज उसके कंट्रोल में है और ईरान जो बोलेगा वैसे ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज में शिप जाएंगी, तो एक डर का माहौल पैदा कर दिया ईरान ने, इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिका इसमें ऐसा लगता है कि जैसे कुछ कर नहीं पा रहा है।
1: हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र की समुद्री एजेंसी ने फारस की खाड़ी में फंसे जहाजों को निकालने का अभियान रोक दिया। वहीं ईरान की चेतावनी के बाद दो तेल के टैंकर वापस लौट गए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की संख्या भी 73 से घटकर 54 रह गई। इस अकेली घटना ने शांति समझौतों को हॉर्मुज में डुबो दिया। फिलहाल दोनों देशों के बीच तनाव कम होने के बजाय और बढ़ता दिखाई दे रहा है। पूरी दुनिया की नजर अब इस बात पर टिकी है कि क्या कूटनीति हालात संभाल पाएगी या फिर यह टकराव एक बड़े क्षेत्रीय संकट में बदल जाएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर वॉशिंगटन शांति समझौते से जुड़ी आ रही है। इसराइल, लेबनान और अमेरिका के बीच शांति समझौते की रूपरेखा पर हस्ताक्षर के बावजूद नेतन्याहू ने कह दिया है कि सेना पीछे नहीं हटेगी। इसराइल और लेबनान के बीच ऐतिहासिक समझौते के बावजूद जमीन पर तनाव चरम पर है। शांति समझौते पर हस्ताक्षर के तुरंत बाद इजरायली पीएम ने साफ कर दिया है कि दक्षिणी लेबनान से उनकी फौज अभी बाहर नहीं निकलेगी। इसराइल लगातार हमलावर है, ईरान के प्रॉक्सी का जवाब इसराइल मजबूत तरीके से दे रहा है, अमेरिका शांति की दुहाई दे रहा है, अमेरिका और ईरान के बीच पीस टॉक और सीज फायर की फाइलें घूम रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसराइल ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के नेतृत्व को बता दिया है कि इसराइल की सुरक्षा सबसे पहले। इसी नीति पर चलते हुए इसराइल की सेना लगातार लेबनान से लेकर गाजा तक ईरान के पाले हुए प्रॉक्सीज को चुन चुनकर साफ कर रही है। वॉशिंगटन में इसराइल, लेबनान और अमेरिका के बीच लंबी बातचीत के बाद एक बड़ा समझौता हुआ है जिसका सार यह है कि इसराइल दक्षिणी लेबनान से पीछे नहीं हटेगा।
2: सबसे बड़ी बात यह है कि इसराइल दक्षिणी लेबनान के सुरक्षा क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बनाए रखेगा। ये हमारे लिए बड़ी सफलता है। हम वहाँ तब तक रहेंगे जब तक हिजबुल्लाह अपने हथियार नहीं छोड़ देता और इसराइल को उससे खतरा बना रहता है। यह ईरान के लिए भी एक बड़ा झटका है। ईरान चाहता था कि इसराइल दक्षिणी लेबनान से हट जाए, लेकिन इसराइल, लेबनान और अमेरिका ने साफ कहा है कि लेबनान के मामलों में ईरान, हिजबुल्लाह या किसी भी आतंकवादी संगठन की कोई भूमिका नहीं होगी।
1: वही समझौते से ठीक पहले एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दक्षिणी लेबनान के टेबनीत गांव में इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने हिजबुल्लाह के दर्जनों आतंकियों को उनके ही सुरंगों के जाल में घेर लिया। रास्ते सील कर दिए गए। बिचौलियों के जरिए आतंकियों को सुरक्षित निकालने की भीख मांगी जा रही है, लेकिन आईडीएफ के सूत्रों ने साफ कह दिया है कि या तो सरेंडर करो या इसी सुरंग में मारे जाओ। इजराइल के कैबिनेट में सीज फायर को लेकर बहस छिड़ी तो पीएम नेतन्याहू और रक्षा मंत्री केटिज ने साफ कह दिया कि हमारे किसी भी सैनिक के हाथ बंधे नहीं हैं। जो भी खतरा दिखेगा उसे ऑन द स्पॉट ढेर किया जाएगा। वहीं वॉशिंगटन समझौते के बाद इसराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल की सुरक्षा सबसे पहले है,
2: कि अब लेबनीज सेना कुछ इलाकों का नियंत्रण संभाल सकती है। इसके लिए दो पायलट क्षेत्र बनाए जा रहे हैं। ये दोनों क्षेत्र इजरायली सेना की सलाह पर चुने गए हैं। इसराइल अपने मूल सुरक्षा क्षेत्र को एंटी टैंक मिसाइलों की पहुंच से बाहर सुरक्षित रखेगा। इस क्षेत्र में न हिजबुल्लाह को और न ही आम लोगों को आने दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे लिए इसराइल की सुरक्षा सबसे पहले है।
3: ישראל אומרת, הביטחון שלנו קודם לכל.
1: नेतन्याहू ने सीधे शब्दों में ईरान को

0: चेतावनी दी है कि लेबनान से दूर रहो।
1: ואנחנו נישאר ככל שידרש באזור הביטחון בדרום לבנון. אנחנו לא עומדים לסגת ממנו. ואני אגיד לכם גם למה. כי אנחנו עברנו משטחים נשלטים לשטחים שולטים. ואנחנו נשמור על השטחים השולטים הללו ככל שידרש.
0: अपने पाले हुए आतंकियों को मरता देख अब ईरान बिलबिला उठा। ईरान की IRGC गुड्स फोर्स के चीफ इस्माइल कानी ने इसराइल को धमकी दी, लेकिन समझौते में ईरान की मौजूदगी न होना बता रहा है कि लेबनान और हिजबुल्ला एक पेज पर नहीं है और न ही ईरान और लेबनान। लेकिन सच तो यह है कि ईरान की खोखली धमकियों से इसराइल रुकने वाला नहीं। इससे पहले भी जब ईरान ने आंख दिखाने की कोशिश की थी तो इसराइल ने उसका गुरूर तोड़ दिया था। सिर्फ लेबनान ही नहीं, गाजा में भी इसराइली सेना का कहर जारी है। अक्टूबर 2025 के सीजफायर का फायदा उठाकर हमास फिर से रॉकेट लॉन्चिंग पैड बना रहा था। लेकिन इसराइली खुफिया तंत्र से कुछ नहीं छिपता। IDF ने ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक्स करके हमास के उन चारों नए लॉन्चिंग पैड्स को मिट्टी में मिला दिया। मई के महीने में हमास के दो बड़े मिलिट्री प्रमुख मारे गए थे और खौफ का आलम यह है कि हमास अब तक अपना नया कमांडर चुनने की हिम्मत नहीं कर पाया। साफ है कि अमेरिका भले डिप्लोमेसी की टेबल पर कोई भी खेल खेले, इसराइल ने अपनी बंदूकों का रुख साफ रखा है। ईरान के प्रॉक्सीज खत्म हो रहे हैं और ईरान बेबस होकर सिर्फ तमाशा देख रहा है। सुरक्षा सर्वोपरि है और यही इसराइल का नया मूल मंत्र है। एक वॉर ब्रेकिंग आ रही है, ये खबर जुड़ी है POJK से। POJK में जारी जनता के आंदोलन और पाकिस्तानी हुकूमत के बीच टकराव चरम पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान की फूड ब्लॉकेड नीति आज 14वें दिन भी जारी है, जिसके चलते कहुटा बॉर्डर पर सैकड़ों राशन के ट्रक जाम खड़े हैं। हालात इतने बदतर हैं कि आम लोगों के हाथों से भी जबरन राशन जब्त किया जा रहा है। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी तानाशाह को यह गुमान हुआ है कि वही मुल्क का मुस्तकबिल है, उसके फैसले ही मुल्क के आईन हैं, तब तब हुकूमतें खाक हुई हैं। इस इतिहास को भूलने वाले मुल्कों के भूगोल ही बदले हैं और पाकिस्तान का इतिहास फिर से शायद बांग्लादेश को दोहराता हुआ दिख रहा है। बलूचिस्तान से लेकर POJK तक हर तरफ आवाम अपने हुकूक के लिए सड़कों पर है। पाकिस्तान के पास जवाब के नाम पर है गोली या जेल। ये क्वेटा है, दुकानें बंद हैं, सड़कें खाली हैं। ये विद्रोह है पाकिस्तान सरकार के खिलाफ। ये बगावत है पाक फौज के खिलाफ। ये गदर है बलूचिस्तान की बेटी के गिरफ्तारी के खिलाफ। क्वेटा की अदालत ने बलूच यकजहती कमेटी की प्रमुख नेता महरंग बलोच को एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई अशांति में फ्रंटियर कोर के एक अधिकारी की मौत के मामले में दोषी ठहराया है। ये विद्रोह महरंग बलोच के समर्थन में।
2: वो रोज हमें मारने आते हैं, हर रोज चुप कर गीदड़ की तरह वार करते हैं। लाशें गिराएंगे, गिराएं और कितने गिराएंगे। लाशें गिरने से हम क्या कमजोर पड़ जाएंगे। आ जाए किस किस को मारेंगे आप। जितने मारेंगे हम उतने निकलेंगे और हमारी हर नस्ल आपके खिलाफ सिर्फ मुजम्मत का ही रास्ता अपनाएगी।
0: वो बीमारी का इलाज करना जानती है, वो मर्ज को पहचानती है, वो डॉक्टर है। वो पाकिस्तान नाम के कैंसर का इलाज कर रही थी जो बलूचिस्तान को अंदर ही अंदर खा रहा है, जिसकी एक हुंकार से पाकिस्तान की पूरी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बलूच क्रांति की उस चिंगारी को आज पूरा बलूचिस्तान बलोच की शेरनी कहता है। नाम है डॉक्टर मेहरंग बलोच। बलोचों की एक ऐसी जांबाज रहनुमा जिसके एक इशारे पर पूरा बलूचिस्तान हक की जंग के लिए सड़कों पर उतर आता है।
2: नहीं है, ये बलूचिस्तान है।
0: उनकी जनसभाओं में उमड़ा हुजूम देखकर जनरल मुनीर और उसकी खाकी वर्दी वाली पलटन के होश उड़ जाते हैं। बलूच सरजमी के चप्पे चप्पे से नौजवान लड़कों को गायब करना, निहत्थों पर गोलियां बरसाना और क्वेटा की जमीन को स्थानीय लोगों के खून से लाल करना, यही है वर्दीधारी जनरल का असली खूनी चेहरा। मगर जब आसिम मुनीर का बारूद इस बलूच बेटी के फौलादी इरादों को नहीं डिगा सका तो रावलपिंडी के डरपोक नीति नियंताओं ने पर्दे के पीछे से एक बेहद घिनौनी चाल चली। अपनी नाकामी और डर से बौखलाए आसिम मुनीर ने आनन फानन में पाकिस्तान की उस तथाकथित न्यायपालिका की शरण ली जो इंसाफ के लिए कम और सेना की चाकरी के लिए ज्यादा जानी जाती। एक ऐसी आतंकवाद विरोधी अदालत जहां न दलीलों की कोई कीमत है, न सबूतों की कोई बिसात, जहां काल कोठरी के भीतर गुपचुप सुनवाई का ढोंग रचा जाता है। तभी तो भरी अदालत के इस तमाशे को दुनिया के सामने लाते हुए खुद डॉक्टर मेहरंग ने डंके की चोट पर कहा था कि इन अदालतों की तराजू में कानून नहीं बल्कि विदेशी करेंसी और डॉलर तोले जाते हैं। उसी अदालत ने मेहरंग बलोच के खिलाफ फैसला सुना दिया। इस फैसले के दम पर डॉक्टर मेहरंग और उनके सहयोगी सिब्बतुल्लाह शाह को उम्र कैद की सजा सुनाकर मुनीर ने मुगालता पाल लिया था कि वो आजादी की इस गूंज को दबा देगा, लेकिन पासा पूरी तरह पलट गया। इस फैसले के आते ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर न सिर्फ महरंग बलोच की तुरंत रिहाई की गूंज उठी बल्कि बलूचिस्तान की पूर्ण आजादी का आंदोलन और उग्र हो गया है। दुनिया भर के मानवाधिकार संगठनों से लेकर ग्रेटा थनबर्ग जैसी ग्लोबल एक्टिविस्ट्स ने मुनीर की इस तानाशाही को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। अब दुनिया एक सुर में कह रही है कि महरंग को रिहा करो और बलूचिस्तान को इस जुल्म से आजाद करो।
3: Dr. Mahram Baloch has spent years peacefully advocating for the families of the disappeared, speaking up against extrajudicial killings and demanding justice for the people of Balochistan, occupied territory by Pakistan. You cannot silence an entire movement by locking away its voices. The world cannot continue to look away from this. Stand with Dr. Mahram Baloch and all those imprisoned for peacefully demanding justice. Demand accountability, demand due process, and demand their freedom. Free Mahram and free Balochistan.
0: ईरान और अमेरिका के बीच दलाली करने की फिराक में घूमने वाला जनरल मुनीर आज पूरी दुनिया की नजरों में विलन बन चुका है। महरंग को जेल में ठूंसने की इस कायर हरकत ने मुहर लगा दी है कि बलोच शेरनी के रुतबे से इस्लामाबाद के हुक्मरान थर थर कांप रहे हैं।
2: और हमारी हर नस्ल आपके खिलाफ सिर्फ मुजम्मत का ही रास्ता अपनाएगी। बाज आ जाओ, अब बलोच हवाम खड़ी हुई है। ये 1948 नहीं है, ये 2023 है और ये बंगाल नहीं है, ये बलूचिस्तान है। हम हैं उन इज्तिमाई कब्रों के वारिस, जिनको आप देखते हो ना, वो बलोच की कब्रें हैं, बलोच नस्ल की कब्रें हैं, बलोच कौम की कब्रें हैं।
0: इस तानाशाह का पागलपन सिर्फ महरंग बलोच तक नहीं रुका। जुल्म की इंतहा देखिए, उसने महरंग का केस लड़ रही मानवाधिकार वकील ईमान मजारी को सिर्फ इसलिए 17 साल के लिए जेल भिजवा दिया क्योंकि उसने अदालत में अपनी मुवक्किल के हक की वकालत की थी। यानी मुनीर के राज में न्याय की मांग करना भी सबसे बड़ा गुनाह बन चुका है।
4: इस साल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब और मरियम औरंगजेब साहिबा की। जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उधर मुतालबा किया गया कि डॉक्टर मारंग बलोच को रिहा किया जाए। तो अगर पंजाब हुकूमत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर ये बात कर सकती है तो मैं अपने ट्विटर पर ये बात क्यों नहीं कर सकती, इसकी सेंस मुझे नहीं बन रही।
0: ये नफरत कल की नहीं है, ये कहानी शुरू होती है 1947 से। जब पाकिस्तान बना तब बलोच नेताओं ने पाकिस्तान के जबरन विलय का विरोध किया और तब से लेकर आज तक ये जंग लगातार चल रही है। पाकिस्तान की फौज पर आरोप है कि वो बलोच लोगों को उठा लेती है, उन्हें गायब कर देती है और बिना किसी ट्रायल के मार देती है। इस आग में घी डालने का काम किया चीन ने। ग्वादर पोर्ट और सीपेक के नाम पर जो मेगा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, बलोच लोग उन्हें अपनी बर्बादी का प्रतीक मानते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी जमीन पर चीन का कब्जा करवाया जा रहा है और उन्हें बदले में क्या मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री की पाबंदियां। इसीलिए विद्रोहियों ने सीधा चीन के प्रोजेक्ट्स और वहां के वर्कर्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान कहता है कि ये सब विदेशी ताकतों का हाथ है, लेकिन सच तो ये है कि खुद पाकिस्तान के अंदर ही फूट है। फैक्ट ये है कि पाकिस्तान की फौज में 45% पंजाबी मुसलमान भरे पड़े हैं। बलोच लोगों के साथ होती ज्यादती इस बात का पुख्ता सबूत है कि ये पंजाबी फौज बलोचों पर हुक्म चला रहे हैं। बलोच आंदोलन भी एक नहीं है, मरी, बुगती और मैंगल, ये तीन बड़े कबीले बंटे हुए हैं। 2006 में जब पाक फौज ने नवाब अकबर बुगती को मारा, तब से ये आग बुझने का नाम नहीं ले रही। ऊपर से अफगान युद्ध के बाद आए पश्तूनों ने बलोच लोगों की डेमोग्राफी बिगाड़ दी है, उन्हें अपनी ही जमीन पर अल्पसंख्यक बनाया जा रहा है। पाकिस्तान की सरकार चाहे कितने भी दावे करे, लेकिन हकीकत ये है कि बलूचिस्तान एक सुलगता हुआ ज्वालामुखी है। अगर बलूचिस्तान सुलगा तो उसकी लपटें दूर तक जाएंगी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
3: इसमें है फाइबर बीटा ग्लूकोन प्रोटीन मैग्नीशियम तत्व इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली सुपर एक्शन फैमिली।
4: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार हारे अब खरपतवार देश के हीरो की पहली पसंद।
5: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
8: हमने तब भी सवाल किया था।
9: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
8: हम आज भी सवाल करते हैं।
9: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
8: ऑपरेशन अग्नि
9: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
8: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार सिर्फ आज तक पर।
10: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
0: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: और इस समय हमारे साथ पाकिस्तानी फौज के पूर्व अफसर रहे मेजर आदिल राजा, जो कि अब सेवानिवृत्त हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन बहुत खरी खरी बातें वो करते हैं। बहुत स्वागत है मेजर आदिल आपका। लेकिन हम स्टार्ट एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ करना चाहते हैं। दरअसल एक ब्राजील के एक रिपोर्टर ने यह खबर ब्रेक की थी कि आसिम मुनीर को मोसाद ने मारने की प्लानिंग की थी, इसराइल के मोसाद ने। अब इसकी खबर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस को लगी, जिसके बाद उनकी तरफ से कहा गया कि अगर आसिम मुनीर को हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। और इसके बाद से पाकिस्तान लगातार ये नैरेटिव चला रहा है कि इसराइल जनरल मुनीर को मारना चाहता था। सबसे पहले तो मैं आपसे इस पर प्रतिक्रिया चाहती हूं, इस पर रिएक्शन चाहती हूं।
1: थैंक यू श्वेता। एक तो आपने कहा कि खरी खरी जो है वो सुनाते हैं, तो खरी खरी सुनाने की वजह से आपको पता है कि पाकिस्तान में मुझे 99 ईयर का सिर्फ और सिर्फ जर्नलिज्म की वजह से, फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से 99 ईयर का प्रिजन सेंटेंस सुनाया गया है, जो मैं खरी खरी यहाँ बैठ के बातें सुनाता हूँ। तो देर इज अ प्राइस टू बी पेड फॉर स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर, और एज अ पैराहिशिस्ट हम वो कर रहे हैं। और आपने जो बात की वो पेपे एस्कोबार को, मेरे ख्याल में बहुत ही कोई गलत इन्फॉर्मेशन फीड की गई है, क्योंकि एक और उसकी वजह है, डेफिनेटली वजह है, क्योंकि आसिम मुनीर अपने आप को एक हीरो बना के पेश करना चाहते हैं। और जो ईरान और यूएस का डायलॉग है, उसमें मेरे पास कंफर्म्ड खबर जो है वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी में जो मेरे सोर्सेज हैं वो कंफर्म करते हैं कि पाकिस्तान को ईरान यूएस नेगोशिएशन प्रोसेस से बाहर निकाल दिया गया है, और अब कतर जो है वो ये प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व रहेगा। पाकिस्तान को टोटली आउट किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान इस प्रोसेस को अपनी लेजिटिमेसी ढूंढ रहा था इस प्रोसेस के जरिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, क्योंकि डोमेस्टिक लेजिटिमेसी इस गवर्नमेंट के पास है ही नहीं, जिसको आसिम मुनीर लीड कर रहे हैं, और शहबाज शरीफ उनके चपरासी के तौर के ऊपर, इमरान खान उनको अर्दली कहते हैं, अर्दली के तौर के ऊपर उनके साथ लगे हुए हैं। पेपे एस्कोबार को स्टोरी मेरे ख्याल में जो है, मेरी जाती राय के मुताबिक, लीक इसलिए की गई क्योंकि एंटी इसराइल सेंटिमेंट जो है वो चलता है पाकिस्तान में लेजिटिमेसी बनाने के लिए, और एंटी इंडिया सेंटिमेंट चलता है पाकिस्तान में लेजिटिमेसी बनाने के लिए। तो इंडिया के खिलाफ तो ऑपरेशन बनियानुल मरसूस और मारका हक का जो ड्रामा करके वो लेजिटिमेसी जितना उसको नचोड़ा जा सकता था नचोड़ लिया गया है। अब इंटरनेशनल नेगोशिएटर के तौर के ऊपर आलमी अमन लाना चाहते हैं, हालांकि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कहते हैं कि यार पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला इन्होंने लगाया हुआ है। पाकिस्तान में एक जो है नाश्ते के लिए डबल रोटी अंडा तक हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, और ये अमन करने के चक्कर के अंदर जा रहे हैं, इंटरनेशनल नेगोशिएटर बने हुए हैं, और ये अपनी लेजिटिमेसी ढूंढ रहे हैं उस प्रोसेस के जरिए और अपनी मशहूरी करवाना चाहते हैं।
0: मिजादिल पल, अब बलूचिस्तान के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं, ये क्या हो रहा है, मेहरंग बलूच की गिरफ्तारी को आप कैसे देखते हैं?
1: देखिए, ये भी लिंक्ड है उसी से श्वेता, कि आप देखो कि ये स्टोरी प्लांट की गई पेपे को और उसके बाद ऑफिशियली इसको डिनाई किया गया। हालांकि इसराइल में मैंने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट की, इसराइली जर्नलिस्ट से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि भाई या तो कैपेबिलिटी का अगर ताल्लुक है कि क्या हम कर सकते हैं आसिम मुनीर के खिलाफ असैसिनेशन अटेम्प्ट, तो बिल्कुल हमारी इंटेलिजेंस की कैपेबिलिटी है, लेकिन हमें क्या जरूरत पड़ी है आसिम मुनीर को, वो हमारे लिए थ्रेट ही नहीं है सर ऐसे, बल्कि वो तो हम उसको क्यों हिट करेंगे, ऑलरेडी हमारे बड़े फ्रंट खुले हुए हैं। तो वो ऑलरेडी, अब देखें, अब आज मारंग के ऊपर आ जाएं, मारंग का जो इशू है वो पूरे पाकिस्तान का इशू है, पूरा पाकिस्तान राइट्स मांग रहा है, बलूचिस्तान राइट्स मांग रहा है, सिंध में राइट्स मांगे जा रहे हैं, एजेके में आज 18वां दिन है और एजेके के अंदर 56 लोग ये मार चुके हैं पाकिस्तानी स्टेट, और वहां से पाकिस्तान से आजादी की, आजाद कश्मीर में बातें चल रही हैं, और लोगों का राशन पानी बंद किया गया है, बीबीसी ने उसको वैलिडेट किया है उस स्टोरी को। अब पाकिस्तान जो है वो बलूचिस्तान को बेच के खा रहा है, चाहे वो सोना हो रिकोडिक का, वो पाकिस्तान में रावलपिंडी और इस्लामाबाद में उसका सौदा होता है, कनाडा को बेच दिया जाता है, कॉपर होती है बलूचिस्तान की तो वो चाइना को बेच दी जाती है, रेयर अर्थ एलिमेंट जितना भी है, गवादर डीप सी पोर्ट है वो चाइना को बेच दी गई है, चाइना ने 60 बिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम के ऊपर, रिसोर्सेज सारी बलूचिस्तान की है या खैबर पख्तूनख्वा की है या सिंध की है, कराची की पोर्ट है, वो लोग जब अपने राइट्स मांगते हैं तो पैसा ये ऊपर ही ऊपर स्किम करके खा जाते हैं, करप्शन इतनी है। और इनको
0: मतलब क्या हम कह सकते हैं कि बलूचिस्तान में आसिम मुनीर की नीतियों ने भी हालात को और खराब दौर में पहुंचा दिया है?
1: जाहिरी बात है, अगर देखें श्वेता, बात वही है कि अगर इंडिया के पास फंड्स हैं ना, इकोनॉमी चल रही है ना, क्यों इकोनॉमी चल रही है, क्योंकि डेमोक्रेसी है, पब्लिक मैंडेट है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है और इकोनॉमी चलती है तो फंड्स आते हैं जो आप डेवलपमेंट पर लगा सकते हैं। यहां पे इन्होंने कब्जा करके बैठे हुए, इमरान खान को लोगों ने वोट दिया है, उसको जेल के अंदर डाल के बंद करके बैठे हुए, पपेट गवर्नमेंट चला रहे हैं। 7 सीटें जिन्होंने ली हैं उनको गवर्नमेंट्स दे दी हैं, तमाम पपेट इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चला रही है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, उसकी वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, पैसे है ही नहीं तो लगाएंगे कहां से। फिर आ गई बात पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला।
0: तो अच्छा, जो पीओजे के वाला पूरा एरिया है वहां पर भी बहुत लगातार प्रोटेस्ट सभी हो रहे हैं, वहां पर जो लोग हैं वो आवाज उठा रहे हैं। हालांकि बार बार ये कहा जा रहा है कि इंडिया सबको कह रही है कि आप ऐसा करो, लेकिन वहां के लोगों के हालात भी जब देखते हैं ना, तो कश्मीर में जम्मू में लोग कहते हैं कि देखिए हमारी डेवलपमेंट कितनी है, वहां पर क्या हाल है। तो वहां पर तो महिलाएं लड़कियां सब अभी प्रोटेस्ट कर रही हैं, ये यहां के प्रोटेस्ट को कैसे देख रहे हैं?
1: देखें, बलोचिस्तान वाला हाल ही जो है, महरंग बलोच और समी बलोच और ये हमारी जो बहनें हैं, ये पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही थी, इनके बापों को मिसिंग पर्सन बना के एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कर दी गई। स्टेट का पुराना तरीका कार 75 साल से चल रहा है, 3 साल से एक्सपोज हो गया है, वही काम इन्होंने किया है एजेके के अंदर, आजाद कश्मीर के अंदर जो है एग्जैक्टली लाशें मार के गायब कर दी गई हैं। औरतें और बच्चे छोटे छोटे इस वक्त, आज 18वां दिन है, सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो राइट्स डिमांड कर रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर एग्जैक्टली यही काम जो है जो पुरमन तरीके से करने की कोशिश की गई, जो इस वक्त अवामी एक्शन कमेटी एजेके के अंदर कर रही है, तो उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। उनके पास छुपने की जगह नहीं थी बलूचिस्तान के अंदर, शायद उनकी टेरेन इतनी ज्यादा नहीं थी जिसके अंदर वो उसको ब्लॉक कर सकते, छुप सकते, वेजिटेटेड टेरेन नहीं थी, बल्कि वो तो ओपनली इस्लामाबाद आके बैठी हुई थी। हमारी बहनें जो हैं, महिलाएं जो हैं, जो खवातीन हैं, वही काम इस वक्त। अगर आप देखें कि एजेके से लोग अगर रावलाकोट से निकल के या हजीरा से निकल के पीर पंजाल रेंज से निकल के इस्लामाबाद बैठ जाए तो ये उनको भी वहां पे अरेस्ट कर लेंगे और जेलों के अंदर डाल देंगे। इनको तो इनके पास क्योंकि देने के लिए कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ हर जो अथॉरिटेरियन स्टेट है जब उसकी इकोनॉमी नहीं चल रही होती तो वो फैशिस्ट पॉलिसीज के ऊपर बैंक करती है जो कि ये स्टेट कर रही है। और बेसिक इशू तो एजेके का भी यही है जो बलूचिस्तान का है कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन नहीं है, अवाम जिन लोगों को वोट देती है उनके वोट रातों रात चेंज कर देती है आर्मी और अपनी मर्जी के रिप्रेजेंटेटिव बना देती है। जिन लोगों को वोट दिया जाता है फॉर्म 45 के अंदर, उनको 47 के अंदर रातों रात वोट चेंज कर देती है पाकिस्तान की मिलिट्री और आईएसआई, और अपनी मर्जी के पपेट्स को बिठा देती है। तो जब पब्लिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी तो फिर लोगों के लिए तो कोई आवाज नहीं उठाएगा और हर कोई जो वहां पे लोग बैठे होंगे वो पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे जो कि कर रहे हैं।
0: चलिए, 99 साल यानी 99 ईयर्स की जेल के उस जो पाकिस्तान में आपके खिलाफ हो रहा है उसके बावजूद आप सच बोल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए मिर्जा आदिल।
1: थैंक यू श्वेता।
0: डॉक्टर मेहरंग बलूच की यह लड़ाई उनके पिता के अपहरण और हत्या से शुरू हुई थी, लेकिन अब उनको पाकिस्तानी सरकार ने आतंकवादी घोषित करते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी। पाकिस्तानी फौजी बूटों तले कुचली गई जिंदगियों में से डॉक्टर मेहरंग बलूच केवल एक नाम भर है, क्योंकि पाकिस्तान सरकार, अदालतें, पाकिस्तानी फौज और आसिम मुनीर के इशारे पर जो कुछ होता हुआ दिख रहा है कमोवेश वही सब हर उस शख्स के साथ होता आया है जिससे पाकिस्तानी फौज को दिक्कत या परेशानी होती है। पाकिस्तान के आईन को अपने जूतों तले रखने वाले और बंदूक की नाल से हुकूमत चलाने वाले रावलपिंडी के जनरलों ने पाकिस्तान को इस बर्बादी के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक
2: जितने भी साथी यहाँ पर मौजूद हैं सारे,
0: और पंजाब से लेकर पीओजे के तक हर तरफ सिर्फ जमीन लाल हो रही है। लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। जो विरोध कल तक बंद कमरों में था वो आज विद्रोह का रूप ले चुका है। जिन घरों को पाकिस्तानी सेना ने उजाड़ दिया आज उन्हीं घरों की असमत सड़कों पर उतरकर फौज के खिलाफ इनकलाब के नारे बुलंद कर रही हैं।
3: शर्म आनी चाहिए ऐसे मीडिया को, तूफ ऐलाना था ऐसे मीडिया के ऊपर। यहाँ पे रियासत के अंदर कत्ल किए जा रहे लोग और हमारा पाकिस्तानी मीडिया झूठी खबरें चला रहा है।
0: डॉक्टर मेहरंग बलोच को उम्र कैद देना कोई इकलौती घटना नहीं है, ये जनरल आसिम मुनीर के उस खूनी मंसूबे का हिस्सा है जो पूरे पाकिस्तान को लील जाना चाहता है। अपनी ही जनता का नरसंहार और अपनी ही आवाम पर जुल्म, ये नए पाकिस्तान के नए नियम हैं, लेकिन इन पर अमल कई सालों से चल रहा है। अपनी ही जनता का नरसंहार, अपनी ही आवाम पर जुल्म, ये नए पाकिस्तान के नए नियम हैं, लेकिन इन पर अमल कई सालों से चल रहा है। 21 मार्च 2025 क्वेटा यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान के सामने अपने हक के लिए आवाज उठा रहे बेगुनाह छात्रों पर सीधी गोलियां बरसाई गई। एक 12 साल के मासूम बच्चे समेत 3 लोगों की मौत के बाद जब अगले दिन अपनों की लाशों के साथ धरने पर बैठी मेहरंग बलोच और उनकी बहन ने इंसाफ मांगा तो मुनीर की जालिम फौज ने उन्हें जेल में डाल दिया। 13 अक्टूबर 2025 लाहौर, जुल्म की यह आग सिर्फ बलूचिस्तान तक नहीं रुकी, ये पाकिस्तानी पंजाब भी पहुंच गई। मुरीद के में टीएलपी के शांतिपूर्ण मार्च पर पाक रेंजर्स ने गोलियां चला दी। फायरिंग में 13 लोगों की जान चली गई, 150 से ज्यादा घायल हुए और करीब 5,500 से ज्यादा लोगों को जानवरों की तरह जेलों में ठूंस दिया गया। सितंबर 2025 खैबर पख्तूनवा, जरा मुनीर की फौज की सबसे बड़ी कायरता देखिए। ऑपरेशन अजमे इस्तकाम के नाम पर खैबर पख्तूनवा और वजीरिस्तान में महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाया गया। 22 सितंबर 2025 की रात को पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने ही नागरिकों पर JF-17 फाइटर जेट से बमबारी कर दी। इस बमबारी में महिलाओं और बच्चों समेत 30 बेगुनाह लोग मार दिए। मार्च में भी काटलांग में ड्रोन हमले से 11 नागरिक उड़ा दिए। जून 2026 पाक के अनाधिकृत कब्जे वाला जम्मू कश्मीर, जब आवाम अपनी मांगों के लिए सड़कों पर निकली तो फौज ने कत्लेआम मचा दिया। जून 2026 के आंदोलन में रावलकोट और मुजफ्फराबाद में कम से कम 24 लोग गोलियों से भून दिए गए।
4: पाकिस्तान के आवाम से, मजलूम आवाम से मेरी अपील है कि वो इस मुश्किल की घड़ी में कश्मीरियों का साथ दें।
0: बलूचिस्तान, पख्तूनख्वा और POJK की ये रोती हुई आंखें और सड़कों पर उतरी बहन बेटियां इस जुल्म को कभी नहीं भूलेंगी। बंदूक की नोक पर डराकर बनाया गया ये साम्राज्य अब ताश के पत्तों की तरह बिखरने वाला है।
5: हम तो अपने वसाइल से भी दस्तबरदार हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमें इसलिए बावर करा दिया गया है कि हम इंसान नहीं है।
0: इतिहास गवाह है, जब घर की असमत सड़कों पर इनकलाब बनकर उतरती है तो तानाशाहों के तख्तो ताज हवा में उड़ जाया करते हैं। पाकिस्तान के इस महाविनाश का इकलौता स्क्रिप्ट राइटर कोई और नहीं बल्कि वो शख्स है जिसका नाम है जनरल आसिम मुनीर। वॉर रूम में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: Shop the Sherwin-Williams 4th of July sale and get 30% off paints and stains June 26th through July 6th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
1: As world soccer hits the big stage, Fanatics Sportsbook is making every game day worth more. Earn up to 10% fan cash on your soccer bets, win or lose. That's real extra value you can unlock every match, all tournament long. And fan cash isn't just for betting. You can use it anywhere in the world of Fanatics. On game tickets, merchandise, collectibles, profit boosts, and more. One ecosystem, endless ways to spend. Plus, new customers get up to $1,000 in fan cash. That's $100 bet matched every day for your first 10 days. The world is ready. Are you? Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Must be 21 plus. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET. CT, call 888-789-7777. MA, call 800-327-5050. NY, call 877-8-HOPE-NY. MD, visit mdgamblinghelp.org. Not available in all states. Terms apply. See Fanatics Sportsbook app.
2: You may already think of TuneIn as your go-to audio app, but it's also your go-everywhere audio app. Because TuneIn works on just about every device you already use. Smart speakers? Yep. In your car? Absolutely. Phone or tablet? Yeah, of course. Wherever you are, your audio comes with you. And if you want to go hands-free, just say open TuneIn Live on your Alexa-enabled device and follow the interactive prompts to find the station you're looking for. No tapping, no searching. Just press play with your voice.
3: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
4: In association with
5: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
6: मंदिर चढ़ावे चोरी से जुड़ी हुई चढ़ावा चोरी के आरोपियों के घर पुलिस की रेड हुई है. अनुकल्प मिश्रा, टिन्नू यादव, मनीष यादव और लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, रमा शंकर मिश्रा के ठिकानों पर छापेमारी की गई है. ये भी आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अब उनके ठिकानों पर छापेमारी लगातार जारी है. इनके घर वालों से भी लगातार पूछताछ जारी है. जो तमाम नाम हमने आपको बताया, इनकी गिरफ्तारी पहले हो चुकी है और आपको बता दें कि आप पुलिस रेड इनके घर पर हुई है. जो घर वाले हैं उनसे पूछताछ जारी है. एक बार फिर से आप नाम सुनिए. अनुकल्प मिश्रा हैं, टिन्नू यादव हैं, मनीष यादव हैं, साथ ही साथ लवकुश मिश्रा हैं, अविनाश हैं, करुणेश हैं, रमा शंकर मिश्रा के ठिकानों पर छापेमारी हुई है और ये सभी गिरफ्तारियां पहले ही हो चुकी हैं. घर पर रेड के साथ ही जो घर वाले हैं उनसे पूछताछ की जा रही है. तमाम चीजों को, पेपर्स को, घरों को खंगाला जा रहा है. इस मामले से जुड़े हुए सबूत खोजे जा रहे हैं. तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संतोष शर्मा जुड़ गए. संतोष, क्या जानकारी मिल रही है और क्या सभी ठिकानों पर अभी भी छापेमारी चल रही है?
7: बिल्कुल, अभी भी छापेमारी चल रही है और मैं इस समय पर रमा शंकर मिश्रा, जो आरोपी जो गिरफ्तार किए गए 8 लोग उनमें से एक व्यक्ति है, और उनके घर पर, एक आरोपी के घर पर मौजूद हूँ. यहाँ पे परिजनों से पूछताछ की गई है, उनके पिता से पूछताछ की गई, उनके घर वालों से पूछताछ की गई है और उन घर वालों से जानकारी जुटाई गई है. रमाशंकर के पिताजी भी हैं, पुजारी हैं और उनके घर से भी. क्या ले गई है बाबा आपके घर से?
8: केवल आधार कार्ड नंबर लिए और पासबुक ले गए हैं बस. अच्छा,
7: क्या पूछताछ कर रही थी आपसे?
8: पूछताछ कर रही थी मतलब जाँच के लिए, और वो यहाँ रहते हैं कि नहीं रहते हैं, कहाँ वो हैं. तो हम बताए कि कमरा पे अलग लिए रहते हैं, दो ढाई साल से यहाँ रहते नहीं हैं, आना जाना भी यहाँ का नहीं है, एक दिन कभी इस मंदिर के अंदर पाँव नहीं रखते हैं.
7: कब से नहीं आया?
8: दो ढाई साल हो गए यहाँ नहीं आए. हाँ, दो साल.
7: तो राम मंदिर में कब से काम कर रहा था, क्या काम करता था रमाशंकर?
8: 5-6 साल हो गए, तब वहाँ पैसा गाने में बताओ था गाना कर्मचारी.
7: अच्छा, हाँ. अभी पैसा वैसा ज्यादा देखा आपने रमाशंकर के पास? बहुत
8: कभी नहीं, पैसा तो मांगा रहा तो पैसा पाई नहीं है? पैसा मांग लिया तरह के देगी कहीं जरूरत लगे.
7: पुलिस तो कह रही है कि सब मिलके 80 लाख रुपया चोरी कर लिए चढ़ावे से.
8: कुछ हो कि नया पैसा यहाँ कहूँ देखबे ना आया हुआ है. 80 लाख कहूँ पूरे भूमंडल में पूरे देख लें.
7: सब 7 लोग जो है उनमें से कहा कि सब लोग मिलकर 80 लाख रुपए.
8: हाँ तो हम कुछ एक नया पैसा यहाँ जांच किए तो वही गए, बाकी यहाँ कुछ नहीं मिला।
7: ये रमाशंकर के पिता थे और इसके अलावा और भी परिजन जो घर है के भाभी हैं।
6: बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इन तमाम लोगों से बात करने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी और अहम खबर के बारे में हम बात करेंगे। केतन अग्रवाल मर्डर केस से जुड़ी बड़ी और अहम खबर, पुणे पुलिस पहुंची अलीगढ़ किले में सीन को रिक्रिएट करने के लिए। आसिफ सिया के सामने पूरे घटनाक्रम को दोहराया गया है। पुणे पुलिस को आज सुबह सिया को लेकर लोहगढ़ पहुंच गई थी और वहां पर सीन को रिक्रिएट किया गया कि किस तरीके से यहां से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। सिया पुलिस के साथ थी और लोहगढ़ किले ले जाकर के इस पूरे सीन को यहां रिक्रिएट पुलिस की तरफ से किया गया। सुबह सुबह पुलिस पहुंच गई थी पुणे के इस लोहगढ़ फोर्ट पर। तो पुणे के केतन मर्डर केस के मामले में लगातार छानबीन जारी है और आज सीन को रिक्रिएट किया गया है इसी फोर्ट पर।
9: लोहगढ़ किले के यहाँ अभी मौजूद है जहाँ डीवाईएसपी यहाँ मौजूद है। सर, सीन को रिक्रिएट किया गया, एग्जैक्टली किस तरीके से ये पूरा हुआ?
10: आज सिया ने बताया कि उसने इन्फॉर्मेशन दी जैसे हुआ था, वो जो भी डिस्कवरी ऑफ फैक्ट है उस हिसाब से हमने सीन रिक्रिएट किया है।
9: दोनों आरोपियों को आप लेके आए थे?
10: सिया थी,
9: चेतन चौधरी जो है उसका भी अभी फॉरेंसिक करना है मैं, क्योंकि जिस मतलब जहां से उसने एंट्री की थी उसी तरीके का वॉक करना और वो सीसीटीवी में फॉरेंसिक एविडेंसेस लेना वो भी बाकी।
10: अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, आज सिया का रिक्रिएशन हुआ है, उसी रिक्रिएशन हमने किया हुआ है।
6: और इसी के साथ हमें रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
0: Shop the Sherwin-Williams 4th of July sale and get 30% off paints and stains June 26th through July 6th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
11: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
1: As world soccer hits the big stage, Fanatics Sportsbook is making every game day worth more. Earn up to 10% fan cash on your soccer bets, win or lose. That's real extra value you can unlock every match, all tournament long. And fan cash isn't just for betting. You can use it anywhere in the world of Fanatics. On game tickets, merchandise, collectibles, profit boosts, and more. One ecosystem, endless ways to spend. Plus, new customers get up to $1,000 in fan cash. That's $100 bet matched every day for your first 10 days. The world is ready. Are you? Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Must be 21 plus. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET. CT, call 888-789-7777. MA, call 800-327-5050. NY, call 877-8-HOPE-NY. MD, visit mdgamblinghelp.org. Not available in all states. Terms apply. See Fanatics Sportsbook app.
3: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
12: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस,
13: हेक्सा ऑर्गेनिक, रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: दफ्तर जाने की जल्दी हो या फिर देर रात एयरपोर्ट से घर लौटना हो, ओला उबर जैसी कैब सर्विसेज हमारी लाइफ का खास हिस्सा बन चुकी हैं। आरामदेह सफर और एक क्लिक पर गाड़ी हाजिर होने की सहूलियत ने आम आदमी को इसका आदि बना दिया है। लेकिन आने वाले दिनों में जेब ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए। टैक्स के नए नियमों की वजह से ऐप बेस्ड टैक्सी सेवाएं काफी महंगी होने वाली हैं। दरअसल एक नए सर्वे से जो जानकारी बाहर आई है वो पैसेंजर्स के साथ साथ ड्राइवरों को भी बड़ी टेंशन देने वाली है, जिसके मुताबिक ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं पर 5% एक्स्ट्रा GST लगाने की तैयारी चल रही है। इस अतिरिक्त टैक्स से पैसेंजर्स पर सीधे किराए का बड़ा बोझ बढ़ने की आशंका है। टैक्सी चलाने वाले ड्राइवरों को डर है कि इस नए बदलाव के बाद उनके लिए घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। ज्यादातर ड्राइवर उन प्लेटफॉर्म्स को चुनना पसंद करते हैं जहां वो फिक्स चार्ज देकर जुड़ते हैं और पूरी कमाई अपने पास रखते हैं। नया टैक्स लागू होने के बाद उनका पूरा गणित गड़बड़ा सकता है। सर्वे में दावा किया गया है कि 75% से ज्यादा ड्राइवर्स को डर है कि नए टैक्स की वजह से उनकी कमाई घट जाएगी। कमाई कम होने के डर से कई ड्राइवरों ने कैब एग्रीगेटर के साथ काम छोड़कर दूसरा काम तलाशने की बात कही है। 2/3 से ज्यादा पैसेंजर्स का कहना है कि किराया बढ़ने पर वो ऐप से कैब बुक करना कम कर देंगे। टैक्स के इस नए बोझ के बाद मार्केट में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। महंगे किराए की वजह से बड़ी संख्या में लोग और ड्राइवर दोनों ही दूसरे ऑप्शंस की तलाश में जुट जाएंगे। मौजूदा समय में टैक्स के सिस्टम को समझना बेहद जरूरी है। फिलहाल ओला और उबर जैसी कंपनियां जिस मॉडल पर काम कर रही हैं, उसमें टैक्स का पूरा जिम्मा कंपनियों के पास ही होता है। फिलहाल पैसेंजर्स अपनी कुल राइड वैल्यू पर 5% GST देते हैं। इस स्टैंडर्ड कमीशन बेस्ड मॉडल के तहत कंपनियां इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर सकती और कानूनी तौर पर ऐप एग्रीगेटर कंपनियां ही पैसेंजर्स से ये टैक्स वसूल कर सरकार को जमा करती हैं। इस पूरे सिस्टम में होने वाले किसी भी बदलाव का सीधा असर आपकी पॉकेट और ड्राइवरों की रोजी रोटी पर पड़ेगा। ऐसे में देखना होगा कि आम जनता को राहत देने के लिए आखिर क्या कदम उठाए जा सकते हैं। आदित्य के राणा आज तक।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

बमबारी की ईरान ने कुवैत से बहरीन तक अमेरिकी बेस पर बोला हमला। इस दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्रपति वेवर राम कलावंस के साथ समुद्री सुरक्षा रक्षा सहयोग पर वार्ता। देर शाम राष्ट्रीय दिवस समारोह में शिरकत करेंगे।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर जांच तेज। अयोध्या में टिड्डू यादव समेत आरोपियों के घरों पर छापेमारी। परिवार वालों से सवाल जवाब। केतन अग्रवाल हत्याकांड में जांच तेज। क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए आरोपी सिया और चेतन को लोहगढ़ किले तक ले गई पुलिस। कल माता पिता से 12 घंटे तक सवाल जवाब।

मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सब से जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती है। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी है। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों, जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है। और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों, जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी और यह कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेकविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते। इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की यह ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है और इस जन भागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पूलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे।
कितने ही लोगों ने

परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम, यानि केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है, 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11,00,000 परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है। हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है। और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती। और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है। उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हरगीला के घोंसले बने होते थे। सोचिए,
एक ऐसा पक्षी

0: जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हर गिला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं, जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक से अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए AI इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य घड़ रही है। दो साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत, संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्म्य शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज। रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है, इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती है। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा, इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे, लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया। ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको वृक्ष में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको वृक्ष का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो, वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती हैं। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है आपके आसपास की कोई छोटी सी पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और हाँ, जल संचय तो करना ही करना है, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: तो मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से हर क्षेत्र में भारत तरक्की कर रहा है, भारतवासियों ने कैसे कठिन समय पर साथ दिया है, साथ ही वेस्ट मैनेजमेंट में किस तरह से महिलाएं नाम आगे बढ़ा रही हैं और कैसे इस बारिश में बूंद बूंद पानी को बचाने की हम सबको जरूरत है, हम सबकी ये जिम्मेदारी है। आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे राम मंदिर में जो दान चोरी हुआ है उसके बारे में।
2: जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है।
3: इसमें जितने बड़े बड़े राक्षस शामिल हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है।
4: कह रहे हैं कि 11 जुलाई को बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि इस्तीफा स्वीकार न स्वीकारो।
1: और इस बुलेटिन में बड़ी और अहम खबर, सबसे पहले आपको बता दें अयोध्या से, जहां चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज हुई। आज तमाम गिरफ्तार आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, साथ ही साथ परिजनों से भी पूछताछ जारी है। इस मामले को लेकर सियासत भी अब तेज हो गई है। तो अयोध्या में रहने वाले सभी आरोपियों के घर पर छापेमारी जारी है। पुलिस इस वक्त रमाशंकर मिश्रा, रामशंकर यादव, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला और अन्य आरोपियों के घरों पर ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। वो मौजूद हैं, करीब घंटे भर से वहां पूछताछ लगातार जारी है। परिवार वालों से तलाशी ली जा रही है और तमाम सबूतों को जोड़ा जा रहा है, जुटाया जा रहा है। इन तमाम लोगों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है और आपको बता दें कि लगभग घंटा भर हो चुका है जब से परिवार वालों के साथ पूछताछ की जा रही है, खंगाला जा रहा है तमाम चीजों को, क्योंकि रेड की गई है इन तमाम जो आरोपी हैं उनके ठिकानों पर। आपको ये भी बता दें कि अयोध्या के रहने वाले हैं तमाम आरोपी। इस वक्त रमाशंकर मिश्रा, रामशंकर, अनुकल्प, अविनाश और बाकी के जो आरोपी हैं उनके अलग अलग ठिकानों पर पुलिस की जो टीमें हैं वो पहुंची हुई हैं रेड करने के लिए। परिवार वालों से पूछा जा रहा है, तलाशी अभियान जारी है। रमाशंकर मिश्रा के घर पर पुलिस की टीमें सुबह से ही पहुंच गई थी और छापेमारी के साथ ही परिजनों से भी पूछताछ की गई। परिजनों से बातचीत की गई है कि तमाम सबूतों को तलाशा गया है। रमाशंकर मिश्रा के परिजनों से पूछताछ अभी भी जारी है। परिवार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, घर की तलाशी ली गई है और कुछ जो आईडी प्रूफ है उन्हें लेकर पुलिस यहां से गई है।
5: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के सभी आरोपियों के घर पर पुलिस की छापेमारी चल रही है। मैं इस समय पर जो आरोपी गिरफ्तार किए गए उनमें से एक रमाशंकर मिश्रा के घर पर मौजूद हूं। ये रमाशंकर मिश्रा के परिजन हैं, पिता हैं, भाभी हैं, बहन हैं, ये तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है। बता दें कि अयोध्या पुलिस ने इन सभी आरोपियों के घर पर पूछताछ की जा रही है। देखिए, लिखा पढ़ी की जा रही है, परिजनों से जानकारी जुटाई जा रही है कि रमाशंकर मिश्रा कब आया था, कब से इसके रह रहा था, कहाँ रह रहा था, अगर वो परिजनों के साथ नहीं रह रहा था। इसके साथ ही अभी बीते दिनों से क्या परिवार की आय थी, परिवार के कितने सदस्य हैं, रमाशंकर मिश्रा राम मंदिर में काम कब से कर रहा है, ये तमाम जानकारियां जुटाई जा रही हैं। इतना ही नहीं, इन सभी आरोपियों के घरों पर भी जांच की जा रही है, पड़ताल की जा रही है, दबिश दी जा रही है। पुलिस को जो शुरुआती जांच में जो तमाम तथ्य मिले, तमाम जानकारियां मिली, उसके बाद करीब 80 लाख रुपए घरों से बरामद हुए थे। उसी के बाद जो पुलिस की तफ्तीश में तथ्य सामने आए, इसके बाद आज ये पड़ताल की जा रही है और अयोध्या के रहने वाले सभी आरोपियों के घर पर इसी तरीके से दबिश दी जा रही है। चाहे वो रामशंकर यादव, टिन्नू यादव हो, मनीष यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, सभी आरोपी जो अयोध्या के रहने वाले हैं, वहां पर अयोध्या पुलिस की छापेमारी जारी है। कल जुडिशियल कस्टडी खत्म हो रही है, कल सभी आरोपियों के दोबारा से जुडिशियल कस्टडी को लेकर सुनवाई होनी है। उससे पहले अयोध्या पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन जारी है। अयोध्या से सहयोगी मयंक शुक्ला और कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार आज तक।
1: गिरफ्तार आरोपी अनुकल्प मिश्रा के यहां पर भी छापेमारी चल रही है, वहां से और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आप तक हमारे संवाददाता सिमर चावला।
6: एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अयोध्या पुलिस ने उन सभी ठिकानों पर छापेमारी की है, उन आरोपियों के घर पर जो इस पूरे राम चढ़ावा चोरी में शामिल थे और जिन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। इस वक्त मैं मौजूद हूं अनुकल्प मिश्रा के घर के बाहर। ये वही घर है जो 2 साल पहले उनके द्वारा खरीदा गया था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। सुबह से ही लगभग 6 टीमें अयोध्या पुलिस की अलग अलग आरोपियों के घर में छापेमारी करने का काम कर रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर हर एक लोकेशन पे यहाँ पर मौजूद है। ये अनुकल्प मिश्रा का घर है, वही जिनके पास ये जिम्मेदारी थी कि चढ़ावे की रकम को गिना जाए, बैंक में जमा कराया जाए। वहां अंदर इनकी बहन से और इनकी माँ से जो है वो पूछताछ की जा रही है। यही वो जगह है जहां पे कल आज तक की टीम पहुंची थी और दिखाया था कि कैसे 2 साल पहले ही ये 40 लाख रुपए का घर अनुकल्प मिश्रा द्वारा खरीदा गया था और आज पुलिस ने उसका संज्ञान लेके यहां पर पूछताछ के लिए अपनी जो है टीम भेजी है। ये वही घर है आप देखेंगे जो कुछ दो साल पहले खरीदा गया था। सवाल उठ रहे थे कि कैसे जो व्यक्ति कुछ हजारों की नौकरी करता है वो 40 लाख रुपए का घर कुछ समय पहले कैसे ले सकता है। इसी तरीके के तमाम जो सवाल हैं वो पुलिस के जहन में थे। पूछताछ में पूछा जाएगा कि जो आय है उसका स्रोत क्या है और भी कौन कौन से ऐसे एसेट या प्रॉपर्टी है जो आरोपियों ने बनाई है। साथ ही साथ जो पड़ोसी है उनसे भी जानकारी ली जाएगी कि किस तरीके से जो आरोपी है कब यहां पे आए, क्या इनका रहन सहन था। तमाम इन जानकारियों के लिए एक बड़ी कार्रवाई अयोध्या पुलिस ने करी है और 8 में से उन 6 आरोपियों के घर में छापेमारी की है जिनका घर अयोध्या में है। जो 2 आरोपी थे जिनका अयोध्या से घर बाहर था उनको छोड़कर सभी आरोपियों के घर आज टीम की छापेमारी की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, अयोध्या आज तक।
1: तो हमारे साथ इस वक्त हमारे दोनों ही सहयोगी जुड़ गए हैं, सिमर चावला और साथ ही साथ संतोष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, सबसे पहले आप बताइए जरा, परिवार वालों से जब बात की है पुलिस ने, कुछ जानकारी परिवार वालों ने दी कि आखिर क्या उनसे बातचीत हुई है, क्या पेपर्स लेके वो गए?
7: कई सारे एंकर खड़े होंगे लाइन से।
8: देखिए, रमाशंकर मिश्रा के परिवार वालों से बात की, उनके पिता से बातचीत की गई, बयान दर्ज किए गए। उनका कहना है कि रमाशंकर मिश्रा यहाँ 2 साल से रह ही नहीं रहा था जहाँ पर पुलिस की टीमें गई थी, और वो जब से राम मंदिर में करीब 6 साल से नौकरी कर रहा था, नोट गिरने का काम कर रहा था, तब से शुरुआत में रहा, लेकिन 2 सालों से वो अलग रह रहा था। पुलिस उनके घर से बैंक पासबुक लेकर के गई है, कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर के गई है। परिजनों का कहना है कोई कैश ज्वेलरी बरामद नहीं हुई है, कोई ऐसी रमाशंकर मिश्रा के घर से बरामद नहीं हुई, तो परिजनों का कहना है। लेकिन मैं इस समय पर एक दूसरी जगह पर मौजूद हूँ। ये रामशंकर यादव टुन्नू यादव का घर है और उसके साथ ही दूसरे जो उनका भतीजा जो आरोपी बनाया गया मनीष यादव, इन दोनों का घर है। ये मनीष यादव का घर है जहाँ पुलिस की टीमें मौजूद है, और इसी गली में जब आप जाएंगे, ये अयोध्या के कोतवाली क्षेत्र का ये इलाका है, स्वर्ग द्वार ये मोहल्ला कहा जाता है। और ये दूसरा जो घर है, ये जो घर है ये रामशंकर यादव टुन्नू यादव का है। दोनों ही घरों में पुलिस की टीमें अंदर है, पूछताछ की जा रही है, पड़ताल की जा रही है। और ये रामशंकर यादव टुन्नू यादव का वो घर है जहाँ पर उनके परिवार वाले रहते हैं। एक दूसरा जो हॉस्टल है जो दुर्गापुरी इलाके में है, वहाँ पर रामशंकर यादव के हॉस्टल में तमाम स्टूडेंट्स रहते हैं, पुलिस की टीमें हैं, परिजनों से पूछताछ की जा रही है, जानकारी जुटाई जा रही है कि कब आए थे, कैसे आए थे, ये तमाम जानकारियां बेहद अहम है जिनको लिया जा रहा है। और इसी तरीके से अयोध्या के रहने वाले
1: तस्वीरें भी संतोष लगातार दिखा रहे हैं, वहां पुलिस अभी भी मौजूद है, तमाम बातचीत की जा रही है, तमाम जो आरोपियों के घर पर छापेमारी हुई है, सबूत वहां से तलाशे जा रहे हैं। एक और आरोपी है अविनाश शुक्ला, किराए के मकान पर भी पुलिस ने वहां छापेमारी की है, साथ ही साथ वहां रहने वाले तमाम जो पड़ोसी हैं उनसे पुलिस जानकारियां जुटा रही है। अविनाश शुक्ला से जुड़े ठिकानों पर हो रही छापेमारी की जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी सिमर चावला लगातार जुड़े हुए हैं। सिमर का हम रुक करेंगे, उससे पहले हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर छापेमारी लगातार जारी है, पड़ोसियों से, आसपास रहने वाले लोगों से, और जो जो लोग परिवार के मेंबर्स घर में मौजूद हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे सिमर का। सिमर, अविनाश शुक्ला के बारे में क्या जानकारी मिल पाई है पड़ोसियों से, क्या कुछ कहा जा रहा है?
6: बिल्कुल शशि, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अविनाश शुक्ला के पुराने घर पे जहाँ पर वो किराए पे रहता था। पुलिस द्वारा जानकारी जुटाई गई है, पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पुलिस के जो फोर्स है वो यहाँ पर मौजूद है। यहीं पर वो कुछ समय पहले किराए पर रहता था और उसके बाद यहाँ से मकान खाली करके चला गया। पुलिस के पास ये जानकारी थी कि कैसे इसका जो परमानेंट रेजिडेंस है वो प्रतापगढ़ में है, लेकिन यहाँ पर भी वो कई समय से रह रहा था। इसके बाद से जो नीचे आप देखेंगे यहाँ पर दुकान है, यहाँ पर जो शॉपकीपर है, इनसे भी पुलिस ने पूछताछ करने का काम किया है। लगातार पुलिस के जो जवान है अभी भी अंदर मौजूद है और कहीं ना कहीं जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है शॉपकीपर से। यहाँ पर इनका कहना है कि एक महीने पहले ही इन्होंने यहाँ पर अपना जो घर है वो खाली किया है, और कभी कभार आते थे, अकेले रहते थे और ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करते थे। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न जो है वो सामने निकल कर आया है कि कैसे अविनाश शुक्ला का घर, लवकुश मिश्रा का घर और अनुकल्प मिश्रा का घर, जो तीन मुख्य आरोपी हैं, इनका घर 100 से 200 मीटर की दूरी पर ही है। तो कहीं ना कहीं पुलिस इस पैटर्न पे भी इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्या ये लोग पहले से ही एक दूसरे को जानते थे जब ये ट्रस्ट में काम करते थे, और क्या दो तीनों की साठ गांठ आपस में थी। हमने पड़ोसियों से बात करी, उनका कहना है कि ये तीनों आपस में ही साथ में घूमते थे और कहीं भी जाना होता था तो हम लोग को मोहल्ले में साथ ही दिखते थे। तो कहीं ना कहीं इस पैटर्न पे भी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्या मिले मिलके या फिर एक पूरे उस प्री प्लान्ड रूप से इन तीनों ने इस कार्रवाई में या फिर जो मिस मैनेजमेंट है, डिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स है, उसमें कहीं ना कहीं काम किया है। तो सभी सबूतों को इकट्ठा करने का काम किया जा रहा है ताकि कल जब दोबारा पेशी की जाए इन सभी आरोपियों की कोर्ट में तो पुलिस के पास पुख्ता जानकारी हो। इसलिए जो है पुलिस आज की पूरी कार्रवाई जो करेगी शाम को एनालाइज करेगी कि क्या साक्ष्य उनके पास है, उसी आधार पर तय किया जाएगा कि क्या पुलिस कस्टडी मांगी जाएगी या फिर वापस से एक बार लोग जुडिशियल कस्टडी में भेजे जाते हैं। शशि
1: बहुत बहुत शुक्रिया सिमर आपका और बहुत बहुत शुक्रिया संतोष आपका भी इस तमाम जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आज जिन जिन आरोपियों के घरों पर अयोध्या में पुलिस ने छापेमारी की है या जो लगातार छापेमारी जारी है उनमें से कई जगहों पर आज तक की टीमों ने एक दिन पहले जाकर ही जानकारी जुटाई थी, आरोपियों के परिजनों से बात की थी और आरोपों पर जवाब भी मांगे थे। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखें।

0: राम भक्त का चढ़ावा चोरी कर गुनहगारों ने संपत्ति बनाई, जमीन खरीदी, घर खरीदे, गाड़ी खरीदी, बंगला खरीदा। लेकिन कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। भांडा फूटा तो काली करतूतों का कच्चा चिट्ठा सामने आने लगा। गिरफ्तार आरोपियों पर शिकंजा कसा है। एसआईटी की जांच और तफ्तीश जारी। आज फिर अयोध्या पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव के आवास पर छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक टिन्नू के घर वालों से भी पूछताछ हुई है। आरोप है कि रामशंकर यादव ने अकूत संपत्ति बनाई है। अयोध्या के दुर्गापुरी कॉलोनी में स्थित ये इमारत देखिए, ये बिल्डिंग है रामशंकर यादव का। ये हॉस्टल है जिसमें फैजाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र किराए पर रहते हैं। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद रामशंकर उर्फ टिन्नू को पुलिस इस हॉस्टल में लेकर आई थी और यहाँ से करीब 20 लाख रूपए बरामद किए।
1: इन दोनों के ही निशानदेही पर लगभग 20 लाख रुपए अयोध्या पुलिस ने बरामद किए हैं। ये रूम है, ये हॉस्टल है। इस हॉस्टल में जो अवध विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र हैं वो रहते हैं और वो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। फैजाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तमाम छात्र इस तरीके के ये हॉस्टल्स हैं। यहाँ पे तमाम लड़के भी रहते हैं।
0: एक अन्य गिरफ्तार आरोपी रामाशंकर मिश्रा के घर पर भी आज तक की टीम पहुंची। रामाशंकर मिश्रा की जिम्मेदारी दान पात्रों को काउंटिंग रूम तक पहुंचाने और उसकी निगरानी की थी, लेकिन आरोप है कि निगरानी करते करते रामाशंकर खुद हाथ साफ करने लगा। दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर चढ़ावे की रकम चोरी शुरू कर दी। हालांकि परिजन ऐसे किसी भी आरोप से साफ साफ इनकार कर रहे हैं।
1: चढ़ावा चोरी के मामले में पुलिस ने जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया उसमें एक शख्स रामाशंकर मिश्रा का भी है। रामाशंकर मिश्रा जो अयोध्या के ही मीरापुर इलाके के रहने वाले, मैं इस समय पर उस जगह पर मौजूद हूं जहां पर रामाशंकर मिश्रा का पूरा परिवार रहता रहा है। ये पूरी एक छोटी सी बगिया है और यहाँ पे तमाम परिवार रहते हैं। सर ये इलाका क्या कहते हैं?
2: राम सखा बगिया।
1: राम सखा, ये कैसे लोग रहते हैं, परिवार रहते हैं क्या?
2: ये हमारे मंदिर के पुजारी हैं।
1: अच्छा।
2: और पुजारी के नाते इनको कमरा उमरा दिया गया है, यहीं रहते हैं और इनका एक बच्चा रहता है और पुजारी जी।
1: तो ये रामाशंकर मिश्रा ही पुजारी है, इनके पिताजी पुजारी?
2: इनके पिताजी पुजारी हैं।
1: अच्छा। रामाशंकर मिश्रा का परिवार ये सामने रहता है?
2: परिवार नहीं है,
1: उनके भाई
2: भाई हैं।
1: अच्छा। पुलिस के दस्तावेजों में जो पता लिखा है रामाशंकर मिश्रा का वो इसी इलाके का लिखा है, इसी जगह का लिखा है।
0: एक और गिरफ्तार आरोपी अनुकल्प मिश्रा के घर भी आज तक की टीम पहुंची। बताया जा रहा है कि अनुकल्प ने 2 साल पहले ही 40 लाख का घर खरीदा था, लेकिन परिजन कह रहे हैं कि वो बेगुनाह है।
3: शासन द्वारा कहा गया है कि वो इन्वॉल्व थे इस पूरी चढ़ावा चोरी में। आपका क्या पक्ष है, आप क्या कहना चाहेंगे?
4: मेरे भाई को फंसाया जा रहा है। नेहा मेरी कुछ नहीं है, उनसे शादी हुई थी चाचा की 10 साल से, उनका केस चल रहा है, उनका मैटर चाचा चाची का है, वो अलग जाने।
0: उधर ट्रस्टी अनिल मिश्रा पर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उनके घर वाले तमाम आरोपों को खारिज कर रहे हैं। वो भरोसा जता रहे हैं कि एसआईटी की जांच में एक एक सच सामने आ जाएगा।
5: ये चंपत जी को तो मैं जानता हूँ, वो कोई है नहीं, उनके घर परिवार सब कुछ छोड़ करके उन्होंने ये किया है, ये सब करना होता तो ये सब ना करते। पिताजी को मैं जानता हूँ, सब शुरू से ही जब संगठन में थे तभी से उन्होंने किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत किया है। लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते इस पे मैं कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि एसआईटी जांच कर ही रही है, वो बताएगी क्या है क्या नहीं है। बाकी हम तो अपने लेवल से जानते ही हैं कौन क्या है क्या नहीं है।
6: आप बोलते हैं उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट या फिर आपकी सब चिंता करने की जरूरत नहीं है, जैसे एक परिवार जो है जिस तरीके से भावना
5: सपोर्ट, क्या चिंता कहीं करेंगे भाई, कुछ आदमी करेगा तब तो चिंता करेगा ना, ऐसे अननेसेसरी परेशान होने से कोई फायदा नहीं।
0: इस मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपी सोमवार तक न्यायिक हिरासत में है। पुलिस 29 जून को रिमांड खत्म होने के बाद फिर से उन्हें कोर्ट में पेश करेगी। सिमर चावला के साथ संतोष कुमार शर्मा, अयोध्या आज तक।
7: तो चढ़ावा चोरी पर जबरदस्त हंगामा जारी है लगातार। अखिलेश यादव चढ़ावा चोरी के आरोपों पर सरकार को घेर रहे हैं, तो आरएसएस का कहना यह है कि इस पर सियासत अब नहीं होनी चाहिए।
8: लोगों को पहले भी यही था भावना कि ये धर्म से ज्यादा धन की तरफ ध्यान देते हैं, इनके लिए धन ही धर्म है, धर्म बाद में पहले धन। और ये जो हुआ है व्यवहार ये बहुत चिंताजनक है, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है, किसी व्यक्ति की बात नहीं होनी चाहिए। तो ये आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया है वो प्रभु श्री राम कभी उन लोगों को माफ नहीं कर सकते।
9: ऐसा है, एसआईटी है, वो सब प्रकार से छानबीन करके जो भी कसूरवार हैं उनको पकड़ रही है, इंगित कर रही है। इसलिए किसी भी नेता ने इस पर राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार, मंदिर ट्रस्ट, समाज इतना जागरूक है, वो कोई बेइंसाफी नहीं होने देगा।
10: सर, अखिलेश कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे और जो गौरव है उसको स्थापित करेंगे अयोध्या का।
9: अयोध्या का गौरव था, है और सदा रहेगा। वो स्थापित करने वाले कौन होते हैं? क्या वो राम को स्थापित करेंगे? राम तो स्थापित हैं, युगों से स्थापित हैं, जनकन में हैं। इसलिए राजनेताओं ने राजनीति नहीं करनी चाहिए, वो भक्त बनकर जिए।
7: तो एक दिन पहले उद्धव ठाकरे ने भी चढ़ावा चोरी को लेकर सरकार को घेरा था, उन्होंने भी बयान दिया था, सुनिए।
11: गावातला काळ्या कुत्र्याने विचारलं नसतं आणि अशी हिंदुत्वाची लाट निर्माण झाली, राम मंदिर निर्माण झालं, काय अभिमान वाटला आपल्याला। आणि त्या राम मंदिरावरती दरोडा घालणारे आत्ताचे बाबर आहेत हे। त्या काळी मंदिर पाडलं गेलं होतं, या काळी मंदिर बांधून लुटणारे ही बाबराची औलाद नाही तर दुसरी कोणाची औलाद आहे? गद्दारी फक्त उद्धव ठाकरेशी नाही झालेली, गद्दारी फक्त शिवसेनेशी किंवा गद्दारी तुमच्याशी नाही झालेली, गद्दारी या देशातल्या हिंदूंशी झाली आहे, हिंदूंच्या भावनांशी झालेली आहे, हिंदुत्वाशी झालेली आहे गद्दारी आहे।
7: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस, हेक्सा ऑर्गेनिक।
13: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
14: As world soccer hits the big stage, Fanatics Sportsbook is making every game day worth more. Earn up to 10% fan cash on your soccer bets, win or lose. That's real extra value you can unlock every match, all tournament long. And fan cash isn't just for betting. You can use it anywhere in the world of Fanatics. On game tickets, merchandise, collectibles, profit boosts, and more. One ecosystem, endless ways to spend. Plus, new customers get up to $1,000 in fan cash. That's $100 bet match every day for your first 10 days. The world is ready. Are you? Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Must be 21 plus. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET. CT, call 888-789-7777. MA, call 800-327-5050. NY, call 877-8-HOPE-NY. MD, visit mdgamblinghelp.org. Not available in all states. Terms apply. See Fanatics Sportsbook app.
13: You hear it once and remember everything.
15: Too sexy for your party. Too sexy for your party.
13: One Hit Wonders brings back the songs that hit fast but stay forever. They own the moment, ruled the charts, and live forever in our hearts every time they play. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search One Hit Wonders to start listening now.
16: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: in association with Hind, bade aaram se. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you? Vimal, bolo zuba kesri. Cool, stylish fans. Enhance home decor with beautiful fans. Punjab National Bank, bharose ka prateek.
1: पत्रकारिता के गुर यहाँ नहीं सीखे तो क्या सीखे, नाम ही काफी है। इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
2: देखिए बिल्कुल मैं इस समय पर उस कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद हूं। आप देखिए किस तरीके का ये एंट्री एग्जिट पॉइंट था और ये बहुत छोटा सा कोचिंग सेंटर था जहां पर लोग फंसे थे और उसके बाद ये अंदर का ये पूरा नजारा है। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि पूरा सब कुछ तहस नहस हो गया और 15 लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में SIT गठित की है। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार आज तक।

0: बात निकली है तो दूर तलक जा रही है, चोरी पकड़ी गई है तो खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं, पर्दे में छिपे राज बेपर्दा होते जा रहे हैं, चोरों की कलई खुलती जा रही है। चढ़ावा चोरी का आरोप उन पर है जो राम भक्तों से मिलने वाले चढ़ावे के रखवाले बन बैठे थे। सब कुछ सेट था, चोरी कैसे करनी है, कैसे ठिकाने लगाना है, कैसे राम भक्तों की आंखों में धूल झोंकना है, सब कुछ। तभी तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि बार बार आस्था पर चोट की गई। पहली FIR के बाद चौंकाने वाले खुलासे हुए। खुलासे
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

ताबड़तोड़ छापेमारी। पुलिस की छह टीमें घरों की तलाशी में जुटी, घर वालों और पड़ोसियों से पूछताछ। केतन अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस ने किया क्राइम सीन का रिक्रिएशन। मुख्य आरोपी सिया को लेकर लोहगढ़ किले ले गई थी पुलिस। 18 जून की वारदात के बारे में पूछा गया। त्योहार में जहरीली साजिश के खुलासे से मुंबई में हड़कंप। मोहर्रम के जुलूस से पहले भाईखाला में 14,900 जिंक फॉस्फाइड वाले कैप्सूल मिले। संदिग्ध से पूछताछ जारी। शेल्स दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति के साथ समुद्री सुरक्षा रक्षा सहयोग पर वार्ता। देर शाम राष्ट्रीय दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। और अमेरिका ईरान में युद्ध विराम टूटने का खतरा। 24 घंटे में दूसरी बार अमेरिका ने हॉर्मुज के पास 10 ईरानी

0: स्वर्ग और पृथ्वी कहीं आकर अगर मिलते प्रतीत होते हैं तो वो है कैलाश में। हर हर ओम
1: नमः शिवाय। भोले बाबा सिलेक्ट करते हैं कि किसको आना है।
2: यहाँ पे श्रद्धा के सिवाय कोई नहीं पहुँचेगा।
3: वो आप फील करते हो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस।
0: ब्रह्मा के मानस से बना है मानसरोवर।
4: आत्मा से परमात्मा का मिलन यही होता है।
5: कैलाश की परिक्रमा करने का मतलब है कि भगवान शिव की साक्षात परिक्रमा कर ली।
6: महादेव तो अद्भुत, कल्पना से भी परे।
3: स्पीचलेस।
0: कैलाश है जिसे ब्रह्मांड का केंद्र कहा गया।
7: तो एक हमारा जीवन का सपना सच हो गया है, सब कुछ मिल गया हुआ जाके।
0: इससे अद्भुत, इससे अविश्वसनीय, इससे अकल्पनीय जगह भला कहां हो सकती।
8: नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपको लेकर आई हूं ब्रह्मांड की सबसे पवित्र माने जाने वाली जगह कैलाश। हम कैलाश पर्वत की परिक्रमा इस समय कर रहे हैं और परिक्रमा करते हुए कैलाश पर्वत से जुड़े वो सभी रहस्य आपको बताएंगे जिनको लेकर आपने भी सुना होगा पर जानते नहीं होंगे कि सत्य क्या है। क्या वैज्ञानिक कहते हैं, क्या आम लोग कहते हैं, क्या पंडित कहते हैं, और इन सब के बीच तथ्य क्या कहते हैं। हकीकत तो यह है कि आज तक कोई भी कैलाश पर्वत की चोटी तक नहीं चढ़ पाया है। हकीकत तो यह भी है कि दुनिया के अलग अलग देशों के पर्वतारोहियों ने कहा है कि जब भी उन्होंने जाने की कोशिश की तो उन्हें किसी अदृश्य अनजान शक्ति ने रोक लिया। हकीकत तो यह भी है कि बीते कुछ वर्षों से यहां पर पूरी तरीके से प्रतिबंधित है इस पर्वत पर चढ़ पाना। लेकिन सच्चाई ये भी है कि जब उससे पहले लोगों ने प्रयास किया तो माउंट एवरेस्ट तक पहुंच गए पर कैलाश पर्वत तक नहीं।

0: महादेव जो आदि भी हैं और अंत भी, महादेव जो सृष्टि के सृजन करता भी हैं और संहारक, महादेव जो नीलकंठ भी है और गंगाधर भी, महादेव जो घट घट वासी भी हैं और कैलाशी भी, क्या महादेव आज भी विराजते हैं कैलाश पर्वत पर?
1: जहाँ पे भोले हैं वहाँ पे सब कुछ आदमी भूल जाता है, केवल ओम नमः शिवाय करते हुए यहाँ तक पहुँच जाता है।
0: आज इन सभी पवित्र मान्यताओं को महसूस करने मेरे साथ चलिए उसी पवित्र कैलाश पर्वत की अद्भुत यात्रा पर, जो दुनिया भर में करोड़ों की आस्था का केंद्र है।

0: क्योंकि कैलाश मानसरोवर चीन में ऑटोनोमस रीजन ऑफ टिबेट में स्थित है, यहां पहुंचना जटिल भी है और इसमें समय भी लगता है। तीर्थयात्रियों के लिए दो रास्ते हैं। पहला लिपुलेख दर्रे का रास्ता, जहां उत्तराखंड के धारचूला से शुरुआत होती है, फिर गुंजी, नाबी, कालापानी होते हुए पुरांग और फिर कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा। इसमें लगभग 22 दिन लगते हैं। दूसरा रास्ता नाथुला, जिसमें सिक्किम के गैंगटोक से होते हुए शेराथांग, जोंगबा, दार्चिन और फिर कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा। इसमें भी 22 से 23 दिन लग जाते हैं। मेरी यात्रा इससे कम समय की थी, जिसमें चीन के शहर चेंगदू से शुरुआत करनी थी। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए फिट होना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसमें 51 किलोमीटर की परिक्रमा शामिल है, वो भी लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर।
1: अभी चेंगदू में मैं इस समय मौजूद हूँ, जो कि हमारा पहला बेस रहा है यहाँ पर चीन पहुँचने के बाद। अलग अलग रास्ते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा जाने के लिए, और हमें जो रास्ते जिस रास्ते से ले जाया जा रहा है यहाँ से, अब इसके बाद फ्लाइट के लिए इंतजार हो रहा है, जहाँ पर हम जाएंगे लासा की तरफ, यानी एक कदम और महादेव की।
0: कैलाश पर्वत सदियों से किसी प्रकाश स्तंभ की तरह निमंत्रण देता आ रहा है उन धर्म जिज्ञासुओं को, जिन्हें तलाश है मोक्ष की, जिन्हें तलाश है शांति की, जिन्हें तलाश है शिव की। करीब 2 घंटे 50 मिनट की हवाई यात्रा के बाद मैं पहुंची लासा, यानी तिब्बत, यानी वो भूमि जहां आदिकाल से रहते हैं महादेव।
2: कैलाश मानसरोवर जाने के रास्ते में हम पहुंच गए हैं लासा। लासा एक बेहद अहम पड़ाव, जिसके आगे फिर अब हम पुरांग की तरफ जाएंगे, और पुरांग के बाद हम पवित्र पर्वत के दर्शन कर पाएंगे। कैलाश पर्वत के ही नहीं बल्कि मानसरोवर झील के भी दर्शन कर पाएंगे। मान्यताएं हैं कि आप वहां का जल लेकर आते हैं और आपका जीवन का उद्धार हो जाता है, अगर आप ये दर्शन कर लेते हैं प्रत्यक्ष, अगर महादेव के निवास को आप अपनी आंखों से देख लेते हैं। यहाँ से आगे जाएंगे, धीरे धीरे ऑल्टीट्यूड और आगे बढ़ेगा, तो जब हम आते हैं, चाहे किसी भी रास्ते में से आप भारत से आ रहे हो, लेकिन आपको धीरे धीरे उस ऑल्टीट्यूड के लिए अपने शरीर को तैयार करना होता है। अभी धीमे धीमे हमें कदम अपने रखने हैं, बहुत तेज़ी से कोई काम नहीं करना है, बेबी स्टेप्स कहा जाता है। पानी बहुत सारा पीना है, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड का असर अगर पड़ गया तो पूरी यात्रा पर हमारे प्रभाव पड़ सकता है। तो लासा से आगे एक एक पड़ाव आपको हम दिखाते हुए चलते हैं, चलिए हमारे साथ।
0: मन में एक अद्भुत एहसास था कि महादेव के निवास की ओर बढ़ रहे हैं। लासा से आगे की यात्रा का पल पल आध्यात्मिक रोमांच से भरा था। लासा में एक रात रुकने के बाद हम अगली सुबह अंतिम पड़ाव की ओर निकल पड़े, पुरांग काउंटी।

0: को आपको लगता है कि पता नहीं आपको क्या नजर आएगा? कई लोग इतने भी भाग्यशाली होते हैं कि कहते हैं कि हमें तो शिव जी पार्वती जी साक्षात वहां पर नजर आ गए, लेकिन अपना अनुभव होता है, बहुत बहुत ही भाग्य से मिलता है वो अवसर कि हम यहाँ पर आ सकें और दर्शन कर सकें।
1: कैलाश पर्वत के दूर से दिव्य दर्शन किए जा सकते हैं, संपूर्ण पर्वत की पैदल परिक्रमा की जा सकती है, लेकिन कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ा नहीं जा सकता, कोई आज तक चढ़ भी नहीं सका है।
2: कैलाश मानसरोवर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है स्पिरिचुअली, बहुत सारे रिलीजन्स के लिए, हिंदुइज्म के लिए, बुद्धिज्म के लिए। तो ये पर्वत जो है, इस पे परमिशन नहीं होती चढ़ने के लिए, चाइनीज से ही नहीं लेकिन पहले से भी लोग उस पर्वत को बहुत ही मान देते हैं और भगवान का दर्जा देते हैं। तो भगवान को हम सिर्फ पैर छूते हैं, कभी सिर के ऊपर नहीं चढ़ते। तो कभी कैलाश मानसरोवर इसलिए नहीं चढ़ा जाता एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से।
1: दुनिया में जितनी भी ऊंची चोटियां हैं उनमें से अधिकांश को इंसान जीत चुका है, अपना झंडा गाड़ चुका है उन चोटियों पर, लेकिन कम ऊंचाई वाले कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका। आखिर क्यों? पहाड़ों पर इंसानों की चढ़ाई की पहली कोशिश 1492 में दर्ज हुई, 1850 में एक स्पोर्ट के तौर पर इसका विस्तार हुआ, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद कैलाश पर्वत की चोटी तक कभी कोई पर्वतारोही नहीं पहुंच सका है। तो क्या यह सच है कि कैलाश की ऊंचाइयों पर विजय हासिल कर पाना इंसान के बस की बात ही नहीं?
3: भगवान शिव का जहां साक्षात निवास है इस पांच भौतिक शरीर से, वहां की यात्रा संभव नहीं है, कि वहां सब सिद्धों का निवास है, भगवान शिव नित्य निवास करते हैं, इसलिए कोई सामान्य प्राणी वहां जा नहीं सकता। इस पांचवत शरीर से कोई वहाँ पर जाकर के भगवान शिव के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकता। ये कई कारण है कि भगवान शिव के यहाँ निवास होने के कारण कोई व्यक्ति या पर्वतारोही वहाँ पर नहीं चढ़ पाया है, शायद आगे भी कोई वहाँ नहीं जा पाएगा।
1: कैलाश पर्वत और कैलाश क्षेत्र पर गहन रिसर्च करने वाले अंग्रेज पर्वतारोही ह्यू रटलिज ने कैलाश पर पर्वतारोहण को बिल्कुल असंभव बताया। उनके साथ कर्नल विल्सन और शेरपा टीस्टेन भी थे। विल्सन ने दावा किया कि शेरपा ने उन्हें कहा था कि वो कैलाश पर चढ़ सकते हैं। विल्सन ने कहा कि जब उन्होंने कैलाश को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी दिशा की तरफ से देखा तो लगा कि हाँ चढ़ा जा सकता है, लेकिन फिर जो अनुभव हुआ वो अद्भुत था। विल्सन ने कहा,
4: जैसे ही मुझे लगा कि मैं एक सीधे रास्ते से कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ सकता हूँ, भयानक बर्फबारी ने रास्ता रोक दिया और चढ़ाई को असंभव बना दिया।
1: कुछ पर्वतारोहियों ने माना कि कैलाश पर कभी नहीं चढ़ा जा सकता, तो कई ने यह माना कि कैलाश तक पहुंचने का एक सीधा रास्ता है। विल्सन के अलावा रूस के पर्वतारोही सर्गे सिस्त्याकोव का अनुभव भी ऐसा ही रहा।
5: जब मैं पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका। अचानक मुझे बहुत कमजोरी सी महसूस होने लगी और मन को यह ख्याल तेजी से जकड़ने लगा कि मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए, यहाँ से तुरंत वापस लौट जाना चाहिए। जैसे जैसे हम नीचे आते गए, मन हल्का होता गया।
6: सारे लोगों ने कोशिश करी शुरू शुरू में, जैसे पीरियड था कि बहुत लोगों ने ऊपर जाने की कोशिश करी, और उन लोगों को नेचुरल प्रॉब्लम्स वहाँ पे आई कि जैसे एकदम से तूफान आ जाता, एकदम से। अब वहाँ कैलाश इज ए डेजर्ट, इज ए कोल्ड डेजर्ट, रेगिस्तान है, तो वहाँ पे एकदम से हर्ड्स ऑफ एनिमल्स आ जाते। तो किसी आदमी के हार्ट में प्रॉब्लम हो जाती। तो ये जितने लोगों ने कोशिश करी उनको किसी ना किसी वजह के कारण उसको कैंसिल कर दिया।
1: आज कैलाश पर्वत पर चढ़ाई पे पाबंदी है, लेकिन कैलाश पर चढ़ाई की कोशिशें कोई आज की बात तो नहीं है, ये 20वीं सदी की शुरुआत की बात है जब स्थानीय लोग इस स्थिति में

0: थे कि अपनी आस्था के नाम पर पश्चिमी देशों के पर्वतारोहियों को रोक पाते। तब भी पर्वतारोही कैलाश के रहस्य से अभिभूत थे। ऑस्ट्रियन लेखक और मशहूर पर्वतारोही हर्बर्ट टिचे ने 1936 की एक घटना का जिक्र करते हुए लिखा कि जब उन्होंने तिब्बत के धर्मगुरु से सवाल किया कि क्या कैलाश पर चढ़ा जा सकता है, तो उन्हें अद्भुत जवाब मिला।
1: जो इंसान पूरी तरह पाप मुक्त हो वही कैलाश पर चढ़ सकता है, और ऐसा करने के लिए उसे बर्फ की दीवारों के रास्ते नहीं जाना होगा, बल्कि वो एक पक्षी की तरह सीधे पर्वत शिखर पर जा सकता है।
0: कैलाश पर चढ़ने की आखिरी कोशिश का रिकॉर्ड साल 2001 में मिलता है, जब चीन ने अंतिम बार स्पेन की एक टीम को कैलाश पर चढ़ने की अनुमति दी थी। लेकिन दुनिया भर के लोगों की कड़ी प्रतिक्रिया मिलने लगी, जो ये मानते थे कि कैलाश पवित्र स्थान है और उस पर चढ़ाई नहीं करने देना चाहिए। इन प्रतिक्रियाओं का परिणाम ये निकला कि कैलाश पर पर्वतारोहण को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2001 में जब कैलाश पे चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा, तब तक दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 1500 पर्वतारोही चढ़ाई कर चुके थे। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 29,031 फीट है और कैलाश की ऊंचाई 21,778 फीट। अब तक माउंट एवरेस्ट पर लगभग 7,000 लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर आज तक कोई। दुनिया भर के तमाम पर्वतारोहियों ने कैलाश को जीतने की कोशिश की, लेकिन न केवल हार कर लौटे, बल्कि उन्होंने लौटने के बाद जो दुनिया को बताया वो अविश्वसनीय भी है और अकल्पनीय भी। क्या हर पर्वतारोही का अनुभव भ्रम था? अगर नहीं, तो कौन छीन लेता है पर्वतारोहियों से उनकी शक्ति? ये रहस्य क्या है?
2: जो वहां पर एनर्जी थी, वो एनर्जी इतनी ज्यादा थी और इतनी शांत करने वाली है कि आप सब कुछ भूल जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं।
3: भोलेनाथ की कृपा जिस पे है उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। बाकी तो जब अगर कष्ट नहीं होगा, सब चीज सरल होगा, तो फिर भोले को कौन याद करे।
4: हमें जो सबसे बड़ा सहारा मिला वो भगवान शिव जी का है। हमें जो था सबसे अच्छा जो सपोर्ट मिला वो मौसम का सपोर्ट मिला।
5: महलों से ज्यादा सुख कैलाश की खुली हवाओं में। ये पूरा क्षेत्र कैलाश का क्षेत्र ही कहलाता है। जो माउंटेन रेंजेस हैं, वैसे हिमालय का क्षेत्र होता है ट्रांस हिमालयन में जो कैलाश रेंजेस हैं, कैलाश रेंज में सबसे प्रमुख पर्वत कौन? तो शिव का निवास कैलाश। ओघरदानी नीलकंठ महादेव ने महलों को कभी नहीं चुना, ओघरदानी शिव ने चुना कैलाश को। कैलाश और काशी के वासी महादेव।
0: अगर ये माना कि आस्था का सम्मान करते हुए पर्वतारोहियों ने कैलाश पर पांव नहीं रखा, तो हमें उन पर्वतों से तुलना करनी होगी जो अपने क्षेत्र में इसी तरह से पवित्र माने जाते हैं, जैसे कंचनजंगा। कंचनजंगा पर चढ़ाई पे प्रतिबंध 1955 में लगा। उससे दो साल पहले 1953 में ब्रिटिश पर्वतारोही चार्ल्स इवांस ने पर्वत पर चढ़ाई कर ली थी। इसके अलावा माउंट ओलंपस, माउंट किनाबालू सब अपने अपने इलाकों में पूजनीय है, पर पर्वतारोहियों का दल वहां जाने से नहीं रुका। किसी भी पहाड़ पर चढ़ने में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है ऑक्सीजन की कमी की। अलग अलग ऊंचाइयों पर शरीर को हवा में मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा के हिसाब से खुद को ढालना होता है। वातावरण में समुद्र स्तर पर 21% ऑक्सीजन होती है। जैसे जैसे समुद्र स्तर से ऊंचाई बढ़ती जाती है, हवा का दबाव कम होता है और हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ साथ दूसरी गैसों की मात्रा भी कम होती जाती है, लेकिन प्रतिशत उतना ही रहता है। यानी हवा का दबाव कम होने के कारण ऐसा महसूस होता है कि ऑक्सीजन की कमी है। अब ऊंचाई पर पहुंचने में हर सांस के साथ शरीर में कम ऑक्सीजन जाती है। करीब 3600 मीटर की ऊंचाई पर बैरोमेट्रिक प्रेशर या हवा का दबाव घट जाता है, इस ऊंचाई पर सांस लेने के लिए 40% कम ऑक्सीजन के कण या मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसकी वजह से शरीर को इस ऊंचाई पर कम ऑक्सीजन की आदत डालनी होती है।
6: लोग जो ये हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक करते हैं कैलाश मानसरोवर की तरह, उन्हें AMS का ध्यान रखना पड़ता है, अक्यूट माउंटेन सिकनेस, क्योंकि वहां पे हाइट गेन पे लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से बॉडी के अंदर जो सिम्टम्स होती है उससे बचाव आपको अपना एक्लामेटाइजेशन स्केड्यूल एक फॉलो करना पड़ता है। बहुत ही जल्दी हाइट गेन नहीं करना है। दूसरी चीज, आपको अपनी हाइड्रेशन पे ध्यान रखना है, बहुत सारा पानी पीना है और इलेक्ट्रोलाइट्स लेना है। सिर्फ पानी पीने से आपके शरीर के अंदर जो सॉल्ट है वो वॉश आउट हो जाती है, तो वो भी एक प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। आप उसके साथ एक पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले सकते हो, और जाने के पहले अपने डॉक्टर से और एक मेडिकल कंसल्टेशन करने के बाद ही आप ऐसे ट्रैक्स पे जाएं।
7: वहाँ ऑक्सीजन की बहुत कमी है, ऑक्सीजन की वजह से काफी लोगों की तबीयत खराब हो रही थी, वापस जा रहे थे। वो हम लोग तो बाबा के आशीर्वाद से ही कम्प्लीट कर पाए। हमारा पूरा ग्रुप जैसे गया था जैसे गया था बिल्कुल वापस आया सही सलामत।
0: माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन समुद्र स्तर पर मौजूद ऑक्सीजन से 2/3 कम है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप सीढ़ी चढ़ें और 3 की बजाय 1 बार सांस लें।
8: सामान्य प्रक्रिया है। सुपर हाई ऑल्टीट्यूड पर आप हैं और आपको चेक करना होता है अपना ऑक्सीजन।
9: वेरी गुड
8: ये बहुत अच्छे की श्रेणी में आता है। ये सुपर हाई ऑल्टीट्यूड है। 12,000 फीट की एक्लेमेटाइजेशन से शुरुआत होती है। 12,000 फीट एक दिन नहीं लेकिन मतलब ज्यादा दिन आपको रुकना पड़ता है, लेकिन उसके बाद हम आगे बढ़े हैं।
0: कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर है, पर शरीर पर ऑल्टीट्यूड का असर कहीं ज्यादा महसूस होता है। इतना तो स्पष्ट है कि माउंट एवरेस्ट के मुकाबले बेहतर ऑक्सीजन लेवल होता है, पर फिर भी लोग इस पर नहीं चढ़ पाए और जिसने कोशिश की उनको दिशा भ्रम हुआ। क्या यहाँ मौजूद ऑक्सीजन खून में आसानी से नहीं मिलती, जिसकी वजह से इस पर जाने वालों को सांस लेने में दूसरे ऊंचे पहाड़ों के मुकाबले ज्यादा दिक्कत होती है? सवाल कई है, जवाब शायद कैलाश की बुलंदियों में छिपे हैं।
8: आप इस पूरे इलाके में जब पर्वत दो के आकार को देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि कैलाश पर्वत का आकार बिल्कुल अलग है, एक पिरामिड की तरह आपको नजर आएगा। अभी तो बादलों के पीछे बाबा कैलाश छिपे हुए हैं, ऐसा नहीं होता है कि पूरे समय आपको दर्शन होते हैं। अभी वो बादलों के पीछे नजर आ रहे हैं, लेकिन एक पिरामिड की तरह। एक रूसी वैज्ञानिक ने तो यहाँ तक कह दिया था कि बिल्कुल भी प्रकृति द्वारा निर्मित नहीं लगता, ये मानव निर्मित एक पर्वत लगता है। लेकिन चीनी वैज्ञानिकों ने कहा कि ऐसा नहीं है, ऐसा सही नहीं है, उन्होंने अपनी तरफ से इसे नकारा। पर देखिए, चार तरफ से इसको आप देख सकते हैं, इस पूरे पर्वत को।
0: क्या वाकई कैलाश पर्वत ब्रह्मांड का केंद्र है? क्या वाकई कैलाश पर आकर सारी दिशाएं एक हो जाती हैं? क्या वाकई कैलाश ही है पिरामिड जिसे विज्ञान धरती की नाभि कहता है? कैलाश पर्वत के महत्व को ऊंचाई की वजह से नहीं बल्कि इसके विशेष आकार की वजह से समझा जाता है। इसका चौमुखी आकार दिशा बताने वाले कंपास के चार बिंदुओं जैसा माना जाता है। एक अवधारणा के अनुसार सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और घाघरा चारों नदियां इस पूरे क्षेत्र को चार अलग हिस्सों में बांटती हैं, जो पूरे विश्व के चार भागों को दर्शाता है। कैलाश पर्वत इसके केंद्र में है, लिहाजा कैलाश को केंद्र बिंदु माना जाता है। शोध के अनुसार कैलाश पर्वत ही वो एक्सिस मुंडी है जिसे कॉस्मिक एक्सिस, वर्ल्ड एक्सिस या वर्ल्ड पिलर कहा जाता है। एक्सिस मुंडी लैटिन का शब्द है जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का केंद्र।
10: पुराने जितने शास्त्र हैं हमारे, उन सब शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कैलाश जो है वो पृथ्वी की धुरी है। रशियन जो इसको एक्सिस मुंडी बोलते हैं। शास्त्री कहते हैं कि कैलाश एक ऐसा पर्वत है कि जो पाताल में भी है, धरती पर भी है और स्वर्गों तक भी है।
0: इसका वर्णन सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं है बल्कि अलग अलग धर्मों और मान्यताओं में अलग अलग तरीके से माना गया है। हर सभ्यता ने अपने रहने की जगह को एक्सिस मुंडी माना है। मिसाल के तौर पर चीन का पुराना नाम मिडिल किंगडम इसीलिए पड़ा क्योंकि उनका मानना था कि चीन पृथ्वी के एकदम बीचों बीच है। फिर किसी पहाड़ या पेड़ जैसी ऊंची प्राकृतिक चीज को एक्सिस मुंडी मान लिया जाता था, जिसको आकाश और धरती के बीच के संपर्क का माध्यम माना जाता था। जापान ने माउंट फूजी, चीन ने माउंट कुनलुन, नेटिव अमेरिकन्स ने ब्लैक हिल्स और भारत और तिब्बत ने कैलाश पर्वत को केंद्र माना। जूडाइज्म में माउंट सिनाई, ईसाई धर्म में माउंट ऑलिव्स और इस्लाम में मक्का को पृथ्वी का केंद्र माना गया। कैलाश को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया तो इसके कई पहलू हैं। पहला, कैलाश पर्वत में पृथ्वी का भौगोलिक केंद्र होना। दूसरा, आसमान और धरती का मिलन बिंदु होना। तीसरा, चारों दिशाओं का केंद्र बिंदु होना। और चौथा, ईश्वर और उनकी बनाई सृष्टि के बीच संवाद का केंद्र बिंदु होना।
11: भगवान शिव का जहाँ निवास है, हम सब प्रकृति और विज्ञान के लोग भी मानते हैं, वह पृथ्वी का मूलाधार है कैलाश पर्वत। ये निहित है, वैज्ञानिकों ने बड़ा रिसर्च किया तब भी माना है कि कोई भूकंप आए, कोई कुछ आए, उसको कैलाश को कोई अस्त्र नहीं कर पाता है क्योंकि वो स्तंभ के रूप में कार्य कर रहा है, इसलिए उसे प्रकृति का मूलाधार माना जाता है।
0: सनातन व्यवस्था में जिस कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान मानकर परिक्रमा की परंपरा है, उसी तरह तिब्बत में परिक्रमा को कोरा कहा जाता है और इस पर्वत के परिक्रमा की परंपरा है। अवधारणा है कि पूर्व जन्मों के पाप से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही ये भी कि शिखर पर रहने वाली शक्तियों का आशीर्वाद मिलता है।
12: कैलाश पर्वत बहुत ही पवित्र जगह है। तिब्बती टूरिज्म के लिए लोगों का यहाँ आना बहुत अच्छा है। हम चाहते हैं दुनिया भर से पर्यटक यहाँ आए।
0: बौद्ध धर्म, जो कि बौद्ध धर्म से पहले का धर्म माना जाता है, उसके अनुसार कैलाश के इर्द गिर्द का पूरा क्षेत्र और 9 मंजिला स्वास्तिक पहाड़ आध्यात्मिक शक्तियों का प्रमुख स्थान है, जहाँ से आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा भी कैलाश पर्वत को लेकर अलग अलग पंथ और धर्म में अलग अलग मान्यताएं हैं। बौद्ध अनुयायी कैलाश को ब्रह्मांड की धुरी मानते हैं। उनकी मान्यताओं के अनुसार यही वो स्थान है जहां बौद्ध गुरु रिम्पोचे ने 7वीं-8वीं सदी में तांत्रिक क्रियाएं की थी, जिसके बाद तिब्बत का मुख्य धर्म बौद्ध धर्म बना। वो ये भी मानते हैं कि ये भगवान बुद्ध के डेमचौक रूप का गृह स्थान है, जिसे धर्मपाल भी कहा जाता है। जैन अनुयायी ये मानते हैं कि स्थान को प्रथम तीर्थंकर ने 8 पगों में नाप दिया था, जिसके कारण इसे अष्टपद भी कहा जाता है।
5: इस पूरे परिक्रमा मार्ग पे दरअसल हिंदुओं, बौद्ध, जैन, बौन सबकी आस्था होती है, इसलिए ये जो प्रार्थना के पहिए होते हैं, प्रेयर व्हील्स जिन्हें कहा जाता है, इन पर मंत्र लिखे होते हैं और अगर आप इन्हें इस तरीके से खिला देते हैं तो आपकी प्रार्थनाएं उस ईश्वर के पास पहुंचती हैं, क्योंकि मान्यता ये है कि जब इस तरीके से आप इस प्रेयर व्हील को घुमाते हैं तो वो हवाओं के साथ ऊपर वाले तक पहुंच जाती है।
0: सवाल पड़ा है, एक ही पर्वत के बारे में अलग अलग धर्मों में एक ही तरह की मान्यता आखिर कैसे है? कुछ तो अद्भुत होगा, कोई तो अविश्वसनीय कड़ी होगी, कहीं तो अकल्पनीय रिश्ता जुड़ता होगा। और केवल कैलाश पर्वत ही नहीं, ये संपूर्ण क्षेत्र अद्भुत है। आइए इस अकल्पनीय संसार के रहस्यों के बारे में समझते हुए हम आपको मानसरोवर लिए चले।
5: दूर मेरे पीछे देखिए कैलाश पर्वत और मेरे ठीक पीछे मानसरोवर। रामायण में उल्लेख मिलता है कि प्रभु श्री राम को महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि उत्तर से एक ऐसा सरोवर है जो ब्रह्मा के मानस से, यानी भगवान ब्रह्मा के मन से बना है, उसे कहते हैं मानसरोवर, और वहीं से निकलती है वो नदी सरयू जो पहुंचती है अयोध्या। केवल सरयू नदी ही नहीं, बल्कि सरयू नदी के साथ साथ सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये सभी नदियां यहीं से निकलती हैं। ये बहुत अधिक ऊंचाई पर स्थित है ये सरोवर। इसकी ऊंचाई लगभग 15,100 फीट बताई जाती है और इस ऊंचाई पर ये एक मीठे पानी का की झील है, मीठे पानी का सरोवर है। बहुत अलग अलग स्रोत हैं इसके, यानी कि जब बर्फबारी होती है, बारिश होती है, वो तो स्रोत है ही इस सरोवर का, लेकिन इसके साथ ही आसपास बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, उनके जल से भी यहाँ पर जो सरोवर है उसमें पानी आता है। लेकिन मुख्य तौर पर जो मानसरोवर है उसका स्रोत है कैलाश, और इसीलिए आप जब यहाँ पर तस्वीरों को देखेंगे, उस सीधाई में देखेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि इसके जल को इतना पवित्र क्यों माना जाता है। जैसे गंगा जल की मान्यता है कि उसे आप कितने भी दिनों तक रखें, वर्षों तक रखें, वो कभी खराब नहीं होता, वही मान्यता मानसरोवर से भी जुड़ी हुई है।
0: इस ऊंचाई पर मीठे पानी का सरोवर असामान्य नहीं है, पर जो अद्भुत है वो है इस सरोवर के ठीक बगल में स्थित एक दूसरा ताल। क्या कल्पना कर सकते हैं कि एक ही क्षेत्र में दो ऐसे ताल हो जिनके गुण धर्म बिल्कुल अलग हो, वो दोनों एक चैनल से जुड़ते हो, लेकिन एक शुद्धता के साथ साथ जीवन का प्रतीक और दूसरा जीवन से रहित। कैलाश के दक्षिण में सूर्य जैसी संरचना वाला गोल ताल पवित्र मानसरोवर है, जिसे ब्रह्म ताल भी कहते हैं और जिसके दर्शन करने दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। कैलाश के दक्षिण पश्चिम में आधे चंद्रमा जैसा दिखने वाला ताल राक्षस ताल, जहां कोई नहीं जाना चाहता। ब्रह्मताल का शांत पानी मीठा है, जीवनदायक, और इसी वजह से इसमें जीव जंतु, प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं, जबकि राक्षस ताल का पानी इतना खारा है कि वहां कुछ भी नहीं पनप सकता। मान्यताएं बताती हैं कि ब्रह्म सरोवर सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है, जबकि राक्षस ताल नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत। क्या भौगोलिक तौर पर यह मुमकिन है कि चंद फीट के फासले पर दो इतने अलग अलग जल स्रोत हों?
7: कुल नजदीक नजदीक होते हुए भी एकदम खारा और एकदम मीठा पानी है, ये शिव जी की महिमा ही है, एक ही जगह से जबकि आ रहा है स्रोत।
5: सकारात्मक और नकारात्मक का संतुलन अगर आप कहीं देखते हैं तो यहाँ कैलाश के क्षेत्र में आप देखेंगे मानसरोवर और उससे लगता हुआ राक्षस ताल। जी, राक्षस ताल यहाँ स्थानीय भाषा में भी अगर आप देखेंगे तो उसका मतलब यही होता है, एक ऐसी झील जो नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई है। कहानियां जो दोनों है वो रावण से जुड़ी है और इसीलिए इसे राक्षस ताल ही नहीं बल्कि रावण ताल भी कहा जाता है। जो हिंदू मान्यता है उसके अनुसार जो कथा है वो ये है कि रावण यहाँ पर आया। ये हम आपको ये भी बताएं कि ये एक चंद्राकार लेक है, चंद्राकार झील है ये। वो यहाँ पर आया और उसने महादेव को खुश करने के लिए, शिव जी को खुश करने के लिए एक एक कर अपने दसों सरों की बलि देनी शुरू की। कहते हैं कि जब तक दसवें सर पर वो पहुंचा, शिव जी जो कि बेलपत्र के चढ़ावे से भी खुश हो जाते हैं, वो रावण के इस बलिदान से खुश हुए और उसे शक्तियों का वरदान दिया। तिब्बती मान्यता के अनुसार रावण चाहता था कि शिव जी उसके साथ चले जाएं और लंका में वास करें। अब रावण ने यहाँ पर डुबकी लगाई, तपस्या की शिव जी की, लेकिन शिव जी नहीं माने। फिर उसने कोशिश की कि वो कैलाश पर्वत को उठाकर अपनी ताकत के साथ, अपनी शक्ति के साथ ले जाए और लंका में स्थापित कर दे। शिव जी बहुत क्रोधित हो गए, उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके अंगूठे को ही वहां पर कुचल दिया। कैलाश पर्वत के नीचे अपने कुचले हुए अंगूठे को निकालने के लिए कहते हैं कि रावण ने तब शिव तांडव स्त्रोत का पाठ किया और आखिरकार शिव जी ने उसे एक शिवलिंग भेंट स्वरूप दिया और जाने दिया यहां से।
13: दुनिया भर के शोधकर्ताओं ने इस बात को माना कि कैलाश पर्वत और उसके आसपास का पूरा क्षेत्र अलौकिक शक्तियों का केंद्र है। जो इस क्षेत्र में प्रवेश करता है वो इन शक्तियों को महसूस कर सकता है।
5: बात अगर केवल महसूस करने तक ही होती तो इसे कुछ लोगों के मन का भ्रम मानकर टाला जा सकता था, पर लोगों के अनुभव तो कोई और ही बात कहते हैं।
14: कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जाते हैं तो वो यात्रा एक बड़ा लोनली प्लेस है, तो उसमें आप जाते हैं तो आप भगवान का ध्यान करते हैं या अपने आप को देखते हैं, तो आदमी शायद नोटिस ज़्यादा लेता है कि मेरे नाखून तेज़ी से बढ़ रहे हैं या मेरे हेयर फास्ट ग्रो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल जब होते हैं तो लोग कितने दिन, कोई बाल तो अपने बढ़ाता नहीं है, शेव डेली करते हैं तो कोई नोटिस नहीं करता कितने दिन बाद बढ़ रहा है या कम बढ़ रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है। दूसरा, नेल हम काटते हैं और नेल घिसते भी हैं, जब हम काम कर रहे होते हैं ना, जैसे आप लिख रहे हैं तो आपके नेल लगेगा तो घिसेगा भी।
13: सनातन धर्म में कैलाश पर्वत को योगी, सन्यासी और तंत्र के महादेव भगवान शंकर का निवास स्थान तो माना ही गया है। विष्णु पुराण में कैलाश का वर्णन कुछ इस प्रकार है।
15: कैलाश एक तरफ स्फटिक, दूसरी तरफ माणिक, तीसरी तरफ सोना और चौथी ओर नीलम से बना है। कैलाश पर्वत विश्व का एक ऐसा स्तंभ है जो 6 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कमल के फूल जैसा दिखता है।
13: कैलाश पर्वत अगर हर दिशा से अलग रत्न के चमक का अनुभव कराता है तो भगवान शिव के पंचमुखी रूप से भी जुड़ता है। भगवान शिव के 5 मुख माने गए, जिनमें सद्योजात मुख पश्चिमी दिशा का प्रतिनिधित्व करता है, ये पृथ्वी तत्व का आधिपति है, इसे सृष्टि के रचना का प्रतीक मानते हैं। वामदेव मुख ये उत्तरी दिशा का प्रतिनिधित्व करता है, ये जल तत्व का अधिपति है, इसे सृष्टि के पालन का प्रतीक माना गया है। तत्पुरुष मुख ये पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व करता है और वायु तत्व का अधिपति है, ये एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा के स्थानांतरण का प्रतीक है। ईशान मुख ये ऊर्ध्व दिशा का प्रतिनिधित्व करता है और आकाश तत्व का अधिपति है, ये जीवों के मोक्ष का प्रतीक माना गया है। 5वां मुख है अघोर मुख, ये दक्षिण दिशा का प्रतिनिधित्व करता है और अग्नि तत्व का अधिपति है, ये सृष्टि के संहार का प्रतीक माना गया है। मानसरोवर के ठीक सामने से भगवान शिव का दक्षिणी मुख दिखता है, ये मुख उनके रौद्र रूप का प्रतीक है जो संहारक माना गया है। मानसरोवर आने वाले तीर्थयात्री जब मानसरोवर से कैलाश की पूजा करते हैं तो वो उनके इसी रूप की पूजा करते हैं जिससे अकाल मृत्यु या संकट मिट जाने की मान्यता है।
4: यहाँ ऐसा माना जाता है कि देवी देवता सुबह आके स्नान करते हैं इस झील में, हम जब नहाते हैं तो हमारे जितने भी पाप कर्म है वो धुल जाते हैं। इसके पानी को ग्रहण करने से ये मान्यता है कि आप जो जन्म और मृत्यु का जो चक्र है उससे मुक्ति पा जाते हैं।
16: तारा तो पूरे ब्रह्मांड को कैलाशपति का ही है, जो यूनिवर्स का सेंटर है वो ये, यहाँ पे अपन खड़े हैं।
17: स्पीचलेस, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ सुना था, देखा था, पढ़ा था, अपनी आंखों से उसको साक्षात दर्शन करना एक अलग ही अनुभूति है।
18: शंभो
13: जब भी श्रद्धालु कैलाश पर्वत की परिक्रमा प्रारंभ करते हैं तो उनकी पहली 10 किलोमीटर की परिक्रमा भगवान शिव के इसी दक्षिणी मुखी रूप में होती है, जिसकी शुरुआत के द्वार को यम द्वार कहा जाता है। बारहों महीने सफेद बर्फ की दुशाला ओढ़े कैलाश के शिखर पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं और चोटी स्वर्णिम आभा से चमक उठती है, तब एक विश्वास और मजबूत होता है कि कैलाश सत्य है, सत्य शिव है, शिव ही सुंदर है। शिव ने कैलाश पर्वत को ही अपना स्थान क्यों चुना, इसको लेकर भी अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग मान्यताएं मिलती हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने समुद्र मंथन के बाद जब विषपान किया तो उसके बाद वो कैलाश पर चले गए और वहीं तपस्या में लीन हो गए। उनका पूर्ण ज्ञान यहीं संरक्षित माना जाता है। कुछ का मानना है कि मानसरोवर सृजन का प्रतीक है, तो संहारक रूप लेकर महादेव कैलाश पर निवास बनाकर रहने लगे और जग में कैलाशपति के नाम से जाने गए। कुछ मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र होने के कारण ये स्थान आध्यात्मिक रूप से अधिक समृद्ध है, इसीलिए महादेव ने इसे तपस्या के लिए चुना। एक विश्वास ये भी है कि पृथ्वी पर जब हिम युग था तब भगवान विष्णु ने रहने के लिए समुद्र चुना, ब्रह्मा जी ने नदी और महादेव ने कैलाश की ऊंचाइयों पर अपना डेरा जमाया।
11: जब सती का प्रत्याग किया था उससे पूर्व 87,000 वर्ष तक वहां पर भगवान शिव ने साधना की थी। वो साधना का स्थान है, दिव्य स्थान है, पवित्र स्थान है और पृथ्वी का मूलाधार है, इसलिए भगवान शिव ने वहां पर अपना निवास स्थान बनाया। आज तक भगवान शिव वहाँ प्रत्यक्ष रूप में निवास करते हैं।
13: पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव का जब विवाह माता पार्वती से हुआ तो वो कैलाश से नीचे उतरे और ऐसे स्थान की तलाश की जो आध्यात्मिक रूप से पवित्र हो। इसी तलाश के चलते वो काशी गए। श्रद्धालु जब कैलाश की यात्रा पर होते हैं तो अक्सर उन्हें अलग अलग तरह का अनुभव होता है। क्या आस्था का ये अद्भुत विश्वास केवल मन का वहम हो सकता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसके कई जवाब दिए जा सकते हैं। कई वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि कई दिनों की थकान की वजह से कुछ श्रद्धालुओं को भ्रम हो जाता है या ऑक्सीजन की कमी की वजह से मन काल्पनिक तस्वीरें देखने या आवाजें सुनने लगता है।
14: हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो रेरीफाई हो जाती है, जो आपकी एयर है वो थिन हो जाती है और एयर प्रेशर कम हो जाता है, उससे ब्रेन में एडिमा बढ़ जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग होने से हेलुसिनेशन होने लगते हैं, ब्लैकआउट्स होने लगते हैं, वोमिटिंग, हेडेक, फेंट हो जाता है आदमी, और अगर ट्रीटमेंट ना मिले तो मृत्यु हो सकती है।
13: सदियों का विश्वास ये कहता है कि कैलाश शिखर भोले शंकर का साधना स्थल है जिसकी शक्ति को पीढ़ियों ने महसूस किया और यहाँ वही होता है जो महादेव की मर्जी होती है। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
2: धनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: हमने तब भी सवाल किया था।
6: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
5: हम आज भी सवाल करते हैं।
6: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
5: ऑपरेशन अग्नि,
6: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
5: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
7: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: क्या कहती है आपकी राशि? कैसा बीतेगा आपका दिन? किस दिन क्या करें क्या ना करें? क्या है आपके लिए शुभ रंग? कौन सा उपाय आपके दिन को बनाएगा बेहतर? देखिए राशि चक्र सिर्फ एस्ट्रो तक पर।
9: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस, हेक्सा ऑर्गेनिक, रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

राष्ट्रीय दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों के घरों पर एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी। पुलिस की 6 टीम घरों की तलाशी लेने में जुटी। घर वाले और पड़ोसियों से पूछताछ जारी। केतन अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस ने किया क्राइम सीन का रिक्रिएशन। मुख्य आरोपी सिया को लेकर लोहगढ़ किले में गई थी पुलिस। डेथ पॉइंट से धक्का तक। 18 जून की वारदात पर सवाल जवाब।

नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम और आप देख रहे हैं कहानी 2.0। आखिर क्यों मेहंदी वाले हाथ खून से सन रहे हैं? आखिर क्यों घरों को बनाने वाले हाथ हथियार उठा रहे हैं? जिन हाथों पर रिश्तों को सहेजने की जिम्मेदारी थी, वो क्यों उन्हीं रिश्तों को तार तार कर रहे हैं? इन दिनों एक के बाद एक ऐसे मामले आ रहे हैं जहां दुल्हनें अपने पतियों को, प्रेमिकाएं अपने प्रेमियों को, मंगेतर अपने मंगेतरों की हत्या कर रही। सवाल यही कि क्या रिश्तों की बुनियाद में कोई ऐसी दरार पड़ रही है जो प्यार को नफरत और भरोसे को खौफनाक अपराध में बदल रही है? आखिर क्यों कुछ मामलों में जीवन संगिनी ही जीवन की सबसे बड़ी दुश्मन बनती दिखाई दे रही है? आज की कहानी हत्यारी दुल्हनों की।

0: रिश्तों में विश्वास टूटे तो सबसे बड़ी हार इंसानियत की होती है। केतन अग्रवाल से लेकर सौरभ राजपूत और राजा रघुवंशी तक अपराध की क्रूरता से ज्यादा लोगों को हैरान कातिलों ने किया, क्योंकि इन सभी मामलों में कातिल वो थे जिन पर कत्ल होने वाले को सबसे ज्यादा भरोसा था।
1: तो जिंदगी पूरी खराब हो गई, घर खाली हो गया, कुछ नहीं रहा हमारे पास।
2: कितना सपोर्ट चाहिए, प्लीज मेरे बेटे को इंसाफ दे।
3: उन्होंने मिलके उसके ऊपर किसी चीज का वार करके उसको ऊपर से नीचे फेंक दिया।
4: वो भी दुखे और ये भी दुखे। अभी तो
5: पूनम को नहीं रहना था तो वो नहीं रहती, मगर मेरे बच्चे के साथ ऐसा बहुत गलत हुआ।
6: पीछे से वार नहीं होता कभी, तुम्हें भैया जिंदा होता,
5: मगर मेरे बच्चे के साथ बहुत गलत हुआ।
7: वो अपना जीने का हक खो चुकी है, मेरी तरफ से फीलिंग मर गई है, उसके लिए उसे फांसी होनी चाहिए।
8: बच्चे को मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए।
9: बेटी को फांसी होनी चाहिए,
8: फांसी होनी चाहिए, होनी चाहिए उसे फांसी।
0: कभी किले की दीवार से मंगेतर को फेंक देना, कभी प्रेमी के साथ पति को खाई में धक्का, कभी नीले ड्रम में पति की सीमेंटेड लाश। आज कहानी सुनाएंगे भरोसे के कत्ल की, आज कहानी सुनाएंगे रिश्तों के कत्ल की, आज कहानी सुनाएंगे विश्वासघात की, आज कहानी सुनाएंगे मर्यादाओं की हत्या की। आखिर हंसते चेहरों के पीछे क्यों साजिशें छुपी हैं? आखिर क्यों रिश्ता पसंद ना आने पर ना करने से ज्यादा हत्या पर भरोसा रहता है? क्यों इश्क इस कदर जानलेवा हो रहा है जहां पवित्र संबंधों के लिए भी संवेदनाएं शून्य है? आज हम आपको साजिशों की आड़ में रिश्तों के कत्ल की वो खौफनाक कहानियां सुनाएंगे जिन्होंने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है।

पहली कहानी एक ऐसे लव ट्रायंगल की जिसने पूरे देश को चौंका दिया। पुणे के लोहगढ़ किले के ऊंचाइयों से गिरकर एक युवा कारोबारी की मौत हुई, जिसे पहले तो हादसा माना गया, लेकिन जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ी अपराध की गुत्थियां सुलझती चली गई। जिस लड़की के साथ कुछ ही महीनों बाद साथ फेरे लेने की तैयारी थी, उसी पर अब अपने मंगेतर की हत्या का आरोप है। सवाल सिर्फ इतना कि केतन अग्रवाल की मौत कैसे हुई, सवाल ये भी कि आखिर रिश्तों के चेहरे के पीछे ऐसा कौन सा सच छिपा था जिसे कोई पढ़ नहीं पाया।

0: इस कहानी में कदम कदम पर कत्ल की साजिश है, कदम कदम पर भरोसे का कत्ल है, कदम कदम पर प्रेम के नाम पर महापाप है। जो केतन सिया को अपनी दुनिया समझता था, उसके सामने बार बार सिया का षड्यंत्रकारी चेहरा आया था, लेकिन केतन उसे पहचान नहीं सका। सिया और केतन की सगाई 11 फरवरी 2026 को हुई थी। केतन उसे साथ घुमाने ले जाता था। 31 मई को केतन सिया को लौगढ़ किले घुमाने ले गया था। किले की ऊंचाई को देखते ही सिया के मन में केतन की हत्या कैसे की जाएगी, इसका प्लान तैयार हो गया था। मौत की आहट ने केतन को बार बार खबरदार किया था। 5 जून 2026 सिया ने केतन से फिर से लौगढ़ किले चलने को कहा, लेकिन तब केतन के परिवार वालों ने मना कर दिया और दोनों नहीं जा पाए। 6 जून 2026 बाली में केतन और सिया की शादी का प्री वेडिंग शूट था, लेकिन एयरपोर्ट पर केतन का पासपोर्ट खो जाने की बात सिया ने कही और ये कार्यक्रम रद्द हो गया। 14 जून 2026 सिया केतन को किले लेकर गई और एक पहाड़ी से धक्का दे दिया। केतन ने झाड़ी पकड़ ली और वो बच गया। सिया ने धक्का देने का कारण केतन को सांप से बचाने को बताया। ये बात परिवार को भी पता चली, लेकिन सिया के झूठ को सच मान लिया गया। 18 जून 2026 सिया केतन को फिर लौगढ़ किले ले गई। वहां अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ केतन को किले की ऊंची दीवार से 400 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया। इस बार केतन की किस्मत ने साथ नहीं दिया और वो मौत के मुंह में समा गया।
1: लड़का जब ऐसा कर रहा था, हमारा पोता, तो उसके बॉयफ्रेंड ने उसको धक्का दे दी। शायद दोनों ने मिलके भी दिया हो, उन्होंने दे दिया। और आके नाटक करने मतलब फोन आया मेरी बहू के पास, लड़के के माँ के पास, कि केतन ऊपर से गिर गया। हम सब भागते हुए गए, मैं तो नहीं गया था, बच्चे सब भागते हुए गए। तो वहाँ खड़ी थी, उसको कोई बहुत बड़ा अफसोस नहीं था, बहुत बड़ा रोना धोना कुछ नहीं था।
0: पुलिस जांच में पता चला कि 18 जून को हत्या से पहले चेतन और सिया एक रेस्टोरेंट में मिले और यहां केतन की हत्या की फाइनल प्लानिंग की गई, जिसे अगले दिन अंजाम दिया गया। चेतन लगातार केतन और सिया का पीछा कर रहा था, उसकी तस्वीर भी रिकॉर्ड हुई थी।
2: जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ, इसी कुर्सी पर 17 तारीख को चेतन चौधरी बैठा था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसके ठीक सामने यानी कि इसी कुर्सी पर सिया गोयल भी बैठी थी। दोनों ने यही मिलकर पुणे के कोंडवा स्थित इस कैफे में प्लान किया, साजिश रची। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि लोहगढ़ की तस्वीरें एक दूसरे को दिखाई। सिया की जो मोबाइल हिस्ट्री है उसमें अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यूट्यूब पे जाके उसने लोहगढ़ का एक डॉक्यूमेंट्री उसे दिखाया था। यही बैठ के लगभग एक घंटे दोनों में चर्चा हुई थी और इस साजिश को किस तरीके से अंजाम देना है, एग्जैक्टली क्या करना है, इस सभी की प्लानिंग एक घंटा यही बैठकर हुई थी।
0: केतन हर फरेब को इसलिए नहीं भाप पाया क्योंकि उसे सिया पर भरोसा था। सिया इंस्टाग्राम पर अपने और केतन के रिश्ते को लेकर रोमांटिक पोस्ट डालती थी। केतन ने एक महीने से लगातार सिया का जन्मदिन मनाना शुरू कर दिया था। उसने 19 जून को सिया का बर्थडे मनाने के लिए पूरा 5-स्टार होटल बुक कर लिया था, लेकिन उससे पहले ही वो सिया की साजिश का शिकार हो गया। पुलिस हर कड़ी को जोड़ने में जुटी है।
3: ये जो घटना हुई है, इसके दो, एक ये जो टॉप ऑफ द फोर्ट है और एक नीचे जो जंगल में यहाँ पे डिसीज्ड की बॉडी मिली थी।

0: अगर वो कल कल्प्रिट फाइनलाइज हो जाते तो
1: तो
0: मतलब
1: क्या?
0: वो आरोपी निश्चित हो जाती तो
1: हाँ तो ठीक है ना, आप सिया को फांसी की सजा दे सकते हो।
2: सिया ने कहा था कि केतन की मौत पैर फिसलने से हो गई और उसने अगले दिन केतन की याद में इंस्टाग्राम पोस्ट भी डाली।
3: मेरी आंखें तो परफेक्ट पिट बैन आईज है, ब्राउन कलर।
2: केतन की बहन को सिया पर यकीन नहीं था। उसे पता था कि केतन एक प्रोफेशनल ट्रैकर है। बस यहीं से साजिश का एंगल शामिल हुआ और केतन की बहन को सिया पर शक हुआ। बात पुलिस तक गई और पुलिस ने जब जांच शुरू की तो किले में सिया और केतन के आसपास हुडी पहने एक शख्स दिखा। उस दिन वहां का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस था। इतनी गर्मी में कोई हुडी क्यों पहनेगा? इस सवाल के बाद एक परत उघड़ने लगी और पता चला कि हुडी वाला शख्स सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी है, जिसके साथ मिलकर सिया ने केतन की हत्या की साजिश रची। परिवार सदमे में है। वो जिस केतन के सिर पर सेहरा देखने का ख्वाब देख रहे थे, वो कफन ओढ़कर हमेशा के लिए चला गया।
4: अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाने का क्यों सोचा और क्या इनकी मानसिकता है? इन लोगों की इतनी क्रूर मानसिकता है कि किसी का 26 साल का लड़का इनके थोड़े से अय्याशी के लिए मार दिया जाए। इनकी इतनी क्रूर विचारधारणा को कहीं तो भी समाज में ध्यान में लेना चाहिए।
5: जी पर भी नहीं लग रहा सी ऐसे है। मुझे पुलिस की पूरा सपोर्ट चाहिए, पुलिस ने मेरे को साथ देना चाहिए। प्लीज मेरे बेटे को इंसाफ दिलाओ, इतना ही बोलूँ। और जल्द से जल्द कार्रवाई करवाई जाए, कट से कट सजा सिया को, सिया की फैमिली को दिया जाए।
2: इस कांड ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। हर किसी के चेहरे पर सवाल है। पैसा था, रसूख था, फिर क्यों सिया ने यह कदम उठाया? वो रिश्ते से ना कहकर निकल सकती थी, लेकिन उसने इनकार की जगह हत्या का रास्ता क्यों चुना?
6: शादी करते टाइम पूरी चौकसी करे बिना शादी ना करे, चाहे कितने भी साल के रिश्ते हों, कितने भी लड़की हो चाहे लड़का हो, उसके बारे में सारी खोजतान करके करे, और जो कि उनको भविष्य में ये दुख सहना ना पड़े। इस दुख को और माँ बाप का फर्ज है कि वो भी अपने बच्चों की तरफ ख्याल रखे। अगर वो जिद कर रहे हैं शादी करने का, लव मैरिज करने का, तो उनका कर दें।
2: शादी तय होने के बाद से जनवरी 2026 से हत्या के दिन तक सिया ने अपने बॉयफ्रेंड से 2004 कॉल्स में 338 घंटे बात की थी, यानी रोज करीब 11 कॉल्स में 2 घंटे की बातचीत। क्या सिया के परिवार वाले भी सिया को समझने में भूल कर रहे थे? कहा जा रहा कि 18 जून को अगर केतन बच जाता तो उसे रोड एक्सीडेंट में मार देने के लिए भी प्लान तैयार था। यानी हर मुस्कुराहट के पीछे कितना फरेब छुपा था, इससे केतन बिल्कुल अनजान था और उसका सिया पर विश्वास ही उसकी जान ले गया।
7: शादी के महज कुछ ही दिन बाद हनीमून पर निकला एक नवविवाहित जोड़ा। सामने थी मेघालय की खूबसूरत वादियां, ऊंचे पहाड़, झरने और नई जिंदगी के सपने। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इस रिश्ते की मंजिल प्यार नहीं बल्कि मौत होगी। पहले दोनों के लापता होने की खबर आई, फिर एक गहरी खाई से मिला राजा रघुवंशी का शव, और उसके बाद जो कहानी सामने आई उसने पूरे देश को सन्न कर दिया।

जो केतन और सिया की कहानी है उसमें एक चेतन है। इसी तरह पिछले साल यानी 2025 में एक और कहानी थी बिल्कुल इसी तरह की, जिसमें एक हसीना थी, एक दीवाना था और एक तीसरा आदमी भी। यूं समझ लीजिए कि सिया की जगह सोनम थी, केतन की जगह राजा रघुवंशी और चेतन चौधरी की जगह राज कुशवाहा। कहानी शुरू होती है 11 मई 2025 से,

0: इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम की शादी खूब धूमधाम से होती है। सब बहुत खुश, ऐसा लग रहा था जैसे परियों की प्रेम कथा चल रही हो। राजा बहुत खुश था सोनम को पाकर, लेकिन सोनम के मन में पाप। शादी के 9 दिन बाद यानी 20 मई 2025 को राजा और सोनम हनीमून मनाने मेघालय चले गए। मेघालय की ट्रिप सोनम ने प्लान की थी। टिकट से लेकर होटल बुकिंग तक सब सोनम के नाम से था। 23 मई को राजा और सोनम शिलोंग में नोंगरियाट गांव घूमने गए। सोनम की राजा की मां से बात भी हुई।
1: लौटने की टिकट नहीं कराई, क्योंकि जाने की टिकट कराई ना तो राजा ने मेरे को बता दिया, मम्मी वो सोनम ने टिकट करा लिया मेरी और मेरे को परसों के रोज निकलना है। तो मैंने कहा बेटा इतने जल्दी, तो बोला अब तो उसने टिकट करा ली, बोले कि तो बोलती चलना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है बेटा चले जाओ। मैंने कितने दिन में आओगे, तो बोले 7 दिन में।
0: इसके बाद सोनम और राजा लापता हो गए। ना सोनम का कुछ पता चल रहा था ना राजा का, दोनों के परिवार वाले परेशान हो गए।
2: प्लान यही था कि राजा की हत्या करने के बाद उसकी लाश को किसी खाई में ठिकाने लगा दें, लाश कभी मिलेगी नहीं और राजा की हत्या गुमशुदगी की गुत्थी बनकर पुलिस की फाइलों में बंद हो जाएगी। उसके बाद सोनम अपनी अपहरण की कहानी बताकर दुनिया के सामने खुद को पीड़िता दिखाएगी।
0: 24 मई को पुलिस ने वो स्कूटी बरामद की जिससे सोनम और राजा घूमने निकले थे। पुलिस ने लापता दंपत्ति के तौर पर केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू की, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया 2 जून को। बेसाहब डॉग वाटरफॉल के पास पुलिस को एक लाश मिली। लाश की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, लिहाजा शिनाख्त मुश्किल थी, लेकिन हाथ पर लिखे टैटू ने सारी कहानी खोलकर रख दी। टैटू से हाथ पर गुदा था राजा। लाश का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि राजा की मौत सिर में गहरी चोट और धक्का देने से हुई। हत्या के मामले की पुष्टि होते ही शक की सुई सोनम की तरफ घूम गई, लेकिन सोनम कहां थी कोई अता पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस ने सोनम को ट्रेस करना शुरू कर दिया और फिर आई तारीख 9 जून। तड़के सुबह सोनम को यूपी में गाजीपुर के ढाबे से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
3: नहीं, वो वहाँ पे कस्टमर लोग कुछ बैठे थे, एक लेडीज, एक उनके पिता और 2 बच्चे, तो उनके पास जाती है, उनसे कुछ हेल्प मांगती है तो मना कर देते हैं। फिर मेरे पास आती है, बोलती है कि भैया अपना मोबाइल दे दीजिए, हमको थोड़ा बात करना है। तो हम उनको अपना मोबाइल देते हैं, वो नंबर डायल करती हैं, फिर अपने भाई से मतलब हेलो भैया हम इतना ही कुछ बोल के वो रोने लगती है। फिर उनके फैमिली से हम बात करते हैं, उनको यहाँ का एड्रेस बताते हैं, फिर इतना ही बात होता है।
4: उसके बाद पुलिस को कौन सूचना देता है, पुलिस कैसे आती है?
3: हम ही कॉल करते हैं, उसके बाद पुलिस आती है। वही बता रही थी कि मई में उनका शादी हुआ था, कुछ देर बाद वो अपने पति के साथ मेघालय घूमने गई थी, फिर वहाँ पे अपहरण मतलब उनका गहना वहना चोरी करने की कोशिश की जाती है, उसी के बीच उनके पति की हत्या हो जाती है। और वो देख के बता रही थी कि मैं बेहोश हो गई, फिर यहाँ पे हमको मतलब यहाँ पे कैसे आई उस इनको ये भी आइडिया कुछ नहीं था।
0: इसके बाद जो सच सामने आया उसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। सोनम रघुवंशी ने अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा की हत्या की पूरी साजिश रची थी। राज कुशवाहा लगातार सोनम के संपर्क में था।
5: इंदौर से कैसे गुवाहाटी होते हुए शिलांग पहुंचे थे और किस प्रकार इन्होंने पूरी घटना को अंजाम दिया था ये उन्होंने पुलिस को बताया है। और साथ में ये भी बताया कि विशाल उर्फ विक्की जो है उसने पहले जो वहाँ से हथियार खरीदा था उसको राजा को पीछे से वार किया, पहला वार उसने किया। उसके अलावा जब वो अचेत हो गया, मृत अवस्था में आ गया, तो उसके बाद इन्होंने सबने मिलके उसकी डेड बॉडी को नीचे खाई में फेंक दिया।
0: राजा रघुवंशी के अंतिम संस्कार में भी राज कुशवाहा शामिल हुआ था, जबकि यही वो शख्स था जिसने सोनम के साथ मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या के सारे किरदार जुटाए। सोनम ने 3 लोगों को सुपारी दी। जब राजा और सोनम पहाड़ी पर चढ़ रहे थे तब वो हत्यारे भी आसपास ही चल रहे थे। राजा स्वस्थ और तगड़े शरीर का था, लिहाजा उसके बचने की कोई गुंजाइश न रह जाए इसके लिए पहले उसके सिर पर वार किया गया और फिर खाई में धक्का दे दिया। दरअसल वो राजा से नहीं, राज से शादी करना चाहती थी, इसीलिए उसने राजा को रास्ते से हटाने का पूरा मन शादी से पहले ही बना लिया था। सोनम ने राजा के घर का विश्वास जीता और किसी भी तरह से शक नहीं होने दिया। सोनम रघुवंशी को 11 महीने बाद जमानत मिल गई, वो शिलोंग में ही है। उस पर और उसके बॉयफ्रेंड पर केस चल रहा है। लेकिन पुणे के केतन की हत्या जिस तरह से की गई उसने सोनम राजा कांड की यादें ताजा कर दी। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही किया गया और एक बेटा धोखे का शिकार होकर मौत की अनंत गहराइयों में खो गया। यहां भी सवाल वही कि शादी से इनकार था तो मना कर दिया होता, लेकिन हत्या का रास्ता आसान क्यों लगा?
6: वक्त एक से ब्रेक का उछला है, ब्रेक के बाद भी कहानी का इस सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
2: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू। विमल, बोलो जुबां केसरी।
1: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
2: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
3: हम सिखाएंगे आपको मास कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट बनने का हुनर। ज्वाइन कीजिए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट।
4: रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
5: हमने तब भी सवाल किया था।
6: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
5: हम आज भी सवाल करते हैं।
6: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
5: ऑपरेशन अग्नि,
6: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
5: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
0: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

राष्ट्रीय दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों के घरों पर एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी। पुलिस की 6 टीम घरों की तलाशी लेने में जुटी। घर वाले और पड़ोसियों से पूछताछ जारी। केतन अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस ने किया क्राइम सीन का रिक्रिएशन। मुख्य आरोपी सिया को लेकर लोहगढ़ किले में गई थी पुलिस। डेथ पॉइंट से धक्का तक 18 जून की वारदात पर सवाल जवाब।

प्यार, विश्वासघात और एक खौफनाक साजिश की एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में जिसने सुना वो हैरान रह गया। मेरठ का एक घर, एक लापता पति और सीमेंट से भरा एक ड्रम। जब इस ड्रम का राज खुला तो सामने आई एक ऐसी कहानी जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। अगली कहानी उस रिश्ते की जिसमें कत्ल से ज्यादा कत्ल का तरीका बदनाम हो गया। कहानी नीले ड्रम वाले हत्याकांड की।

0: ये हिंदुस्तान के सबसे कोल्ड ब्लडेड मर्डर में से एक है। ये रिश्ते का ऐसा कत्ल था जिसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। ये एक ऐसी खौफनाक हत्या थी जो इससे पहले शायद ही अंजाम दी गई हो। ये कहानी है एक ऐसे कत्ल की जिसने रिश्तों पर भरोसा करने वालों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसा मर्डर जिसमें पत्नी ने पति की हत्या के बाद शव के टुकड़े किए, शव के टुकड़ों को एक ड्रम में भरा और फिर उसके ऊपर से सीमेंट डाल दी गई। हत्या के पीछे प्रेम, धोखा और साजिशों का जाल था। मेरठ का ये ब्लू ड्रम मर्डर केस हाल के वर्षों के सबसे सनसनीखेज हत्याकांडों में गिना जाता है।
1: साइकोपैथिक एंटी सोशल कैरेक्टर्स हैं जो कि अपनी भावनाओं की, अपनी सोच की पूर्ति में इतने विलीन होते हैं कि उन्हें उसके अलावा कुछ नजर नहीं आता। और यहां पे भी इन दोनों को बिल्कुल कुछ भी नजर नहीं आया, कोई गिल्ट नहीं किसी भी तरह। और बड़ा एक प्रीमेडिटेटेड तरीके से दवाएं खरीदी गई, उन एंटी एंग्जाइटी गोलियों को घोल मिला के उसको सौरभ को पिलाया गया, फिर कैसे उस पर वार हुआ, उसको मारा और उसके बाद ये होली खेल रहे हैं, छुट्टी मना रहे हैं, 13 दिन हिमाचल में घूम के आ रहे हैं। तो दिस इज एब्सोल्युटली ये एक साइकोपैथिक मानसिकता है, एक बहुत विकृत मानसिकता है।
0: ये कहानी है सौरभ राजपूत और मुस्कान रस्तोगी की। सौरभ राजपूत मेरठ के रहने वाले थे और मर्चेंट नेवी में काम कर चुके थे। मुस्कान रस्तोगी से उनकी मुलाकात दोस्ती के जरिए हुई और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। परिवारों के विरोध के बावजूद दोनों ने प्रेम विवाह किया। शादी के बाद उनकी एक बेटी भी हुई। शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य दिखता था लेकिन समय के साथ रिश्तों में दरार पड़ने लगी।
2: क्या कहना है इस बारे में जो इस तरीके से ये घटना हुई है?
3: गलत कराए जी, वो अपना जीने का हक खो चुकी है। मेरी तरफ से फीलिंग मर गई है उसके लिए, उसे फांसी होनी चाहिए।
2: मेरा बेटा छीना है उसने, मेरा बेटा।
4: बहुत केयर करता था वो, हमें बहुत मानता था, हम जो कैसे कहते थे मानता था वो, लेकिन उसके प्यार में उससे प्यार से ज्यादा नहीं मानता था। सूबी जो कहती थी वो ही करता था वो, लेकिन हमें रेस्पेक्ट दी, इसलिए उस बच्चे को मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए।
2: बेटी को फांसी होनी चाहिए,
4: फांसी होनी चाहिए, होनी चाहिए उसे फांसी। ऐसा आने वाले समय
2: किसी के संग में कुछ भी कर सकता है,
4: होनी चाहिए, कुछ होनी चाहिए उस बच्चे के लिए, होनी चाहिए सौरभ के लिए, सौरभ के लिए होनी चाहिए।
2: मेरी तरफ से कुछ चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ जी, उसे फांसी होनी चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए।
0: सौरभ विदेश में नौकरी करते थे। इसी दौरान मुस्कान की नजदीकियां साहिल शुक्ला नाम के एक युवक से बढ़ी। दोनों ने मिलकर सौरभ को रास्ते से हटाने की साजिश रची। मार्च 2025 में सौरभ भारत आए तो मुस्कान ने सौरभ के खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर उनको गहरी नींद में सुला दिया और फिर दोनों ने मिलकर सौरभ की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव के टुकड़े किए गए और उन्हें एक नीले ड्रम में रखकर सीमेंट से भर दिया गया ताकि सबूत मिटाए जा सके। मामले की परतें तब खुलनी शुरू हुई जब सौरभ के गायब होने को लेकर सवाल उठने लगे। जांच के दौरान पुलिस को कई सुराग मिले। बाद में मुस्कान ने अपने परिवार के सामने अपराध की बात कबूल की जिसके बाद पुलिस तक जानकारी पहुंची।
5: 2019 से ही जो मुस्कान है और साहिल इनके अवैध संबंध थे, इस बात की जानकारी सौरभ को भी थी। सौरभ ने 2021 में इसमें डाइवोर्स भी फाइल किया था, परंतु परिजनों द्वारा इनको समझा बुझा दिया गया था। जो मुस्कान है उसको जब पूछताछ की तो उसने बताया कि साहिल थोड़ा शराबी किस्म का था, शराब पीता था।
0: लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इतनी नफरत क्यों, वो भी उस शख्स से जो आपकी जिंदगी का हम सफर था। ये क्या सोच होती है जो अपने सबसे करीबी रिश्तों में इस कदर कड़वाहट घोल देती है कि नौबत यहाँ तक आ जाती है।
6: ये लोग सबसे पहले सोचते हैं, आपने सभी ने देखा कि इसके अंदर एग्जिट प्लान सबसे पहले आता है। तो उस ड्रम के अंदर भी उसको ये लगता है कि वो ड्रम के अंदर टुकड़े डालकर सीमेंट डालकर उसके बाद छुपा देंगे, वो चीज उस तक वापस नहीं आएगी। वो उन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं ये बोल दिया जाएगा कि मुझे पता नहीं था। ये जो प्लानिंग होती है ये एक ही दिन की प्लानिंग नहीं होती है। रिवर्स साइकोलॉजी, जैसे मैंने कहा कि रिवर्स साइकोलॉजी के अंदर आप इनके पूरे पुराने कई ऐसे केसेस निकल कर आएंगे स्कूलों के अंदर, माँ बापों के साथ, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। कहीं ना कहीं उन्होंने बुली सिस्टम, नार्सिसिस्ट सिस्टम, कहीं पर नार्सिसिस्ट की जो ट्रेट्स हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, मेरा मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी चीज, मेरी इंडिपेंडेंस, मेरा प्यार, दूसरा उनके सामने कोई नहीं। और उसमें पैरानॉइड, एक अगर उनके दिमाग में कोई एक कीड़ा बैठ गया या कोई एक ऐसी थ्योरी उनके दिमाग में बैठ गई जिसको उन्होंने एलिमिनेट करना है, तो वो उसको पूरा करके ही दम लेंगे।
0: बहरहाल इस हत्याकांड ने न सिर्फ रिश्तों को तार तार करने की एक भयानक मिसाल पेश की, बल्कि नीले ड्रमों की भी एक नई व्याख्या कर दी।
6: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि भारत में हत्या की सबसे बड़ी वजहों में प्रेम संबंध शामिल है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में लव अफेयर्स हत्या की तीसरी सबसे बड़ी वजह बनकर सामने आया। यानी प्यार, जो जिंदगी बनाने का वादा करता है, कई बार जान लेने की वजह बन रहा है।

0: एक रिसर्च कहती है कि कुल हत्याओं में महिलाओं द्वारा अपने पार्टनर की हत्या का प्रतिशत काफी कम है। अधिकांश पार्टनर हत्याओं में पीड़ित महिलाएं होती हैं, जबकि अपराधी पुरुष होते हैं। वैश्विक स्तर पर महिलाओं की हत्या का लगभग 39% हिस्सा उनके पार्टनर द्वारा किया जाता है। लेकिन जब जब महिलाओं ने हाथों में हथियार उठाए हैं तो रिश्ते तार तार हो गए, जिंदगियां तबाह हो गई, लिस्ट बड़ी लंबी है। 2025 में औरैया में शादी के महज 15 दिन बाद प्रगति यादव ने पति प्रदीप यादव की हत्या कर दी। आरोप है कि पत्नी और उसके प्रेमी ने शादी में मिले पैसों से सुपारी किलर की व्यवस्था की। 2025 में उत्तर प्रदेश में आरोप है कि पत्नी रेखा ने पति केहर पाल सिंह को पहले जहर दिया, फिर गला घोटकर हत्या कर दी। 2025 में जयपुर में आरोप है कि गोपाली देवी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति धन्नालाल सैनी की हत्या की और शव को जला दिया। 2019 में मेरठ में अदालत ने पत्नी निशा और उसके प्रेमी को पति की हत्या कर उसे आत्महत्या दिखाने के मामले में दोषी ठहराया। 2025 में हरियाणा में आरोप है कि पत्नी रवीना राव और उसके प्रेमी ने पति प्रवीण की हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया ताकि सबूत मिटाए जा सके। 2018 में दिल्ली में रंजू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति वीरेंद्र पांडे की कथित तौर पर हत्या की और फिर मौत को हादसा साबित करने के लिए दीवार गिरने की झूठी कहानी गढ़ी।
1: न्यायपालिका जो पहले बिल्कुल 100% महिला सेंट्रिक थी वो मध्य मार्ग में आती हुई दिख रही है। ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ पुरुष के पक्ष में अभी हो गया है और कानूनी प्रावधान में पुरुष के फेवर में अभी तक कोई ऐसा कानूनी चेंज नहीं लाया गया है। बहुत सा मूवमेंट हो रहा है, बहुत से PIL फाइल हो रहे हैं, बहुत से NGO हैं जो इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो सब अभी मूवमेंट के स्टेज में है। लेकिन कानूनी प्रावधान पे अगर देखेंगे तो न्यायपालिका का जो अपना सोच है उसमें जो परिवर्तन आया है उसके अलावा दूसरा कोई प्रोटेक्शन अभी जो है पुरुष के लिए ऐसा अलग से कानून में होता हुआ नहीं दिख रहा है।
0: सिया केतन, सोनम राजा, मुस्कान सौरभ, इस जैसे तमाम मामले सिर्फ नाम नहीं बल्कि वो आंकड़े हैं जो अपराध की नई कहानी बयान करते हैं। NCRB के आंकड़े बताते हैं कि देश भर में हत्या की तीसरी सबसे बड़ी वजह प्यार, मोहब्बत और अवैध संबंध होते हैं। NCRB के मुताबिक 2024 में देश भर में 27,049 हत्याएं हुई थी। इनमें से 2,802 हत्याओं की वजह लव अफेयर्स या अवैध संबंध थे। इसका मतलब हुआ कि 10% कत्ल इन्हीं दो वजहों से हुए थे, यानी हर 10 में से एक कत्ल। 2010 से 2014 के बीच हत्या के कुल मामलों में ऐसी हत्याओं का हिस्सा 7-8% था, लेकिन 2016 से 2024 के बीच ये बढ़कर 10-11% तक हो गया। अकेले 19 मेट्रो शहरों में 2024 में लव अफेयर्स और अवैध संबंध के कारण 187 मर्डर हुए थे।
2: आज जब हम लोग क्राइम को देखते हैं और कई पोजीशन सामने आती है, तो अब जब कोर्ट्स के सामने फीमेल्स ने भी इस तरीके की प्रताड़िता करी हुई है और इवन ब्रुटालिटी के साथ उनको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर काट के भी रखा है, कईयों ने असॉल्ट किया है, कईयों ने डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, कईयों ने घर के अंदर पूरे की पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया है, तो उसके अंदर ये नज़र आता है कि एविडेंसेस के तौर पर वो पूरे एविडेंस क्रोनोलॉजी वाइज इवेंट की तरह से नॉट ओनली सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के रूप में CCTV फुटेज के साथ आपके डिजिटल इम्प्रिंट के साथ वो चीज सामने आए और कोर्ट में प्रूव हो, वो सामने हो, तो चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों को जो एक निर्धारित लॉ है उसके अंदर उसे वो सजा बिल्कुल मिलेगी और उसी के बिहाफ पर उनको लॉयर भी प्रोवाइड किया जाएगा, उन्हें इक्वालिटी भी दी जाएगी कि वो अपने पक्ष को भी आगे रखें।
0: सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में इस तरह के मामले आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इस पर एक शोध किया गया। ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी की एक रिसर्च ये समझने की कोशिश करती है कि ऐसे जघन्य अपराधों के पीछे अपराधियों की मानसिकता क्या होती है। क्या ये हत्याएं अचानक गुस्से में हो जाती हैं या फिर इनके पीछे लंबी सुनियोजित तैयारी होती है?
1: इस तरह के केसेस जो हाल फिलहाल में बहुत सारे हुए हैं, एक मेघालय में एक अपना केस हुआ था, कोई रघुवंशी थे उनका, उसके पहले एक कोई ब्लू ड्रम का केस था मेरठ का अपना। इन सारे केसेस में एक और बात यह देखी गई है कि उन स्त्रियों को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल बेल दे दिया गया। बेल हो जाने के बाद ट्रायल में कोई बहुत स्पीड नहीं हो रहा है। इसका जो एक समाज में जो एक इसका मैसेज जा रहा है वो भी एक विचारणीय बिंदु है कि इस तरह के जघन्य अपराधों में अगर बेल दे दिया जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर इस तरह की बहुत सी घटनाएं हो रही हैं तो एक ये संदेश जरूर गया हुआ है समाज के अंदर कि सजा के बगैर आदमी छूट सकता है या सजा होने में जितना समय लगेगा, मतलब एक ये विश्वास रह रहा है कि हम इस तरह का अपराध करके बच निकलेंगे। और ये अपराध करके बच निकलेंगे इस भाव के चलते इस अपराधों की संख्या और मतलब क्रमशः बढ़ती जा रही है। जिस चीज की आवश्यकता है वो है कि जितनी तीव्र गति से इनका ट्रायल कंप्लीट करके और सजा सुनाई जा सके, नहीं तो इसके चलते जो एक समाज में जो संदेश जा रहा है वो बहुत गलत जा रहा है और जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं तो एक चिंता का विषय तो हो ही गया है।
0: आमतौर पर यह माना जाता है और क्रूर अपराध ज्यादातर पुरुष करते हैं, जबकि महिलाएं तभी हिंसक होती हैं जब वो लंबे समय तक घरेलू हिंसा या प्रताड़ना का शिकार रही हैं। लेकिन AIC की रिसर्च रिपोर्ट इस सोच को पूरी तरह चुनौती देती है। रिपोर्ट कहती है कि महिलाओं द्वारा अपने पार्टनर की हत्या के लगभग 48% मामले अचानक गुस्से में नहीं होते बल्कि पहले से सोचे समझे और योजनाबद्ध होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे अपराधों के पीछे सबसे बड़े कारण शक, ईर्ष्या, रिश्तों में तनाव या अपनी किसी छुपी हुई जिंदगी को बचाने की कोशिश होते हैं। रिसर्च ये भी बताती है कि इस तरह के अपराधों में नशे और मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। अध्ययन में पाया गया कि ऐसी वारदातों में शामिल लगभग 68% महिलाओं ने अपराध से पहले के 24 घंटों में शराब का सेवन किया था। वहीं करीब 19% मामलों में अन्य नशीले पदार्थों के इस्तेमाल की भी जानकारी मिली। इसके अलावा लगभग 42% आरोपी महिलाएं किसी न किसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या से जूझ रही थी। हालांकि यह जरूरी नहीं कि नशा या मानसिक समस्या सीधे अपराध का कारण बने, लेकिन रिसर्च बताती है कि कई मामलों में ये परिस्थितियां फैसले लेने की क्षमता को प्रभावित करती हैं और हिंसक व्यवहार का जोखिम बढ़ा सकती है।
2: कहानी है मेरे साथ, अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।

एक जान जिसकी आंच में कई चेहरे जलते नजर आ रहे हैं। 25 जून 2026 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर FIR दर्ज की गई। शिकायत में आरोप है कि दान पेटियों से निकले चढ़ावे की गिनती के दौरान चोरी और गबन किया गया। FIR के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष जांच टीम की शुरुआती जांच में मौखिक, दस्तावेजी, इलेक्ट्रॉनिक और वित्तीय सबूत मिले। जांच में आरोप है कि संगठित तरीके से चढ़ावे की रकम और जेवरात की चोरी हुई। FIR में ये भी कहा गया है कि गिनती कक्ष में मौजूद कुछ ट्रस्ट और बैंक से जुड़े लोगों की भूमिका भी सामने आई है। सूत्रों की माने तो चढ़ावा चोरी मामले में पहली FIR के बाद बड़ा खुलासा सामने आया है। जांच के दौरान 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 तक उपलब्ध CCTV फुटेज की विस्तृत जांच की गई। सूत्रों के मुताबिक CCTV फुटेज में कुल 70 मौकों पर कथित चोरी गबन से जुड़ी गतिविधियां सामने आई हैं। सबसे बड़ी बात, अभी सिर्फ 3 महीने के CCTV सबूत मिले हैं, जो कि इन घटनाओं को जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। वहीं मंदिर में चढ़ावे को लेकर चांदी की ईंट के गायब होने की जांच भी SIT की ओर से की गई है। सूत्रों के अनुसार SIT की रिपोर्ट में 200 किलो चांदी की ईंटों की चोरी के दावे को गलत पाया गया है। जांच में सोशल मीडिया पर चांदी की ईंटों को लेकर किए गए कई दावों को भ्रामक बताया गया है। सूत्रों के मुताबिक दान में मिली चांदी की ईंटें गलाने के लिए भेजी गई थी। चांदी की ईंटें सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन को भेजे जाने का रिकॉर्ड भी जांच में मिला है। SIT की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि टिन्नू के पास बिना आधिकारिक आदेश के हुंडियों की चाबियां थीं। रिपोर्ट के अनुसार ट्रस्ट को काफी पहले ही चढ़ावा चोरी की आशंका हो गई थी। सितंबर 2024 और फरवरी 2025 में ट्रस्ट और स्टेट बैंक के अधिकारियों के बीच बैठक कर चढ़ावा गणना के लिए एक SOP तैयार की गई थी, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक SOP का पालन नहीं किया गया। आज तक बेरोजगार

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
1: In association with
2: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
3: Oh, sorry.
4: साइन हो गई तो मुझे नोबल लेने से कोई नहीं रोक सकता।

0: ये लो, इस पे साइन कर दो।
1: क्या लिखा है इस कागज में?
0: इसमें लिखा है कि तुम सीज फायर के लिए तैयार हो और अब लेबनान और ईरान पर हमले नहीं करोगे।
1: भाई तुम्हें याद है हमने कितनी बार कहा था कि मिडल ईस्ट में शांति आसान नहीं होती?
0: तुम साइन करोगे या नहीं?
1: तुम्हें याद है वो एक एक हमला, वो एक एक धमकी, वो एक एक रॉकेट?
0: आए तुम साइन करोगे या नहीं?
1: हाँ मैं साइन करूंगा, लेकिन अकेला नहीं करूंगा। जाओ पहले उस हिजबुल्ला के साइन लेकर आओ जो लगातार हम पर रॉकेट बरसाता है। जाओ पहले उस हमास का साइन लेकर आओ जिसने 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम दिया। उसके बाद मेरे दोस्त तुम जिस कागज पे कहोगे मैं साइन कर दूंगा।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: What's up, baby? It's Bretsky, and I'm here to tell you that SpinQuest.com is giving out free sweeps coins. All you gotta do is purchase a $10 coin pack, and guess what? They're gonna give you the coins from a $30 coin pack. That lets you play all your favorite games like Blackjack, Wanted, Dead or Wild, and we're talking real cash prizes, baby. SpinQuest.com.
5: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। हेक्सा ऑर्गेनिक, रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included.
1: Oh yeah.
0: So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
2: As world soccer hits the big stage, Fanatics Sportsbook is making every game day worth more. Earn up to 10% fan cash on your soccer bets, win or lose. That's real extra value you can unlock every match, all tournament long. And fan cash isn't just for betting. You can use it anywhere in the world of Fanatics. On game tickets, merchandise, collectibles, profit boosts, and more. One ecosystem, endless ways to spend. Plus, new customers get up to $1,000 in fan cash. That's $100 bet matched every day for your first 10 days. The world is ready. Are you? Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Must be 21 plus. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET. CT, call 888-789-7777. MA, call 800-327-5050. NY, call 877-8-HOPE-NY. MD, visit mdgamblinghelp.org. Not available in all states. Terms apply. See Fanatics Sportsbook app.
3: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
4: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
3: You're listening to Fox News Radio.
5: Classic rock hits.
6: You're listening to MSNBC.
3: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love anytime you want. Try it now and thank us later.
7: शादी का किचन महके जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां
8: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश
9: आसमान में उड़ने का सपना हर आम इंसान देखता है छुट्टियों और लॉन्ग वीकेंड्स की ट्रिप के लिए लोग अपने परिवार के साथ फ्लाइट्स की बुकिंग शुरू कर देते हैं लेकिन आने वाले दिनों में हवाई सफर की प्लानिंग आपकी जेब पर भारी पड़ने वाली है दरअसल दुनिया भर में जेट फ्यूल का एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है मैकेंजी की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF की किल्लत की वजह से एयरलाइंस की लागत आसमान छू रही है इसका सीधा नतीजा ये होगा कि आने वाले दिनों में हवाई किराया 25% तक महंगा हो सकता है हवाई सफर के इस बजट बिगड़ने के पीछे की पूरी कहानी डेटा से अगर समझें तो किसी भी एयरलाइन के कुल ऑपरेटिंग खर्च में करीब 30% हिस्सा अकेले ईंधन का होता है और इस बार ग्लोबल रिफाइनरियों में उत्पादन की कमी और जियोपॉलिटिकल तनाव की वजह से फ्यूल सप्लाई चेन टूट गई है ऐसे में दुनिया के 40% जेट फ्यूल सप्लाई करने वाले खाड़ी देश और एशियाई निर्यातकों पर छाया संकट हालात को बिगाड़ रहा है इस पूरे संकट के पीछे कच्चे तेल की कीमतों के साथ एक टेक्निकल खेल भी काम कर रहा है कच्चे तेल और उसे रिफाइन होकर बनने वाले ATF की कीमत के बीच के अंतर को क्रैक स्प्रेड कहते हैं पहले ये क्रैक स्प्रेड $20 प्रति बैरल रहता था जो 2026 में औसतन $50 प्रति बैरल के पार जा सकता है फिलहाल ग्लोबल रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता पर काम कर रही हैं, जिससे ATF का नया प्रोडक्शन बढ़ाना नामुमकिन हो गया है अभी डिमांड को पूरा करने के लिए पुराने स्टॉक का सहारा लिया जा रहा है जो तेजी से खत्म होने की कगार पर है फ्यूल की लागत दोगुनी होने की स्थिति में एयरलाइंस इस पूरे बोझ को मुसाफिरों पर डालने की तैयारी में है आम जनता को इस महंगे सफर से राहत कब मिलेगी इसे लेकर के भी स्थिति बहुत ज्यादा साफ नहीं है हालांकि इस संकट के बीच कुछ उम्मीदें भी जुड़ी हुई हैं। हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अगर तेल टैंकरों की आवाजाही रफ्तार पकड़ती है तो कीमतों में फौरी कमी आ सकती है ये राहत बहुत छोटे वक्त के लिए होगी क्योंकि दुनिया के तमाम देश अपना रणनीतिक भंडार दोबारा भरने में जुटे हैं इस रीस्टॉकिंग की वजह से सप्लाई सामान्य होने के बाद भी कई महीनों तक हवाई ईंधन के दाम ऊंचे बने रहेंगे ऐसे में राहत की उम्मीद कम है और लंबे समय तक महंगा सफर ही आम लोगों की किस्मत बनने की आशंका है जाहिर है कि एयरलाइंस के बढ़ते खर्च का बोझ सीधे मिडिल क्लास के बजट पर आने वाला है जिससे हवाई सफर का मजा फीका होना तय है आज तक ब्यूरो
10: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health ka Sach in association with
11: Bharat ki apni electric sawari Sokudo
1: durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
1: शेल्स दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर. राष्ट्रपति के साथ समुद्री सुरक्षा रक्षा सहयोग पर वार्ता. देर शाम राष्ट्रीय दिवस समारोह में शिरकत करेंगे. राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों के घरों पर एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी. पुलिस की 6 टीमें घरों की तलाशी में जुटी. घरवाले और पड़ोसियों से पूछताछ. केतन अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस ने किया क्राइम सीन का रिक्रिएशन. मुख्य आरोपी सिया को लेकर लोहगढ़ किले ले गई थी पुलिस. डेथ पॉइंट से धक्का तक. 18 जून की वारदात पर सवाल जवाब. त्योहार में जहरीली साजिश के खुलासे से मुंबई में हड़कंप. मुहर्रम के जुलूस से पहले भाईखला में 14,900 जिंक फॉस्फाइड वाले कैप्सूल मिले. संदिग्ध से पूछताछ जारी. और अमेरिका ईरान में युद्ध विराम टूटने का खतरा. 24 घंटे में दूसरी बार अमेरिका ने हॉर्मुज के पास 10 ईरानी ठिकानों पर बमबारी की. ईरान ने कुवैत से बहरीन तक अमेरिकी बेस को बनाया निशाना.

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। दोपहर के 2 बजे के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। और आपको ये भी बता दें कि सबसे बड़ी और अहम खबरों के सुपर संडे में क्या खास है, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे, क्योंकि चढ़ावा चोरी के मामले में कई खबरें सामने आई हैं, कई अपडेट्स हैं। अयोध्या में आरोपियों के घर पर छापेमारी लगातार जारी है। दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर है वो है प्रधानमंत्री मोदी के सेशल्स दौरे से जुड़ी हुई, इसकी भी हम बात करेंगे। साथ ही सरकारी योजना के लाभार्थी मंत्री से भी आपको मिलवाएंगे, आरोप लगे हैं और जबरदस्त तरीके का हंगामा भी शुरू हो गया है इस पर। और ठीक दोपहर 2:30 बजे केतन को सिया ने कैसे मारा, पूरी खबर आपको बताएंगे, क्योंकि आज लोहगढ़ किले पर ले जाकर रिक्रिएशन किया गया है, तमाम चीजों को पुलिस की तरफ से पूछा और जांचा गया है। तो सबसे पहले बड़ी और अहम खबर, हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक मौजूदगी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए भारत और सेशल्स ने दोस्ती की नई इबारत लिखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में लीडरशिप के लिए सेशल्स के सबसे बड़े सम्मान गार्जियन ऑफ ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड सस्टेनेबल ग्रोथ और प्रधानमंत्री मोदी के ग्रीन विजन के लिए उनके लंबे समय से किए जा रहे प्रयासों को मान्यता देता है। इससे पहले द्विपक्षीय वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पेट्रिक हार्मनी ने समुद्री सुरक्षा से लेकर ब्लू इकोनॉमी, रक्षा साझेदारी, व्यापार, निवेश पर चर्चा की थी। दौरे के दूसरे दिन आज राजधानी विक्टोरिया में प्रधानमंत्री मोदी का राजकीय स्वागत किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और आज शाम को वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लेंगे।
1: हमारा विश्वास है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी दोनों देशों के बीच की दूरी को कम करने का प्रभावी माध्यम है। हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है। फ्रेंड्स, विकास साझेदारी हमारे संबंधों की मजबूत पहचान रही है। भारत हमेशा की प्राथमिकताओं, आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को केंद्र में रखकर आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रपति जी की भारत यात्रा के दौरान हमने $175 मिलियन के स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा की थी। इसके अंतर्गत सोशल हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, स्किलिंग, फूड सिक्योरिटी, शिक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में काम किया जा रहा है। सेशल के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में सहयोग भारत की विशेष प्राथमिकता रही है। मुझे खुशी है कि हम सेशल के सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग में योगदान दे रहे हैं। आज प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सेंटर की वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी की जा रही है। हमारा विश्वास है कि यह सेंटर आने वाले समय में सेशल के युवाओं के कौशल, रोजगार और आत्मविश्वास को नई ऊंचाई देगा। फ्रेंड्स, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। कोविड के मुश्किल समय में वैक्सीन की आपूर्ति से हमने एक मित्र के रूप में अपना दायित्व निभाया। आज जन औषधि पर किए गए एमओयू से सेशल के लोगों को क्वालिटी और एफोर्डेबल मेडिसिंस उपलब्ध कराने में सहयोग मिलेगा। हम कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग के माध्यम से सेशल की मेडिकल केयर को और सशक्त बनाने के प्रयास करते रहेंगे। ऊर्जा और क्लाइमेट एक्शन में भी हमारा सहयोग निरंतर आगे बढ़ रहा है। हम ग्रीन हाइड्रोजन सहित क्लीन एनर्जी के नए क्षेत्रों में भी विन विन सहयोग जारी रखेंगे। ब्लू इकोनॉमी हमारे संबंधों का एक स्वाभाविक और स्ट्रेटेजिक क्षेत्र है। हम ओशन ऑब्जर्वेशन, मरीन साइंस और कोस्टल मैनेजमेंट में भारत की एक्सपर्टाइज सेशल के साथ साझा करेंगे। स्पेस के क्षेत्र में हम मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि इस विषय पर आज दोनों पक्षों के बीच एमओयू किया गया है। हमारा मानना है कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से अभिन्न है। हम इस दिशा में अपना करीबी सहयोग जारी रखेंगे। फ्रेंड्स, भारत सेशल संबंधों की असली शक्ति हमारे पीपल टू पीपल टाइज हैं। हमारी आज की चर्चाओं से यह संबंध और मजबूत होंगे। दोनों देशों के स्पोर्ट्समैन और एथलेट्स के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए हम संस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे। सेशल्स में योग और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की लोकप्रियता हमारे सांस्कृतिक जुड़ावों को दर्शाती है। इसी भावना के साथ हम दोनों देशों के लोगों, विशेषकर युवाओं के बीच संपर्क बढ़ाने के प्रयास जारी रखेंगे। फ्रेंड्स, मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। एक्सलेंसी, हमारे संबंधों के पिछले 50

0: राम लला की घर डकैती डालने वालों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। एसआईटी की जांच के बाद राम मंदिर ट्रस्ट से इस्तीफे हुए तो वहीं अब पुलिस भी एक्शन मोड में दिख रही है। अयोध्या पुलिस ने उन आरोपियों के घर धावा बोला जो अयोध्या में रहते हैं।
1: राम मंदिर चलावा चोरी के मामले में गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों के घर पर जो अयोध्या के रहने वाले हैं उनके घरों पर छापेमारी की जा रही है। मैं इस समय पर अयोध्या में ही रह रहे रमाशंकर मिश्रा जो आरोपी थे जिनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया रमाशंकर मिश्रा के घर पर मौजूद हूँ। उनके परिजनों से उसकी भाभी बहन उनके पिता से पूछताछ की जा रही है। ये रमाशंकर मिश्रा घर है जो राम मंदिर में नोट गिनने के काम में जुड़ा हुआ था। बता दें कि अयोध्या पुलिस ने इन सभी आरोपियों के घर से लगभग 80 लाख रुपए बरामद किए थे और इनको जुडिशियल कस्टडी में सोमवार तक के लिए भेज दिया गया था, लेकिन अब कल सोमवार को दोबारा जुडिशियल कस्टडी पर सुनवाई होनी है। उससे पहले पुलिस के द्वारा ये जांच की जा रही है, पड़ताल की जा रही है, इन सभी जो आरोपी हैं उनके घर वालों से पूछताछ की जा रही है कि ये लोग कब आते थे, कैसे आते थे, क्या क्या खरीदा गया।
0: अयोध्या पुलिस ने टिन्नू यादव, मनीष यादव, अनुकल्प मिश्रा, लोकुश मिश्रा, करुणेश पांडे और रामाशंकर मिश्रा के घर छापा मारा, उनके घर वालों से पूछताछ की। ये आरोपी घर पर कब आते हैं, किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, ये सारी जानकारियां पुलिस ने इकट्ठा की हैं। आरोपी रामाशंकर मिश्रा के पिता अयोध्या में ही एक मंदिर में पुजारी हैं। पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की
2: जांच के लिए, और वो यहाँ रहते हैं कि नहीं रहते हैं, कहाँ वो हैं तो हम बताएं कि कमरा पे अलग लिए रहते हैं, दो ढाई साल से यहाँ रहते नहीं हैं, आना जाना भी यहाँ का नहीं है, एक दिन कभी इस मंदिर के अंदर पांव नहीं रखते हैं।
1: कब से नहीं आया?
2: दो ढाई साल हो गए यहाँ नहीं आया। हाँ, 2 साल।
1: राम मंदिर में कब से काम कर रहा था, क्या काम करता था रामाशंकर?
2: 5-6 साल हो गए, तब वहाँ पैसा गाने में बताओ गाना कर्मचारी।
1: अच्छा, हाँ। अभी पैसा वैसा ज्यादा देखा आपने रामाशंकर के पास? बहुत
2: कभी नहीं, पैसा तो मांगा तो रहा, तो पैसा पाई नहीं है? पैसा मांग लिया तरह के दे दो कहीं जरूरत लगे।
1: पुलिस तो कह रही है कि सब मिलके 80 लाख रुपया चोरी कर लिए चढ़ावे से।
2: कुछ होइए कि नया पैसा यहाँ कहूँ देखबे न आया हुआ है।
0: रामाशंकर के परिवार वाले कह रहे हैं कि वो यहाँ आता ही नहीं, सालों से घर आया नहीं, किराए का मकान लेकर वही रहता है।
3: तो हमको ना वो करे हैं ना हमको दिया है, कभी हमसे उनसे बनता ही नहीं था, कभी वो 10 रुपया हमको दिए ही नहीं थे। मुझको मेरे पति का सहारा है, बस कोई का सहारा नहीं है।
1: तो यहाँ रामाशंकर के बारे में और क्या, घर से कुछ पैसा वैसा ले गए, कुछ बरामदगी दिखाई है, घर से मिला है
3: कुछ? कुछ नहीं मिला है सर, केवल कागजात मिला है वही लेकर गए हैं, आधार नंबर, खाता नंबर।
0: चढ़ावा चोरी के आरोपियों से करीब 80 लाख की बरामदगी हो गई है। 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से बरामद होने की बात सामने आ रही है।
1: टिन्नू यादव के इस हॉस्टल से ही, दुर्गापुरी कॉलोनी का ये अयोध्या में ही दुर्गापुरी कॉलोनी ये हॉस्टल है, और इस हॉस्टल में यूं तो यहाँ अयोध्या विश्वविद्यालय के आसपास के कॉलेज के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर 2 कमरे हैं जो टिन्नू यादव ने अपने निजी यूज के लिए रखे हैं। कहने को तो दोनों कमरे पूजा घर है, उसका अपना कमरे उनके कब्जे में है, लेकिन कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद जब गुरुवार देर रात टिन्नू यादव को अयोध्या पुलिस ने FIR दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया तो शुक्रवार की सुबह उसको यहां लाया गया, और पुलिस के अनुसार जो दस्तावेज जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है कि लगभग 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से बरामद हुए हैं।
0: इस मामले में एक गिरफ्तारी अनुकल्प मिश्रा की भी हुई है जिसकी देखरेख में नोटों की गिनती की जाती थी। अनुकल्प मिश्रा ने 2 साल पहले 40 लाख का एक घर लिया था जहां आज तक की टीम पहुंची।
4: मेरे भाई को फंसाया जा रहा है, मेरी मुझ में ही है, उनसे शादी हुई थी चाचा की, 10 साल से इनका केस चल रहा है, उनका मैटर चाचा चाची का है, वो अलग जाने।
0: उधर अनुकल्प के रिश्तेदार पैसों को लेकर शक जाहिर कर रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में CCTV कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।

0: जहां टिन्नू यादव की तरह यूपी पुलिस के वायरलेस डिपार्टमेंट के आरएमओ अर्जुन देव की भूमिका पर भी रिपोर्ट सामने आई है। जिस कमरे में नोट गिने जाते थे और चोरी हो रही थी, उसका कंट्रोल आरएमओ को दिया गया था। अर्जुन देव का पिछले 17 सालों से ट्रांसफर नहीं किया गया, जिसकी वजह उसका चंपत राय से करीबी होना बताया जा रहा है। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।
1: और अब हम बात करेंगे बिहार के बारे में। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने अपना सरकारी आवास छोड़ दिया है। राबड़ी देवी का सामान अब सरकारी आवास से शिफ्ट किया जा रहा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, राबड़ी देवी अब अपने निजी घर में शिफ्ट हो रही हैं। आपको याद होगा इसे लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला था, क्योंकि राबड़ी देवी साफ साफ कह रही थी वो घर नहीं छोड़ेंगी। वहीं सम्राट चौधरी ने कहा था कि ये सरकारी आवास है, इसे छोड़ना ही होगा।
2: राबड़ी देवी को अपना 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करना है, और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, ये वो उनका निजी आवास है लालू परिवार का, जहां पर सामान शिफ्टिंग का काम लगातार चल रहा है। थोड़ी देर पहले इस गाड़ी पे सामान आया था, पिकअप वैन पे, और अब देखिए सामान खाली करने के बाद गाड़ी यहां से निकल रही है। तो लगातार यहाँ गतिविधियाँ हैं, और चूंकि 22 जून की तारीख में जो आखिरी नोटिस था वो जारी किया गया था और एक हफ्ते का समय दिया गया था, लेकिन अब माना जा रहा है कि 29 जून जो है वो आखिरी तारीख होगी अंतिम नोटिस जारी होने के बाद। तो संभव है कि उसके पहले जो सरकारी आवास है 10 सर्कुलर रोड आवास, उसको खाली कर दिया जाएगा। हालांकि 39 हार्डिंग रोड आवास जो है वो मिला है सरकारी आवास राबड़ी देवी को, लेकिन उस आवास के आवंटन के बावजूद जो परिवार है वो यहीं शिफ्ट हो सकता है। और आपको दिखाते हैं, कौटिल्या नगर का ये इलाका है और यहीं पर राबड़ी देवी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो लगातार आकर के जो काम चल रहा था उसकी निगरानी भी करती रही हैं। और अब ये बताया जा रहा है कि अंतिम तौर पे, देखिए ये भी गाड़ी जो है वो लालू परिवार से ही संबद्ध है, तो तमाम जो सामान शिफ्टिंग का काम है वो यहाँ पे चल रहा है। पिकअप वैन रात में भी आ रहे हैं और दिन के उजाले में भी अब सामान शिफ्टिंग हो रही है। तो ये अंतिम दौर की तैयारी है 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने को लेकर के, यानी ये जगह कौटिल्या नगर का ये मकान अब नया ठिकाना होगा लालू परिवार का। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, आज तक, पटना।
1: और बिहार के बाद यह खबर है राजस्थान से, जहां बीजेपी सरकार के एक मंत्री सरकारी सब्सिडी को लेकर चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। विपक्ष मंत्री पर कई गंभीर आरोप लगा रहा है, जबकि मंत्री भागीरथ चौधरी ने इन तमाम आरोपों को खारिज करते हुए पूरी प्रक्रिया को निर्धारित मापदंडों और सरकारी नियमों के तहत बताया है।
3: क्या एक मंत्री अपनी ही मंत्रालय की योजना से सब्सिडी ले सकता है? क्या नियम सभी के लिए बराबर हैं या पद और प्रभाव से बदल जाते हैं? केंद्र सरकार की कृषि योजनाओं को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। भारत सरकार के एक मंत्री ने सरकार से करीब 99 लाख की सब्सिडी प्राप्त की है। खीरे, टमाटर, शिमला मिर्च की खेती के लिए मंत्री जी ने अपने ही कृषि मंत्रालय से सब्सिडी ले ली। मामला सामने आने के बाद विपक्ष ने इसे लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं और निष्पक्ष जांच की मांग की है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस पर सत्ता का गलत प्रयोग बताया है। सचिन पायलट ने लिखा, कृषि मंत्री पर 99 लाख सब्सिडी का आरोप, अपनी ही योजना से लाभ लेने का मामला, पद के दुरुपयोग पर विवाद, पारदर्शिता और जांच की मांग। इस बीच आप नेता मनीष सिसोदिया ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।
4: मोदी सरकार के मंत्री खुद अपने ही विभाग में खीरा किसानों की सब्सिडी खा गए, तो चारों तरफ लूट पे लूट चले जा रही है। तो इस लूट वाली सरकार को हटाना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा कि ये लूट सरकार अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी।
3: वहीं मंत्री भागीरथ चौधरी ने विपक्ष के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि पूरी प्रक्रिया सरकारी नियमों और निर्धारित मापदंडों के तहत की गई है।
5: और 2018 से मैं इस आवेदन के लिए मैं लगा हुआ हूँ उसमें, तो कोई मैंने कोई प्रक्रिया के तहत मैंने काम किया। दूसरा, हम दो MS हैं, MOS हैं हम, और उसमें एक रामनाथ जी ठाकुर है और एक मैं हूँ। ये जो सब्सिडी वाला है, ये जो कुछ है, तो वो राज्य मंत्री और रामनाथ जी ठाकुर हैं।
3: फिलहाल इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। विपक्ष जहां इसे पद के दुरुपयोग का मामला बता रहा है, वहीं सरकार इसे नियमों के तहत हुई प्रक्रिया बता रही है। आज तक ब्यूरो।
1: खबर है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से, जहां शुक्रवार को हुए भीषण सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर हो गई है 3। हादसे में गंभीर रूप से झुलसे टोल प्लाजा कर्मचारी आलोक सिंह ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना उस वक्त हुई थी जब कानपुर से वाराणसी जा रही एलपीजी गैस से भरा हुआ टैंकर अनियंत्रित हुआ था और डिवाइडर से टकरा कर देखते ही देखते उसमें आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि पूरे इलाके में धुएं का घना गुबार छा गया। आग की चपेट में आकर आसपास खड़ी हुई करीब 15 बाइकें और 4 पहिया वाहन भी जलकर खाक हो गए थे। सूचना मिलते ही दमकल और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची थी। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका था। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है। इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परो।
7: इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
9: As world soccer hits the big stage, Fanatics Sportsbook is making every game day worth more. Earn up to 10% fan cash on your soccer bets, win or lose. That's real extra value you can unlock every match, all tournament long. And fan cash isn't just for betting. You can use it anywhere in the world of Fanatics. On game tickets, merchandise, collectibles, profit boosts, and more. One ecosystem, endless ways to spend. Plus, new customers get up to $1,000 in fan cash. That's $100 bet matched every day for your first 10 days. The world is ready. Are you? Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Must be 21 plus. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET. CT, call 888-789-7777. MA, call 800-327-5050. NY, call 877-8-HOPE-NY. MD, visit mdgamblinghelp.org. Not available in all states. Terms apply. See Fanatic Sportsbook app.
10: Tune in to How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
11: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
12: Sokudo. Hexa Organic.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती, तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
4: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
5: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
6: हमने तब भी सवाल किया था,
7: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
6: हम आज भी सवाल करते हैं।
7: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
6: ऑपरेशन अग्नि,
7: आज तक के ही स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
6: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
8: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें साथ तक, देखते रहिए आज तक।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: Shop the Sherwin-Williams 4th of July sale and get 30% off paints and stains June 26th through July 6th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only, some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
1: As world soccer hits the big stage, Fanatics Sportsbook is making every game day worth more. Earn up to 10% fan cash on your soccer bets, win or lose. That's real extra value you can unlock every match, all tournament long. And fan cash isn't just for betting. You can use it anywhere in the world of Fanatics. On game tickets, merchandise, collectibles, profit boosts, and more. One ecosystem, endless ways to spend. Plus, new customers get up to $1,000 in fan cash. That's $100 bet match every day for your first 10 days. The world is ready. Are you? Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Must be 21 plus. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET. CT, call 888-789-7777. MA, call 800-327-5050. NY, call 877-8-HOPE-NY. MD, visit mdgamblinghelp.org. Not available in all states. Terms apply. See Fanatics Sportsbook app.
2: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
3: हमने तब भी सवाल किया था।
4: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
3: हम आज भी सवाल करते हैं।
4: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
3: ऑपरेशन अग्नि,
4: आज तक के ही स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
3: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
5: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: एक तरफा प्यार का खौफनाक अंजाम। सिरफिरे युवक ने युवती पर चाकू से ताबड़तोड़ 14 वार कर दिए। घटना का CCTV वीडियो सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि बेखौफ युवक ने महज 10 सेकंड में युवती पर 14 वार कर दिए। युवती चीखती रही लेकिन युवक रुका नहीं।
7: वो घटनास्थल पर आया, बालिका से बातचीत करी और बातचीत करते करते थोड़ी देर बाद उसने उसके ऊपर चाकू से मल्टीपल वार किए। बालिका को भी हमने एस एन कृष्णा अस्पताल में रेफर हुई थी तो वहां भर्ती है और हमने वहां देखने भी गया था और उसका ऑपरेशन कराया जा रहा है।
6: पुलिस ने मामले पर तुरंत एक्शन लिया और आरोपी सुनील को गिरफ्तार कर लिया।
7: आरोपी को टीम ने गिरफ्तार किया है और इस दौरान वो भागने के प्रयास में उसके पैर में चोट आई है, उसका पैर पूरी तरह जख्मी है तो उसको भी इलाजरत इलाज कराया जा रहा है। एक बार इलाज हो जाए उसके बाद उससे उसके जो इंटेंशन है उसके संबंध में पूछताछ की जाएगी।
6: जांच में सामने आया है कि दोनों की मुलाकात इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। आरोपी युवती से एक तरफा प्रेम करता था और जब युवती ने उससे दूरी बनाई तो उसने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। आज तक ब्यूरो।
8: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन। कहा हिंद महासागर हमारा साझा घर। समुद्री सुरक्षा रक्षा सहयोग पर वार्ता। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों के घरों पर ताबड़तोड़ छापेमारी। पुलिस की 6 टीमों की तलाशी जारी। घर वाले और पड़ोसियों से पूछताछ। पेपर लीक पर महाराष्ट्र से यूपी तक उबाल। अखिलेश बोले बीजेपी राज्य में पेपर लीक पर नकेल नहीं। योगी ने कानून व्यवस्था पर अपनी थपथपाई पीठ। कहा 2017 के बाद दंगे नहीं।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर जांच तेज हुई। अयोध्या में टिनू यादव समेत आरोपियों के घरों पर छापेमारी। आरोपी टिनू यादव के घर पहुंचकर पुलिस परिवार वालों से पूछताछ कर रही है। आरोपी रामशंकर यादव और टिनू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव के घर पर भी पहुंची पुलिस। अयोध्या में अविनाश शुक्ला के किराए के घर पर पुलिस पहुंची। पड़ोसियों और दुकानदारों ने से बात की, उनके बयान दर्ज किए गए। अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, रामशंकर यादव, मनीष यादव और करुणेश रमाशंकर मिश्रा के घर पर भी पहुंची टीम। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर जांच और पूछताछ के काम में लगी हुई है पुलिस की 6 टीमें। अयोध्या में अनुकल्प मिश्रा के 40 लाख के घर की खरीद पर पुलिस जांच तेज हुई। आय से स्रोत और दस्तावेजों की पड़ताल जारी। आज तक की खबर का सर अनुकल्प मिश्रा द्वारा 2 साल पहले खरीदे गए 40 लाख रुपए के घर की दिखाई गई थी खबर, वहां पहुंची अयोध्या पुलिस। चेन्नई में राम मंदिर दान घोटाले के आरोपों पर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का बयान, बड़ी लूट हुई है, ये गंभीर राष्ट्रीय मुद्दा है। रायपुर राम मंदिर चढ़ावा विवाद में इंद्रेश कुमार का बयान, एसआईटी जांच और दोषियों पर कार्रवाई का जताया गया भरोसा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, 2017 के बाद प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ, मुहर्रम पर नहीं होता यहां बवाल। कन्नौज के सांसद निधि को लेकर ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर हमला, विकास कार्यों पर उठाए सवाल। राजभर बोली, सिर्फ यादव मुस्लिमों में आरक्षण का खाया, अति पिछड़ों को डराना बंद करे समाजवादी पार्टी। गाजियाबाद के चौनिका सिटी में बड़ा बुलडोजर एक्शन, यूपी एसआईडीए की जमीन पर बने हुए 3 मंजिला मजार को गाजियाबाद प्रशासन ने हटाया। कौशाम्बी में एलपीजी टैंकर हादसे में एक और की मौत हुई, अब तक 3 की गई जान, 4 घायलों का इलाज जारी।

पुणे में केतन अग्रवाल हत्याकांड में आज पुलिस ने बड़ी जांच की है। आरोपी नंबर एक और केतन की मंगेतर सिया को पुलिस लोहगढ़ के लिए लेकर गई थी। उस जगह पर पहुंची जहां जांच पड़ताल की गई है, जहां से केतन को धक्का दिया गया था और उसकी मौत हो गई थी। अभी एक दिन पहले ही सिया के माता पिता से पहली बार पुणे पुलिस ने कई घंटे तक सवाल जवाब किए, लगभग 12 घंटे तक पूछताछ की गई थी। उसके भाई से भी पुलिस केतन केस को लेकर पूछताछ कर चुकी है। अब आज पुलिस ने लोहगढ़ किले में बड़ी बारीकी से जांच की है और पता लगाने की कोशिश की है कि कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो पुणे पुलिस के सामने कई अहम सवाल हैं। अब तक गिरफ्तार सिया और चेतन के आरोपों को लेकर पुलिस घर वालों से बात कर रही है, जानकारियां जुटा रही है और आखिर इस क्राइम फाइल की सबसे अहम कड़ी रिक्रिएशन को भी पूरा कर लिया गया है। इस दौरान किले में पुलिस के साथ सिया मौजूद थी, वो पुलिस के तमाम सवालों का जवाब दे रही थी और पुलिस उसके बयानों के आधार पर क्राइम सीन को रिक्रिएट कर रही थी।

0: लोहगढ़ किले में 18 जून को जो कुछ हुआ था उसी को दोहराने की कोशिश आज पुणे पुलिस ने की है। पहाड़ी पर स्थित किले के उसी जगह पर पुलिस की पड़ताल चली है। ये तस्वीरें धुंधली हैं, लेकिन देश को सन्न कर देने वाली साजिश की तस्वीर साफ करने के लिए पुलिस ने यह कदम उठाया है। इन धुंधली तस्वीरों में सिया कोयल है, पुणे पुलिस की टीम है, और साथ में है क्राइम सीन को रिक्रिएट करने वाले एक्सपर्ट केतन अग्रवाल। हत्याकांड की पड़ताल का ये अहम पड़ाव था। कई दिनों से माना जा रहा था कि पुणे पुलिस लोहगढ़ के किले में पहुंचकर क्राइम सीन को रिक्रिएट कर सकती है। तमाम कयासबाजी के बीच पुणे पुलिस की टीम ने सुबह 6:30 बजे ही लोहगढ़ किले में दस्तक दे दी। पुलिस सिया को लेकर किले पर पहुंची। किला का गेट बंद कर दिया गया, पर्यटकों को रोक दिया गया, हर किसी के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई। सुबह 6:30 बजे सिया को लेकर पुलिस ने किले में चढ़ाई शुरू की। करीब घंटे भर बाद पुलिस क्राइम सीन पर पहुंच गई। जांच दल के साथ चेतन की कदकाठी का एक डमी भी था। क्राइम सीन पर पहुंचने के बाद पुलिस ने सिया से कई सवाल किए। 18 जून को क्या हुआ था, केतन और चेतन कहां थे, किसने धक्का दिया, कैसे तीनों यहां तक पहुंचे, ऐसे एक एक सवाल के जवाब पुलिस ने सिया से पूछे और उसके जवाबों के मुताबिक ही क्राइम सीन की बारीकी से जांच पड़ताल की। फिर जिस जगह से केतन को धक्का दिया गया पुलिस ने उस जगह से सिया के बयानों के हिसाब से क्राइम सीन रिक्रिएट किया। रिक्रिएशन के दौरान पुलिस ने उसी स्थान से एक डमी को नीचे धक्का देकर पूरी घटना को दोहराया जहां से कथित तौर पर केतन अग्रवाल को खाई में धक्का दिया गया था। इस प्रक्रिया का मकसद घटना के क्रम, हालात और उपलब्ध साक्ष्यों का मिलान करना था ताकि जांच को और मजबूत किया जा सके।
1: ये लोहगढ़ किले के ऊपर जहाँ पे वो घटना हुई थी, उस घटना पे एक डमी सीन क्रिएट करके वहाँ पे एक्यूज को ले जाया गया है, किस रूट से जाके कहाँ बैठे और क्या क्या प्रोसेस घड़ी और घटना कैसे घड़ी उसको रिक्रिएट जा रहा है किया गया है, उसमें एक्यूज ने बता दिया है।
0: केतन हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस आज के रिक्रिएशन को काफी अहम मान रही है।
2: सर, सीन को रिक्रिएट किया गया, एग्जैक्टली किस तरीके से ये पूरा हुआ?
3: आज सिया ने बताया कि उसने इन्फॉर्मेशन दी जैसे हुआ था, वो जो भी डिस्कवरी ऑफ फैक्ट है उस हिसाब से हमने सीन रिक्रिएट किया है।
2: चेतन चौधरी जो है उसका भी अभी फॉरेंसिक करना अहम है, क्योंकि जिस मतलब जहां से उसने एंट्री की थी उसी तरीके का वॉक करना और वो सीसीटीवी में फॉरेंसिक एविडेंसेस लेना वो भी बाकी।
3: अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, आज सिया का रिक्रिएशन हुआ है, वो सीन रिक्रिएशन हमने किया।
0: इस जांच पड़ताल के बीच दावा ये भी किया जा रहा है कि सिया और चेतन ने केतन को मारने का रिहर्सल भी किया था।
2: सबसे अहम बात यह है कि सिया और चेतन ने दोनों ने मिलकर इसकी रिहर्सल की थी, इससे पहले प्रैक्टिस हुई थी और प्रैक्टिस के बाद इसको अंजाम दिया गया था और उसी के बाद आप देख सकते हो कि सीन रिक्रिएशन ये लोहगढ़ किले पे अक्सर संडे को किला शुरू रहता है, लेकिन आज पर्यटकों के लिए और जितने विजिटर्स हैं उन सभी के लिए इसे बंद किया गया था। लेकिन यही सीढ़ियां हैं, इसी सीढ़ियों से तीनों ऊपर गए थे, चेतन चौधरी गया था, उसके बाद सिया और केतन अग्रवाल भी गया था और उसी के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया।
0: हालांकि ऐसे तमाम दावों पर पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, सभी तथ्यों को वेरीफाई किया जा रहा है।
2: एग्जैक्टली किसने किया था, चेतन ने किया था, फिजिया ने?
3: देखिए, आज तो हमने सीन रिक्रिएट किया गया, उसने अभी जो इन्वेस्टिगेशन में सारी बातें सामने आएगी उस हिसाब से अभी आगे भी इन्वेस्टिगेशन करना है।
2: देखो, इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि दोनों ने रिहर्सल की थी, इससे पहले प्रैक्टिस हुई थी कहीं ना कहीं और फिर आके इसे अंजाम दिया गया, तो क्या या ये अभी कह रही है कि वो प्रैक्टिस किस तरीके से हुई थी और कैसे उसने एग्जीक्यूट किया,
3: वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आज का तो सीन रिक्रिएशन हो।
0: इस हत्याकांड में सिया और चेतन के सामने आए नए नए वीडियो और केतन के परिजनों के आरोपों के बाद ट्विस्ट और बढ़ गया है। श्री कृष्ण पंचाल के साथ ओंकार वाबले, लोहगढ़ आज तक।
4: सवाल कई है कि आखिर सिया ने केतन का कत्ल किया क्यों, क्या वो शादी के लिए मना नहीं कर सकती थी? ऐसे तमाम सवाल हैं जो किसी को हजम नहीं हो रहे, लिहाजा पुणे पुलिस सिया के साथ साथ उसके घर वालों से भी लगातार पूछताछ कर रही है। एक दिन पहले पुलिस ने उसके माता पिता से करीब 12 घंटे की मैराथन पूछताछ की थी, तो भाई से भी 2 दिन तक सवाल जवाब किए गए।

0: सिया और केतन बस कुछ ही महीने की बात दोनों साथ फेरे लेने वाले थे, दोनों के रिश्ते की डोर में बंधने वाले थे, लेकिन 18 जून को एक झटके में सब कुछ खत्म हो जाता है। लोहगढ़ के किले में ठीक इसी जगह पर केतन करीब 340 फीट गहरी खाई में जा गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। इस घटना के 5 दिन बाद यानी 23 जून को सिया की गिरफ्तारी हो जाती है और वहां से तब तक हादसा लगने वाला मामला पूरी तरह से अलग ट्रैक पर चला जाता है। कत्ल का आरोप लगता है। आरोप ये कि सिया ने अपने मंगेतर को मार डाला। इस गुनाह में सिया का साथ दिया उसके दोस्त चेतन चौधरी ने। वही चेतन जिसका सिया के साथ कई वीडियो सामने आ चुका है। एक वीडियो में दोनों क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखते दिखे हैं। और सबसे अहम तो ये कि सिया और चेतन ने केतन की हत्या से ठीक एक दिन पहले यानी 17 जून को ही पुणे के एक कैफे में मुलाकात की थी। दोनों शाम करीब 4:30 बजे मिले थे। माना जा रहा है कि दोनों ने उसी कैफे में हत्या की फाइनल साजिश रची और उसे अंजाम देने पर करीब घंटे भर बात की। खुलासा ये भी हुआ कि हत्या से पहले सिया ने लोहगढ़ किले का वीडियो यूट्यूब पर सर्च किया था, वहां की लोकेशन को कैफे में मुलाकात के दौरान चेतन के साथ साझा किया था। बात यहीं तक नहीं रुकी। सिया का बड़ा भाई साहिल ये भी चेतन को जानता था, दोनों ने साथ साथ क्रिकेट खेला है, उससे जुड़ा भी वीडियो सामने आया है।
1: आज वो अभी यहाँ पे आए हुए, उनकी चौकसी चालू है, लगभग 2 घंटे हुए हैं वो अभी यहाँ आए हुए। चेतन और साहिल एक दूसरे को जानते थे, वो साथ में क्रिकेट भी खेलते थे और वो दोनों दोस्त भी थे।
0: चेतन के साथ तमाम वीडियो और कनेक्शन सामने आने के बाद पुणे पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया, सिया के परिजनों को रडार पर लिया और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। 27 जून को पुलिस ने सिया के माता पिता को पूछताछ के लिए बुलाया, दोनों से करीब 12 घंटे तक सवाल जवाब किए। पुलिस ने परिवार से कई अहम सवाल पूछे जिनके जवाब अब जांच का अहम हिस्सा बन गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान सिया के पिता प्रवीण गोयल और मां पूजा गोयल से पुलिस ने पूछा कि क्या सिया ने आपको चेतन के साथ अपने प्रेम संबंध के बारे में बताया, क्या आपको इसकी जानकारी थी। परिजनों ने जवाब दिया कि सिया ने हमें अपने प्रेम संबंध के बारे में कभी नहीं बताया था, हमें इसकी जानकारी अब हुई। पुलिस ने पूछा कि क्या आपने सिया पर केतन के साथ शादी करने का दबाव बनाया, तो उन्होंने कहा कि हमने सिया पर शादी के लिए किसी तरह का कोई दबाव नहीं बनाया। 27 जून को हुई पूछताछ के दौरान अपने माता पिता के साथ सिया का भाई साहिल भी मौजूद था। साहिल से 26 जून को ही पुलिस ने केतन हत्याकांड को लेकर सवाल जवाब किए थे। शुक्रवार को साहिल गोयल से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उस पूछताछ में जांच से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और आने वाले दिनों में कुछ और लोगों से सवाल हो सकते हैं। जांच एजेंसियां पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने और उपलक्ष साक्ष्यों के आधार पर ही मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश में लगी है। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार बांबले, लोहगढ़ आज तक।
2: लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। उसके माता पिता की मांग पर फडणवीस सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई करने की मांग मान ली है। उज्ज्वल निकम को विशेष सरकारी वकील नियुक्त कर दिया गया है, लेकिन इंसाफ की यह लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है क्योंकि अभी पुलिस लगातार बयान दर्ज करने में जुटी हुई है। उसके बाद तमाम कड़ियों को जोड़ना और उसे अंजाम तक पहुंचाना अहम चुनौती है।
0: केतन अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन उसकी यादें हैं और उसकी यादों में आंसू है, गम है, गुस्सा है, नाराजगी सिर्फ अग्रवाल परिवार की ही नहीं, पुणे शहर में हर कोई सवाल हत्याकांड को लेकर उठा रहा है और कह रहा है कि दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए।
3: सिया ने जो किया है वो बहुत ही शॉकिंग है और मेरे लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था। वो मुझे इतना ट्रस्ट था वो लड़की पे, उसने जो किया है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। और इसके आगे उसके एज की या फिर कोई भी एज की लड़की ये सब चीजें करने से पहले 100 बार डरनी चाहिए। ऐसा जस्टिस मिलना चाहिए हमारे केतन को। दिस इज ओनली व्हाट ऑल आई वांट।
4: आप चाहती हो किशन की बचपन से उसे देखा होगा, कुछ यादें साझा करना चाहिए।
3: सेकेंड स्टैंडर्ड से ही देख रही हूँ मैं वो बच्चे को, इतना मासूम, इतना प्यारा लड़का। मतलब आई वॉज वेरी हैप्पी कि उसका मतलब रिश्ता पक्का हो गया, बट वो लड़की ने जो किया दैट वॉज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। और जो स्टूपिड रीजंस उसने दिए है कि बाल्ड है और तोतला बोलता है, वो सब बातें तो जब रिश्ता पक्का हुआ था तो वो सब क्लियर हो गई थी।
0: केतन के पिता विशाल अग्रवाल अपील करते हैं कि उनके बेटे के इंसाफ के लिए 18 जून को जो लोग लोहगढ़ किले में मौजूद थे वो गवाही के लिए आ गए, विशाल अग्रवाल बता रहे हैं वारदात वाले दिन कई लोगों ने उन्हें फोन किया था।
5: मेरा 26 साल का बेटा आज जिस भी वजह से उन्होंने बिना कारण से मार डाला, जिसको कारण पता नहीं चला, मेरे बच्चे की कहीं पे भी एक गलती नहीं थी। मैं तो शादी करने चला था, उसकी घर में बेटी बहू लाने चला था, मुझे नहीं पता था कि मेरा बच्चा ही खो दूंगा मैं। तो मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि उसको जस्टिस मिले, उसके अपराधियों को फांसी की सजा मिले, यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है।
0: अभी कई सवाल हैं जो सिया और चेतन के अंदर दबे हुए हैं, जिन्हें पुलिस को पता लगाना है। इस मामले में सबसे अहम कड़ी है दोनों का मोबाइल, जिससे कई जानकारी सामने आ सकती है। जैसे सिया और चेतन के बीच कब से बातचीत चल रही थी, दोनों के बीच किस तरह की बातचीत हो रही थी, क्या मर्डर की प्लानिंग की बात भी फोन के जरिए की गई। जांच ने तब एक नया मोड़ ले लिया जब जांचकर्ताओं को पता चला कि आरोपी सिया और चेतन चौधरी ने कथित तौर पर अपने फोन से अपनी डिजिटल बातचीत मिटा दी। पुलिस के मुताबिक दोनों डिवाइस से व्हाट्सएप, चैट, इंस्टाग्राम एक्टिविटी और दूसरी चीजें डिलीट किए गए। अब उस डिलीट डेटा की फॉरेंसिक एनालिसिस के जरिए जांच की जा रही है। शक है कि चैट को लोहगढ़ की घटना से पहले और बाद में डिलीट किया गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपियों ने न केवल बातचीत हटाई बल्कि उसे अपने डिवाइस के रिसाइकल बिन से भी साफ कर दिया, जिससे फॉरेंसिक रिकवरी जरूरी हो गई है।
1: जो उसका मोबाइल हमने ताबे में लिया पंचनामे से, और अभी हम उसका FSL को भेजेंगे और उसका जो भी डाटा है उसमें हम एनालिसिस करेंगे।
6: बताया जा रहा है कि उसकी जो चैटिंग है वो डिलीट की गई है, कुछ इस सामने आया है ऐसा कुछ?
1: अभी तक तो हमारे अभी पंचनामे से क्या है, हम FSL में वो पूछ।
0: कॉल डिटेल रिकॉर्ड से दोनों के बीच लगातार संपर्क का पता चला है। सिया गोयल और चेतन चौधरी ने जनवरी से अब तक 2004 कॉल किए, जिनकी कुल अवधि लगभग 238 घंटे थी। ऐसे में मोबाइल की जांच से कई राज सामने आ सकते हैं। वैसे सिया के पिता प्रवीण गोयल और मां पूजा गोयल का दावा है कि 18 जून को लोहगढ़ जाने का प्लान सिया का नहीं था, केतन ने ही वीडियो कॉल करके सिया को लोहगढ़ बुलाया था। सिया के परिजन यहां तक दावा कर रहे हैं कि अगर सिया ने कुछ गलत किया है तो उसे भी लोहगढ़ किले से धक्का दे दो।
7: मैं तो कहता हूं अगर इसमें जो भी आरोपी हो, जो भी, जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है, अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूँगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहाँ से धक्का देके उसे भी ख़त्म कर दिया जाए। अब इससे ज़्यादा एक बाप और कुछ नहीं बोल सकता।
8: अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहाँ से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे है वहाँ से ही उस दोषी को गिराया जाए, जो भी दोषी निकले, मेरी बेटी चाहे उसमें दोषी हो, ठीक है, उसे फांसी की सजा दो या लोहगढ़ जाके वहीं से ही गिरा दे।
0: पहले चेतन चौधरी ने दावा किया था कि वो वारदात के समय चट्टान के पास मौजूद नहीं था, लेकिन पूछताछ के दौरान उसके बयान में लगातार विरोधाभास सामने आए। जब पुलिस ने सख्ती बरती तो सिया और चेतन ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। एक थ्योरी ये भी आ रही है कि केतन विग लगाता था, और ये भी पता चला कि सिया केतन के विग लगाने को पसंद नहीं करती थी। हालांकि इस थ्योरी को पुलिस खारिज कर रही है।
6: जो उनको जब लोहगढ़ पर ये तीनों मौजूद थे तब केतन की हत्या की गई, कुछ इशारों में हुआ था और उसके बाद ये हत्या हुई थी,
1: जो भी अभी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है, उन दोनों में इशारों में कम्युनिकेशन था और दोनों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया।
0: सवाल कई हैं, ऐसे में पूरी संभावना है कि सच तक पहुंचने के लिए अभी थोड़ा और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। कृष्णा पांचाल के साथ ओमकार बाबले, पुणे आज तक।
2: और इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
2: और अब बात करेंगे यूपी के सहारनपुर की, जहां शुक्रवार का एक दर्दनाक हादसा हुआ। 4 लोगों की इस हादसे में जान चली गई है। आज उस हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। हरियाणा के बहादुरगढ़ का यह परिवार हरिद्वार जा रहा था दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर। मनिहारन के पास यह हादसा हुआ जिसमें परिवार के 4 लोगों की जान चली गई। ग्रैंड विटारा कार को पीछे से तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने जोरदार टक्कर मारी थी। टक्कर इतनी ज्यादा भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए थे। तो सहारनपुर में खौफनाक हादसा हुआ था जिसमें 4 लोगों की जान चली गई थी। पीछे से जोरदार टक्कर में इस कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही जान चली गई थी। एक ही परिवार के चारों लोग थे और आपको बता दें कि हादसा हुआ था हरिद्वार जाते हुए देहरादून एक्सप्रेस वे पर। उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया जो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जोरदार टक्कर ने पूरे के पूरे परिवार का खात्मा कर दिया। भयंकर टक्कर हुई थी, तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने इस कार को पीछे से जोरदार टक्कर मारी थी और टक्कर इतनी जबरदस्त थी, देखिए जरा किस तरीके से कई बार ये कार सड़क पर जंप करती हुई दूसरी तरफ जाती हुई नजर आ रही है। इस भीषण टक्कर में चार लोगों की जान चली गई थी। उस दिन का सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। स्कॉर्पियो की जोरदार टक्कर के बाद चार लोगों की जिंदगी ऑन द स्पॉट ही खत्म हो गई थी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की घटना है मनिहारन के पास, एक ही परिवार के चार लोगों की जान गई थी तेज रफ्तार के कहर की वजह से। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। खबरों का सिलसिला आज तक पर लगातार जारी है।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक।
12: As world soccer hits the big stage, Fanatic Sportsbook is making every game day worth more. Earn up to 10% fan cash on your soccer bets, win or lose. That's real extra value you can unlock every match, all tournament long. And fan cash isn't just for betting. You can use it anywhere in the world of Fanatics. On game tickets, merchandise, collectibles, profit boosts, and more. One ecosystem, endless ways to spend. Plus, new customers get up to $1,000 in fan cash. That's $100 bet matched every day for your first 10 days. The world is ready. Are you? Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Must be 21 plus. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET. CT, call 888-789-7777. MA, call 800-327-5050. NY, call 877-8-HOPE-NY. MD, visit mdgamblinghelp.org. Not available in all states. Terms apply. See Fanatic Sportsbook app.
11: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health Ka Sach, Hexa Organic Radiant Skin and Nourished Hair Pure Ayurvedic Beauty.

0: सेशेल्स में प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन। कहा कि हिंद महासागर हमारा साझा घर, समुद्री सुरक्षा रक्षा सहयोग पर वार्ता। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों के घरों पर एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी। पुलिस की 6 टीमें घरों की तलाशी लेती दिखी। घर वालों पड़ोसियों से भी पूछताछ। पेपर लीक पर महाराष्ट्र से यूपी तक उबाल। अखिलेश बोले, बीजेपी राज्य में पेपर लीक पर नकेली नहीं। योगी ने कानून व्यवस्था पर अपनी थपथपाई पीट। कहा कि 2017 के बाद से दंगे नहीं। केदन अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस ने किया क्राइम सीन को रिक्रिएट। मुख्य आरोपी सिया को लेकर लॉगढ़ किले में ले गई पुलिस। डेथ पॉइंट से धक्का तक। 18 जून की वारदात पर सवाल जवाब। और अमेरिका ईरान में युद्ध विराम टूटने का खतरा। 24 घंटों में दूसरी बार अमेरिका ने होर्मुज के पास 10 ईरानी ठिकानों पर बमबारी की। ईरान ने कुवैत से बहरीन तक अमेरिकी बेस पर बोला धावा।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: सहारनपुर में भीषण सड़क हादसा, 2 कारों में जबरदस्त टक्कर, 4 लोगों की मौत। हाईवे पर रिवर्स ले रहे कार में कार को स्कॉर्पियो ने पीछे से मारी टक्कर। टक्कर के बाद से कार पलट गई। घटना सीसीटीवी में भी कैद। अहमदाबाद से सामने आया भयंकर हिट एंड रन का केस। इस अवतार कार ने बाइक को मारी टक्कर। 3 युवक इसमें घायल, चालक फरार। सिंधुदुर्ग के मालवण रिजॉर्ट में दर्दनाक हादसा। पूल में ऊंचाई से छलांग लगाने पर 25 साल के पर्यटक की मौत हो गई। सिक्किम में भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर। कोला नदी पर बेली ब्रिज भारी बारिश के चलते बह गया। उधर सिक्किम में भारी बारिश के चलते तबाही सड़क संपर्क टूटा है। लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते अब बड़ा कहर दिखा। चीन सीमा पर लगे हुए 7 जिलों में सड़क संपर्क कट गया है। भूटान सीमा से सटे अलीद्वारपुर में बाढ़ का कहर दिखा। कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त। मुंबई में बारिश के चलते लोगों की बड़ी परेशानी। कई इलाकों में जल भराव। वडाला की तस्वीर आई सामने। सेशेल्स में पीएम मोदी का संबोधन। पर्यावरण संरक्षण जलवायु परिवर्तन पर दिया संदेश। हिंद महासागर साझेदारी पर जोर। पीएम मोदी ने भारत सेशल्स संबंधों को ऐतिहासिक और मजबूत बताया। भारत और सेशल्स के संबंधों पर बोले पीएम मोदी। कहा कि समुद्र की लहरों ने हमारे बीच व्यापार, संस्कृति और मानवीय संबंधों को निरंतर पोषित किया। पर्यावरण और वैश्विक सहयोग पर पीएम मोदी ने संदेश दिया। हिंद महासागर को बताया साझा धरोहर। सेशल्स में पीएम मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए सर्वोच्च सम्मान हरित विजन वैश्विक मान्यता मिलेगा। वैश्विक स्तर पर पीएम मोदी की हरित सोच को सम्मान। सेशल्स में सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन का सम्मान। सेशल्स के दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। राष्ट्रपति के साथ समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग पर भी बातचीत। सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारतीय सेना का मार्चिंग दल हिस्सा लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे समारोह में मुख्य अतिथि। भारतीय सेना के असम रेजिमेंट के 32 सदस्य दल इस समारोह में शामिल होगा। कैप्टन आर्यन एच देओलकर करेंगे इस दल की अगुवाई। मन की बात 135वां एपिसोड। पीएम मोदी ने देश की उपलब्धियों और भविष्य की दिशा पर बड़ा संदेश दिया। मेड इन इंडिया C295 विमान के ऐतिहासिक उड़न। भारत के एविएशन सेक्टर को नई रफ्तार। पीएम मोदी ने वैश्विक योग क्रांति को बताया भारत की बड़ी उपलब्धि। 2500 से ज्यादा जगहों पर योग कार्यक्रम। वर्ल्ड योग आसन चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन। भारत के नाम 114 पदक और 102 गोल्ड। पीएम मोदी का देशवासियों के लिए एक बड़ा संदेश। कहा कि जनभागीदारी ही विकसित भारत की सबसे मजबूत नींव। पीएम ने बीमा योजनाओं को लेकर सरकार की बड़ी पहल पर दिया जोर। करोड़ों परिवारों को सुरक्षा का दावा किया। अंधविश्वास पर पीएम मोदी का प्रहार। हर गिला संरक्षण से सामाजिक बदलाव की मिसाल। नागालैंड में खेल और महिला सशक्तिकरण की बड़ी पहल। नई दिशा की शुरुआत। पीएम ने बताया एआई और भारतीय भाषाओं के संरक्षण पर बड़ी पहल। शिक्षा और तकनीक में नया युग। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम देशभर के सकारात्मक पहलुओं को सामने लाकर समाज को नई प्रेरणा और उत्साह देता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर जांच तेज, अयोध्या में टीनू यादव समेत सभी आरोपियों के घरों पर छापे मारे। आरोपी टीनू यादव के घर पर पहुंचकर पुलिस ने परिवार वालों से भी सवाल जवाब किए हैं। आरोपी रामशंकर यादव और टीनू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव के घर पर पुलिस पहुंचे। अयोध्या में अविनाश शुक्ला के घर किराए के घर पर पुलिस पहुंची, पड़ोसी और दुकानदारों के भी बैन रिकॉर्ड किया गया। अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, रामशंकर यादव, मनीष यादव और करुणेश पांडे रमाशंकर मिश्रा के घर पर भी पुलिस पहुंचे। अयोध्या में अनुकल्प मिश्रा के 40 लाख के घर की खरीद पर पुलिस ने जांच की तेज, आय के स्रोत और दस्तावेजों की पड़ताल। आज तक की खबर का बड़ा असर, अनुकल्प मिश्रा द्वारा 2 साल पहले खरीदे गए 40 लाख के घर की खबर दिखाई गई थी, उसके बाद पहुंचे पुलिस। चेन्नई में राम मंदिर दान घोटाले के आरोपों पर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का बयान कि बड़ी लूट हुई है और यह गंभीर राष्ट्रीय मुद्दा। रायपुर विवाद राम मंदिर विवाद मामले में इंद्रेश कुमार का बड़ा बयान, एसआईटी जांच और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा जताया। चढ़ावा चोरी विवाद और पेपर लीक मामले पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी सरकार को घेरा, अखिलेश ने कहा चंदा चोरी को जनास्था से खिलवाड़ है और साथ ही कहा कि पेपर लीक बीजेपी ने इस पर साधी है चुप्पी। अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, अमृतसर में लव कुश और माता जानकी का भव्य मंदिर बनेगा। पंजाब के सीएम भगवंत मान का बड़ा बयान, सभी आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री कल अकाल तख्त के समक्ष होंगे उपस्थित, कहा कि हमारे लिए शेखा अकाल तख्त सर्वोच्च है। पुणे में केतन अग्रवाल मौत मामले में जांच तेज, आरोपी सिया और चेतन को लेकर लोहगढ़ किले पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। लद्दाख में अवैध ऑफ रोडिंग पर बड़ी कार्रवाई, पर्यटकों पर 2 लाख रुपए का जुर्माना, संरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश पर यह सख्ती दिखी। राजस्थान में आज तक की खबर का असर, 104 एम्बुलेंस सेवा फिर से शुरू, 10 जुलाई से सभी जिलों में संचालन तय, 29 जून से प्रक्रिया शुरू करने का आदेश। दिल्ली के मंडी हाउस इलाके में राहुल गांधी पर तंज कसते हुए पोस्टर लिखा, तलाश अभी जारी है, सियासी हलचल तेज, अमित मालवीय ने पोस्ट किया साझा। कन्नौज सांसद निधि को लेकर ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला, विकास कार्यों पर सवाल उठा। राजभर बोले कि सिर्फ यादव मुस्लिमों ने आरक्षण का हक खाया है, अति पिछड़ों को डराना बंद करे समाजवादी पार्टी। झारखंड में बद इंतजामी की पराकाष्ठा, प्रखंड स्तरीय सुब्रतो कप खेल कर 17 किलोमीटर पैदल लौटी हैं छात्राएं, शिक्षा विभाग ने जांच के आदेश दिए। अलीगढ़ में अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह पहुंचे प्रशासन के पास, पैतृक संपत्ति विवाद में फर्जी वसीयत से कब्जे का बेहद गंभीर आरोप। केरल कृषि विश्वविद्यालय के कार्यवाहक वीसी की नियुक्ति पर विवाद, राज्यपाल ने सरकार की इस सूची से अलग नाम चुना। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, 2017 के बाद प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ और अब मुहर्रम पर बवाल नहीं होता है। त्योहार में जहरीली साजिश के खुलासे पर मुंबई में हड़कंप, मुहर्रम के जुलूस से पहले भाईखला में 14,900 जिंक फॉस्फाइड वाले कैप्सूल मिले, संदिग्ध से पूछताछ। तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप है कि बिहार में टेंडर घोटाले पर सरकार जवाब दे, बड़ी मछलियों को बचाया क्यों जा रहा है। गाजा मुद्दे पर रामनाथ ठाकुर बोले कि पीएम उचित समय पर देंगे इस पर जवाब, सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए। अलीगढ़ में एक कार ने 2 बाइकों को मारी जबरदस्त टक्कर, घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। प्रयागराज में ताजिया निकालने को लेकर हुए विवाद में 11 लोग गिरफ्तार, पथराव में दरोगा हुआ था घायल। दिल्ली के रजोक फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार थार की टक्कर में बाइक सवार युवक की मौत, जन्मदिन के दिन परिवार में मातम मना। कौशाम्बी में एलपीजी टैंकर हादसे में एक और की मौत, अब तक 3 लोगों की गई जान, 4 घायलों का इलाज। दिल्ली के भारत विहार में 8,000 रुपए के विवाद में 23 साल के उजैर की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कर्नाटक के तुमकुर में हाईवे पर कार में धमाका, युवक की हुई मौत, साथ में बैठी युवती पर चाकू से किया वार, तो वो चलती टैक्सी से कूद गए, ड्राइवर भी जख्मी। तुमकुरु कार विस्फोट मामले में प्रारंभिक जांच में विस्फोटक ले जाने का संदेह है, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। भोपाल में फिल्म मिसाइल में बच्चों से भरी हुई स्कूली वैन को बदमाशों ने रोक दिया, ड्राइवर पर तलवार चाकू से जानलेवा हमला किया। मुजफ्फरपुर में डीजे पर गाना बजाने के विवाद में दुल्हन के मामा की हत्या कर दी गई, डीजे संचालक समेत 4 गिरफ्तार। मसी में प्रेमी संग मिलकर पति को पीट पीट कर हत्या कर दी गई, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, प्रेमी को गिरफ्तार करने में जुटी है पुलिस। फरीदाबाद में पलक क्षेत्र में गर्भवती पत्नी की हत्या का आरोप है, आरोपी फरार। अजमेर के बांदा हिंडवाड़ा टोल प्लाजा पर ट्रक चालकों और कर्मचारियों के बीच में विवाद के बाद बवाल, तोड़फोड़, हाईवे पर 4 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। मोतिहारी में सुगौली रेफरल हॉस्पिटल में फ्रैक्चर मरीज के इलाज में कार्टून का सहारा लिया गया। स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल ही सवाल। ठाणे के निम्बावली इलाके में भीषण आग लग गई, टायर, लकड़ी, प्लास्टिक के 7 से 8 गोदाम यहां जलकर राख। ओडिशा के राउरकेला में एक तरफा प्रेम में महिला को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का आरोप है, 40% महिला झुलस गई है, गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। भिवाड़ी की एक फैक्ट्री में हाईटेक चोरी और एग्जॉस्ट फैन एंट्री गेट बना, सीसीटीवी में पूरी घटना कैद।

लखनऊ में चिनहट स्थित कोल्ड स्टोरेज में लगी आग, दमकल की 6 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी थी। बागपत में प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति को जिंदा जलाकर मौत की घाट उतार दिया, जांच कर रही पुलिस। गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी में बड़ा बुलडोजर एक्शन, यूपी सीडर की जमीन पर बने हुए 3 मंजिला मजार को गाजियाबाद प्रशासन ने हटा दिया। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 10 करोड़ के से ज्यादा की ड्रग्स बरामद की गई और बैंकॉक से आया एक यात्री गिरफ्तार। झांसी में भीषण हादसा, 3 वाहन आपस में टकराए, 1500 लीटर दूध सड़क पर बह गया, घटना सीसीटीवी में कैद, 5 लोग घायल भी हैं। महिला विश्व कप में भारत की बेटियों के लिए आज बड़ी चुनौती, हरमन ब्रिगेड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत से ही भारत की टीम के उम्मीदें आगे बढ़ेंगी, सेमीफाइनल का टिकट मिल सकता है अगर जीत होती है। वुमेन वर्ल्ड कप में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबले पर बारिश का भी खतरा है, मैच रद्द होने पर दोनों ही टीमों को 1-1 अंक मिल जाएगा। आयरलैंड के खिलाफ दूसरा T20 मुकाबला आज शाम 6 बजे से बेलफास्ट में खेला जाएगा मैच। वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर रहेगी सबकी निगाह, सीरीज बचाने के लिए टीम इंडिया का जीतना भी जरूरी है। काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े की फिल्म द इंडिया स्टोरी का टीजर बाजार, 24 जुलाई को हिंदी तमिल तेलुगु में रिलीज होगी फिल्म। वेब सीरीज मिर्जापुर की सफलता के बाद मिर्जापुर द मूवी का टीजर हुआ जारी, 4 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म। गुरमीत सिंह ने फिल्म का निर्देशन किया है। फिल्म मिर्जापुर में बबलू पंडित के किरदार में दिखाई देंगे वेब सीरीज पंचायत के सचिव जी जितेंद्र कुमार, पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु समेत कई कलाकार दिखाई देंगे। गोवा के लक्ष्मी रिजॉर्ट में हुई एक्ट्रेस और राजनेता खुशबू सुंदर की बड़ी बेटी अवंतिका सुंदर की शादी, चिरंजीवी, नागार्जुन, वेंकटेश समेत कई सितारे। अवंतिका सुंदर की शादी में बॉलीवुड के कई सितारे शामिल हुए, सोशल मीडिया पर तस्वीरें की गई शेयर। अमेरिका ईरान में युद्ध विराम टूटने का खतरा, 24 घंटों में दूसरी बार अमेरिका ने हॉर्मुज के पास 10 ईरानी ठिकानों पर बमबारी की। बहरीन के मोहर्रक में ईरानी हमलों में रिहायशी इमारत क्षतिग्रस्त, कोई हताहत नहीं, सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं। भारत ने भूकंप से प्रभावित वेनेजुएला की मदद के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद किया है शुरू, IAF के C-17 विमान राहत सामग्री को लेकर रवाना। मानवीय सहायता मिशन के तहत भारतीय सेना का मेडिकल दल और क्यूब के साथ यहां पर 35 टन राहत सामग्री वेनेजुएला पहुंचा। IDF का बड़ा दावा है, दक्षिण सीरिया में सुरक्षा जोन में कई हथियारबंद आतंकियों को उन्होंने ढेर किया। पाकिस्तान के कराची में धमाका फायरिंग से अफरा तफरी, रेंजर्स हेडक्वार्टर पर सुसाइड हमले की आशंका, 10 लोगों की अब तक मौत, कई घायल। धमाके में 6 हमलावर जबकि 4 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर। जमात उल एहरार ने कराची धमाके की जिम्मेदारी ली, कहा कि हमले में शामिल थे हमारे 9 लोग। रिपोर्ट्स के मुताबिक आत्मघाती हमलावर ने इस परिसर के पास में खुद को विस्फोट में उड़ा लिया और इसके बाद 2 और धमाके की आवाज सुनाई दी। इसी दौरान बाकी हमलावरों ने गोलीबारी शुरू कर दी। हमला उस इलाके में हुआ जहां कराची विश्वविद्यालय समेत कई शैक्षणिक संस्थान और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठान मौजूद हैं।

0: और अब बड़ी खबर आपको देते हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक मौजूदगी को और मजबूत करने के लिए भारत और सेशेल्स ने दोस्ती की नई इबारत लिखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में लीडरशिप के लिए सेशेल्स के सबसे बड़े सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड सस्टेनेबल ग्रोथ और पीएम मोदी के ग्रीन विजन के लिए उनके लंबे समय से किए जा रहे प्रयासों को मान्यता देता है। इससे पहले द्विपक्षीय वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पेट्रिक हमीनी ने समुद्री सुरक्षा से लेकर ब्लू इकोनॉमी, रक्षा साझेदारी, व्यापार, निवेश पर चर्चा की और दौरे के दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री विक्टोरिया में पीएम मोदी का राजकीय स्वागत किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आज शाम को सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पीएम मोदी शामिल होंगे। तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीएम का ऐसे राजकीय सम्मान हुआ और समुद्री सुरक्षा, ब्लू इकोनॉमी को लेकर चिंतन मंथन और राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे पीएम मोदी।
1: ताको विश्वास में, विश्वास को सहयोग में और सहयोग को जन कल्याण में बदला है। फ्रेंड्स, हिंद महासागर ने सदियों से भारत और सेशेल के संबंधों को सींचा है। इसकी लहरों ने हमारे बीच व्यापार, संस्कृति,

0: और मानवीय संबंधों को निरंतर पोषित किया है. वी बिलीव द इंडियन ओशन इज अवर शेयर्ड होम. इट्स सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी आर अवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. यही भावना हमारे महासागर विजन का आधार है. फ्रेंड, इस वर्ष फरवरी में राष्ट्रपति जी की भारत यात्रा के दौरान जारी किए गए ज्वाइंट विजन से हमारी भावी साझेदारी का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है. इस पर आगे बढ़ते हुए हर क्षेत्र में हमारा सहयोग मजबूत हो रहा है. आज हमने हमारे आर्थिक सहयोग को और अधिक रेजिलिएंट और फ्यूचर रेडी बनाने पर चर्चा की. हम दोनों देशों के उद्योगों के लिए नए अवसरों की तलाश जारी रखेंगे. भारत और सेशल के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी काम किया जाएगा. इससे हमारे व्यापार तो बढ़ेगा ही, साथ साथ पूर्वी अफ्रीका और हिंद महासागर क्षेत्र के साथ संबंधों को भी बल मिलेगा.
1: अब बात करते हैं क्रिकेट के. आज आयरलैंड के खिलाफ मुकाबले में क्या वैभव सूर्यवंशी को जगह मिलेगी, ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है. टीम इंडिया पहली बार आयरलैंड से जो है कोई भी आज तक मुकाबला हारी नहीं, लेकिन एक मुकाबला पिछला जो गेम हुआ उसमें टीम इंडिया हार गए. तो ऐसे में अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि वैभव की फॉर्म को देखते हुए क्या उन्हें दूसरे मुकाबले में जगह मिलेगी.
2: क्या आज मिलेगा वैभव सूर्यवंशी को मौका? सीरीज के साथ साथ वर्ल्ड चैंपियन की साख भी दांव पर. हर किसी को इंतजार था, फैंस को भी, वैभव सूर्यवंशी को भी. लेकिन आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 में वैभव सूर्यवंशी को मौका नहीं मिला. सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले भारतीय बनने के लिए वैभव का इंतजार कुछ दिन का बढ़ जरूर गया, लेकिन इस मुकाबले में टीम इंडिया की सनसनीखेज हार से अब हर कोई चाहता है कि आज होने वाले मुकाबले में वैभव को प्लेइंग 11 में मौका मिले. फिलहाल वैभव को पूरी टीम इंडिया सपोर्ट कर रही है ताकि उनका मनोबल बना रहे.
3: एज अ टीम और हमारा एक ग्रुप, एक ही हमारा आई वुडंट से प्लान है या, बट उसको जैसा एटमॉस्फेयर चाहिए, जैसा ग्रुप में उसको चाहिए, आई फील कि हमें यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको वो फील हो, उसको ये ना लगे कि ही इज़ अ यंग गाय और नया नया है. तो एज अ ग्रुप आई थिंक इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक हिम दैट मच कम्फर्टेबल. एंड उसके ऑब्वियसली ही इज़ अ गाय जो वॉट आई फेल्ट जो ही इज़ वेरी यू नो क्यूरियस टू प्ले ऑल द टाइम. तो आई फील ही इज़ जस्ट लर्निंग राइट नाउ. That's what I would say. And वो questions भी पूछता, तो I feel he has that in himself that where he wants to learn a lot of things. And obviously उसके लिए भी ये काफ़ी ड्रीम ही होता है जो भी नया लड़का आता है. तो he's just, we are trying our best to उसको वो atmosphere मिले और वो as a group में ऐसे उसको feel हो कि he belongs है.
2: आयरलैंड के खिलाफ टीम इंडिया दो मैचों की सीरीज में पहला मैच हार चुकी है. जाहिर है आज का मुकाबला उसे न सिर्फ सीरीज बचाने के लिए खेलना होगा, बल्कि वर्ल्ड चैंपियन के तौर पर बनी साख को बचाना भी एक बड़ी चुनौती होगी. आज तक ब्यूरो.
1: अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर. आप देखते रहिए आज
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी. लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परो.
5: इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
7: As world soccer hits the big stage, Fanatics Sportsbook is making every game day worth more. Earn up to 10% fan cash on your soccer bets, win or lose. That's real extra value you can unlock every match, all tournament long. And fan cash isn't just for betting. You can use it anywhere in the world of Fanatics. On game tickets, merchandise, collectibles, profit boosts, and more. One ecosystem. Endless ways to spend. Plus, new customers get up to $1,000 in fan cash. That's $100 bet match every day for your first 10 days. The world is ready. Are you? Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Must be 21 plus. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET. CT, call 888-789-7777. MA, call 800-327-5050. NY, call 877-8-HOPE-NY. MD, visit mdgamblinghelp.org. Not available in all states. Terms apply. See Fanatics Sportsbook app.
5: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
8: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed. Whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest, you can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
9: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
3: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद हिंद, बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू। विमल बोलो जुबां केसरी, कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस। पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
1: देखिए बिल्कुल, मैं इस समय पर उस कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद हूं। आप देखिए किस तरीके का ये एंट्री एग्जिट पॉइंट था, और ये बहुत छोटा सा कोचिंग सेंटर था जहां पर लोग फंसे थे, और उसके बाद ये अंदर का ये पूरा नजारा है। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि पूरा सब कुछ तहस नहस हो गया और 15 लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में SIT गठित की है। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

सेशल्स में प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन, कहा हिंद महासागर हमारा साझा घर, समुद्री सुरक्षा रक्षा सहयोग पर वार्ता। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों के घरों पर एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी, पुलिस की 6 टीमें घरों की तलाशी लेती दिखी, घर वालों पड़ोसियों से भी पूछताछ। पेपर लीक पर महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक उबाल, अखिलेश यादव बोले बीजेपी राज्य में पेपर लीक पर अकेले नहीं, योगी ने कानून व्यवस्था पर थपथपाई पीठ, कहा 2017 के बाद दंगे नहीं। केतन अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस ने किया क्राइम सीन का रिक्रिएशन, मुख्य आरोपी सिया को लेकर लोहगढ़ के लिए ले गए पुलिस, डेड पॉइंट से धक्का तक, 18 जून की वारदात पर सवाल जवाब। और अमेरिका ईरान में युद्ध विराम टूटने का खतरा, 24 घंटे में दूसरी बार अमेरिका ने हॉर्मुज के बाद 10 ईरानी ठिकानों पर बमबारी की, ईरान ने कुवैत से बहरीन तक अमेरिकी बेस पर बोला हमला।

पुणे पुलिस के सामने कई अहम सवाल हैं। अब तक गिरफ्तार सिया और चेतन के आरोपों को लेकर पुलिस घर वालों से बात कर जानकारियां जुटा चुकी है और आखिर इस क्राइम फाइल की सबसे अहम कड़ी रिक्रिएशन को भी पूरा कर लिया गया है। इस दौरान किले में पुलिस के साथ सीएम मौजूद थी, वो पुलिस के तमाम सवालों का जवाब दे रही थी और पुलिस उसके बयानों के आधार पर क्राइम सीन को रिक्रिएट कर रही थी।

0: लोहगढ़ किले में 18 जून को जो कुछ हुआ था उसी को दोहराने की कोशिश आज पुणे पुलिस ने की है। पहाड़ी पर स्थित किले के उसी जगह पर पुलिस की पड़ताल चली है। ये तस्वीरें धुंधली हैं, लेकिन देश को सन्न कर देने वाली साजिश की तस्वीर साफ करने के लिए पुलिस ने यह कदम उठाया है। इन धुंधली तस्वीरों में सिया कोयल है, पुणे पुलिस की टीम है, और साथ में है क्राइम सीन को रिक्रिएट करने वाले एक्सपर्ट केतन अग्रवाल। हत्याकांड की पड़ताल का ये अहम पड़ाव था। कई दिनों से माना जा रहा था कि पुणे पुलिस लोहगढ़ के किले में पहुंचकर क्राइम सीन को रिक्रिएट कर सकती है। तमाम कयासबाजी के बीच पुणे पुलिस की टीम ने सुबह 6:30 बजे ही लोहगढ़ किले में दस्तक दे दी। पुलिस सिया को लेकर किले पर पहुंची। किला का गेट बंद कर दिया गया, पर्यटकों को रोक दिया गया, हर किसी के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई। सुबह 6:30 बजे सिया को लेकर पुलिस ने किले में चढ़ाई शुरू की। करीब घंटे भर बाद पुलिस क्राइम सीन पर पहुंच गई। जांच दल के साथ चेतन की कदकाठी का एक डमी भी था। क्राइम सीन पर पहुंचने के बाद पुलिस ने सिया से कई सवाल किए। 18 जून को क्या हुआ था, केतन और चेतन कहां थे, किसने धक्का दिया, कैसे तीनों यहां तक पहुंचे, ऐसे एक एक सवाल के जवाब पुलिस ने सिया से पूछे और उसके जवाबों के मुताबिक ही क्राइम सीन की बारीकी से जांच पड़ताल की। फिर जिस जगह से केतन को धक्का दिया गया, पुलिस ने उस जगह से सिया के बयानों के हिसाब से क्राइम सीन रिक्रिएट किया। रिक्रिएशन के दौरान पुलिस ने उसी स्थान से एक डमी को नीचे धक्का देकर पूरी घटना को दोहराया, जहां से कथित तौर पर केतन अग्रवाल को खाई में धक्का दिया गया था। इस प्रक्रिया का मकसद घटना के क्रम, हालात और उपलब्ध साक्ष्यों का मिलान करना था, ताकि जांच को और मजबूत किया जा सके।
1: ये लोहगढ़ किले के ऊपर जहाँ पे वो घटना हुई थी, उस घटना पे एक डमी सीन क्रिएट करके वहाँ पे एक्यूज को ले जाया गया है। किस रूट से जाके कहाँ बैठे और क्या क्या प्रोसेस घड़ी और घटना कैसे घड़ी, उसको रिक्रिएट जा रहा किया गया है, उसमें एक्यूज ने बता दिया।
0: केतन हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस आज के रिक्रिएशन को काफी अहम मान रही है।
2: सर, सीन को रिक्रिएट किया गया, एग्जैक्टली किस तरीके से ये पूरा हुआ?
3: आज सिया ने बताया कि उसने इन्फॉर्मेशन दी, जैसे हुआ था वो जो भी डिस्कवरी ऑफ फैक्ट है उस हिसाब से हमने सीन रिक्रिएट किया।
2: चेतन चौधरी जो है उसका भी अभी फॉरेंसिक करना अहम है, क्योंकि जिस मतलब जहां से उसने एंट्री की थी उसी तरीके का वॉक करना और वो सीसीटीवी में फॉरेंसिक एविडेंसेस लेना, वो भी बाकी।
3: अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, आज सिया का रिक्रिएशन हुआ है, वो सीन रिक्रिएशन हमने किया।
0: इस जांच पड़ताल के बीच दावा यह भी किया जा रहा है कि सिया और चेतन ने केतन को मारने का रिहर्सल भी किया था।
2: सबसे अहम बात यह है कि सिया और चेतन ने दोनों ने मिलकर इसकी रिहर्सल की थी, इससे पहले प्रैक्टिस हुई थी और प्रैक्टिस के बाद इसको अंजाम दिया गया था, और उसी के बाद आप देख सकते हो कि सीन रिक्रिएशन ये लोहगढ़ किले पे अक्सर संडे को किला शुरू रहता है, लेकिन आज पर्यटकों के लिए और जितने विजिटर्स हैं उन सभी के लिए इसे बंद किया गया था। लेकिन यही सीढ़ियां है, इसी सीढ़ियों से तीनों ऊपर गए थे, चेतन चौधरी गया था, उसके बाद सिया और केतन अग्रवाल भी गया था, और उसी के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया।
0: हालांकि ऐसे तमाम दावों पर पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, सभी तथ्यों को वेरीफाई किया जा रहा है।
2: किसने किया था, चेतन ने किया था, फिजिया ने?
3: देखिए, आज तो हमने सीन रिक्रिएट किया गया, उसने अभी जो इन्वेस्टिगेशन में सारी बातें सामने आएगी उस हिसाब से अभी आगे भी इन्वेस्टिगेशन करना है।
2: देखो, इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि दोनों ने रिहर्सल की थी, इससे पहले प्रैक्टिस हुई थी कहीं ना कहीं, और फिर आके इसे अंजाम दिया गया। तो क्या या ये अभी कह रही है कि वो प्रैक्टिस किस तरीके से हुई थी और कैसे उसने एग्जीक्यूट किया,
3: वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आज का तो सीन रिक्रिएशन हो।
0: इस हत्याकांड में सिया और चेतन के सामने आए नए नए वीडियो और केतन के परिजनों के आरोपों के बाद ट्विस्ट और बढ़ गया है। श्री कृष्ण पंचाल के साथ ओंकार वाबले, लोहगढ़ आज तक।
4: आखिर सिया ने केतन का कत्ल क्यों किया? क्या वो शादी के लिए इनकार नहीं कर सकती थी, मना नहीं कर सकती थी? ऐसे तमाम सवाल हैं जो किसी को हजम नहीं हो रहे हैं। लिहाजा पुणे पुलिस सिया के साथ साथ उसके घर वालों से भी लगातार पूछताछ कर रहे हैं। एक दिन पहले पुलिस ने उसके माता पिता से तकरीबन 12 घंटों तक मैराथन बैठ पूछताछ की, तो भाई से भी 2 दिनों तक सवाल जवाब किए गए हैं।

0: सिया और केतन बस कुछ ही महीने की बात दोनों साथ फेरे लेने वाले थे, दोनों के रिश्ते की डोर में बंधने वाले थे, लेकिन 18 जून को एक झटके में सब कुछ खत्म हो जाता है। लोहगढ़ के किले में ठीक इसी जगह पर केतन करीब 340 फीट गहरी खाई में जा गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। इस घटना के 5 दिन बाद यानी 23 जून को सिया की गिरफ्तारी हो जाती है और वहां से तब तक हादसा लगने वाला मामला पूरी तरह से अलग ट्रैक पर चला जाता है। कत्ल का आरोप लगता है। आरोप ये कि सिया ने अपने मंगेतर को मार डाला। इस गुनाह में सिया का साथ दिया उसके दोस्त चेतन चौधरी ने। वही चेतन जिसका सिया के साथ कई वीडियो सामने आ चुका है। एक वीडियो में दोनों क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखते दिखे हैं। और सबसे अहम तो ये कि सिया और चेतन ने केतन की हत्या से ठीक एक दिन पहले यानी 17 जून को ही पुणे के एक कैफे में मुलाकात की थी। दोनों शाम करीब 4:30 बजे मिले थे। माना जा रहा है कि दोनों ने उसी कैफे में हत्या की फाइनल साजिश रची और उसे अंजाम देने पर करीब घंटे भर बात की। खुलासा ये भी हुआ कि हत्या से पहले सिया ने लोहगढ़ किले का वीडियो यूट्यूब पर सर्च किया था, वहां की लोकेशन को कैफे में मुलाकात के दौरान चेतन के साथ साझा किया था। बात यहीं तक नहीं रुकी। सिया का बड़ा भाई साहिल ये भी चेतन को जानता था। दोनों ने साथ साथ क्रिकेट खेला है, उससे जुड़ा भी वीडियो सामने आया है।
1: आज वो अभी यहाँ पे आए हुए, उनकी चौकसी चालू है, लगभग 2 घंटे हुए हैं वो अभी यहाँ आए हुए। चेतन और साहिल एक दूसरे को जानते थे, वो साथ में क्रिकेट भी खेलते थे और वो दोनों दोस्त भी थे।
0: चेतन के साथ तमाम वीडियो और कनेक्शन सामने आने के बाद पुणे पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया। सिया के परिजनों को रडार पर लिया और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। 27 जून को पुलिस ने सिया के माता पिता को पूछताछ के लिए बुलाया। दोनों से करीब 12 घंटे तक सवाल जवाब किए। पुलिस ने परिवार से कई अहम सवाल पूछे जिनके जवाब अब जांच का अहम हिस्सा बन गए।
2: और अब बात करते हैं राम मंदिर के चढ़ावा चोरों की। चढ़ावा चोरी के आरोपियों के घर पर पुलिस की रेड हुई है। इसमें अनुकल्प मिश्रा, टीनू यादव, मनीष यादव, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। ये भी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और अब उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इनके घर वालों से भी पूछताछ हो रही है। तमाम जो इनके पास सामान है, जो पैसा है, जो धन दौलत है, जो मकान है, जो संपत्ति है, उनकी भी पड़ताल की जा रही है। ये बहुत छोटी सी नौकरी कर रहे थे, कोई मोटी तनख्वाह नहीं थी, लेकिन जो इनके पास संपत्तियां मिली हैं, जो वो बहुत ज्यादा मिली, अब इनके ठिकानों पर पुलिस ने ये रेड की है।

0: राम लला की घर डकैती डालने वालों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। एसआईटी की जांच के बाद राम मंदिर ट्रस्ट से इस्तीफे हुए तो वहीं अब पुलिस भी एक्शन मोड में दिख रही है। अयोध्या पुलिस ने उन आरोपियों के घर धावा बोला जो अयोध्या में रहते हैं।
1: राम मंदिर चलावा चोरी के मामले में गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों के घर पर, जो अयोध्या के रहने वाले हैं, उनके घरों पर छापेमारी की जा रही है। मैं इस समय पर अयोध्या में ही रह रहे रमाशंकर मिश्रा, जो आरोपी थे जिनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, रमाशंकर मिश्रा के घर पर मौजूद हूँ। उनके परिजनों से, उसकी भाभी, बहन, उनके पिता से पूछताछ की जा रही है। ये रमाशंकर मिश्रा घर है जो राम मंदिर में नोट गिनने के काम में जुड़ा हुआ था। बता दें कि अयोध्या पुलिस ने इन सभी आरोपियों के घर से लगभग 80 लाख रुपए बरामद किए थे और इनको जुडिशियल कस्टडी में सोमवार तक के लिए भेज दिया गया था, लेकिन अब कल सोमवार को दोबारा जुडिशियल कस्टडी पर सुनवाई होनी है। उससे पहले पुलिस के द्वारा ये जांच की जा रही है, पड़ताल की जा रही है, इन सभी जो आरोपी हैं उनके घर वालों से पूछताछ की जा रही है कि ये लोग कब आते थे, कैसे आते थे, क्या क्या खरीदा गया।
0: अयोध्या पुलिस ने टिन्नू यादव, मनीष यादव, अनुकल्प मिश्रा, लोकुश मिश्रा, करुणेश पांडे और रामाशंकर मिश्रा के घर छापा मारा, उनके घर वालों से पूछताछ की। ये आरोपी घर पर कब आते हैं, किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, ये सारी जानकारियां पुलिस ने इकट्ठा की हैं। आरोपी रामाशंकर मिश्रा के पिता अयोध्या में ही एक मंदिर में पुजारी हैं। पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की
2: जांच के लिए, और वो यहाँ रहते हैं कि नहीं रहते हैं, कहाँ वो हैं, तो हम बताए कि कमरा पे अलग लिए रहते हैं, दो ढाई साल से यहाँ रहते नहीं हैं, आना जाना भी यहाँ का नहीं है, एक दिन कभी इस मंदिर के अंदर पाँव नहीं रखते हैं।
1: कब से नहीं आया?
2: दो ढाई साल हो गए यहाँ नहीं आया। हाँ, 2 साल।
1: राम मंदिर में कब से काम कर रहा था, क्या काम करता था रामाशंकर?
2: 5-6 साल हो गए, तब वहाँ पैसा गाने में बताओ था गाना कर्मचारी।
1: अच्छा, हाँ। अभी पैसा वैसा ज्यादा देखा आपने रामाशंकर के पास? बहुत
2: कभी नहीं, पैसा तो मांगा तो रहा, तो पैसा पाई नहीं है? पैसा मांग लिया तो के दे दो कहीं जरूरत लगे।
1: पुलिस तो कह रही है कि सब मिलके 80 लाख रुपया चोरी कर लिए चढ़ावे से।
2: कुछ कि नया पैसा यहाँ कहूँ देखबे न आया हुआ है।
0: रामाशंकर के परिवार वाले कह रहे हैं कि वो यहाँ आता ही नहीं, सालों से घर आया नहीं, किराए का मकान लेकर वहीं रहता है।
3: तो हमको ना वो करे हैं ना हमको दिया है, कभी हमसे उनसे बनता ही नहीं था, कभी वो 10 रुपया हमको दिए ही नहीं थे, मुझको मेरे पति का सहारा है, बस कोई का सहारा नहीं है।
1: तो यहाँ रामाशंकर के बारे में और क्या, घर से कुछ पैसा वैसा ले गए, कुछ बरामदगी दिखाई है, घर से मिला है
3: कुछ नहीं मिला है सर, केवल कागजात मिला है वही लेकर गए हैं, आधार नंबर, खाता नंबर।
0: चढ़ावा चोरी के आरोपियों से करीब 80 लाख की बरामदगी हो गई है। 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से बरामद होने की बात सामने आ रही है।
1: टिन्नू यादव के इस हॉस्टल से ही, दुर्गापुरी कॉलोनी का ये अयोध्या में ही दुर्गापुरी कॉलोनी ये हॉस्टल है, और इस हॉस्टल में यूं तो यहाँ अयोध्या विश्वविद्यालय के आसपास के कॉलेज के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर 2 कमरे हैं जो टिन्नू यादव ने अपने निजी यूज के लिए रखे हैं। कहने को तो दोनों कमरे पूजा घर है, उसका अपना कमरे उनके कब्जे में है, लेकिन कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद, जब गुरुवार देर रात टिन्नू यादव को अयोध्या पुलिस ने FIR दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया, तो शुक्रवार की सुबह उसको यहां लाया गया, और पुलिस के अनुसार जो दस्तावेज जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है कि लगभग 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से बरामद हुए हैं।
0: इस मामले में एक गिरफ्तारी अनुकल्प मिश्रा की भी हुई है, जिसकी देखरेख में नोटों की गिनती की जाती थी। अनुकल्प मिश्रा ने 2 साल पहले 40 लाख का एक घर लिया था, जहां आज तक की टीम पहुंची।
4: मेरे भाई को फंसाया जा रहा है, मेरी मुझ में ही है, मुझसे शादी हुई थी चाचा की 10 साल से, इनका केस चल रहा है, उनका मैटर चाचा चाची का है, वो अलग जाने।
0: उधर अनुकल्प के रिश्तेदार पैसों को लेकर शक जाहिर कर रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में CCTV कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जहां टिन्नू यादव की तरह यूपी पुलिस के वायरलेस डिपार्टमेंट के RMO अर्जुन देव की भूमिका पर भी रिपोर्ट सामने आई है। जिस कमरे में नोट गिने जाते थे और चोरी हो रही थी, उसका कंट्रोल RMO को दिया गया था, अर्जुन देव का पिछले 17 सालों से ट्रांसफर नहीं किया गया, जिसकी वजह उसका चंपत राय से करीबी होना बताया जा रहा है। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।
5: समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने एक बार फिर से चढ़ावे की चोरी पर सरकार और ट्रस्ट को घेरा। उन्होंने कहा कि अयोध्या राम मंदिर में सीसीटीवी बंद कर करके चोरी कर दी गई।
6: इनके लिए प्राथमिकता धर्म नहीं धन है, इनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं है, डोनेशन फर्स्ट है। क्या कोई कल्पना कर सकता था श्रद्धा और आस्था से इतनी बड़ी खिलवाड़? इनकी चतुराई है, चालबाजी है और सीसीटीवी फुटेज है कि कितनी बार सीसीटीवी बंद किया गया है, कितनी बार वो आंकड़े सामने आपके आए हैं, तब और क्या बताया जाए।
5: अब बात करते हैं बिहार के, जहां पर पूर्व सीएम राबड़ी देवी अपने सरकारी आवास से सामान शिफ्ट कर रहे हैं। राबड़ी देवी का सामान अब सरकारी आवास से निकालकर कौटिल्य नगर के मकान में रखा जा रहा है। 29 जून की डेडलाइन राबड़ी देवी को दी गई है। अब वो सर्कुलर रोड का सरकारी घर खाली करें, यह डेडलाइन थी, लेकिन अब सामान निकाला जा रहा है। लेकिन क्या राबड़ी देवी भी घर छोड़ेंगी इस पर, क्योंकि राबड़ी देवी ने दरअसल कहा था कि वो तो आवास छोड़ने वाली नहीं है, ये सवाल बना हुआ है।
7: राबड़ी देवी को अपना 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करना है और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, ये वो उनका निजी आवास है लालू परिवार का, जहां पर सामान शिफ्टिंग का काम लगातार चल रहा है। थोड़ी देर पहले इस गाड़ी पे सामान आया था, पिकअप वैन पे, और अब देखिए सामान खाली करने के बाद गाड़ी यहां से निकल रही है। तो लगातार यहाँ गतिविधियां हैं, और चूंकि 22 जून की तारीख में जो आखिरी नोटिस था वो जारी किया गया था और एक हफ्ते का समय दिया गया था, लेकिन अब माना जा रहा है कि 29 जून जो है वो आखिरी तारीख होगी अंतिम नोटिस जारी होने के बाद। तो संभव है कि उसके पहले जो सरकारी आवास है 10 सर्कुलर रोड आवास, उसको खाली कर दिया जाएगा। हालांकि 39 हार्डिंग रोड आवास जो है वो मिला है सरकारी आवास राबड़ी देवी को, लेकिन उस आवास के आवंटन के बावजूद जो परिवार है वो यहीं शिफ्ट हो सकता है। और आपको दिखाते हैं, कौटिल्या नगर का ये इलाका है और यहीं पर राबड़ी देवी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो लगातार आकर के जो काम चल रहा था उसकी निगरानी भी करती रही हैं। और अब ये बताया जा रहा है कि अंतिम तौर पर, देखिए ये भी गाड़ी जो है वो लालू परिवार से संबद्ध है, तो तमाम जो सामान शिफ्टिंग का काम है वो यहाँ पे चल रहा है। पिकअप वैन रात में भी आ रहे हैं और दिन के उजाले में भी अब सामान शिफ्टिंग हो रही है। तो ये अंतिम दौर की तैयारी है 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने को लेकर के, यानी ये जगह कौटिल्या नगर का ये मकान अब नया ठिकाना होगा लालू परिवार का। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, आज तक, पटना।
5: अब अगली खबर राजस्थान से, जहां पर बीजेपी सरकार के एक मंत्री सरकारी सब्सिडी को लेकर चर्चा का विषय बने हुए हैं। विपक्ष मंत्री पर कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है, आरोप लगा रहा है, जबकि मंत्री भागीरथ चौधरी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए पूरी प्रक्रिया को निर्धारित मापदंडों और सरकारी नियमों के तहत बताया है।
8: क्या एक मंत्री अपनी ही मंत्रालय की योजना से सब्सिडी ले सकता है? क्या नियम सभी के लिए बराबर हैं या पद और प्रभाव से बदल जाते हैं? केंद्र सरकार की कृषि योजनाओं को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। भारत सरकार के एक मंत्री ने सरकार से करीब 99 लाख की सब्सिडी प्राप्त की है। खीरे, टमाटर, शिमला मिर्च की खेती के लिए मंत्री जी ने अपने ही कृषि मंत्रालय से सब्सिडी ले ली। मामला सामने आने के बाद विपक्ष ने इसे लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं और निष्पक्ष जांच की मांग की है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस पर सत्ता का गलत प्रयोग बताया है। सचिन पायलट ने लिखा, कृषि मंत्री पर 99 लाख सब्सिडी का आरोप, अपनी ही योजना से लाभ लेने का मामला, पद के दुरुपयोग पर विवाद, पारदर्शिता और जांच की मांग। इस बीच आप नेता मनीष सिसोदिया ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।
9: मोदी सरकार के मंत्री खुद अपने ही विभाग में खीरा किसानों की सब्सिडी खा गए, तो चारों तरफ लूट पे लूट चले जा रही है, तो इस लूट वाली सरकार को हटाना पड़ेगा। लोगों को समझना पड़ेगा कि ये लूट सरकार अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी।
8: वहीं मंत्री भागीरथ चौधरी ने विपक्ष के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि पूरी प्रक्रिया सरकारी नियमों और निर्धारित मापदंडों के तहत की गई है।
10: और 2018 से मैं इस आवेदन के लिए मैं लगा हुआ हूँ इसमें, तो कोई मैंने कोई प्रक्रिया के तहत मैंने काम किया। दूसरा, हम दो MS हैं, MOSM है हम, और उसमें एक रामनाथ जी ठाकुर है और एक मैं हूँ। ये जो सब्सिडी वाला है, ये जो कुछ है, तो वो राज्य मंत्री और रामनाथ जी ठाकुर है।
8: फिलहाल इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। विपक्ष जहां इसे पद के दुरुपयोग का मामला बता रहा है, वहीं सरकार इसे नियमों के तहत हुई प्रक्रिया बता रही है। आज तक ब्यूरो।
5: और अब बड़ी खबर आपको देते हैं कर्नाटक के तुमकुरु से। बड़ी खबर, जहां पर कार में धमाका हुआ, उसमें आग लगी और उसमें 30 साल के एक व्यक्ति जिंदा बताया जा रहा कि जल गया वो व्यक्ति। बेंगलुरु में रहने वाले अंकोला के मूल निवासी नागेंद्र के तौर पर इस शख्स की पहचान हुई है। राम्या नाम की महिला और कैब ड्राइवर प्रवीण घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक नागेंद्र और राम्या रिलेशनशिप में थे, लेकिन दोनों के रिश्ते बिगड़ने के बाद नागेंद्र ने राम्या जो है दोनों में झगड़ा हुआ। नागेंद्र ने जबरदस्ती एक येलो बोट कैब में उसे बिठाया। यात्रा के दौरान राम्या को धमकी भी दी गई, कहा कि वो उसे मार डालेगा और फिर खुद भी अपनी जान दे देगा। अब शक है कि उसने यात्रा के दौरान पेट्रोल बम भी उसे दिखाया था। नागेंद्र ने कथित तौर पर चलती कार के अंदर राम्या पर चाकू से हमला किया। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, जिससे राम्या दरवाजा खोलकर सुरक्षित बाहर कूद पाए और कुछ ही पल के बाद कार में धमाका हुआ और वो आग की लपटों में घिर गए, जिससे नागेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि गाड़ी से बम जैसा विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ है। कल्ला बेला पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। धमाके की असल वजह और घटनाक्रम की जांच चल रही है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। कुछ और खबरों के साथ होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
13: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
14: As world soccer hits the big stage, Fanatics Sportsbook is making every game day worth more. Earn up to 10% fan cash on your soccer bets, win or lose. That's real extra value you can unlock every match, all tournament long. And fan cash isn't just for betting. You can use it anywhere in the world of Fanatics. On game tickets, merchandise, collectibles, profit boosts, and more. One ecosystem, endless ways to spend. Plus, new customers get up to $1,000 in fan cash. That's $100 bet match every day for your first 10 days. The world is ready. Are you? Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Must be 21 plus. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET. CT, call 888-789-7777. MA, call 800-327-5050. NY, call 877-8-HOPE-NY. MD, visit mdgamblinghelp.org. Not available in all states. Terms apply. See Fanatic Sportsbook app.
15: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
16: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
17: Sokudo.

0: क्या आज मिलेगा वैभव सूर्यवंशी को मौका? सीरीज के साथ साथ वर्ल्ड चैंपियन की साख भी दांव पर। हर किसी को इंतजार था, फैंस को भी, वैभव सूर्यवंशी को भी। लेकिन आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 में वैभव सूर्यवंशी को मौका नहीं मिला। सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले भारतीय बनने के लिए वैभव का इंतजार कुछ दिन का बढ़ जरूर गया, लेकिन इस मुकाबले में टीम इंडिया की सनसनीखेज हार से अब हर कोई चाहता है कि आज होने वाले मुकाबले में वैभव को प्लेइंग 11 में मौका मिले। फिलहाल वैभव को पूरी टीम इंडिया सपोर्ट कर रही है ताकि उनका मनोबल बना रहे।
1: एज अ टीम और हमारा एक ग्रुप, एक ही हमारा आई वुडन्ट से प्लान है या बट उसको जैसा एटमॉस्फेयर चाहिए, जैसा ग्रुप में उसको चाहिए, आई फील कि हमें यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको वो फील हो, उसको ये ना लगे कि ही इज़ अ यंग गाय और नया नया है। तो एज अ ग्रुप आई थिंक इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक हिम दैट मच कम्फर्टेबल एंड उसके ऑब्वियसली ही इज़ अ गाय जो वॉट आई फेल्ट जो इज़ वेरी यू नो क्यूरियस टू प्ले ऑल द टाइम। तो आई फील ही इज जस्ट लर्निंग राइट नाउ, that's what I would say, and wo questions bhi puchta, to I feel he has that in himself that where he wants to learn a lot of things, and obviously uske liye bhi ye kafi dream hi hota hai jo bhi naya ladka aata hai, to he's just we are trying our best to usko wo atmosphere mile aur wo as a group mein aise usko feel ho ki he belongs
0: here. Ireland ke khilaf team India do matchon ki series mein pehla match haar chuki hai। जाहिर है आज का मुकाबला उसे न सिर्फ सीरीज बचाने के लिए खेलना होगा बल्कि वर्ल्ड चैंपियन के तौर पर बनी साख को बचाना भी एक बड़ी चुनौती होगी। आज तक ब्यूरो।

0: पर्यावरण संरक्षण पर सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हॉरिजॉन का हिंद महासागर हमारा साझा घर समुद्री सुरक्षा रक्षा सहयोग पर वार्ता। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर सभी 8 आरोपियों के घर पर एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी पुलिस की 6 टीमों ने घरों की ली तलाशी घर वालों और पड़ोसियों से भी पूछताछ। पेपर लीक पर महाराष्ट्र से यूपी तक उबाल अखिलेश यादव बोले बीजेपी राज्य में पेपर लीक पर नकेल नहीं है यूपी योगी ने कानून व्यवस्था पर अपनी पीठ थपथपाई का 2017 के बाद नहीं हुए हैं दंगे। केतन अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस ने किया क्राइम सीन का रिक्रिएशन मुख्य आरोपी सिया को लेकर लोहगढ़ किले में गई पुलिस डेथ पॉइंट से धक्के तक 18 जून की वारदात पर सवाल जवाब। अमेरिका ईरान में युद्ध विराम टूटने का खतरा बढ़ा 24 घंटे में दूसरी बार अमेरिका ने हॉर्मुज के पास 10 ईरानी ठिकानों पर बरसाए हैं बम ईरान ने कुवैत और बहरीन तक अमेरिकी बेस पर भी हमला बोला।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: नमस्कार रणभूमि स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी। अमेरिका और ईरान ने अभी कुछ ही दिन पहले एक बड़े शांति समझौते पर दस्तखत किए थे पूरी दुनिया को लगा कि चलो आखिरकार शांति बहाली की प्रक्रिया शुरू तो हुई लेकिन इस समझौते पर सहमति के महज 9 से 8 दिन ही हुए थे कि उसी बीच दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले करने शुरू कर दिए। आलम यह है कि हमले इस शांति समझौते के नए न्यू नॉर्मल या फिर ये कह सकते हैं कि अनरिटर्न शर्तों जैसे बन गए जिसमें दोनों मुल्क एक दूसरे पर बड़े हमले करते रहेंगे और एक दूसरे पर हर दूसरे घंटे पर शांति समझौते पर बने रहने का दबाव भी डालते रहेंगे। आज रणभूमि में बात करेंगे इसी न्यू नॉर्मल में जिसे नए युद्ध की आहट के तौर पर देखा जा रहा है और रणभूमि स्पेशल में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कौन सी ऐसी बड़ी खबरें हैं जिन पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि आखिरकार रणभूमि स्पेशल में कि कैसे सीज़फ़ायर के बाद भी ईरान और अमेरिका के बीच हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इससे बौखलाए ट्रंप ने ईरान को अब तक की सबसे बड़ी धमकी दी है और कहा है कि अगर ईरान नहीं माना तो उसका नामोनिशान मिटा देंगे। रणभूमि स्पेशल में दूसरी बड़ी खबर हम आपको बताएंगे कि ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए हमले करते हुए बहरीन और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। रणभूमि स्पेशल में तीसरी खबर में हम आपको लिए चलेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जहां पर उसके बड़े शहर कराची पर भीषण आतंकघाती हमला हुआ है जिसमें 6 हमलावरों समेत 4 पाक रेंजर्स की मौत हो गई है। रणभूमि स्पेशल में चौथी बड़ी खबर हम आपको बताएंगे कि रूस और यूक्रेन में हर पल एक बड़े जंग की आहट बढ़ती जा रही है और एक दूसरे पर वार पलटवार जारी है। रणभूमि स्पेशल में हम आपको पांचवी खबर हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी की सेशंस दौरे को लेकर बड़े अपडेट आप तक पहुंचाएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन के सेशंस दौरे पर है वहां पर उनको पर्यावरण संरक्षण का सबसे खास और सबसे बड़ा सम्मान भी दिया गया। रणभूमि स्पेशल में आज हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े होंगे रविंदर सचदेव हमारे साथ होंगे और AK श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े होंगे लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं उस खबर की जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और ईरान रुकने वाले नहीं है क्योंकि एक बार फिर से इस बढ़ते तनाव के बीच या इस शांति समझौते के बीच एक दूसरे पर वार पलटवार जारी है। सीज़फ़ायर के बाद भी अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर पलटवार किया है और आज अमेरिका ने दावा किया कि उसने ईरान के 10 सैन्य ठिकानों पर बम बरसाए हैं तो वहीं ईरान ने भी बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य बेसिस को निशाना बनाया है। तो सवाल यह है कि क्या सीज़फ़ायर सिर्फ दिखावा है और ये अब क्या दोनों के बीच में एक नया न्यू नॉर्मल बन गया है।

0: टूटा युद्ध विराम, ईरान में फिर घमासान, सीज फायर तोड़ने का आरोप, यूएस एक्शन से भड़का ईरान, ट्रंप का ऐलान, मिटा देंगे ईरान का नामो निशान, अमेरिका का बदला, ईरानी ठिकानों पर हमला, युद्ध विराम के बेहद करीब जा पहुंचे अमेरिका और ईरान एक बार फिर रणभूमि में आमने सामने आ गए। अमेरिका ने 24 घंटे के अंदर अंदर ईरान के ठिकानों पर जमकर बमबारी की है। इस बार अमेरिका ने दक्षिणी शहर सिरिक को अपना निशाना बनाया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि इस बार ईरान के मिलिट्री सर्विलांस इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन सिस्टम, एयर डिफेंस साइट और ड्रोन स्टोरेज समेत कुल 10 ठिकानों को तबाह कर दिया गया। दरअसल अमेरिका इस बार हॉर्मुज से गुजर रहे एक जहाज पर हमले से गुस्साया हुआ है। उसका आरोप है कि पनामा के झंडे वाले एक तेल टैंकर पर ईरान ने हमला कर सीज फायर का उल्लंघन किया है। ये जहाज करीब 20 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर रवाना हुआ था और ईरानी हमले का शिकार बन गया। ईरान लगातार हॉर्मुज में अपना नियंत्रण साबित करने की कोशिश में हमलावर हो रहा है। अब जब अमेरिका ने ईरान पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की तो बदले में ईरान ने खाड़ी देशों में उसके सैन्य बेस पर हमला कर दिया। IRGC का दावा है कि कुवैत में अमेरिकी एयरबेस और बहरीन में अमेरिकी सेना के मुख्यालय पर ये हमले किए गए, लेकिन इन बदलते हालातों से ट्रंप बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, ईरान ने सीज फायर का सम्मान नहीं किया तो अमेरिका के विमानों ने उनके मिसाइल और ड्रोन स्टोर करने की जगहों और तटीय रडार साइटों पर हमला किया है। मुझे नहीं लगता कि वे सबक सीखेंगे। हो सकता है कि एक वक्त ऐसा आए जब हमें उस काम को सैन्य तरीके से पूरा करने के लिए मजबूर होना पड़े जिसे हमने बहुत सफलतापूर्वक शुरू किया था। अगर ऐसा होता है तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इससे पहले अमेरिका ने शुक्रवार को भी ईरान पर करीब एक घंटे तक ताबड़तोड़ हमले किए थे। अमेरिकी फौज ने ईरान के उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां से मिसाइलों और ड्रोन को रखा जाता था और लॉन्च किया जाता था। इनके साथ साथ समंदर के किनारे की कई रडार साइट्स भी बर्बाद कर दी गई हैं। ट्रंप ने दो दिन पहले ही मीडिया के सामने ऐलान कर दिया था कि ईरान को हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही को रोकने और उन पर बिना किसी वजह के हमला करने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप भी सुनिए रिपोर्टर और ट्रंप के बीच हुई बातचीत।
1: Do you consider the ceasefire to still be in place?
2: I don't like the fact that they took a shot yesterday. Actually, four. We knocked down three at a ship. Not an allied ship, but a ship, a very expensive ship. And it was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out.
1: Will the U.S. respond? What is your message to Iran?
2: Will they respond? You're going to find out.
0: उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी ईरान के हमले से बुरी तरह भड़के हुए हैं। उन्होंने तो सोशल मीडिया पर साफ साफ कह दिया कि हिंसा का जवाब हिंसा से ही दिया जाएगा और इस तरह के हमले किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ईरानी संसद की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मुखिया इब्राहिम अजीजी ने अमेरिका को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिका ने एक बार फिर युद्ध विराम के बीच में हमला किया। नाकाम अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिखाया है कि सीज फायर के उसूल उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। युद्ध विराम का उल्लंघन हमेशा की तरह पीछे हटने और पछतावे की वजह बनेगा। ईरान के समंदर की सरहदों पर एक बार फिर युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। वार पलटवार ने सीज फायर पर सवाल उठा दिए हैं और ट्रंप की सख्त चेतावनी ने माहौल एक बार फिर गर्मा दिया है। आज तक ब्यूरो।
3: अभी आपने ईरान और अमेरिका को लेकर तो पूरा अपडेट देख लिया। अब आपको दुनिया भर के तमाम बड़े वॉरफ्रंट पर क्या अपडेट मिल रहा है, सबसे पहले आपको बड़ी स्क्रीन पर वो दिखाते हैं ताकि आप समझ सके कि आखिरकार ईरान और अमेरिका नहीं, कई ऐसे वॉरफ्रंट भी हैं जहां पर क्या 24 घंटे में घटा है, वो सबसे पहले आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ईरान के 10 ठिकानों पर अमेरिका ने हमला किया, ये हमने आपको रिपोर्ट में भी दिखा और आपको बताया कि 10 ठिकानों पर हमला करने के पीछे ईरान का अमेरिका का मकसद साफ था कि वो ईरान को प्रेशराइज करना चाहता और कहना चाह रहा है कि देखिए अगर नहीं माना ईरान तो फिर हॉर्मुज के आसपास अटैक किए जाएंगे। इसके बाद बहरीन और कुवैत पर भी ईरान का जवाबी हमला नजर आया जिसमें उसने अमेरिका के बेसिस को टारगेट करने की बात कही है। हालांकि देखिए कुवैत और बहरीन के अंदर कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक बार फिर से दोनों की तरफ से सीज फायर का वॉयलेशन किया गया। तीसरा बड़ा अपडेट क्या है, हॉर्मुज पर पूर्ण नियंत्रण का ईरान का दावा है। इसको लेकर उनके विदेश मंत्री ने कहा है कि नियंत्रण हमारा ही रहेगा चाहे कोई कुछ भी कर ले। हॉर्मुज एक बड़ा आप कह सकते हैं दोनों के बीच में एक बड़ा डेडलॉक या फिर एक बड़ा आप कह सकते हैं लड़ाई का एक कारण भी बनता जा रहा। चौथा बड़ा अपडेट, ट्रंप की धमकियां, नहीं माना ईरान तो मिटा देंगे नामो निशान। यानी डोनाल्ड ट्रंप के बड़ी धमकियां कि अगर ईरान नहीं रुका तो फिर ये युद्ध बड़ा होगा और ईरान के नामो निशान को मिटा देंगे। पांचवा बड़ा अपडेट क्या है ये आपको दिखा दे, ईरान का अल्टीमेटम नहीं रुका अमेरिका तो करेंगे भीषण पलटवार, यानी एक दूसरे को धमकियां भी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि अगर आप नहीं रुके तो हम अटैक करेंगे, वो कहता है कि नहीं आप नहीं रुके तो हम अटैक करेंगे, और शायद एक दूसरे पर ये हमले इसीलिए किए जा रहे हैं क्योंकि हर कोई डरा हुआ है, दोनों के बीच में एक ट्रस्ट डेफिसिट है। छठा बड़ा अपडेट क्या है ये आपको बताते हैं, ईरान और इराक में विदेश मंत्रियों के स्तर पर बातचीत हुई है, कहा जा रहा है कि इसको लेकर सबसे बड़ा समन्वय यह बन रहा है कि दोनों एक दूसरे के साथ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी बातचीत कर रहे हैं। सातवां बड़ा अपडेट क्या है यह आपको बताते हैं, लेबनन में पीछे हटे इसराइल वरना टूटेगा सीज फायर, ईरान लगातार इसराइल को प्रेशराइज कर रहा है कि वो अपनी फोर्सेज को साउथ ऑफ लेबनन के इलाकों से बाहर निकाल ले वरना फिर ईरान को मजबूरन अटैक या फिर उसके बाद में कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेबनन से इसराइल के सीज फायर को हिजबुल्ला ने ठुकरा दिया, हिजबुल्ला कहता कि देखिए हम इसमें पार्टी नहीं थे, ये बातचीत लेबनन के साथ की गई है, सरकार के साथ किया और अटैक या हमारा युद्ध हिजबुल्ला हम लड़ रहे हैं तो इसमें हमको भी शामिल किया जाना चाहिए। नौवां बड़ा अपडेट रूस और यूक्रेन को लेकर है जिसमें यूक्रेन के दो MiG-29 जेट को मार गिराने का दावा किया गया है और लगातार ये युद्ध का मोर्चा भी बहुत ज्यादा भीषण होता जा रहा है। दसवां बड़ा अपडेट है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से जहां पर कराची में आत्मघाती अटैक किया गया है, 6 हमलावरों और 4 जवान जो रेंजर्स हैं उनके मारे जाने की रिपोर्ट लगातार मिल रही है और ये इसलिए क्योंकि अभी भी वहां पर कराची में कई जगहों पर कहा जा रहा है कि जो उनके हेडक्वार्टर्स हैं वो बड़े टारगेट पॉइंट हैं इन आतंकी समूहों के। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है अमेरिका की ओर से जहां पर उसने यूएसएस सेंट्रल कमांड की तरफ से दावा किया है कि उसने ईरान के ड्रोन हमले के जवाब में यूएस नेवी और एयरफोर्स ने जो जेट्स हैं उन्होंने रात भर हॉर्मूज के आसपास 10 ठिकानों को निशाना बनाया है, जैसा हम आपको दिखा रहे हैं उसकी तस्वीरें भी सेंट्रल कमांड की तरफ से पेंटागन की तरफ से रिलीज कर दी गई है। अमेरिका का दावा है कि इस हमले में ईरान को भारी नुकसान पहुंचा है और अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस हमले का वीडियो जारी कर बताया कि उसका सीधा टारगेट था उनके जो मिसाइल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स थे, जो उनके जो उन्होंने वेयर हाउसेस बनाए थे स्टेट ऑफ हॉर्मूज या बंदर अब्बास के आसपास के इलाकों में, उन्हीं को ज्यादा टारगेट किया गया है। और देखिए अमेरिका ने ईरान के 10 टारगेट पर हमले का दावा किया तो वहीं ईरान ने भी खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमले का एक वीडियो जारी किया है। ईरान के प्रेस टीवी ने कहा है कि यह वीडियो फुटेज उन मिसाइल्स का है जो ईरान ने बहरेन या दूसरे इलाकों में अमेरिकी भड्डों को टारगेट करके जारी किया है और इसके ऊपर

0: और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह है कि जिसमें बहरीन और कुवैत ने ईरान के हमलों की तस्वीर भी सामने आई है। बहरीन ने मोहरक में ईरान खासतौर पर ईरानी हमलों में एक रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचने का दावा किया है। ईरान की तस्नीम न्यूज ने कहा है कि ईरान के IRGC ने अमेरिकी ठिकानों को जवाबी मिसाइल में और ड्रोन से हमला किया है। ईरान के IRGC एयरोस्पेस और नौसेना के आज एक संयुक्त मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन भी चलाया। हाल के अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने कुवैत और के अली अल सालेम बेस और बहरीन के सलमान पोर्ट में अमेरिकी 5वें बेड़े पर सीधे हमले करने का दावा भी किया और उनके बुनियादी ढांचों को निशाना बनाने का दावा भी किया है। और देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच में 17 जून को एक MOU साइन हुआ था शांति वार्ता को लेकर, लेकिन अब हम आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं कि सीजफायर पर हस्ताक्षर के बावजूद अमेरिका ईरान ने कब कब एक दूसरे पर हमले किए। पिछले 8-9 दिनों के अंदर एक दूसरे पर कब कब बड़े हमले किए दोनों की तरफ से। इस सीजफायर का वॉयलेशन किया गया 25 जून को हॉर्मुज में सिंगापुर के तेल टैंकर पर ईरान ने हमला किया और ईरान ने कहा कि देखिए, इसने जो रूट था वो रूट नहीं लिया जो हमने डिसाइड किया था, इसी वजह से हमने इस पर ही अटैक किया। 25 जून से घटनाक्रम बदलना शुरू हुआ। 17 जून को MOU पे साइन हुआ, 25 जून को अटैक करने शुरू कर दिया। 26 जून को ईरान ने मिसाइल अड्डों और ड्रोन स्टोरेज ठिकानों पर अमेरिकी अटैक किया गया और ये इसलिए किया गया कि अमेरिका ने कहा कि आपने सिंगापुर के उस ऑयल टैंकर पर अटैक किया, आपने वॉयलेशन किया और हम उसकी जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, हम आपकी क्षमताओं को सीधे तौर पर अटैक कर रहे हैं ताकि ईरान ऐसा दोबारा से ना कर सके। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में दो बार ऐसा हुआ है कि जब ईरान और अमेरिका के बीच में एक दूसरे पर हमले करने का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया और माना जा रहा है कि जो MOU है वो ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला। 27 जून को ईरान के 10 ठिकानों पर अमेरिका ने दोबारा से हमला किया जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास के इलाके थे और अमेरिका ने कहा कि हमले नहीं रुकेंगे और अगर ईरान नहीं रुका तो फिर ईरान को हम बर्बाद कर देंगे। 27 जून को ही बहरीन और कुवैत में भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान ने पलटवार किया। ईरान ने इसको लेकर वीडियो भी जारी किया और कहा कि जब जब हम पर हमले होंगे हम भी अमेरिका के ठिकानों पर अमेरिका के बेसिस पर अटैक करते रहेंगे। यानी आप कुल मिलाकर अगर आप देखें, ये MOU एक ऐसा MOU है जिसको दोनों ही मानने को राजी नहीं है। एक नया न्यू नॉर्मल है जिसमें एक दूसरे की इन शर्तों को दोनों मानने से इंकार करते हैं। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, मेजर जनरल AK सिवाज हमारे साथ और रविंदर सचदेव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सिवाज सर, ये न्यू नॉर्मल कैसा न्यू नॉर्मल है? शांति वार्ता को लेकर दोनों ने हस्ताक्षर कर दिए, मीडिएशन पाकिस्तान ने कर दिया, पूरी दुनिया ने देख लिया, लेकिन अटैक तो अब भी जारी है।
1: हाँ बिल्कुल सुमित, इसमें कोई शक नहीं, डिस्ट्रस्ट है, मिसट्रस्ट है, एक दूसरे पे भरोसा नहीं है और जिस प्रकार से हमले स्टार्ट किए थे ईरान ने, देखो ये सच्चाई है कि क्या ये MOU में जो सीजफायर होते ये टूट जाएगा, मुझे अभी भी नहीं लगता ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ना अमेरिका चाहता है कि लड़ाई दोबारा स्टार्ट हो ना ईरान चाहता है, मगर ये सच्चाई है कि अटैक और काउंटर अटैक इस टाइप के चलते रहेंगे जो कि कैलिब्रेटेड होंगे। जिस प्रकार से पहले ईरान ने किया है, ईरान अभी भी सोचता है कि जो MOU के तहत जिस प्रकार से ये डिक्लेयर हुआ था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बिल्कुल खुला होगा, वो उसको मानने को तैयार नहीं है। वो ये कहता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर जो शिप्स हैं वो डेजिग्नेटेड रूट से जाएंगे जो IRGC ने एक प्रकार से ईयरमार्क किया है और इसलिए वो दिखा रहा है कि ये इलाका अभी भी उसके कंट्रोल में है और जो भी शिप इस चीज को नहीं मान रही उसके ऊपर हमला कर रहे, तो ये अमेरिका कभी नहीं मान सकता। अमेरिका ने पलटवार किया, 10 साइट्स पे उसके ऊपर हमला किया, स्टोरेज फैसिलिटी, मिसाइल, ड्रोन और उसके रडार साइट पे कम्युनिकेशन कंट्रोल, और उसका पलटवार किया जो ईरान ने किया है कि कुवैत और बहरीन के अंदर जो मिलिट्री साइट्स हैं अमेरिका की। अगर हम इससे ये देखें कि क्या ये सीजफायर टूट जाएगा, क्या ये MOU खत्म हो जाएगा, क्या ये दोबारा लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी, अभी भी मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। ये एक प्रकार से एक दूसरे को टेस्टिंग है, एक दूसरे को रीचेक कर रहे हैं, मगर सच्चाई यह है दोनों नहीं चाहते ये लड़ाई दोबारा स्टार्ट हो। अगर कहीं लड़ाई स्टार्ट हो सकती है वो लेबनान में है, उसका डर है क्योंकि इजराइल लेबनान से कभी नहीं निकलेगा और अगर वो नहीं निकलता है, लिटानी नदी से पीछे नहीं आता, तो फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सीज फायर टूट सकता है। मगर जो हॉर्मुज में है, सीज फायर के अंदर उल्लंघन होगा, दोनों तरफ से लोगों का, स्पेशली ईरान अपने आप को दिखाने की कोशिश करेगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी उसके कंट्रोल में है, मगर इससे
0: बिल्कुल सर आपने स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जिक्र किया, मैं पहले अपने दर्शकों को एक बड़ा अपडेट देता हूं, एक बड़ी खबर जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, फिर उसके बाद

0: रविंदर सचदेव सर का रुख करूंगा, लेकिन एक बड़ी खबर यह आ रही है वो ये कि ईरान ने कहा है कि अगले 30 दिनों तक हॉर्मूज पर उसका पूरा नियंत्रण रहेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने एक बयान दिया है। ईरान के विदेश मंत्री ने ईरान की इराक की यात्रा के दौरान कहा है कि हॉर्मूज स्ट्रेट पूरी तरीके से ईरान के नियंत्रण में रहेगा और अगले 30 दिनों तक नहीं, उसके लेकर भी स्पष्ट कर दिया है कि वो हमेशा से ईरान के लिए ही ईरान के नियंत्रण में ही रहेगा। यानी स्टेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर अब तनातनी अमेरिका और ईरान के बीच में बढ़ती जा रही है। अमेरिका कहता है कि नहीं, वहां पर फ्री पैसेज दिया जाएगा, कोई टोल नहीं दिया जाएगा। ईरान ये तैयारी करके बैठा है कि वो जैसे ही चीजें ठीक होंगी वो वहां से टोल वसूलना शुरू कर देगा और फिर कमाई करेगा। हमारे साथ हमारे एक और जानकार जो एक्सपर्ट है रविंदर सचदेव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंदर सचदेव सर, ईरान की स्ट्रैटेजी तो है $40 बिलियन हर साल वहां से कमाना, अपनी इकोनॉमी में उसको शामिल करना, अपने इकोनॉमिक सैंक्शंस के बावजूद अपने देश को रिबिल्ड करना। अमेरिका ऐसा होने नहीं देना चाहता। क्या आपको लगता है कि आप भूल जाइए यूरेनियम को, आप भूल जाइए रिजिम चेंज को, आप भूल जाइए इसराइल के सारे बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स को, लेकिन अब यह जंग जब भी होगी या कॉन्फ्लिक्ट जब भी होगा वो सीधे तौर पर सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर ही होने वाला है?
1: यू आर सो राइट सुमित जी, आपके दर्शकों को यह ध्यान होना चाहिए, जंग शुरू हुई मुद्दा था यूरेनियम नंबर वन, हॉर्मूज तो कहीं था ही नहीं जिक्र में। जब ये वॉर रुकी बीच में एक नया सुपर वेपन पैदा हो गया जिसे मैं कहता हूं हॉर्मूजी पंजा। ओके, अब फिर बात आ गई कि इस हॉर्मूजी पंजे को खोला जाए। जब ये हॉर्मूजी और न्यूक्लियर चला गया मामला नंबर टू पे, अब ईरान ने गेम में एक और चाल चल दी, आगे गोल पोस्ट एक नई बना दी जो कि है लेबनन, और जो ये एमओयू है 14 पॉइंट का उसमें नंबर वन जो पॉइंट है वो लेबनन के बारे में कि वहां शांति हो। तो अब बात ये हो रही है कि लेबनन में शांति हो फिर हॉर्मूज पे बात आएगी और तब जाएगी बात यूरेनियम पे। तो यूरेनियम का मामला तो अभी फिलहाल साइड हो गया है। तो जैसे भी जनरल सिवाज भी कह रहे थे, आप भी कह रहे थे, तो हॉर्मूज का खुलना यस जो भी है ट्रांसिट उसमें भी आते हैं, पर मेन अब इशू आ गया लेबनन।
0: सर माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोकना पड़ रहा है क्योंकि सेशल्स हम अपने दर्शकों को सीधे लिए चलते हैं जहां पे प्रधानमंत्री मोदी वहां की संसद में संबोधन दे रहे हैं। आइए आपको सीधे वहां लिए चलते हैं।
2: थैंक यू फॉर दिस स्पेशल ऑनर। आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू कॉन्ग्रेचुलेट द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दिस 8th National Assembly. I also extend my felicitation to you, Madam Speaker, on becoming the first woman speaker of this August House. Honorable members, it is important to recall today that our friendship did not begin 50 years ago with the establishment of our diplomatic relations. It began much earlier. In August 1770, there were 5 Indians among those who arrived on board the ship Telemark at St. Anne Island. That voyage showed the path to many more who followed. Over time, the stories became part of the story of modern Seychelles. It reminds us that the bonds between us were not created by governments. They were built by people, nurtured by families, and sustained by generations. The Indian Ocean made this possible. The Indian Ocean does not separate India and Seychelles. It connects us. That is why वी मीट नॉट एज ए स्ट्रेंजर्स, वी मीट एज ओल्ड फ्रेंड्स. ऑनरेबल मेंबर्स, द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ सेशेल इज इट्स पीपल. ओवर जनरेशंस पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अराइव्ड हियर. दे ब्रॉट विद देम डिफरेंट लैंग्वेजेस, कस्टम्स, बिलीफ्स एंड ट्रेडिशंस, एंड टुगेदर दे बिल्ड अ शेयर्ड आइडेंटिटी दैट इज प्राउडली सेशेलवा. At the motto of the National Assembly says, unity in diversity. It can be heard in the melodies of Creole music. It can be seen in the rhythm of the Muncha dance. It can be experienced during Festival Creole. When the nation celebrates the richness of its heritage, the connections between our cultures are also visible in everyday life. They can be felt in the flavors of curry coco, samosa, and chutney. They can be found in the celebration of Deepavali, Thai Pongal, and the Garba dance during Navratri. This is the Creole spirit that gives us great confidence in the future of our friendship. Honorable members, as maritime neighbors, we recognize that the security of one adds to the security of the other. The prosperity of one contributes to the prosperity of the other. And the stability of the region benefits us all. This year offer a powerful reminder of the depth of our partnership. 50 years ago, at the dawn of your independence, an Indian naval ship, INS Nilgiri, was present in Port Victoria as a mark of friendship and solidarity. And today, INS Tarkash and INS Ikshak are docked at Port Victoria to celebrate the Golden Jubilee with you. The passage of 50 years has changed many things, but it has not changed our commitment to one another. For decades, our defense forces, coast guards, and maritime agencies have trained and worked closely together. India deeply values the professionalism and dedication of the Seychelles Defense Forces and the Seychelles Coast Guard. They play a vital role in safeguarding your own vast maritime domain as well as the wider Indian Ocean region. Our cooperation in maritime security, capacity building, hydrography, and maritime domain awareness reflects our shared commitment to a safer and more secure region. I met President Albany Taupath this morning and reviewed the remarkable progress achieved in our partnership. We also discussed our shared vision for the future. Our vision is captured in the idea of Mahasagar, mutual and holistic advancement for security and growth across regions, Mahasagar. This vision recognizes that our futures are interconnected and interdependent. And we will continue to work together for a safer and more secure Indian Ocean region. Honorable members, when people look at a map, they may see Seychelles as a group of islands in the Indian Ocean. But we see something much greater. We see a nation whose horizons stretch far beyond its shores. Your maritime domain extends across nearly 1.4 million square kilometers. This makes Seychelles not a small island state, but a large ocean country. Long before the blue economy became a part of global discussions, Seychelles was already leading the way. Whether in protecting marine ecosystem or in advancing innovations like blue bonds, your country has helped shape important global conversations. Together, we can build partnership in fisheries, marine science, coastal management, renewable energy, and sustainable tourism. Yesterday, I had the honor of planting a sapling of the iconic Coco de May tree. Much like Seychelles itself, it is unique, precious, and occupies a special place in the world. The efforts being made by you to protect and preserve this natural wonder reflect our larger philosophy that humanity must live in harmony with nature. This sentiment resonates deeply in India as well. Let us work together to ensure that future generations inherit oceans that are healthier, safer, and more abundant than those we enjoy today. Honorable members, the Global South, and especially the island nations, are the most impacted by climate change. इट्स इफेक्ट्स आर ऑलरेडी विजिबल ऑन अवर कोस्ट लाइन्स इन द मरीन इकोसिस्टम्स इन वेदर पैटर्न्स एंड इन अवर कम्युनिटीज. वी बोथ फर्मली बिलीव दैट दोज हु हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड द लिस्ट टू क्लाइमेट चेंज शुड नॉट बेयर द ग्रेटेस्ट बर्डन ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसिस. Climate action must be guided by fairness, responsibility, and equity. This is the essence of climate justice. India has sought to lead by example. Over the last decade, we have undertaken one of the world's largest expansions of renewable energy. We have championed sustainable lifestyle through Mission Life, Lifestyle for Environment. Through our initiatives like International Solar Alliance, Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, Global Biofuel Alliance, and Ek Ped Maa Ke Naam, a tree for mother. We have worked with partner countries to boost the green transition. And India is committed to continue working with to ensure that the concerns of small island developing states receive the attention they deserve. Honorable members, Seychelles and India both seek a world where development is more inclusive. We both seek a world where international institutions reflect contemporary realities. We believe that our shared future must be shaped collectively, inclusively, and fairly. This belief guided India's efforts during our G20 presidency. It was in this spirit that we worked to place the priorities of the Global South at the center of international discussions. And it was in this spirit that we welcomed the African Union as a permanent member of the G20. This is the spirit that unites the Global South. And this is the vision that India and Seychelles will continue to advance together. Honorable members, as we celebrate the achievements of the past 50 years, we must also look ahead. The future of Seychelles will be shaped by its youth. We are proud that students, professionals, officials, and security forces of Seychelles have trained and studied in India for decades. In fact, it is said that one in every 50 people in Seychelles has undergone some training in India. They have returned home with skills, friendships, and experiences that continue to strengthen our partnership today. I was delighted to learn about your Ignite initiative टू प्रोवाइड इंटर्नशिप फॉर द यूथ. इट इज एन एक्सेलेंट फ्रेमवर्क एंड वी कैन एक्सप्लोर न्यू एवेन्यूज फॉर कोऑपरेशन इन दिस सेक्टर. अ की फोकस एरिया फॉर सच कोऑपरेशन कैन बी इन डिजिटल इनोवेशन. इंडिया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI हैड डेमोस्ट्रेटेड हाउ टेक्नोलॉजी कैन एक्सपांड अपॉर्चुनिटी, इंप्रूव गवर्नेंस, बूस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डिलीवर सर्विसेज फॉर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल. वी वुड बी हैप्पी टू शेयर अवर एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपर्टीज एज यू परस्यू योर ओन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. आई एम कॉन्फिडेंट दैट द यंग पीपल ऑफ सेशल विल एम्ब्रेस दिस अपॉर्चुनिटीज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट गाइडेड द फर्स्ट 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस. Honorable members, today, as I stand before you in this historic golden jubilee year, our people are celebrating a friendship that stretches back more than 2.5 centuries. Few partnerships are built on foundations as deep, and few partnerships have grown with such a warmth, trust, and goodwill. As we look ahead, let us continue to build upon these foundations. India will remain your trusted partner. We will celebrate your achievements. We will support your aspirations. And we will stand beside you as friends. The last 50 years have been remarkable. But I firmly believe that the best chapter of the Seychelles history are yet to be written. And the best of your friendship is yet to come. Merci beaucoup. Thank you.

0: थैंक यू
1: और देखिए सेशल्स की संसद में प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कई बड़ी बातें कही जिसमें उन्होंने ना सिर्फ एक दूसरे के साथ ज्वाइंट मरीन कोस्टल सिक्योरिटी की बात की और कई महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बात भी की। और चलिए अब रणभूमि में बात करते हैं इसराइल मीडिया के हवाले से, जहां पर एक बड़ी खबर आ रही है कि इसराइली प्रतिनिधिमंडल ईरान परमाणु वार्ता के लिए वॉशिंगटन जा सकता है। इसराइल के हितों की रक्षा के लिए वॉशिंगटन जाएगा ये प्रतिनिधिमंडल और वॉशिंगटन में इसराइल अमेरिका से इस संबंध में अपना पक्ष भी रखेगा। आपको बता दें कि लगातार लेबनन को लेकर एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन, एक ज्वाइंट वार्ता हुई थी, अमेरिका लेबनन और इसराइल की बातचीत हुई थी जिसे लेकर एक फ्रेमवर्क भी तैयार किया और उसके बाद कहा जा रहा है कि वॉशिंगटन जाएगा इसराइल का प्रतिनिधि मंडल। इसको लेकर नेतन्याहू ने कहा कि हम अपना पक्ष रखेंगे, हम लगातार ईरान के जो उनका न्यूक्लियर परमाणु वार्ता के अंदर नेगोशिएशंस के अंदर हमारे पक्ष को भी सुना जाए, रखा जाए, इसको लेकर भी हम अपनी बातचीत अपनी बात रखेंगे। और चलिए अब एक और जंग के मोर्चे की बात करते हैं रूस और यूक्रेन की। रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है और भड़कती जा रही है। यूक्रेन ने क्रीमिया पर ड्रोन से हमला किया है जहां पर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचने की बात कही जा रही है, वहां स्टेट इमरजेंसी लगानी पड़ी है। जवाब में रूस ने भी कीव, ज़ापोरिज़िया और खारकीव में जबरदस्त हमले किए। इसको लेकर आपको एक रिपोर्ट सबसे पहले दिखाते हैं।

ड्रोन हमलों से मचा कोहराम। क्रीमिया में इमरजेंसी से हाहाकार। कीव और खार्किव में रूस का पलटवार, भारी नुकसान।

0: ना रूस रुकने को तैयार है, ना यूक्रेन झुकने को। दोनों तरफ से हुए ड्रोन हमलों ने ऐसी तबाही मचाई है कि एक बार फिर हाहाकार मच गया है। सबसे ज्यादा बदतर हालात हैं क्रीमिया के, जिस पर 2014 से रूस ने कब्जा कर रखा है। क्रीमिया पर यूक्रेन के ताबड़तोड़ ड्रोन हमलों के बाद से तो हालात और खराब हो गए। यूक्रेन ने एक साथ सैकड़ों ड्रोन से हमले किए। रूसी सेना ने 660 ड्रोन मार गिराए, लेकिन कई हमलों को रोकने में वो नाकाम रही। ये हमले रूस के अलग अलग इलाकों के साथ साथ क्रीमिया, काला सागर और आजोब सागर में किया गया। हमलों से परेशान अधिकारियों ने शुक्रवार को क्रीमिया में स्टेट इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। ये इलाका पहले से ही ईंधन की कमी और बिजली की कटौती से जूझ रहा है। ऊपर से यूक्रेन के हमलों ने यहाँ की सैन्य स्थिति और अर्थनीति की धज्जियां उड़ा कर रख दी है। सिविल गैसोलीन बंद कर दी गई है और कई इलाके अंधेरे में डूबे हुए हैं। क्रीमिया में रूस की तरफ से बनाए गए गवर्नर सरगेई अक्सुनोव ने क्रीमिया गणराज्य और सेवस्तोपोल शहर में क्षेत्रीय स्तर पर आपातकालीन स्थिति घोषित करने वाले आदेशों पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया गया है।
1: Сегодня с 13.00 значит, вводится режим чрезвычайной ситуации в Республике Крым. Значит, данный режим принимается по согласованию с Михаилом Владимировичем Развожаевым, Севастополем, и действуем совместно синхронно. Данный режим принимается в целях упорядочения финансово-денежных, кредитных, договорных и других отношений. И с вопросами восстановления ущерба, то есть как бы данная позиция тоже должна быть упрощена. Поэтому прошу опять же всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. Вместе мы прорвемся. Спасибо.
0: यूक्रेन पिछले कई महीनों से रूस के तेल उत्पादन और ऊर्जा क्षेत्रों को निशाना बना रहा है। इससे न सिर्फ रूस की ऑयल सप्लाई पर बुरा असर पड़ा है, कई जगह बिजली को लेकर भी संकट खड़ा हो गया है। पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क जैसे इलाकों में रूस की सेनाएं आगे तो बढ़ रही हैं, लेकिन उनकी रफ्तार इतनी धीमी और खर्चीली है कि पुतिन पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि रूस इन हमलों के बाद चुपचाप बैठ गया है। उसने पलटवार करते हुए कीव, ज़ेपोरोजिया और खार्किव समेत कई इलाकों में बम बरसाकर यूक्रेन को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। खार्किव में एक रिहायशी इलाके में हुए रूसी हमले से इमारत में धमाकों के साथ आग लग गई। हमला इतना भीषण था कि एक महिला की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हो गए। रूस के एयर स्ट्राइक का सिलसिला यही नहीं थमा। डोनेट्स इलाके में उसने विनाशकारी मिसाइलों के वार से भारी तबाही मचाई है। रूस ने यह भी दावा किया है कि उसके रॉकेट ने ज़ेपोरोजिया में यूक्रेनी यूएई कमांड पोस्ट उड़ा दिया। नीपर ग्रुप ने हरिकेन मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का इस्तेमाल करके ओरेखोव के पास ये हमला किया। हालांकि यूक्रेन ने दावा किया है कि उसकी वायुसेना ने कीव की ओर बढ़ रही रूस की ताकतवर इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल को पैट्रियट सिस्टम के जरिए इंटरसेप्ट करके तबाह कर दिया। आज तक ब्यूरो।
2: और चलिए अब रणभूमि में रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। दरअसल पाकिस्तान की ओर जहां पर कराची में एक बड़ा आत्मघाती हमला हुआ। कल रात हुए आत्मघाती हमले के बाद पूरे शहर में दहशत का माहौल है। करीब दो घंटे तक चली इस कार्रवाई में 6 हमलावर मार दिए गए, जबकि जो रेंजर्स है पाकिस्तानी रेंजर्स के, उनके खुद के 4 जवान भी मारे गए।

0: किसने किया कराची में आत्मघाती हमला? क्यों हुआ कराची के सबसे सुरक्षित इलाके में विस्फोट? आतंकिस्तान भुगत रहा आतंक को पालने का खामियाजा। वीकेंड के चहल पहल के बीच कराची शनिवार को एक बड़े धमाके से तहल उठी। ये धमाका ऐसी जगह पर हुआ जो शहर के सबसे सुरक्षित इलाकों में मानी जाती है। विस्फोटक से लदी एक गाड़ी कराची रेंजर्स के हेडक्वार्टर का गेट तोड़ते हुए अंदर घुसी और आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। पलभर में ही एक आत्मघाती हमलावर ने उसे उड़ा दिया। इस टक्कर से जोरदार विस्फोट हुआ और अफरा तफरी फैल गई। इसके बाद भी धमाके होती रहे। बलूचिस्तानी जौहर इलाके में हुए विस्फोट के फौरन बाद इस पूरे इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाजें आने शुरू हो गई। इन तस्वीरों में भी फायरिंग की आवाज साफ सुनी जा सकती है। करीब डेढ़ घंटे तक दोनों ओर से गोलीबारी चलती रही। इस हमले से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई और कई इलाकों की बिजली गुल कर दी गई। शुरुआत में रेंजर्स ने आतंकियों की धरपकड़ का अभियान चलाया। जल्दी ही स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के कमांडो और एंटी टेररिस्ट फोर्स के टीमों ने भी उनके साथ मोर्चा संभाल लिया। इस आतंकवादी हमले में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के 4 लोगों की मौत हो गई। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 6 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारे जाने की भी खबर है, जबकि एक हमलावर को जिंदा पकड़ने में भी कामयाबी हासिल हुई है। जिस इलाके में आत्मघाती हमला हुआ है वो काफी संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि यहाँ पुलिस मुख्यालय के अलावा कराची यूनिवर्सिटी का परिसर और कई सरकारी दफ्तर है। रात भर सुरक्षा बलों ने कराची में तलाशी अभियान चलाया ताकि संदिग्धों की धरपकड़ की जा सके। घटना के बाद पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। भारी तादाद में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। सिंध के मुख्यमंत्री सैयद मुराद अली शाह ने घटना की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। वहीं सुरक्षा एजेंसियां पूरे हमले के नेटवर्क और हमलावरों के संबंधों की जांच कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस आत्मघाती हमले और गोलीबारी में किसका हाथ था और इसकी वजह क्या है। वैसे तो प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमातुल एहरार ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। संगठन का कहना है कि हमले में उसके 9 लोग शामिल थे। बताया जा रहा है कि ये संगठन TTP से जुड़ा है। और
1: एक बात कही जाती है कि अपने घर में सांप पालोगे तो एक दिन तुम्हें जरूर डसेगा। पाकिस्तान की जो बात बिल्कुल सटीक साबित होती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, रणभूमि में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ।
3: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
4: As world soccer hits the big stage, Fanatics Sportsbook is making every game day worth more. Earn up to 10% fan cash on your soccer bets, win or lose. That's real extra value you can unlock every match, all tournament long. And fan cash isn't just for betting. You can use it anywhere in the world of Fanatics. On game tickets, merchandise, collectibles, profit boosts, and more. One ecosystem, endless ways to spend. Plus, new customers get up to $1,000 in fan cash. That's $100 bet match every day for your first 10 days. The world is ready. Are you? Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Must be 21 plus. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET. CT, call 888-789-7777. MA, call 800-327-5050. NY, call 877-8-HOPE-NY. MD, visit mdgamblinghelp.org. Not available in all states. Terms apply. See Fanatics Sportsbook app.
5: Talk Sport presents The S Word with Will Gavin and Master Tesfasyon.
6: We're finally giving North American football fans the show they deserve.
7: Fiery fan debate, in-depth analysis, and plenty of fun along the way.
6: We're here Monday to Friday, 8 till 10 Eastern, and every single day of the World Cup.
7: Remember, around here, we use the F Word.
6: Never The S Word.
5: The S Word, available now on TuneIn,
8: wherever you get your podcasts,
5: and on the S Word YouTube channel.
9: Sanitary Solutions.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: हमने तब भी सवाल किया था,
4: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
3: हम आज भी सवाल करते हैं,
4: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
3: ऑपरेशन अग्नि,
4: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
3: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
5: In association with
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: The action never stops and neither do we. From breaking updates to match analysis, from big moments to bigger conversation. This is where sports comes alive. Fast, sharp, unfiltered. For the fans who want every update, every story, every headline first. Welcome to Sports Today, your destination for everything sports. Press that bell icon and subscribe now.
3: हमने तब भी सवाल किया था,
4: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
3: हम आज भी सवाल करते हैं,
4: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
3: ऑपरेशन अग्नि,
4: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
3: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
7: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
8: Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.

0: संसद में पीएम मोदी का संबोधन, कहा हिंद महासागर हमें बांटता नहीं जोड़ता है। प्रधानमंत्री को मिला पर्यावरण संरक्षण का सर्वोच्च सम्मान। चढ़ावा चोरी को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी को फिर घेरा, कहा इनके लिए डोनेशन फर्स्ट नेशन लास्ट। सीएम योगी का पलटवार, बोले एसपी ने चलवाई राम भक्तों पर गोलियां। केतन अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस ने किया क्राइम सीन का रिक्रिएशन। मुख्य आरोपी सिया को लेकर लोहागढ़ किले में ले गई पुलिस, डेथ पॉइंट से धक्का तक। 18 जून की वारदात पर सवाल जवाब। और अमेरिका ईरान में युद्ध विराम टूटने का खतरा, 24 घंटे में दूसरी बार अमेरिका ने होर्मुज के पास 10 ईरानी ठिकानों पर की बमबारी। ईरान ने कुवैत से बहरीन तक अमेरिकी बेस पर बोला हमला।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के चढ़ावे में चोरी का मामला लगातार गहराता जा रहा है। जांच के दायरे में अब सिर्फ आरोपी नहीं बल्कि उनसे जुड़े हुए लोग, उनकी आर्थिक गतिविधियां भी आ रही। अयोध्या पुलिस ने इस मामले में नामजद कई आरोपियों के घर पर पहुंचकर उनके परिजनों से पूछताछ की है, उनके संपर्कों और गतिविधियों की जानकारियां जुटाई है। अब पुलिस का दावा है कि अब तक लगभग 80 लाख रुपए बरामद कर लिए जा चुके हैं। 80 जांच एजेंसी आरोपियों की संपत्तियां और वित्तीय लेन देन की पड़ताल भी कर रहे हैं। इसी बीच में राम मंदिर की सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं, जिस पर सियासत भी तेज है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार और बीजेपी पर गंभीर सवाल खड़े किए, आरोप लगाए, जबकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। आखिर जांच किस दिशा में बढ़ रही है, पुलिस अब तक क्या क्या बरामद कर चुकी है, इस मामले पर सियासी घमासान कैसे मचा हुआ है, दंगल में आज इसी पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट।

0: रामलला के चढ़ावे से चोरी के मामले में जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एसआईटी की जांच के बाद जहां राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कुछ लोगों के इस्तीफे सामने आए, वहीं अब पुलिस भी कार्रवाई तेज करती नजर आ रही है। अयोध्या पुलिस ने मामले में नामजद आरोपियों के घर पहुंचकर उनके परिजनों से पूछताछ की।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों के घर पर, जो अयोध्या के रहने वाले हैं, उनके घरों पर छापेमारी की जा रही है। मैं इस समय पर अयोध्या में ही रह रहे रमाशंकर मिश्रा, जो आरोपी थे जिनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, रमाशंकर मिश्रा के घर पर मौजूद हूँ। उनके परिजनों से, उसकी भाभी, बहन, उनके पिता से पूछताछ की जा रही है। ये रमाशंकर मिश्रा का घर है जो राम मंदिर में नोट गिनने के काम में जुड़ा हुआ था। बता दें कि अयोध्या पुलिस ने इन सभी आरोपियों के घर से लगभग 80 लाख रुपए बरामद किए थे और इनको जुडिशियल कस्टडी में सोमवार तक के लिए भेज दिया गया था, लेकिन अब कल सोमवार को दोबारा जुडिशियल कस्टडी पर सुनवाई होनी है। उससे पहले पुलिस के द्वारा ये जांच की जा रही है, पड़ताल की जा रही है, इन सभी जो आरोपी हैं उनके घर वालों से पूछताछ की जा रही है कि ये लोग कब आते थे, कैसे आते थे, क्या क्या खरीदा गया।
0: अयोध्या पुलिस ने टिन्नू यादव, मनीष यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा के घरों पर पहुंचकर उनके परिवार के लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने आरोपियों के घर आने जाने, उनके संपर्कों और गतिविधियों से जुड़ी जानकारी जुटाई। आरोपी रमाशंकर मिश्रा के पिता अयोध्या के एक मंदिर में पुजारी हैं। पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की
2: जाँच के लिए, और वो यहाँ रहते हैं कि नहीं रहते हैं, कहाँ वो है तो हम बताए कि कमरा पे अलग लिए रहते हैं, दो ढाई साल से यहाँ रहते नहीं हैं, आना जाना भी यहाँ का नहीं है, एक दिन कभी इस मंदिर के अंदर पाँव नहीं रखते हैं।
1: कब से नहीं आया?
2: दो ढाई साल हो गए यहाँ नहीं आया। हाँ, दो साल।
1: तो राम मंदिर में कब से काम कर रहा था, क्या काम करता था रमाशंकर?
2: 5-6 साल हो गए, तब वहाँ पैसा गाने में बताता है, गाना कर्मचारी।
1: अच्छा, हाँ। कभी पैसा वैसा ज्यादा देखा आपने रमाशंकर के पास? बहुत
2: कभी नहीं, पैसा तो मांगा रहा तो पैसा पाई नहीं, पैसा मांग लेता है कि दे दे, कहीं जरूरत लगे।
1: पुलिस तो कह रही है कि सब मिलके 80 लाख रुपया चोरी कर लिए चढ़ावे से।
2: कुछ छोड़िए कि नया पैसा यहाँ कहूँ देखे ना आया हुआ।
0: रमाशंकर मिश्रा के परिजनों का कहना है कि वो लंबे समय से घर नहीं आया है और किराए के मकान में रह रहा था।
3: हमको ना वो करे हैं ना हमको दिया है, कभी हमसे उनसे बनता ही नहीं था, कभी वो 10 रुपया हमको दिए ही नहीं थे, मुझको मेरे पति का सहारा है, बस कोई का सहारा नहीं है।
1: तो यहाँ रमाशंकर के बारे में और क्या, घर से कुछ पैसा वैसा ले गए, कुछ बरामदगी दिखाई है, घर से मिला है
3: कुछ? नहीं मिला है सर, केवल कागजात मिला है, वही लेकर गए हैं, आधार नंबर, खाता नंबर।
0: पुलिस के मुताबिक अब तक इस मामले में करीब 80 लाख रुपए की बरामदगी की जा चुकी है, इनमें से करीब 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से मिलने की बात सामने आई है।
1: टिन्नू यादव के इस हॉस्टल से ही, दुर्गापुरी कॉलोनी का ये अयोध्या में ही दुर्गापुरी कॉलोनी ये हॉस्टल है, और इस हॉस्टल में यूं तो यहाँ अयोध्या विश्वविद्यालय के आसपास के कॉलेज के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर दो कमरे हैं जो टिन्नू यादव ने अपने निजी यूज के लिए रखे हैं। कहने को तो दोनों कमरे पूजा घर है, उसका अपना कमरे उनके कब्जे में है, लेकिन कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद, जब गुरुवार देर रात टिन्नू यादव को अयोध्या पुलिस ने FIR दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया, तो शुक्रवार की सुबह उसको यहां लाया गया, और पुलिस के अनुसार जो दस्तावेज जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है कि लगभग 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से बरामद हुए।
0: इस मामले में गिरफ्तार किए गए अनुकल्प मिश्रा पर भी जांच एजेंसियों की नजर है। पुलिस के अनुसार वो नोटों की गिनती की व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। जांच के दौरान उसकी संपत्तियों और वित्तीय लेनदेन की भी पड़ताल की जा रही है। 2 साल पहले खरीदे गए उसके मकान पर भी आज तक की टीम पहुंची।
4: मेरे भाई को फंसाया जा रहा है, मेरी मुझ में ही है, उनसे शादी हुई थी चाचा की 10 साल से, इनका तेज चल रहा है, उनका मैटर चाचा चाची का है, वो अलग जाने।
0: उधर राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर CCTV कंट्रोल रूम की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार और BJP पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि CCTV बंद करके चोरी को अंजाम दिया गया, साथ ही ये भी कहा कि BJP की प्राथमिकता देश नहीं बल्कि चंदा है।
5: अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे, आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आज जब राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है, तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है।
6: इनकी निगाहें नेशन पे नहीं है, डोनेशन पर हैं। जो लोग ये कहते थे नेशन फर्स्ट, उनके लिए लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट है।
0: रामलला के चढ़ावे में गबन के इस मामले में पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, बड़ी रकम बरामद होने का दावा किया गया है और आरोपियों से जुड़े आर्थिक पहलुओं की भी जांच की जा रही है। साथ ही मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। ऐसे में सभी की नज़र अब पुलिस जाँच पर, आगे होने वाली कानूनी कार्रवाई पर टिकी हुई है। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।
7: अब एक बड़ी खबर भी आपको देते हैं। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और आप हैरान रह जाएंगे। ट्रस्ट को कथित गड़बड़ी की जानकारी थी और पहले से जानकारी थी। 5 जून को बकायदा पुलिस ने आरोपी अविनाश शुक्ला के ठिकाने पर छापेमारी की थी। 5 जून को नकदी भी बताया जा रहा है कि उसके ठिकाने से बरामद हुई थी। हालांकि उस समय औपचारिक शिकायत ही दर्ज नहीं करवाई गई, ट्रस्ट ने शिकायत दर्ज नहीं करवाई। लेकिन अब सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, इसमें पुलिस आरोपी को हिरासत में लेते हुए दिखाई दे रही है। 5 जून को आरोपी के ठिकाने पर पुलिस पहुंच गई थी, लेकिन ट्रस्ट ने औपचारिक शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाई, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवाई, ये पूरे के पूरे ट्रस्ट की विश्वसनीयता पर बहुत गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। और ये वजह है कि ट्रस्ट ने जब से ट्रस्ट जो है तोड़ा है, तब से लोग ये मांग कर रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर तो अभी इस्तीफे बहुत कम है, इस पूरे के पूरे ट्रस्ट को हटा देना चाहिए। दंगल की करते हैं शुरुआत। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक जुड़े हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हैं सुनील सिंह साजन, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं दीपक झा, और वीएचपी का पक्ष रखेंगे अमितोष पारेख। आज चर्चा की शुरुआत अजय आलोक जी आपसे। अजय आलोक जी, 5 जून को मालूम था, गड़बड़ की जानकारी पहले ही थी, लेकिन ये ट्रस्ट, इसने क्यों जानकारियां छुपाई, इसने क्यों एफआईआर दर्ज नहीं करवाई, इस ट्रस्ट ने तो सबके भरोसे को तोड़ा है, सारा ट्रस्ट तोड़ दिया।
8: देखिए, मुझे लगता है राजीव जी की इसी ट्रस्ट ने जानकारी दी थी सरकार को कि यहां पे कुछ गड़बड़ियां हैं, और ट्रस्ट की सिफारिश पर सरकार ने एसआईटी का गठन किया था। और जो अखिलेश जी क्लेम कर रहे थे कि 7 जून को यहाँ पे गड़बड़ी हो गई है, उसके पहले ही ट्रस्ट ने सरकार को सूचित कर दिया था, उसके बाद एसआईटी का गठन किया गया था। तो ट्रस्ट के भरोसे या ट्रस्ट की इसकी बात नहीं है, ये प्रकाश में आने के साथ ही सबको एक्टिवेट हो गए थे। अब ये कहिए कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ट्रस्ट के कंधे का सहारा लगा के लोग अपना बंदूक चलाते रहे, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई नेशन और डोनेशन की बात कर रहा है। वाह रे वाह भाई, मैं तो आपके मंच के माध्यम से आज उत्तर प्रदेश और पूरे देश के यदुवंशियों, जो कि बहुत सक्रिय तौर से श्री कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन के लिए लगे हुए हैं और सब अपना रोल निभाने जा रहे हैं, मैं उन यदुवंशियों की तरफ से आज माननीय अखिलेश यादव से पूछूंगा, क्या कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन के लिए वो नेतृत्व करने आगे आएंगे? आगे आएंगे तो आज बोले आपके चैनल पे कि हाँ,
7: अखिलेश में इस पर ले लूंगा, लेकिन उससे पहले वापस राम मंदिर पर आ जाते हैं।
8: अयोध्या की नोटिस,
7: वापस राम मंदिर पर आ जाते हैं। जब सवाल, अब तो पॉलिटिकल पार्टी तो एक तरफ है, तो आम लोग भी सवाल, आप खुद भी सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहते हैं, लोग कह रहे हैं कि चोरी हुई नहीं, ये चोरी करवाई गई है, पूरा का पूरा गबन एक सिस्टमेटिक तरीके से करवाया गया है, ये आरोप लग रहे हैं
8: आपके जितने तकनीकी, आप बिल्कुल आरोप लग रहे हैं, लगने दीजिए आरोप, मैं आपके तकनीकी पहलुओं का जवाब दूंगा। मैं बस ये कह रहा हूं कि ये नौटंकी कर रहे हैं राम मंदिर आंदोलन पे, जिस तो जो इस आंदोलन का ये जन्म भर विरोध करते रहे, कार सेवकों पे गोलियां चलवा दी, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए ये कांग्रेसी गैंडी कांग्रेस वाले कि इस पर सुनवाई मत कीजिए, चुनाव में दिक्कत हो जाएगी, राम को अपना आदर्श नहीं मानते थे, राम का अस्तित्व नहीं मानते थे, आज राम मंदिर आंदोलन, राम मंदिर ट्रस्ट पे इनको दिक्कत हो रही है।
7: बड़े राम को आदर्श मानते थे,
8: रोज दिन
7: आप तो कट्टर राम भक्त थे और हैं,
8: चोरी कैसे हो गई, हम तो आहत हैं,
7: चोरी कैसे हो गई, ट्रस्ट पूरा गठन आपने करवाया, सारी चीजें मॉनिटर हो रही थी, तो फिर ये चोरी कैसे हो गई?
8: राजीव जी, चोरी बैंकों में भी होती है, डकैती बैंकों में भी होती है, लेकिन चोर पकड़े जाते हैं, उनको सजा मिलती है, रिकवरी होती है, यहाँ भी वही होगा, कोई नहीं बचने वाला है, जो मुख्यमंत्री योगी जी ने,
7: लेकिन अब तो सपा कहने लगे ना कि अगर आप मान लीजिए बचा भी लेंगे एक बार के लिए, तो हम जब सरकार में आएंगे तो हम पकड़ लेंगे,
8: सपा को क्रेडिबिलिटी है, हम क्यों बचाने जाएं? दूसरी बात, ये कब सरकार में आएंगे, कभी आएंगे ही नहीं, जो राम विरोधी है वो सरकार में नहीं आ सकता है, देश की सच्चाई जान ले, करते रहे गाजा गाजा गाजा, गाजा ने बजा दिया है बाजा, लिखे लोग पेपर में गाजा गाजा गाजा,
9: अब बात करेंगे राम मंदिर आंदोलन की, राम मंदिर ट्रस्ट की। चोरी से इनको बड़ा दिक्कत है, अरे ये खुद जन्मजात सबके सब चोर है, चोर पार्टी जीवन भर चोरी करते रही, ये हमें ज्ञान दे रहे हैं और हम क्यों डिफेंसिव पे रहे? चोरी हुई है ये हम ही ने पता किया, हमारी एसआईटी ने पता किया, एफआईआर हमने करवाई, गिरफ्तारी हमने की, रिकवरी हम कर रहे हैं, आगे भी हम ही करेंगे, उम्मीद भी हम ही से
7: है। सुनील सिंह साजन वो कह रहे हैं कि हमने सब चीजें पकड़ी हैं, हम ही आरोपियों को गिरफ्तार कर रहे हैं, जो भी होगा सब पकड़ा जाएगा, आप सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं।
10: देखिए राजीव जी, क्योंकि ये भगवान राम
9: नहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि पे बोले क्या आंदोलन को लीड करेंगे अखिलेश यादव, यदुवंशी अगर सही में है तो सुने उत्तर प्रदेश का, बिहार का, देश के यदुवंशी।
10: राजीव जी मैं बोलूं, अगर इन चोरों को आप रोक सकें तो
7: नहीं? बोलिए बोलिए आप, अजय आलोक जी उनका उनका गन है। क्योंकि राम मंदिर मतलब आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है, चोरी हुई है तो हम उसी पर विषय पर रहेंगे। सुनील सिंह साजन
10: जी जी देखिए राजीव जी, एक तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि संघ ने जानकारी दी, ये आप सब लोग जानते हैं कि सबसे पहली बार माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को उठाया कि भगवान राम के मंदिर में दान पात्र की चोरी हो रही है। जब सिलसिला शुरू हुआ तो ये सारे चोर डकैत जो मंदिर में बैठे थे, मैं तो आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, आज तक पर कह रहा हूं, आने वाली पीढ़ियों के लिए ये जान पाना या तुलना कर पाना कठिन होगा कि जो विदेशी आक्रांता हमारे मंदिरों को लूटने आए थे वो ज्यादा खतरनाक थे, या जो हमारे देश में बैठे आक्रांता हैं, या जो हमारे मंदिर में बैठे
7: बड़ी पार्टी के प्रवक्ता, आप बताइए ना कि आप क्यों बीजेपी पर सीधा आरोप लगा रहे हैं? एक ट्रस्ट बनाया गया था, वो ट्रस्ट सारा देख रहा था, चोरी हुई है, सारी चीजें निकलेंगे, तब आप इसमें बीजेपी को इन्वॉल्व क्यों कर रहे हैं?
10: अच्छा अच्छा राजीव जी, ट्रस्ट में कौन है? विश्व हिंदू परिषद के लोग,
9: उसके बिना पानी नहीं पचता है ना।
10: ट्रस्ट में कौन है? आरएसएस के लोग। उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? बीजेपी की। तो हम किस पर आरोप लगा दें? आज तक पे आरोप लगा दें? जब चोरी लूट डकैती बीजेपी आरएसएस विश्व हिंदू परिषद मिलकर कर रहे हैं तो आरोप किस पर लगाएं? और मैं इन्हीं को आईना दिखाना चाहता हूं कि आप लोग

0: करिए अपनी ही पार्टी के देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को। उन्होंने सदन में खड़े होकर के कहा था कि हमसे लड़ो राम से नहीं, पूरी भाजपा राम से लड़ रही है, उनकी चरण पादुका चोरी कर लेंगे, ईंट चोरी कर लेंगे, दान पात्र लूट ले जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा राजीव जी, चोर ही तय कर रहे हैं कि हमारी जांच कौन करेगा,
1: ठीक है,
0: चोर ये भी तय कर रहे हैं कि FIR किस पर लिखी जाएगी, चोर ही ये तय कर रहे हैं कि जेल कौन जाएगा, चोर ही तय कर रहे हैं कि इस्तीफा कौन देगा। हम ये जानना चाहते हैं
1: किसकी जांच पर भरोसा होगा आपको? मैं किसकी जांच पर, मैं लौटूंगा इस सवाल की, इस सवाल के जवाब के समय दीपक के पास।
0: मैं राजू जी, मैं 10 सेकंड में खत्म करूंगा, 10 सेकंड में
1: कि कौन करे जांच, तो आप भरोसा करके CBI पर आपको भरोसा नहीं है, किसी भी एजेंसी पर भरोसा है नहीं आपको?
0: देखिए किसी, देखिए राजीव जी, किसी की जांच की जरूरत नहीं, अब तो तय हो गया ना कि चोरी हुई है, लूट हुई है, अब तो कार्यवाही पर सवाल है। क्या योगी जी इन आरोपियों का हाफ इनकाउंटर करेंगे, फुल इनकाउंटर करेंगे, इनके संस्थानों को ढाएंगे? अगर RSS के लोग हैं तो क्या RSS का मुख्यालय गिरेगा? विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं तो विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय गिरेगा? BJP के लोग हैं तो BJP का कार्यालय ढाया जाएगा? नहीं,
1: ये आपका,
0: क्योंकि आप नफरत के आधार पे काम करते हैं।
1: मैं सवाल को अजय आलोक के पास ले जाऊंगा, लेकिन उससे पहले दीपक आपसे रिएक्शन कि भाई आप पर तो BJP सीधा सीधा भी आरोप लगाती रहती, तो आप तो भगवान राम को काल्पनिक कहते थे, अब अचानक आप सब में राम भक्ति उमड़ उमड़ कर बाहर आ रही है क्योंकि चुनाव है 27 में।
2: देखिए, एक तो चोरी, ऊपर से सीनाजोरी। अगर एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट एडमिट होता है, पेशेंट को कुछ हो जाए, तो क्या उसके परिजन लोग डॉक्टर से सवाल नहीं करेंगे? BJP वाले वही कर रहे हैं, करें, तुम तो राम को नहीं मानते तो तुम सवाल ही मत करो। देश में संविधान नाम की कोई चीज है? अगर कोई चोरी करता है, आपके घर में चोरी हो जाए, तो आप FIR दर्ज कराएंगे कि नहीं कराएंगे? या आप कहेंगे आप तो पुलिस को भ्रष्टाचारी बोलते थे? तो भाजपा वही कर रही है भाई। अगर राम को मानते हैं, उस पे आके डिबेट कर लीजिए ना, उस पे आके शास्त्रार्थ कर लीजिए। ईसावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम् जगन्तेन त्यक्तेन भुञ्जिता। तो राम के पहले भी सृष्टि थी, राम के बाद में भी सृष्टि है, राम तो ईश्वर का आवास है संपूर्ण जगत। तो भाजपा इसमें क्यों फंसा रही है लोगों को कि अरे तुम राम को नहीं मानते? अरे मान लिया कि हम राम को मानते हैं नहीं मानते, हम इस पर चर्चा कर लेंगे। हम काली के उपासक हो सकते हैं, दुर्गा के उपासक हो सकते हैं, भगवान विष्णु के उपासक हो सकते हैं, हनुमान के उपासक हो, किसी के भी उपासक हो सकते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि आपको चोरी करने का अधिकार है? आपको चोरी करने के लिए किसने बोल दिया? भाजपा के जो परदादा है ना, भाजपा का परदादा है RSS। भाजपा का क्या हुआ, जनसंघ हुआ, फिर जनता पार्टी हुई, ये पर पोते हैं भाजपा वाले, तो इनका परदादा चोर है। भाजपा का जो परदादा चोर है, तो कहते मेरा परदादा चोर नहीं है, मैं तो उसकी चौथी वंशज हूं। तो सारे के सारे चार खानदान, चार पीढ़ियां भाजपा की चोरी कर रही हैं, मंदिर के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे, किसान के नाम पे, छात्र के नाम पे, युवा के नाम पे, बेरोजगार के नाम पे। किसको आपने नहीं चोरी किया भाई? काला धन की बात किया था नरेंद्र मोदी जी ने, काला धन कहां गया? तो भाजपा, RSS, जनता पार्टी, जनसंघ, हिंदू महासभा, इस सारे के सारे एक ही नींबू पानी में बने हुए घूट पानी है, और सबके सब राम द्रोही है, देश द्रोही है। कहा था भगवान शिव ने, कहा था शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोह सपने नहीं भावा। तो भगवान शिव के जो दोषी हैं, भगवान शिव के जो चोरी करने वाले हैं, उनको इस संसार में अब जगह नहीं मिलने वाली। अब जनता जाग गई है, अब ये मत बोलिए कि आप राम को मानते हो कि नहीं मानते हो, अब राम की बात नहीं है। राम को जिन्होंने भरोसा किया, राम के नाम पे जिन्होंने छल किया, आज वो आगे कह रहे हैं तुम सवाल क्यों करते हो भाई, संविधान के तहत चोरी करना पाप है।
1: अजय आलोक, आप जवाब तो दें, लेकिन इस बात को तो आप मानेंगे ना कि अब लोग छलावा महसूस कर रहे हैं, भरोसा तो टूटा है, और टूटा ही चकना चूर हुआ है।
3: निश्चित तौर पे जब मेरा ही भरोसा चकना शुरू हुआ, मैं आहत हुआ, तो बाकी लोग आहत क्यों नहीं होंगे? लेकिन मैं यहाँ पे राजनीति की चाशनी नहीं फेंट रहा हूँ। भाजपा के दादा चोर हैं RSS। अरे मेरे दादा अगर RSS हैं, भाजपा के दादा अगर RSS हैं, तो गर्व से हम कहते हैं तो हमारे दादा RSS हैं, और उनके खून में ये देश दौड़ता है, और उनके कारण देश दौड़ता है। चोर नहीं है, सुनिए, आपके बाप तो कांग्रेस के बाप तो अंग्रेज थे,
2: दो
3: कांग्रेस के बाप तो अंग्रेज थे, और आज बाप बदल दिया है, गाजा गाजा को बाप
1: बना
3: के कांग्रेस को पैदा किया था।
1: आज सिर्फ डॉक्टर अजय आलोक बोले,
3: कांग्रेस के बाप तो अंग्रेज थे,
2: और
3: आज गाजा गाजा को बाप
2: बनाने के लिए पैसा मिला।
3: बाप बदलने की बाप बदलने की तो आदत आप में, नाम बदलने की आदत आप में, गांधी गांधी से गांधी बन गए, हमें बताओ।
1: मैं ऐसे ऐसे डिबेट को डिरेल नहीं
3: करूंगा, गांधी बन गया, हमें बताओ।
1: बहुत गंभीर मसला है, लोगों की आस्था से भी जुड़ा हुआ है। नहीं, मैं चाहता हूं कि इसी पर हम थोड़ा कि ऑडिट में खामियां, SOP का पालन नहीं हो रहा था, ये ट्रस्ट बनाया क्यों गया था?

0: पे ट्रस्ट काम ही नहीं कर रहा था। आप, मैं चाहता हूं कि थोड़ा टेक्निकल इस पर भी आप जवाब देना अजय आलो।
1: देखिए, ट्रस्ट काम कर रहा था इसमें कोई शक नहीं है, ट्रस्टी पिछले 6 साल से संचालन कर रहा था इसमें भी कोई शक नहीं है, और बकायदा ये गड़बड़ी हुई है, इसको लोगों ने एडमिट किया, ट्रस्ट को सबसे पहले पता चला, इसलिए ट्रस्ट ने सरकार को पत्र लिख के SIT गठित करने की मांग की थी। ये ट्रस्ट को पत्र लिखा भी चंपत राय जी ने, क्या ये गलत है? ये ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड है ना, हवा में बात क्यों करते हैं? जो जो ऑन रिकॉर्ड आएगा, जो अदालत में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी फाइल हो चुकी कैबिनेट, एक एक आदमी कोई बचेगा इसमें? किसी का भी अब मनी ट्रेल खोज रही है इसमें, ED से लेके एक एक लोग लगे हुए हैं, एक भी बात नहीं बचने वाला है। फुल ये कह रहे थे बुलडोजर चलाएंगे कि नहीं, अरे बुलडोजर छोड़िए साहब, 7 पुष्प की संपत्ति सीज कर लेंगे, 1 पैसा किसी को खाने नहीं देंगे, ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारा काम बोलता है, हम नहीं बोलते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ टीपू के लिए चैलेंज है,
2: खाने दूंगा ना,
1: अगर यदुवंशी हो तो बोलो, चिल्ला के बोलो, श्री कृष्ण जन्मभूमि का नेतृत्व करोगे,
2: इनके मित्र वही खाएंगे, जो इनके चमचे वही खाएंगे, जो इनके साथ सरेंडर करते वही खाएंगे। अरे आप ही खा रहे हो पूरे देश को, दीमक की तरह, धुन की तरह,
1: जीप घोटाला से मंदिर को आप चोरी करते करते
2: मंदिर तक में इनको नहीं छोड़ा, थोड़े शर्म है अजय आलोक की नहीं, चुल्लू भर पानी में भाजपा को आज पिलाने देना चाहिए।
1: कभी बंद नहीं होता,
2: भगवान राम के नाम पे, भक्ति के नाम पे, देशभक्ति के नाम पे आए थे, राष्ट्र को भी चुना लगाया, देश को भी चुना लगाया, प्रभु श्री राम को भी चुना लगाया, और सवाल पूछने वाले को कहते कि आप होते कौन हो? हम हिंदुस्तानी हैं,
3: ऐसे डिबेट नहीं चलेगी। समय वैसे भी बहुत कम है, समय वैसे बहुत कम है, एक एक एक करके बोलेंगे। सुनील साजन, फिर उसके बाद आपके पास आ रहा हूं।
4: देखिए राजीव जी, मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा, मैं टू द पॉइंट इनसे 2-3 चीजें जानना चाहता हूं। जिन लोगों का इस्तीफा हो गया है, चंपत राय, अनिल मिश्रा और राव, इनको आप जेल कब भेज रहे हैं? एक दूसरी बात, देखिए ये लड़ाई राजीव जी 2 लोगों के बीच की है, दान भक्त और राम भक्त। ये लोग राम भक्त नहीं हो सकते, ये हम लोगों को रामद्रोही कहते थे। अरे अब तो चेहरा सामने आ गया कि कौन रामद्रोही है। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बात कही है, नेशन फर्स्ट इनके लिए माने नहीं रखता है, ये डोनेशन पर केवल जिंदा है कि डोनेशन दे दें और उसको ये लूट लें। और भगवान राम की जहां तक बात है, तो भगवान राम का जो पूरा जीवन है वही समाजवाद है। आप समाजवादियों को गाली दे रहे हैं, समाजवाद को गाली दे रहे हैं, और केवल आप भगवान पर आपकी आस्था नहीं है, भगवान के नाम पर वोट चोरी, भगवान के नाम पर नोट चोरी, यही आपका काम बचा है। आप कह रहे हैं कि 1 पैसा किसी को खर्च नहीं करने देंगे, मैं कह रहा हूं आज आप इसी आज तक के कार्यक्रम में बता करके जाइए चंपत राय जेल कब जाएगा, और इन ट्रस्ट वालों का हाफ इनकाउंटर होगा कि नहीं होगा, फुल इनकाउंटर होगा कि नहीं होगा। आप तो बड़े माहिर हैं, सरकार तो बहुत माहिर है, जाति धर्म देख करके जब अपने वैचारिक लोग फंस गए, अपने घर के लोग फंस गए लूट और डकैती में, योगी जी मौन हो गए, केवल भाषण दे रहे हैं, भाषण देने से काम चलेगा? प्रधानमंत्री आज तक बोले नहीं, पूरा देश जान चुका, सारे सनातनी हिंदू और भगवान को मानने वाले, कि संघ RSS और ये विश्व हिंदू परिषद और भाजपा केवल भगवान राम के नाम पर लू, और आज से नहीं कर रहे राजीव जी, नहीं 10 सेकंड में खत्म कर रहा, आज से नहीं कर रहे। जब भगवान राम का आंदोलन चल रहा था मंदिर बनाने का, 1400 रुपए तब खा गए, 1400 करोड़। उसके बाद जब मंदिर बनने लगा, जमीन घोटाला करके पैसा खा गए। जब मंदिर बन करके भव्य तैयार हो गया, तो दान पात्र लूट लिए, मुकुट, हार, चरण पादुका सब ले गए।
0: ये सवाल है, ये सवाल तो बहुत गंभीर है, लेकिन अमित
4: नैतिकता रखिए,
0: मतलब जो खुद को राम भक्त कहते थे असल में वो तो काल ने भी निकले।
5: मैं बहुत पेशेंटली सुनील सिंह को भी सुना, दीपक झा को भी सुना, हालांकि वो हमारी आइडियोलॉजी से बहुत विरुद्ध है, फिर भी उनकी संवेदना है और उनके प्रश्न है जिनको हमने सुना, तो मैं समझता हूँ कि मेरे विषय में भी वो मुझे ध्यान से सुने। सबसे पहली बात, मैं उस विषय पे जाने ही नहीं चाहता राजीव, कि हिस्ट्री में क्या हुआ, इतिहास में क्या हुआ, किसने किस पे बिन गुनगुन चुन चुन के गोली चलाई, जिसने आज तक किसी गोली का हिसाब नहीं दिया, या किसी ने आज तक मृत्यु जो हुए शव के हिसाब नहीं दिए, उस विषय पे नहीं जाना, क्योंकि विषय पूरे देश के सामने। ये डोनेशन वाला जो विषय चल रहा है, जो थेफ्ट का विषय चल रहा है, जिसमें रिकवरी होनी स्टार्ट होनी है, जिसमें 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जो FIR आ चुकी है और अन्य पे इन्वेस्टिगेशन बाकी है, एविडेंसेस क्रिएट होंगे, रिकवरी होगी, वो रिकवरी तो हो जाएगी राजीव, वो देश के सामने भी आ जाएगी, वो पुलिस में भी आ जाएगी, उनको सजा भी मिल जाएगी, लेकिन क्या उनको रिकवर कर पाओगे जिनने राम जन्मभूमि के आंदोलन के लिए लड़ाई लड़ी थी और जिनपे आपने गोली चला दी थी? क्या वो वापिस आ सकते? उनकी रिकवरी हो सकती है? और आज ही राम भक्त बन रहे, इंटेंट हमेशा उठेगा और लगातार उठता रहेगा। आपका प्रश्न करना आपका दायित्व है, आपका अधिकार है और आपका इंटेंट भी है, लेकिन आपका इंटेंट खराब था, वो है और वो रहेगा, उसमें कोई दोराई नहीं। दूसरी बात, लेकिन आज क्या हो रहा है, FIR के बाद में इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट होने लगी है और इन्वेस्टिगेशन के साथ में रिकवरी के लिए पुलिस जाने लगी है, छापेमारी होने लगी है और यहां बैठ के ये एनकाउंटर को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। मतलब ये कह रहे हैं एनकाउंटर कब होगा? आज एक एनकाउंटर के आप ऊपर बता दीजिए, जिस भी क्या भारतीय जनता पार्टी हो गई चाहे कोई भी अन्य हो गया, जिससे एनकाउंटर को ग्लोरीफाई करा, एनकाउंटर के प्रोसीजर था, उस एनकाउंटर का हुआ। लेकिन
0: अमितोष, मतलब ये तो आप कैसी बात कर रहे हैं, मतलब एनकाउंटर को तो ग्लोरीफाई राज्य सरकार करती है, यहाँ तो अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ उनके लिए शमशान है, या तो यूपी छोड़ दो या तो बिहार छोड़ दो, तो दूसरे स्टेट भी उसको अपना रहे हैं।
5: एक स्टेट में एनकाउंटर ग्लोरीफाई हो, मुझे जानकारी नहीं, आप बता दीजिए राज्य के एक स्टेट में एनकाउंटर ग्लोरीफाई करा गया हो, एनकाउंटर की व्यवस्था क्या?
0: 500 बयान सुना सकता हूँ, ठीक है अमितोष,
2: राजीव भाई 10 सेकंड,
5: उसी के आगे आते हैं। लेकिन यही बात है कि लगातार तरीके से दो स्टेटमेंट से आपके सामने मिसकोटेड हुए, और तीसरा और मैं आपको कहूंगा, आज तक ने एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें 2024 की वीडियो की पुष्टि करी थी राजीव, और वो वीडियो था जहां पैसे लेते हुए सीसीटीवी फुटेज का वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हुआ था। ये लोग जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी बैठे, इन्होंने कहा था कि वीडियो आ गया, सीसीटीवी वीडियो आ गया। आज तक ने उसको वीडियो की पुष्टि करते हुए बताया था, ये 2024 और सोशल मीडिया पे सब जगह है, 2024 का वीडियो है जो कि गुरुवर अय्यप्पा टेम्पल, हाँ गुरुवार है, पर बेंगलुरु कर्नाटका का वीडियो है, ना कि राम जन्मभूमि का वीडियो है। और इसी तरह से मिसगाइडेंस, अभी इन्होंने कहा कि 70 बार चोरी हुई 42 बार में, ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक नहीं, जिस इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट का ये हवाला दे रहे हैं, उसके एक पैराग्राफ में लिखा है द एसओपी एंड ऑडिट रिपोर्ट इज नॉट पब्लिक ऑन द राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र साइड। तो कौन सी ऑडिट रिपोर्ट पढ़ के आ गए उन्होंने तय करने की ऑडिट रिपोर्ट?
0: मतलब आप बहुत सारे तर्क रख रहे हैं इसके पीछे, लेकिन मेरा कि आप स्ट्रांगली ट्रस्ट के सदस्यों के खिलाफ कुछ भी नहीं, आप भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, मैं लौटूंगा आपके पास। दीपक, दीपक, दीपक,
2: देखिए राजीव भाई, आज जो घटना हुई है, पिछले कई दिनों से हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, आज भाजपा क्या, विश्व हिंदू परिषद क्या, सबको कहना चाहिए था कि हम आहत हैं, हमारा दिल दुख रहा है,
0: बीजेपी कह रही है,
2: हम सबको इस मुद्दे पे एक साथ आना चाहिए, भाजपा वर्सेस कांग्रेस नहीं होना चाहिए। आज हिंदू जो कि इस देश के उस सनातन व्यवस्था पे, सनातन परंपरा में आस्था रखता है, आज उस आस्था को चोट पहुंची है, सनातन को चोट पहुंचा है, हिंदुत्व को चोट पहुंचा है, और भाजपा यहाँ पे बैठ के करे कि गोली चलवाई, आप राम को नहीं मानते, भाजपा क्या क्या कुतर्क गढ़ने आ गई है। आज संपूर्ण सनातन आहत है, आज संपूर्ण हिंदू समाज आहत है, चाहे राम के नाम पे इन लोगों ने किस तरीके, अरे हमको धोखा दिया नरेंद्र मोदी जी ने, महंगाई कम करेंगे, काला धन कम लाएंगे और बच्चों को 2 करोड़ नौकरी देंगे, कोई बात नहीं नरेंद्र मोदी जी, आपने हमसे बहुत झूठ बोला, लेकिन आपके जो परदादा हैं आरएसएस और बीएचपी, उन्होंने आज राम को ही छल लिया। तो
0: समय बहुत कम है, मैं सबसे एक रिएक्शन ले लूंगा, डॉक्टर आजा लोग,
6: जिनके बाप अंग्रेज थे वो हमारे परदादा की चिंता नहीं करें, जिनको बाप और नाम बदलने की आदत है उनको ध्यान देने की जरूरत नहीं।
2: परदादा लुटेला निकला,
6: ठीक है ना, गांधी से गांधी से गांधी कब बनेगा पूरा देश देख रहा है, पूछ भी रहा है उसका जवाब नहीं देते। चोरी तो नाम में चोरी है, काम में चोरी है, नेशनल अलर्ट बैठ के लूट के दोनों बाप बैठे बेल पे हैं, ध्यान दे रहे हैं आप, यहाँ पे आपने ही आरोप लगाया,
0: आपने ही आरोप लगाया, आप अपने आरोपों पर जवाब तो सुनेंगे ना डॉक्टर आजम, प्लीज प्लीज, मैं चाहता हूँ कि सब लोग सभ्य भाषा में अपनी बात रखें, आप ये सब सूट नहीं करता, आप लोगों आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं डॉक्टर आजालोक से अभी बोलेंगे, हमको सुनिए डॉक्टर आजालोक।
6: देखिए आपके दर्शकों के लिए, देश के तमाम हिंदू भाइयों के लिए ये बात मैं कह रहा हूं, माननीय योगी जी के तरफ से दूध का दूध पानी का पानी होगा, एक व्यक्ति नहीं बचेगा, 100% रिकवरी होगी, और
0: ठीक है आप चलो कार्रवाई कर लेंगे, आप नहीं
6: दोबारा कोई
0: चोरी कैसे होकर बाधी, चोरी कैसे हो गई आपकी, आपके रहते हुए
6: ये बात बहुत सही कही अभितोष ने ये बात बहुत सही कही, एक मिनट राजीव जी, अभितोष ने ये बात बहुत सही कही, पैसा रिकवरी हो जाएगा, सब चीज रिकवरी हो जाएगी, ट्रस्ट बन जाएगा,
2: अरे तो भावना
6: कुछ हो जाएगा, लेकिन जो राम मंदिर पे जो गोली चलाई कार से मारे गए उनको कैसे रिकवर करेंगे,
0: दीपक प्लीज
6: उनको कैसे रिकवर करेंगे, प्लीज उनको रिकवर करने के लिए मुलायम सिंह आएंगे,
2: लोगों ने चलवाई थी गोली, नृपेंद्र मिश्रा ने चलवाई थी, कैसी बातें करते हो, तो आप
6: उनके आक्रांताओं के लोग, उनके लोग रिकवर करने मुलायम सिंह आएंगे, ये बेसिकली ये सारे के सारे
2: आप उनसे एक कदम
6: कोई मतलब नहीं है राम मंदिर से, आज तक दर्शन नहीं करने गए इनको, राम राम जन्मभूमि का हमेशा विरोध किया और आज यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहे हैं,
2: सबको आपने मटिया मेट कर दिया, यहाँ पे आगे बातें करते
6: हैं,
0: दीपक मुझे समझ नहीं आ रहा कौन क्या बोल रहा है, दीपक प्लीज मतलब इस तरह से डिबेट नहीं चलती,
6: राम के लिए एक जज्बा होना चाहिए, जो राम का नहीं वो किसी के काम का नहीं।
0: और वो जज्बे वाले तो बैठे थे ट्रस्ट में।
2: अरे आपका काम सिर्फ मोदी जी का है।
0: दीपक प्लीज, सुनील सिंह सार्जन, क्या आपको लगता है कि ट्रस्ट के सदस्यों को अब भी बचाया जा रहा है?
6: क्लियर कट है, चोरी।
4: देखिए राजीव जी, राजीव
6: नहीं बिल्कुल नहीं, मैं सीधा कह रहा हूँ, चोरी एक अलग चीज है।
4: बहुत बहुत विनम्र अनुरोध के साथ
6: अपराध के प्रति, अपराध के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का वहन नहीं करना, ये गंभीर गंभीर एक मिनट गंभीर आपराधिक लापरवाही का मामला है,
0: ठीक है,
6: इसमें कोई शक नहीं है, मैं साफ कह रहा हूँ। और जिन्होंने चोरी की है वो चोर।
4: राजीव जी मैं अपनी बात
0: ठीक है, सुनील सिंह साजन,
6: सबके लिए सजा होती है,
0: आपराधिक लापरवाही है, कार्रवाई होगी।
4: कार्यक्रम में मैं एक अनुरोध कर रहा हूँ कि कृपया बीजेपी हो या बीजेपी के समर्थक, आप लोग ये नैरेटिव मत तय करिए कि बीजेपी आरएसएस जिसको कहेगी वो राम भक्त है। आप सर्टिफिकेट मत दीजिए, आप केवल ये बताइए कि ये जो इस्तीफा हुए हैं ये सब चंपत राय, अनिल मिश्रा और राव जेल कब जाएंगे। और एक मेरा और सुझाव है, अरे सुझाव सुन लीजिए, सुझाव सुन लीजिए, सुझाव सुन लीजिए, क्योंकि क्योंकि भगवान राम पर
6: अब हम नहीं जेल भेजेंगे, भगवान
4: राम, अरे सुन लो महाराज, भगवान राम पर करोड़ों लोगों की आस्था है और उनके दान पात्र में चोरी हुई है। बीजेपी संघ और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने मंदिर लूटा है। मैं आपके कार्यक्रम में कह रहा हूँ, जो लोग भी अपने को हिंदू मानते हैं,
6: 24 घंटा डरे,
4: अपने को सनातनी मानते हैं और अपने को ये मानते हैं कि वो राम भक्त हैं, अगर वो लोग आज अगर नहीं बोले तो इसी तो जीवन जीते हुए उनको कोड़ होगा।
6: आपके कहने से
4: इन चोर डकैतों को सबको कोड़ होगा, लेकिन जो नहीं
0: आप
4: सुनील
0: सिंह साजन, आपके सुझाव थे, सुझाव सुन लिए मैं। एक मिनट अमितोष, समय बहुत कम है, सिर्फ 30 सेकंड
5: में बात। मैं बहुत काउंटर कर रहा हूँ अपनी बात को शॉर्ट में। जिसने चोरी करी है वो डेफिनेटली ट्रस्ट के भी किसी के अधीन काम कर रहा था, जिम्मेदारी में कर रहा था, और उसके साथ वही। अरे चुप रहिए सुनील सिंह, आपके बीच में नहीं बोला स्टूडियो होगा राजीव, या तो मैं मेरा काउंटर छोड़ देता।
0: सुनील सिंह सर, नहीं अमितोष, जो वीएचपी की साख पर धब्बा लगा है उसका क्या, उस पर भी तो आपको बयान, उस पर भी तो आपको अपनी बात रखनी चाहिए।
5: वीएचपी में क्या धब्बा लगा, ये धब्बा लगाएंगे क्या लोग जो बैठे हैं आपके सामने, ये सुनील सिंह और दीपक झा लगाएंगे, ये माँ काली और दुर्गा के अपने आपको उपासक बता रहे थे, बंगाल के अंदर में क्या हो रहा था तब चुप हो जाते थे, जब रामनवमी पे पथराव होते थे तब चुप हो जाते थे, लेकिन एक है सेलेक्टिव अप्रोच कि जितना समय डिफेंड
0: इतिहास रहने देते ना कि क्या हुआ था, वर्तमान में आते हैं ना कि मंदिर में चोरी हो गई है,
5: क्यों मंदिर में शबरीमला में और तभी चुप क्यों हो जाते हैं, या स्वामीनाथन के विरुद्ध क्यों चली जाते हैं,
0: मुझे माफी कर, समय चुकी इतनी जान दे रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। दंगल में आज के लिए बस इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते हैं।
7: क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे, आपने तो अपना इतिहास देखिए, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने।
8: निगाहें नेशन पे नहीं है, डोनेशन पर है।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से पर हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आज भारत और आयरलैंड के बीच डिसाइडर खेला जा रहा है, यानी कि दूसरा T20 मुकाबला खेला जा रहा है। और मुझे याद है आपसे 48 घंटे पहले ठीक 5:30 बजे शुक्रवार हम लोग टकटकी लगाकर इंतजार कर रहे थे कि क्या वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए पहला मुकाबला खेलेंगे। परसों वो नहीं खेले, और अब जो खबर आ रही है आयरलैंड से वो ये है कि वैभव सूर्यवंशी आपको आज भी खेलते हुए नहीं दिखेंगे। आज दो खिलाड़ी भारत के लिए अपना पहला T20 मुकाबला खेल रहे हैं, यानी कि डेब्यू कर रहे हैं, उनको वो कैप दे दी गई है। एक है सूर्यांश शेडगे और एक है प्रिंस यादव। यानी कि जो दो दिन से बात चल रही थी कि क्या वैभव सूर्यवंशी को आज खिलाया जाएगा, लगता यह है कि वैभव सूर्यवंशी को अब इंग्लैंड में जो 5 T20 मुकाबले हैं उसका इंतजार करना पड़ेगा। सनी भाई मेरे साथ हैं। सनी भाई, जो खबर आ रही है उसके मुताबिक आज भी वैभव सूर्यवंशी इंडिया के लिए पहला मुकाबला खेलते नहीं नजर आएंगे।
1: जी बिल्कुल, अब जैसे कि अभी अभी जो मतलब टॉस जो होना है और जो दूसरी मैच अभी अभी थोड़ी देर में शुरू होनी है, तो उसी से उसी के साथ ये खबर भी निकली है कि सूर्यवंशी के और कुछ वक्त रुकना पड़ेगा। और ये जो जो टीम मैनेजमेंट की सोच है ये मैं समझ सकता हूँ, इसीलिए क्योंकि जो अभिषेक शर्मा ने पिछले मैच में बल्लेबाजी की है और संजू सैमसन तो आपके 2 महीना पहले मतलब मार्च में जब भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप का खिताब हासिल किया था तो वहां पे वो तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वहां पे साबित हुए थे, इसीलिए दोनों को ड्रॉप करना मुश्किल बन रहा था। और इसी की वजह से वैभव सूर्यवंशी बहुत मतलब अच्छे फॉर्म में होने के बावजूद उनकी जगह नहीं बन रही है, तो शायद और रुकना पड़ेगा। इंग्लैंड में अभी भी 5 T20 मैचेस है, वहां पे शायद उनको मौका मिल सकता है।
0: तो आज संडे है, आज आप जानते हैं कि भारत फंस गया है क्योंकि आयरलैंड के खिलाफ ये T20 मुकाबला जीतकर भारत सीरीज 1-1 से बराबर करेगा। मतलब आज सीरीज दांव पर लगी है वर्ल्ड चैंपियंस इंडिया के लिए। और शाम 7 बजे आप जानते हैं कि एक और चीज दांव पर लगी है, वो है भारत की विमेंस टीम। क्या वो सेमीफाइनल में जाएंगे या वर्ल्ड कप का सफर आज ही खत्म हो जाएगा। आज भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ 7 बजे से मुकाबला है। दोनों मुकाबलों पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन देख लेते हैं कि आज हम क्यों सब सोच रहे थे कि शायद इतिहास रच दिया जाएगा।
2: क्या आज मिलेगा वैभव सूर्यवंशी को मौका? सीरीज के साथ साथ वर्ल्ड चैंपियन की साख भी दांव पर। हर किसी को इंतजार था, फैंस को भी, वैभव सूर्यवंशी को भी। लेकिन आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 में वैभव सूर्यवंशी को मौका नहीं मिला। सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले भारतीय बनने के लिए वैभव का इंतजार कुछ दिन का बढ़ जरूर गया, लेकिन इस मुकाबले में टीम इंडिया की सनसनीखेज हार से अब हर कोई चाहता है कि आज होने वाले मुकाबले में वैभव को प्लेइंग 11 में मौका मिले। फिलहाल वैभव को पूरी टीम इंडिया सपोर्ट कर रही है ताकि उनका मनोबल बना रहे।
3: एज अ टीम और हमारा एक ग्रुप, एक ही हमारा आई वुडंट से प्लान है या, बट उसको जैसा एटमॉस्फेयर चाहिए, जैसा ग्रुप में उसको चाहिए, आई फील कि हमें यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको वो फील हो, उसको ये ना लगे कि ही इज़ अ यंग गाय और नया नया है। तो एज अ ग्रुप आई थिंक इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक हिम दैट मच कम्फर्टेबल एंड उसके ऑब्वियसली ही इज़ अ गाय जो वॉट आई फेल्ट जो ही इज़ वेरी यू नो क्यूरियस टू प्ले ऑल द टाइम, तो आई फील ही इज़ जस्ट लर्निंग राइट नाउ, दैट्स व्हाट आई वुड से। एंड वो क्वेश्चंस भी पूछता, तो आई फील ही हैज़ दैट इन हिमसेल्फ दैट वेयर ही वॉन्ट्स टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, एंड ऑब्वियसली उसके लिए भी ये काफ़ी ड्रीम ही होता है जो भी नया लड़का आता है। तो इज जस्ट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू उसको वो एटमोसफेयर मिले और वो एज अ ग्रुप में ऐसे उसको फील हो कि ही बिलोंग्स है।
2: आयरलैंड के खिलाफ टीम इंडिया 2 मैचों की सीरीज में पहला मैच हार चुकी है। जाहिर है आज का मुकाबला उसे न सिर्फ सीरीज बचाने के लिए खेलना होगा बल्कि वर्ल्ड चैंपियन के तौर पर बनी साख को बचाना भी एक बड़ी चुनौती होगी। आज तक ब्यूरो।
0: तो आज वैभव सूर्यवंशी की जो उम्र है वो है 15 साल 93 दिन। इससे पहले भारत के लिए यंगेस्ट इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली वो थी शेफाली वर्मा, 15 साल 239 दिन। सचिन तेंदुलकर मेंस क्रिकेट में 16 साल 210 दिन। लेकिन आज ये साफ हो गया कि वैभव सूर्यवंशी को इंतजार करना होगा। मतलब वो 15 साल 93 दिन की उम्र में भारत के नहीं खेलेंगे। आज जो दो खिलाड़ियों को डेब्यू करने का मौका मिला है वो एक है सूर्यांश शेडगे। आपको पता होगा जब भारत की टीम चुनी गई थी तो हार्दिक पांड्या को क्योंकि वो चोटिल थे उनकी बजाय नीतीश रेड्डी को मौका दिया। फिर नीतीश रेड्डी चोटिल हो गए तो उनकी जगह पर सूर्यांश शेडगे वहां पर गए हैं और उनको आज पहला भारत के लिए मैच खेलने का मौका मिलेगा। सुंदर बाहर है, प्रसिद्ध कृष्णा भी आज बाहर है, उनकी जगह दिल्ली के ही प्रिंस यादव भी पहली बार भारत के लिए T20 खेलेंगे। लेकिन जैसे सनी भाई ने कहा कि टीम मैनेजमेंट ये सोचती है, ये चाहती है कि वैभव सूर्यवंशी इंतजार करें। सनी भाई, अगर आप होते, मैं जानता हूं कि अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन वो तो वर्ल्ड कप जिताने वाली जोड़ी थी, उनको ड्रॉप करने की बात नहीं है, लेकिन आपने, मुझे याद है एक महीना पहले जब टीम चुनी गई थी तो आपने कहा था कि आयरलैंड के दो मुकाबलों को आप देखना चाहते हैं, दोनों मैच में वैभव को खिलाएं, एक मैच में आप रोटेट करके अभिषेक के साथ ओपन कराएं, एक मैच में संजू सैमसन के साथ ओपन कराएं। यह साफ करते हुए कि संजू सैमसन अभिषेक भारत के मेन दो ओपनर्स हैं, बट आयरलैंड की सीरीज आप चाहते थे इस्तेमाल करना। अब जबकि आयरलैंड की सीरीज के दोनों मुकाबले जो है वो वैभव के लिए मौका नहीं लेकर आए, अब आप उस चीज को कैसे देखते हैं?
1: बिल्कुल, मैं पिछले महीने में जब वैभव सूर्यवंशी ने इतनी अच्छी बल्लेबाजी की थी तो उस वक्त ऐसा लग रहा था, मुझे लगा कि आयरलैंड के खिलाफ, क्योंकि आप जब किसी टीम की बात करते हैं तो आप ये जानते हैं कि आयरलैंड एक इमर्जिंग टीम है, मतलब इतनी खास टीम नहीं थी। हाँ, अपने ग्राउंड पर, अपने होम ग्राउंड पर कोई भी टीम जबरदस्त खेल सकती है, पर आयरलैंड के खिलाफ अगर उनको मौका दिया जाता था, अगर मानो कि जैसा मैंने कहा कि एक मैच में अभिषेक शर्मा के साथ ओपन करवाते और दूसरे मैच में, क्योंकि दो मैचेस से दूसरे मैच में संजू सैमसन के साथ ओपन करवाते, तो शायद वो उनको इंटरनेशनल क्रिकेट का अनुभव मिलता, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ जब मैचेस होगी तो वो शायद और ज्यादा टेस्टिंग होगी। आयरलैंड की टीम से इंग्लैंड की टीम तो काफी मजबूत है और इसलिए मुझे लग रहा था कि शायद उनको एक दोनों मैचेस में खिलाया जाएगा, पर वो हुआ नहीं है। तो अभी सिर्फ ये कह सकते हैं कि अभी यही आशा करनी है कि जो हमारे अभी के ओपनर्स है, अभिषेक शर्मा आज के मैच के लिए और संजू सैमसन, क्योंकि आज की मैच जीतनी है, अगर आज की मैच अगर हार गए तो बहुत, मतलब आयरलैंड के खिलाफ सीरीज हार जाना ये तो भारतीय क्रिकेट के लिए शोभा नहीं देता, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो सिर्फ भारतीय क्रिकेट है नहीं, हम तो वर्ल्ड चैंपियंस है, अभी जो हम वर्ल्ड चैंपियन, तो वर्ल्ड चैंपियन को आयरलैंड के साथ अगर हार माननी पड़ी तो ये तो अच्छी बात नहीं होगी भारतीय क्रिकेट के लिए। तो मैं यही आशा करता हूँ कि आज जो हमारी टीम खेलेगी, सूर्यांश शेडगे खेलेंगे, प्रिंस यादव खेलेंगे, उनका डेब्यू हो रहा है, तो मैं यही उनको शुभकामना देता हूँ कि आज इतना अच्छा परफॉर्मेंस करें कि आयरलैंड को बड़ी बड़ी संख्या से हराए।
0: सो आप ये कह रहे हैं सनी भाई, अगर परसों इंडिया मैच जीत गया होता पहला तो शायद आपको वैभव 11 में दिखते?
1: जी बिल्कुल, क्योंकि अगर अगर पहले अगर उस वक्त वो होता तो मुझे लगता है कि वैभव शायद दोनों मैचेस खेलते और वहीं से हमें पता चलता ना कि क्या आगे जाकर भी, क्योंकि देखिए 15 साल की उम्र है तो आगे मतलब बहुत टाइम है, बहुत समय भी है, और क्रिकेट में हमें कभी ये भी ध्यान में रखना होता है कि अगर किसी को ड्रॉप करना है तो क्या उन्होंने इतनी खराब बल्लेबाजी की कि इतनी खराब गेंदबाजी की, इतनी खराब विकेट कीपिंग की है कि उनको ड्रॉप किया जाए, तो ये भी तो सोच होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक बड़ा युवा खिलाड़ी है जिस पर मतलब लाखों लोगों की जो आशाएं हैं कि वो आगे जाकर भारतीय टीम को और भी ज्यादा जीते दिला देगा, क्या उसको खिलाने में आप जो आपके इस्टेब्लिश्ड प्लेयर है उनके साथ सही आपका सही मतलब बर्ताव हो रहा है कि नहीं?
0: सर भाई, लेकिन आपको हैरानी हुई इंडिया जिस तरह से पहला मैच हारा? मैं जानता हूं कि वर्ल्ड चैंपियंस हैं और कभी कभी क्या होता है ना कि वर्ल्ड चैंपियंस आयरलैंड जैसी टीम है, यार हम आए हैं मैदान पर, खड़े हो गए, जीत जाएंगे, लेकिन उस दिन आयरलैंड ने भारत की गेंदबाजी और बैटिंग दोनों में अपना सिक्का जमाया। आप उस दिन हैरान हुए क्या उसी के चलते आज वॉशिंगटन सुंदर और प्रसिद्ध कृष्णा को टीम से बाहर किया गया है?
1: जी बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखें कि उनका जो परफॉर्मेंस था और दोनों ने मतलब वॉशिंगटन ने तो एक ही ओवर की उसमें उन्होंने 19 रन दिए और प्रसिद्ध कृष्णा को बड़े महंगे साबित हुए, और इसी की वजह से जो मुझे लगता है कि उनका जो फॉर्म अच्छा नहीं था, इसीलिए दोनों को बाहर निकालकर दो नए खिलाड़ी को उन्होंने टीम में शामिल किया है। और दोनों नए खिलाड़ी ऐसे भी खिलाड़ी है जिनको आयरलैंड के जो मैनेजमेंट हो गया, आयरलैंड के कप्तान हो गए, उन्होंने ज्यादा देखा नहीं हो, तो कभी कभी ये अच्छा अच्छी बात बनती है कि अगर कोई नया खिलाड़ी हो जिसके बारे में ज्यादा जानकारी ना हो ऑपोजिशन को, तो
0: जी
1: वो अपनी टीम के लिए फायदेमंद हो सकता है।
0: उस दिन वैसे भी बैटिंग देखें, अगर सनी भाई अभिषेक ने उस दिन जबरदस्त बैटिंग की, 20 गेंदों में 50 रन थे, बाद में पता चला जी वो 50 नहीं 49 रह गए क्योंकि एक रन जो अंपायर ने बैट से दिया था वो लेग बाई दे दिया बाद में। बट उनके अलावा क्या ये भी सच है कि आप आईपीएल खेल कर गए हैं इंडिया की वो पिचेस पे जो कि बड़ी जबरदस्त होती है बैटिंग के लिए, और वहां पर थोड़ा सा टू पेस्ट मिला और इंडिया एक ही अंदाज में खेलता रहा, क्या वो अंदाज बदलते तो नतीजा डिफरेंट होता?
1: देखिए सबसे पहले कि जो आयरलैंड की टीम कुछ 30 रन पर सिर्फ 3 विकेट थी, तो उस वक्त ऐसा नहीं लगा कि वो 150 तक पहुंच सके। मुझे लगा कि जिस तरह से हमारे पास जो गेंदबाज थे, तो मुझे नहीं लगा कि वो आयरलैंड की टीम 150 तक पहुंचेगी। तो जब आपके गेंदबाजों ने आयरलैंड को 180 करने दिया, वहीं पे तो दिक्कत खड़ी हुई कि उसके बाद में, क्योंकि जिस तरह से पिच थी, जहां पे मतलब हम देख रहे थे कि थोड़ी सी ज्यादा जाम थी उस पिच में, आपने अगर अच्छी लेंथ पर गेंदबाजी कर आपने की होती तो आपको विकेट मिलनी थी। जो आयरलैंड ने किया, आयरलैंड ने अच्छी अच्छी लाइन और लेंथ उन्होंने की, ज्यादा बाउंसर करने की कोशिश नहीं की, ज्यादा आगे डालने की कोशिश नहीं, उन्होंने अच्छी लेंथ पकड़ी, अच्छी लाइन पकड़ी और उसी में हमारे बल्लेबाज फंस गए। तो सबसे पहली बात है कि हमें उनको 180 रन करना
0: बिल्कुल
1: करने नहीं देना था।
0: सही बात है। हालांकि फिलहाल मैच शुरू होने में तकरीबन 20 मिनट बचे हुए हैं और मैं जानता हूं कि हर किसी को एंटिसिपेशन इंतजार यही है कि किस दिन वैभव सूर्यवंशी इंडिया के लिए पहला मुकाबला खेलेंगे। आयरलैंड में उनको दोनों मुकाबलों में जगह नहीं मिली है, 1 तारीख से इंग्लैंड में सीरीज का आगाज होना है, लेकिन फिलहाल हमारी जो कवरेज है वो हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स तक पर रहेगी। यही सवाल है, मैं कहता हूं आप भी आ जाएं यूट्यूब पर, जाएं फटाफट से स्पोर्ट्स तक पर आ जाएं, लाइव शो है, अपनी राय रखें क्या आज वैभव सूर्यवंशी को खिलाना चाहिए था, अगर खेलते तो किसकी जगह खेलते, क्या टीम मैनेजमेंट ने सुंदर और प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर कर सही फैसले लिए हैं, और साथ ही साथ विमेन्स टीम आज इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, क्या भारत तक बच पाएगा, ये तमाम मुद्दे रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स तक पर, फटाफट से वहीं पर मुलाकात।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू। विमल बोलो जुबां केसरी।
1: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
2: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
3: 20 साल से इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट देश को दे रहा है बेहतरीन पत्रकार। अगर आपका लक्ष्य भी है पत्रकारिता, तो फिर सोचना क्या। रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
4: देखिए, बिल्कुल मैं इस समय पर उस कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद हूं। आप देखिए किस तरीके का ये एंट्री एग्जिट पॉइंट था, और ये बहुत छोटा सा कोचिंग सेंटर था जहां पर लोग फंसे थे, और उसके बाद ये अंदर का ये पूरा नजारा है। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि पूरा सब कुछ तहस नहस हो गया और 15 लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में SIT गठित की है। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस, हेक्सा ऑर्गेनिक, रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
3: As world soccer hits the big stage, Fanatics Sportsbook is making every game day worth more. Earn up to 10% fan cash on your soccer bets, win or lose. That's real extra value you can unlock every match, all tournament long. And fan cash isn't just for betting. You can use it anywhere in the world of Fanatics. On game tickets, merchandise, collectibles, profit boosts, and more. One ecosystem, endless ways to spend. Plus, new customers get up to $1,000 in fan cash. That's $100 bet match every day for your first 10 days. The world is ready. Are you? Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Must be 21 plus. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET. CT, call 888-789-7777. MA, call 800-327-5050. NY, call 877-8-HOPE-NY. MD, visit mdgamblinghelp.org. Not available in all states. Terms apply. See Fanatics Sportsbook app.
4: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.

0: क्या राम भक्तों से धोखा करने वाली इस जांच की आंच बड़े चेहरों तक पहुंचेगी? क्या चंपत राय से सवाल किए जाएंगे? क्या चढ़ावा चोरी के इस पूरे खेल में चंपत राय की जिम्मेदारी तय होगी या फिर चंद मोहरों को बलि का बकरा बनाकर मामले की लीपापोती कर दी जाएगी?
1: ये सवाल भी महत्वपूर्ण है कि क्या छोटे कर्मचारी अकेले सीसीटीवी बंद कर हजारों करोड़ के चढ़ावे में हेराफेरी कर सकते हैं या इसके पीछे कुछ बड़े लोगों की मिलीभगत है। इस मामले में जांच के नाम पर लीपापोती करने की जगह पारदर्शी तरीके से जांच हो और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उन्हें कड़ी सजा मिले।
2: हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई, बड़े बड़े लोग जो इसमें शामिल हैं, इन छोटे छोटे लोगों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, बड़े लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो बड़े बड़े नाम इसके अंदर शामिल हैं तभी लोगों के को थोड़ा सा सुकून मिलेगा, लेकिन इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा। उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी जिन लोगों ने भी चोरी की उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
0: चंपत राय पर ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी, उनकी नाक के नीचे चढ़ावे की चोरी का पूरा खेल खेला गया। मामला बाहर आया तो चंपत राय की चुप्पी पर सवाल खड़े हुए। 28 दिन बाद इस्तीफे की खबर आई, लेकिन क्या सिर्फ इस्तीफे से चंपक राय पाक साफ साबित हो जाते हैं?
3: तो जब उन्होंने शिकायत की चंपत राय जी से कि साहब बड़ा गड़बड़ हो रहा है इसमें, तो लेखाधिकारी को हटा दिया, यानी कि चंपत राय जी की शह से ही हो रहा है।
0: हालांकि चंपत राय के पुराने साथी अभी भी उनके बचाव में हैं।
4: कभी कभी ऐसा होता है कि चंदन के वृक्ष पे भी सर्प लिपटे होते हैं जो अपने विष का त्याग नहीं कर पाते। आसपास वाले लोगों ने इस तरह का दुराचरण किया कि एक ऐसे व्यक्ति को भी प्रश्नों के कटघरे में आज हम खड़ा देख रहे हैं, जो देख के अच्छा नहीं लग रहा।
5: जिन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है, पूरे अपने जीवन को तपस्या में लगाया है, उनके लिए धन और वैभव यदि रहता तो बहुत पहले पा जाते।
0: एसआईटी की जांच जारी है, लेकिन अब तक उनकी जांच में ट्रस्ट कमेटी के 14 लोगों में से किसी का भी नाम सामने नहीं आया है। आज तक ब्यूरो।
6: प्रधानमंत्री कार्यालय ने चंपत राय से उनके रिकॉर्ड मांगे, हिसाब किताब मांगा, चंपत राय ने मना कर दिया देने से। सोच सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने चंपत राय से रिकॉर्ड मांगे और चंपत राय ने मना कर दिया। इस देश में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो मोदी जी को मना भी कर सकता है, वो मोदी जी ने मान लिया, रिमाइंडर भी नहीं भेजा, मान भी लिया। इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि तार कहां तक हैं। चंपत राय के पास ऐसी क्या जानकारी है जिसके सामने मोदी जी भी बेबस हैं? एक भी नेता ने चंदा चोरी की क्रिटिसिज्म नहीं किया, उन्होंने इसको इसकी बुराई नहीं की है, चंदा चोरी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला। तो पूरा हिंदू समाज की एक ही मांग है कि जिन राक्षसों ने ये काम किया है उनको सरेआम फांसी पर लटकाया जाए। सब लोगों की यही मांग है, ये महापाप है। चंदा चोरी लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़, लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़, ये महापाप है और इस महापाप को करने वाले सभी राक्षसों को, इनको सरेआम फांसी पर लटकाया जाए।
0: एक जांच जिसकी आंच में कई चेहरे जलते नजर आ रहे हैं। 25 जून 2026 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। शिकायत में आरोप है कि दान पेटियों से निकले चढ़ावे की गिनती के दौरान चोरी और गबन किया गया। एफआईआर के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष जांच टीम की शुरुआती जांच में मौखिक, दस्तावेजी, इलेक्ट्रॉनिक और वित्तीय सबूत मिले। जांच में आरोप है कि संगठित तरीके से चढ़ावे की रकम और जेवरात की चोरी हुई। एफआईआर में यह भी कहा गया है कि गिनती कक्ष में मौजूद कुछ ट्रस्ट और बैंक से जुड़े लोगों की भूमिका भी सामने आई है। सूत्रों की माने तो चढ़ावा चोरी मामले में पहली एफआईआर के बाद बड़ा खुलासा सामने आया है। जांच के दौरान 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 तक उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज की विस्तृत जांच की गई। सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में कुल 70 मौकों पर कथित चोरी गबन से जुड़ी गतिविधियां सामने आई हैं। सबसे बड़ी बात, अभी सिर्फ 3 महीने के सीसीटीवी सबूत मिले हैं, जो कि इन घटनाओं को जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। वहीं मंदिर में चढ़ावे को लेकर चांदी की ईंट के गायब होने की जांच भी एसआईटी की ओर से की गई है। सूत्रों के अनुसार एसआईटी की रिपोर्ट में 200 किलो चांदी की ईंटों की चोरी के दावे को गलत पाया गया है। जांच में सोशल मीडिया पर चांदी की ईंटों को लेकर किए गए कई दावों को भ्रामक बताया गया है। सूत्रों के मुताबिक दान में मिली चांदी की ईंटें गलाने के लिए भेजी गई थी। चांदी की ईटें सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन को भेजे जाने का रिकॉर्ड भी जांच में मिला है। एसआईटी की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि टिन्नू के पास बिना आधिकारिक आदेश के हुंडियों की चाबियां थीं। रिपोर्ट के अनुसार ट्रस्ट को काफी पहले ही चढ़ावा चोरी की आशंका हो गई थी। सितंबर 2024 और फरवरी 2025 में ट्रस्ट और स्टेट बैंक के अधिकारियों के बीच बैठक कर चढ़ावा गणना के लिए एक एसओपी तैयार की गई थी, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक एसओपी का पालन नहीं किया गया। आज तक बेरोज़

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

संबोधन में पीएम मोदी ने कहा हिंद महासागर हमें बांटता नहीं जोड़ता है। प्रधानमंत्री को मिला पर्यावरण संरक्षण का सर्वोच्च सम्मान। चढ़ावा चोरी को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा, कहा कि इनके लिए नेशन नहीं डोनेशन फर्स्ट। सीएम योगी ने दी चुनौती, बोले हिम्मत है तो कृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर बोले। केतन अग्रवाल हत्याकांड में क्राइम सीन हुआ रिक्रिएट, मुख्य आरोपी सिया को लेकर लोहागढ़ किले में गई पुलिस। 18 जून के वारदात पर सवाल जवाब।

0: अमर का ईरान में युद्ध विराम पर खतरा, 24 घंटे में दूसरी बार होर्मुज के पास 10 ईरानी ठिकानों पर बमबारी, तेहरान ने कुवैत से बहरीन तक यूएस बेस पर बोला हमला।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: नमस्कार, बहसबाजीगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज का मुद्दा बहुत दिलचस्प है। मुझे नहीं पता आज की युवा पीढ़ी इसको किस तरह से देखती है, लेकिन भगवान राम का मंदिर बना 500 साल के इंतजार के बाद बड़ा, कानूनी लड़ाई के बाद बड़ा, बहुत उसका विरोध भी हुआ, बहुत लोग उसके समर्थन में भी उतरे, लेकिन आज इस मुद्दे की अहमियत इस बात के लिए है क्योंकि जो लाखों श्रद्धालु भगवान राम के मंदिर के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं, सोचिए उनकी आस्था को कैसी ठेस लगती है जब पता चल रहा है कि जो चढ़ावा उन्होंने अपनी कमाई का, अपने गले से उतार का, स्वतः भगवान की मूर्ति देखकर वहां दान दे दिया, सोने की चेन, अंगूठी, वो सब कोई और ही चंपत कर रहा था। जी हाँ, SIT की रिपोर्ट सामने आ रही है और उसी से मिलते जितने भी संकेत है वो साफ इशारा कर रहे हैं कि ऐसा कुछ तो हुआ है। और जानते हैं उसके बाद से भगवान राम के मंदिर में चढ़ावे में कमी भी आई है, तो ये साफ साफ दिखाता है कि आखिर जिस ट्रस्ट पर ये जिम्मेदारी थी कि वो ये सुनिश्चित करता कि लोगों का चढ़ावा भगवान राम के उस मंदिर के ही बेहतरी के लिए इस्तेमाल होता, वो लोगों की जेब भर रहा था। कुछ लोगों की आय में अचानक वृद्धि देखी गई है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज देखिए, रामचंद्र के नाम पर बना ट्रस्ट चढ़ावा चोरी पर आरोपों के घेरे में है। जांच के हर पहलू की कसौटी से निष्पक्ष जांच होगी, ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। राज्य सरकार की जो SIT है वो जांच कर रही है, लेकिन राजनीतिक सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं क्योंकि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो अन्य पार्टियां, वो बार बार इस ओर इशारा कर रही हैं कि भाई जांच पर उनको भरोसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो SIT है वो किसको रिपोर्ट करती है, वो अधिकारी किसके हैं, वो उत्तर प्रदेश सरकार के हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि ट्रस्ट का काम था ये सुनिश्चित करना, जो राम मंदिर का ट्रस्ट बना है वो सरकार के अधीन नहीं है, लोगों ने चंदा दिया, उस चंदे से मंदिर बना, ट्रस्ट ही उस पूरे पैसे को संभालता है जो मंदिर को आता है, सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए SIT जांच करेगी और SIT की जांच आने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन हमने आज बहस का मोशन ये रखा है कि क्या ट्रस्ट के बड़े बड़े दिग्गज जो भगवान राम के मंदिर में ऐसे सीधे चले जाते थे और निकल जाते थे जबकि आम श्रद्धालु जो पहुंचते थे उनकी कई बार चेकिंग होती है, उनको तरह तरह से वहां पर चेकिंग के दौर से गुजरना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग उन नियमों से ऊपर हो चुके थे, क्या उन लोगों के खिलाफ भी निष्पक्ष जांच होगी? तो आज का बहसबाजीगर का मोशन है चढ़ावा चंपत मामले में क्या निष्पक्ष जांच होगी। बहस की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता देते हैं, ये वो हिस्सा है जो मानता है कि निष्पक्ष जांच नहीं होगी, नहीं होगी, ये मानते हैं आप लोग? हाँ, हाथ सिर हिलाइए एकदम, तो ताली बजा लीजिए अपने लिए। और ये वो सफेदधारी लोग हैं जो शांति प्रिय लोग हैं जिनको जीते जी मोक्ष मिल चुका है, जो ये मान रहे हैं पता नहीं जांच होगी कि नहीं होगी, हो सकता है निष्पक्ष भी हो सकता है कि पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जाए, लेकिन ये वो हिस्सा है जो मानती है कि निष्पक्ष जांच होगी। तो तालियों के साथ आपका भी बहुत बहुत स्वागत। देखिए, इस बहस के अंत तक आप दोनों पर ये जिम्मेदारी है कि अपनी अपनी संख्या बढ़ानी है, तो जब यहाँ पर वक्ता बोलेंगे तो उधर से कुछ को आप आमंत्रित कीजिएगा, वो सफेद या लाल गमछा ले सकते हैं, आप इनको आमंत्रित कीजिएगा, ये नीला या सफेद गमछा ले सकते हैं, और सफेद वालों के लिए तो दोनों तरफ का रास्ता खुला ही हुआ है। तो आइए बहसबाजीगर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बुलाते हैं अपने तीनों जजेस। तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे तीनों जजेस का, स्वामी चक्रपाणी महाराज, डॉक्टर विक्रम सिंह, कमलेश किशोर। कमलेश किशोर यानी तीन ताल के ताऊ, तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत है। और जबरदस्त पुलिस अधिकारी, फॉर्मर DGP उत्तर प्रदेश विक्रम सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी चक्रपाणी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तीनों जजेस अपनी अपनी जगह पर। अब तो सर, हमने तो आपको अनेकों शोज में अब जज बना के बुला लिया है DGP साहब, तो हमें उम्मीद है कि आज के मुद्दे पर आप थोड़ा प्रकाश खुद भी डालेंगे,
1: है ना? मुद्दा जो है हम सबके हृदय से संबंधित है, जिसके खुल के नहीं बात किया तो अन्याय।
0: बहुत अच्छा, आइए आइए आइए बुलाते हैं। देखिए, आज आपको बताते हैं बहसबाजीगर इस शो का नाम ही इसलिए है क्योंकि आज 6 जो कंटेस्टेंट्स आएंगे उनमें से किसी एक को ये जजेस बहसबाजीगर डिक्लेयर करेंगे, यानी वो सबसे अच्छा वक्ता था, जिसने मुद्दे पर बोला, दमदार तरीके से बोला और इसी के साथ फैक्ट्स के साथ बात की, क्योंकि बहस की जो प्रथा है वो हम देखते हैं कई बार अधूरी रह जाती है चिल्ला चिल्ली के शोर में, इसीलिए सभी को 90-90 सेकंड का टाइम मिलेगा फर्स्ट राउंड में, फिर 1 मिनट का टाइम मिलेगा। बात कीजिए, मुद्दे पर बोलिए, सटीक बोलिए, सही बोलिए, आप बन सकते हैं बहसबाजीगर। तो सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत करते हैं अपने पहले दो वक्ताओं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए अमितोष प्रतीक, नेशनल स्पोक्स पर्सन है विश्व हिंदू परिषद के, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज तो दोनों ही तिलकधारी हैं, हैं? अच्छा है, दिलचस्प है, देखते हैं कौन अच्छे से अपनी दलीलों को रखता है। अगले दो जो वक्ता है उनको अब बुलाते हैं। अभय दुबे जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सूर्या मैथिल जी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। सूर्या मैथिल जी बाहर का कैमरा देख के ऐसे ऐसे कर रहे थे, ऐसे ऐसे। वाह वाह, आइए ये आस्था भी नोट कीजिए आप लोग। चलिए अब आखिरी के दो कंटेस्टेंट जो है उनको दोनों टीम्स की तरफ से बुलाते हैं। महंत नवल किशोर दास जी महाराज, प्रवक्ता अखाड़ा परिषद के, और साध्वी विश्वरूपा धर्मगुरु हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों, बहुत स्वागत।
2: आज इस बहस का आधार बना है राम मंदिर में चंदा चोरी और उसकी जांच को लेकर विपक्ष की आशंका। राम मंदिर में चंदा चोरी का मुद्दा सामने आने के बाद से ही देश भर में राम भक्त दुखी, नाराज और परेशान है, क्योंकि उनकी आस्था के साथ बड़ा धोखा हुआ है। इस पर तमाम सवाल और राजनीति के बाद ट्रस्ट से लेकर सरकार तक सवाल उठे तो सरकार ने SIT बनाकर जांच के आदेश दे दिए। SIT ने जब अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंप दी तब ट्रस्ट की शिकायत पर पहली FIR दर्ज की गई और उसके बाद सभी 8 आरोपियों को जेल भेज दिया गया। और अब ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों की भूमिका और नियत को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष पूछ रहा है कि क्या बड़े लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। इसलिए आज इस बहस का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या चढ़ावा चंपक मामले में निष्पक्ष जांच होगी।
0: तो पहले दो वक्ताओं को बुलाते हैं, कुछ खास संदेश आज के लिए, क्योंकि ये बहस ताओ।
3: आपकी अनुमति से अंजना जी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी वक्तव्य प्रस्तुत करें साक्ष्यों के साथ, तर्क के साथ, केवल हवा हवाई बातें न करें हम लोग।
0: वाह वाह, बजाइए ताली जोर से। मतलब ये रोज वाली टीवी डिबेट की वही रटी रटाई बातें नहीं, एकदम फैक्ट्स के साथ बात कीजिए। चलिए स्वागत करते हैं अमितोष पारिक और प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप यहीं रह जाए, आइए जोशी जी। आप दोनों को 90 सेकंड का टाइम मिलेगा, 90 सेकंड में आपको अपनी बात रखनी है, और जैसे ही मैं कहूं कि समय समाप्त हुआ तो समय रुक चुप जाई हो जाएगा, नहीं तो ये लोग मार्क्स काटते हैं। चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले आप अमितोष जी इस विषय पर बोलेंगे, आपका समय 90 सेकंड का शुरू होता है अब।
4: बहुत बहुत धन्यवाद अंजना जी। सबसे पहले शुरुआत में बोलेंगे जय श्री राम,
5: जय श्री राम।
4: देखिए कितना बड़ा खेल है, जो कल तक हम पे गोलियां चला रहे थे, जिनको राम में विश्वास नहीं था, जो राम मंदिर की जगह बाबरी की कस्में खा रहे थे, आज वो नए नए 3 दिन से राम भक्त बन रहे हैं और हमें कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। हम उस विचार से आते हैं जिसे इस राम के लिए रामचंद्र गुप्ता ने गोली खा ली, हम उस विचार से आते हैं जिस राम के लिए दिगंबर अखाड़े ने गोली खा ली, हम उस राम से आते हैं जिसके लिए खोटारी बंधुओं ने गोली खा ली, लेकिन वो थे जो लगातार तरह से हम पे गोली मारते रहे। पूछिए चंदे से पहले अपनी गोलियों का हिसाब दीजिए, पूछिए कि पहले से हमारी मृत्यु का हिसाब दीजिए, लेकिन वो हिसाब नहीं मिले। क्यों आ रही नई नई बातें ये, और कहां से आ रही नई बातें? जिस दिन पहले दिन ट्वीट हुआ उसके रात को परिवहन पांडे ने ट्वीट करके बोला कि ऐसी तो कोई खबर ही नहीं है। उसके बाद में ट्रस्ट ने SIT जांच की मांग करी, इनको SIT पे भरोसा नहीं हुआ, लेकिन ये कोर्ट नहीं जाते। उसके बाद ही बोले जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, कोर्ट नहीं जाएंगे। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए, कोर्ट नहीं जाएंगे। PIL लगनी चाहिए, पार्टी नहीं बनेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट जाना चाहिए, पार्टी नहीं बनेंगे, लेकिन क्या करेंगे? आपकी मेरी आस्था को आहत करेंगे, राम को कटघरे में खड़ा करेंगे, राम जन्मभूमि के ऊपर में बात करेंगे, लेकिन उसको चैलेंज नहीं करेंगे। एक सवाल उठता है, SIT जांच खराब क्यों है? SIT जांच में निसंदेह हमें शक क्यों है? 2024 के अंदर में केदारनाथ बद्रीनाथ कमेटी के ऊपर में भी सेम आक्षेप लगा था कि वहां से सोना चोरी हुआ, SIT गठित हुई और सब क्लीन चिट पाया गया, लेकिन इनको उस पर विश्वास नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से
0: समय समाप्त हुआ, भाई ओपनिंग बैट्समैन ने बैट में ठीक ठाक मोर दम दिखाया है। अब जोशी जी आप पर पूरी जिम्मेदारी है, आप इस तरफ से बोल रहे हैं तो चढ़ावा चंपत में निष्पक्ष जांच होगी आज का विषय है और आपका समय शुरू होता है।
6: देखिए अंजना जी, देश ये देख पा रहा है कि जो ये वार है ये हमारी आस्था पर वार है। ये हम लोगों के लिए राम मंदिर चढ़ावा चोरी का विषय नहीं है। ये मुझे लगता है कि हमारी आस्था और जो कहते हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ये हमारे राष्ट्रवाद पर हमला है। और बड़ी आश्चर्य हो रहा है देश को कि हमारे बिना FIR लिखे हुए एक किस प्रकार की SIT की जांच होगी। देश इसको संदेह की

0: जेनजी पर अब सीबीएसई में भी जो इन्होंने भ्रष्टाचार करा वो जेनजी ने उसको क्लियर करने का काम करा। अब देश का जेनजी आपको आपका आईना दिखाने का काम कर रहा है। नहीं नहीं विषय विषय
1: अरे अभी पीडीए पे आएंगे, दो मिनट रुको। एफआईआर चंदा वीडियो पीडीए यही इनका है और फिर आ जाएंगे यूपी के चुनाव पे और इसीलिए राम जन्मभूमि है।
2: चक्रपाणी जी कोई सवाल जो आपके मन में आ रहा हो?
3: देखिए हमें लगता है विशेष रूप से हमें इस पे तर्क नहीं देना चाहिए कौन सही है, हमें देना चाहिए क्या सही है। आप जैसे बोल देते हैं कि नृपेंद्र मिश्रा भाई उन्होंने गोली चलवाई, तो नृपेंद्र मिश्रा को तो आपने ही ट्रस्ट में रखा ना, सरकार ने ही ट्रस्ट में रखा ना, तो इस बात को तो ध्यान रखना चाहिए। तो दूसरे पे कभी भी हम आरोप लगा रहे हैं तो इस चीज को देखें, उसे पूरे देश के और विश्व के राम भक्त प्रभावित हुए कि जिसके गोली चलाई गई उसी को रख लिया गया, ट्रस्ट में जगह दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं मनहतात है। मेरा मानना है कि उसकी निष्पक्षता से कैसे जांच हो इस पे वो करिए ताकि राम मंदिर कम से कम उसको विवादित ना किया जाए, उस स्थान पे भ्रष्टाचार के जो बार बार औरों को भी मौका मिल गया।
2: छोटा सा जवाब,
3: स्वामी प्रसाद मौर्य जी जैसे लोग आरोप लगाने लगे जो खुद ही सनातन के विरोधी हैं, तो ये मौका आपने दिया है तो इसलिए हमें लगता है उसको तुरंत जितना हो सके हटाना चाहिए।
1: सबसे पहली बात, सम्मान है स्वामी जी का, लेकिन सरकार ने नृपेंद्र मिश्रा को ट्रस्ट में नहीं रखा है। ट्रस्ट एक ऑटोनोमस बॉडी है और पब्लिक बॉडी नहीं है, मंदिर जो है उस ऑटोनोमस बॉडी के अंडर में आता है। दूसरी बात, नृपेंद्र मिश्रा ने गोलियां नहीं चलवाई, कौन सा अधिकारी गोली चलवाएगा भाई? जिस अधिकारी जिस नेतृत्व के अंदर में होगा, मुलायम सिंह यादव के अंदर में, उसके आदेश की पालना करना अधिकारी का काम है, ना कि उस पर गोलियां चलवाना। तो मुझे लगता है नृपेंद्र मिश्रा कंस्ट्रक्शन कमेटी के अध्यक्ष है, जैसे भुवनेश जी ने कहा गलत कहा था, वो ट्रस्ट के अध्यक्ष नहीं है, वो कंस्ट्रक्शन कमेटी के अध्यक्ष है। ये सारी जितनी नैरेटिव है सब और सब राम जन्मभूमि पे आके क्यों टिकती? कार्तिकेय दीपम में तो ये जस्टिस जी आर स्वामीनाथन के अगेंस्ट चले गए, वहां पे काले पट्टे बांध लेते हैं, यही राम जन्मभूमि के दिन में अयोध्या का जजमेंट आया था तब भी काले पट्टे बांध के सरकार के गए थे। मुझे लगता है हमें इनसे बचना चाहिए, ये सूडो सनातनी है, सूडो राम भक्त है, ना कि राम भक्त।
2: ठीक, अब दो सवाल हैं। आप मुलायम सिंह यादव को क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं? अगर वाकई उनके कहे बिना नृपेंद्र मिश्रा ने किया था तो उसके खिलाफ एक्शन लेते वो, एक सेकंड, तो ये माना जाए ना कि उनकी सहमति थी गोली चलाने के लिए। दूसरा सवाल, आपने जो ये 2 करोड़ का नंबर कोट किया है, मैंने भी अपनी रिसर्च टीम को कहा, किससे बरामद हुए हैं 2 करोड़, कहां बरामद हुए हैं?
0: पहला विषय तो आपका नृपेंद्र मिश्रा को बताइए, आज सब लोग गूगल पे, अभी आपने भी सर्च रिसर्च करी है, आप लोग देखिएगा राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है, अभी पता चल जाएगा कौन सच यहाँ पे बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, पहला विषय। दूसरा, हमारे जो साथी हैं विश्व हिंदू परिषद के, उन्होंने कहा आदेश देने का काम मुलायम सिंह जी का था, उन्होंने इंप्लीमेंट करने का काम करता। वीडियो सोशल मीडिया पे है नृपेंद्र मिश्रा जी का, मैं कहेंगे तो मैं भी दिखा दूंगा सोशल मीडिया के, मैं नृपेंद्र मिश्रा ने खुद कहा कि वो आदेश मेरा था, माननीय मुलायम सिंह जी का आदेश नहीं था, सोशल मीडिया पे तैर रहा है वो, ये छुपाओ नहीं कर पाता। ये इसीलिए तो मैं कहता हूं ये हर समय जुमलेबाजी नहीं चलती है, आजकल का जेनजी पढ़ा लिखा हुआ है। और तीसरा प्रश्न आपने मुझसे जो कहा है, मैं आपने कहा पैसों की पकड़ में, मैं कहना चाहता हूं ये सब आंकड़े सोशल मीडिया से जो चल रहे हैं, आप आज के जमाने में सब लोग जानते हैं, हम लोग मीडिया में सोशल मीडिया में पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, देखते हैं चीजें हैं गूगल से, सब
2: आपको
0: बच्चे
2: पता नहीं है?
0: नहीं नहीं
2: आपको पता नहीं?
0: नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं लाया, नहीं नहीं हम लोग के स्टूडेंट हैं, हम लोग इस तरह की बातें नहीं करते।
1: ये देखिए अभी ने कहा गूगल खोल के देख लीजिए, मैंने गूगल खोल लिया, इनकी बात मानते सम्मानित है, बड़े हैं। महंत नित्य गोपाल दास इज अ प्रेसिडेंट ऑफ राम जन्मभूमि ट्रस्ट, ना कि नृपेंद्र मिश्रा। अभी इनके कहने पे चलते, हम तो छोटे हैं इनसे।
0: आप भी देख लीजिए,
2: कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन है, मैंने भी अनेकों बार उनके इंटरव्यू किए हैं, राम मंदिर कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र थे। आइए अगले दो जो कंटेस्टेंट, आइए अभय दुबे जी। अभय दुबे जी बीच बीच में ऐसे ऐसे कर रहे थे, हाँ कर रहे थे, तो लगता है कुछ फैक्ट्स लेकर आज अभय दुबे आएंगे, जल्दी से आइए। सूर्य मैथिल जी इस विषय पर दोनों के, सूर्य मैथिल जी आपसे शुरू कर रहे हैं, चढ़ावा चंपत मामले में निष्पक्ष जांच होगी, इस विषय पर बोलने का आपका 90 सेकंड का समय शुरू होता है।
4: धन्यवाद, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम, और सभी को जय श्री राम। देखिए आज जो विषय चल रहा है, जो भी नैरेटिव चलाया जा रहा है, वो ये नैरेटिव चलाया जा रहा है कि राम मंदिर जो न्यास प्रशासन है वहां पर घोर करप्शन है, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 5,000 करोड़ तक का आंकड़ा इन लोगों ने दिया, जिन लोगों ने कहा कि राम जी का तो अस्तित्व ही नहीं है, रामलला विराजमान तो कभी इस दुनिया में आए नहीं थे, और दूसरे वो थे जिन्होंने राम भक्तों के सरों में गोली मारी और उनको बांध बांध के सरयू जी में बहा दिया। मैं यहां पर 2 चीजें रखना चाहता हूं। पहला, हमारे को और पूरे देश को और पूरे विश्व को विश्वास है श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर और श्रद्धेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आदित्यनाथ जी पर। और योगी आदित्यनाथ जी ने हुंकार भरी थी अयोध्या जी में खड़े होकर, उन्होंने कहा था कि यदि

0: इस एसआईटी में कोई भी पकड़ा जाएगा तो उसका दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा, कोई भी जो है अपराधी बच के नहीं जाएगा। मैं दो तस्वीरें यहां दिखा रहा हूं। पहली तस्वीर, ये तस्वीर सोशल मीडिया पे तैर रही है, ये है वो काग भुसंडी जी को जो चंपत राय जी को ये दी गई थी, चढ़ाया गया था भगवान श्री रामलला विराजमान के मंदिर में, और इसके लिए कहा गया कि ये काग भुसंडी जी तो अब बेच दिए गए, इनको गला दिया गया। मैं दूसरी तस्वीर दिखा रहा हूं, ये कार सेवकपुरम के अंदर वही पर इन काग भुसंडी जी की प्रतिमा की पूजा हो रही है। तो ये
1: समय समाप्त हो गया,
0: ये जो जांच,
1: ठीक है, इनका मेन आर्ग्यूमेंट है कि जो नैरेटिव है वो गलत है। अब इस विषय पर कि क्या चढ़ावा चंपत मामले में निष्पक्ष जांच होगी, आपका 90 सेकंड का समय शुरू होता है अभय जी। अब
2: सभ्यता की संहिता और रघुकुल के रत्न मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चरणों में नमन। राम लला हम आएंगे और चंदा हम ही चुराएंगे, बुनियादी रूप से ये नारा था इनका। ये नकली राम दुलारे हैं, ये चंदा चुराने वाले हैं, लूट मचा दी देश में राम भक्त के भेष में। मुझे इस बात का दुख हुआ, बहुत न्याय की बात की और आज हमने रखा एक तर्क दिया कि क्या न्याय मिलेगा। आप जानते हैं उस एसआईटी ने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट किसको सौंपी? जो उस ट्रस्ट में व्यक्ति है, जिस ट्रस्ट पर आरोप है उसी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को जांच सौंप दी, तो क्या जांच की निष्पक्षता बरकरार रहेगी? मैं पूछना चाहता हूं यह प्रश्न आज का नहीं है, जब से राम मंदिर का आंदोलन चालू हुआ। जानते हैं क्या आरोप लगा? 700 करोड़ रुपए के स्कैम का आरोप लगा, और आरोप लगाने वाले कौन थे? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1990 मार्च में इनको एक नोटिस दिया। नोटिस देने वाले ये इंडिया टुडे ने रिपोर्ट किया, विश्व बंधु गुप्ता जी ने इनको नोटिस दिया। क्या किया जानते हैं? विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, इन्होंने कहा कि हम आपकी सरकार गिरा देंगे अगर इस अधिकारी को आपने ट्रांसफर नहीं किया। उस अधिकारी का तमिलनाडु में ट्रांसफर कर दिया और उसके बाद उसको सस्पेंड कर दिया। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस है, ये इनकी सच्चाई है। निर्मोही अखाड़े ने प्रधानमंत्री को 2015 में पत्र लिखा कि 1400 करोड़ रुपए का स्कैम इन लोगों ने किया है, 825% बढ़ा करके जमीन रामलला के नाम पर, राम मंदिर निर्माण के नाम पर बेची गई, जिन काग भुसंडी जी का जिक्र कर रहे थे। 3000 करोड़ रुपए नृपेंद्र मिश्रा ने कहा है कि हमने एकत्रित किए निर्माण के लिए,
1: समय समाप्त,
2: और कम से कम 2000 करोड़ रुपए का ये स्कैम है। आगे डिबेट में मैं इस बात को दस्तावेजी प्रमाणों के साथ सिद्ध करूंगा।
1: ठीक है, बहुत अच्छा, दोनों ने मिडिल ऑर्डर ने जबरदस्त पारी खेली है। कोई प्रश्न?
3: मैं दोनों विद्वान पैनल पूछूंगा वन लाइनर। हम लोग बात को बार बार जलेबी की तरह घुमा रहे हैं, मैं ये जानना चाहूंगा कि पैसा बरामद होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हाँ या ना? हाँ या ना, मैं ऑब्जेक्टिव सवाल है।
4: बिल्कुल,
3: और अगर होना चाहिए तो हंटर की चोट होना चाहिए, या पहले हम जर्मनी और लंदन से एक्सपर्ट बुलाएंगे तब करेंगे हम। हमें
0: देखिए, आप आदरणीय, मैं बहुत सम्मान करता हूं विक्रम सिंह जी का, और मेरा ऐसा मानना है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, जैसा कि श्रद्धेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा, हुंकार भरी, और देश के करोड़ों राम भक्त यहां जितने भी बैठे हैं वो सभी, और जो देख रहे हैं वो सभी, वो भी चाहते हैं कि आखिर रामलला विराजमान के मंदिर में यदि किसी ने चोरी की है तो उसको उसका उस पाप का जो है पूरा का पूरा जो है सजा मिलनी चाहिए। लेकिन
1: सर, दूध का दूध पानी का पानी आप कह रहे हैं, डाउट तो ये ना कि दूध में पानी मिला हुआ है, अब कैसे पता चलेगा?
0: यही तो असलियत, मैंने आपको क्या दिखाया?
1: क्या दिखाया?
0: कि ये जो चीज है कि आप कह रहे हैं काग भुसंडी जी को चुरा लिया गया, वो वहां पर पूजे जा रहे हैं।
1: जो राम मंदिर कंस्ट्रक्शन कमिटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने मुझे इंटरव्यू में कहा कि वहां पर कोई सुरक्षा अपैरेटस वाज नॉट इन प्लेस। वो खुद कह रहे हैं कि फ्रिस्किंग नहीं हो रही थी, ट्रस्ट के लोग ऐसे घुसते हैं ऐसे निकलते हैं, कोई उनकी चेकिंग नहीं करता, फ्रिस्किंग नहीं होती। साहब, ये कौन सी व्यवस्था चल रही थी? किसके शह पे चल रही थी? कैसे ये आरोप लगा? ये राम मंदिर है जिसके लिए लोगों ने पैसा दिया, ये किसी के जेब से नहीं बना है, लोगों ने पैसा दिया है। इशू सीरियस है ना
0: अंजनी जी? बिल्कुल, मैं सहमत हूँ, मैं भी इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ। यदि वहां पर कोई एडमिनिस्ट्रेशन फेल्योर है या वहां पर कोई फ्रिस्किंग हो रही है तो उसको सामने आना चाहिए। कितने का घपला हुआ, गबन हुआ, कौन जिम्मेदार है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन आप सरकार की मंशा पे, आप एसआईटी की पवित्रता पे प्रश्न नहीं उठा सकते। वो लोग जो 22-22 वकील खड़े करके भगवान रामलला विराजमान के अस्तित्व को ही नकारते हो कोर्ट में खड़े होके, आज वो राम जो है राम नामी ओढ़कर आ गए क्योंकि 2027 में चुनाव है। अरे जब श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने हुंकार भर दी कि हम दूध पानी का पानी करेंगे, घसीट के निकालेंगे, तो परेशानी क्या है? वेट कीजिए, इंतजार कीजिए।
1: अभय जी से किसी का सवाल है?
2: नहीं अंजना जी, इन्होंने जो कहा ना, दूध चुरा कर सारा पी गए, पानी पानी बचा है, जांच कौन करेगा? जांच कौन कर रहा है?
0: अमेरिका से बुला लीजिए।
2: अब आप ये देखिए, मैंने आपको प्रमाण दिया।
0: बांग्लादेश से बुला लीजिए।
2: आपको प्रमाण दिया।
0: पाकिस्तान से बुला लीजिए।
2: अरे पाकिस्तान नहीं जाए तो पेट में दर्द होने लगता है इनके, तकलीफ ये है, मरोड़ उठते साहब इनके, पाकिस्तान के बगैर इनकी बात अधूरी होती है। मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के संदर्भ में सीधा सा प्रश्न किया, हम लोगों ने पूछा कि साहब ये बताइए, आपने उसी व्यक्ति को जांच के दस्तावेज सौंप दिए जिस पर आज चले नपेंद्र मिश्र, सरयू को रक्त रंजित करने वाला वो आदमी है, एक पॉडकास्ट ने उसने स्वीकारा, चुप रहिए, एक पॉडकास्ट ने उसने स्वीकारा कि मेरे आदेश से गोलियां चलाई गई, मुलायम सिंह को नहीं पता था, ये उसने एक पॉडकास्ट में स्वीकारा। दूसरी मेरी बड़ी बात, वो कंस्ट्रक्शन कमिटी का चेयरमैन है ना साहब, आरोप लग रहे हैं मीडिया में कि 40% कंस्ट्रक्शन में घूस खाई गई, तो क्या एसआईटी ने पूछताछ की नपेंद्र मिश्र से? आपको जानकर आप हतप्रभ रह जाएंगे, केंद्र सरकार के एक सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर उस ट्रस्ट में है, स्टेट गवर्नमेंट का एक सीनियर आईएएस ऑफिसर उस ट्रस्ट में है, किसी एसआईटी के मेंबर ने उनसे पूछताछ की? क्यों पूछताछ नहीं की? अरे अखंड पाप में डूबे हुए हैं ये। मुझे बताइए, इस नोटिस को देने वाले आदमी का, वो अमेरिका से पढ़ के आया था, उसका पूरा इंटरव्यू है, गूगल पे जाकर देखिएगा, विश्वबंधु उपाध्याय का, उसने कहा अमेरिका से पढ़ाई की कि ताकि मैं भारत को सुधार सकूं, और इन दुष्ट लोगों ने भगवान के चंदे में चोरी के नोटिस को मुझे प्रताड़ना का एक तरीका निकाल लिया, मुझे सस्पेंड तक इन लोगों ने कराया, आज तक भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जानते हैं कहां है 1400 करोड़ रुपए, किसी को नहीं पता है, राम आंदोलन से लेके राम मंदिर के निर्माण से लेके अब ये पाप कर रहे हैं। अरे इंडियन बुलियंस एसोसिएशन ने अपना स्टेटमेंट दिया, कहां है उनकी रसीद? अगर 200 किलो चांदी उन्होंने दी तो उनको रसीद तो देना चाहिए थी। काग वसुंडी देने वाली भारद्वाज वो मैडम कह रही है कि आज तक मुझे कोई रसीद, बार बार आग्रह करते रहे रसीद दीजिए, 3000 करोड़ रुपए नपेंद्र मिश्रा रहे कि मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए हमको मिले, हमने 1500 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया, 1800 करोड़ रुपए उसमें लगेंगे, बाकी के पैसे कहां है, हिसाब कौन देगा? मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अगर आस्था पर आंच आएगी तो तुम कहते थे कि कोई अदालत फैसला नहीं कर सकती, जनता की अदालत ने फैसला किया, अयोध्या से मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने तुमको हरा दिया, रामेश्वर से मर्यादा पुरुषोत्तम राम को तुमने हरा दिया, चित्रकूट से भगवान राम ने तुमको हरा दिया, शाखाटू श्याम से भगवान राम ने तुमको हरा दिया, तब भी नहीं समझे भगवान ने दंडित किया है, अब तुम लोगों की बारी है, जब तक इनको तुम दंडित नहीं करोगे इनके पाप नहीं मिटेंगे, इनको सलाखों के पीछे जब भी सत्ता परिवर्तित होगी, हम आश्वस्त करते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लामलला के मंदिर के साथ न्याय होगा, और ये सलाखों के पीछे
1: होंगे। मन में लग रहा है कोई सवाल
4: मैं, इन्होंने श्री मैथिल जी ने उपयोग किया एसआईटी के लिए पवित्रता शब्द का, एसआईटी की पवित्रता पर प्रश्न ना करें, कृपया पवित्रता वर्ड की पवित्रता रहने दें, एसआईटी से ना जोड़ें। और दुबे जी, मैं ये कहना चाहूंगा, आपने वीवी गुप्ता वाला, बहुत विश्वबंधु गुप्ता वाला मामला उठाया, उसके बाद आपकी भी सरकार 15 साल रही, उसकी सुन लेते एक बार, उसकी क्यों नहीं सुनी?
2: उसका पूरा इंटरव्यू देखिएगा, मैं बिल्कुल ठीक है, नहीं नहीं सुनिए, मैं सब उत्तर दे रहा हूँ ना, उत्तर तो दे लेने दीजिए मुझे, सवालों से तलाशी लीजिएगा मेरे उत्तर आ जाने के बाद। उसने इस बात को स्वीकारा कि उसके बाद सरकारों ने मुझे रिस्टेट किया मेरे साथ, ने पूरा इंटरव्यू तफसील से देखिएगा। हाँ, मैं इस बात को स्वीकारता हूँ कि इस पर हमने एक्शन नहीं लिया, हमें लेना चाहिए था, हमको ये, हमको इस बात का आभास था कि ये फिर हमें रामद्रोही कहने लगेंगे, हम तो वचन की मर्यादा की रक्षार्थ अपने सत्ता को तजने वाले लोग हैं, और ये सत्ता की भूख मिटाते मर्यादा पुरुषोत्तम राम को धोखा देकर।
1: आप यहाँ जाइए, जल्दी आइए, फटाफट जल्दी।
5: तो मेरा सवाल आपसे है कि क्या बीजेपी वही पारदर्शिता और जवाबदेही इस मामले में लागू करेगी जिसकी वो विपक्ष से मांग करती है, और अगर हाँ तो क्या हम ये मान लें ऑडिट रिपोर्ट्स और इस केस की जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी वो आप सार्वजनिक करेंगे?
6: ठीक, कब तक हिंदू पक्ष और विपक्ष के झूले पे झूलता रहेगा? क्यों ना राम मंदिर, आज राम मंदिर का कंट्रोल सरकार के हाथ में क्यों है? क्यों ना एक बोर्ड बनाकर, हिंदू बोर्ड बनाकर राम मंदिर का कंट्रोल हिंदू बोर्ड के नाम क्यों नहीं कर दिया जाता है?
1: नीले हिस्से से कौन?
7: सर मेरा आपसे सवाल है कि आज के टाइम पे रूलिंग पार्टी भी बीजेपी है और यूपी में भी बीजेपी है, तो राम मंदिर में चोरी हुई क्यों?
0: मंदिर ट्रस्ट है वो सरकार के अधीन नहीं है, पहली चीज, इस चीज को समझना पड़ेगा। वहां का जो न्यास है, उस न्यास के प्रशासनिक फेलियर में यदि कहीं कोई लूपोल है, उसी को जांचने के लिए पीएमओ ने भी इन्वेस्टिगेशन करवाई है, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी इन्वेस्टिगेशन कराई है। 150 पन्नों की जो बनी है प्रीलिम्स की जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, 150 लोगों से वेरीफाई किया गया, 40 लोगों को शक के घेरे में रखा गया। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको इंगित किया गया,
2: ये सब आपको और कैसे साथ ही साथ
0: जो 2 करोड़ रुपए को,
2: जो 10 लाख रुपए को 2 करोड़ रुपए
0: बना रहे हैं, उन लोगों को जवाब देने के लिए वो रिपोर्ट सामने आएगी। आप इंतजार
1: कीजिए।
2: रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा दाना गुन का चंप चंदा खाएगा। जो लोभ जो होगा लोभी और भोगी, वो जो

0: llegar.
1: Yo te miro, me chillate. Amor, amor, amor, chillate.
0: Mariyada Purushottam Ram ji. दंडित
1: करेंगे
0: पूरी तरह।
2: अबे दुबे जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, राम पे कितना अच्छा, भी राम पे वो भी सुना दिया, लेकिन ये बताइए कि राहुल गांधी जी राम मंदिर कब जाएंगे? और ये भी एक मिनट, और आप जो है, आप ही की सरकार ने भगवान राम को काल्पनिक कहा था वो सेतु विषय में, कोर्ट में एफिडेविट दिया था, तो उस एक मिनट दुबे जी, तो उसपे आखिर अगर जो आपका हृदय परिवर्तन हो गया, कई बार हो जाता है हृदय परिवर्तन, स्वाभाविक है, हो सकता है नृपेंद्र मिश्रा का भी हो गया हो, पहले गोली चलाए हो आज हो गया हो, लेकिन बात कर रहा हूं, तो हो सकता है आपकी भी कांग्रेस की हृदय परिवर्तन हो गया हो, तो उसपे एक एफिडेविट देके माफी मांग लीजिए, हिंदू समाज शायद माफ कर देगा। तो ये मेरा वो था।
0: अटल बिहारी वाजपेयी जी गए अन्ना दुराई के जन्मदिन पर तमिलनाडु, और उन्होंने कहा कि मैं अन्ना का स्वप्न साकार करने आया हूं, इस राम सेतु को तोड़ने का संकल्प लेता हूं, और सेतु समुद्रम परियोजना उन्होंने प्रारंभ की। नीरी से उसकी जांच कराई, नीरी ने कहा कि बहुत बड़ी थोरियम की यहां पर लेयर है, इसको मत डिस्टर्ब कीजिए। तो उस समय अरुण जेटली जी गए नीरी के पास, उसको मॉडिफाई करा के लाए। ये बेसिकली राम सेतु तोड़ने का प्रोजेक्ट इनका था, आस्था के साथ ये कुठाराघात करते। हम तो वचन की मर्यादा की रक्षा सत्ता का, जैसे मैंने कहा, भोग नहीं करते, त्याग करने वाले लोग हैं। राहुल गांधी जी सच्चे अनुयायी है। राम मंदिर का प्रश्न पूछा, क्या जवाब देते मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अगर वो पूछ लेते कि मेरे काक कुशुंडी कहां है, तो क्या कहते, बेच दिया इन चोरों ने? क्या जवाब देते रत्नजड़ी शिलाओं का कि वो रत्नजड़ी शिलाएं कहां है? तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को क्या जवाब देते? उनसे पूछा चोरों ने,
1: उनका पूजन हो रहा भाई,
0: ये झूठी तस्वीर उठा
1: कार से पूरा में पूछा, काक कुशुंडी जी का पूजन हो रहा है,
0: इनको महंगा पड़ेगा।
3: अब आपके पास मौका है, आप में से कोई ऐसा हो जो गमछा अपना रंग बदलना चाहता हो, तो आप दूसरा गमछा लेकर वापस अपनी जगह पर बैठ जाइए। पहले और अच्छे से लपेट लिए। कितने बच्चों ने लाल गमछा लिया बदल कर? 1, 2, 3, 4, 5। कितनों ने लिया नीला गमछा बदलकर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो अभी तो भारी चल रही है जोशी जी के 3, ठीक है। अब अपने आखिरी दो जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको यहाँ पर स्वागत करते हैं, महंत नवल किशोर दास जी महाराज और साध्वी विश्वरूपा जी। महंत नवल किशोर दास जी, इस विषय पर कि क्या चढ़ावा चंपत मामले में निष्पक्ष जांच होगी, आपका समय 90 सेकंड का शुरू होता है अब।
4: जय श्री राम,
5: जय
4: श्री राम, भारत माता की
5: जय।
4: सुन सुरेश रघुवीर सुवाऊ, निज अपराध रिसायन काहू, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। भगवान श्री राघवेंद्र का भव्य और दिव्य मंदिर बनाने के लिए विश्वहिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने और सभी संतों ने गांव-गांव जाकर के समाज को चेतना प्रदान की। 500 वर्ष का कलंकित ढांचा समाप्त करने के बाद भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ। वो केवल एक पत्थर का मंदिर नहीं, हमारा आस्था का प्रतीक है, स्वाभिमान का प्रतीक है। भगवान श्री राम के लिए कहा, राम राज बैठे उतर लोका, हर्षित भयो गयो सब शोका। निसंदेह हम परेशान जरूर हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर में जिन दुष्टों ने इस प्रकार का कुकृत्य किया है, उन्हें कठोर से कठोर दंड मिलना ही चाहिए। पहली मांग हमारी यह है, और हमें विश्वास है उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी पर, क्योंकि योगी जी अकेले नहीं, उनके गुरु पूज्यपाद महंत अवैधनाथ जी महाराज, उनके गुरु महंतपुरी विजयनाथ जी महाराज, तीन उन पीढ़ियों ने, गोरखनाथ की परंपरा की तीन पीढ़ियों ने अपना सर्वस्व नौछार कर दिया राम मंदिर के लिए। मुझे विश्वास है जब तक योगी लखनऊ में मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं, एक भी रामद्रोही बच नहीं पाएगा। एक एक आने का हिसाब लिया जाएगा, चाहे वो कोई बना रहे, चाहे ट्रस्ट का सदस्य हो, चाहे कोई बाहरी व्यक्ति हो, किसी को बख्शा नहीं बख्शा जाएगा।
3: बहुत
4: कठोर दंड मिलेगा उनको।
3: नीले गमछे वाले जो ये योगी जी की लाइन पर ताली बजा रहे थे, तो आपको क्या लगता है, निष्पक्ष जांच होगी?
6: जय जय श्री राम।
3: 90 सेकंड शुरू होता है अब।
6: राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट। देखिए, इस बात को बहुत सीरियसली ले लिया हमारे मंदिर ट्रस्ट वालों ने। बहुत ही सीरियसली ले लिया है, और मैं तो लूट नहीं डाका कह रही हूँ, डाका। ये कोई, मैं कह रही हूँ, आरोप कोई भी लगाए, प्रत्यारोप कोई भी लगाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसने गोली चलवाई, कौन आरोप लगा रहा है, कौन राम को मानता है, कौन नहीं मानता है। बात है आरोप क्या है, आरोप किस बात पर लगाया गया है, और उसकी जांच हो रही है, बहुत सारी चीजें सामने आ रही है। देखिए छोटी छोटी बातों को यहां ध्यान रखिएगा। दान पात्र की चाबी किसके पास थी? रमाशंकर यादव टिन्नू के पास। टिन्नू कौन है, इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है। निश्चित कहां गोबर में पैसे मिल रहे हैं, छुपाए गए हैं, ये बात है। और ये चोरी डकैती से भी ऊपर बात है, करोड़ों करोड़ों जो राम भक्त है उनकी आस्था की चोरी है, उनके विश्वास की चोरी है, इसीलिए आज हम सब यहाँ खड़े हैं। तो निश्चित रूप से जो भी जांच होगी निष्पक्ष होगी, परंतु साथ ही साथ मैं ये बात कहना चाहूंगी, जांच में कुछ खास नहीं मिलने वाला। जो इतना बड़ा कार्य कर सकते हैं उन्होंने बहुत कुछ ठिकाने लगा दिया है, निश्चित रूप से ठिकाने लगा दिया है। छोटी छोटी चीजें पकड़ में आ रही है और यही पकड़ में आएंगी, क्योंकि इतना बड़ा कार्य करने से पहले देखिए सभी, इतना बड़ा प्रबंधन है, इतना बड़ा पूरे विश्व की आस्था का केंद्र है राम मंदिर, और वहां पर सीसीटीवी कैमरे खराब हो जाते हैं, वहां पे कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है। ये सोचने का विषय है, ये कोई जानबूझकर नहीं हुआ।
7: समय समाप्त हुआ, बहुत अच्छा। दोनों क्लोजिंग बैट्समैन ने भी एकदम जबरदस्त तरीके से अपनी अपनी बात कही, आप दोनों का धन्यवाद। अच्छा सवाल है,
8: मैं
9: हमारे पूज्य नवल किशोर दास जी महामंडलेश्वर जी से। देखिए बालकांड में लिखा है कि जहां जब यज्ञ योगमुनि कर रही तहां मारे
8: चुबाही,
9: देखत यज्ञ निशाचर धावई करहिं उपद्रव मुनि दुख पावई। जहां जहां हवन यज्ञ अनुष्ठान होता था विश्वामित्र मुनि करते थे तो विघ्न डालने के लिए आ जाते थे। तो क्या ऐसा तो नहीं कि उसी तरह विघ्न डालने का प्रयास किया गया आस्था पे? या आपकी बात बिल्कुल मुझे बहुत अच्छी लगी कि कोई भी हो दंड मिलेगा, अब मिलना चाहिए और हर व्यक्ति। और एक बात और कहना चाहता हूं, यहां कोई सनातन और गैर सनातनी की लड़ाई नहीं है, यहां भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। और सब हर व्यक्ति चाहेगा कि कोई भी, यहाँ पे हर व्यक्ति हिंदू है, हर सनातनी, हर राष्ट्रभक्ति है, तो यह विचार की बात है। तो क्या उस पे कार्रवाई कैसे हो कि जल्दी त्वरित रूप से वो हो?
8: एक तो निवेदन ये कर रहा हूँ बड़ा स्पष्ट रूप से कि हमें योगी जी पर पूरा विश्वास होना चाहिए, योगी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और वहां तुरंत उसका करते। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जो लोग आपत्ति लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, वो थाने नहीं जा सकते थे क्या? FIR क्यों नहीं कर रहे उन्होंने?
7: चलिए जल्दी से अपनी जगह पर आ जाइए। आइए पहले दो कंटेस्टेंट्स जो है रिबटल राउंड जल्दी जल्दी शुरू करते हैं, और अमितोष पारिक जी और प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी। अमितोष पारिक जी, अब आपको सिर्फ 60 सेकंड मिलेंगे, तो जो जो बोलना है उसमें बोलिएगा, और जैसे ही इशारा करें रुक जाइएगा। आपका 60 सेकंड का रिबटल, जिसमें बच्चों ने जो सवाल उठाए हैं या अपने अपने ऑपोजिट साइड से सुना, उस पर आपका समय शुरू होता है अब।
10: देखिए दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ना मैं गाना गा सकता उन लोगों के जैसे, और ना ही मैं यहाँ पर एक विरोधी राम विरोधी बनके राम भक्त बन सकता। फैक्ट्स के ऊपर मैं बात करते हैं, दो स्पेशल बात है, वो ये है कि सबसे पहले जब राम जन्मभूमि का आदेश हुआ था लॉ खोलने का, उस जज का नाम था जस्टिस कुमार कृष्ण मोहन पांडे। उसका समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को लिख के कहा कि इनने जो जजमेंट दिया है ये लॉ एंड ऑर्डर के विरोध है, इनका प्रमोशन रोक दिया जाए। आज वो राम जन्मभूमि के लिए आपके सामने खड़े होकर राम भक्त बन रहे, जिससे उस जजमेंट को रोक दिया गया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, हबीबुल्ला जो जम्मू कश्मीर कैडर के IAS हुए, उन्होंने किताब लिखी माय डेज विद राजीव गांधी ट्रिम्प एंड ट्रेजेडी। उसके अंदर में लिखा गया कि मुझे पता ही नहीं था राजीव गांधी को कि कब तो ताला खुल गया और कब ताला बंद हो गया, उनको जजमेंट के बारे में कोई नहीं पता था। जिस तरह से इनको ही पता है कि नृपेंद्र मिश्रा को पता ही, मुलायम सिंह यादव को पता ही नहीं था कि कब गोलियां चल गई, उसी प्रकार से कांग्रेस को भी नहीं पता था। इन्होंने राम को मिथ कहा, एफिडेविट दिया, इन्होंने राम को माइथोलॉजिकल कहा, यूनाइटेड स्टेट्स में जाकर आज राम जन्मभूमि के ऊपर में सिर्फ एलिगेशन के आधार पर अपना एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट दे रहे। आप पर प्रश्न है, ये मेरे पे प्रश्न है, ये राम जन्मभूमि पे प्रश्न है। सत्य के आधार पर 500 वर्ष बाद राम जन्मभूमि जीती थी और
7: समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। चलिए अब आपका भुवन जोशी जी,
11: देखिए देश
7: सवाल रह गया है सर, 2 करोड़ कहां मिला?
11: जी जी,
7: आपका 60 सेकंड का रिबटल राउंड शुरू होता है।
11: अंजना जी, मैं उस लाइन को भी पढ़ देता हूं जो आपने कहा कि 2 करोड़ रुपए की बरामदी हुई है, और मैं आपको बताना चाहता हूं किन किन लवकुश अवनीश अनुकल्प करुणा।
10: उत्तर प्रदेश सरकार का प्रेस नोट है क्या? SIT रिपोर्ट का प्रेस वक्तव्य है क्या, या आपके द्वारा लिखा गया ChatGPT है? पहले तो ये सबको बता दो, ये उत्तर प्रदेश सरकार का वक्तव्य है क्या?
7: अब लेट हिम स्पीक प्लीज।
11: क्योंकि दिक्कत यहाँ पर है, चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, दाल पूरी काली हो चुकी है, और जो लोग चंदे पे धंधा करते हो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बहाने, बीफ कंपनियों से चंदा लेते हैं, उनसे हम राम के मंदिर की रक्षा की क्या आशा कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोगों से क्या इन्होंने बीफ कंपनियों से चंदा नहीं लिया? देश जानता है गाय के नाम पर राजनीति करने वाले लोग। और मैं आपसे बोला इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या था, यही तो था कि जिनसे आपने चंदा लिया उनको धंधा देने का काम करा।
7: समय समाप्त हो गया, ताली बजा दीजिए, अब दोनों अपनी जगह पर जा सकते हैं। अब क्या सवाल जवाब कीजिएगा, अब तो है जो है सब अपना अपना लाइन है, बैठे अपनी अपनी बात बोल रहे हैं सब, जिसको जो बोलना है। सूर्या मैथिल जी, अभय दुबे जी, आइए रिबटल राउंड में आप दोनों को एक बार फिर एक एक मिनट का समय मिलेगा जिसमें आपको अपनी बात रखनी है। दुबे जी पहुंच जाए यहां और आपका इस विषय पर बोलने का। सूर्या मैथिल जी, 7 सेकंड का समय शुरू होता है अब।
12: रह रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भोले। ये देखिए, अभी राम जी के नाम पे चौपाइयां सुना रहे थे, अभी कह रहे थे कि हम तो राम जी को मानते हैं, रोज पूजते हैं। यही वो लोग हैं, प्रियंका वाड्रा जी की तस्वीर जो है वो दुनिया ने देखी, पूरे इंडी गठबंधन की तस्वीर दुनिया ने देखी, जब एक हाईकोर्ट के जज ने ऑर्डर कर दिया कार्तिक दीपम जलेगा, उसके खिलाफ महाभियोग संसद में लाने के लिए ये सब लोग इकट्ठे खड़े हो गए। मतलब सनातन को डेंगू मलेरिया एचआईवी कहने वाले लोग आज यहां खड़े होकर रामलला विराजमान के मंदिर में यदि कोई घोपला घोटाला हुआ उसकी जांच चल रही है, उस जांच में प्रश्न उठाने का काम कर रहे हैं। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, यहां पर बहुत बार बात हो रही थी कि आपका नृपेंद्र मिश्रा जी वाली बात, यहां हमारे डीजीपी साहब भी बैठे हुए हैं, हमारे प्रत्यक्षम किन प्रमाणस्थी सामने बैठे हैं, अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश को लीड किया है, उनसे पूछिए ना, उनसे ये सब प्रश्न होना चाहिए कि क्या कोई अधिकारी अपनी मर्जी से बिगर सरकार के आदेश पर गोली चलवा सकता है क्या?
7: ये सारा कैमरा, अब पानी का पानी सारा कैमरा विक्रम सिंह साहब पर फोकस कर दीजिए।
13: आपने जो कानून का सवाल किया है, मैं काश मैं राजनेता होता तो जलेबी की तरह घुमा के वो जवाब देता, और जवाब आता ही नहीं आपके पास। लेकिन आपने स्पष्ट सवाल का स्पष्ट उत्तर ये है कि जो वहां सीनियर मोस्ट ऑफिसर होता है, चाहे हेड कांस्टेबल हो, थाना अध्यक्ष हो, देखता है कि अगर किसी अपनी किसी और की जान माल बचाने के लिए बल प्रयोग है तो न्यूनतम बल प्रयोग धारा 34 से लेकर 44 भारतीय न्याय संहिता के अनुरूप मिनिमम न्यूनतम बल प्रयोग, वो नीचे का अधिकारी होता है, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, न डीजीपी से, न होम सेक्रेटरी से, न किसी से।
12: लेकिन सर गोली चलवाने के लिए, सैकड़ों राम भक्तों की हत्या करवाने के लिए तो आपको आदेश मुख्यमंत्री कार्यालय से लेना पड़ेगा ना, कि आप सबसे ज्यादा बल प्रयोग एक्सीड बल प्रयोग कर रहे हैं, सरों में गोली मार रहे हैं, तो आपको ऑर्डर तो लेना पड़ेगा सर।
13: देखिए, पुलिस वैक्यूम में काम नहीं करती है, और जंजीरा सुन लो, आप लोग भी आईपीएस हो गए, आप एक इकोसिस्टम में काम करेंगे, और इकोसिस्टम की लगाम किसके पास है? मुख्यमंत्री की।
7: अभय जी, आपका 60 सेकंड का समय शुरू होता है।
14: स्वामी जी महाराज ने जिक्र किया कि राक्षसों का मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने तो सुबाहु और मारीच का मारीच को 400 कोस दूर फेंक दिया था, और सुबाहु का वध किया क्योंकि वो हवन में विघ्न डाल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी वही है, इनकी लंका लगनी चाहिए, और जब लंका लगाएंगे तो हनुमान जी से पूछेंगे हम कि लंका जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी, बोले कपी ही राघव आगे। वो कहते कि भगवान राम मेरे हृदय में, बोले कपी ही राघव आगे, पीछे है पूछ रहस्य है बारी, राम हनुमान को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। तो भगवान राम के कारण सत्ता अर्जित किए मर्यादा पुरुषोत्तम राम ऐसा दंडित करेंगे कि ये फिर 60 और 70 वर्ष के लिए दरकिनार कर दिए जाएंगे। क्यों नहीं शंका करें? ये कहते हैं कि योगी जी पर और मोदी जी पर क्यों नहीं शक करें साहब? आपकी सत्ता की सरपरस्ती में ये लूट चली। हमने कहा कि जो रजिस्ट्री हुई 2 मिनट में 18-18, 20-20 करोड़ रुपए कमाए, कोई जांच कराई क्या आदित्यनाथ जी ने? सारे पाप पर पर्दा डाला, 2 सीनियर ऑफिसर से, एक मोदी सरकार के अधीन, एक योगी जी के अधीन, उनकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए साहब?
7: दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए स्वामी जी जल्दी से, महन जी आपका समय 60 सेकंड का शुरू।
8: नहीं, मैंने तो पहले निवेदन कर दिया इस बात का कि जिन लोगों ने किया है वो अपराधी हैं, घोर अपराधी हैं, और फिर कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी पर हमें पूरा विश्वास है, उन्होंने कहा धैर्य रखिए, और हम सबको इतना तो समय देना पड़ेगा कि कम से कम उसकी रिपोर्ट पूरी आ जाए, और पूरा रिपोर्ट आएगा और किसी प्रकार का रिपोर्ट में गड़बड़ होगा तो हम लोग कहां गए,
4: राम मंदिर बनवाने के लिए घर घर गली गली हम जा सकते हैं, तो राम मंदिर में बिघिन डालने वालों के लिए भी हम समाज में खींच कर ला सकते हैं। उसके लिए कुछ भी करना पड़े, किसी हद को पार करना पड़े, हम करेंगे। पर राम की अस्मिता पर और राम की मर्यादा पर कोई अंगुली उठाएगा, कोई वहां पाप कर्म करेगा, उसे नहीं करने देंगे। देश का एक भी साधु अखाड़े का जीवित है तब तक किसी भी सनातन विरोधी को चैन से नहीं सोने देगा, चाहे कोई बना रहे। यदि गलत हुआ है तो गलत करने वाले व्यक्ति को कठोर से कठोर दंड मिलना ही चाहिए। नहीं प्रशासन देगा तो हमारे अखाड़े के नागा सड़क पर उतर करके ऐसे राम अपराधियों को हम दंडित करने का प्रयास करेंगे, कानून के दायरे में रह करके।
6: हमारे धर्म की
7: मैम आपका समय लगा दूं, आपका 7 सेकंड का समय शुरू होता है।
6: देखिए, हमारे सनातन धर्म की बहुत अच्छी खूबसूरती है, चाहे कोई कितना भी विद्वान हो, कितना भी बड़ा पंडित हो, अगर वो कुकर्म करता है, कोई गलत कार्य करता है, तो उसे आज भी रावण नाम से जलाया जाता है। तो निश्चित रूप से जो मंदिर में है, मंदिर में जो आस्था मीन्स सीता का जो हरण हुआ है, जो चीर हरण इन लोगों ने कर दिया है, तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगी, और कमेटी पर इसलिए सवाल है, कमेटी पर इसलिए सवाल उठाए गए, जिम्मेदारी कोई ना कोई तो लेगा ही। अगर वहां प्रबंधक जो कमेटी है उसे आगे आना चाहिए था, कमेटी को भंग कर देना चाहिए था, क्योंकि ये कोई छोटा मामला नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि यहाँ पे चंपत राय जी को आगे आना चाहिए था और निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। तब से ये लोग कह रहे हैं कि FIR क्यों नहीं कराई, कौन कराएगा? अरे कमेटी आगे आती और वो निष्पक्ष जांच कराती, वो FIR कराती, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा परिणाम इसका आ सकता था।
7: और हमारे तमाम दर्शक जो घर पर मौजूद हैं, आप भी टेलीविजन स्क्रीन पर आज तक पर आपको जो QR कोड दिख रहा है उसको स्कैन करके आप अपना वोट इस विषय पर डाल सकते हैं। चढ़ावा चंपत मामले में क्या निष्पक्ष जांच होगी? अगर आप मानते हैं कि हाँ, योगी आदित्यनाथ की SIT जो उन्होंने गठित की है वो निष्पक्ष जांच करेगी, तो हाँ पर वोट डालिए। अगर आप मानते हैं कि नहीं होगी तो नहीं पर, और कह नहीं सकते वालों को तो आजादी है। इस बीच तीनों जजेस आपस में बात करके ये तय कर सकते हैं कि आज का बहस बाजीगर कौन बनेगा। तो चढ़ावा चंपत मामले में निष्पक्ष जांच होगी, अगर आप मानते हैं हां तो हां पर वोट कीजिए। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने SIT गठित की है, अगर आप मानते हैं कि SIT निष्पक्ष जांच नहीं करेगी तो नहीं पर, और कह नहीं सकते वाले कह नहीं सकते पर क्लिक कर सकते हैं। आपको 60 सेकंड मिलेंगे वोटिंग के लिए और आपका समय शुरू होता है अब। समझकर अपना वोट डालिएगा, इसी से तय होगा कि आज के इस मोशन में जितने लोग यहां पर बैठे हुए उनमें से कितने लोगों को इस बात पर भरोसा है कि योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो टीम है वो निष्पक्ष जांच करेगी। और फिलहाल टीम विपक्ष इसमें जीतती हुई दिखाई दे रही, जिसका साफ साफ ये मानना है कि चढ़ावा चंपत मामले में निष्पक्ष जांच होगी। समय समाप्त हुआ। 53 PC के साथ धूमन जोशी की टीम, अभय दुबे जी की टीम और साध्वी विश्वरूपा जी की टीम जीत गई है, जिसमें जनता ने यह कहा है, यहां पर मौजूद लोगों ने, कि चढ़ावा चंपत मामले में उनको नहीं लग रहा है कि निष्पक्ष जांच होगी। हमें बताएंगे स्वामी चक्रपाणी जी कि आज का विजेता कौन है।
15: सभी ने अच्छे अच्छे विचार दिए, लेकिन हम तीनों ने निर्णय लिया, इसमें दो लोग जो हम लोगों ने दो लोगों का नाम डिसाइड किया, जो पक्ष विपक्ष से अच्छे रूप में उन्होंने अपनी बात रखी है, तो और इस शर्त पे कि पूज्य नवल किशोर दास जी महामंडलेश्वर जी निश्चित रूप से सजा दिलवाने के लिए आगे रहेंगे, जांच के लिए आगे रहेंगे, इसलिए प्रथम वक्ता हमारे महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी को
7: बहुत बहुत,
15: और दूसरी बहुत। उसी तरह आवाज उठाती रहेंगी दूसरे जगह दूसरे नंबर पे विश्वरूपा जी को मैं वक्ता के रूप में।
7: बहुत अच्छा,
15: एक पक्ष और विपक्ष दोनों को,
7: आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बहस बाजीगर में जुड़ने के लिए। अगले शनिवार आपसे फिर होगी मुलाकात, देखते रहिए आज तक।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
17: Looking for an app to hear all of your favorite music, news, sports and more? We've got all of your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations like K Buena, ESPN Radio.
18: How they looked after game one.
19: I mean, they were frustrated.
17: The Daily.
20: I'm Sabrina Tavernisi, and this is The Daily from inside the Democratic National Convention Hall.
17: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
16: Hex Organic.
21: Lion O's family. Super.
19: सुपर एक्शन फैमिली लायन।
21: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए ये शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: हमने तब भी सवाल किया था,
4: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
3: हम आज भी सवाल करते हैं,
4: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
3: ऑपरेशन अग्नि,
4: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
3: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
5: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स, 11 बिलियन व्यूज, 85 मिलियन यूनिक व्यूअर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ब्रांड, रीजनल और हाइपर लोकल रीच। हर शहर हर कस्बे तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल करें।
7: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: क्या केतन को मारने का प्लान चेतन ने बनाया? क्या चेतन को आगे करके सिया को बचाने की कोशिश हो रही है? 18 जून को लोहगढ़ जाने का प्लान किसका था, सिया का या केतन का? पुणे के केतन मर्डर केस में सिया का परिवार नई थ्योरी लेकर सामने आया है। सिया के पिता प्रवीण गोयल और मां पूजा गोयल का दावा है कि 18 जून को लोहगढ़ जाने का प्लान सिया का नहीं, केतन ने ही वीडियो कॉल करके सिया को लोहगढ़ बुलाया था। सिया के परिजन यहां तक दावा कर रहे हैं कि अगर सिया ने कुछ गलत किया है तो उसे भी लोहगढ़ किले से धक्का दे दो।
3: मैं तो कहता हूं अगर इसमें जो भी आरोपी हो, जो भी, जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है, अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूंगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहां से धक्का देके उसे भी खत्म कर दिया जाए। अब इससे ज्यादा एक बाप और कुछ नहीं बोल सकता।
4: अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहां से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहां से ही उस दोषी को गिराया जाए। जो भी दोषी निकले, मेरी बेटी चाहे उसमें दोषी हो, ठीक है, उसे फांसी की सजा दो या लोहगढ़ जाके वहीं से ही गिरा दे।
2: सिया के माता पिता दावा कर रहे हैं कि उन्हें सिया और चेतन के अफेयर के बारे में कुछ पता नहीं था। वो अभी भी कह रहे हैं कि सिया और चेतन के बीच कुछ नहीं है। परिवार तो अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी बेटी ने ऐसा कुछ किया है। जब से खबर आई है तब से सिया के पिता की तबीयत खराब हो गई, एंग्जायटी और घबराहट इतनी ज्यादा हो गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। इधर पुणे पुलिस की जांच में सिया ने कबूल किया है कि वो कम से कम 3 साल तक शादी टालना चाहती थी, लेकिन रिश्ता तय होने के बाद शादी तोड़ने से बदनामी होती, इसलिए उसने केतन को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। सिया का दोस्त चेतन भी कम से कम 2 साल तक शादी नहीं करना चाहता था। केतन और सिया की सगाई फरवरी में हुई, लेकिन उससे ठीक पहले जनवरी में सिया गोयल अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ राजस्थान के उदयपुर गई थी। वहां वो 5 दिनों तक रही थी। चेतन चौधरी मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है। पुलिस की माने तो हत्या वाले दिन चेतन और सिया लोनावाला के कैफे में मिले थे, जहां उन्होंने हत्या की अंतिम योजना बनाई। शुरुआत में चेतन चौधरी ने दावा किया था कि वो घटना के समय चट्टान के पास मौजूद नहीं था, लेकिन पूछताछ के दौरान उसके बयान में लगातार विरोधाभास सामने आए। इसके बाद दोनों आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और पूरी घटना का क्रम पुलिस को बता दिया।
5: उनको जब लोहगढ़ पर ये तीनों मौजूद थे तब केतन की हत्या की गई, कुछ इशारों में हुआ था और उसके बाद ये हत्या हुई थी।
6: जो भी अभी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है, उन दोनों में इशारों में कम्युनिकेशन था और दोनों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया।
2: अब पुणे पुलिस ने सिया के माता पिता से भी पूछताछ की है। इससे पहले सिया के भाई से 10 घंटे तक सवाल जवाब किए गए थे। ओंकार वाबले, पुणे आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शाम के 7 बजने वाले हैं आज तक के इस खास शो में। अगले आधे घंटे में दिन भर की सभी बड़ी खबरें होंगी। हम खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सेशल्स की संसद में गूंजा नमोमंत्र संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, हिंद महासागर हमें बांटता नहीं जोड़ता है। प्रधानमंत्री को मिला पर्यावरण संरक्षण का सर्वोच्च सम्मान। चढ़ावा चोरी को लेकर अखिलेश यादव ने फिर बीजेपी को घेरा, कहा इनके लिए नेशन नहीं डोनेशन फर्स्ट। सीएम योगी ने दी चुनौती, बोले हिम्मत है तो कृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर बोले। केदन अग्रवाल हत्याकांड में क्राइम सीन रिक्रिएट हुआ, मुख्य आरोपी सिया को लेकर लोहागढ़ किले में पहुंचे पुलिस। 18 जून की वारदात पर सवाल जवाब। सहारनपुर के पास देहरादून एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, 2 कारों के टक्कर में 4 लोगों की मौत, घटना सीसीटीवी में कैद। 2 देशों में हवाएं हादसों से हड़कंप, फ्रांस में प्लेन क्रैश में सवार 11 लोगों की मौत, सऊदी अरब में हेलीकॉप्टर क्रैश 14 की गई जान। शो की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है और सूत्रों के मुताबिक मंदिर में हो रही कथित चोरी की जानकारी ट्रस्ट को पहले से थी। ट्रस्ट को मालूम था कि चोरी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक 5 जून को चंपत राय के निर्देश पर ट्रस्ट के प्रतिनिधि पुलिस के साथ आरोपी अविनाश शुक्ला के ठिकानों पर पहुंचे थे, यानी कि 5 जून को ही मामला पुलिस के संज्ञान में आ चुका था। छापेमारी के दौरान अविनाश शुक्ला के ठिकानों से नकदी बरामद भी हुई थी। हालांकि उस समय ट्रस्ट की ओर से पुलिस को कोई औपचारिक शिकायत नहीं दी गई। सूत्रों का दावा है कि 5 जून को पुलिस की कार्रवाई आधिकारिक एफआईआर के आधार पर नहीं बल्कि अनौपचारिक स्तर पर हुई थी, अनौपचारिक स्तर पर, और इसके बाद 7 जून को यह मामला सार्वजनिक रूप से सामने आया।

0: रामलला के घर डकैती डालने वालों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। एसआईटी की जांच के बाद राम मंदिर ट्रस्ट से इस्तीफे हुए तो वहीं अब पुलिस भी एक्शन मोड में दिख रही है। अयोध्या पुलिस ने उन आरोपियों के घर पर धावा बोला जो अयोध्या में रहते हैं।
1: ये रामशंकर मिश्रा का घर है जो राम मंदिर में नोट गिनने के काम में जुड़ा हुआ था। बता दें कि अयोध्या पुलिस ने इन सभी आरोपियों के घर से लगभग 80 लाख रुपए बरामद किए थे और उनको जुडिशियल कस्टडी में सोमवार तक के लिए भेज दिया गया था, लेकिन अब कल सोमवार को दोबारा जुडिशियल कस्टडी पर सुनवाई होनी है। उससे पहले पुलिस के द्वारा ये जांच की जा रही है, पड़ताल की जा रही है, इन सभी जो आरोपी हैं उनके घर वालों से पूछताछ की जा रही है।
0: अयोध्या पुलिस ने टिन्नू यादव, मनीष यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा के घर पर छापा मारा, उनके परिवार वालों से पूछताछ की। ये आरोपी घर पर कब आते हैं, किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, ये सारी जानकारियां पुलिस ने इकट्ठा की हैं। आरोपी रमाशंकर मिश्रा के पिता अयोध्या में ही एक मंदिर में पुजारी हैं। पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की।
2: पूछताछ कर रही थी मतलब जांच के लिए, और वो यहाँ रहते हैं कि नहीं रहते हैं, कहाँ वो है, तो हम बताए कि कमरा पे अलग लिए रहते हैं, दो ढाई साल से यहाँ रहते नहीं है, आना जाना भी यहाँ का नहीं है।
0: चढ़ावा चोरी के आरोपियों से करीब 80 लाख की बरामदगी की गई है। 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से बरामद होने की बात सामने आ रही है।
1: अयोध्या में ही दुर्गापुरी कॉलोनी, ये हॉस्टल है और इस हॉस्टल में यूं तो यहाँ अयोध्या विश्वविद्यालय के आसपास के कॉलेज के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर दो कमरे हैं जो टिन्नू यादव ने अपने निजी यूज के लिए रखे हैं।
0: इस मामले में एक गिरफ्तारी अनुकल्प मिश्रा की भी हुई है, जिसकी देखरेख में नोटों की गिनती की जाती थी। अनुकल्प मिश्रा ने दो साल पहले 40 लाख का घर लिया था, जहां आज तक की टीम पहुंची।
3: मेरे भाई को फंसाया जा रहा है, नेहा मेरी कुछ नहीं है, उनसे शादी हुई थी चाचा की, 10 साल से उनका केस चल रहा है, उनका मैटर चाचा चाची का है, वो अलग जाने।
0: उधर अनुकल्प के रिश्तेदार पैसों को लेकर शक जाहिर कर रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में सीसीटीवी कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जहां टिन्नू यादव की तरह यूपी पुलिस के वायरलेस डिपार्टमेंट के आरएमओ अर्जुन देव की भूमिका भी रिपोर्ट में सामने आई है। जिस कमरे में नोट गिने जाते थे और चोरी हो रही थी, उसका कंट्रोल आरएमओ को दिया गया था। अर्जुन देव का पिछले 17 सालों से ट्रांसफर नहीं किया गया, जिसकी वजह उसका चंपत राय के करीबी होना बताया जा रहा है। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।
4: टस पहले से सवालों में है और अब ये जो नया खुलासा हुआ है, इसने और ज्यादा प्रश्न चिन्ह खड़े किया। हमारे साथ हमारे संवाददाता सिमर चावला भी जुड़ गए। सिमर, 5 तारीख को पता चल गया था, छापेमारी भी हुई थी, लेकिन कोई एफआईआर नहीं करवाई गई, कोई औपचारिक सूचना नहीं दी गई, मतलब ट्रस्ट क्या छुपाना चाह रहा था कि बदनामी ना हो?
5: बिल्कुल राजीव, ये एक बड़ा खुलासा है, ये सीसीटीवी फुटेज जो सीधे तौर पे साबित करता है कि ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों की भी संलिप्तता थी। उनको कम से कम इस पूरे चढ़ावा चोरी के बारे में पता था, लेकिन किसी को शिकायत नहीं दी गई और ना ही किसी को जानकारी दी गई। आपको बता दूं कि ये जो सीसीटीवी फुटेज है आज तक के पास, ये 5 जून का है, जिसमें अविनाश शुक्ला जो आरोपियों में से एक है, फिलहाल जेल में है, उसके घर से 5 लाख रुपए बरामद होते हैं। सीसीटीवी में वो बैग दिखाई देता है और साथ ही साथ पुलिस के अधिकारी भी दिख रहे हैं और राम मंदिर ट्रस्ट के अधिकारी भी दिख रहे हैं। ये सीधे तौर पर साबित होता है कि कैसे 5 जून को ही रकम बरामद कर ली गई थी। जो ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी हैं, जिसमें चंपत राय है, उनके आदेश पर ट्रस्ट के लोग जो जाते हैं वहां से रकम जो है वो रिकवर करते हैं और सब कुछ अनऑफिशियली जो है ये पूरा काम किया गया। आधिकारिक तौर पे ना कोई एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दी गई और ना ही किसी तरीके से किसी को बताया गया। पुलिस भी है वहां पे, ये आपको बता दूं कि आमतौर पे जब एफआईआर रजिस्टर होती है, पुलिस उसके बाद अपनी कार्रवाई शुरू करती है, लेकिन इस पूरे मामले को इतना गोपनीय रखा गया लेकिन बिना किसी ऑफिशियल कंप्लेंट के या बिना किसी आधिकारिक तौर पर ये पूरा जो ऑपरेशन है वो किया गया। एक बड़े सवाल खड़े होते हैं कि जो पूरे मामले में लगातार सवाल खड़े होते हैं कि क्या ट्रस्ट के लोगों को मालूम था, कैसे ये पॉसिबल है कि इतनी बड़ी चढ़ावा चोरी हो गई और उनको पता भी नहीं लगा। ये वीडियो साक्ष्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सीधे तौर पे ये साबित करता है कि कैसे सब कुछ पता था। 5 जून का ये वीडियो है, 7 जून वो वक्त था जब ऑपोजिशन के लीडर्स ने इस मुद्दे को उठाना शुरू किया, जिसके कई दिन बाद जाके एसआईटी का गठन हुआ। यानी 5 जून जब ये सब कुछ मीडिया में कुछ नहीं था, कुछ बातें जानते नहीं थी तभी से पूरा मामला चल रहा था।
4: अब ये खुलासे एक तरीके से एक्सपोज उनको कर रहे हैं, बिल्कुल एक्सपोज कर रहे हैं। सिमर बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चढ़ावा चोरी के आरोपियों की कल कोर्ट में पेशी है और कोर्ट जाने से पहले अयोध्या पुलिस अपना होमवर्क पूरा कर लेना चाहती है। आज आरोपियों से जुड़े हुए तथ्यों को एकत्रित किया जा रहा है। आरोपी अविनाश शुक्ला के घर पर भी छापा पड़ा है।
5: इस वक्त मौजूद हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में आरोपी अविनाश शुक्ला के अयोध्या वाले घर पे, जहां पर पुलिस फोर्स पहुंची है आसपास पड़ोसियों से पूछताछ करने के लिए और जानकारी जुटाने के लिए। पीछे आप मेरे देखेंगे तो ये पुलिस फोर्स है। सुबह से ही छापेमारी सभी आरोपियों के घर पे चल रही है। उसी क्रम में अविनाश शुक्ला के घर पर यहाँ पर पुलिस पहुंची थी। जानकारी में सामने आया है कि अविनाश शुक्ला, जो कि प्रतापगढ़ का परमानेंट निवासी है, यहाँ पे ऊपर घर में कई सालों से किराए पर रह रहा था और तमाम जो आरोप उस पर लगे हैं कि वो चढ़ावा चोरी में शामिल था, उसके बाद ये छापेमारी उसी क्रम में की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, अयोध्या आज तक।
4: अब इस पूरे मामले पर जमकर राजनीति भी हो रही है। अखिलेश यादव योगी सरकार समेत बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं तो योगी की ओर से पलटवार भी हो रहा है।
6: इनकी निगाहें नेशन पे नहीं है, डोनेशन पर है। जो लोग ये कहते थे नेशन फर्स्ट, उनके लिए लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट है। क्या कोई कल्पना कर सकता था श्रद्धा और आस्था से इतनी बड़ी खिलवाड़? इनकी चतुराई है, चालबाजी है और सीसीटीवी फुटेज है कि कितनी बार सीसीटीवी बंद किया गया है, कितनी बार वो आंकड़े सामने आपके आए हैं, तब और क्या बताया जाए।
7: अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आज जब राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है।
4: अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अमृतसर पहुंचे। अरविंद केजरीवाल ने राम भक्तों को खुशखबरी देते हुए ऐलान किया कि अमृतसर में भगवान वाल्मीकि मंदिर के बगल में माता जानकी और लवकुश का भव्य मंदिर का निर्माण करवाएंगे।
8: अमृतसर में लवकुश और माता जानकी के नाम से उनके लिए एक बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। श्री वाल्मीकि, भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल है। भगवान वाल्मीकि ने यहाँ पे रामायण लिखी थी। माता सीता यहीं पे वाल्मीकि आश्रम में रही थी। लवकुश ने यहाँ जन्म लिया था, लवकुश की यहाँ पढ़ाई हुई थी और जब भगवान राम ने अपना अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा था तो पूरी दुनिया में कोई उस घोड़े को रोक नहीं पाया था। लवकुश ने उस घोड़े को रोका था और यहीं पे एक पेड़ से बांध के रखा था।
4: अब आज भगवंत मान के वीडियो पर छिड़े विवाद की 29 जून यानी कि कल पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्री और आम आदमी पार्टी के सभी विधायक श्री अकाल तख्त साहिब के सामने पेश होंगे और जो भी निर्देश दिए जाएंगे उनका पूरा सम्मान किया जाएगा। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि आप पार्टी अकाल तख्त साहिब की सर्वोच्चता का सम्मान करते हैं, सभी फैसले स्वीकार होंगे। आपको बता दें कि श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से आम आदमी पार्टी के सभी मंत्रियों, सभी विधायकों को तलब किया गया था जिसके बाद यह फैसला किया गया है।
9: कलों साढ़े MLA सारे ने वह लिखती रूप के अपना पक्ष जोड़ा उ रख के आने तो बाकी जो भी होगा वो तुम्हें कल ना बाहर आके वो मीडिया के नाल जो संवाद जोड़ा उन्होंने होगा वो दस देंगे।
4: और बात करेंगे बिहार के, जहां पर पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने अपना सरकारी आवास छोड़ दिया है। राबड़ी देवी का सामान अब सरकारी आवास से शिफ्ट किया जा रहा है। राबड़ी देवी अब अपने निजी घर में शिफ्ट हो रही हैं। तो राबड़ी देवी के इस आवास को लेकर काफी कॉन्ट्रोवर्सी भी चली। इसमें यह भी दावा किया गया कि वो मकान खाली नहीं करेंगे। सरकार की तरफ से भी बहुत तरह की टिप्पणियां हुई कि उनको खाली करने का नोटिस दिया गया, लेकिन अब आखिरकार ये सामान शिफ्ट हो रहा है। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पटना के 10 सर्कुलर रोड से ये सामान शिफ्ट किया जा रहा है और राबड़ी ने कौटिल्य नगर में ये जो सामान है वो शिफ्ट किया।
10: कौटिल्य नगर का ये इलाका है और यहीं पर राबड़ी देवी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो लगातार आकर के जो काम चल रहा था उसकी निगरानी भी करती रही हैं। और अब ये बताया जा रहा है कि अंतिम तौर पर देखिए ये भी गाड़ी जो है वो लालू परिवार से संबद्ध है, तो तमाम जो सामान शिफ्टिंग का काम है वो यहाँ पे चल रहा है। पिकअप वैन रात में भी आ रहे हैं और दिन के उजाले में भी अब सामान शिफ्टिंग हो रही है, तो ये अंतिम दौर की तैयारी है 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने को लेकर के। यानी ये जगह कौटिल्या नगर का ये मकान अब नया ठिकाना होगा लालू परिवार का। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, आज तक पटना।
4: अब खबर राजस्थान से, जहां पर बीजेपी सरकार के एक मंत्री सरकारी सब्सिडी को लेकर चर्चा का विषय बने हुए हैं। विपक्ष मंत्री पर गंभीर आरोप लगा रहा है, जबकि मंत्री भागीरथ चौधरी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए पूरी प्रक्रिया को निर्धारित मापदंडों और सरकारी नियमों के तहत बताया है।
11: क्या एक मंत्री अपनी ही मंत्रालय की योजना से सब्सिडी ले सकता है? क्या नियम सभी के लिए बराबर हैं या पद और प्रभाव से बदल जाते हैं? केंद्र सरकार की कृषि योजनाओं को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। भारत सरकार के एक मंत्री ने सरकार से करीब 99 लाख की सब्सिडी प्राप्त की है। खीरे टमाटर शिमला मिर्च की खेती के लिए मंत्री जी ने अपने ही कृषि मंत्रालय से सब्सिडी ले ली। मामला सामने आने के बाद विपक्ष ने इसे लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं और निष्पक्ष जांच की मांग की है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस पर सत्ता का गलत प्रयोग बताया है। सचिन पायलट ने लिखा, कृषि मंत्री पर 99 लाख सब्सिडी का आरोप, अपनी ही योजना से लाभ लेने का मामला, पद के दुरुपयोग पर विवाद, पारदर्शिता और जांच की मांग। इस बीच आप नेता मनीष सिसोदिया ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।
12: मोदी सरकार के मंत्री खुद अपने ही विभाग में खीरा किसानों की सब्सिडी खा गए, तो चारों तरफ लूट पे लूट चले जा रही है, तो इस लूट वाली सरकार को हटाना पड़ेगा। लोगों को समझना पड़ेगा कि ये लूट सरकार अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी।
11: वहीं मंत्री भागीरथ चौधरी ने विपक्ष के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है।

0: राज प्रेम जी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया और उससे 14,900 कैप्सूल बरामद किए। जांच में सामने आया है कि आरोपी फैयाज बीबीए कर चुका है और वो पुणे में पेंट का बिजनेस करता है। उसने 30,000 खाली कैप्सूल के ऑर्डर किए थे, साथ ही 50 किलो फास्फोरस भी मंगवाए थे।
1: एक संशयित व्यक्ति मुंबई पुलिस की टीम को मिला जो कि वहाँ पे कैप्सूल बांट रहा था। उसके पास कोई परमिशन नहीं थी तो मुंबई पुलिस ने उसको टोक के पूछताछ शुरू करी तो और डाउट बढ़ा। तो उसके बाद उसके पास से जितनी भी कैप्सूल्स का जो स्टॉक था वो जब्त किया गया।
0: पुलिस की माने तो गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने कबूला कि वो पेनकिलर कैप्सूल बताकर मुहर्रम के जुलूस में उसे बांट रहा था। आरोपी से जो कैप्सूल बरामद हुए उसमें जिंक फॉस्फाइड पाया गया। गिरफ्तार फैयाज प्रेमजी ने कई लोगों को उसने कैप्सूल दिए थे। कैप्सूल खाने से एक युवक की तबीयत भी बिगड़ी। जिंक फॉस्फाइड ऐसा केमिकल है जिसकी वजह से तेज उल्टी और पेट में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, चक्कर आना और बेहोशी, ब्लड प्रेशर तेजी से गिरना, दिल की धड़कन अनियमित होना, लीवर और किडनी फेल होने का खतरा रहता है। पुलिस अब जांच में जुटी है कि कहीं इस वारदात का आतंकी कनेक्शन तो नहीं, क्योंकि आरोपी फैयाज पहले ईरान और इराक जा चुका है। आरोपी के विदेशी संपर्कों की पड़ताल भी जारी है। दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
2: अब बात करते हैं सड़क हादसों की। सहारनपुर में सड़क हादसे का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। इस हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की जान चली गई है। दूसरा मामला हिट एंड रन का है जहां अहमदाबाद में एक कार सवार ने बाइक को टक्कर मार दी।
3: ये तस्वीरें दहला देने वाली है। एक कार को पीछे से दूसरी कार ने भयानक टक्कर मारी। तस्वीरें सहारनपुर में दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर रामपुर मनिहारन थाना क्षेत्र की हैं। बताया जा रहा है कि ड्राइवर कट पार कर आगे निकल गया था और निर्माणाधीन हाईवे की ओर लौटने के लिए कार बैक कर रहा था। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रही स्कॉर्पियो ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर कई मीटर तक घिसटती चली गई, जबकि स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में चार लोगों की जान चली गई जबकि तीन बुरी तरह घायल। अब दूसरी तस्वीर देखिए, यह अहमदाबाद की तस्वीरें हैं। तेज रफ्तार कार ने यहां बाइक सवार को टक्कर मार दी। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि शहर के व्यास वाड़ी चार रास्ता पर यह तेज रफ्तार सफेद कार इधर से आती है, सामने से एक बाइक पर तीन युवक आ रहे हैं। अचानक कार ने बाइक को टक्कर मारी। टक्कर मारकर कार सवार फरार हो गया जबकि तीनों युवकों की हालत गंभीर है। आज तक ब्यूरो।
2: महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग से एक भयानक हादसे की तस्वीर सामने है जिसमें एक शख्स की जान चली गई। कुछ दोस्त वहां मौसम का मजा लेते हुए पूल पार्टी कर रहे थे, अचानक कुछ ऐसा हुआ कि जश्न मातम में बदल गया।
3: इन तस्वीरों को देखकर पहली नजर में यही लगेगा कि कुछ दोस्त मौसम का मजा ले रहे हैं। ये शानदार म्यूजिक में पूल पार्टी कर रहे हैं, पानी में डुबकी लगा रहे हैं और गाने की धुन पर थिरक रख रहे हैं। इन्हीं दोस्तों में से एक ये शख्स यहाँ ऊंचाई से सिर के बल पूल में छलांग लगाता है, बाकी के दोस्त इस छलांग पर जश्न मनाते हैं। ये आदमी पानी में सिर के बल कूदा। अब तक इसके दोस्तों को नहीं पता कि कितना बड़ा हादसा हो गया। ये अभी भी नाच रहे हैं, लेकिन पानी में कूदने के बाद ये शख्स पानी से बाहर नहीं आया बल्कि इसका शव उतराने लगा। तस्वीरें सिंधुदुर्ग के मालवण के वायरी में मालवणी पाहुण चार रिसोर्ट की हैं। दरअसल ये पूल 4 फीट गहरा था और ऊंचाई से छलांग लगाने की वजह से इस शख्स का सिर पूल के फ्लोर से टकराया और इसकी जान चली गई। मृतक का नाम श्रेणिक मिलिंद ताकले है, ये कोल्हापुर का रहने वाला था। इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि हादसे बता के नहीं होते। किसे पता था कि चंद मिनट पहले जो दोस्त एंजॉय कर रहे थे, चंद मिनट में ही एक हादसे ने जश्न को मातम में बदल दिया। भरत केसरकर, सिंधुदुर्ग आज तक।
2: कर्नाटक के टुमकुरु में एक कार में धमाका हुआ और कार में आग लगे जिसमें 30 साल का एक शख्स जिंदा जल गया। मृतक की पहचान बेंगलुरु के रहने वाले अंकोला के मूल निवासी नागेंद्र के तौर पर हुई। राम्या नाम की महिला और कैब ड्राइवर प्रवीण घायल भी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक नागेंद्र और राम्या रिलेशनशिप में थे। दोनों के रिश्ते बिगड़ने के

बाद नागेंद्र ने राम्य के साथ झगड़ा किया, दोनों में झगड़ा हुआ। नागेंद्र ने उसे जबरदस्ती एक येलो बोर्ड कैब में बिठाया। यात्रा के दौरान राम्य को धमकी दी, कहा कि वो उसे मार डालेगा और खुद की भी जान ले लेगा। शक है कि उसने यात्रा के दौरान उसे पेट्रोल बम भी दिखाया। नागेंद्र ने कथित तौर पर चलते कार के अंदर राम्य पर चाकू से हमला किया। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी जिससे राम्य दरवाजा खोलकर सुरक्षित बाहर कूद पाए। कुछ ही पल के बाद कार में एक धमाका हुआ और कार जलने लगी और लपटों में घिरी हुई दिखी, जिससे नागेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि गाड़ी से बम जैसा विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ है। कल्ला बेला पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। धमाके की असल वजह और घटनाक्रम की जांच भी चल रही है। अब अगली खबर उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी से, जहां पर शुक्रवार को हुए भीषण सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 3 हो गई है। हादसे में गंभीर रूप से झुलसे टोल प्लाजा के कर्मचारी आलोक सिंह ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना उस वक्त हुई जब कानपुर से वाराणसी जा रहा एलपीजी गैस से भरा हुआ टैंकर अनियंत्रित हुआ, डिवाइडर से टकराया और देखते देखते आग का गोला बन गया। आग इतनी भयावह थी कि पूरे इलाके में धुएं का घना गुबार सा छा गया, जबकि आग की चपेट में आकर आसपास खड़ी लगभग 15 बाइक और एक चार पहिया वाहन भी जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही दमकल और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। अरुणाचल प्रदेश में तबाही की भयानक तस्वीरें सामने आई है। अरुणाचल प्रदेश के सिजी ब्लॉक पॉइंट पर जबरदस्त भूस्खलन हुआ है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह जलधारा सब कुछ बहा ले जाने के लिए बेकाबू उतारू दिखाई दे रही है।

0: भारतीय क्रिकेट फैंस को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है क्योंकि आयरलैंड के खिलाफ होने वाले दूसरे मैच में भी वैभव सूर्यवंशी को नहीं खिलाया गया। और इसी के साथ अब इस बुलेट में रुके छोड़ से ब्रेक खेले, आप देखते रहिए आज।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
3: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, oh yeah, you make my dreams come. Steely Dan, Loggins and Messina, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.

0: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए ये शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
6: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
7: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है,
8: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
7: जिंदल स्टेनलेस, इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू। विमल बोलो जुबा केसरी,
1: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
2: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
3: शेयर बाजार, जहां कुछ लोग सीखते रह जाते हैं और कुछ इतिहास लिख जाते हैं। आखिर बड़ा पैसा बनता कैसे है, कौन सी सोच, कौन सी रणनीति और कैसा नजरिया किसी को बनाता है बाजार का असली खिलाड़ी, इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आ रही है बिस्तक की नई पॉडकास्ट सीरीज मनी मेकर्स। यहां मुलाकात होगी बाजार के उन दिग्गजों से, उन मार्केट लेजेंड से जिन्होंने सिर्फ मार्केट को देखा नहीं बल्कि बड़े उतार चढ़ाव किए हैं, मौके पहचाने हैं और दौलत बनाई है। जानेंगे उनकी जर्नी, बड़े फैसले, निवेश की सीख और बड़ा पैसा बनाने की सोच। मनी मेकर्स, बाजार के बड़े नाम, बड़ी सीख, सिर्फ बिस्तक पर।
4: हमने तब भी सवाल किया था,
5: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
4: हम आज भी सवाल करते हैं,
5: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
4: ऑपरेशन अग्नि,
5: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
4: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई, खबरदार सिर्फ आज तक पर।

सिया और केतन बस कुछ ही महीने की बात दोनों साथ फेरे लेने वाले थे, दोनों के रिश्ते की डोर में बंधने वाले थे, लेकिन 18 जून को एक झटके में सब कुछ खत्म हो जाता है। लोहगढ़ के किले में ठीक इसी जगह पर केतन करीब 340 फीट गहरी खाई में जा गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। इस घटना के 5 दिन बाद यानी 23 जून को सिया की गिरफ्तारी हो जाती है और वहां से तब तक हादसा लगने वाला मामला पूरी तरह से अलग ट्रैक पर चला जाता है। कत्ल का आरोप लगता है। आरोप ये कि सिया ने अपने मंगेतर को मार डाला। इस गुनाह में सिया का साथ दिया उसके दोस्त चेतन चौधरी ने। वही चेतन जिसका सिया के साथ कई वीडियो सामने आ चुका है। एक वीडियो में दोनों क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखते दिखे हैं। और सबसे अहम तो ये कि सिया और चेतन ने केतन की हत्या से ठीक एक दिन पहले यानी 17 जून को ही पुणे के एक कैफे में मुलाकात की थी। दोनों शाम करीब 4:30 बजे मिले थे। माना जा रहा है कि दोनों ने उसी कैफे में हत्या की फाइनल साजिश रची और उसे अंजाम देने पर करीब घंटे भर बात की। खुलासा ये भी हुआ कि हत्या से पहले सिया ने लोहगढ़ किले का वीडियो यूट्यूब पर सर्च किया था, वहां के लोकेशन को कैफे में मुलाकात के दौरान चेतन के साथ साझा किया था। बात यहीं तक नहीं रुकी। सिया का बड़ा भाई साहिल ये भी चेतन को जानता था। दोनों ने साथ साथ क्रिकेट खेला है, उससे जुड़ा भी वीडियो सामने आया है। चेतन के साथ तमाम वीडियो और कनेक्शन सामने आने के बाद पुणे पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया। सिया के परिजनों को रडार पर लिया और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। 27 जून को पुलिस ने सिया के माता पिता को पूछताछ के लिए बुलाया। दोनों से करीब 12 घंटे तक सवाल जवाब किए। पुलिस ने परिवार से कई अहम सवाल पूछे जिनके जवाब अब जांच का अहम हिस्सा बन गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान सिया के पिता प्रवीण गोयल और मां पूजा गोयल से पुलिस ने पूछा कि क्या सिया ने आपको चेतन के साथ अपने प्रेम संबंध के बारे में बताया, क्या आपको इसकी जानकारी थी। परिजनों ने जवाब दिया कि सिया ने हमें अपने प्रेम संबंध के बारे में कभी नहीं बताया था, हमें इसकी जानकारी अब हुई। पुलिस ने पूछा कि क्या आपने सिया पर केतन के साथ शादी करने का दबाव बनाया, तो उन्होंने कहा कि हमने सिया पर शादी के लिए किसी तरह का कोई दबाव नहीं बनाया। 27 जून को हुई पूछताछ के दौरान अपने माता पिता के साथ सिया का भाई साहिल भी मौजूद था। साहिल से 26 जून को ही पुलिस ने केतन हत्याकांड को लेकर सवाल जवाब किए थे। शुक्रवार को साहिल गोयल से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उस पूछताछ में जांच से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आईं। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और आने वाले दिनों में कुछ और लोगों से सवाल हो सकते हैं। जांच एजेंसियां पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने और उपलक्ष्य साक्ष्यों के आधार पर ही मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश में लगी है। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार बांबले, लोहगढ़ आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
2: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: संबोधन में पीएम मोदी ने कहा हिंद महासागर हमें बांटता नहीं जोड़ता है। प्रधानमंत्री को मिला पर्यावरण संरक्षण का सर्वोच्च सम्मान। चढ़ावा चोरी को लेकर अखिलेश ने बीजेपी को फिर घेरा, कहा इनके लिए नेशन नहीं डोनेशन फर्स्ट। सीएम योगी ने दी चुनौती, बोले हिम्मत है तो कृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर बोले। पेपर लीक के विरोध में दिल्ली में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, मांगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। मुंबई में भी शिक्षा मंत्री के घर के बाहर हल्ला बोल। केतन अग्रवाल हत्याकांड में क्राइम सीन रिक्रिएट, मुख्य आरोपी सिया को लेकर लोहगढ़ किले पहुंची पुलिस। 18 जून की वारदात पर सवाल जवाब हुए। दो देशों में हवाई हादसों से हड़कंप, फ्रांस में प्लेन क्रैश 11 लोगों की मौत। सऊदी अरब में हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश तो 14 लोगों की गई जान।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
0: नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है, मैं हूँ राजीव ढोंडियाल। पुणे में केतन अग्रवाल हत्याकांड में आज पुलिस ने बड़ी जांच की है। आरोपी नंबर वन और केतन की मंगेतर सिया को पुलिस लोहगढ़ किले से लेकर उस जगह तक पहुंची और जांच पड़ताल की जहां से केतन को धक्का दिया गया था और उसकी मौत हो गई थी। अब एक दिन पहले ही सिया के माता पिता से पहली बार पुणे पुलिस ने कई घंटों तक सवाल जवाब किए। उसके भाई से भी पुलिस केतन केस को लेकर पूछताछ कर चुकी है और आज पुलिस ने लोहगढ़ किले से बड़ी बारीकी से जांच पड़ताल की है। यहां पर इन्वेस्टिगेशन हुई है, पता लगाने की कोशिश की गई है कि कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पुणे पुलिस के सामने कई अहम सवाल हैं कि अब तक गिरफ्तार सिया और चेतन के आरोपों को लेकर पुलिस घर वालों से बात कर जानकारी जुटा चुकी है और आखिर इस क्राइम फाइल की सबसे अहम कड़ी रिक्रिएशन को भी पूरा कर लिया गया है। इस दौरान किले में पुलिस के साथ सिया भी मौजूद थी, वो पुलिस के तमाम सवालों का जवाब दे रही थी और पुलिस उसके बयान के आधार पर क्राइम सीन को रिक्रिएट भी कर रही थी।
3: ने कैसे चेतन के साथ मिलकर केतन को मारा, कैसे उसने कत्ल के लिए लोहगढ़ का किला चुना, कैसे वो केतन को लेकर लोहगढ़ के किले तक पहुंची, कैसे उसने चेतन को कत्ल का इशारा किया, कैसे केतन चेतन और सिया की साजिश नहीं समझ पाया, कैसे इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया, इन सारे सवालों के जवाब तलाशने के लिए ये कवायद हो रही है। जिसका चेहरा ढका हुआ है वो है सिया और ये वही लोहगढ़ का किला है जहां सिया को लेकर पुलिस पहुंची है।

0: लोहगढ़ किले में 18 जून को जो कुछ हुआ था उसी को दोहराने की कोशिश आज पुणे पुलिस ने की है। पहाड़ी पर स्थित किले के उसी जगह पर पुलिस की पड़ताल चल रही है। ये तस्वीरें धुंधली हैं, लेकिन देश को सन्न कर देने वाली साजिश की तस्वीर साफ करने के लिए पुलिस ने ये अहम कदम उठाया है। इन धुंधली तस्वीरों में सिया गोयल है, पुणे पुलिस की टीम है और साथ में है क्राइम सीन को रिक्रिएट करने वाले एक्सपर्ट। केतन अग्रवाल हत्याकांड की पड़ताल का ये अहम पड़ाव था। कई दिनों से माना जा रहा था कि पुणे पुलिस लोहगढ़ के किले में पहुंचकर क्राइम सीन को रिक्रिएट कर सकती है। तमाम कयासबाजी के बाद पुणे पुलिस की टीम सुबह 6:30 बजे ही लोहगढ़ किले में आज दस्तक दे दिया। पुलिस सिया को लेकर किले पहुंची। किला का गेट बंद कर दिया गया, पर्यटकों को रोक दिया गया, हर किसी के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई। सुबह 6:30 बजे सिया को लेकर पुलिस ने किले में चढ़ाई शुरू की। करीब घंटे भर बाद पुलिस क्राइम सीन पर पहुंच गई। जांच दल के साथ केतन की कदकाठी का एक डमी भी था। क्राइम सीन पर पहुंचने के बाद पुलिस ने सिया से कई सवाल किए। 18 जून को क्या क्या हुआ था, केतन और चेतन कहां थे, किसने धक्का दिया, कैसे तीनों यहां तक पहुंचे? ऐसे एक एक सवाल के जवाब पुलिस ने सिया से पूछे और उसके जवाबों के मुताबिक ही क्राइम सीन की बारीकी से जांच पड़ताल की। फिर जिस जगह से केतन को धक्का दिया गया था पुलिस ने उस जगह से सिया के बयानों के हिसाब से क्राइम सीन रिक्रिएट किया। रिक्रिएशन के दौरान पुलिस ने उसी स्थान से डमी को नीचे धक्का देकर पूरी घटना को दोहराया जहां से कथित तौर पर केतन अग्रवाल को खाई में धक्का दिया गया था। इस प्रक्रिया का मकसद घटना के क्रम, हालात और उपलब्ध साक्ष्यों का मिलान करना था ताकि जांच को और मजबूत किया जा सके।
1: लोहगढ़ किले के ऊपर जहाँ पे वो घटना हुई थी उस घटना पे एक डमी सीन क्रिएट करके वहाँ पे एक्यूज को ले जाया गया है। किस रूट से जाके कहाँ बैठे और क्या क्या प्रोसेस घड़ी और घटना कैसे घड़ी उसको रिक्रिएट जा रहा किया गया है, उसमें एक्यूज ने बता दिया है।
0: केतन हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस आज के रिक्रिएशन को काफी अहम मान रही है।
2: सर, सीन को रिक्रिएट किया गया, एग्जैक्टली किस तरीके से ये पूरा हुआ?
3: आज सिया ने बताया कि उसने इन्फॉर्मेशन दी जैसे हुआ था, वो जो भी डिस्कवरी ऑफ फैक्ट है उस हिसाब से हमने सीन रिक्रिएट किया है।
2: दोनों आरोपियों को आप लेके आए थे?
3: सिया थी,
2: चेतन चौधरी जो है उसका भी अभी फॉरेंसिक करना अहम है क्योंकि जिस मतलब जहां से उसने एंट्री की थी उसी तरीके का वॉक करना और वो सीसीटीवी में फॉरेंसिक एविडेंसेस लेना वो भी बाकी।
3: अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, आज सिया का रिक्रिएशन हुआ है, वो सीन रिक्रिएशन हमने क्योंकि आज तो हमने सीन रिक्रिएट किया गया। उसने अभी जो इन्वेस्टिगेशन में सारी बातें सामने आएगी उस हिसाब से अभी आगे भी इन्वेस्टिगेशन करना है।
0: इस जांच पड़ताल के बीच दावा ये भी किया जा रहा है कि सिया और चेतन ने केतन को मारने का रिहर्सल भी किया था।
2: रिक्रिएशन वो सिर्फ सिया को लाए थे, अभी चेतन चौधरी का रिक्रिएशन होना बाकी है। लोहगढ़ किले के यहाँ हम बाहर खड़े हैं जहाँ थोड़ी देर पहले ही सीन रिक्रिएशन पूरा हुआ, फॉरेंसिक की टीम यहाँ मौजूद थी। सबसे अहम बात यह है कि सिया और चेतन ने दोनों ने मिलकर इसकी रिहर्सल की थी, इससे पहले प्रैक्टिस हुई थी और प्रैक्टिस के बाद इसको अंजाम दिया गया था और उसी के बाद आप देख सकते हो कि सीन रिक्रिएशन ये लोहगढ़ किले पे अक्सर संडे को किला शुरू रहता है लेकिन आज पर्यटकों के लिए और जितने विजिटर्स हैं उन सभी के लिए इसे बंद किया गया था। लेकिन यही सीढ़ियां है, इसी सीढ़ियों से तीनों ऊपर गए थे, चेतन चौधरी गया था, उसके बाद सिया और केतन अग्रवाल भी गया था और उसी के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया।
0: हालांकि ऐसे तमाम दावों पर पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, सभी तथ्यों को वेरीफाई किया जा रहा है।
2: किसने किया था, चेतन ने किया था, फिजिया ने?
3: देखिए, आज तो हमने सीन रिक्रिएट किया गया, उसने अभी जो इन्वेस्टिगेशन में सारी बातें सामने आएगी उस हिसाब से अभी आगे भी इन्वेस्टिगेशन करना है।
2: देखो, इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि दोनों ने रिहर्सल की थी, इससे पहले प्रैक्टिस हुई थी कहीं ना कहीं और फिर आके इसे अंजाम दिया गया। तो क्या सिया ये अभी कह रही है कि वो प्रैक्टिस किस तरीके से हुई थी और कैसे उसने एग्जीक्यूट किया,
3: वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आज का तो सीन रिक्रिएशन होगा।
0: इस हत्याकांड में सिया और चेतन के सामने आए नए नए वीडियो और केतन के परिजनों के आरोपों के बाद ट्विस्ट और बढ़ गया है। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार वाबले, लोहगढ़ आज तक।
4: आखिर सिया ने केतन का कत्ल क्यों किया, क्या वो शादी के लिए मना नहीं कर सकती थी? ऐसे तमाम सवाल हैं जो किसी को हजम नहीं हो रहे, लिहाजा पुणे पुलिस सिया के साथ साथ उसके घर वालों से भी लगातार पूछताछ कर रहे हैं। एक दिन पहले पुलिस ने उसके माता पिता से तकरीबन 12 घंटे तक मैराथन पूछताछ की और भाई से भी 2 दिनों तक सवाल जवाब किए गए हैं।

0: सिया और केतन बस कुछ ही महीने बाद दोनों साथ फेरे लेने वाले थे। दोनों एक रिश्ते की डोर में बंधने वाले थे, लेकिन 18 जून को एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। लोहगढ़ के किले में ठीक इसी जगह पर केतन करीब 340 फीट गहरी खाई में जा गिरा और उसकी मौत हो गई। उस घटना के 5 दिन बाद यानी 23 जून को सिया की गिरफ्तारी हो जाती है और वहां से तब तक हादसा लगने वाला मामला पूरी तरह से अलग ट्रैक पर चला जाता है। कत्ल का आरोप लगता है। आरोप ये कि सिया ने अपने मंगेतर को मार डाला। इस गुनाह में सिया का साथ दिया उसके दोस्त चेतन चौधरी ने। वही चेतन जिसका सिया के साथ कई वीडियो सामने आ चुके हैं। एक वीडियो में दोनों क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखते दिखे हैं और सबसे अहम तो ये कि सिया और चेतन ने केतन की हत्या से ठीक एक दिन पहले यानी 17 जून को ही पुणे के कैफे में मुलाकात की थी। दोनों शाम करीब 4:30 बजे मिले थे। माना जा रहा है कि दोनों ने उसी कैफे में हत्या की फाइनल साजिश रची और उसे अंजाम देने पर करीब घंटे भर बात की थी। खुलासा ये भी हुआ है कि हत्या के पहले सिया ने लोहगढ़ किले का वीडियो यूट्यूब पर सर्च किया था और वहां के लोकेशन को कैफे में मुलाकात के दौरान चेतन के साथ साझा किया था। बात यहीं तक नहीं रुकी। सिया का बड़ा भाई साहिल गोयल भी चेतन को जानता था। दोनों ने साथ साथ क्रिकेट खेले थे। उससे जुड़ा वीडियो भी सामने आया है।
1: इस मामले में जो भी लोग जुड़े हुए उन सबसे हम पूछताछ कर रहे हैं।
2: कल साहिल से जो है 10 घंटे तक पूछताछ की गई है, लेकिन जो चेतन था और साहिल है, इन दोनों की दोस्ती कैसे हुई और कहां से शुरू हो गई, कहां से मुलाकात हुई और उनके बीच बातचीत शुरू हो गई थी?
1: चेतन और साहिल एक दूसरे को जानते थे, वो साथ में क्रिकेट भी खेलते थे और वो दोनों दोस्त भी थे।
2: और इसी क्रिकेट ग्राउंड में सिया भी आती थी और उसकी वजह से जो है चेतन और सिया एक दूसरे को पहचानने लगे थे।
1: ये अभी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, हम हर तरीके से ये जारी है, उस हिसाब से हम आगे बताएंगे।
0: चेतन के साथ तमाम वीडियो और कनेक्शन सामने आने के बाद पुणे पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया। सिया के परिजनों को रडार पर लिया और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। 27 जून को पुलिस ने सिया के माता पिता को पूछताछ के लिए बुलाया। दोनों से करीब 12 घंटे तक सवाल जवाब किए। पुलिस ने परिवार से कई अहम सवाल पूछे जिनके जवाब अब जांच का अहम हिस्सा बन गए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान सिया के पिता प्रवीण गोयल और मां पूजा गोयल से पुलिस ने पूछा कि क्या सिया ने आपको चेतन के साथ अपने प्रेम संबंध के बारे में बताया था, क्या आपको इसकी जानकारी थी? परिजनों ने जवाब दिया कि सिया ने हमें अपने प्रेम संबंध के बारे में कभी नहीं बताया था, हमें इसकी जानकारी अब हुई है। पुलिस ने पूछा कि क्या आपने सिया पर केतन के साथ शादी करने का दबाव बनाया था, तो उन्होंने कहा कि हमने सिया पर शादी के लिए किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला था। 27 जून को हुई पूछताछ के दौरान अपने माता पिता के साथ सिया का भाई साहिल भी मौजूद था। साहिल से 26 जून को ही पुलिस ने केतन हत्याकांड को लेकर सवाल जवाब किए थे। शुक्रवार को साहिल गोयल से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उस पूछताछ में जांच से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई थी। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और आने वाले दिनों में कुछ और लोगों से पूछताछ की जा सकती है। जांच एजेंसियां पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। इतना ही नहीं, पुलिस ने आज सिर्फ सिया का सीन रिक्रिएट किया, अभी चेतन का सीन भी रिक्रिएट किया जा सकता है। जानकारी जुटाई जाएगी कि इतने बड़े अपराध को इन दोनों ने इतना सरल कैसे समझ लिया, कैसे इनके दिमाग में ये बात नहीं आई कि केतन को मार डालना विकल्प नहीं था, कैसे ये नहीं समझ पाए कि केतन के कत्ल के बाद इनका अंजाम क्या होगा। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार भावले, लोहगढ़, पुणे, आज तक।
3: केतन अग्रवाल का परिवार लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। उसके माता पिता की मांग पर फडणवीस सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई करने की मांग कर ली है और मांग मान ली है। उज्ज्वल निगम को विशेष सरकारी वकील नियुक्त किया गया है, लेकिन इंसाफ की यह लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है क्योंकि अभी पुलिस लगातार बयान दर्ज करने में जुटी है। उसके बाद तमाम कड़ियों को जोड़ना और उसे अंजाम तक पहुंचाना अहम चुनौती है।
4: जो किया है वो बहुत ही शॉकिंग है और मेरे लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था।
0: केतन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी यादें हैं। उसकी यादों में आंसू हैं, गम है, गुस्सा है। नाराजगी सिर्फ अग्रवाल परिवार में ही नहीं है, पुणे शहर में हर कोई सवाल हत्याकांड को लेकर उठा रहा है और कह रहा है कि दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए।
4: केतन की चाची लगती हूँ और सिया ने जो किया है वो बहुत ही शॉकिंग है और मेरे लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था। वो मुझे इतना ट्रस्ट था वो लड़की पे, उसने जो किया है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए और इसके आगे उसके एज की या फिर कोई भी एज की लड़की ये सब चीजें करने से पहले 100 बार डरनी चाहिए। ऐसा जस्टिस मिलना चाहिए हमारे केतन को। दिस इज ओनली ऑल आई वॉन्ट।
5: आप चाहती हो किशन की बचपन से उसे देखा होगा, कुछ यादें साझा करना चाहिए?
4: सेकंड स्टैंडर्ड से ही देख रही हूँ मैं वो बच्चे को, इतना मासूम, इतना प्यारा लड़का। मतलब आई वॉज वेरी हैप्पी कि उसका मतलब रिश्ता पक्का हो गया, बट वो लड़की ने जो किया दैट वॉज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। और जो स्टूपिड रीजंस उसने दिए है कि बाल्ड है और तोतला बोलता है, वो सब बातें तो जब रिश्ता पक्का हुआ था तो वो सब क्लियर हो गई थी, और वो ये सब हरकतें कर रही है, ये सब झूठ बोल रही है। दिस इज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग फॉर एवरीबडी इन द फैमिली।
0: केतन के पिता विशाल अग्रवाल अपील कर रहे हैं कि उनके बेटे के इंसाफ के लिए 18 जून को जो लोग लोहगढ़ किले में मौजूद थे वो गवाही के लिए आगे आए। विशाल अग्रवाल बता रहे हैं कि वारदात वाले दिन कई लोगों ने उन्हें फोन किया था।
6: सिर्फ एक ही अपील करूंगा, मेरा 26 साल का बेटा आज जिस भी वजह से उन्होंने बिना कारण से मार डाला, जिसको कारण पता नहीं चला, मेरे बच्चे की कहीं पे भी एक गलती नहीं थी। मैं तो शादी करने चला था, उसकी घर में बेटी बहू लाने चला था, मुझे नहीं पता था कि मेरा बच्चा ही खो दूंगा मैं। तो मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि उसको जस्टिस मिले, उसके अपराधियों को फांसी की सजा मिले, यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है।
0: अभी कई सवाल हैं जो सिया और चेतन के अंदर दबे हुए हैं, जिन्हें पुलिस को पता लगाना है। इस मामले में सबसे अहम कड़ी है दोनों का मोबाइल, जिससे कई जानकारी सामने आ सकती है।
3: विशेष में रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज
7: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: Shop the Sherwin-Williams 4th of July sale and get 30% off paints and stains June 26th through July 6th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only, some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
10: Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices, so you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here on TuneIn. Beautiful.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
3: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है,
4: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
3: जिंदल स्टेनलेस, इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।

0: इनकी निगाहें नेशन पे नहीं है, डोनेशन पर हैं। जो लोग ये कहते थे नेशन फर्स्ट, उनके लिए लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट है। क्या कोई कल्पना कर सकता था श्रद्धा और आस्था से इतनी बड़ी खिलवाड़। इनकी चतुराई है, चालबाजी है और सीसीटीवी फुटेज है कि कितनी बार सीसीटीवी बंद किया गया है, कितनी बार वो आंकड़े सामने आपके आए हैं। तब और क्या बताया जाए।
1: अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आज जब राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है, तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

0: राम लला के घर डकैती डालने वालों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। एसआईटी की जांच के बाद राम मंदिर ट्रस्ट से इस्तीफे हुए तो वहीं अब पुलिस भी एक्शन मोड में दिख रही है। अयोध्या पुलिस ने उन आरोपियों के घर धावा बोला जो अयोध्या में रहते हैं। अयोध्या पुलिस ने टिन्नू यादव, मनीष यादव, अनुकल्प मिश्रा, लोकुश मिश्रा, करुणेश पांडे और रामाशंकर मिश्रा के घर छापा मारा। उनके घर वालों से पूछताछ की। जी आरोपी घर पर कब आते हैं, किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, ये सारी जानकारियां पुलिस ने इकट्ठा की हैं। आरोपी रामाशंकर मिश्रा के पिता अयोध्या में ही एक मंदिर में पुजारी हैं। पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की। रामाशंकर के परिवार वाले कह रहे हैं कि वो यहाँ आता ही नहीं, सालों से घर आया नहीं, किराए का मकान लेकर वहीं रहता है। चढ़ावा चोरी के आरोपियों से करीब 80 लाख की बरामदगी हो गई है। 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से बरामद होने की बात सामने आ रही है।
1: टिन्नू यादव के इस हॉस्टल से ही, दुर्गापुरी कॉलोनी का ये अयोध्या में ही दुर्गापुरी कॉलोनी ये हॉस्टल है, और इस हॉस्टल में यूं तो यहाँ अयोध्या विश्वविद्यालय के आसपास के कॉलेज के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर दो कमरे हैं जो टिन्नू यादव ने अपने निजी यूज के लिए रखे हैं। कहने को तो दोनों कमरे पूजा घर है, उसका अपना कमरे उनके कब्जे में है, लेकिन कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद, जब गुरुवार देर रात टिन्नू यादव को अयोध्या पुलिस ने FIR दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया, तो शुक्रवार की सुबह उसको यहाँ लाया गया, और पुलिस के अनुसार जो दस्तावेज, जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है कि लगभग 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से बरामद हुए हैं।
0: इस मामले में एक गिरफ्तारी अनुकल्प मिश्रा की भी हुई है, जिसकी देखरेख में नोटों की गिनती की जाती थी। अनुकल्प मिश्रा ने 2 साल पहले 40 लाख का एक घर लिया था, जहां आज तक की टीम पहुंची।
2: मेरे भाई को फंसाया जा रहा है, कोई से शादी हुई थी चाचा की, 10 साल से इनका तेज चल रहा है, उनका मैटर चाचा चाची का है, वो अलग जाने।
0: उधर अनुकल्प के रिश्तेदार पैसों को लेकर शक जाहिर कर रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में CCTV कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जहां टिन्नू यादव की तरह UP पुलिस के वायरलेस डिपार्टमेंट के RMO अर्जुन देव की भूमिका पर भी रिपोर्ट सामने आई है। जिस कमरे में नोट गिने जाते थे और चोरी हो रही थी, उसका कंट्रोल RMO को दिया गया था। अर्जुन देव का पिछले 17 सालों से ट्रांसफर नहीं किया गया, जिसकी वजह उसका चंपत राय से करीबी होना बताया जा रहा है। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

0: मंत्र संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, हिंद महासागर हमें बांटता नहीं जोड़ता है। प्रधानमंत्री को मिला पर्यावरण संरक्षण का सर्वोच्च सम्मान। चढ़ावा चोरी को लेकर अखिलेश ने बीजेपी को फिर घेरा, कहा इनके लिए नेशन नहीं डोनेशन फर्स्ट। सीएम योगी ने दी चुनौती, बोले हिम्मत है तो कृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर बोले। पेपर लीक के विरोध में दिल्ली में यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट, मांगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। मुंबई में भी शिक्षा मंत्री के घर के बाहर हल्ला बोल। केतन अग्रवाल हत्याकांड में क्राइम सीन हुआ रिक्रिएट, मुख्य आरोपी सिया को लेकर लोहगढ़ किले में पहुंची पुलिस। 18 जून की वारदात पर सवाल जवाब। दो देशों में हवाई हादसों से अड़कम, फ्रांस में प्लेन क्रैश 11 लोगों की मौत। सऊदी अरब में हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश में 14 लोगों की जान गई।
1: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह, आज तक में आपका स्वागत है। अयोध्या जिसने बीजेपी को सत्ता के करीब तक पहुंचाया, अयोध्या जिसने बीजेपी को देश की संसद में 2 से 182 तक पहुंचाया, अयोध्या जहां राम मंदिर बनवाकर भी लोकसभा के अधीन जो क्षेत्र आता है वहां बीजेपी 2024 में जीत नहीं पाई, वही अयोध्या क्या एक बार फिर 2027 में राजनीति के उस युद्ध क्षेत्र का मुद्दा बन गई है जिसमें राम की राजनीति करने वाली बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, और जो राम की राजनीति में पहले आरोपों के साए में रहे वो खुद को बड़ा राम भक्त बड़ा सनातनी बता रहे हैं। अयोध्या के राम मंदिर का चढ़ावा विवाद क्या बीजेपी को देश के सबसे बड़े राज्य के 8 महीने में होने वाले चुनाव में चुनौती बन चुका है, जहां योगी आदित्यनाथ को मैदान में अब उतरना पड़ रहा है।
2: रमन्ते यस्मिन् इति राम।

0: का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है।
1: इतना बड़ा जो घोटाला बोले हैं, या उसको कोई और रूप देखे।
2: राम मंदिर चलावा चोरी के मामले में गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों के घर पर, जो अयोध्या के रहने वाले हैं, उनके घरों पर छापेमारी की जा रही है।
3: जिन राक्षसों ने ये काम किया है उनको सरेआम फांसी पर लटकाया जाए। सब लोगों की यही मांग है, ये महापाप है, चंदा चोरी।
4: इस वक्त मैं मौजूद हूँ अनुकल्प मिश्रा के घर के बाहर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है।
5: जो बड़ी बड़ी मछलियां उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।
2: रमाशंकर मिश्रा के घर पर मौजूद हूँ। ये रमाशंकर मिश्रा के परिजन हैं, पिता हैं, भाभी हैं, बहन हैं, ये तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है।
6: इनके लिए धन ही धर्म है, धर्म बाद में पहले धन।
7: खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है।
4: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में आरोपी अविनाश शुक्ला के अयोध्या वाले घर पे, जहां पर पुलिस फोर्स पहुंची है आसपास पड़ोसियों से पूछताछ करने के लिए और जानकारी जुटाने के लिए।
2: जो पुलिस टीमें आई हैं उनकी भी तलाशी ली जा रही है कि घर में जाते समय और घर में वापसी जाते समय जो पुलिसकर्मी हैं उनकी भी जांच की जा रही है।
8: 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में खरीद ले रहा है, तो भैया ये तो पूरी लूट चल रही है।
6: आप मंदिर की दानपेटी चुराते हो, लाखों करोड़ रुपया चुराते हो, वो पैसा राजनीति में आता है और उसी पैसे से आप सांसद विधायक खरीद लेते हो, पार्टियां तोड़ते हो।
2: सभी 8 आरोपियों में से 7 आरोपियों के घर से लगभग 80 लाख रुपए बरामद किए थे। अब सभी आरोपी जुडिशियल कस्टडी में हैं और उससे पहले ही अयोध्या पुलिस ने सभी आरोपियों के घर से इसी तरीके से छापेमारी की है।

0: अद्भुत अयोध्या, अलौकिक अयोध्या, अतुलनीय अयोध्या, अकल्पनीय अयोध्या, अयोध्या जहां दीप जले जब राम वनवास पूरा करके रावण को हरा कर लौटे,
1: अयोध्या नायक श्री प्रभु राम, राम राम राम राम राम,
0: अयोध्या जहां वर्तमान का राम मंदिर इतिहास के बड़े राम मंदिर आंदोलन के साथ बन पाया है, वो आंदोलन जहां राम मंदिर की सियासी नींव के साथ बीजेपी का भी सत्ता निर्माण हुआ है,
2: कि जहां राम का जन्म हुआ था,
3: आप नारा लगा रहे थे कि मंदिर वही बनाएं,
2: राम जन्म स्थान के साथ हमारी जय पराजय जुड़ी हुई है,
3: जो मंदिर के पहले विरोधी थे वो भी अब कहने लगे हैं कि अयोध्या में मंदिर तो बनना चाहिए,
2: तो ये मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं, ये भारत के विजय पराजय का झगड़ा है।
0: भारत की जय का झगड़ा जिस अयोध्या के राम मंदिर को लेकर 90 के दशक में बताया गया, राम और राजनीति का वो रिश्ता फिलहाल करीब 4 दशक का, जहां 1984 में देश में 2 सीट जीतने वाली बीजेपी 1989 में राम लहर पर सवार होकर 85 सीट तक पहुंचती है, 1991 में 120 सीट लोकसभा में जीतती है, इसके बाद दौर आता है जब बाबरी मस्जिद गिरा दी गई, 1996 में बीजेपी की सीटें बढ़कर 161 हुई, 1998 में 182 सीटें, 1999 में 182 सीटें, गठबंधन के साथ सत्ता में 5 साल सरकार बीजेपी चलाती है और फिर नई सदी नया दौर, 2004 में बीजेपी की सीटें घटने लगी, 2009 में 116 सीटें आई, 2014 में मोदी लहर के साथ 282 सीट बीजेपी जीतती है, पहली बार अपने दम पर बहुमत हासिल होता है, इसके बाद राम मंदिर पर ऐतिहासिक फैसला और निर्माण के दौर में 2019 में 303 सीट, 2024 में बीजेपी अचानक 240 सीट पर सिमट जाती है। राम मंदिर में जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा के बावजूद बीजेपी अचानक खुद अपने दम पर बहुमत से दूर हो जाती है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के 4 महीने के भीतर अवध की अयोध्या वाली लोकसभा सीट ही नहीं, आसपास की तमाम सीटें बीजेपी हार जाती है।
4: सभापति महोदय, इनको देख लीजिए, इनको देख लीजिए, ऑफिस बैठ जाओ, और कम से कम हमारे उत्तर प्रदेश के साथियों ने कम्युनल पॉलिटिक्स को अंत किया है वहां पर जहां से कभी इन्होंने शुरू की थी।
5: सर नमस्कार, अयोध्या ने आपको मैसेज भेजा, अयोध्या ने।
0: ये नरेंद्र मोदी की लहर रही जिसने 2024 में यूपी में ऐतिहासिक सीटें जितवाने के बाद 2017 में बीजेपी को विधानसभा में नया इतिहास रचवाया, 300 के पार पहुंचवाया। लेकिन जिस अयोध्या का श्रीराम मंदिर 2024 में बनवाकर भी बीजेपी को 2024 लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश से लगा, क्या उसी तरह अयोध्या के मंदिर पर धर्म ध्वजा लहराकर पूर्णता मंदिर को दिलाकर भी 2027 से पहले राम मंदिर पर बीजेपी घिर गई है? क्या यही वजह है कि 2027 के चुनावों को ध्यान में रखकर योगी आदित्यनाथ इस वक्त सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं? योगी आदित्यनाथ इस वक्त एक तरफ SIT बनाकर जांच कराने के बाद किसी दोषी के ना बचने की गारंटी देते हैं, दूसरी तरफ चढ़ावा चोरी विवाद में विपक्ष के आक्रमण का जवाब। एक तरफ योगी आदित्यनाथ अब तक 2 बार खुलकर कह चुके कि आस्था से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के वार के बदले इतिहास याद कराकर हिंदू वोट बंटने से रोकने की कोशिश करते हैं।
6: 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था, मैंने तब भी कहा था अयोध्या पर आक्षेप मत करो, और अयोध्या के बारे में जो कदपय समाचार मिल रहे थे हमने कहा था SIT गठित की गई है, SIT की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी, और आपने देखा होगा SIT की रिपोर्ट आई तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई, और मैं आश्वस्त करता हूं जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे।
0: अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी अयोध्या चढ़ावा चोरी विवाद में हुई है। गिरफ्तार लोगों के घर छापेमारी चल रही है। फिर चंपत राय और अनिल मिश्रा ने राम मंदिर ट्रस्ट से इस्तीफा दिया, लेकिन सवाल है कि क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा तक की जांच सरकार कराएगी? क्या FIR में आगे नाम चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव का होगा?
6: जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकारे नहीं, सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा, किसी को छूट नहीं दी जा सकती।
0: तो क्या जब सोमवार को SIT की 15 दिन की जांच पूरी होने जा रही है और दूध का दूध पानी का पानी करने वाले योगी आदित्यनाथ के दावे की तारीख सोमवार को पूरी हो रही है, तो आगे चढ़ावा चोरी विवाद की जड़ तक जांच पहुंचेगी या फिर विपक्ष के हाथ ही मौका रहने वाला है?
7: एक आस्था का स्थान है, केवल भारतीयों का नहीं बल्कि दुनिया में जितने भी सनातनी हैं या हमारे भारत की संस्कृति को समझते हैं, उनके लिए एक श्रद्धा के भाव के साथ एक धार्मिक नगरी होने की वजह से एक भावनात्मक जुड़ाव रहा है। और ये जो खबरें आई हैं और जो जानकारी सूचनाएं मिल गई और सरकार को झुक करके उन्हें SIT बनानी पड़ी, उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है, पूरे देश की जनता दुखी है और जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है।
6: यानी भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे आस्था तुम बताओगे हमें आस्था? रामनवमी पे दंगा करवाते थे, श्री कृष्ण जन्मोत्सव को बैन करते थे, कावड़ यात्रा को नहीं निकलने देते थे, ये लोग कहते हैं आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ।
0: योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि एक तरफ जांच से जवाब देना है तो दूसरी तरफ सियासी आंच से 2027 के चुनाव को बचाना है, इसीलिए शायद 19 जून को अयोध्या में चढ़ावा विवाद के बीच विश्वास के संकट के मोर्चे पर खड़े योगी खुद लिफाफे में दान मंदिर में करते हैं। संदेश ये देना चाहते हैं कि श्रीराम को अर्पण में न भाव में मिलावट हो सकती है, न भगवान को अर्पित चढ़ावे की चोरी की जा सकती है।
8: योगी आदित्यनाथ बार बार अगर कहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी चढ़ावा मामले में कर देंगे तो इसकी एक वजह है, राम की राजनीति की बात जब भी आती है तो वाल्मीकि शबरी निषाद राज का नाम जरूर लिया जाता है। मकसद पिछड़ों दलितों के वोट को साधना रहा है, बीजेपी राम के नाम पर जाती नहीं बल्कि हिंदू के नाम पर वोट जोड़ती रही है, लेकिन अयोध्या मतलब अवध के क्षेत्र में ही जातियों में हिंदू के बंटने से बीजेपी लोकसभा चुनाव में सीटें घटने की कड़वाहट चख चुकी है। क्या यही वजह है कि अयोध्या के मामले में बीजेपी बहुत तेजी से एक्शन लेने लगी ताकि 2024 वाला असर 2027 में न दिखे?
9: 72 एकड़ का ये मैदान भगवान को समर्पित हो गया, इसका प्रबंधन करने के लिए भारत सरकार ने ट्रस्ट बनाया। ये मंदिर प्रारंभ से विचार आया सभी प्रकार के प्राकृतिक आक्रमण सहने के बावजूद भी 1000 साल तक खड़ा रहे, भूकंप, अतिवृष्टि, सरयू नदी का कोई जल प्रलय हो गई, मार्ग बदल गया, जमीन की नमी पत्थर ने सोख ली और पत्थर गीला हो गया, लोहे से बिल्डिंग की आयु घटकर 100 साल रह जाती है तो लोहा भी नहीं, कंक्रीट में सीमेंट की आयु 150 साल होती है इसलिए जमीन के ऊपर कंक्रीट भी नहीं, ऐसी सब सावधानियां रखी गई हैं।
0: जिस राम मंदिर का भूकंप कुछ न बिगाड़ सके ऐसा बनाया गया, ना ही बाढ़ आंधी तूफान कुछ कर सके, उसी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हो जाने से संकट ऐसा, जहां संत हो या भक्त हो सबके विश्वास को चोट पहुंची।
10: और जिन लोगों ने किया उनको दंड नहीं मिलना चाहिए?
11: राम राम दंड देते हैं अपने आप
12: है। हिंदू धर्म के तो बहुत ज्यादा हमारा एक लॉस है, नुकसान है, क्योंकि मंदिर बनने के बाद बहुत बड़ा मैसेज देता पूरे दुनिया में
13: और आज की रेट में अगर बात करूँ तो एक बहुत ज्यादा हमारा जो है ना छवि धुंधली हो रही है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, सिर्फ ट्रस्ट की बात

0: मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री राम जी जैसे बताएंगे उस रास्ते चलेंगे हम लोग, उसमें क्या है।
1: फिर देखिए मायावती क्या कहती, वो कहती है कि ब्राह्मणों की चिंता तो वही करती है। मायावती ने कहा कि जब से बीएसपी ने ब्राह्मणों को टिकट देना शुरू किया तब से समाजवादी पार्टी की नींद उड़ाने वाली बेचैनी देखी जा रही। ये सब कुछ इसलिए क्योंकि अवध पर सबकी नजर है। जहां सीट का सियासी गणित देखेंगे तो सब साफ हो जाता है। जिस अवध में 118 विधानसभा सीट है वहां बीजेपी की बड़ी बढ़त रही है, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी अवध के इस इलाके में आधा हो गई, सहयोगी जीरो हो गए। समाजवादी पार्टी विधानसभा सीटवार देखें तो 74% बढ़ गए, सहयोगी कांग्रेस हीरो हो गई, जीरो से सीधे 22 सीटों पर बढ़त दिखी। 2022 में एनडीए अवध के विधानसभा क्षेत्रों में 87 सीट जीतती है, 2024 में लेकिन सिर्फ 42 सीट पर एनडीए बीजेपी आगे रही। समाजवादी पार्टी का गठबंधन 2022 में 31 विधानसभा सीट जीत पाया था, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान 76 विधानसभा सीटों पर आगे दिखने लगा। क्या यही वजह है कि जब विपक्ष हिंदू वोट की चिंता में डूबा दिखने लगा तो मुख्यमंत्री को कहना पड़ा भरोसा रखिए कोई दोषी बचेगा नहीं।
0: चोर चोर सौतेले भाई, जिन्होंने चुराई राम की पाई, देखो देखो जा रहा वो भाजपाई, देखो जा रहा वो भाजपाई जिसने खाई राम की पाई।
2: अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है। अरे भूल जाओ, आपने तो थानों में और जेलों में कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को भी रोक दिया था।
1: ये राम मंदिर आंदोलन ही रहा जिसने बीजेपी को पहली बार बहुमत दिलाकर सत्ता तक लखनऊ में पहुंचाया था। 1991 यानी रथ यात्रा और कार सेवा की शुरुआत के साथ 221 सीट बीजेपी उत्तर प्रदेश में जीतती है जब राम लहर थी। फिर इसके अगले साल 1992 में बाबरी मस्जिद गिर जाती, लेकिन उसके बाद 1993 में बीजेपी 177 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी सरकार नहीं बना पाती। 1996 में 174 सीट बीजेपी यूपी में जीतती। 2002 आने तक जातिगत समीकरण इतने बदल जाते हैं कि यूपी में बीजेपी की सीट घटकर 88 हो जाती। 2007 में 51, 2012 में 47, लेकिन फिर 2017 से हिंदुत्व की नई बयार चलती, 312 सीट बीजेपी जीतती। 2022 में राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो चुका था, लेकिन बहुमत के बावजूद सीटें घटी थी, 255 सीट बीजेपी जीती। अब 2027 में क्या राम मंदिर का चढ़ावा विवाद संकट ना पैदा करे, इसलिए मुख्यमंत्री जनता को भरोसा भी दे रहे हैं और विपक्ष को जवाब भी।
0: और जो चोरी किया गया पैसा है, जो राम धन है, जो राम धन है, उसका जनता हिसाब मांग रही है।
2: अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए।
0: इनकी निगाहें नेशन पे नहीं है, डोनेशन पर हैं। जो लोग ये कहते थे नेशन फर्स्ट, उनके लिए लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट है।
2: अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें।
3: राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सबसे ज्यादा सवालों में है, जिसकी जिम्मेदारी चंपत राय के पास थी। वो चंपत राय जो 1975 के बाद आरएसएस वीएचपी से जुड़ गए, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया, आजीवन अविवाहित रहे, उन चंपत राय के प्रमुख रहते। ट्रस्ट की नाक के नीचे मंदिर का दान और चढ़ावे की रकम के हिसाब किताब में हेर फेर कैसे हो गई, ये सब जानना चाहते हैं।
4: इस तरह की दुर्घटनाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब कोई अपनी बहुत परिश्रम की कमाई में से कुछ प्रभु के लिए अर्पित करता है तो उसका उसका भाव भगवान के लिए अर्पित करने का होता है। इस आस्था और इस विश्वास को तोड़ने वाले, बहुत बड़ा महापाप करते हैं। ऐसा महापाप सबके

0: प्रति संदेह पैदा करता है।
1: राम मंदिर आंदोलन की सबसे प्रमुख और ओजस्वी आवाज में से एक रही साध्वी रितंभरा राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले से आहत तो हैं, लेकिन फिर भी चंपत राय को सवालों से परे मानती हैं। सवाल है क्यों?
0: पंजी के बारे में जब भी ये सवाल खड़े होते हैं तो मैं तो असहज हो जाती हूँ, क्योंकि उनकी निष्ठा, उनका समर्पण हम लोगों ने लंबे काल तक देखा है, उनके परिश्रम को भी देखा है।
1: चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव भले गिरफ्तार हो चुके हो, लेकिन फिर भी चंपत राय की निष्ठा पर सवाल उठाने वालों पर बीजेपी के नेता मंत्री बरस उठते हैं। सवाल है क्यों?
2: जिन लोगों ने अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया, जो अपना परिवार नहीं समझे, अपने बच्चा नहीं समझे, पूरे परिवार समाज छोड़ करके इस मंदिर के लिए, समाज के लिए अपने आप को समर्पित किए, ऐसे लोगों पर वो लाछन लगाते हैं। वो ऐसे लोगों पर आरोप लगा रहे हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन को इस समाज के लिए समर्पित कर दिया, सनातन के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। जंगलों में रह करके, भूखे रह करके जिन लोगों ने संगठन की खड़ा किया, उन लोगों पर आरोप लगाते हैं।
1: चंपत राय ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव के पद से भले इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन इससे चढ़ावा चोरी से जुड़े सवाल खत्म होने का नाम नहीं लेते।
3: अब विलंब क्यों कर रहे हैं? राम जी ने केवल 3 दिन तक प्रतीक्षा किया था। राम जी केवल 3 दिन तक प्रतीक्षा किए थे और आप 11 दिन का समय मांग रहे हैं? कहाँ पे सो गए हैं? ध्यान दीजिएगा, बिना न मानत जलधि जड़, गयो 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस बिन भय होई ना प्रीत। 46 घंटे के सीसीटीवी के कैमरा में 70 बार चोरी पकड़ी गई है। छोटी मछलियों के ऊपर तो आपने जाल डाला, बड़ी मछलियों के ऊपर जाल कब डालेंगे? राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, अयोध्या के कारण नहीं बोलेंगे, लेकिन चंदा चोरो सुन लो, हनुमान जी पूरे परिवार सहित मार डालेंगे।
4: 140 करोड़ लोगों की आस्था को लूटने के बाद किस तरह से जनता को गुमराह कर रहे हैं? मेरा सवाल यह है कि चंपत राय जी ने अगर इस्तीफा दिया, अनिल मिश्रा जी ने इस्तीफा दिया है, तो इस्तीफा सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? किसको संबोधित करते हुए इस्तीफा दिया है? ट्रस्ट के अध्यक्ष को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, या ट्रस्ट के किसी सदस्य को, या SIT कमेटी को? किसको चंपत राय जी ने, अनिल मिश्रा जी ने अपना इस्तीफा सौंपा है?
1: लेकिन यहाँ बड़ा सवाल चंपत राय के प्रति राम मंदिर आंदोलन से जुड़े नेताओं, साधु संतों और संघ परिवार के लोगों का भरोसा है, जिसने उन्हें पहले इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और अब भी चंपत राय की निजी निष्ठा को लेकर विश्वास डिगा नहीं है। आखिर इसकी वजह क्या है?
0: लेकिन वही वाली बात है कि कभी कभी ऐसा होता है कि चंदन के वृक्ष पे भी सर्प लिपटे होते हैं जो अपने विष का त्याग नहीं कर पाते। आसपास वाले लोगों ने इस तरह का दुराचरण किया कि एक ऐसे व्यक्ति को भी प्रश्नों के कटघरे में आज हम खड़ा देख रहे हैं, जो देख के अच्छा नहीं लग रहा।
5: पत्थर आया है, स्टोन डस्ट आई है, ये बुंदेलखंड से आई है, बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में भी है, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में भी है, ये ग्रेनाइट कर्नाटक का है, तेलंगाना का है, दो राज्य और जुड़े। मंदिर हल्के गुलाबी रंग का बलुआ पत्थर है, ये राजस्थान के भरतपुर जिले की तहसील का है।
1: अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की जानकारी देना,
6: ये उस भूमि का मानचित्र है जो भूमि सर्वोच्च न्यायालय के डायरेक्शन से भारत सरकार ने ट्रस्ट को सौंपी।
1: या फिर राम मंदिर की नींव से लेकर साकार रूप तक की गवाही,
6: नॉर्दर्न पार्ट कितना नैरो है ये भी देख लीजिए, यहाँ कितना वाइड है, यहाँ कितना नैरो
1: है। अयोध्या में हर चीज चंपत राय की आंखों के आगे से गुजरी है, लेकिन रामलला के पटवारी की उपाधि हासिल करने वाले, अयोध्या के इतिहास के व्यापक जानकार होने से अयोध्या का ज्ञान कोश कहे जाने वाले चंपत राय खुद को कटघरे में खड़ा होने से रोक नहीं पाए। जबकि मंदिर निर्माण से लेकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान तक हर काम चंपत राय की आंखों के सामने से होकर गुजरा, शायद इसलिए सबसे ज्यादा सवाल चंपत राय पर उठते हैं।
3: निश्चित तौर से दाल में काला है, इन लोगों ने चोरी किया है, राम को आहत किया है, अयोध्या को आहत किया है, संतों को आहत किया है। ये जो 8 लोग पकड़े गए हैं, कल 80 लाख रुपया बरामद हुआ लोगों के पास, जो कि जिनको इनके ऊपर बुलडोजर कब चलेगा, और कोई केस होता बुलडोजर चला देते। और चंपत राय अनिल मिश्रा से कहिए कि ये जो है कालशोकपुरम छोड़े।
1: आरोपों की आंधी ने भले ही चंपत राय को अपने पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन केमिस्ट्री के प्रोफेसर रह चुके चंपत राय अब भी एसआईटी के सवालों से दूर हैं। आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब चंपत राय के सार्वजनिक जीवन में छिपा, जिसमें निजी महत्वाकांक्षा और संपत्ति जुटाने जैसी चीजें उनकी जिंदगी का कभी हिस्सा ही नहीं। चंपत राय का जन्म 1946 में उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में होता है। वो बचपन से आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित रहे। उच्च शिक्षा के बाद उन्होंने धामपुर के आश्रम डिग्री कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर के रूप में शुरुआत की, लेकिन इमरजेंसी लगने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। साल 1975 के आपातकाल के दौरान हिरासत में ले लिया गया। उस दौरान वो 18 महीनों तक अलग अलग जेल में रहे। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से विश्व हिंदू परिषद के काम में लग गए। साल 1991 में अयोध्या से गहरा लगाव शुरू हुआ। संगठन में भूमिका लगातार बढ़ती गई। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस के दिन हुए कार सेवा में सक्रिय रूप से चंपत राय दिखे। राम मंदिर आंदोलन में उनके अथक योगदान को देखते हुए विश्व हिंदू परिषद ने उन्हें 1996 में संगठन का केंद्रीय सचिव नियुक्त किया। 2002 में वो अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव बने और बाद में अंतर्राष्ट्रीय महासचिव। उन्होंने अपना पूरा जीवन आरएसएस, वीएचपी और राम मंदिर आंदोलन को समर्पित कर दिया और राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक बन गए। राष्ट्र सेवा के लिए उन्होंने कभी शादी नहीं की।
7: उनका जो 50 साल का जीवन है, इसको पक्ष भी जानता है, विपक्ष भी जानता है, और आम जनता भी जानती है, और देश की जनता भी जानती है। तो उनका जीवन जो है निष्ठापूर्वक, पारदर्शी, ईमानदारी का रहा है। जिस व्यक्ति ने सन 1980 में घर से नाता तोड़ के अपने स्कूल की प्रवक्ता की सर्विस, फिजिक्स के लेक्चरार थे आरएसएम कॉलेज में, उससे इस्तीफा दे के उन्होंने अपना जीवन सारा दान दे दिया, तो वो इस तरह की किसी भी तरह की हरकत नहीं कर सकता।
8: जब राम जन्मभूमि मामले की अदालतों में जोरदार पैरवी चल रही थी, तो राय अक्सर हिंदू पक्ष के वकीलों को रामलला के निवास से संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य को उपलब्ध कराने में मदद किया करते थे।
1: चंपत राय की छवि को देखते हुए उन्हें अयोध्या में राम मंदिर की देखरेख करने वाली संस्था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का महासचिव भी बनाया गया।
9: 1991 में जब चंपत राय को अवध प्रांत का क्षेत्रीय मंत्री बनाया गया, तो उन्होंने न सिर्फ अवध बल्कि अयोध्या के आसपास के जिले के लोगों को भी राम मंदिर आंदोलन से जोड़ा था। ये वो वक्त था जब अयोध्या और आसपास के लोगों को ही घोर निराशा थी। मंदिर आंदोलन के मुकदमेबाजी में चंपत राय ही थे जिन्होंने भरोसा जगाया कि हिंदू पक्ष भी जीत सकता है। चंपत राय ने न सिर्फ समर समाज बल्कि समाज के अन्य वर्गों के लोगों को भी इस राम मंदिर आंदोलन से जोड़ा, और कहा तो यहाँ तक जाता है कि राम मंदिर के लिए शुरू हुए घर घर ईंट मंगाने के अभियान के सूत्रधार भी चंपत राय ही थे।
1: यही वजह है कि जब राम मंदिर निर्माण का सपना पूरा हुआ, तो भूमि पूजन से लेकर इस्तीफा देने तक चंपत राय ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की जिम्मेदारी संभालते रहे। लेकिन राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में चोरी के इल्जामों ने पहली बार चंपत राय को बड़े कटघरे में खड़ा किया।
7: ये दीवार एक प्रकार की सुरक्षा दीवार है। टेम्पल लैंग्वेज में इस दीवार को परकोटे का कॉन्सेप्ट उत्तर भारत में नहीं है।
8: राम मंदिर को मिलने वाले चढ़ावे में जिस तरह 70 बार चढ़ावा चोरी की बात सामने आई, उसने एक बात साफ कर दी कि चंपत राय चढ़ावे की प्रक्रिया को पाक साफ रखने की सुरक्षा दीवार नहीं बना सके।
1: राम मंदिर को मिलने वाले दान को लेकर चंपत राय सवालों में हैं। चढ़ावे से करोड़ों रुपए से ज्यादा की रकम और सोना आभूषण गायब है। सवाल है कि चंपत राय की नाक के नीचे अगर ये सारा खेल होता रहा, तो क्या उन्हें भनक तक नहीं लगी?
10: बंधन को अनुभवी हाथों में देना होगा। यदि उसका पालन हुआ होता तो ये आज का दिन हमें नहीं देखना होता। निश्चित रूप से लोगों ने श्री चंपत राय जी की सादगी, सरलता और मानवता का दुरुपयोग किया है, भीषण दुरुपयोग किया।
1: इस समर्थन के बावजूद चंपत राय को इस्तीफा देना पड़ा। सवाल अब यह कि क्या FIR में चंपत राय का नाम होगा या उनकी भी आगे गिरफ्तारी होगी, क्योंकि उच्च पदस्थ ट्रस्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की राजनीतिक मांगों के बावजूद चंपत राय का नाम FIR में आरोपी के रूप में शामिल नहीं होता, जबकि चंपत राय खुद इन आरोपों को शुरुआत में खारिज करते थे।
11: राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है।
1: चंपत राय का यही बयान उनके लिए मुसीबत बन गया है, क्योंकि जिस तरह से बाद में 42 दिन के भीतर 70 बार चढ़ावे की चोरी की बात सामने आई, उनका पूर्व ड्राइवर और करीबी सहयोगी टिन्नू यादव गिरफ्तार हुआ, उसने सीधे चंपत राय पर इस्तीफे का दबाव बढ़ा दिया। लेकिन इसके बावजूद चंपत राय खुद से नहीं हटे। बाद में जब उन्होंने इस्तीफा दिया भी तो इसकी जानकारी गोविंद देवगिरी की तरफ से दी गई, जो खुद भी संतों के निशाने पर हैं।
3: गोविंद जी, आप तो गोविंद गिरी जी, आपको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि आप जो है कोषाध्यक्ष हैं। चोरी 200 करोड़ की हुई है। जब जनता पूछ रही है कहाँ गया, क्या सामान कहाँ गया, तो आप कह रहे हैं कि नहीं, ये सुरक्षित है, वो सुरक्षित है, वो सुरक्षित है। क्या मतलब सुरक्षित है? जब 20 बार आपसे पूछा गया कि चांदी के जो है काकभूषुंडी जी कहाँ हैं, तो चंपत राय बोल नहीं पाए, तो सीताराम दास को ले जाकर वहां बैठा के कह रहे हैं कि सीताराम दास जी, आप कहिए कि चांदी के काकभूषुंडी मेरे पास है। चांदी का काकभूषुंडी आप घर के लिए दिया था क्या, कि राम जी के लिए दिया था?
1: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र के इस्तीफों के बाद ट्रस्ट की पहली महत्वपूर्ण बैठक 11 जुलाई को अयोध्या में होगी। लेकिन SIT की शुरुआती जांच में जहां दावा है कि प्रबंधन में भारी नाकामी, लापरवाही दिखी है, क्या वहां पर चंपत राय के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी?
12: अयोध्या के चढ़ावा मामले में घोर लापरवाही बरती गई, यह बात SBI बैंक और ट्रस्ट के बीच बनाई गई SOP से भी पता चलता है। SIT की रिपोर्ट में भी इसका जिक्र है, जिसमें इसे जानबूझकर की गई लापरवाही के रूप में दर्ज किया गया। आज तक कोई सेराफेरी की इनसाइड स्टोरी पता चली है, जिससे पता चलता है कि सिर्फ दान में चढ़ाए गए रुपए ही नहीं बल्कि जेवरात भी चुराए गए।
1: टिन्नू यादव और मनीष यादव के घर 3 घंटे की जांच पड़ताल के बाद बाहर निकलते पुलिस अफसरों ने भले ही कुछ ना बोला, लेकिन राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जेल में बंद 8 आरोपियों के घर रविवार सुबह छापेमारी करके पुलिस ने इसे लेकर अपने इरादे साफ कर दिए। अब सवाल है कि क्या आरोपियों के घर से कुछ मिला? पुलिस ने जब छापेमारी की तो 8 आरोपियों में से 3 के घरों पर ताला लटका मिला। इसमें मुख्य आरोपी बताया जा रहा है टिन्नू यादव भी शामिल, जहां दबिश के लिए पहुंची पुलिस को ताला लटका मिला। टिन्नू यादव के घर के पास ही उसके भतीजे मनीष यादव का घर है, जहां पुलिस ने रेड की लेकिन बिना कुछ बताए चली गई। वहीं टिन्नू यादव के परिवार के लोग और पड़ोसी इस बात से नाराज दिखे कि टिन्नू यादव को क्यों मुख्य आरोपी कहा जा रहा है।
13: टिन्नू मेन अपराधी हैं, आपने क्लियर किया? कैसे पता कि ये अपराधी हैं? क्या साक्ष्य मिला आपको? कोई साक्ष्य मिला? ये तो हम लोग तो यहाँ के निवासी हैं, उनका रहन सहन हर चीज आप लोग जानते हैं, वो कैसे हैं, ये आवाज देख के आप अनुमान लगा सकते हैं वो कैसे होंगे।
14: मेरा कहना है कि वो निर्दोषी है, वो ऐसे नहीं है। अब हम झोरा ले, तुम कह दो नहीं नहीं मैं पैसा धरे हो, तो भैया लियो धरे। हम दर्शन, हम तो उनके कोई थोड़ी ना, हम तो हम पंडित हो यादव, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति नहीं है।
1: टिन्नू यादव का परिवार और पड़ोसी चाहे जो कहें, लेकिन अब तक टिन्नू और उसके भतीजे मनीष से 23 लाख रुपए बरामद किए जा चुके हैं, जिसमें से 20 लाख रुपए हॉस्टल के कमरे से मिले। सवाल है कि कुछ हजार की तनख्वाह वाले टिन्नू यादव ने अयोध्या में इतना बड़ा हॉस्टल कैसे बनाया? अयोध्या के दुर्गापुरी इलाके में टिन्नू यादव के इस हॉस्टल में फैजाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र किराए पर रहते हैं। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद टिन्नू को पुलिस इस हॉस्टल लेकर आई और यहां से करीब 20 लाख रुपए बरामद किए।
15: इस समय पर रामशंकर यादव टिन्नू यादव के उस हॉस्टल पर मौजूद हूँ। ये पहले आप ये हॉस्टल देखिए, और इस हॉस्टल में स्टूडेंट्स रहते हैं। ये विश्व हिंदू परिषद, ये नेम प्लेट लगी है श्री रामशंकर यादव, विश्व हिंदू परिषद VHP, पत्नी पूनम देवी, पुत्र रवि यादव। ये हॉस्टल है और जब इसके बाद ये तमाम कार्रवाइयाँ शुरू हुई, रामशंकर यादव को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद मनीष यादव जो इसका भतीजा है उसको भी गिरफ्तार किया गया, कुल मिलाकर 8 लोगों को गिरफ्तार करके अयोध्या पुलिस ने जेल भेजा है। ये रूम है, ये हॉस्टल है, इस हॉस्टल में जो अवध विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र हैं वो रहते हैं और वो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। फैजाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तमाम छात्र, इस तरीके के ये हॉस्टल्स हैं, यहाँ पे तमाम लड़के भी रहते हैं।
1: अयोध्या में पुलिस ने चंदा चोरी के मामले में रमाशंकर मिश्रा के घर पर भी छापेमारी की है। रमाशंकर मिश्रा की जिम्मेदारी दान पात्रों को काउंटिंग रूम तक पहुंचाने और उसकी निगरानी की थी, लेकिन आरोप है कि निगरानी करते करते रमाशंकर मिश्रा खुद हाथ साफ करने लगा, दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर चढ़ावे की रकम की चोरी शुरू कर दी। हालांकि परिजन ऐसे किसी भी आरोप से साफ साफ इनकार करते हैं।
9: राम मंदिर से चढ़ावा चोरी के मामले में पुलिस ने जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया उसमें एक शख्स रमाशंकर मिश्रा का भी है। रमाशंकर मिश्रा जो अयोध्या के ही मीरापुर इलाके के रहने वाले, मैं इस समय पर उस जगह पर मौजूद हूं जहां पर रमाशंकर मिश्रा का पूरा परिवार रहता रहा है। ये पूरी एक छोटी सी बगिया है और यहाँ पे तमाम परिवार रहते हैं। सर ये इलाका क्या कहते हैं?
16: राम सखा बगिया।
9: राम सखा, ये कैसे लोग रहते हैं, परिवार रहते हैं क्या?
16: ये हमारे मंदिर के पुजारी हैं।
9: अच्छा।
16: और पुजारी के नाते इनको कमरा उमरा दिया गया है, यहीं रहते हैं और इनका एक बच्चा रहता है और पुजारी जी।
9: तो ये रमाशंकर मिश्रा ही पुजारी, इनके पिताजी पुजारी?
16: इनके पिताजी पुजारी हैं।
9: अच्छा। रमाशंकर मिश्रा का परिवार सामने रहता है?
16: परिवार नहीं है,
9: भाई
16: है।
9: पुलिस के दस्तावेजों में जो पता लिखा है रमाशंकर मिश्रा का वो इसी इलाके का लिखा है, इसी जगह का लिखा है।
1: एक और गिरफ्तारी आरोपी अनुकल्प मिश्रा की हुई है जिसके घर आज तक की टीम पहुंचती है। बताया जा रहा है कि अनुकल्प ने 2 साल पहले ही 40 लाख का घर खरीदा।
17: मैं मौजूद हूं अनुकल्प मिश्रा के घर के बाहर। ये वही घर है जो 2 साल पहले उनके द्वारा खरीदा गया था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। सुबह से ही लगभग 6 टीमें अयोध्या पुलिस की अलग अलग आरोपियों के घर में छापेमारी करने का काम कर रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर हर एक लोकेशन पे यहाँ पर मौजूद है। ये अनुकल्प मिश्रा का घर है, वही जिनके पास ये जिम्मेदारी थी कि चढ़ावे की रकम को गिना जाए, बैंक में जमा कराया जाए। वहां अंदर इनकी बहन से और इनकी माँ से जो है वो पूछताछ की जा रही है। यही वो जगह है जहां पे कल आज तक की टीम पहुंची थी और दिखाया था कि कैसे 2 साल पहले ही ये 40 लाख रुपए का घर अनुकल्प मिश्रा द्वारा खरीदा गया था और आज पुलिस ने उसका संज्ञान लेके यहाँ पर पूछताछ के लिए अपनी जो है टीम भेजी है।
1: गिरफ्तार 8 आरोपियों में अगर टिन्नू यादव और मनीष यादव चाचा भतीजे हैं तो रमाशंकर मिश्रा और लवकुश मिश्रा पिता पुत्र हैं। मई अनुकल्प मिश्रा रमाशंकर मिश्रा का दामाद। 8 आरोपियों के अलावा ट्रस्टी अनिल मिश्रा पर भी सवाल उठे हैं, लेकिन उनके घर वाले तमाम आरोपों को खारिज करते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि SIT की जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होगा।
18: देखिए चंपत जी को तो मैं जानता हूँ, वो कोई है नहीं, उनके घर परिवार सब कुछ छोड़ करके उन्होंने ये किया है, यही सब करना होता तो ये सब ना करते। पिताजी को मैं जानता हूँ, सब शुरू से ही जब संगठन में थे तभी से उन्होंने किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत किया है। लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते इस पे मैं कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि SIT जाँच कर ही रही है, वो बताएगी क्या है क्या नहीं है। बाकी हम तो अपने लेवल से जानते ही हैं कौन क्या है क्या नहीं है।
19: आप बोलते हैं उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट या फिर आपकी या सब चिंता करने की जरूरत नहीं है, जैसे एक परिवार जो है जिस तरीके से भावना।
18: सपोर्ट क्या, चिंता कहीं करेंगे भाई, कुछ आदमी करेगा तब तो चिंता करेगा ना।
1: अयोध्या में चढ़ावा चोरी के मामले पर सारे देश की नजर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोषियों का पूरा हिसाब करने का वादा कर चुके हैं, जिसके बाद अब इंतजार SIT के जाँच नतीजों का है। सिमर चावला के साथ संतोष कुमार शर्मा, अयोध्या आज तक।
12: कहीं नोट बदले जाते रहे, कहीं CCTV के सामने ही कैमरा छिपाकर नोट बटोरे जाते रहे, कहीं चढ़ावे में आए जेवरात को हड़पा जाता रहा, यह सब SIT की शुरुआती रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। तो क्या इसी वजह से चंपत राय पर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है?
1: दान पेटी से बैंक तक राम मंदिर में चढ़ावा कैसे हुआ गायब? खुफिया कैमरे ने कैसे पकड़ा राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का पूरा खेल? राम मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ के रोज नए नए रिकॉर्ड को देखते हुए मंदिर की सुरक्षा और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए खबरों के मुताबिक 850 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। मंदिर को किसी भी हमले से बचाने के लिए यूपीएटीएस, आरएएफ, एसएसएफ, सीआरपीएफ, पीएसी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त तैनाती भी अयोध्या में रहती। तो राम मंदिर की बाहरी सुरक्षा तो पुख्ता कर दी गई, लेकिन मंदिर के अंदर चढ़ावा गिनने वालों ने ही बड़ा खेल कर दिया। अब आप जानना चाहेंगे कि आखिर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी कैसे हुई, तो इसको लेकर आज तक के पास एक्सक्लूसिव जानकारियां। मई महीने के आखिरी हफ्ते की बात, राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों ने बैंक में जमा हो रही रकम का ब्यौरा देखा और रोजाना दान पेटियों के खाली होने के क्रम की पड़ताल की, तो सबसे पहले चोरी का शक पैदा हुआ। दरअसल एक दान पेटी में 7-8 लाख रुपए एक बार में जमा होते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों के क्रम में तब 500 रुपए की गड्डियों में कमी देखी गई। इस तरह चढ़ावा गिनने वाले सीधे 500 के नोट पार कर रहे थे। दावा है कि चढ़ावे में हेर फेर करने वाले कर्मचारी आगे पीछे छोटे नोट गड्डी में लगाते थे, लेकिन बीच में 500 के नोट रहते थे। इस तरह चढ़ाने में लूट का ये खेल काफी समय से चल रहा था। चढ़ावे की गिनती में हेराफेरी का शक गहराया तो कुछ छिपे हुए कैमरे लगाए गए। इन हिडन कैमरे की एक सप्ताह की फुटेज देखी गई तो पता चला नोट गिनने की प्रक्रिया में लगे कर्मचारी सामने दिख रहे सीसीटीवी के सामने खड़े हो जाते हैं और दूसरा साथी बनाए गए नोटों की गड्डी में नोट चोरी करके उन्हें कपड़ों में छिपा लेता है, लेकिन फिर हिडन कैमरे में उनकी ये चोरी पकड़ी जाती है।
9: चढ़ावे की चोरी करने वाले जानते थे कि सीसीटीवी कैमरे कहां लगे हैं, इसीलिए वो बेधड़क होकर इन पैसों की चोरी करते और बंदर बांट कर रहे थे।
1: सबसे बड़ी बात यह है कि ये चोरी एक और तरह से हो रही थी। नोट गिनने वाले कर्मचारी हर गड्डी में एक्स्ट्रा नोट जमा कर देते थे। जब बैंक के पास रकम गिनने की बारी आती तो हर गड्डी के एक एक नोट को गिनने के बजाय सिर्फ गड्डियां ही गिनी जाती थी और उसका वाउचर बन जाता था। जब ये रकम बैंक में जमा कराने के लिए मंदिर से बैंक में ले जाते तो उस दौरान हर गड्डी में जो एक्स्ट्रा नोट लगाया गया था वो चुपचाप बाहर निकाल लिया जाता। इस तरह वाउचर से गड्डियों का मिलान हो जाता और गड्डियों में एक्स्ट्रा रखे गए पैसे को चोरी कर लिया जाता, क्योंकि नोट की गड्डियों में 100 की जगह ज्यादा नोट ये चोरी करने वाले लगा दे रहे थे।
9: अनकल्प मिश्रा चढ़ावे की रकम की वाउचर बनाने की प्रक्रिया से जुड़ा था और वो अपने बहनोई लवकुश मिश्रा की मदद से चढ़ावे की रकम को चोरी कर रहा था। यही वजह थी कि लवकुश मिश्रा के घर से पुलिस को 10 लाख रुपए बरामद हुए।
1: जैसे चंपत राय का ड्राइवर टिन्नू यादव व्यवस्थापक था, तो टिन्नू यादव ने अपने चचेरे भाई मनीष यादव को नोट गिनने की प्रक्रिया में लगा दिया। ऐसे ही सालों से काम कर रहे अनुकल्प मिश्रा ने अपने बहनोई लवकुश मिश्रा को लगवा दिया, जो दोनों अनिल मिश्रा के रिश्तेदार हैं। आज तक की टीम ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार अनुकल्प मिश्रा की चाची नेहा मिश्रा से बातचीत की, जिसमें वो बताती हैं कि राम मंदिर में काम करने के बाद से अनुकल्प और उसके परिवार की संपत्ति लगातार बढ़ गई थी।
9: क्या अचानक से ये पैसा बढ़ गया इन लोगों के पास से कि पहले से था?
20: ये जब से राम मंदिर में काम कर रहे हैं तभी से अचानक मैंने इनको बढ़ते देखा।
1: मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी के बाद से भले ही ट्रस्ट कटघरे में आ गया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट को काफी पहले ही चढ़ावा चोरी की आशंका हो गई थी। साल 2024-25 में ट्रस्ट और स्टेट बैंक के अधिकारियों के बीच चढ़ावा गणना के लिए जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किया गया उसका भी पालन नहीं किया गया।
9: अनकल्प मिश्रा चढ़ावे की रकम की वाउचर बनाने की प्रक्रिया से जुड़ा था और वो अपने बहनोई लवकुश मिश्रा की मदद से चढ़ावे की रकम को चोरी कर रहा था। यही वजह थी कि लवकुश मिश्रा के घर से पुलिस को 10 लाख रुपए बरामद हुए। इतना ही नहीं, चढ़ावा गिनने वाले हर शख्स किसी न किसी से परिचित था, किसी न किसी का रिश्तेदार था।
1: पकड़े गए अविनाश पांडे के सीसीटीवी फुटेज देखे गए और उसके तरफ से जो रकम चोरी की जा रही थी इस तारीख में बैंक में रकम जमा भी कराई गई है। राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी ने पूछताछ के दौरान मिलान कराया तो पुष्टि हुई कि चढ़ावा चोरी से जमा की गई रकम का एक हिस्सा अविनाश अपने बैंक खाते में जमा कर रहा था। जो श्रद्धालु दान पेटी में जेवरात दान करते थे उसको भी ये लोग चोरी कर लेते। बाली, झुमकी, नथ, बाल रूप, रामलला के कंगन, पैजनिया जैसे जेवरात भी चोरी किए जा रहे थे। सबसे अहम बात की चोरी पहले करते, बाद में नोटों की गिनती या दान पेटी में मिले जेवरात की लिखा पढ़ी होती थी। इस मामले में रामशंकर यादव और टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र ऐसे आरोपी हैं जो लगातार राम मंदिर ट्रस्ट के उस कमरे में आते जाते थे जहां दान पेटियां खुलती थी। तो अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी नहीं डकैती हुई, क्योंकि सिर्फ पैसों का गबन नहीं हुआ, सोना चांदी जेवरात भी चुराए गए, जो बताता है कि मंदिर में चढ़ावे को गिनने की पूरी प्रक्रिया में घनघोर लापरवाही बरती गई।
12: 7 जून को पहली बार अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा विवाद में आरोप लगे। 15 जून से जांच शुरू हुई, 23 जून को शुरुआती रिपोर्ट आई, 25 जून को FIR दर्ज हुई, 8 लोगों की गिरफ्तारी तक हो गई। लेकिन इसी बीच 2024 की पुरानी फाइलें लेकर राजनीति ने एंट्री की, जब SIT के सामने संजय सिंह ने राम मंदिर के नाम पर चंपत राय, अनिल मिश्रा समेत बीजेपी के कई लोगों पर सस्ती जमीन को महंगी दर पर खरीदने का आरोप लगाया।
1: चढ़ावा चोरी के बाद जमीन चोरी तक के आरोप अयोध्या में लगने लगे।
2: ये पूरे जमीन घोटाले के सबूत है,
21: बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है,
22: बड़े लोगों को बचाया जा रहा है और छोटे लोगों की जांच चल रही है।
23: क्या सरकार बस्ती में जैती बनाती है, जैती का
1: गुना। जिस राम मंदिर में रोज हजारों, साल में करोड़ों लोग आस्था विश्वास के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बाल रूप का दर्शन करते हैं, जहां वो श्री राम में अपनी श्रद्धा और भक्ति के रूप में तन मन धन सब समर्पित करते हैं, क्या उस मंदिर की जमीन से लेकर दान तक में भ्रष्टाचार की मिलावट की गई? ये सवाल SIT के बुलावे पर वहां आरोपों की फाइल सौंपने पहुंचे संजय सिंह की तरफ से उठा है, जो आरोप लगाते हैं कि सस्ते रेट पर स्थानीय लोगों से जमीन लेकर फिर कई गुना ज्यादा रेट पर उसे राम मंदिर ट्रस्ट को मिलीभगत करके बेचा गया। संजय सिंह के आरोपों के मुताबिक 18 मार्च 2021 को कुसुम पाठक हरीश पाठक से 4,97,76,000 रुपए की जमीन चंपत राय की तरफ से 8 करोड़ रुपए में खरीदी गई, जिसमें गवाह के रूप में बीजेपी के तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा शामिल थे। 18 मार्च 2021 को सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने कुसुम पाठक हरीश पाठक से गाटा संख्या 243, 244, 246 2 करोड़ में खरीदा और फिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को 18.5 करोड़ रुपए में बेचा। आरोपों के मुताबिक अहम बात ये कि जमीन खरीदने और बेचने दोनों मामले में गवाह बीजेपी के तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा थे। दावा है कि यहां पर 16.5 करोड़ का घपला हुआ। 20 फरवरी 2021 को गाटा संख्या 148 41,60,000 रुपए की जमीन जगदीश कुमार मिश्रा ने 2 करोड़ में चंपत राय को बेची। इस जमीन के भी गवाह ट्रस्ट के सदस्य अनिल कुमार मिश्रा थे। 21 फरवरी 2021 को बीजेपी के तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण ने महंत देवेंद्र प्रसाद आचार्य से गाटा संख्या 135 20 लाख रुपए में खरीदी और 11 मई 2021 को 2.5 करोड़ रुपए में चंपत राय को बेची। इस जमीन को बेचने में गवाह ट्रस्ट के सदस्य अनिल कुमार मिश्रा थे। आरोप है कि तत्कालीन मेयर के भतीजे को 2.30 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। 14 मई 2020 को बीजेपी के तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण को गाटा संख्या 36 सावित्री देवी से दान में मिली और ये जमीन 20 फरवरी 2021 को दीप नारायण ने चंपत राय को 1 करोड़ में बेच दी। 20 मई 2021 को महंत ब्रजमोहन दास ने गाटा संख्या 82 131 134 132 135 92,50,000 रुपए की जमीन चंपत राय को 5.60 करोड़ में दी। गवाह ट्रस्ट के सदस्य अनिल कुमार मिश्रा थे। 27 मार्च 2021 को 51,80,000 रुपए महंत रघुवर शरण की जमीन चंपत राय ने कितने में खरीदी, ये जांच का विषय है। 11 मई 2021 को गाटा संख्या 153 82 45,24,000 की जमीन यशोदा नंदन त्रिपाठी से चंपत राय ने कितने में खरीदी, ये जांच का विषय है। 2 अप्रैल 2024 को गाटा संख्या 247 2,92,86,000 की जमीन महंत मुरली दास से चंपत राय ने 23,61,00,000 में खरीदी, जबकि दावा है कि SDM की तरफ से ये सत्यापित किया गया कि जमीन नजूल की है। 16 नवंबर 2023 को 9 करोड़ की जमीन आलोक बंसल, मनीष बंसल, शिवारी बंसल से 55,47,31,000 रुपए में खरीदी गई। ये जमीन ट्रस्ट की तरफ से लगभग 47 लाख रुपए प्रति बिस्वा की दर पर खरीदी गई, जबकि इसी जगह के निकट उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दावा है कि किसानों से 4,40,000 रुपए बिस्वा में जमीन खरीद ली गई थी।
24: वो नजूल की जमीन 24 करोड़ में चंपत राय ने खरीद लिया, नजूल की जमीन जिसको SDM लिख के दे रहा है, उसके कागजात मैंने दिए। एक जमीन है 9 करोड़ की, वो 55 करोड़ 47 लाख रुपए में खरीद रहा है। जिस जगह पे योगी जी की सरकार किसानों को 4,40,000 रुपए मुआवजा दे रही है, उस जगह पे चंपत राय खरीद रहे हैं 47 लाख रुपए बिस्वा, और किसान पा रहा है 4,40,000 रुपए बिस्वा। उससे ज्यादा उपयोगी जमीन किसानों की है जो जो उसने खरीदी आलोक बंसल से, ये भी छोड़ दीजिए। फिर एक जमीन है जो 20 लाख रुपए में भाजपा के मेयर का भतीजा खरीदता है, और 20 लाख में खरीद के 2.5 करोड़ रुपए में चंपत राय को बेच दे रहा है। एक जमीन है जो भाजपा के मेयर का भतीजा दीप नारायण खरीदता है, उसको दान में मिलती है जमीन वो, और दान की जमीन वो उठा के 1 करोड़ रुपए में बेच दे रहा है चंपत राय को।
0: उन्हें ध्यान रखना चाहिए, वो SIT के सामने कागज दे रहे हैं, एक ऐसी संस्था के विरोध में दे रहे हैं जिसके ऊपर 65 करोड़ राम भक्तों ने विश्वास किया था। आप गली में खेलने वाले कुछ लोगों को कागज नहीं बांट रहे हैं, SIT को दे रहे हैं। जिम्मेदारी के साथ आपको शब्द प्रयोग करने चाहिए, जिम्मेदारी के साथ आरोप लगाने चाहिए।
1: अगर मान भी लें कि जमीनी विवाद सियासी है, लेकिन SIT की शुरुआती जांच तो गंभीर सवाल उठाती है। दावा है कि 27 अप्रैल 2026 से 5 जून तक यानी 42 दिन के भीतर 70 मौके ऐसे SIT को जांच में दिखे जब चढ़ावा चोरी का वीडियो CCTV में नजर आया। सवाल है कि जब 42 दिन में 70 बार चोरी का वीडियो हो सकता है, तो ये चोरी किस स्पीड से राम मंदिर में होती रही होगी, जहां चंपत राय कहते रहे कुछ उल्लेखनीय नहीं मिला, वह SIT को कैसे 70 बार चोरी 3 महीने में दिख गई।
12: चुनाव में अभी कम से कम 8 महीना बाकी है, सरयू से लेकर गोमती में तब तक बहुत पानी बह चुका होगा, लेकिन क्या अयोध्या का चढ़ावा विवाद तब भी चुनावी किनारे पर मजबूती से खड़ा रहेगा?
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: TuneIn has got all your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news.
7: You know, the breaking news is this started long before he even announced for president. It was
6: to live sports action.
25: To the near side corner, to wrap around, he scores!
6: And your favorite music.
26: You and I start guessing.
6: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
27: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
28: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
27: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
29: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
30: ये मजबूर हैं, पर आप नहीं। बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
31: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।
32: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती, तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
4: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
5: कूल फैंस के स्टाइलिश डिजाइन से घर की शान बढ़ाएं।
6: कूल फैंस जो दे आधी बिजली में ज्यादा हवा कम आवाज की है।
5: कूल फैंस स्मार्ट भी स्टाइलिश भी।

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, जिंदल साथी, सील साथी रे।

0: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है।
1: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
0: जिंदल स्टेनलेस, इंडियाज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।
2: हमने तब भी सवाल किया था,
3: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
2: हम आज भी सवाल करते हैं,
3: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
2: ऑपरेशन अग्नि,
3: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
2: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई, खबरदार सिर्फ आज तक पर।
4: In association with
5: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बीमार होने पर डॉक्टर की लिखी दवाई दवाई खा ली, सोते हैं कि ठीक हो जाएंगे, लेकिन ठीक कैसे होंगे जब क्वालिटी टेस्ट में ब्रांडेड कंपनीज की 157 दवाएं फेल हो गई। नकली दवाएं तो नुकसान कर ही रही हैं, असली के नाम पर भी धोखा बेचा जा रहा है। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट की एक ऐसी खबर से जिसकी चर्चा शायद ही कहीं हो रही है और होगी भी कैसे। हमने इस देश में हर चीज पर मिलावट का दौर देखा है, दूध, पनीर, सब्जी, खाने, मिठाई की चीजें, जितनी भी चीजें, सब में मिलावट का दौर देखा और अब तो अभ्यस्त भी हो गए हैं। हम चर्चा भी कर लेते हैं कि पता नहीं मिलावटी है क्या है, चलो खा लेते हैं। हमारे देश में राजनीति की खबरें, नेताओं के बयान, आरोप प्रत्यारोप, सियासी बयानबाजी अक्सर बड़ी खबर मानी जाती है, लेकिन जो खबर सीधे आपके घर, आपकी जेब, आपकी सेहत, आपकी जिंदगी से जुड़ी होती है वो अक्सर सुर्खियों से बाहर रह जाती है। लेकिन आज आप ब्लैक एंड व्हाइट में रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हम आपकी बात आज करने वाले हैं। हम अपने विश्लेषण की शुरुआत करने जा रहे हैं जिस खबर से, वो देश के करोड़ों परिवारों से जुड़ी हुई खबर है। ये खबर उन ब्रांडेड दवाइयों के बारे में है जिन्हें लोग डॉक्टर की सलाह पर और पूरे भरोसे के साथ मेडिकल स्टोर से खरीदते हैं। ये सोचकर खरीदते हैं कि कम से कम दवा की गुणवत्ता पर तो कोई सवाल नहीं होगा, लेकिन अब उसी भरोसे पर सवाल खड़े हो गए। भारत सरकार की संस्था है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसने अपनी ताजा रिपोर्ट में खुलासा किया है कि मई महीने में 157 दवाइयां क्वालिटी टेस्ट यानी गुणवत्ता के मामले में फेल हो गई। क्वालिटी टेस्ट में फेल होने का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये दवाइयां तय मानकों पर खरी नहीं उतरती। कई मामलों में पाया गया कि इन दवाओं में मौजूद ड्रग सॉल्ट की मात्रा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है, इनमें सॉल्ट कॉम्बिनेशन भी सही नहीं था। कल्पना कीजिए, यानी लोग जिन दवाइयों को इलाज समझकर खा रहे थे उन दवाइयों की गुणवत्ता ही सवालों के घेरे में थी। सबसे चिंता की बात तो यह है कि सूची में ऐसी दवाइयां भी शामिल हैं जो लगभग हर घर में इस्तेमाल होती हैं। और आज इन दवाइयों को मैं साथ भी लेकर आई हूं और मैं चाहती हूं कि आप भी जरा एक बार देख लें कि कहीं ये दवाइयां जो मेरे साथ यहां पर मौजूद है, हम एक एक करके आपको दिखाएंगे, ये दवाइयां आपके घर में भी तो नहीं है। तीन दवाएं हम लेकर आए हैं जिसमें भारत सरकार की एजेंसी बता रही है कि इसमें जो सॉल्ट्स का इस्तेमाल हो रहा है, जो मानक है, जो मापदंड है क्वालिटी के, वो सही नहीं पाए गए हैं। और ये जानते हैं, ये जो तीन दवाएं मैं लाई हूं आपको दिखाने वाली हूं, ये प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक है। ये बैक्टीरियल इंफेक्शन के लिए फटाफट डॉक्टर्स दिखते हैं बहुत सारे लोगों को, और ऐसा मुमकिन है कि आपने भी ये दवा खाई हो। पहली बार जो दवा हम आपको दिखा रहे हैं ये है ऑगमेंटिन 625। ऑगमेंटिन 625 जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कई बार हो सकता है डॉक्टर ने आपको दी है हो, आपके बच्चे के लिए प्रिस्क्राइब की हो, तो ये है ऑगमेंटिन 625 पहली दवा बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, डॉक्टर्स फौरन इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। दूसरी दवा है, ये है मॉक्सक्लैव 625। दवा वही है जिसमें अगर आप देखेंगे जो सॉल्ट है तो इसमें एक्टिव इंग्रीडियंट्स है अमोक्सिसिलिन और क्लैव्युलैनिक एसिड। ये देखिए अगली दवा जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये भी, ये दूसरी कंपनी की है, सॉल्ट वही है लेकिन कंपनी दूसरी है, और ये है क्लैविन 625। ये दवा भी आपको कई डॉक्टर्स ने हो सकता है कभी प्रिस्क्राइब की हो। तीनों में ही सॉल्ट एक है जिसमें अमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लोवेट, इसमें सॉल्ट बताया जा रहा है और ऐसे ही क्लैव्युलैनिक जो एसिड है वो सब में डाला जाता है। तो सॉल्ट वही है, कंपनियां तीन है, तीन अलग अलग दवाएं हैं, लेकिन भारत सरकार की रिपोर्ट बता रही है कि इनमें बड़ी बड़ी खामियां हैं, बड़ी बड़ी कमियां हैं। आपने कभी सोचा है कि पहले आप बुखार की एक गोली खाने से ठीक हो जाते थे, लेकिन अब दो तीन खुराक के बाद भी इन दवाइयों का कोई असर नहीं होता? और इसका कारण यही है कि ये दवाइयां असली होते हुए भी क्वालिटी के मामले में खराब होती हैं। इसमें पैरासिटामोल जैसी बुखार की दवा भी शामिल है जिसे लोग बिना डॉक्टर की सलाह के भी खरीद लेते हैं। इसके अलावा डाइक्लोफेनाक जैसी दर्द की दवा, मांसपेशियों के दर्द में इस्तेमाल होने वाला डाइक्लोफेनाक जेल इसी लिस्ट में शामिल है, और ये भारत सरकार की एजेंसी है जिसने ये बताया है। इसके बाद खांसी, जुकाम, एलर्जी में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां भी जांच में फेल हो गई हैं।
इनमें भी डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन सिरप जो है वो देश के लाखों घरों में खांसी के लिए इस्तेमाल होता है, वो भी सूची में शामिल है। और सांस से जुड़ी गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले टाइट्रोपियम इनहेलर भी क्वालिटी टेस्ट में निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरा। यानी सवाल सिर्फ एक गोली या एक सिरप का नहीं है, सवाल उस पूरे भरोसे का है जिस पर मरीज, उसका परिवार अपना जीवन निर्भर करता है। उदाहरण के लिए इस जांच में पेट और एसिडिटी की दवाइयां फेल हो गई, रेबेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल, ये तमाम दवाएं जिन्हें देश में लाखों लोग रोजाना खाते हैं, उनके अलग अलग बैचेस के नमूनों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और ये सूची यहीं पर समाप्त नहीं होती। डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कई दवाइयों पर भी इसमें सवाल खड़े हुए हैं। और इनमें मेटफॉर्मिन और ग्लाइमपेराइड, ये तमाम दवाइयों को क्वालिटी टेस्ट में सही नहीं पाया गया। यानी जिन लोगों को रोजाना अपना ब्लड शुगर कंट्रोल रखने के लिए इन दवाओं पर निर्भर करना रहना पड़ता है, और आप भी जानते हैं शुगर बढ़ना कितना बड़ा रिस्क है, शुगर गिर जाना कितना बड़ा रिस्क है, सीधे जिंदगी पर आ सकती है, जानलेवा हो सकता है, ये सही दवाइयां नहीं खा पा रहे हैं लोग और उनकी दवाइयों में भी मिलावट है। डायबिटीज के बाद ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां भी इस जांच में फेल पाई गई हैं। इनमें टेलमिसार्टन, एम्लोडिपीन और रेमिपेरिल, ये तमाम दवाइयां शामिल है। खून को पतला करने के लिए, मतलब जिंदगी और मौत के बीच का खून अगर जम जाए, कत्था बन जाए, कोएगुलेट हो जाए, किसी भी नली को वो ब्लॉक कर सकता है। ऐसे लोगों को जिनमें खून गाढ़ा होने की ऐसी चांसेस रहते हैं, उनको खून पतला करने की दवाई लेनी होती है जिंदा रहने के लिए, किसी रिस्क से बचने के लिए। लेकिन सोचिए, इतनी मुश्किल परिस्थिति में, इतनी गंभीर बीमारी से जो लोग जूझ रहे हैं, और जो इस्तेमाल होने वाली जो एस्पिरिन 75 mg है, क्लोपिडोग्रेल है, वो भी इस सूची में शामिल है। और हम बार बार आपको बता रहे हैं, ये भारत सरकार की रिपोर्ट है, भारत सरकार की एजेंसी की रिपोर्ट है जिसने इन तमाम दवाइयों में कमियां पाई हैं। इतना ही नहीं, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रेसुवास्टैटिन, ये भी टेस्ट में फेल हो गई। अब सोचिए, ये कोई अनजान या गली मोहल्ले में बिकने वाली दवाइयां तो है नहीं जो हम आपको यहां दिखा रहे हैं। ये वो दवाइयां हैं जिन्हें बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियां बनाती हैं, ये वो दवाइयां हैं जिन्हें लोग भरोसे के साथ खरीदते हैं, ये वो दवाइयां हैं जिन पर मरीज अपनी सेहत, अपना इलाज, कई बार अपनी जिंदगी तक भरोसे के साथ छोड़ देता है। लेकिन अगर वही दवाइयां गुणवत्ता परीक्षण में फेल होने लगे, अगर वही दवाइयां तय मानकों पर खरी ना उतरे, अगर मरीज को ये भरोसा ही ना रहे कि जो दवा वो खा रहे हैं उसमें सही मात्रा में दवा मौजूद भी है या नहीं है, फिर सवाल सिर्फ दवा का नहीं रह जाता, सवाल पूरे सिस्टम सरकारों का हो जाता है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब मरीज दवा खरीदते समय ब्रांड पर भरोसा नहीं कर पाएगा तो आखिर वो भरोसा कैसा करेगा। ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनकी दवाएं हमने आपको दिखाई हैं, और अगर सरकार की ही एजेंसी इसको गलत पा रही है मापदंड पर, तो इन दवाओं को रोकने वाला कौन है, इनकी बिक्री कौन रोकेगा, या बस बताकर वो किनारा कर लेंगे। भारत के लोग हर साल एसिडिटी की 2500 करोड़ गोलियां खाते हैं, 2500 करोड़ गोलियां। रेबेप्राजोल, पेंटोप्राजोल नाम की ये दवाई सबसे ज्यादा खाई जाती है, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि ये दवाई भी निर्धारित मानकों पर खरी नहीं उतरती। इसके अलावा भारत में हर दिन 60 से ज्यादा कंपनियां पैरासिटामोल की 400 करोड़ गोलियां बनाती हैं, और आप इन गोलियों को ये सोचकर खाते हैं कि इनसे आपका बुखार ठीक होगा, लेकिन असली दवाइयां भी सॉल्ट के मामले में मिलावटी निकलती हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैरासिटामोल की दवाई इस टेस्ट में फेल हुई, खून की कमी, विटामिन और जितने सप्लीमेंट्स हम लोग खाते हैं, पेट के लिए जो दवाएं हैं, फूड डाइजेशन के लिए जो दवाइयां डॉक्टर आपको लिखते हैं, वो दवाइयां भी क्वालिटी टेस्ट में सही नहीं पाई गई। इनमें भी डिहाइड्रेशन के लिए इस्तेमाल होने वाला ORS, सोचिए ORS, कहते हैं कि जिंदगी बचानी हो, डिहाइड्रेशन में किसी की हालत बहुत खराब है, ORS घोल पिला दो, ORS भी इस जांच में फेल हो गया, जबकि हमारे देश में हर साल 80 करोड़ रुपए के ORS की बिक्री होती है। इसका मतलब यह है कि आप पैसा देकर दवाइयां भी खरीद रहे हैं और ये दवाइयां भी आपको नकली मिल रही हैं, या फिर इनकी क्वालिटी में कमी पाई जा रही है। और बात सिर्फ दवाइयों की नहीं, इस रिपोर्ट में तो यह भी बताया गया है कि चोट लगने के बाद स्किन पर जो हम लोग सर्जिकल स्पिरिट लगाते हैं वो भी गुणवत्ता के मामले में खराब है। हैंड सैनिटाइजर, घाव पर जो हम लोग गॉज बैंडेज लगाते हैं, जो कॉटन वुल की पट्टी बांधी जाती है, वो भी क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई, और ये बहुत बड़ी बात है।
अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फार्मा इंडस्ट्री भारत में है, जहां कुल 3,000 कंपनियां काम करती हैं। मौजूदा वक्त में ये इंडस्ट्री 5,67,000 करोड़ रुपए की है, जो साल 2030 में 12,30,000 करोड़ रुपए की हो जाएगी। और हम दुनिया के 200 देशों को भी दवाइयों का निर्यात करते हैं और ये निर्यात भी लगभग 5,00,000 करोड़ रुपए का है। और ये बात सब जानते हैं कि जो फार्मा इंडस्ट्री होती है इसमें भरोसा बहुत जरूरी है। जब कोई व्यक्ति कोई दवाई खाता है तो उसे ये पता नहीं होता कि वो दवाई कहां बनी है, उसमें कौन से ड्रग सॉल्ट इस्तेमाल हुए हैं। लोग सिर्फ सरकारों पर भरोसा रखकर डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाइयों को बाजार से खरीद लेते हैं। भाई डॉक्टर साहब ने नाम बता दिया, ये दवा मंगाओ। कोई भी व्यक्ति यही सुनिश्चित कर सकता है कि वो जो दवाई खा रहा है वो असली है नकली है, हमारे पास सुनिश्चित करने का तो कोई तरीका ही नहीं है। लेकिन सोचिए अगर असली दवाइयां भी क्वालिटी टेस्ट में फेल होने लगे, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों की दवाइयों की हम बात कर रहे हैं, तो इस देश के करोड़ों लोगों का विश्वास क्या होगा, उनकी सेहत का क्या होगा, बीमार होने पर उनका इलाज होगा या उनको और बीमार बनाया जाएगा। आपको यकीन नहीं होगा, जनवरी 2026 में 218, फरवरी 2017 मार्च में 190, अप्रैल में 121 और अब मई में 157 दवाइयां क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई है। और ऐसा नहीं है कि जो कंपनियां ये दवाइयां बना रही हैं वो कोई छोटी मोटी कंपनियां हैं। इनमें सिप्ला कंपनी का भी नाम है, जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स में 39,20,00,000 रुपए का चंदा दिया था, जिनमें से 37 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को मिला था और 2,20,00,000 रुपए का चंदा कांग्रेस को। भारत के दवा बाजार में इस कंपनी की 5% की हिस्सेदारी है, यानी हर 100 में से 5 दवाइयां इस कंपनी की होती है। क्वालिटी टेस्ट में इसकी कई दवाएं फेल हुई। सिप्ला के अलावा इसमें सन फार्मा कंपनी भी है, जो दवाइयां क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई, जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स में 31.5 करोड़ का चंदा दिया था और यह सारा चंदा बीजेपी को मिला था। और भारत के दवा बाजार में इस कंपनी की 1% की हिस्सेदारी है, यानी हर 100 में से 1 दवाई इस कंपनी की होती है। यह खबर आज सबसे पहले हमने आपको इसलिए दिखाई क्योंकि भारत में हर रोज 30 से 40 करोड़ लोग कोई ना कोई दवाई खाते हैं। इसके लिए ज्यादातर लोग ब्रांडेड दवाइयों पर भरोसा करते हैं और जब सरकार की ही तरफ से सरकारी एजेंसी बता रही है कि कंपनी की दवाइयों की क्वालिटी में खामी है तो फिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। शहरों में लोगों का दवाइयों और इलाज पर औसत सालाना खर्च 12,400 रुपए है, गांव में 10,500 रुपए है। और बड़ी बात सबसे यह है कि पहले हमारे देश में हर दिन 15 दिन में 7.5% लोग बीमार होते थे, 7.5%, जबकि आज 13% से ज्यादा लोग हर 15 दिन में बीमार होते हैं। खैर अगली खबर का रुख करते हैं। आपको ये बताते हैं कि अयोध्या के राम मंदिर के बाद मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में भी चोरी और बेईमानी के आरोप लग रहे हैं और अब ये मामला बहुत गंभीर रूप लेता जा रहा है। ये आरोप संत दिनेश शर्मा उर्फ दिनेश फलाहारी महाराज की तरफ से लगाए गए हैं, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने खून से एक चिट्ठी लिखी है जिसमें कुल 3 बड़ी बातों का जिक्र है। इनमें पहला आरोप यह है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के तोशाखाने में से 1,000,000,000,000 रुपए के आभूषण, सोने चांदी और भक्तों द्वारा चढ़ाए गए दान की चोरी की जा रही है। दूसरा आरोप यह है कि जब भी मंदिर की दान पेटियां खोली जाती हैं तब सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते हैं ताकि रुपयों और जेवरातों की बंदर बांट की जा सके। और तीसरी मांग यह है कि राम मंदिर की तरह इस मामले की भी जांच होनी चाहिए और जांच भी सीबीआई से करानी चाहिए। ये मामला इसलिए भी बड़ा हो सकता है क्योंकि मथुरा के इस मंदिर को हर महीने 1 करोड़ रुपए हर महीने और हर दिन लगभग 8,00,000 रुपए का चढ़ावा मिलता है। और ऐसे में अगर यहां भी चढ़ावे की चोरी की बात सही निकलती है तो बड़ा सवाल यह पैदा होगा कि आखिर और कितने मंदिर हैं जहां इस तरह से लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ चल रहा है। हालांकि इन आरोपों को लेकर श्री कृष्ण स्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है और इसमें चढ़ावे की चोरी के आरोपों को बेबुनियाद बताया गया है और शिकायत करने वाले लोगों की मंशा पर सवाल उठाए गए हैं। अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नियमों के मुताबिक रामलला के चढ़ावे और नकदी को गिनने वाले कर्मचारियों की हॉल में आने और काम खत्म करके बाहर जाने के समय बेहद सख्त चेकिंग होती थी। कोई भी कर्मचारी ड्यूटी के बीच में मुख्य परिसर से बाहर नहीं जा सकता था, लेकिन दावा है कि चोरों ने इस कड़े पहरे के बीच एक सुरक्षा चूक यानी लूप होल का फायदा उठाया। और कैसे उठाया अब वो देखिए।
सबसे पहले चढ़ावा गिनने वाले कुछ कर्मचारी गिनती के दौरान नोटों के बंडल, गुप्त दान में आए सोने चांदी के सिक्के और आभूषण चुपके से अपने कपड़े में छिपा लेते थे। इसके बाद भाई

पुष्टि नहीं की है, लेकिन चढ़ावे की चोरी से जुड़ी जो कहानियां सामने आ रही हैं और जिस तरह के आरोप मथुरा में भी लग रहे हैं, उससे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हमारे देश में इतनी बेईमानी क्यों है। परीक्षाओं में बेईमानी, भर्ती में बेईमानी, ठेकों में बेईमानी, दस्तावेजों में बेईमानी, सरकारी निर्माण में बेईमानी, सरकारी मंजूरी में बेईमानी, विज्ञापनों में बेईमानी, दावों में बेईमानी, और अब लोग ये देखकर स्तब्ध हैं कि भगवान के नाम पर चढ़ाए गए दान में भी बेईमानी। और लखनऊ में जो अग्निकांड हुआ वो भी तो इसी बेईमानी का नतीजा है। यानी आज ये मामला सिर्फ किसी एक घटना का नहीं रह जाता, एक बहुत बड़े सामाजिक प्रश्न का रूप ले लेता है। बड़ा सवाल यह कि हमारे देश में आखिर कुछ लोग बेईमानी का शॉर्टकट क्यों लेना चाहते हैं। आप सोचिए, 19 जून को हमने आपको बताया था कि राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी हुई, उसमें हर कर्मचारी पदाधिकारी शक के घेरे में है और ऐसा लग रहा है कि सब के सब मिले हुए हैं। और जानते हैं इस घटना के ने लोगों की आस्था को कितनी बड़ी चोट पहुंचाई है। आइए मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि आस्था की जब बात आती है तो राम मंदिर में जो रोजाना चढ़ावा है उसमें देखिए कैसी कमी आई है। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं 19 जून का, नीचे से शुरू करते हैं। तो जब आप 19 जून का देखेंगे तो ये देखिए 85,980, ये है 85,980 जो आप देख रहे हैं। उसके बाद से 18 जून को 82,000, फिर 17 जून को बढ़ता है 95, लेकिन उसके बाद से 85 और फिर 84,000। तो कुल मिलाकर पहले आप सोचिए कितना पैसा मिलता था, लगभग 8,12,000, और अब वो कुछ हजार में आ गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कुल मिलाकर क्या स्थिति बन रही है, जो रोजाना चढ़ावा है उसमें कितना बदलाव आया है। पहले अगर 8 से 12 लाख पहले चढ़ता था रोजाना, तो अब ये आ गया है नंबर 85,000, 95,000, 84,000। तो ये कुल मिलाकर बताता है कि किस तरह से अब स्थिति बदल रही है और लोगों का जो विश्वास था, जिस विश्वास के साथ वो पैसे चढ़ाते थे, वो अब नहीं हो रहा है। ये चंदा भी तब है जब राम मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कम नहीं हुई है। लोग तो अब भी आ रहे हैं लेकिन वो मंदिर में दान नहीं दे रहे। और यहां ये भी सोचिए कि इस मामले में भगवान का चढ़ावा चुराने वाले लोगों ने राम भक्तों के साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया। सुनिए,

0: हम यात्री सुविधा केंद्र पे हैं राम मंदिर के, और यहाँ पे जो दान काउंटर अगर हम आपको दिखाएंगे तो ये कहीं ना कहीं खाली भी नजर आ रहे हैं। जो श्रद्धालु हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे भटक नहीं रहे हैं, जिसको लेकर अभी आप देखेंगे जिस प्रकार सारे काउंटर भी खाली हैं, दान काउंटर भी आपके सामने दिखा है।
1: SIT जांच कर रही, उसकी जांच की एक प्रक्रिया है, लेकिन श्रद्धालुओं में किसी प्रकार का कोई जो है न श्रद्धा में कमी आया है न चढ़ोतरी में कमी आया है। जो भी श्रद्धा है, जो भाव है, वह समर्पण कर रहे हैं और समर्पण करते रहेंगे।
0: दान काउंटर पे लोग यहाँ पे दान भी करते नजर आ रहे हैं। कहाँ कहाँ से आ रहे हैं आप? कहाँ से आ रहे हैं? दर्शन किया कि नहीं? दर्शन किया, दान दक्षिणा भी चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है?
2: अब भैया जब आए हैं तो कुछ चढ़ाएंगे।
3: अरे अफवाह तो उड़ रही, सुन तो रहे है, अब ध्यान दिया जाए। आप तीर्थ स्थल आए तो कुछ न कुछ।
0: कितने दान दिया आपने?
4: 100 रुपए।
0: 100 रुपए जी। आप कहाँ है चढ़ा रहे हैं? अफवाह को ध्यान नहीं दे रहे। एक बार ये पर्चा हमें दिखाओ, एक बार ये पर्चा ये देखिए, ये स्लिप है, इन्होंने भी डोनेट किया है राम मंदिर पे, और 100 रुपए इन खिलाफ श्रद्धा के और इनको
5: अयोध्या में इसका फर्क तो है। यात्रियों का आना भी कम हो गया है और जो ये चोरी हुई, मुख्यमंत्री जी पे हमें भरोसा है। थोड़े मोड़े परिवर्तन से ऐसा कुछ लगता है कि अयोध्या में श्रद्धा कम हो गई है, श्रद्धा नहीं टूटी है। हाँ, निश्चित रूप से लोगों की के मन में जरूर ठेस हुआ है कि भाई राम जी की इतनी पावन भूमि पे निष्पक्ष लोग बैठने चाहिए।
6: ये बात बार बार पूछी जा रही है कि जब चढ़ावा गिनने का काम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सौंपा गया था तो ये चोरी कैसे हुई? तो यहाँ परिवारों और रिश्तेदारों वाला खेल चल रहा था। हमने आपको कहा था ना, बताएंगे आप चढ़ावे की चोरी का भाई भतीजावाद मॉडल भी से कह सकते हैं। अब तक राजनीति, सियासत, नौकरियों की बंदरबांट, कारोबार में भाई भतीजावाद देखा गया, लेकिन पहली बार मंदिर के चढ़ावे की चोरी में भाई भतीजावाद का मॉडल आ रहा है, जिसे पूरे देश को देखना चाहिए। हमारे पास जो खबर आई है उसके मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चढ़ावा गिनने का काम वाराणसी की एक सिक्योरिटी एजेंसी को सौंपा था।

0: हुआ था कि इस एजेंसी के 24 कर्मचारी हर दिन चढ़ावे की गिनती करेंगे और इन 24 कर्मचारियों पर मंदिर ट्रस्ट के 12, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और TCS के 14 कर्मचारी तैनात रहेंगे। अब इसके बाद हुआ ये कि वाराणसी की जिस एजेंसी को बैंक की तरफ से ठेका मिला, उससे मंदिर ट्रस्ट के कुछ लोगों ने संपर्क किया। उन्हें यह कहा कि अगर वो चढ़ावे की गिनती के लिए उनके बताए लोगों को नौकरी दे देंगे तो वो फायदे में रहेंगे। यहीं से सांठगांठ की शुरुआत हुई। इसके बाद वाराणसी की इस एजेंसी ने अयोध्या में ऐसे लोगों को नौकरी पर रखा जो मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कर्मचारियों के परिवार और रिश्तेदारी में परिचित थे। इससे चढ़ावे की गिनती में शामिल लोगों का एक गुट बन गया, ऐसा गुट जो एक दूसरे को जानता था। आरोप है कि ट्रस्ट से जुड़े लोगों के कहने पर ये कर्मचारी चढ़ावा छिपाकर बाथरूम में ले जाते थे। बाद में यही चढ़ावा ट्रस्ट के जुड़े लोग आसानी से बाहर ले जाते थे और उनकी चेकिंग नहीं होती थी। यानी दावा है कि सब के सब इस चोरी के लिए इकट्ठा होकर काम कर रहे थे। यही नहीं, सूत्रों के हवाले से हमारे पास ये खबर भी आई है कि SIT को अपनी जांच में ये पता चला है कि सुरक्षा जांच में भारी चूक होती थी। ड्यूटी खत्म होने के बाद कर्मचारियों की तलाशी नहीं ली जाती थी और कौन क्या सामान लेकर अंदर आ रहा है, बाहर लेकर जा रहा है, इसकी प्रभावी निगरानी को भी छोड़ दिया जाता था। इसके अलावा CCTV कैमरों की निगरानी, ड्रेस कोड भी बेअसर होते थे। कर्मचारी सामान्य कपड़ों में ही नोट गिनने वाले कमरे में पहुंच जाते थे। निर्धारित ड्रेस कोड का पालन नहीं कराया जा रहा था जबकि सभी को यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई गई थी। फिर CCTV कैमरों की निगरानी की भी ठीक से समीक्षा नहीं होती थी। SIT के मुताबिक कुछ कर्मचारी कैमरों के सामने खड़े होकर निगरानी को बाधित करते थे और चोरी की घटनाओं को पीछे अंजाम दिया जाता था। यह भी आरोप है कि मंदिर परिसर से दान पेटी ट्रस्ट कार्यालय तक लाने, नोटों की गिनती और बैंक में जमा कराने की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें कई गंभीर खामियां थी। और देखिए ना, जिन लोगों को CCTV कैमरों की निगरानी करनी थी, CCTV फुटेज पर उनको नजर रखनी थी, अगर कुछ गड़बड़ी दिख रही है तो वो फौरन कार्रवाई करें, बताया जा रहा है कि वो भी मिले हुए थे, यानी उनकी भी मिली भगत थी। तो सोचिए किस तरह की सांठगांठ के साथ ये सब कुछ हो रहा था। यहां इन बातों को जानकर वो कथन सही लगता है कि इस दुनिया में वही इंसान ईमानदार है जिसे अब तक बेईमानी करने का मौका नहीं मिला। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि दुनिया में शायद ही ऐसी कोई जगह होगी जिसे इंसानों ने अपनी बेईमानी का शिकार नहीं बनाया। राम मंदिर की तरह ईसाई धर्म के सबसे पवित्र धार्मिक स्थान वैटिकन सिटी में भी धार्मिक चढ़ावे और चंदे की चोरी का आरोप लग चुका है। मामला साल 2013 का है जब वैटिकन सिटी और सचिवालय से जुड़े लोगों ने लंदन में एक रियल एस्टेट डील की थी और जब जांच हुई तो पता चला कि इसमें वैटिकन के पादरी और कर्मचारी शामिल हैं जिन्होंने वैटिकन में चढ़ावे और चंदे के पैसे का गबन कर दिया। इस पैसे से लंदन में प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश की। और यहां बात सिर्फ वैटिकन सिटी की नहीं है, हाल ही में जब एप्स्टीन फाइल्स के तहत नए दस्तावेज जारी हुए तो उनमें यह खुलासा हुआ कि जेफरी एप्स्टीन को 2017 में काबा की किस्वा के कुछ टुकड़े भेजे गए थे और इससे जुड़े एक ईमेल में बताया गया था कि इनमें एक इस्तेमाल की गई किस्वा का हिस्सा भी शामिल था। किस्वा वो पवित्र काला कपड़ा होता है जो इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र स्थल काबा को चारों ओर से ढकता है। जब ये जानकारी सामने आई तो सोशल मीडिया पर काफी विवाद हुआ। ये पूछा गया कि इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल से जुड़ा पवित्र किस्वा एप्स्टीन जैसे व्यक्ति तक कैसे पहुंचा और क्या वहां भी मक्का से जुड़ी पवित्र चीजें गायब है। हालांकि इन आरोपों को खारिज किया गया लेकिन सवाल यही उठा कि फिर एप्स्टीन फाइल्स में इसका जिक्र तस्वीरें कैसे आई और क्या जानबूझकर ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया गया। और अब राम मंदिर को लेकर यह कहा जा रहा है कि वहां चढ़ावे के पैसों और जेवरातों को चुरा लिया गया जिसकी जांच अभी चल रही है। आज इस मामले को लेकर हम आपसे एक और बात कहना चाहते हैं। जब से राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी के आरोप लगे हैं तब से इस खबर का खूब राजनीतिक विश्लेषण भी और इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। कोई कह रहा है कि इससे अखिलेश यादव उनकी समाजवादी पार्टी को 2027 के विधानसभा चुनाव में फायदा हो सकता है। कोई कह रहा है इस घटना से बीजेपी के हिंदुत्व के को डेंट लगता है। कोई कह रहा है इससे हिंदू वोटर्स, राम भक्त वोटर्स बीजेपी से छिटक जाएंगे। ये सारी बातें अपनी जगह हैं लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि इस मामले को सिर्फ राजनीति तक बांधना कितना उचित है। सच तो यह है कि यह मामला किसी भी राजनीति और चुनाव से कहीं ज्यादा गंभीर है। यह मामला किसी पार्टी को फायदा नुकसान का नहीं, यह मामला लोगों की आस्था का है, उनकी श्रद्धा का है। जो हर तरह की महिलाएं वहां पर आती हैं और स्वतः ही अपने गले की सोने की चेन निकालकर प्रभु राम के लिए दान कर देती हैं, आस्था की वजह से करती हैं ना, विश्वास है प्रभु राम के लिए, भक्ति है, ये उसके साथ खिलवाड़ है। ये मामला 116 करोड़ उन हिंदुओं का है जिनके आराध्य भगवान राम की दान पेटियों से चढ़ावा चुरा लिया गया, और ये मामला भरोसा का है, वो भरोसा जो इस चोरी से चकनाचूर होता हुआ दिख रहा है। और अगर ये बेईमानी हमारे पवित्र धार्मिक स्थानों भगवान श्री राम की जन्मभूमि तक पहुंच गई, इससे बड़ा पाप क्या होगा? ऐसा पाप जो सारी मर्यादाओं को तोड़कर हमारे देवी देवता, हमारी आस्था, हमारे धर्म का अपमान करता है। इस देश के करोड़ों राम भक्तों के साथ घिनौना छल है ये पूरा मामला। एक तरफ ये लोग हैं जो आस्था के साथ दगा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके लिए उनके आराध्य, उनके ईश्वर का कोई मोल नहीं, जिसके लिए वो सब कुछ समर्पित कर सकते हैं। ये कहानी छत्तीसगढ़ की बिहुला बाई की है। सोचिए, एक महिला जो दिन भर कड़कती धूप, धूल, गंदगी के बीच कचरा बीनती है, दिन भर की कमर तोड़ मेहनत के बाद उसकी हथेली पर क्या आता है? सिर्फ 40 से 50 रुपए। लेकिन जब बात प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण की आई, तो इस महिला ने अपने भूखे पेट की चिंता नहीं की। इस महिला ने अपनी सोने से, अपने सीने से लगाकर रखे वो चंद सिक्के, जो उनकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी थी, वो रामलला के चरणों में सौंप दी। ये वो देश है जहां आस्था पैसों से नहीं, आंसुओं, भावों से तौली जाती है। राम भक्ति में लीन इन भक्तों ने मंदिर के लिए अपना सारा धन अटूट भरोसे के साथ समर्पित कर दिया था। सदियों बाद उनके आराध्य अपने घर लौट रहे हैं, और उसके साथ खिलवाड़। एक तरफ भगवान राम में आस्था रखने वाले भक्त हैं, दूसरी तरफ भाई भतीजावाद मॉडल था चढ़ावा चोरी का, जिसने चंद रुपयों के लालच में देश के करोड़ों राम भक्तों का पवित्र भरोसा पल भर में तोड़ दिया। आंध्र प्रदेश की इस 80 साल की बुजुर्ग मां को अब देखिए, उनके पास सिर्फ 20 रुपए थे। वहां मौजूद वॉलंटियर्स ने उनसे गुजारिश की कि मां आप सिर्फ 10 रुपए दे दीजिए दान में, बाकी का 10 रुपए आप रखिए, आपको अभी जरूरत पड़ेगी। लेकिन वो मां अड़ गई, रोते रोते कहा कि मैं 20 रुपए ही दूंगी, 10 रुपए अपने नाम से, 10 रुपए अपने उस बेटे के नाम से जो अब इस दुनिया में नहीं है। सोचे, उस मां ने अपने दिवंगत बेटे की स्मृति को प्रभु श्री राम के चरणों से जोड़ दिया। नासिक के एक छोटे से गांव की सुंदरबाई, जिन्होंने अपनी तंगहाली के बावजूद 1 लाख रुपए सौंप दिए। तेलंगाना की वो पेंशन भोगी दादी, जिनसे पूछा गया कि इतनी कम पेंशन में से 500 रुपए दान दे दोगी तो गुजारा कैसे होगा, मुस्कुराकर कहा, मेरे राम मेरे साथ है, मुझे कोई फिक्र नहीं। विजयनगरम की वो दिहाड़ी मजदूरी करने वाली महिला, जिसने अपने पति और बेटे को खोने के बाद भी मेहनत की गाड़ी कमाई से 1 लाख रुपए जोड़े। और विदिशा की मुन्नी बाई, जो बेर बेचकर गुजारा करती हैं, और उन्होंने अपनी टोकरी से निकले 100 रुपए का जो पैसा है वो रामलला के चरणों में दान कर दिया।
1: సరే 10 రూపాయలు పెట్టుకో, 10 రూపాయలు
2: వద్దు వద్దు అన్నప్పుడు వద్దు,
3: కాదు 10 రూపాయలు టికెట్ ఉందమ్మా, ఎట్లా
2: ఇష్టం
4: వాళ్ళని ఆదర్శంగా తీసుకొని ప్రతి ఒక్కరు తమ
2: సమర్పణ, నా పెద్ద కొడుకు చచ్చిపోయాడు, వాళ్ళకి 10 రూపాయలు నాకు 10 రూపాయలు రెండు కలిపి
5: ఇస్తా సార్. అమ్మా అమ్మా మీ వయసు ఎంత అమ్మా?
2: 90 సంవత్సరాలు
5: అమ్మా. మంచిది.
0: एक तरफ आस्था का ये समंदर था जहां लोग अपनी अपनी आत्मा भी दान कर रहे थे, और दूसरी तरफ वो लोग जो चढ़ावे की इस पवित्र नदी में भी अपनी तिजोरियां भरने का रास्ता ढूंढ रहे थे। इतिहास गवाह रहेगा, रामलला के मंदिर की एक एक ईंट इन गरीबों के आंसुओं और त्याग से सींची गई है। ये मंदिर किसी ट्रस्ट, किसी सरकार के पैसे से नहीं बनी है, ये आम हिंदुओं के पैसे से बनी है, ये भक्तों के पैसे से बनी है, जिन्होंने स्वतः दान किया, जिन्होंने भी इस पवित्र चढ़ावे के साथ छल किया है, उन्होंने किसी इंसान को नहीं बल्कि उस कचरा बिनने वाली मां की आस्था को धोखा दिया है। और ऐसे ही अनेकों विश्वास और आस्था रखने वाले भक्तों को। अब आइए आपको यह बताते हैं कि अगर पासपोर्ट भी आपकी नागरिकता का प्रमाण नहीं है तो आपकी भारतीय नागरिकता आखिर साबित कैसे होगी? और ये कैसे पता चलेगा कि आप इसी देश के नागरिक हैं? 24 जून को भारतीय पासपोर्ट दिवस के मौके पर विदेश मंत्रालय ने यह बताया कि पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, यानी यात्रा का एक दस्तावेज है जिसे किसी भी रूप में नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। विदेश मंत्रालय का यह बयान सुनकर कई लोग हैरान हुए। इस हैरानी का कारण यह था कि अब तक आम धारणा यही रही है कि अगर किसी के पास भारतीय पासपोर्ट है तो वो निश्चित रूप से भारतीय नागरिक होगा। अब यह धारणा इसलिए भी है क्योंकि पासपोर्ट बनवाना आसान नहीं होता। जब कोई भी व्यक्ति पासपोर्ट के लिए आवेदन करता है तो उसे अपना जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, पैन कार्ड जैसे कई सारी दस्तावेज दिखाने होते हैं। और ऐसा नहीं है कि इन दस्तावेजों के जमा कराने के बाद पासपोर्ट जारी हो जाता है। पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, सारे रिकॉर्ड्स चेक होने के बाद पासपोर्ट जारी किया जाता है। और यही कारण है कि जब विदेश मंत्रालय ने यह कहा कि पासपोर्ट भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं तो इस पर कई नई बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों ने तो यह दावा किया कि मोदी सरकार में भारतीय नागरिकता साबित करने के तरीकों को सीमित किया जा रहा है, जबकि असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहा कि अब वही भारतीय नागरिक कहलाएगा जिसने बीजेपी की सदस्यता ली होगी। ये सारी बातें राजनीति करने के लिए ठीक हो सकती हैं, लेकिन तथ्य बताते हैं कि इस नियम में मौजूदा सरकार ने क्या कोई बदलाव किया है। पिछली सरकार में पासपोर्ट को भारतीय नागरिकता का प्रमाण या आधार नहीं माना गया। सरकार ही नहीं, अलग अलग हाई कोर्ट्स और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे फैसले सुनाए जिनमें किसी एक दस्तावेज या पहचान पत्र को भारतीय नागरिकता का सबूत नहीं माना गया। और इसीलिए यह सामने आ रहा है कि यह पहले से चल रहा था। यह कंफ्यूजन सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि पासपोर्ट्स एक्ट 1967 के सेक्शन 6(2)(a) के तहत पासपोर्ट अथॉरिटी ऐसे व्यक्ति को पासपोर्ट जारी करने से इनकार कर सकती है जो भारत का नागरिक ना हो या जिसकी नागरिकता संदिग्ध हो। अब इसी आधार पर बार बार ये पूछा जाता है कि जब पासपोर्ट जारी ही नागरिकता के आधार पर होता है तो फिर क्यों इसे नागरिकता का सबूत क्यों ना माना जाए। हालांकि यहां सरकार का पक्ष क्या है आपको बताते हैं। सरकार कहती है कि पासपोर्ट कई बार गलत जानकारी के आधार पर जारी हो सकता है जिसके कारण से नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। उदाहरण के लिए पिछले साल कुल 1,39,00,000 पासपोर्ट जारी हुए, करीब 1.5 करोड़ लोगों को पासपोर्ट सेवाएं मिली। यह संख्या इतनी विशाल है कि इतने लोगों की नागरिकता की पूर्ण और अंतिम जांच करना पासपोर्ट अथॉरिटी के लिए व्यवहारिक नहीं है, जिसके कारण वो पासपोर्ट को नागरिकता का सबूत नहीं मानती। दूसरा, पासपोर्ट अधिकारी कभी भी नागरिकता पर अंतिम फैसला नहीं लेते। नागरिकता तय करने का अधिकार गृह मंत्रालय को होता है, अदालतों के पास होता है और ऐसे में पासपोर्ट अथॉरिटी खुद किसी की नागरिकता तय नहीं कर सकती। और यही कारण भी है कि सरकार का जो पासपोर्ट मैनुअल होता है उसमें साफ साफ लिखा होता है कि पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, यानी अगर आप कहीं सफर कर रहे हैं तो ये उस सफर के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला दस्तावेज है। इसके अलावा पासपोर्ट एक्ट 1967 की धारा 20 कहती है कि केंद्र सरकार विशेष परिस्थितियों में गैर नागरिकों को भी भारतीय पासपोर्ट जारी कर सकती है। इसलिए अगर गैर नागरिक को भी पासपोर्ट मिल सकता है तो पासपोर्ट अपने आप में नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं हो सकता। अब इससे यह सवाल भी पैदा होता है कि हम आखिर किस दस्तावेज को भारतीय नागरिकता का सबूत माने। उदाहरण के लिए अगर कल को आपसे कोई ये पूछ ले कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं तो आप क्या सबूत दिखाएंगे? आप आधार कार्ड दिखाएंगे तो ये सिर्फ पहचान है, निवास का सबूत है, इसे नागरिकता का सबूत नहीं मान रही है सरकार। अगर वोटर आईडी कार्ड दिखाएंगे तो इसे आपके वोटर यानी मतदाता होने का सबूत माना गया है, लेकिन ये भी आपकी नागरिकता साबित नहीं करता। अगर आप पैन कार्ड दिखाएंगे तो कहेंगे राशन कार्ड दिखाएंगे तो ये भी नागरिकता का सबूत नहीं है। यहां तक कि अगर आप अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखाते हैं तो इसे भी आपकी भारतीय नागरिकता का सबूत नहीं माना जाएगा। आपको यह सुनकर थोड़ी हैरानी होगी, लेकिन सच यही है कि पासपोर्ट तो छोड़िए, आपका जन्म प्रमाण पत्र नागरिकता का सबूत नहीं है। जब साल 2019-20 में सीए कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए थे तब एक नारा प्रदर्शनकारियों के लिए खूब इस्तेमाल हुआ था। वो नारा था, कागज नहीं दिखाएंगे। लेकिन सोचिए, आज अगर कागज दिखाना भी पड़ा तो नागरिकता के लिए कौन सा कागज दिखाना है? क्योंकि कोई एक कागज हमारे देश में ऐसा है ही नहीं जो हमारी नागरिकता को साबित कर दे। आप जरा आप ये देखिए कि इस देश में भारतीय नागरिक माना किसे गया है और कानून इस पर क्या कहता है। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तब आर्टिकल 5, 6, 7 भारतीय नागरिकता का उल्लेख करते थे। इनके तहत अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ या फिर माता पिता में से कोई भारत में जन्मा हो या 5 साल से भारत में रह रहा हो तो उसे भारत का नागरिक मान लिया जाता था। इसके बाद सिटीजनशिप एक्ट 1955 आया और साल 1987 तक 1987 तक नागरिकता के मामले में यही व्यवस्था जारी रही। इसका सरल मतलब यह था कि आपके माता पिता कौन है, विदेशी है या नहीं, यह नागरिकता के लिए मायने नहीं रखता था। अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो फिर जन्म के आधार पर लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाती थी और इसे जस सोली का कानूनी सिद्धांत कहते थे। अब यह व्यवस्था आपके दादा दादी या नानी के जमाने की थी, लेकिन साल 1986 में इसमें दूसरा बड़ा संशोधन हुआ, बदलाव हुआ। इसमें यह तय हुआ कि नागरिकता के लिए सिर्फ भारत में जन्म लेना काफी नहीं होगा, इसके लिए यह भी जरूरी होगा कि आपके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। यह संशोधन इसलिए हुआ क्योंकि बांग्लादेश से अवैध प्रवासी बड़ी संख्या में भारत आते थे और कई बार ऐसा होता था कि अवैध प्रवासी यहां जिस बच्चे को जन्म देते थे वो भारत का नागरिक बन जाता था। यही देखते हुए सरकार ने तय किया कि माता पिता में से किसी एक का इस देश में जन्म लेना जरूरी है। अब यह व्यवस्था साल 2004 तक चली, लेकिन दिसंबर 2004 में इसमें एक और संशोधन हुआ और यह आज तक जारी है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिकता तभी उसकी मानी जाएगी जब ना सिर्फ उसका नाम जन्म भारत में हुआ हो बल्कि उसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हो, या एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना। अब देखिए, यानी अगर आप नागरिकता साबित करने के लिए अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखाएंगे तो इसे पर्याप्त नहीं माना जाएगा। आपको यह दिखाना होगा कि आपके माता पिता भी इसी देश के नागरिक हैं और आपके माता पिता में से कोई एक अवैध प्रवासी होता है तो आपको नागरिक नहीं माना जाएगा। इस सिद्धांत को जस सैंग्विनिस भी कहा जाता है, जिसमें बच्चों को की नागरिकता उनके माता पिता की नागरिकता से तय की जाती है। वैसे यहाँ पासपोर्ट को लेकर जो इस वक्त चर्चा चल रही है, सच यह है कि साल 2023 तक हमारे देश में 9 करोड़ 26 लाख लोगों के पास ही पासपोर्ट था, यानी देश की सिर्फ 6.61 लगभग 6.5% आबादी के पास ही पासपोर्ट है। 93% आबादी के पास आज भी पासपोर्ट नहीं है। इनमें भी पासपोर्ट वाले केवल 35% लोग ऐसे हैं जिन्होंने उसका इस्तेमाल किया जो विदेश यात्राओं पर गए। 9 करोड़ 26 लाख लोगों में से करीब 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो आज तक विदेश यात्रा पर नहीं गए और उन्होंने सिर्फ पासपोर्ट बनाकर अपने घर पर रखा है। यहां आपको दुनिया में भारतीय पासपोर्ट की ये रैंकिंग भी देखनी चाहिए जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा जारी की जाती है। इसमें भारत 80वें स्थान पर है क्योंकि भारत के लोगों को सिर्फ 56 देशों में वीजा मुक्त या वीजा ऑन अराइवल प्रवेश की सुविधा मिलती है। मोदी सरकार से पहले इस रैंकिंग में भारत 74वें स्थान पर होता था, यानी उस वक्त की रैंकिंग में और मौजूदा रैंकिंग में आप देख रहे हैं 6 अंकों की गिरावट है। अब हमारे देश में यह पूरा मुद्दा ऐसे उठाया जा रहा है कि सिर्फ भारत ही इकलौता ऐसा देश है जहां पासपोर्ट को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना गया, जबकि बात पूरी तरह गलत है। दुनिया में ज्यादातर देश ऐसे हैं जहां पासपोर्ट को सामान्य रूप से नागरिकता का कार्ड मान लिया जाता है, लेकिन हकीकत में कानूनी रूप से ज्यादातर देश कभी भी पासपोर्ट को नागरिकता का प्रमाण नहीं मानते। मुख्य रूप से दुनिया में सिर्फ 3 देश ऐसे हैं जहां पासपोर्ट को सिटीजनशिप कार्ड माना गया है, अमेरिका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इन 3 देशों में पासपोर्ट को नागरिकता कार्ड के बराबर माना गया है, लेकिन बाकी देशों में, ज्यादातर देशों में पासपोर्ट को नागरिकता का डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता है। यहां तक कि जो सिंगापुर पासपोर्ट रैंकिंग में पूरी दुनिया में पहले स्थान पर है, सिंगापुर, वहां भी पासपोर्ट को नागरिकता का कार्ड नहीं माना गया है। और अब बात पंजाब की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिस विवादित और आपत्तिजनक वीडियो के मामले में सीएम भगवंत मान ने अकाल तख्त साहिब के सामने खुद को बेकसूर बताया था, जिस फोरेंसिक रिपोर्ट को अपनी बेगुनाही की सबसे बड़ी ढाल बनाया था, अब वही फोरेंसिक रिपोर्ट पूरी तरह फर्जी और फिक्स्ड बताई जा रही है।
6: हरियाणा पुलिस के खुलासों ने न सिर्फ भगवंत मान की राजनीतिक साख बल्कि पंजाब पुलिस के आला अफसरों को भी सीधे सीधे सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। मामला सिख गुरुओं के प्रति आपत्तिजनक और अपमानजनक व्यवहार वाले एक वायरल वीडियो से जुड़ा हुआ है। इस वीडियो को लेकर सीएम भगवंत मान अकाल तख्त साहिब के सामने पेश हुए थे और खुद को पूरी तरह पाक साफ बताया था।
7: जी ओ बंदा जिहड़े मैं इहदे बारे दस देना, ओ बंदा जी जिहड़ा जगमन जगमन है कोई, ओ बंदा पहला भी ओ ड्रगी है जी, ओ मानसिक तौर ते ठीक नहीं, संगल लगदे ने।
6: बाद में अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उन्होंने एक फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें दावा किया गया कि वीडियो में दिख रहा शख्स भगवंत मान नहीं है। मुख्यमंत्री भगवंत मान को बेअदबी वाले इस वीडियो से अलग साबित करने के लिए जिस लैब रिपोर्ट का सहारा लिया गया, उसे हर तरह से गलत, भ्रामक और मनगढ़ंत बताया जा रहा है।
8: कुछ अधिकारी थे पड़ोसी राज्य के, तो उन्होंने कुछ ऐसी बात आई है सामने, तो इसने 2.5 लाख रुपए अपने एक अकाउंट में जमा कराए हैं, बाकी 7.5 लाख रुपए दूसरे अकाउंट में जमा कराए हैं।
6: आरोप है कि पंजाब पुलिस के बड़े अफसरों ने गुरुग्राम के एक 5-स्टार होटल में इस फर्जी रिपोर्ट को बनवाने के लिए बाकायदा एक सीक्रेट डील की थी। इसके लिए कथित तौर पर 10 लाख रुपए का भुगतान किया गया था। इस पूरी साजिश का भंडाफोड़ किसी और ने नहीं बल्कि उस फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने किया है जिसका नाम इस रिपोर्ट को तैयार करने में सामने आया था। जसप्रीत सिंह जस्सी नाम का ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट अब इस पूरे मामले में मुख्य शिकायतकर्ता बन गया है। जसप्रीत का दावा है कि 15 जून को उसे एक व्हाट्सएप कॉल आई जिसमें सामने वाले ने खुद को पंजाब का SP बताते हुए एक वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार करने का दबाव बनाया। इस पर जस्सी ने कहा कि वो ऑडियो वीडियो का नहीं बल्कि लिखित दस्तावेजों का फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, लेकिन उससे कहा गया कि उसे बस काम करना है और इसके बदले उसे अच्छी रकम मिली।
9: 15 जून को 2026 को मेरे पास एक व्हाट्सएप कॉल आई अननोन नंबर से, था मैंने फोन खाया तो उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा कि मैं SP जशन बिल बोल रहा हूँ, तो कृपया ऐसे करके रिपोर्ट बनानी है भगवान जी के फेवर में। हमने पहले कन्वे करा था कि जो एक्सपर्ट है वो साइबर सिक्योरिटी के हैं, ऑडियो वीडियो के डिजिटल के एक्सपर्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने को सिर्फ दिखाना है कि आप एक रिपोर्ट दे दो, हम कोई पब्लिकली भी यूज कर रहे, कोई पॉलिटिकली यूज नहीं कर रहे, कोई पुलिस उसमें भी यूज नहीं कर रहे।
6: जसप्रीत का दावा है कि पंजाब पुलिस के बड़े अफसरों ने गुरुग्राम के पॉश इलाके में स्थित 5-स्टार होटल क्राउन प्लाजा में उसके साथ एक सीक्रेट मीटिंग की। दावा किया जा रहा है कि इस मीटिंग में लुधियाना के पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा और SP जशनदीप गिल भी शामिल थे। जसप्रीत ने साफ कहा कि उस पर भारी दबाव बनाया गया और धमकी दी गई ताकि वो मुख्यमंत्री के वीडियो को लेकर उनके मन मुताबिक एक खास रिपोर्ट तैयार कर। उसे ये अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि इस फर्जी रिपोर्ट का इस्तेमाल अकाल तख्त साहिब जैसी धार्मिक संस्था के खिलाफ किया जाएगा। हरियाणा पुलिस ने इस होटल के CCTV फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है, जिसका बारीकी से विश्लेषण किया जा रहा है। अब हरियाणा पुलिस की जांच और पूछताछ में जो बातें सामने आई हैं, वो बेहद चौंकाने वाली है। पंजाब पुलिस के दबाव में आने के बाद जसप्रीत ने अरुण और अंकित नाम के 2 साइबर एक्सपर्ट से संपर्क किया। इन दोनों ने मिलकर साइबर यान और साइबर सेंटिनल नाम की 2 कथित साइबर लैब्स के लेटर हेड पर जाली रिपोर्ट तैयार कर दी। दिल्ली और चीन के पते पर दिखाई गई ये लैब्स पूरी तरह अवैध थी, जिनके पास ना तो कोई लाइसेंस था और ना ही ये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त थी। फिलहाल हरियाणा पुलिस ने अंकित और अरुण को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट ने उन्हें 8 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।
10: अरुण नाम के व्यक्ति ने साइबर यान के नाम से फेक रिपोर्ट बना के दी और अंकित नाम के व्यक्ति ने साइबर सेंटिनल नाम से रिपोर्ट जो कि फेक थी वो बना के दी, जो कि इसमें अंकित और अरुण को हमने 8 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया है।
6: 10 लाख रुपए में फर्जी रिपोर्ट तैयार करवाने और पुलिस अफसरों की संलिप्तता के इन गंभीर दावों के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद सामने आए। उन्होंने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे अपने खिलाफ एक बड़ी राजनीतिक साजिश करार दिया है।
11: तो बिल्कुल लाइन बन रही है, मास्क लगे हुआ है नंबर 3 ते, क्योंकि ये अखा नहीं लग सकती, मास्क तो बन जाता है अखा नहीं बन गया, तो फिर उन्हें ऐनक लाई है काली।
6: अब BJP और कांग्रेस CM भगवंत मान पर हमलावर हैं और उनका इस्तीफा मांग रहे हैं।
12: ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
13: ਕਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਕੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਭੀ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮੇ ਫੈਵੀਕੋਲ ਡਾਲਕਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇਗੇ?
6: एक तरफ मुख्यमंत्री भगवंत मान इसे खुद को बदनाम करने की साजिश बता रहे हैं और दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस के पास मौजूद सीसीटीवी फुटेज, दो गिरफ्तार आरोपी और खुद मुख्य गवाह का बयान पंजाब पुलिस के अधिकारी और भगवंत मान की मुश्किलें बढ़ा रहा है। सवाल ये है कि सिख गुरुओं के अपमान से जुड़ा कथित वीडियो वाकई नकली था तो उसके लिए एक अवैध लैब से फर्जी रिपोर्ट बनवाने की जरूरत क्यों पड़ी? ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: अब हम पारंपरिक भारतीय थाली की बात करेंगे जिसकी आत्मनिर्भरता अब खत्म हो रही है। भारतीय थाली अब धीरे धीरे विदेशी थाली बनती जा रही है। ऐसा नहीं है कि आपकी थाली में विदेशी व्यंजन बढ़ रहे हैं, बल्कि बात यह है कि भारतीय व्यंजन कहीं जाने वाली चीजें अब विदेशी आयात पर निर्भर होती जा रही है। एक सामान्य भारतीय थाली में रोटी, चावल, दाल, सब्जी, सलाद, दही जैसी चीजें होती है। कहने के लिए ये सभी चीजें पारंपरिक थाली से जुड़ी है, लेकिन सच ये है कि धीरे धीरे इन चीजों को आपकी थाली तक पहुंचाने के लिए विदेशी आयात पर निर्भरता बढ़ानी पड़ रही है। गेहूं, धान, सब्जियों की पैदावार अच्छी हो इसके लिए खाद जरूरी है और खाद के लिए विदेशी आयात पर निर्भर हो रहे हैं। वैश्विक कारणों से खाद या खाद बनाने से जुड़े कच्चे माल का आयात रुकते ही स्थिति बिगड़ने लगती है। आपकी थाली में जो दाल है वो बनी रहे इसके लिए उसका भी विदेशी आयात बढ़ता जा रहा है। यानी हम दालों के लिए दुनिया के अन्य देशों पर निर्भर हो रहे हैं, निर्भरता बढ़ रही है, हमारा उत्पादन हमारी जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहा। सब्जियां जिस तेल में पक रही हैं, वो भी ज्यादातर विदेशों से आ रही हैं। तेल देश में इस्तेमाल होने वाले खाद्य तेल का 56% हिस्सा विदेशों से आयात कर रहे हैं।
6: भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक देश है, लेकिन सबसे बड़े उपभोक्ता भी हम ही हैं और हमारी जरूरत इतनी ज्यादा है कि हमें दाल आयात करनी पड़ती है। अब हम आपको साल 2020-21 से 2024-25 के बीच दालों की मांग, उसका उत्पादन और आयात पर बढ़ रही हमारी निर्भरता का एक ग्राफ दिखाते हैं। 2020-21 में दालों की घरेलू मांग 277 लाख टन थी और उस वक्त हमारा उत्पादन 254 लाख टन था। घरेलू जरूरत पूरा करने के लिए करीब 25 लाख टन दाल आयात की गई थी और इसके अगले 5 वर्षों में यानी 2024-25 तक दालों का आयात 73 लाख टन तक पहुंच गया। आयात बढ़ने का सीधा अर्थ है कि हमें अपने विदेशी मुद्रा भंडार पर बोझ भी बढ़ाना पड़ा। दालों के आयात पर साल 2020-21 में भारत ने 11,937 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जो अगले 5 वर्षों में करीब 4 गुना बढ़कर 46,428 करोड़ रुपए तक पहुँच गया। चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर और अन्य दालों के हिसाब से हमारी निर्भरता अलग अलग देशों पर हो गई है, जिनमें रशिया, कनाडा, अमेरिका, तंजानिया, मोजाम्बिक, ऑस्ट्रेलिया और म्यांमार शामिल है। यानी दाल की जरूरत को पूरा करने के लिए हम मजबूरन दूसरे देशों पर निर्भर हैं, बावजूद इसके कि हम दुनिया के सबसे बड़े दाल उत्पादक देश हैं।
0: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
15: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars, NSYNC, and Britney Spears. Or rock artists, like Sublime, and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits, or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
14: Hexa Organic Radio.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
3: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
4: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
3: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
5: एक्सपेक्टेशन से बेटर प्लेसमेंट मिली है तुझे, अब सब सेट है ना?
6: सब सेट है, बस अब चाहिए एक सैलरी अकाउंट जो मैच करे मेरी लाइफस्टाइल से।
7: तू सोचना क्या है, मेरा अपना बैंक है ना।
5: मतलब
7: पंजाब नेशनल बैंक, जो दे तुम्हारी चॉइस का सैलरी अकाउंट नंबर, OTT सब्सक्रिप्शन, लाउंज एक्सेस एंड मेनी मोर बेनिफिट जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को मैच करे।
5: वाओ दी, मैं कल ही बैंक जाता हूँ।
7: पर जाना क्यों है, सब ऑनलाइन ही हो जाता है। PNB, मेरा अपना बैंक।
8: ये मजबूर हैं, पर आप नहीं। बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
9: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।
10: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है,
11: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
10: जिंदल स्टेनलेस, इंडिया के लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।
2: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
12: जिंदगी में हम सबका एक सपना होता है, सपना अपनी दुनिया बसाने का, अपना एक घर बनाने का। और जब इस सफर में कोई अपना साथ दे तो सपने साकार हो ही जाते हैं।
13: भरोसे से ही बनता है आपके अपने सपनों का आशियाना, ऐसा ही आपका अपना साथी पंजाब नेशनल बैंक, जो बरसों से जीत रहा है देश का भरोसा। PNB, मेरा अपना बैंक।
14: कूल फैंस के स्टाइलिश डिजाइन से घर की शान बढ़ाएं।
15: कूल फैंस, जो दे आधी बिजली में ज्यादा हवा कम आवाज की है।
14: कूल फैंस, स्मार्ट भी स्टाइलिश भी।
16: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, हेक्सा ऑर्गेनिक, रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है,
3: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
2: जिंदल स्टेनलेस, इंडियाज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से।
1: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
0: विमल, बोलो जुबा केसरी।
1: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
2: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
3: इनकी निगाहें नेशन पे नहीं है, डोनेशन पर हैं। जो लोग ये कहते थे नेशन फर्स्ट, उनके लिए लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट है। क्या कोई कल्पना कर सकता था श्रद्धा और आस्था से इतनी बड़ी खिलवाड़। इनकी चतुराई है, चालबाजी है और सीसीटीवी फुटेज है कि कितनी बार सीसीटीवी बंद किया गया है, कितनी बार वो आंकड़े सामने आपके आए हैं, तब और क्या बताया जाए।
4: अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे, आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आज जब राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है, तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है।

चढ़ावा चोरी को लेकर अखिलेश ने बीजेपी को फिर घेरा, कहा इनके लिए नेशन नहीं डोनेशन। फर्स्ट सीएम योगी ने दी चुनौती, बोले हिम्मत है तो कृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर बोले। पेपरली के विरोध में दिल्ली में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, मांगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। मुंबई में भी शिक्षा मंत्री के घर के बाहर हल्ला बोल। केतन अग्रवाल हत्याकांड में क्राइम सीन रिक्रिएट, मुख्य आरोपी सिया को लेकर लोहागढ़ किले पहुंचे पुलिस, 18 जून की वारदात पर सवाल जवाब। सेशल्स के संसद में गूंजा नमो मंत्र, संबोधन में पीएम मोदी ने कहा हिंद महासागर हमें बांटता नहीं जोड़ता है। प्रधानमंत्री को मिला पर्यावरण संरक्षण का सर्वोच्च सम्मान। दो देशों में हवाई हादसों से हड़कंप, फ्रांस में प्लेन क्रैश में 11 लोगों की मौत, सऊदी अरब में हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, 14 लोगों की जान गई।

नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। तबाही आने से पहले कोई वार्निंग नहीं देती, हादसे होने से पहले कोई चेतावनी नहीं देते। मॉनसून का सीजन अगर आसमान से बारिश की खुशनुमा बूंदे लाता है तो यही मौसम पहाड़ों की पकड़ भी ढीली कर देता है, पानी का सैलाब भी लाता है। जैसे जैसे मॉनसून देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहा है, आपदाएं भी उसी रफ्तार से आना शुरू हो रही हैं। पहाड़ टूट रहे हैं, नदियां उफान पर हैं, बारिश जैसे तबाही का ट्रिगर बन चुकी है। जहां पानी निकलने का रास्ता नहीं मिलता, वहां मिनटों में फ्लैश फ्लड, भूस्खलन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इस बार भी देश के कई हिस्सों में मॉनसून अपनी सामान्य चाल से नहीं बल्कि खतरनाक अंदाज में दस्तक दे रहा है।

0: आसमान से बरसती आफत की आज हम आपको सबसे खतरनाक 10 तस्वीरें दिखाएंगे। वो 10 तस्वीरें जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। ये भी सच है कि उत्तर भारत में अभी मॉनसून का असर ज्यादा नहीं है, लेकिन जहां जहां बारिश ने अपना सितम खाया है वहां वहां से तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीर नंबर 1, तेज बारिश के चलते उत्तर सिक्किम में पानी की रफ्तार के आगे बेली ब्रिज बह गया। तेज पानी के बहाव को लोहे का पुल काफी देर तक बर्दाश्त करता रहा, लेकिन आखिरकार उसको हार माननी पड़ी। देखिए पहले ये ब्रिज कैसे दिखता था और अब सैलाब ने उसका क्या हाल कर दिया। तस्वीर नंबर 2, पूर्वी सिक्किम की ये तस्वीरें खौफनाक हैं। बारिश ने पहाड़ की पकड़ ढीली करी और पूरा का पूरा पहाड़ सड़क पर चला आया। देखिए कैसे एक पुलिसकर्मी सिर्फ चंद मीटर से बाल बाल बचा। तस्वीर नंबर 3, अरुणाचल प्रदेश पर फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की सबसे तगड़ी मार पड़ी है। इस तस्वीर में पेनार बांध पर एक शख्स और उसके साथ एक कुत्ता फंस गए। बड़ी मुश्किल से दोनों को रेस्क्यू किया गया। तस्वीर नंबर 4, अरुणाचल प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने पहाड़ों को भी हिला दिया है। कई इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। इन खतरनाक भूस्खलनों ने न सिर्फ लोगों की आवाजाही रोक दी बल्कि पूरे इलाके की जीवन रेखा माने जाने वाले इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर संपर्क भी ठप कर दिया। तस्वीर नंबर 5, उत्तरी बंगाल के अलीपुर द्वार के जय गांव की ये तस्वीरें हैं, जहां पानी का बहाव इतनी तेज था कि एक बाइक वाला बह गया। लोगों ने तमाम कोशिश की कि उसको नीचे गिरने से रोक लिया जाए, लेकिन वो ये कर नहीं पाए। हालांकि बाइक वाला इस पूरी घटना में बाल बाल बच गया। तस्वीर नंबर 6, मध्य प्रदेश की ये तस्वीर खूबसूरत भी है और परेशान करने वाली भी। खूबसूरत इसलिए कि ये आम की मंडी है जहां आम बेचने के लिए लोग खड़े हैं। परेशान करने वाली इसलिए कि इस मंडी में सड़क पर जैसे नदी बह रही है। 2 घंटे की मूसलाधार बारिश ने बाजार में पानी घुटनों घुटनों भर दिया। तस्वीर नंबर 7, अकोला में पानी का बहाव इतनी तेज था कि पूरी की पूरी कार ही बह गई। तस्वीर नंबर 8, ये मुंबई की तस्वीरें देखी। मेयर साहिबा बरसात की तैयारियों का निरीक्षण कर रही थी कि वहीं उनके पीछे उनके ही अधिकारी पानी में गिर पड़े। तस्वीर नंबर 9, राजकोट में अंडरपास में इतना पानी भर गया कि एक रोडवेज की बस फंस गई। उस बस के अंदर 25 से 30 यात्री बैठे थे जो फंस गए। बड़ी मुश्किल से यात्रियों को रेस्क्यू किया गया। तस्वीर नंबर 10, ये तस्वीरें जापान की हैं। कभी पर्यटकों के लिए मशहूर कामो नदी पूरे वेग से शहर के बीचों बीच निकल रही है। ये बारिश की वो तस्वीरें थीं जो सिर्फ मौसम का मिजाज नहीं बल्कि प्रकृति की बेकाबू ताकत का भी एहसास कराती हैं। ये तस्वीरें साफ बताती हैं कि जब आसमान आफत बनकर बरसता है तो कुछ ही मिनटों में जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है।
1: भारत के कई हिस्सों में मॉनसून अब पूरी तरह सक्रिय है, जिसके कारण पूर्वोत्तर से लेकर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, कोंकण जैसे क्षेत्रों में मूसलाधार बरसात हो रही है। पूर्वोत्तर में हालात चुनौतीपूर्ण दिख रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में लगातार तेज बरसात हो रही है, जिसने पूरे क्षेत्र में तबाही मचा दी है। जान माल दोनों के नुकसान की खबरें हैं।

0: हम दरवाजा को मार के पानी आ रहा है जल्दी भागो बोल के हम निकल गया।
1: हम लोग तो बचपन से आज तक ऐसे लैंडस्लाइड कभी नहीं देखा।
2: बहुत ही पानी तो भयानक यहाँ दिया हुआ है ना, तो इसके लिए आदमी तो अभी भी अंदर में दिल दिमाग में मतलब सदमा होके बैठेगा, दर्द बैठेगा।
3: मानसून की बारिश अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में कहर बनकर बरसी, लेकिन कई पेन्योर जिले में पहले बारिश फिर बाढ़ और उसके बाद भूस्खलन के कारण ऐसे हालात बन गए कि आम लोग त्राहिमाम कर उठे। कई पेन्योर को दूसरे जिलों से जोड़ने वाली सड़कें गायब हुई, कई मकान तेज पानी की धार में मलबा बनकर बह गए। डूबते को तिनके के सहारे बचाने की तस्वीरें भी सामने आई।
4: एक कुत्ता और एक आदमी है, देखिए।
5: हेलो, हाँ, पेपर जरूरी है, वो ये स्पॉट में है।
3: कई लोग तेज बाढ़ के पानी में ऐसे बहे कि उनके शव तक नहीं मिले।
6: मेरा थर्ड नंबर वाला दीदी थे, तो आज तक हम लोग सर्च किया है, अब तक कुछ भी नहीं पाया है।
3: कई पेन्योर जिले के यजाली सर्किल के तहत पूसा के पास स्थित नीबको प्रोजेक्ट कॉलोनी में अचानक आई बाढ़ ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया।

0: पूरा का पूरा पहाड़ गिर गया, जिसके कारण आसपास की नदियों में उफान आ गया। कॉलोनी से सटे पुल के पास नदी का पानी भी एकदम बाढ़ में बदल गया। और कॉलोनी से लगी दीवारें गिर गईं। इसके बाद पानी का सैलाब जब अंदर घुसा तो कम से कम 18 मकानों को भारी नुकसान पहुंचा। 5 लोग बह गए, जिनमें एक की लाश बरामद हुई, बाकी 4 की तलाश जारी है। 17 से अधिक लोग घायल हैं, जिनमें कुछ की हालत अधिक गंभीर है।
1: जून 24 को जो मॉर्निंग में जो फ्लैश फ्लड आया था, तो उसमें जो नेपको का इलाका है उसमें 5 मिसिंग पाए गए थे, और SDRF डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया। NDRF को भी रिक्वेशन किया गया था, क्योंकि रोड ब्लॉकेज की वजह से NDRF शुरुआती के 2 दिनों में नहीं पहुंच पाई। कल NDRF की टीम यहां आई है और सर्च ऑपरेशन कर रही है। हमारे साथ स्पेशल इक्विपमेंट्स, K9 और बोट के द्वारा जो भी हाइड आउट है उसमें हम लोग सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं।
0: बारिश के कारण मुख्य मार्ग भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। BRO लगातार सड़कें खोलने के प्रयास में जुटा है। NDRF के साथ साथ बचाव कार्य में भारतीय वायुसेना की भी मदद ली जा रही है।
2: एक कुत्ता और एक आदमी है, देखिए।
0: एक स्थानीय व्यक्ति लकड़ी के लट्ठों के साथ बह गया, साथ में उसके एक कुत्ता भी था। बड़ी मुश्किल से दोनों को रेस्क्यू किया जा सका। बचाव दल और अन्य बचाव के लिए जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन लगातार बारिश के कारण मुश्किलें भी आ रही।
3: रास्ता जो पूरा लैंडस्लाइड होके पूरा ब्लॉक हो गया, और ये पोसा में जितना ये नेपको का ये क्वार्टर लुक को और ये पूरा डैमेज हो गया। इंडियन एयरपोर्ट्स वो लोग भी तो हेलीकॉप्टर से इतना ये मदद किया है।
4: लगभग आज 3 दिन हो गया। 3 दिन में हम लोग जितना भी मतलब जो पोकलैन लेके खुदाई किया ना, तो ज़्यादा सामान तो नहीं मिला। आज ये जो आदमी हम लोग का एक भाभी था तो आज नहीं बोल के उसका तो आज नहीं उसका बैग मिला है। ये उसका फोन भी मिला है, ये देखिए फोन और बैग मिला है। तो शायद उम्मीद है मतलब उसमें वो जगह पे जो उधर खुदाई कर रहा है ना, मिलने का चांस भी है ना।
0: तेज बहाव और बढ़ते जल स्तर ने जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, साथ ही दूसरे इलाकों में भी बाढ़ और लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ता जा रहा है। लगातार बारिश से अरुणाचल प्रदेश को चीन सीमा से जोड़ने वाली लिकाबाली बासर सड़क भी पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, जिसके कारण इस रास्ते पर लोगों की आवाजाही या तो पूरी तरह ठप है या बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
5: ये रुक गया तो हर साल में वही हाल है।
6: हर साल
5: अभी 4 जैसे हो गए। कभी
6: क्या सरकार कुछ नहीं करती सर?
5: NHDCL लोग भी काम नहीं है, अभी कोई भी नजर नहीं है, इसका माँ बाप ही नहीं है।
7: तो ऐसे ही होता है, हम लोग को आदत से पड़ गया है, ये तो होना ही है। बल्कि सर ये जो है आपका MLA और ये लोग का बस का बात नहीं है ना, ये जो सरकार ऊपर में बैठ के वो लोग भी तो ट्राई तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, पर वो सरकार सुनता नहीं है ना।
8: आप देखिए यहाँ में रिस्क है इतना, अभी जो चल के आया इतना।
0: अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग जिले के मगी इलाके में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण भूस्खलन और मलबा आने से लिकाबाली बासर सड़क पूरी तरह अवरुद्ध हो गई है। इससे इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। लोअर सियांग जिला प्रशासन ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से फिलहाल इस सड़क पर यात्रा न करने की अपील की है। लगातार बारिश के चलते सड़क पर भारी मात्रा में मिट्टी और मलबा जमा हो गया है, जिससे ये रास्ता यात्रियों के लिए असुरक्षित हो गया है।
9: अरुणाचल प्रदेश का लोअर सियांग जिला और ये जो कंडीशन है इस रोड की, CG के सर्कल में काफी गाड़ियां फंस रही हैं लगातार। ये रोड आगे जाके मेचुका तक जाती है, अलो से होते हुए मेचुका और चाइना बॉर्डर तक ये रोड जाती है। डिफेंस के नजरिए से भी काफी इंपोर्टेंट रोड है, काफी महत्वपूर्ण रोड है। कंडीशन इतनी खराब है। हमने यहाँ के जो लोअर सियांग जिले के और आगे जो है लेपारादा डिस्ट्रिक्ट है और वेस्ट सियांग जिले है और आगे शियोमी है, उसके बाद इंडो चीन बॉर्डर है, चाइना है, उन सभी लोगों से काफी गाड़ियों से हमने जाना जो यहाँ लगातार मुश्किलों का, काफी गाड़ियां यहाँ फंस भी जाती हैं, बहुत ही खराब कंडीशन है।
0: प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है, लेकिन मलबा हटाने और सड़क निर्माण का काम मौसम के सामान्य होने की स्थिति में ही शुरू किया जा सकेगा। तब तक हालात और अधिक बारिश से और भी खराब हो सकते हैं। इस स्थान से एलएसी की दूरी 250 से 300 किलोमीटर दूर है, जिसके कारण ये क्षेत्र सुरक्षा के लिहाज से भी संवेदनशील है। फिलहाल प्रशासन लगातार सतर्कता बरतने की अपीलें कर रहा है और हालात पर अपनी नजरें बनाए हुए है। ये तस्वीरें दार्जिलिंग की हैं। एक पूरा पहाड़ अचानक से भरभराकर सड़क पर गिर गया। आप देख सकते हैं कि एक सुरक्षा कर्मी की जान जाते जाते बची। भूस्खलन के कारण सेवोक काली मंदिर के पास सिलीगुड़ी के निकट सड़क पूरी तरह बंद हो गई, जिसके कारण पर्यटक फंस गए। ये रास्ता राष्ट्रीय राजमार्ग का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रशासन युद्ध स्तर पर मलबा हटाने का काम कर रहा है, क्योंकि यही सड़क सिक्किम और कालिम्पोंग की जीवन

और अब ये तस्वीर देखिए, ये दादर क्षेत्र की है। बारिश के कारण पूरा पेड़ उखड़कर एक कार के ऊपर आ गिरा। कार के अंदर ड्राइवर था जिसे चोटें भी लगी हैं। कार का पूरी तरह कचूमर निकल गया। आसपास से गुजरते लोग ये हादसा देखकर हैरान हैं। कहीं भी देख लीजिए, मुंबई का यही हाल है। हालांकि बीएमसी अधिकारी भी सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, और एक बार तो मेयर जब हादसों से बचाव की तैयारियों का जायजा ले रही थी तभी उनके पीछे एक आदमी सीवर में गिर गया।

0: मुंबई प्रशासन का कहना है कि बारिश से बचाव की तैयारियां की गई हैं और हालात पर नजर रखी जा रही है। आइए आपको किंग सर्किल और गांधी मार्केट की कुछ और ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जो मुंबई की पहली बारिश में व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान खड़ा कर रही हैं। आधी आधी गाड़ियां पानी में डूबी हुई चल रही हैं। पानी के नीचे खुले सीवर दुर्घटनाओं को निमंत्रण दे रहे हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि तालाब बन चुकी सड़कों पर कैसे निकलें, लेकिन निकलना जरूरी है तो जान जोखिम में डालकर निकल भी रहे हैं।
1: इधर तो बहुत सालों से अभी चल रहा है, इसका हल है ही नहीं। अभी इन्होंने अच्छा बड़ी बड़ी अपनी मोटर लगाई है, पानी के पंप लगाए हैं, तो लगता है अभी इस बार पानी शायद नहीं चढ़ेगा। दिक्कत ये है, हर साल ऐसा ही रहता है। इधर
2: हाल ही नहीं ना, ज्यादा बारिश होगी तो दिक्कतें होंगी ना।
3: मेयर आई हैं, वो तो कह रही हैं काम पूरा हो चुका है, लोगों को परेशानी नहीं।
2: काम पूरा हो चुका है लेकिन पानी तो चढ़ा हुआ था। अभी देख लो क्या करना है भाई, इसका ध्यान रखें बस, पंप वगैरह का जो भी है बराबर मेंटेन करें ना चीज।
4: हर साल दिक्कत होती है लेकिन ये भी इतना छोटे बारिश में इतना प्रॉब्लम हो गया पता नहीं।
5: दिक्कत तो है ना भाई राम, इतना बहुत गटर भर गया है एकदम पूरा, इसके लिए तकलीफ ही तो है ना, बस वो सब बंद है, बहुत तकलीफ है भाई राम।
0: दादर रेलवे स्टेशन के आसपास का ये हाल भी देखिए, हर तरफ जल भराव है, गाड़ियां भी मुश्किल से निकल पा रही हैं और पैदल यात्रियों के लिए तो मुसीबतें और भी बड़ी हैं। भाई जी मार्केट के सामने भी जल भराव की विकट स्थिति है। लगातार बारिश और जल भराव के चलते मुंबई का ट्रैफिक भी बुरे हाल में है, जगह जगह गाड़ियों के लंबे जाम दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र के कई इलाके ही अब भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहे हैं। ये जलगांव का दृश्य है, देखिए कैसे पूरी बस ही पानी में डूब चुकी है और लोगों ने उसकी छत पर चढ़कर अपनी जान बचाई है। सड़कों पर पानी का सैलाब बह रहा है और उसकी चपेट में सब है, गाड़ियां, खेती किसानी के उपकरण, इंसान, मकान, दुकान, सब। बारिश अगर और ज्यादा हुई तो जलगांव में हालात काफी बिगड़ सकते हैं क्योंकि आसपास की सड़कें और नदी तालाब सब एक हो चुके हैं। अमरावती का सरकारी अस्पताल बारिश के साइड इफेक्ट से जूझ रहा है। पानी भरता है और साफ किया जाता है लेकिन जल भराव दिक्कतें बढ़ाता ही है।
6: बिल्डिंग तो हमारी तो बहुत पुरानी है, पूरे अमरावती को मालूम है पुराना अस्पताल है और ये बाकी जमीन हमारी नीचे में है और बाकी रोड बनने की वजह से ये ऊंचाई हो गई आजू बाजू में। अभी ये पीछे के साइड में खापड़े बगीचा, उधर से पूरा पानी आके हमारे इधर भरा हुआ है। बारिश ज्यादा होने की वजह से रोड पर का उधर का बैक साइड का पानी उतार होने की वजह से हमारी इधर आया और इधर ये दूसरे साइड से कॉरपोरेशन का जो नाला है वो भी भरा हुआ था, उसकी वजह से पानी उसमें निचरा हुआ नहीं पूरा, इसलिए अंदर में हमारे कैजुअल्टी जो कैजुअल्टी का एरिया है ये साइड में पानी भर गया, आरओएम ऑफिस के इधर पानी भर गया, उसकी वजह से हमारे को दिक्कतें जा रही है। तो ये हमारे हमारी कोशिश रही कि हमारे पास में जितना यंत्र सामग्री है उससे हमने बचाए और पानी निकालने की कोशिश की है।
0: सबसे बुरी स्थिति आईसीयू में भर्ती मरीजों की है। बारिश के कारण लाइट चली जाती है जिसके कारण मरीज और उनके परिजन खासी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं।
7: रोज जा रही लाइन, कल भी गई थी रात में लाइन, तो अभी एक मच्छर है यहाँ, गर्मी हो रही, पेशेंट के लिए कुछ ना कुछ सुविधा होना यहाँ पे जैसा है, पर बार बार लाइन जा रही, लाइन की तो पहले जरूरत रहती।

0: वाले ये पब्लिक को मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, और उनको जो बिल भी दे रहे हैं 15 दिन 20 दिन का 12 दिन का बिल 1700 2000 2500 दे रहे हैं, लेकिन उनको लाइन नहीं दे रहे।
1: भारी बारिश से अमरावती शहर का हाल भी देखा जा सकता है। पानी से भरे अंडरपास के अंदर लोग गाड़ियों से जैसे निकल रहे हैं, वो कभी किसी हादसे में बदल सकता है।
2: विदर्भ के अमरावती और अकोला में जो है मानसून के एंट्री से जो है किसान खुशहाल हुआ है, और गर्मी से जूझ रहे लोगों को भी इस बारिश से निजात मिली है। अलबत्ता इस बारिश को लेकर जो है कई निचले इलाकों में, अमरावती के निचले इलाकों में पानी जाने की वजह से जिला अस्पताल हो या रेलवे का अंडर ब्रिज हो, वहां पर जल जमाव होने की शिकायतें सामने जरूर आई है। लेकिन मानसून की दमदार एंट्री से जो है लोगों के साथ जो है किसान भी है खुश होते नजर आ रहे हैं।
1: हर तरफ पानी का साम्राज्य है, जिससे अमरावती में जनजीवन अस्त व्यस्त है, लेकिन चिंता इस बात की है कि अभी तो बारिश शुरू हुई है, आगे क्या होगा।
3: रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दिखाएंगे मॉनसून ने भारत के बाकी राज्यों में क्या हाल बना रखा है। देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
5: Looking to trade in your current vehicle? We'll get you the most for your trade. At Buyers Volkswagen, we've been putting customers first since 1897. And when you're ready to buy, our team will do whatever it takes to help you drive home in the Volkswagen that's right for you.
6: Drive home a new 2026 Volkswagen Tiguan S for $212 for 24 months with $49.99 due at signing.
5: Experience the buyer's difference and see why generations of customers continue to choose us. Visit us at columbusvw.com or by the airport.
7: See dealer for details. Offer ends 6/30/2026.
8: Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
9: Schwarber to right field, and it will leave.
8: From the first pitch of the season to the stretch run,
9: and that's the ball game.
8: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
10: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
11: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
12: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
13: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
14: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
15: हमने तब भी सवाल किया था,
16: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
15: हम आज भी सवाल करते हैं,
16: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया, और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
15: ऑपरेशन अग्नि,
16: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
15: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई, खबरदार सिर्फ आज तक पर।
17: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
18: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
1: महाराष्ट्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET का पेपर करीब 24 घंटे पहले लीक हो गया। महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल ने इसके बाद परीक्षा स्थगित कर दी है।
19: प्रश्न पत्रिका लीक हो गई है, ऐसा थाने भिवंडी में हुआ, पुनः एफआईआर हो गई है। हमारे परीक्षा परिषद के अध्यक्ष और आयुक्त दोनों भी वहाँ पर। रजिस्ट्रेशन फिर से करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स को, अगली तारीख हम दे देंगे।
1: एग्जाम रविवार को होना था। पुलिस के मुताबिक पेपर लीक की सूचना के बाद ठाणे के भिवंडी इलाकों के कई जगहों पर छापेमारी की गई। इसके बाद एग्जामिनेशन काउंसिल के अफसरों को बुलाया गया और जब्त पेपर को वेरीफाई कराया गया। जांच में पता चला है कि 1.5 करोड़ में पेपर बेचा जा रहा था।
20: पेपर आने वाले थे वो उनके ताबे में मिले। शिक्षण विभाग के जो सीनियर ऑफिसर है उनको कॉन्टेक्ट करने के बाद ये वेरीफाई हुआ। उन्होंने भी वही कहा, रिपोर्ट दिया कि ये वही पेपर है, इसलिए उन लोगों को हिरासत में लिया है, पेपर जब्त किया है। उनके पास से कुछ मोबाइल, कुछ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये भी जब्त किए हैं।
1: परीक्षा में 4,28,000 से ज्यादा उम्मीदवार शामिल होने वाले थे। ऐसे में अब एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत तेज हो गई है।
21: ये सरकार की नाकामयाबी है, ठीक ढंग से एग्जाम भी नहीं ले सकते। अगर तुमको ठीक ढंग से एग्जाम भी लेना नहीं आता है तो सरकार करके उस कुर्सी पर बैठने का अधिकार ये सरकार के पास है क्या?
22: समय रहते पेपर लीक का ये प्रकरण पकड़ लिया और उस एग्जाम को स्थगित कर दिया। एग्जाम होने के बाद अगर पेपर लीक का पता चलता तो पता नहीं कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता।
23: जो मेंटल प्रेशर है बच्चों के ऊपर बहुत बढ़ जाता है और कभी कभार जैसे नीट में 22 बच्चों ने वहां पे आत्महत्या की और वही चीज अगर इसमें होगी तो उसके लिए पूर्णपणे ये सरकार जिम्मेदार होगा। सरकार ने जिम्मेदारी लेके जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है, मंत्री हो या कोई भी हो, उसका राजीनामा लेना चाहिए, हम सबकी मांगनी है।
1: महाराष्ट्र में टीचर बनने के लिए या जो पहले से सरकारी टीचर हैं उनके लिए भी टीईटी जरूरी है, लेकिन नीट के बाद अब टीईटी पेपर लीक ने एक बार फिर पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
24: हाथ में भगवंत मान का मास्क लिए कार में बैठे शख्स का नाम है जगमन समरा, जो कि कनाडा का रहने वाला है। भगवंत मान ने अपने विवादित वीडियो को लेकर अब समरा पर निशाना साधा है। मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समरा पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया, जिस पर समरा ने भगवंत मान पर पलटवार किया है।
25: मेरे पिताजी मेनू कदे यही जी बात नहीं बोले, जे मैं तू बोलना दारू पी के, वो भी बिना किसी कह लो भी आधार पर।
24: भगवंत मान ने कहा था कि वो समरा से सिर्फ एक बार मिला है, जबकि समरा का दावा है कि वो मान को बहुत अच्छे से जानता है। जहां भगवंत मान के पैतृक गांव में भी उसका आना जाना था, लेकिन भगवंत मान वीडियो के पीछे मास्क मैन होने का दावा कर रहे हैं।
26: दो चीजें हो नोट कर रहे हो, एक तो मेरे गल का निशान नहीं है, एक इतों बिल्कुल लाइन बन रही है, मास्क लगे हुआ है। नंबर 3 ते क्योंकि ये अखा नहीं लग सकती, मास्क तो बन जाता है, अखा नहीं बन दिया, तो फिर उन्हें ਐਨਕ ਲਈਏ।
25: ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਹੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ 3 ਲੈਬਾਂ ਚ ਕਿਤੇ ਮਾਸਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਮਾਸਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆ, ਐਕਟਰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿਓ।
24: ਅਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਵੀਡੀਓ ਮੇ ਮਾਸਕ ਮੈਨ ਥਾ ਤੋ ਫਿਰ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਯੇ ਕਿਉਂ ਕਹਾ ਕਿ ਇਹ AI ਵੀਡੀਓ ਹੈ। मान फिर पलटे और वीडियो में जर्मन के किसी उनके जैसे दिखने वाले शख्स पर आरोप लगाया। फिर मास्क मैन की थ्योरी आई। सबसे बड़ा सवाल, जिस वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट को अकाल तख्त के सामने मान की ओर से सौंपा गया है उसमें इसका जिक्र क्यों नहीं है? हालांकि अब रिपोर्ट तैयार करने वाली कंपनी के भी फर्जी होने का दावा गुरुग्राम पुलिस की ओर से किया गया है, जिसमें भगवंत मान एक बार फिर फंसते नजर आ रहे हैं।
27: जो साडे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी कहते हैं ना भी ये मार्च के वीडियो मेरी नहीं, तो फिर उन्होंने गड़गांव जाने की क्या लोड़ सी? जे गड़गांव जाके तुम 10,00,000 रुपया करते पे होटल से कमरे बुक कराने पे हैं तो कादे तहत कराने पे, जे वीडियो तुहाडी नहीं तुम तो फिर घर बैठो।
24: वीडियो का सच जो भी हो लेकिन भगवंत मान की मुश्किलें आसान होती नहीं दिख रही। आज तक बिरोध।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर।
2: इस वक्त मैं आपको बता दूं कि इंडियन क्रिकेट के लिहाज से ये ब्लैक संडे गिना जाएगा। दो ऐसे नतीजे जिन्होंने भारत की क्रिकेट फैंस का दिल तोड़ दिया। एक तो लॉर्ड्स के मैदान पर भारत की विमेंस टीम इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने 170 रन का टारगेट दिया था, ऑस्ट्रेलिया ने आराम से चेज कर दिया। लेकिन ज्यादा बड़ी खबर जो है वो आयरलैंड से आई है, बेलफास्ट। वर्ल्ड चैंपियंस इंडिया आयरलैंड से 2-0 से हार गए। शुक्रवार को इंडिया ने पहला मुकाबला हारा था। हम सबको लगा कि चलिए एक मैच की बात है, अब शायद आज के दिन भारत बदला लेगा, अपने पोटेंशियल पर खेलेगा। लेकिन नहीं, आज का मुकाबला भी इंडिया हार गया है। कहने को बाद में नतीजा यह था कि इंडिया सिर्फ एक रन से मैच हारा, लेकिन भारत ने पहले ही हथियार डाल दिए थे। 155 रन इंडिया के सामने टारगेट था, सिर्फ 155 रन। संजू सैमसन एक गेंद पर 0 पर आउट हुए। अभिषेक शर्मा भी पहली गेंद 0 पर। कप्तान श्रेयस अय्यर, जिनकी कप्तानी, जिनकी बैटिंग को लेकर सवाल रहेंगे, उन्होंने 10 रन बनाए। ईशान किशन वो रन आउट हो गए। उसके बाद तिलक वर्मा और अक्षर पटेल, तिलक वर्मा शिवम दुबे, पार्टनरशिप तो होती रही, लेकिन तिलक वर्मा ने किसी स्टेज पर भी कोशिश नहीं की कि भारत इस स्कोर को चेज करे। पॉइंट तक टुक टुक टुक टुक करते रहे, एक छक्का जरूर मारा, लेकिन 46 गेंदों में 55 रन, वो तो भला हो। नीचे आकर 10 गेंद में हर्षित राणा ने 21 रन बनाए और भारत आखिरी ओवर तक पहुंचा। आखिरी गेंद पर प्रिंस यादव ने छक्का लगाया, लेकिन अंत में एक रन से भारत की हार हो गई है। अब एक रन से हारे या 100 रन से हारे, हार हार है। दोनों T20 मुकाबले इंडिया हार चुका है। इंडिया वर्ल्ड चैंपियन है। इंडिया ने नए वर्ल्ड कप साइकिल की तैयारी की, नया कप्तान श्रेयस अय्यर, टीम में कुछ बदलाव हुए। सब ये देखना चाहते थे कि आज वैभव सूर्यवंशी खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, लेकिन वैभव सूर्यवंशी को आज भी मौका नहीं मिला। और यह कहा गया चूंकि इंडिया शुक्रवार को हार गया था तो आज इंडिया चांस नहीं लेना चाहता। आज वैभव सूर्यवंशी को फिर नहीं खिलाया, लेकिन नतीजा क्या रहा, आज भी इंडिया की हार है। तो शुक्रवार की हार को हम एक एबरेशन ना कहें कि चलो यार एक खराब दिन आ गया था। यहां पर एक खराब दिन नहीं, कहीं ना कहीं भारत के पूरा का पूरा ये दौरा ही खराब रहा। गेंदबाजों ने आज थोड़ी सी बेहतर गेंदबाजी की थी, 154 रन पर रोक दिया था, लेकिन बल्लेबाजी से तो आज आप उम्मीद कर रहे थे, बल्लेबाजी से आज आप उम्मीद कर रहे थे कि 154 रन तो इंडिया चेस करेगा ही करेगा। लेकिन सनी भाई ये नहीं समझ आया कि इंडिया 20 ओवर खेल गया। मैं मानता हूं कि ऊपर से इंडिया की 4 विकेटें गिर गई, सनी भाई इंडिया पूरे 20 ओवर खेला है, और 20 ओवर में आप खेलकर भी 154 चेस नहीं कर पाए।
3: जी ये जो हुआ है ना, ये जो पहली ओवर में जो 2 विकेटें गई उसी की वजह से हुआ है। क्योंकि देखिए ओपनिंग जो होती है पहले 6 ओवर के जो पावर प्ले में जो टीम अगर विकेट नहीं लेती तो उनके लिए रन रोकना मुश्किल होता है
2: जी।
3: और एक अच्छी शुरुआत करती है, भले मतलब 6 ओवर में 70-80 रन नहीं जैसे हम आईपीएल में देख रहे थे, पर पहले 6 ओवर में जब आप 150-154 चेस कर रहे हैं तो वहां पे भी आपकी अगर 45 या 50 की शुरुआत होती तो फिर आगे के जो 14 ओवर है वहां पे वो रन बनाना आसान बनता है। तो सिचुएशन से जो खेलना था वो भारतीय बल्लेबाजों ने सिचुएशन से खेला नहीं। अगर आपकी पहली बॉल पर विकेट गई है तो ये जरूरी होता है कि आप थोड़ी सी जिम्मेवारी उठाए और अपना फुटक करके ये ना मारे जहां पे आपकी दूसरी विकेट भी इस एक ही ओवर में जाती है, दोनों ओपनर आउट होते हैं। ये मैं कह रहा हूं कि ये भारतीय क्रिकेट का हमने देखा है कि हमारी इमेज क्या है, हम तो मारने वाले हैं। अरे भाई मारने वाले ठीक है, आप सिचुएशंस के हिसाब से भी मार सकते हैं ना, ये जरूरी नहीं कि आपको पहली ही गेंद कोई छक्का मारना है। तो इसी की वजह से जो शुरुआत नहीं मिली यही कारण है कि हम 154 रन चेज नहीं कर पाए।
2: सर वे आपने बड़ी अच्छी बात की जी, मैं पहली गेंद पर आउट हो गया, मेरे सामने वाला बल्लेबाज ये तो समझेगा कि यार आयरलैंड से खेल रहे हैं, ये पिचेस थोड़ी अलहदा हैं, थोड़ी डिफरेंट हैं, लेकिन नहीं, मैं तो इसी तरह से खेलता हूं, ट्रक आ गया तो ट्रक आ गया, मैं भी आउट हो गया। फिर अगला बैट्समैन कहता है जी दो आउट हो गए तो क्या हुआ, आगे कुआं है तो छलांग तो मैं मारूंगा ही मारूंगा क्योंकि हम तो ऐसे ही खेलते हैं। लेकिन सवाल ये आ जाता है कि एक हार के बाद क्या इंडिया ने सबक नहीं लिया था?
3: वही तो दिख रहा है ना, वही तो दिख रहा है कि जिस तरह से हमारे पहले 6 ओवर में विकेटें गए, जब आपकी 2 विकेटें जाती है तो ये तो 20 ओवर की मैच है। आपकी आस्किंग रेट क्या थी, 8 शुरुआत की तो 8 से कम की आस्किंग रेट थी, तो मतलब कोई इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली थी। अगर आपको आपके पहले 6 ओवर में आपने 40 रन करके 2 विकेटें भी जाती आपकी तो भी आपको दिक्कत नहीं होती अगले अगले अगले 14 ओवर में 110 रन करने के लिए। पर यही तो मतलब एक ये जो सोचे कि T20 में हम ऐसे ही खेलेंगे, ये नहीं बनता। आप अलोंग द ग्राउंड चौके मार सकते हैं, 4 और चक्के में 2 रन का फर्क होता है, पर जो जोखिम की जो परसेंटेज होती है वो और ज्यादा बढ़ जाती है।
2: बल्कि मैं तो ये कहूंगा सनी भाई, एक स्टेज पर जहां पर आपकी चलो 4 विकेटें गिर गई, और ऐसा नहीं है कि पहली बार इंडिया की 35 रनों पर 4 विकेटें गिरी हैं, और आपको यह भी देखना है कि आप 155 चेज कर रहे हैं, 185 नहीं कर रहे। फिर एक पार्टनरशिप होती है अक्षर पटेल के और तिलक वर्मा के बीच, फिर तिलक वर्मा और शिवम दुबे, लेकिन तिलक वर्मा की गेम को लेकर भी सनी भाई अब कहीं ना कहीं बड़े सवाल उठाए जाएंगे। उन्होंने एशिया कप जिताया था लास्ट ईयर, मुझे अभी भी याद है, जबरदस्त बैटिंग की, लेकिन ये पूरा साल उनका ऐसे ही गया, स्पेशली जहां पर विकेट थोड़ा फंसा हो वो फंस जाते हैं। आप देखिए उन्होंने 46 बॉलों में बनाए 55 रन, 46वीं बॉल पर वो आउट हुए हैं, 45वीं बॉल पर उन्होंने सनी भाई छक्का मारा था, यानी कि एक स्टेज पर 44 गेंदों में उनके 49 रन थे। ये भी कोई अप्रोच नहीं है कि आप सिर्फ बैटिंग कर रहे हैं भाई, T20 का मुकाबला आप ड्रॉ नहीं कर सकते, या आप जीतेंगे या आप हारेंगे, मतलब किसी स्टेज पर मुझे यह भी नहीं लगा कि बाद में ये इंडिया है, चलो आउट हो गए कोई बात नहीं ऊपर से, लेकिन हम तो इंडिया है, हम करके दिखाएंगे, वो भी तो नहीं हुआ।
3: नहीं देखिए, मैं तिलक वर्मा पे उंगली नहीं उठाऊंगा क्योंकि उस वक्त आपकी बहुत 4-4 विकेट गई थी
2: जी,
3: तो ये जरूरी था कि पारी को संभालने के लिए एक साझेदारी की जरूरत थी और वो साझेदारी बन रही थी, उसके आगे भी कुछ ओवर तो बनने थे, तो मतलब उनका जो अप्रोच था वो ठीक था। आपने कहा कि 44 गेंदों में 49 रन बनाए, हाँ 100 के ऊपर की स्ट्राइक रेट है, पर हर बार आपका जो भी बल्लेबाज है वो 150 या 140 की स्ट्राइक रेट नहीं हो सकता, और खास करके ऐसे पिचेस पर जो हमने 2 मैचेस में देखे कि इस पिच पर शुक्रवार के पिच में फास्ट बॉलर के लिए थोड़ी सी ज्यादा मदद थी, आज शायद पिच थोड़ी सी धीमी थी, और इसीलिए यह जरूरी था कि और भी जो भी जोखिम उठानी है वो आखिरी 3-4 ओवर में, जब आपको आपको पता है कि आपको 12 रन करने हैं, तो अगर आपके हाथों में विकेटें होती है तो मतलब आपके 4 ओवर में आप 45 रन भी आसानी से कर सकते थे, पर वो नहीं हुआ क्योंकि आपके हाथों में विकेट नहीं थी और आपके पास जो बल्लेबाज थे नीचे आने वाले उनके पास वो एक्सपीरियंस अनुभव भी नहीं था, और वो शायद आप ये कह सकते कि काबिलियत भी नहीं थी।
2: सही भाई, आप ऐसा भी नहीं है कि इंडिया ने कहा आयरलैंड है चलो यार हम एक काम करते हैं, हम कुछ युवा खिलाड़ियों को इस्तेमाल करते हैं, आपने ये कहा कि हम तो हारने से डरते हैं, भाई कहीं आज हम हार गए तो हम एक काम करते हैं, हम रिस्क नहीं लेते, क्योंकि सवाल वैभव सूर्यवंशी को लेकर है। मैं जानता हूं कि वैभव सूर्यवंशी के ना खेलने से ऐसा नहीं है कि इंडिया हार गया, लेकिन आज वो पूरा सवाल पूरे हिंदुस्तान में है कि आप इन मैचों को इस्तेमाल कर सकते थे, कम से कम अगर आपने इस्तेमाल करके हार गए होते ना तो आपके पास एक बहाना होता कि चलो जी हम एक फ्यूचर के प्लेयर्स को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आपने पूरी अपनी पूरी टीम खिलाई है फिर भी आप हारे हैं।
3: हाँ देखिए, आज के टीम में तो दो नए खिलाड़ी थे, 2 डेब्यूटेंट थे, तो बहुत अच्छी गेंदबाजी की, 3 विकेटें ले ली, और आखिरी गेंद जो उनको एक ही गेंद खेलने का मौका मिला वहां पे उन्होंने छक्का भी मार दिया। तो देखिए, मैं तो मतलब जैसा आपने कहा कि एक महीने पहले से मैं कह रहा था कि ये आयरलैंड की जो 2 मैचेस है वहां पे जिस तरह के वैभव सूर्यवंशी का फॉर्म था तो उसको दोनों मैचेस में खिलाया जा सकता था, क्योंकि एक मैच में आप अभिषेक शर्मा को लेते और सूर्य ओपनिंग करने के लिए, और दूसरे मैच में आप अभिषेक को ड्रॉप करती है नीचे करके सैमसन को लेते, वैसा आप कर सकते थे पर वैसा हुआ नहीं। और बिल्कुल आपने सही कहा कि ये नहीं, ये जरूरी नहीं कि वैभव सूर्यवंशी होता तो मैच जिता देता, क्या पता कि शायद वो भी 8-10-15 रन करके आउट हो जाता। पर अगर आपको युवा खिलाड़ियों को ट्राई करना था तो ये दो मैचेस आपके लिए सबसे बड़ा अच्छा मौका था ट्राई करने के लिए।
2: तो सर अब तो ये भी बहाना रहेगा क्योंकि इंग्लैंड जाने से पहले आयरलैंड में भी इंडिया हार गया, तो यार इंग्लैंड के शुरुआती मैचों में भी हम कहां रिस्क ले सकते हैं। अब तो ये भी एक बहाना मिल गया कि वैभव सूर्यवंशी को अभी थोड़ी देर और इंतजार करा लें।
3: नहीं, अभी पहले मैच में उनको खिलाना होगा, बस बात सीधी सी है कि जो आपके फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाज है उनको बाहर रखिए और वैभव सूर्यवंशी को खिलाए, बस बिल्कुल। या तो ओपन करके जो आपके ओपनर्स है वहां आप उनको एक दो पे खिलाइए, नंबर तीन पर वैभव सूर्यवंशी को खिलाइए, पर आपको वैभव सूर्यवंशी को पहले मैच में खिलाना होगा जो इंग्लैंड के खिलाफ 1 जुलाई को है।
2: ये बड़ी बात सनी भाई ने कही है कि आज आप जिस तरह से एक कहते हैं कि जी हमारे ओपनर्स हैं हम उनको हिलाना नहीं चाहते थे, लेकिन ये बहाना इंग्लैंड में नहीं चलेगा। सनी भाई कहते हैं पहला मैच T20 का 1 तारीख को, उसमें वैभव सूर्यवंशी को खेलना होगा, वैभव सूर्यवंशी को खेलना होगा, भले ही आपको बैटिंग ऑर्डर को थोड़ा आगे पीछे करना। और सनी भाई मैं तो ये मानता हूं कि कभी एक प्लेयर के लिए आप पूरा का पूरा बैटिंग ऑर्डर चेंज ना करें, लेकिन कभी कभी आपको T20 में ये मजबूरी बन जाती है। मैं जानता हूं कि इस वक्त वैभव सूर्यवंशी तैयार हैं, वो फॉर्म में है और जिस तरह की फॉर्म में है ये सिलेक्टर्स ने उनको टीम में डाल दिया है। अब कोच पे कप्तान पे आ जाता है कि जब बंदा ऊपर जा रहा है उसको तब मौका देना है या फिर जब डिप हो तब मौका देना है। लेकिन क्या आप इस तरह की इवेंचुअलिटी भी देखते हैं कि वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा तीनों 11 में खेल रहे हो और आपको मिडिल ऑर्डर को थोड़ा आगे पीछे करना हो?
3: बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखिए आपकी जो ओपनिंग पार्टनरशिप बनी है संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की, उन्होंने बहुत अच्छी आपके लिए पिछले कुछ डेढ़ सालों में बहुत अच्छी ओपनिंग करके दी है, तो उनको दो मैच के बाद में ड्रॉप करना ठीक नहीं है। पर उनको अगर अकोमोडेट करना है तो मुझे लगता है कि जो मिडिल ऑर्डर में जिन्होंने रन नहीं बनाए उनको ड्रॉप करके, उनमें से किसी को ड्रॉप करके आप वैभव सूर्यवंशी को नंबर तीन पे खिलाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। या आप चाहते कि हम उनको नंबर तीन पे खिलाइए, नंबर चार पर ईशान किशन आ सकते हैं, 5 पर श्रेयस अय्यर आ सकते हैं, उसके बाद में जो आपको करना है वो आप कर सकते हैं, पर 1 जुलाई को, क्योंकि अगर इंग्लैंड को पहले ही मैच में आपको शॉक करना है तो वैभव सूर्यवंशी जरूरी है। हाँ, ये भी हो सकता है वैभव सूर्यवंशी जल्दी आउट हो सकते हैं पहले मैच में, हो सकता है, पर अगर वो चले पहले मैच में तो फिर इंग्लैंड हिल जाएगी। अब क्या इंग्लैंड थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकती है क्योंकि आयरलैंड ने इंडिया को हरा दिया है, तो इंग्लैंड की टीम शायद थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंस हो सकती है, और उस ओवर कॉन्फिडेंस का फायदा जैसे कि आयरलैंड ने इंडिया का ओवर कॉन्फिडेंस का फायदा उठाया, भारतीय टीम भी इंग्लैंड का ओवर कॉन्फिडेंस का फायदा उठा सकती है, और उसके लिए सूर्यवंशी को खिलाना जरूरी है।
2: सर भाई आप श्रेयस अय्यर को कैसे देखते हैं? ठीक है वो T20 की टीम में नहीं थे, उन्होंने वनडे में बड़ा अच्छा किया हुआ था, फिर उसके बाद IPL में उनकी कप्तानी थी, IPL में उनकी बैटिंग भी थी, और मैं जानता हूं कि शायद दो मैचों के बिना पर हम किसी को सक्सेस या फेलियर का रूप ना दें, रंग ना दें, बट श्रेयस अय्यर की बैटिंग और श्रेयस अय्यर की कप्तानी, इज इट टू सून टू जज, या फिर कहीं ना कहीं जाके आगे उनकी कप्तानी पर एक माइक्रोस्कोप रहेगा, उनकी बैटिंग पर एक माइक्रोस्कोप रहेगा?
3: वो शायद इंग्लैंड की सीरीज के बाद में हमें देखना होगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी तो इट इज टू सून, ये जो आगे की जो 5 मैचेस है इंग्लैंड के खिलाफ उसके बाद में हम जज कर सकते हैं और बैटिंग के बारे में, पर ये दो मैचेस के बाद में उनको जज करना मुझे नहीं लगता कि ये ठीक बात है।
2: और ये तो सनी भाई आप भी मानेंगे ना कि इस वक्त इंडिया ने अपने बेस्ट T20 टीम चुनी है। अगर आप देखें हार्दिक पंड्या का बैकअप था नीतीश रेड्डी, वो टीम में नहीं है, एक बुमराह टीम में नहीं है, लेकिन बैटिंग तो यही चॉइस है ना, मतलब जो आपके बाहर खिलाड़ी बैठे हैं वो शायद इस वक्त आपकी सोच में नहीं है T20, वो भले वो जायसवाल हों, भले वो शुभमन गिल हों, उस लिहाज से तो आपकी पूरी टीम गई है वहां पर।
3: नहीं, बॉलिंग में तो कमजोरी है ना
2: जी,
3: बॉलिंग बुमराह नहीं, आपने सिराज को रेस्ट दिला दी, तो इसी की वजह से जो ओपनिंग में जो विकेट जरूरत थी वो आपको नहीं मिल रही है, तो और उसी के और आखिर में भी जब बुमराह आते हैं आखिर के 2 ओवर डालते हैं, वहां पे वो ज्यादा रन नहीं देते, तो शायद आज अगर बुमराह होते तो 155 नहीं बनते, 100, 135, 140 बनते और या 145 भी बनते। पर बॉलिंग में थोड़ी सी कमजोरी जरूर है, बैटिंग आपने सही कहा, एक शुभमन गिल और जायसवाल के अलावा बाकी आप कह सकते हैं कि आपने बड़ी अच्छी ताकतवर बैटिंग चुनी थी, पर आयरलैंड ने के बॉलर्स ने उनको आउट करके आप सबको, हम सबको एक मतलब शॉक दिया है।
2: सर मैं T20 इंडिया ने दो जीते, एक जीता 24 में, वो वेस्ट इंडीज में हुआ जहां पर कंडीशंस थोड़ी थोड़ी इंडिया जैसी होती हैं। उसके बाद इंडिया ने अभी हाल में अपने घर पर ये T20 वर्ल्ड कप जीता। अगला T20 वर्ल्ड कप वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होना है। डिफरेंट कंडीशंस हैं जो हम पहले बात कर रहे थे कि मैं तो ऐसे ही खेलता हूं, मैं तो ऐसे ही खेलूंगा, इंडिया तो ऐसे ही खेलेगा, शायद वहां पर नहीं चलेगा। क्या कोर्स करेक्शन आपको लगता है कि किसी स्टेज पर होगा कि नहीं यार हम अपनी गेम को थोड़ा ऑल्टर करें? मैं जानता हूं कि T20 में इंडिया जबरदस्त टीम है, मैं जानता हूं कि शायद इस सीरीज की हार एक एबरेशन है, लेकिन क्या आने वाले वक्त के लिए आपको लगता है कि थोड़ी सी सोच में बदलाव होगा?
3: देखिए सिचुएशन के हिसाब से आपको बल्लेबाजी करनी होती है, बॉलिंग भी करनी होती है
2: जी,
3: और ये जरूरी नहीं कि आप जो आपको 120 गेंदें मिलती है T20 क्रिकेट में, ये जरूरी नहीं कि वहां पे 120 गेंदों में आपको 20 या 25 छक्के लगाने हैं, वैसा नहीं बनता, वैसा हुआ नहीं और शायद बहुत कम होगा भी आगे जाकर। तो आपने सिचुएशन के हिसाब से अगर आपने अगर बल्लेबाजी की थी तो शायद आज का रिजल्ट शायद अलग सा रिजल्ट होता। तो कोर्स करेक्शन जो है वो मेंटली कोर्स करेक्शन होना है, सिचुएशन देखे और उसके बाद में आप अपना नेचुरल गेम खेले। आपका जो नेचुरल गेम के साथ आपका एक जो अप्रोच बनता है वो आपको थोड़ा सा बदलना होगा, और अगर आपने वो एडजस्ट किया अप्रोच सिचुएशन के हिसाब से तो वहां पे भी आप सफल बन सकते हैं।
2: क्योंकि मैंने देखा है सनी भाई पिछले मैच में, ठीक है अभिषेक ने 49 रन बनाए, संजू सैमसन उस मैच में भी उनका वो फुटवर्क, इस मैच में भी अब ये वही संजू सैमसन है जिन्होंने शायद इंडिया के लिए तीन ऐसी पारियां खेली जहां पर इंडिया लग रहा था कि वर्ल्ड कप में दूर दूर तक नहीं है और वर्ल्ड कप वो सिंगल हैंडेडली इंडिया को जिता गए। लेकिन जैसे साइकिल चेंज होता है, आपने उस कप्तान को भी तो बदला है ना, आपने सूर्य कुमार यादव को भी कहा थैंक यू वेरी मच फॉर योर सर्विसेज, अब हम जी श्रेयस अय्यर के साथ जा रहे हैं। क्या संजू पे इज इट टू सून टू से कि जी दबाव उन पर भी होगा क्योंकि एक वैभव सूर्यवंशी नीचे से आ रहा है, वही दबाव अभिषेक शर्मा पे भी होगा क्योंकि एक वैभव सूर्यवंशी नीचे से आ रहा है?
3: नहीं, इट इज टू सून। देखिए जब कोई बल्लेबाज पहली गेंद पर आउट होता है जैसे कि सैमसन आउट हुआ तो मतलब गेंद अच्छी थी, अक्रॉस द लाइन खेले वगैरह वो सब ठीक है, पर अगर वो थोड़ी देर खेलते वहां पे प्ले ओवर मिस करते, पैड पर ज्यादा गेंदें लगती तो फिर आप कह सकते थे कि भाई फॉर्म ठीक नहीं है, फुटवर्क ठीक नहीं। पर जो बंदा ये पहली गेंद पर आउट होता है उस पर आप उसको कुछ कह नहीं सकते। आप ये कह सकते जैसा आपने कहा कि अभिषेक शर्मा ने उसी ओवर में जो शॉट खेला और पहली गेंद का, उनके पहली गेंद पर शॉट खेला वो नहीं खेलना चाहिए था, वो सिचुएशन के हिसाब से उनको वो थोड़ा सा अपने आप पर थोड़ा सा सबर दिखाना चाहिए था।
2: आज ब्लैक संडे मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तो आयरलैंड के खिलाफ इंडिया 2-0 से हार है, 0-2 से हार है, मतलब वर्ल्ड चैंपियन से आप उम्मीद नहीं कर रहे थे, हम तो ये सोच रहे थे आयरलैंड इंडिया जाएगा, इंडिया उतरेगा मैदान में जीत जाएगा, शायद यही गलती इंडिया ने भी की, जो सोच हमारी फैंस की हो गई वही गलती शायद इंडिया ने कर दी, हम तो जाएंगे, हम तो मैदान पर उतरेंगे और जीत जाएंगे, वो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ब्लैक संडे इसलिए भी है क्योंकि ये वर्ल्ड चैंपियन टीम आयरलैंड से हारी पहली बार 2-0, वामा विमेन्स T20 वर्ल्ड कप जीतने का सपना भी जो है वो चकनाचूर हो गया। क्यों? क्योंकि आखिरी लीग मुकाबले में लॉर्ड्स के मैदान में इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार गया। हरमनप्रीत ने रन्स बनाए, 170 रन कम नहीं होते, लेकिन इंडिया ने उसके बाद फिर इतने रन्स जो है वो चेज भी करा दिए। तो कहीं ना कहीं सनी भाई मैं तो ये कहूंगा कि संडे को लेकर हम लोग बड़े एक्साइटेड थे हम और आप कि आज ना सिर्फ आयरलैंड के साथ ये मुकाबला है बल्कि वहां पर इंडिया अगर जीत जाता तो सेमीफाइनल की टिकट मिल जाती। आज ऐसा लगा कि मतलब वो 5 मिनट ऑफ ईच अदर, विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट इधर और 5 मिनट उधर, दोनों जगह जो है भारत को डबल जोल्ट लगा है, डबल झटका लगा है।
3: जी बिल्कुल, ऐसा लग रहा था कि जब 171 रन बने थे भारतीय टीम के, भारतीय विमेन्स टीम के, तो ये अच्छी कॉम्पिटिशन बन सकती है, अच्छा कॉन्टेस्ट बन सकता है। पर जो हमने देखा था, मतलब जो 50 ओवर्स की गेम में भी जो मैंने देखा था, और कि जो हमारी जो बॉलर्स है उनको सपोर्ट चाहिए, एक डीप एक्स्ट्रा कवर का एक बाउंड्री फील्डर होना चाहिए था। वो 50 ओवर्स के मैच भी नहीं था और उसी के वजह से काफी नजदीकी मामले बने थे 50 ओवर्स के मैच में। फाइनल में भी ऐसा लग रहा था कि नेडिन डक्लार्क इनसाइड आउट ऑफ स्पिनर को भी, लेफ्ट हैंड स्पिनर को स्पिन के साथ आप इनसाइड आउट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खेल सकते, पर ऑफ स्पिनर को भी खेल के वो चौके मार रही थी, तो ऐसा लग रहा था उस वक्त कि शायद अपने हाथ से वो मैच निकल जाएगी। पर उससे मैंने देखा कि इस टूर्नामेंट में भी उन्होंने कुछ सीखा नहीं था। आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया ने कहाँ पे फील्डर रखे थे, बिल्कुल एक्स्ट्रा कवर की तरफ, डीप एक्स्ट्रा कवर, मैं डीप एक्स्ट्रा कवर की बात कर रहा हूँ, डीप एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर रखे थे जो क्विक थे, जो मतलब बाएं हाथ कवर कवर को कवर कर सकते थे और दाएं हाथ को लॉन्ग ऑफ की तरफ भी जाकर बाउंड्री बचा सकते थे। वो फील्डर इस मैच में भी नहीं था। और वहां से अगर आप देखेंगे, जब मतलब टाइट लग रहा था तो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने इनसाइड आउट जाके जो चौके मारे, वहां से मैच पलट गई।
2: लॉर्ड्स में इंडिया की हार हुई है, बेलफास्ट में इंडिया की हार हुई है और अब T20 पहली बार इंडिया सीरीज हार है आयरलैंड में। सनी भाई ने इस शो में जो दो तीन बातें की हैं, मैं वो आपको एक बार फिर बता दूं। ए, आपके बैट्समैन ऐसे नहीं कर सकते, हम तो यही खेलते हैं, हम कंडीशंस नहीं देखेंगे, अपने तरीके से खेल सकते हैं, वो नहीं होगा। सेकेंडली जो बड़ी खबर वो ये है कि वैभव सूर्यवंशी अब इंग्लैंड के खिलाफ जो 1 तारीख को यानी कि बुधवार को पहला मुकाबला है, सनी भाई कहते हैं कि वैभव सूर्यवंशी को 11 में होना चाहिए, टेक इंग्लैंड बाय स्टॉर्म, आप इंग्लैंड को शॉक कीजिए, आप उतारिए वैभव सूर्यवंशी को, अब ज्यादा इंतजार करवाना गलत होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सनी भाई। मेरी उम्मीद थी कि इस वक्त हम बात कर रहे होंगे वहां पर, इंडिया आयरलैंड में जीत चुका होगा, वहां पर इंडियन वुमेन्स टीम को सेमीफाइनल की टिकट मिल चुकी होगी, लेकिन दोनों जगह भारत को मुंह की खानी पड़ी। अब मैं अपने YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर लाइव जाऊंगा, मैं चाहूंगा आप लोग भी आए क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोगों के दिल भी टूटे हैं, गुस्सा होगा, सुझाव भी होंगे, स्पेशली वैभव सूर्यवंशी को लेकर आज बहुत सी बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। सो ये सारी बातें हम उठाएंगे हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर अब से ठीक 3 मिनट के बाद।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
4: Hi everyone, Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
5: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
6: Hey, sports fans, TuneIn is bringing you live games, nonstop sports talk, and coverage from every angle. Follow your teams all season long with live games and never miss a single highlight. Listen to stations like ESPN Radio.
7: Swing and a foul out of play off to the left.
6: Big 12 Radio.
8: Levitt's playing stronger back there. Oh, he found Tyson.
6: Talk Sport.
9: Yes, Talk Sport listeners, when we win tomorrow evening, oh, you're going to feel all right.
6: And more. Search sports to find the stations covering your teams.

0: क्या राम भक्तों से धोखा करने वाली इस जांच की आंच बड़े चेहरों तक पहुंचेगी? क्या चंपत राय से सवाल किए जाएंगे? क्या चढ़ावा चोरी के इस पूरे खेल में चंपत राय की जिम्मेदारी तय होगी या फिर चंद मोहरों को बलि का बकरा बनाकर मामले की लीपापोती कर दी जाएगी?
1: ये सवाल भी महत्वपूर्ण है कि क्या छोटे कर्मचारी अकेले सीसीटीवी बंद कर हजारों करोड़ के चढ़ावे में हेराफेरी कर सकते हैं या इसके पीछे कुछ बड़े लोगों की मिलीभगत है। इस मामले में जांच के नाम पर लीपापोती करने की जगह पारदर्शी तरीके से जांच हो और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उन्हें कड़ी सजा मिले।
2: हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई, बड़े बड़े लोग जो इसमें शामिल हैं, इन छोटे छोटे लोगों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, बड़े लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो बड़े बड़े नाम इसके अंदर शामिल हैं, तभी लोगों के को थोड़ा सा सुकून मिलेगा। लेकिन इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी जिन लोगों ने भी चोरी की उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
0: चंपत राय पर ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी, उनकी नाक के नीचे चढ़ावे की चोरी का पूरा खेल खेला गया। मामला बाहर आया तो चंपत राय की चुप्पी पर सवाल खड़े हुए। 28 दिन बाद इस्तीफे की खबर आई, लेकिन क्या सिर्फ इस्तीफे से चंपक राय पाक साफ साबित हो जाते हैं?
3: तो जब उन्होंने शिकायत की चंपत राय जी से कि साहब बड़ा गड़बड़ हो रहा है इसमें, तो लेखाधिकारी को हटा दिया, यानी कि चंपत राय जी की शह से ही हो रहा है।
0: हालांकि चंपत राय के पुराने साथी अभी भी उनके बचाव में हैं।
4: कभी कभी ऐसा होता है कि चंदन के वृक्ष पे भी सर्प लिपटे होते हैं जो अपने विष का त्याग नहीं कर पाते। आसपास वाले लोगों ने इस तरह का दुराचरण किया कि एक ऐसे व्यक्ति को भी प्रश्नों के कटघरे में आज हम खड़ा देख रहे हैं, जो देख के अच्छा नहीं लग रहा।
5: जिन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है, पूरे अपने जीवन को तपस्या में लगाया है, उनके लिए धन और वैभव यदि रहता तो बहुत पहले पा जाते।
0: एसआईटी की जांच जारी है, लेकिन अब तक उनकी जांच में ट्रस्ट कमेटी के 14 लोगों में से किसी का भी नाम सामने नहीं आया है। आज तक ब्यूरो।
6: प्रधानमंत्री कार्यालय ने चंपत राय से उनके रिकॉर्ड मांगे, हिसाब किताब मांगा, चंपत राय ने मना कर दिया देने से। सोच सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने चंपत राय से रिकॉर्ड मांगे और चंपत राय ने मना कर दिया। इस देश में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो मोदी जी को मना भी कर सकता है, वो मोदी जी ने मान लिया, रिमाइंडर भी नहीं भेजा, मान भी लिया। इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि तार कहां तक हैं। चंपत राय के पास ऐसी क्या जानकारी है जिसके सामने मोदी जी भी बेबस हैं? एक भी नेता ने चंदा चोरी की क्रिटिसिज्म नहीं किया, उन्होंने इसको इसकी बुराई नहीं की है, चंदा चोरी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला। तो पूरा हिंदू समाज की एक ही मांग है कि जिन राक्षसों ने ये काम किया है उनको सरेआम फांसी पर लटकाया जाए। सब लोगों की यही मांग है, ये महापाप है। चंदा चोरी लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़, लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़, ये महापाप है और इस महापाप को करने वाले सभी राक्षसों को इनको सरेआम फांसी पर लटकाया जाए।

0: No.
1: Oh, no.
2: Welcome to Get Real.
0: I got something to say.
2: A weekly talk show for the reality TV obsessed.
1: Oh, my God.
0: It's got to be deliciously desperate.
1: Why do these girls forgive him?
3: Well, she has a soft spot for troubled men.
0: Boo bloody.
2: This is your show. Search Get Real on TuneIn to listen.
1: Love runs deeper than we know.
2: And stream new episodes Thursdays on Hulu and Hulu on Disney+.
4: क्या केतन को मारने का प्लान चेतन ने बनाया? क्या चेतन को आगे करके सिया को बचाने की कोशिश हो रही है? 18 जून को लोहगढ़ जाने का प्लान किसका था, सिया का या केतन का? पुणे के केतन मर्डर केस में सिया का परिवार नई थ्योरी लेकर सामने आया है। सिया के पिता प्रवीण गोयल और मां पूजा गोयल का दावा है कि 18 जून को लोहगढ़ जाने का प्लान सिया का नहीं, केतन ने ही वीडियो कॉल करके सिया को लोहगढ़ बुलाया था। सिया के परिजन यहां तक दावा कर रहे हैं कि अगर सिया ने कुछ गलत किया है तो उसे भी लोहगढ़ किले से धक्का दे दो।
5: मैं तो कहता हूं अगर इसमें जो भी आरोपी हो, जो भी, जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है, अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूंगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहां से धक्का देके उसे भी खत्म कर दिया जाए। अब इससे ज्यादा एक बाप और कुछ नहीं बोल सकता।
6: अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहां से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहां से ही उस दोषी को गिराया जाए। जो भी दोषी निकले, मेरी बेटी चाहे उसमें दोषी हो, ठीक है, उसे फांसी की सजा दो या लोहगढ़ जाके वहीं से ही गिरा दे।
4: सिया के माता पिता दावा कर रहे हैं कि उन्हें सिया और चेतन के अफेयर के बारे में कुछ पता नहीं था। वो अभी भी कह रहे हैं कि सिया और चेतन के बीच कुछ नहीं है। परिवार तो अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी बेटी ने ऐसा कुछ किया है। जब से खबर आई है तब से सिया के पिता की तबीयत खराब हो गई। एंग्जायटी और घबराहट इतनी ज्यादा हो गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। इधर पुणे पुलिस की जांच में सिया ने कबूल किया है कि वो कम से कम 3 साल तक शादी टालना चाहती थी, लेकिन रिश्ता तय होने के बाद शादी तोड़ने से बदनामी होती, इसलिए उसने केतन को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। सिया का दोस्त चेतन भी कम से कम 2 साल तक शादी नहीं करना चाहता था। केतन और सिया की सगाई फरवरी में हुई, लेकिन उससे ठीक पहले जनवरी में सिया गोयल अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ राजस्थान के उदयपुर गई थी। वहां वो 5 दिनों तक रही थी। चेतन चौधरी मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है। पुलिस की माने तो हत्या वाले दिन चेतन और सिया लोनावाला के कैफे में मिले थे, जहां उन्होंने हत्या की अंतिम योजना बनाई। शुरुआत में चेतन चौधरी ने दावा किया था कि वो घटना के समय चट्टान के पास मौजूद नहीं था, लेकिन पूछताछ के दौरान उसके बयान में लगातार विरोधाभास सामने आए। इसके बाद दोनों आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और पूरी घटना का क्रम पुलिस को बता दिया।
7: उनको जब लोहगढ़ पर ये तीनों मौजूद थे तब केतन की हत्या की गई, कुछ इशारों में हुआ था और उसके बाद ये हत्या हुई थी।
8: जो भी अभी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है, उन दोनों में इशारों में कम्युनिकेशन था और दोनों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया।
4: अब पुणे पुलिस ने सिया के माता पिता से भी पूछताछ की है। इससे पहले सिया के भाई से 10 घंटे तक सवाल जवाब किए गए थे। ओंकार वाबले, पुणे आज तक।

0: आयरलैंड से दूसरे टी20 मैच में भी शिकस्त के बाद 0-2 से टीम इंडिया हारी है। वर्ल्ड चैंपियन का लॉस 155 रनों के लक्ष्य से एक रन पीछे रह गई टीम इंडिया। चढ़ावा चोरी को लेकर अखिलेश ने बीजेपी को फिर घेरा, कहा कि इनके लिए नेशन नहीं डोनेशन फर्स्ट। सीएम योगी ने दी चुनौती, बोले हिम्मत है तो कृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर बोले। बरली के विरोध में दिल्ली में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, मांगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। मुंबई में भी शिक्षा मंत्री के घर के बाहर हल्ला बोल। केतन अग्रवाल हत्याकांड में क्राइम सीन रिक्रिएट हुआ, मुख्य आरोपी सिया को लेकर लोहागढ़ किले में गई पुलिस। 18 जून की वारदात पर सवाल जवाब। सेशल्स के संसद में गूंजा नमो मंत्र, संबोधन में पीएम मोदी ने कहा हिंद महासागर हमें बांटता नहीं जोड़ता है। प्रधानमंत्री को मिला पर्यावरण संरक्षण का सर्वोच्च सम्मान।
1: आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम कहानियां विद शम्स। हमारे साथी रिपोर्टर ओमकार वाबले पुणे में उसी जो आयरन फोर्ट है उस जगह पर गए, ठीक उसी जगह पर जहां से सिया और चेतन ने केतन को धक्का दिया था 18 जून की सुबह करीब 10:30 बजे। वो पूरी जगह और वो सारी चीजें आपको दिखाऊंगा, लेकिन सिलसिलेवार सिया की साजिश की पूरी कहानी की शुरुआत करता हूं। पुणे में दो परिवार जिनके बीच बहुत पुरानी दोस्ती थी, एक गोयल परिवार और एक अग्रवाल परिवार। गोयल परिवार सिया का परिवार था और अग्रवाल परिवार केतन का परिवार। दोनों बिजनेस घराने से आते थे। केतन के पिता का रियल एस्टेट का बिजनेस और वो भी काफी बड़ा। सिया के फादर का और उसके दादा का रियल एस्टेट का भी बिजनेस, साथ में ड्राई फ्रूट का भी, मसालों का भी। और एक ही शहर में आसपास रहने के दौरान 35 साल पुरानी इनकी दोस्ती हुआ करती थी। दोनों का घर आना जाना था अक्सर, शादी में या किसी भी फंक्शन में या कोई भी फैमिली गैदरिंग होती दोनों परिवार एक दूसरे को बुलाया करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। इधर कॉलेज के बाद केतन को पढ़ाई के लिए उसके पापा ने अमेरिका भेज दिया। केतन ने अमेरिका के बॉस्टन में जाकर एमबीए की पढ़ाई की। एमबीए की पढ़ाई करने के बाद वो वापस लौटा। पिता ने उससे कहा कि अपना बिजनेस संभालो, तो वो अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाने लगा। इधर सिया कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी 2025 पिछले साल दिवाली की बात है। दिवाली के दौरान एक पार्टी थी जिसमें सिया और उसकी बहुत सारी लड़कियां दोस्त, लड़के दोस्त सब इकट्ठा हुए, और उन्हीं में से एक लड़का था चेतन चौधरी, जो उसी पुणे के इलाके में रहता था जहां सिया रहा करती थी। चेतन चौधरी की एक पेस्ट्री शॉप है, सिया अक्सर वहां जाती थी, और इसी आने जाने के दौरान चेतन के साथ उसकी ठीक ठाक दोस्ती थी। चेतन की उम्र करीब 22 साल, सिया अभी 19 जून को 20 साल की हुई है, 19 तारीख को ही उसका बर्थडे था। तो धीरे धीरे चेतन के साथ उसकी दोस्ती हुई, लेकिन इससे पहले सिया की जिंदगी में एक और लड़का था कॉलेज के टाइम से, और उन दोनों का प्यार भी था। लेकिन 2025 की शुरुआत में ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद अब सिया चेतन की जिंदगी में आए, चेतन और वो दोनों प्यार करने लगे, और चेतन को सिया के ब्रेकअप के बारे में भी जानकारी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी सिया की एक बुआ जो अक्सर आती रहती थी केतन के घर, केतन की उम्र 26 साल हो गई, केतन के घर वालों ने कहा था हम लड़की ढूंढ रहे हैं केतन के लिए, तो उसकी बुआ ने कहा कि फिर आप बाहर क्यों ढूंढ रहे जब घर में लड़की है। तो उन्होंने सिया का नाम सुझाया। घर वाले सिया को देख चुके थे, जानते थे, केतन भी मिल चुका था क्योंकि 35 साल पुरानी दोस्ती थी परिवार की। केतन के घर वालों ने एक पल भी नहीं सोचा, उन्होंने कहा हाँ लड़की अच्छी है, खूबसूरत भी है, रिश्ता मंजूर है। लेकिन केतन के पिता ने कहा कि सिया की उम्र अभी कम है, अभी 20 की भी नहीं हुई है, तो आप इतनी जल्दी क्यों शादी कर रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं हमें जल्दी करनी है। उन्होंने कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद 11 फरवरी को दोनों की सगाई हो गई, उससे पहले रोका हुआ फिर सगाई हुई, और फिर पंडित जी ने मुहूर्त निकाला 25 नवंबर 2026 यानी कि इसी साल 5 महीने बाद दोनों की शादी की तारीख। जब सिया की बुआ ने यह रिश्ता केतन के घर वालों से तय किया तब सिया इस रिश्ते से खुश नहीं थी, पर उसे लगा कि अभी तो उसकी उम्र कम है, हो सकता भी शादी में वक्त हो, सगाई हो जाए उसके दो चार साल के बाद होगी। लेकिन सिया के घर वालों को सिया और चेतन के रिश्ते की जानकारी मिल चुकी थी क्योंकि दोनों अक्सर घूमते थे, घूमने के लिए जाते, ये बात छुपती नहीं है। तो घर वालों को ये लगा कि नहीं, अब सिया की शादी कर देनी चाहिए और केतन का परिवार भी अच्छा था। सिया इस उम्मीद में थी कि शादी में वक्त है, लेकिन जैसे ही सगाई के बाद ये क्लियर हो गया कि शादी इसी साल नवंबर में होनी है, सिया परेशान हो गई। उसने चेतन से बात की, अब दोनों ये था कि वक्त कम है, शादी हो जाएगी फिर क्या करेंगे, और सिया केतन से शादी करना नहीं चाहती थी लेकिन माँ बाप के आगे वो मजबूर थी, तो इसीलिए जब केतन के साथ कहीं आना जाना सब कुछ चल रहा था लेकिन वो किसी को दिखा नहीं रही थी कि वो इस शादी से खुश नहीं है। अगर केतन के साथ रहती, कहीं पार्टी में जाती तो भी खुश। अब जैसे जैसे तारीख नजदीक आने लगी, सिया ने चेतन से कहा कि कुछ करना पड़ेगा क्योंकि ये शादी उसे करना नहीं। पर सिया ने एक बार भी ये बात केतन से या केतन के घर वालों से नहीं कही, अपने घर वालों से तो डर से कही नहीं। अगर शायद वो कह देती तो शायद आज मैं आपको ये कहानी ना सुना रहा होता, सब कुछ ठीक होता, 26 साल का वो नौजवान जिंदा होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सिया और चेतन ने मिलकर साजिशें बुननी शुरू कर दी, क्या किया जाए। अब यह था कि शादी करने से मना भी नहीं कर सकते, घर वालों को पता चल जाएगा। यह भी नहीं था कि भाग जाए, कहां जाए, घर वालों की बदनामी होगी। फिर उन्होंने प्लान किया कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, यानी केतन रास्ते से भी हट जाए और किसी को भनक भी ना हो, शक भी ना हो, और फिर उसके बाद वो दोनों शादी कर लेंगे। इस सोच के बाद जो साजिश की पहली चीज उन दोनों के दिमाग में आई वो ये कि केतन को रास्ते से हटाने का सिर्फ एक ही तरीका और वो है केतन की मौत। लेकिन कैसे, अब दोनों सोचने लगे। इधर सब कुछ चल रहा है, उधर केतन के साथ सिया का रिश्ता अभी भी ठीक ठाक है, वो मिलती तो बिल्कुल नॉर्मल रहती। इत्तेफाक से 19 जून को सिया का बर्थडे आने वाला था और वो 20 साल की पूरी होने वाली थी। सगाई के बाद पहली बार सिया का बर्थडे उसके ससुराल वाले भी मनाना चाहते थे, घर की होने वाली बहू थी। घर वालों ने बड़ी तैयारी के साथ महाबालेश्वर में एक रिजॉर्ट भी बुक किया, लेकिन सिया ने यह ठान रखा था कि इस बर्थडे से पहले ही केतन को हटाना है क्योंकि अब प्लानिंग यह भी हो रही थी कि प्री वेडिंग शूट भी करना है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि केतन को कैसे हटाना है। तभी केतन से ही गलती हो गई। केतन को ट्रैकिंग का शौक था, आसपास के जो इलाके हैं पहाड़ी वहां अक्सर वो जाता था, दूर दराज इलाकों में भी जाता था, घर वाले उसके शौक से वाकिफ थे। 31 मई को केतन ने सिया से कहा कि चलो मैं तुम्हें आज पहाड़ी पे ले चलता हूं। और बातचीत में दोनों ने एक दूसरे के अपने अपने शौक बताए थे। केतन ने कहा था उसे पहाड़ों पर जाना, ट्रैकिंग करना उसका शौक है, तो उसने कहा चलो मैं अपने तुमको फेवरेट जगह ले चलता हूं। बेमन से सिया तैयार हो गई, उसने कहा चलो। इसके बाद 31 मई को पहली बार केतन अपनी कार में अपने घर से करीब 52 किलोमीटर दूर इसी आयरन फोर्ट में लेकर आता है सिया को। ऊपर जाते हैं, तब तक सिया के उधेड़ बुन चल रहा है, क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन जब वो हाइट पर पहुंची, चोटी पर पहुंची, तो अचानक उसे नीचे खाई दिखाई दी और पहली बार सिया को ये आया कि अगर यहां से किसी को धक्का मार दें तो लोग एक्सीडेंट समझेंगे, मर्डर कोई नहीं समझेगा, न किसी तरह के चाकू से, न गोली से, न ड्रग से, न पॉइजन से, पैर फिसला मर गया कौन शक करेगा। 31 मई को पहली बार ये आइडिया आया, वापस लौट गई। अब वापस लौट गई है, उसके बाद वो बेचैन है कि वापस फिर से जाना है और जल्द से जल्द केतन को धक्का मारना है। 5 दिन के बाद ये 31 मई के 5 जून की तारीख थी, उसने केतन से कहा एक बार और चलते हैं ना आयरन फोर्ट, लोहगढ़ किला। केतन कहता कैसे जा सकते हैं, कल हमें बाली निकलना है, पैकिंग करनी है, तैयारी करनी है। इन लोगों को 6 जून को बाली जाना था प्री वेडिंग शूट के लिए, जिसमें केतन की सिस्टर भी जा रही थी। पर वो कहती कोई नहीं, हम चलेंगे, हम 2-4 घंटे में आ जाएंगे। केतन अपने घर वालों से कहता है, उसके माँ बाप मना कर देते हैं। कल तुम्हें बाली जाना है, अभी तुम वहां जाओगे, थक जाओगे, चढ़ाई है, कोई जरूरत नहीं है जाने की। केतन के घर वाले इनकार कर देते हैं। सिया का दिल टूट जाता है, उसे लगा ये मौका हाथ से जाएगा, लेकिन वो बाली जाना नहीं चाहती थी। फिर उसके बाद वो 6 तारीख को एयरपोर्ट जाते वक्त केतन का पासपोर्ट गायब कर देती है, बाली का ट्रिप कैंसिल हो जाता है, सब लौट आते हैं। अब सिया फिर खुश कि बाली तो गए नहीं, अब लोहगढ़ किला दोबारा जा सकते हैं। आने के बाद 1-2 दिन शांत रही, फिर उसने जिद करनी शुरू की कि चलो ना किले पे चलते हैं। जब कई बार उसने जिद की, 14 जून को केतन तैयार हो गया, उसने कहा चलते हैं। अब वो 14 जून को सिया को लेकर उसे लोहगढ़ किले में जाता है। इस किले पे जाने के लिए जो लोग जाते हैं जनरली, वहां एक सेल्फी पॉइंट है और उसी सेल्फी पॉइंट तक लोग जाते हैं, लेकिन वहां भीड़ होती है लोगों की। तो ये चलती रही, सेल्फी पॉइंट तक भी गई, दोनों गए, देखा लोगों की भीड़ है, वहां सेल्फी ले रहे हैं। पर सेल्फी पॉइंट से पहले सिया की नजर पड़ी एक गहरी खाई पे, और वहां पे कोई नहीं, सन्नाटा। उसे लगा यह बेहतरीन जगह है, अकेले उस दिन उसको मारना था। खाई के ठीक किनारे बातों में उलझा कर केतन को खड़ा कर दिया, बातें करने लगी, और अचानक 14 जून को केतन को धक्का दिया। नसीब ये कि चेतन के ठीक पीछे एक पेड़ था, चेतन लड़खड़ाता हुआ उस पेड़ से जाके टकराया और पेड़ उसके लिए ढाल बन गया और वो खाई में गिरने से बच गया। जैसे ही वो बचा, संभला, आगे की तरफ आया, सिया घबरा गई लेकिन अपनी घबराहट को छुपाती और कहती है तुम्हारे पास सांप था, तुम्हें डस लेता, इसलिए मैंने तुम्हें बचाने के लिए धक्का दिया, पुश किया, मैंने तुम्हारी जान बचा दी। केतन दूर दूर तक नहीं सोच सकता था कि वो अभी अभी बस जस्ट मौत के मुंह से वापस आया। वो शक भी नहीं कर सकता था कि उसके मंगेतर, उसकी होने वाली बीवी, इस तरह से उसे मार सकती है। वो लौट आएगा। पहला जो मिशन था या पहली कोशिश नाकाम थी,

निकलते हैं इस दौरान में चेतन जुपिटर स्कूटी पे बैठता है और अपने घर से निकलता है। अब वो स्कूटी पे जा रहा है, सिया और केतन अपनी कार में, टाइमिंग पता था दोनों को। इसके बाद ये वहां पर करीब 9 बजे के आसपास किले के पास पहुंचते हैं। ये किला चूंकि पहाड़ी इलाके में है तो आप किले तक गाड़ी नहीं ले जा सकते, उससे करीब 1.5 किलोमीटर पहले पार्किंग है, 1 से 1.5 किलोमीटर का फासला है। तो वहां किले की पार्किंग है, आप अपनी गाड़ी जो भी है दोपहिया चार पहिया उसको पार्क कीजिए। सिया और केतन अपनी गाड़ी वहीं पार्क कर देते हैं। इसके बाद वो 1.5 किलोमीटर पैदल चलते हैं, करीब 10-12 मिनट लगता है। 9:15 से 9:30 का वक्त था जब सिया और केतन इस किले के एंट्री पॉइंट पर पहुंचते हैं। यह है उस किले का एंट्री पॉइंट, यहाँ पे आप देखें, और ये बोर्ड है जिस पे लिखा रहता है कि ये जो किला है ये सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता, 9 to 7। इस एंट्री गेट के पास एक बूथ है और वहां सिक्योरिटी गार्ड और किले के कुछ स्टाफ बैठते हैं। ये महाराष्ट्र शासन यानी महाराष्ट्र सरकार के अंडर में आता है ये लोहगढ़ किला। यहाँ जो भी टूरिस्ट आते हैं या घूमने आते हैं उनके लिए एक फीस है, 25 रुपये पर हेड। तो 25 रुपीज़ फीस दीजिए, उसके बाद ऊपर जाइए। तो सिया और केतन यहाँ पहुँचते हैं, सिया पे करती है स्कैनर से पेटीएम के थ्रू 50 रुपये, 25 अपने 25 केतन के। अब ये दोनों इसी सीढ़ी के रास्ते ऊपर जा रहे हैं यहाँ से करके, 9:30 के आसपास का वक्त था। अब यहाँ से ऊपर तक जाने का जो एक आम नॉर्मल इंसान जाता है नॉर्मल स्पीड में करीब 40 मिनट लगता है ऊंचाई तक पहुँचने में, 40 मिनट्स, और जो थोड़ा ठीक ठाक तेज तेज चलता है वो 30 मिनट में। केतन अकेला होता तो 30 मिनट में पहुंच जाता, लेकिन उसके साथ चूंकि सिया थी तो आराम से चल रहा था। अब ये दोनों एंट्री टिकट देने के बाद किले के अंदर एंट्री मार चुके हैं। उनसे ठीक कुछ मिनट के बाद अब वहां चेतन पहुंचता है, हुडी पहना हुआ, शक्ल छुपा हुआ, कान में हेडफोन लगा हुआ। अब वो आता है अंदर, बिना आप टिकट लिए अंदर जा नहीं सकते। अब यहाँ दिक्कत ये थी कि चेतन अपने साथ कोई कैश लेकर नहीं आया था, और अपने एम्प्लॉय का जो फोन लाया था उसमें ऑनलाइन पेमेंट का शायद उसकी सुविधा नहीं थी। तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है भाई टिकट के पैसे, तो वो कहता कि मैं यहाँ एक्सरसाइज करने आया हूँ और एक्सरसाइज करने के बाद वापसी में आपको पैसे दे दूंगा, इस वक्त मेरे पास नहीं है, मेरे कुछ साथी ऊपर हैं, हम वापसी में दे देंगे। सिक्योरिटी गार्ड रोकता है लेकिन वो रुकता नहीं है, क्योंकि उसने देख लिया था यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, और ये इकलौता सीसीटीवी कैमरा था जिसमें चेतन कैद हुआ था। इसके बाद पहाड़ पर कहीं सीसीटीवी कैमरा नहीं है, तो उसने कैमरे को भी देख लिया और होशियार इतना कि उसमें भी चेहरा उसका नहीं आया, तो जल्दबाजी में भी था। गार्ड उसको रोकता रहा लेकिन वो चला गया। हालांकि कहानी ये भी कि जब वापस आया तो बिना पैसे दिए भाई भाग गया था वो। खैर अब ये वापस ऊपर पहुंचता है, सिया और केतन और चेतन के बीच में कम से कम 20 कदम की दूरी होगी। अब चेतन तेजी से अपने कदम बढ़ाता है, अचानक वो पहुंचता है सिया के पास, सामने केतन खड़ा है। केतन कुछ समझ नहीं पा रहा, सोचे भी कैसे, मंगेतर है, प्री वेडिंग शूट के नाम पर आई है, 5 महीने बाद शादी है। बस वो यूं ही मुस्कुरा रहा है कि शायद कोई दोस्त हो, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता उसकी उसी मंगेतर और उस मंगेतर के आशिक चेतन ने अचानक उसे जोर से धक्का दिया, और इस बार इस बात का ख्याल रखा कि वो लड़खड़ा कर ऊपर ही ना गिर जाए। धक्का दोनों ने मिलकर दिया और इतनी जोर से दिया कि हैरान केतन पल में खाई के अंदर। ये वही जगह है और ये हमारे रिपोर्टर हैं ओमकार बाबले, जो आपको हाथ के इशारे से बता रहे हैं जहां से धक्का दिया गया था, सेम वही जगह। क्योंकि इसी जगह के बारे में सिया ने सिक्योरिटी गार्ड को बताया, फिर पुलिस को बताया कि यहां से गिरा था, यहां से पैर फिसला था। तो हमारे जो रिपोर्टर खड़े हुए हैं और जो आपको दिखा रहे हैं, यही वो जगह है जहां से सिया और उसके प्रेमी चेतन

0: केतन को धक्का दिया। 340 फीट गहराई है यहां से इस खाई की। अब जैसे ही चेतन गिरा, इसके बाद दोनों झांक कर देखते हैं। जब उन्हें यकीन हो जाता है कि केतन अब बहुत नीचे पहुंच चुका है, इसके बाद चेतन वहां से तेज कदमों से वापस मुड़ता है, क्योंकि अब उसे सिया के साथ नहीं रहना था, पोल खुल सकती थी। इससे तेज कदमों से वो वापस लौट जाता है। अब आगे का काम सिया को करना था। चेतन के लौटते ही अब सिया जोर जोर से चीखना शुरू कर देती है, रोना शुरू कर देती है। उसकी चीख सुनकर कुछ दूरी पर मौजूद एक सिक्योरिटी गार्ड आता है, पूछता क्या हुआ। रोते हुए बताती है, इशारे से बताती है कि यहाँ से मेरा अभी भी मेरा दोस्त, मेरा मंगेतर, पाँव फिसल गया और वो नीचे गिर गया। सिक्योरिटी गार्ड हक्का बक्का, फौरन वो अपने बाकी साथियों को बताता है। जितने भी स्टाफ थे वहाँ के लोहगढ़ किले के, वो भाग कर आते हैं। तब तक किसी ने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस भी चल पड़ी। इधर गार्ड वार्ड के आने के बाद अब सिया अपनी माँ को कॉल करती है और कहती है रोते हुए कि केतन फिसल कर खाई में गिर गया। सिया की माँ बदहवास, वो फौरन फोन रखती है, कहती हम पहुंच रहे हैं। और सिया की माँ अब केतन के पिता को फोन करती है। तब सुबह के 10:45 हुए थे। सिया के हाव भाव, उसका बॉडी लैंग्वेज देखे, पुलिस हिरासत में है, भेद खुल चुका है। अपने ही मंगेतर, अपने होने वाले पति के कत्ल का इल्जाम है। और इस सिया की उम्र सिर्फ 20 साल है, सिर्फ 20 साल, वो भी 19 जून को हुई है। लेकिन क्या इसको इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, कहीं से एहसास होता है कि परेशान है, घबराई हुई है, या इसे पछतावा है? मतलब बेफिक्र बेअंदाज चाल है इसकी। ऐसे सिचुएशन में या ऐसे खुलासे के बाद बड़े बड़े हार्डकोर क्रिमिनल, पेशेवर अपराधी, उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। मैं खुद इस तस्वीर को देखकर हैरान हूं कि उस वक्त की तस्वीर है जब भेद खुल चुका है। सिया को कत्ल के इल्जाम में पकड़ा गया, उसके बॉयफ्रेंड को पकड़ा गया, और उसे भी पता है कि अब शायद पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे पीते। उसे यह भी पता है शायद कि अब वो और चेतन कभी मिल भी नहीं पाएंगे। लेकिन उसके बावजूद उसका अंदाज देखिए, इससे एहसास होता है कि क्या हो रहा है। तो ये थी आज की कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
2: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world,
3: I have no idea how this election is going to play out,
2: or want to catch up on your team's live play-by-play, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
4: बिल्कुल, मैं इस समय पर उस कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद हूं। आप देखिए किस तरीके का ये एंट्री एग्जिट पॉइंट था, और ये बहुत छोटा सा कोचिंग सेंटर था जहां पर लोग फंसे थे। और उसके बाद ये अंदर का ये पूरा नजारा है, आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि पूरा सब कुछ तहस नहस हो गया और 15 लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में SIT गठित की है। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक।

0: आयरलैंड से दूसरे टी20 मैच में भी शिकस्त के बाद 0-2 से टीम इंडिया हारी है। वर्ल्ड चैंपियन का लॉस 155 रनों के लक्ष्य से एक रन पीछे रह गई टीम इंडिया। चढ़ावा चोरी को लेकर अखिलेश ने बीजेपी को फिर घेरा, कहा कि इनके लिए नेशन नहीं डोनेशन फर्स्ट। सीएम योगी ने दी चुनौती, बोले हिम्मत है तो कृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर बोले। बदली के विरोध में दिल्ली में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, मांगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। मुंबई में भी शिक्षा मंत्री के घर के बाहर हल्ला बोल। केतन अग्रवाल हत्याकांड में क्राइम सीन रिक्रिएट हुआ, मुख्य आरोपी सिया को लेकर लोहागढ़ किले में गई पुलिस। 18 जून की वारदात पर सवाल जवाब। सेशल्स की संसद में गूंजा नमो मंत्र, संबोधन में पीएम मोदी ने कहा हिंद महासागर हमें बांटता नहीं जोड़ता है। प्रधानमंत्री को मिला पर्यावरण संरक्षण का सर्वोच्च सम्मान। नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। पुणे में केतन अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी जांच की है। आरोपी नंबर एक और केतन की मंगेतर सिया को पुलिस लोहागढ़ किले में लेकर उस जगह पर पहुंची और जांच पड़ताल की जहां से केतन को धक्का दिया गया था, जहां पर उसकी मौत हुई थी। अभी एक दिन पहले ही सिया के माता पिता से पहली बार पुणे पुलिस ने कई घंटों तक सवाल जवाब किए। उसके भाई से भी पुलिस केतन केस को लेकर पूछताछ कर चुकी है। अब आज पुलिस ने लोहागढ़ किले में बड़ी बारीकी से जांच की है, पता लगाने की कोशिश की है कि कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पुणे पुलिस के सामने कई अहम सवाल हैं। अब तक गिरफ्तार सिया और चेतन के आरोपों को लेकर पुलिस घर वालों से बात कर जानकारी जुटा चुकी है और आखिर इस क्राइम फाइल की सबसे अहम कड़ी रिक्रिएशन को भी पूरा कर लिया गया है। इस दौरान किले में पुलिस के साथ सिया मौजूद थी, वो पुलिस के तमाम सवालों का जवाब दे रही थी और पुलिस उसके बयानों के आधार पर क्राइम सीन को रिक्रिएट कर रही थी।
1: ने कैसे चेतन के साथ मिलकर केतन को मारा, कैसे उसने कत्ल के लिए लोहगढ़ का किला चुना, कैसे वो केतन को लेकर लोहगढ़ के किले तक पहुंची, कैसे उसने चेतन को कत्ल का इशारा किया, कैसे केतन चेतन और सिया की साजिश नहीं समझ पाया, कैसे इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया, इन सारे सवालों के जवाब तलाशने के लिए ये कवायद हो रही है। जिसका चेहरा ढका हुआ है वो है सिया, और ये वही लोहगढ़ का किला है जहां सिया को लेकर पुलिस पहुंची है।

0: लोहगढ़ किले में 18 जून को जो कुछ हुआ था उसी को दोहराने की कोशिश आज पुणे पुलिस ने की है। पहाड़ी पर स्थित किले के उसी जगह पर पुलिस की पड़ताल चल रही है। ये तस्वीरें धुंधली हैं, लेकिन देश को सन्न कर देने वाली साजिश की तस्वीर साफ करने के लिए पुलिस ने ये अहम कदम उठाया है। इन धुंधली तस्वीरों में सिया गोयल है, पुणे पुलिस की टीम है और साथ में है क्राइम सीन को रिक्रिएट करने वाले एक्सपर्ट। केतन अग्रवाल हत्याकांड की पड़ताल का ये अहम पड़ाव था। कई दिनों से माना जा रहा था कि पुणे पुलिस लोहगढ़ के किले में पहुंचकर क्राइम सीन को रिक्रिएट कर सकती है। तमाम कयासबाजी के बाद पुणे पुलिस की टीम सुबह 6:30 बजे ही लोहगढ़ किले में आज दस्तक दे दिया। पुलिस सिया को लेकर किले पहुंची। किला का गेट बंद कर दिया गया, पर्यटकों को रोक दिया गया, हर किसी के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई। सुबह 6:30 बजे सिया को लेकर पुलिस ने किले में चढ़ाई शुरू की। करीब घंटे भर बाद पुलिस क्राइम सीन पर पहुंच गई। जांच दल के साथ चेतन की कदकाठी का एक डमी भी था। क्राइम सीन पर पहुंचने के बाद पुलिस ने सिया से कई सवाल किए। 18 जून को क्या क्या हुआ था, केतन और चेतन कहां थे, किसने धक्का दिया, कैसे तीनों यहां तक पहुंचे? ऐसे एक एक सवाल के जवाब पुलिस ने सिया से पूछे और उसके जवाबों के मुताबिक ही क्राइम सीन की बारीकी से जांच पड़ताल की। फिर जिस जगह से केतन को धक्का दिया गया था पुलिस ने उस जगह से सिया के बयानों के हिसाब से क्राइम सीन रिक्रिएट किया। रिक्रिएशन के दौरान पुलिस ने उसी स्थान से एक डमी को नीचे धक्का देकर पूरी घटना को दोहराया जहां से कथित तौर पर केतन अग्रवाल को खाई में धक्का दिया गया था। इस प्रक्रिया का मकसद घटना के क्रम, हालात और उपलब्ध साक्ष्यों का मिलान करना था ताकि जांच को और मजबूत किया जा सके।
1: ये लोहगढ़ किले के ऊपर जहाँ पे वो घटना हुई थी उस घटना पे एक डमी सीन क्रिएट करके वहाँ पे एक्यूज को ले जाया गया है। किस रूट से जाके कहाँ बैठे और क्या क्या प्रोसेस घड़ी और घटना कैसे घड़ी उसको रिक्रिएट जा रहा है किया गया है, उसमें एक्यूज ने बता दिया है।
0: केतन हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस आज के रिक्रिएशन को काफी अहम मान रही है।
2: सर, सीन को रिक्रिएट किया गया, एग्जैक्टली किस तरीके से ये पूरा हुआ?
3: आज सिया ने बताया कि उसने इन्फॉर्मेशन दी जैसे हुआ था, वो जो भी डिस्कवरी ऑफ फैक्ट है उस हिसाब से हमने सीन रिक्रिएट किया है।
2: दोनों आरोपियों को आप लेके आए थे?
3: सिया थी,
2: चेतन चौधरी जो है उसका भी अभी फॉरेंसिक करना अहम है क्योंकि जिस मतलब जहां से उसने एंट्री की थी उसी तरीके का वॉक करना और वो सीसीटीवी में फॉरेंसिक एविडेंसेस लेना वो भी बाकी।
3: अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, आज सिया का रिक्रिएशन हुआ है, वो सीन रिक्रिएशन हमने क्योंकि आज तो हमने सीन रिक्रिएट किया गया। उसने अभी जो इन्वेस्टिगेशन में सारी बातें सामने आएगी उस हिसाब से अभी आगे भी इन्वेस्टिगेशन करना है।
0: इस जांच पड़ताल के बीच दावा ये भी किया जा रहा है कि सिया और चेतन ने केतन को मारने का रिहर्सल भी किया था।
2: रिक्रिएशन वो सिर्फ सिया को लाए थे, अभी चेतन चौधरी का रिक्रिएशन होना बाकी है। लोहगढ़ किले के यहाँ हम बाहर खड़े हैं जहाँ थोड़ी देर पहले ही सीन रिक्रिएशन पूरा हुआ, फॉरेंसिक की टीम यहाँ मौजूद थी। सबसे अहम बात यह है कि सिया और चेतन ने दोनों ने मिलकर इसकी रिहर्सल की थी, इससे पहले प्रैक्टिस हुई थी और प्रैक्टिस के बाद इसको अंजाम दिया गया था और उसी के बाद आप देख सकते हो कि सीन रिक्रिएशन ये लोहगढ़ किले पे अक्सर संडे को किला शुरू रहता है लेकिन आज पर्यटकों के लिए और जितने विजिटर्स हैं उन सभी के लिए इसे बंद किया गया था। लेकिन यही सीढ़ियां है, इसी सीढ़ियों से तीनों ऊपर गए थे, चेतन चौधरी गया था, उसके बाद सिया और केतन अग्रवाल भी गया था और उसी के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया।
0: हालांकि ऐसे तमाम दावों पर पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, सभी तथ्यों को वेरीफाई किया जा रहा है।
2: किसने किया था, चेतन ने किया था या सिया ने?
3: देखिए, आज तो हमने सीन रिक्रिएट किया गया, उसने अभी जो इन्वेस्टिगेशन में सारी बातें सामने आएगी उस हिसाब से अभी आगे भी इन्वेस्टिगेशन करना है।
2: देखो, इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि दोनों ने रिहर्सल की थी, इससे पहले प्रैक्टिस हुई थी कहीं ना कहीं और फिर आके इसे अंजाम दिया गया। तो क्या सिया ये अभी कह रही है कि वो प्रैक्टिस किस तरीके से हुई थी और कैसे उसने एग्जीक्यूट किया,
3: वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आज का तो सीन रिक्रिएशन होगा।
0: इस हत्याकांड में सिया और चेतन के सामने आए नए नए वीडियो और केतन के परिजनों के आरोपों के बाद ट्विस्ट और बढ़ गया है। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार वाबले, लोहगढ़ आज तक।
4: आखिर सिया ने केतन का कत्ल क्यों किया? क्या वो शादी से इनकार नहीं कर सकते थे? कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ऐसे तमाम सवाल हैं जो हर किसी के जहन में है, उन्हें हजम नहीं हो रहे। लिहाजा पुणे पुलिस सिया के साथ साथ उसके घर वालों से भी पूछताछ कर रहे हैं। एक दिन पहले पुलिस ने उसके माता पिता से लगभग 12 घंटों तक पूछताछ की, तो भाई से भी 2 दिनों तक सवाल जवाब किए गए।

0: सिया और केतन बस कुछ ही महीने बाद दोनों साथ फेरे लेने वाले थे, दोनों एक रिश्ते की डोर में बंधने वाले थे, लेकिन 18 जून को एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। लोहगढ़ के किले में ठीक इसी जगह पर केतन करीब 340 फीट गहरी खाई में जा गिरा और उसकी मौत हो गई। उस घटना के 5 दिन बाद यानी 23 जून को सिया की गिरफ्तारी हो जाती है और वहां से तब तक हादसा लगने वाला मामला पूरी तरह से अलग ट्रैक पर चला जाता है। कत्ल का आरोप लगता है, आरोप ये कि सिया ने अपने मंगेतर को मार डाला। इस गुनाह में सिया का साथ दिया उसके दोस्त चेतन चौधरी ने। वही चेतन जिसका सिया के साथ कई वीडियो सामने आ चुके हैं। एक वीडियो में दोनों क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखते दिखे हैं और सबसे अहम तो ये कि सिया और चेतन ने केतन की हत्या से ठीक एक दिन पहले यानी 17 जून को ही पुणे के कैफे में मुलाकात की थी। दोनों शाम करीब 4:30 बजे मिले थे। माना जा रहा है कि दोनों ने उसी कैफे में हत्या की फाइनल साजिश रची और उसे अंजाम देने पर करीब घंटे भर बात की थी। खुलासा ये भी हुआ है कि हत्या के पहले सिया ने लोहगढ़ किले का वीडियो YouTube पर सर्च किया था और वहां के लोकेशन को कैफे में मुलाकात के दौरान चेतन के साथ साझा किया था। बात यहीं तक नहीं रुकी, सिया का बड़ा भाई साहिल गोयल भी चेतन को जानता था, दोनों ने साथ साथ क्रिकेट खेले थे, उससे जुड़ा वीडियो भी सामने आया है।
1: इस मामले में जो भी लोग जुड़े हुए उन सबसे हम पूछताछ कर रहे हैं।
2: कल साहिल से जो है 10 घंटे तक पूछताछ की गई है, लेकिन जो चेतन था और साहिल है, इन दोनों की दोस्ती कैसे हुई और कहां से शुरू हो गई, कहां से मुलाकात हुई और उनके बीच बातचीत शुरू हो गई थी?
1: चेतन और साहिल एक दूसरे को जानते थे और साथ में क्रिकेट भी खेलते थे और वो दोनों दोस्त भी थे
2: और इसी क्रिकेट ग्राउंड में सिया भी आती थी और उसकी वजह से जो है चेतन और सिया एक दूसरे को पहचानने लगे थे।
1: यह भी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, हम हर तरीके से ये जारी है, उस हिसाब से हम आगे बताएंगे।
0: चेतन के साथ तमाम वीडियो और कनेक्शन सामने आने के बाद पुणे पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया, सिया के परिजनों को रडार पर लिया और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। 27 जून को पुलिस ने सिया के माता पिता को पूछताछ के लिए बुलाया, दोनों से करीब 12 घंटे तक सवाल जवाब किए। पुलिस ने परिवार से कई अहम सवाल पूछे जिनके जवाब अब जांच का अहम हिस्सा बन गए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान सिया के पिता प्रवीण गोयल और मां पूजा गोयल से पुलिस ने पूछा कि क्या सिया ने आपको चेतन के साथ अपने प्रेम संबंध के बारे में बताया था, क्या आपको इसकी जानकारी थी? परिजनों ने जवाब दिया कि सिया ने हमें अपने प्रेम संबंध के बारे में कभी नहीं बताया था, हमें इसकी जानकारी अब हुई है। पुलिस ने पूछा कि क्या आपने सिया पर केतन के साथ शादी करने का दबाव बनाया था, तो उन्होंने कहा कि हमने सिया पर शादी के लिए किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला था। 27 जून को हुई पूछताछ के दौरान अपने माता पिता के साथ सिया का भाई साहिल भी मौजूद था। साहिल से 26 जून को ही पुलिस ने केतन हत्याकांड को लेकर सवाल जवाब किए थे। शुक्रवार को साहिल गोयल से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उस पूछताछ में जांच से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई थी। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और आने वाले दिनों में कुछ और लोगों से पूछताछ की जा सकती है। जांच एजेंसियां पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। इतना ही नहीं, पुलिस ने आज सिर्फ सिया का सीन रिक्रिएट किया, अभी चेतन का सीन भी रिक्रिएट किया जा सकता है। जानकारी जुटाई जाएगी कि इतने बड़े अपराध को इन दोनों ने इतना सरल कैसे समझ लिया, कैसे इनके दिमाग में ये बात नहीं आई कि केतन को मार डालना विकल्प नहीं था, कैसे ये नहीं समझ पाए कि केतन के कत्ल के बाद इनका अंजाम क्या होगा। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार बावले, लोहगढ़, पुणे, आज तक।
3: केतन अग्रवाल का परिवार लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। उसके माता पिता की मांग पर फडणवीस सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई की मांग मान ली है। उज्ज्वल निकम को विशेष सरकारी वकील नियुक्त किया गया है, लेकिन इंसाफ की यह लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है, क्योंकि अभी पुलिस लगातार बयान दर्ज कर रही है, उसके बाद तमाम कड़ियां जोड़ी जा रही हैं और अंजाम तक पहुंचना भी चुनौती है।
4: जो किया है वो बहुत ही शॉकिंग है और मेरे लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था।
0: केतन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी यादें हैं। उसकी यादों में आंसू हैं, गम है, गुस्सा है। नाराजगी सिर्फ अग्रवाल परिवार में ही नहीं है, पुणे शहर में हर कोई सवाल हत्याकांड को लेकर उठा रहा है और कह रहा है कि दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए।
4: केतन की चाची लगती हूँ और सिया ने जो किया है वो बहुत ही शॉकिंग है और मेरे लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था। वो मुझे इतना ट्रस्ट था वो लड़की पे, उसने जो किया है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए और इसके आगे उसके एज की या फिर कोई भी एज की लड़की ये सब चीजें करने से पहले 100 बार डरनी चाहिए। ऐसा जस्टिस मिलना चाहिए हमारे केतन को। दिस इज ओनली ऑल आई वॉन्ट।
5: अब चाहती हो किशन की बचपन से उसे देखा होगा, कुछ यादें साझा करना चाहिए।
4: सेकंड स्टैंडर्ड से ही देख रही हूँ मैं वो बच्चे को, इतना मासूम, इतना प्यारा लड़का। मतलब आई वॉज वेरी हैप्पी कि उसका मतलब रिश्ता पक्का हो गया, बट वो लड़की ने जो किया दैट वॉज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। और जो स्टूपिड रीजंस उसने दिए है कि बाल्ड है और तोतला बोलता है, वो सब बातें तो जब रिश्ता पक्का हुआ था तो वो सब क्लियर हो गई थी, और वो ये सब हरकतें कर रही है, ये सब झूठ बोल रही है। दिस इज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग फॉर एवरीबडी इन द फैमिली।
0: केतन के पिता विशाल अग्रवाल अपील कर रहे हैं कि उनके बेटे के इंसाफ के लिए 18 जून को जो लोग लोहगढ़ किले में मौजूद थे वो गवाही के लिए आगे आएं। विशाल अग्रवाल बता रहे हैं कि वारदात वाले दिन कई लोगों ने उन्हें फोन किया था।
6: सिर्फ एक ही अपील करूंगा, मेरा 26 साल का बेटा आज जिस भी वजह से उन्होंने बिना कारण से मार डाला, जिसको कारण पता नहीं चला, मेरे बच्चे की कहीं पे भी एक गलती नहीं थी। मैं तो शादी करने चला था, उसकी घर में बेटी बहू लाने चला था, मुझे नहीं पता था कि मेरा बच्चा ही खो दूंगा मैं। तो मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि उसको जस्टिस मिले, उसके अपराधियों को फांसी की सजा मिले, यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है।
0: अभी कई सवाल हैं जो सिया और चेतन के अंदर दबे हुए हैं, जिन्हें पुलिस को पता लगाना है। इस मामले में सबसे अहम कड़ी है दोनों का मोबाइल, जिससे कई जानकारी सामने आ सकती है, जैसे सिया और चेतन के बीच कब से बातचीत चल रही थी, दोनों के बीच किस तरह की बातचीत हो रही थी, क्या मर्डर की प्लानिंग की बात भी फोन के जरिए की गई। जांच ने तब नया मोड़ लिया जब जांचकर्ताओं को पता चला कि आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी ने कथित तौर पर अपने फोन से अपनी डिजिटल बातचीत मिटा दी थी। पुलिस के मुताबिक दोनों डिवाइस से व्हाट्सएप चैट, इंस्टाग्राम एक्टिविटी और अन्य डिलीट किए गए डेटा की अब फोरेंसिक एनालिसिस के जरिए जाँच की जा रही है। शक है कि चैट को लोहगढ़ की घटना से पहले और बाद में डिलीट किया गया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपियों ने न केवल बातचीत हटाई बल्कि उसे अपने डिवाइस के रिसाइकल बिन से भी साफ कर दिया, जिससे फोरेंसिक रिकवरी जरूरी हो गई है।
1: जो उसका मोबाइल हमने ताबे में लिया पंचनामे से, और अभी हम उसका एफएसएल को भेजेंगे और उसका जो भी डाटा है उसमें हम एनालिसिस करेंगे।
2: बताया जा रहा है कि उसकी जो चैटिंग है वो डिलीट की गई है, कुछ इस सामने आया है ऐसा कुछ?
1: अभी तक तो हमारे अभी पंचनामे से क्या है, हम एफएसएल में वो क्यूरी वो पूछेंगे।
0: कॉल डिटेल रिकॉर्ड से दोनों के बीच लगातार संपर्क का पता चला है। सिया गोयल और चेतन चौधरी ने जनवरी से लेकर अब तक 2004 कॉल किए, जिनकी कुल अवधि लगभग 238 घंटे थी। ऐसे में मोबाइल की जांच से कई राज सामने आ सकते हैं। वैसे सिया के पिता प्रवीण गोयल और मां पूजा गोयल का दावा है कि 18 जून को लोहगढ़ जाने का प्लान सिया का नहीं था। केतन ने ही वीडियो कॉल करके सिया को लोहगढ़ बुलाया था। सिया के परिजन यहां तक दावा कर रहे हैं कि अगर सिया ने कुछ गलत किया है तो उसे भी लोहगढ़ किले से धक्का दे दो।
7: मैं तो कहता हूँ अगर इसमें जो भी आरोपी हो, जो भी, जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है, अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूँगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहाँ से धक्का दे के उसे भी ख़त्म कर दिया जाए। अब इससे ज़्यादा एक बाप और कुछ नहीं बोल सकता।
8: अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहां से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहां से ही उस दोषी को गिराया जाए, जो भी दोषी निकले, मेरी बेटी चाहे उसमें दोषी हो ठीक है, उसे फांसी की सजा दो या लोहगढ़ जाके वहीं से ही गिरा दे।
0: पहले चेतन चौधरी ने दावा किया था कि वो वारदात के समय चट्टान के पास मौजूद नहीं था, लेकिन पूछताछ के दौरान उसके बयान में लगातार विरोधाभास सामने आए। जब पुलिस ने सख्ती बरती तो सिया और चेतन ने अपने अपराध स्वीकार कर लिया। एक थ्योरी ये भी आ रही है कि केतन विग लगाता था, और ये भी पता चला है कि सिया केतन के विग लगाने को पसंद नहीं करती थी। हालांकि इस थ्योरी को पुलिस खारिज कर रही है।
1: अभी जो है इन्वेस्टिगेशन का जो मोटिव है वो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम जो भी कंक्लूजन पे आएंगे तो अब हम बताएंगे।
2: जो विक का मामला बोल रहे हैं वो सच है या झूठ है?
1: अभी तक इन्वेस्टिगेशन में हमें ये मामला अभी तक आपसे ही अभी पता चल रहा है।
0: सवाल कई हैं, ऐसे में पूरी संभावना है कि सच तक पहुंचने के लिए अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। कृष्णा पांचाल के साथ ओमकार वाबले, पुणे आज तक।
3: अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के चढ़ावे में चोरी का मामला लगातार गहरा था जा रहा है। जांच के दायरे में अब सिर्फ आरोपी नहीं बल्कि उनसे जुड़े हुए लोग, उनकी आर्थिक गतिविधियां भी आ गई हैं। अयोध्या पुलिस ने इस मामले में नामजद कई आरोपियों के घर पर पहुंचकर उनके परिजनों से पूछताछ की है।

0: रामलला के चढ़ावे से चोरी के मामले में जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एसआईटी की जांच के बाद जहां राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कुछ लोगों के इस्तीफे सामने आए, वहीं अब पुलिस भी कार्रवाई तेज करती नजर आ रही है। अयोध्या पुलिस ने मामले में नामजद आरोपियों के घर पहुंचकर उनके परिजनों से पूछताछ की।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों के घर पर, जो अयोध्या के रहने वाले हैं, उनके घरों पर छापेमारी की जा रही है। मैं इस समय पर अयोध्या में ही रह रहे रमाशंकर मिश्रा, जो आरोपी थे जिनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, रमाशंकर मिश्रा के घर पर मौजूद हूँ। उनके परिजनों से, उसकी भाभी, बहन, उनके पिता से पूछताछ की जा रही है। ये रमाशंकर मिश्रा घर है जो राम मंदिर में नोट गिनने के काम में जुड़ा हुआ था। बता दें कि अयोध्या पुलिस ने इन सभी आरोपियों के घर से लगभग 80 लाख रुपए बरामद किए थे और उनको जुडिशियल कस्टडी में सोमवार तक के लिए भेज दिया गया था, लेकिन अब कल सोमवार को दोबारा जुडिशियल कस्टडी पर सुनवाई होनी है। उससे पहले पुलिस के द्वारा ये जांच की जा रही है, पड़ताल की जा रही है, इन सभी जो आरोपी हैं उनके घर वालों से पूछताछ की जा रही है कि ये लोग कब आते थे, कैसे आते थे, क्या क्या खरीदा गया।
0: अयोध्या पुलिस ने टिन्नू यादव, मनीष यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा के घरों पर पहुंचकर उनके परिवार के लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने आरोपियों के घर आने जाने, उनके संपर्कों और गतिविधियों से जुड़ी जानकारी जुटाई। आरोपी रमाशंकर मिश्रा के पिता अयोध्या के एक मंदिर में पुजारी हैं। पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की
2: जाँच के लिए, और वो यहाँ रहते हैं कि नहीं रहते हैं, कहाँ वो है तो हम बताए कि कमरा पे अलग लिए रहते हैं, दो ढाई साल से यहाँ रहते नहीं हैं, आना जाना भी यहाँ का नहीं है, एक दिन कभी इस मंदिर के अंदर पांव नहीं रखते हैं।
1: कब से नहीं आया?
2: दो ढाई साल हो गए यहाँ नहीं आया। हाँ, दो साल।
1: राम मंदिर में कब से काम कर रहा था, क्या काम करता था रमाशंकर?
2: 5-6 साल हो गए, तब वहाँ पैसा गाने में बताता है, गाना कर्मचारी।
1: अच्छा, हाँ। अभी पैसा वैसा ज्यादा देखा आपने रमाशंकर के पास? बहुत
2: कभी नहीं, पैसा तो मांगा तो रहा, तो पैसा पाई नहीं है? पैसा मांग लिया तरह के देगी, कहीं जरूर लगे।
1: पुलिस तो कह रही है कि सब मिलके 80 लाख रुपया चोरी कर लिए चढ़ावे से।
2: कुछ होइए कि नया पैसा यहाँ कहूँ देखबे न आया हुआ।
0: रमाशंकर मिश्रा के परिजनों का कहना है कि वो लंबे समय से घर नहीं आया है और किराए के मकान में रह रहा था।
3: हमको ना वो करे हैं ना हमको दिया है, कभी हमसे उनसे बनता ही नहीं था, कभी वो 10 रुपया हमको दिए ही नहीं थे। मुझको मेरे पति का सहारा है, बस कोई का सहारा नहीं है।
1: तो यहाँ रमाशंकर के बारे में और क्या, घर से कुछ पैसा वैसा ले गए, कुछ बरामदगी दिखाई है, घर से मिला है?
3: कुछ नहीं मिला है सर, केवल कागजात मिला है, वही लेकर गए हैं, आधार नंबर, खाता नंबर।
0: पुलिस के मुताबिक अब तक इस मामले में करीब 80 लाख रुपए की बरामदगी की जा चुकी है, इनमें से करीब 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से मिलने की बात सामने आई है।
1: टिन्नू यादव के इस हॉस्टल से ही, दुर्गापुरी कॉलोनी का ये, अयोध्या में ही दुर्गापुरी कॉलोनी ये हॉस्टल है, और इस हॉस्टल में यूं तो यहाँ अयोध्या विश्वविद्यालय के आसपास के कॉलेज के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर 2 कमरे हैं जो टिन्नू यादव ने अपने निजी यूज के लिए रखे हैं। कहने को तो दोनों कमरे पूजा घर है, उसका अपना कमरे उनके कब्जे में है, लेकिन कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद, जब गुरुवार देर रात टिन्नू यादव को अयोध्या पुलिस ने FIR दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया, तो शुक्रवार की सुबह उसको यहां लाया गया, और पुलिस के अनुसार जो दस्तावेज जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है कि लगभग 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से बरामद हुए।
0: इस मामले में गिरफ्तार किए गए अनुकल्प मिश्रा पर भी जांच एजेंसियों की नजर है। पुलिस के अनुसार वो नोटों की गिनती की व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। जांच के दौरान उसकी संपत्तियों और वित्तीय लेनदेन की भी पड़ताल की जा रही है। 2 साल पहले खरीदे गए उसके मकान पर भी आज तक की टीम पहुंची।
4: मेरे भाई को फंसाया जा रहा है, मेरी मुझ में ही है, वही से शादी हुई थी, चाचा की 10 साल से इनका केस चल रहा है, उनका मैटर चाचा चाची का है, वो अलग जाने।
0: उधर राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर CCTV कंट्रोल रूम की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार और BJP पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि CCTV बंद करके चोरी को अंजाम दिया गया, साथ ही ये भी कहा कि BJP की प्राथमिकता देश नहीं बल्कि चंदा है।
5: अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे, आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आज जब राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है, तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है।
6: इनकी निगाहें नेशन पे नहीं है, डोनेशन पर हैं। जो लोग ये कहते थे नेशन फर्स्ट, उनके लिए लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट है।
0: रामलला के चढ़ावे में गबन के इस मामले में पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, बड़ी रकम बरामद होने का दावा किया गया है और आरोपियों से जुड़े आर्थिक पहलुओं की भी जांच की जा रही है। साथ ही मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। ऐसे में सभी की नजर अब पुलिस जाँच पर, आगे होने वाली कानूनी कार्रवाई पर टिकी हुई है। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।
7: खबर राजस्थान से, जहां पर बीजेपी सरकार के एक मंत्री सरकारी सब्सिडी को लेकर चर्चा में है। अब विपक्ष मंत्री पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मंत्री भागीरथ चौधरी इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो प्रक्रिया निर्धारित मापदंडों और सरकारी नियमों के तहत ही की गई है।
8: क्या एक मंत्री अपनी ही मंत्रालय की योजना से सब्सिडी ले सकता है? क्या नियम सभी के लिए बराबर हैं या पद और प्रभाव से बदल जाते हैं? केंद्र सरकार की कृषि योजनाओं को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। भारत सरकार के एक मंत्री ने सरकार से करीब 99 लाख की सब्सिडी प्राप्त की है। खीरे, टमाटर, शिमला मिर्च की खेती के लिए मंत्री जी ने अपने ही कृषि मंत्रालय से सब्सिडी ले ली। मामला सामने आने के बाद विपक्ष ने इसे लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं और निष्पक्ष जांच की मांग की है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस पर सत्ता का गलत प्रयोग बताया है। सचिन पायलट ने लिखा, कृषि मंत्री पर 99 लाख सब्सिडी का आरोप, अपनी ही योजना से लाभ लेने का मामला, पद के दुरुपयोग पर विवाद, पारदर्शिता और जांच की मांग। इस बीच आप नेता मनीष सिसोदिया ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।
9: मोदी सरकार के मंत्री खुद अपने ही विभाग में खीरा किसानों की सब्सिडी खा गए, तो चारों तरफ लूट पे लूट चली जा रही है। तो इस लूट वाली सरकार को हटाना पड़ेगा। लोगों को समझना पड़ेगा कि ये लूट सरकार अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी।
8: वहीं मंत्री भागीरथ चौधरी ने विपक्ष के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि पूरी प्रक्रिया सरकारी नियमों और निर्धारित मापदंडों के तहत की गई है।
10: और 2018 से मैं इस आवेदन के लिए मैं लगा हुआ हूँ उसमें, तो कोई मैंने कोई प्रक्रिया के तहत मैंने काम किया। दूसरा, हम दो MS हैं, MOS हैं हम, और उसमें एक रामनाथ जी ठाकुर है और एक मैं हूँ। ये जो सब्सिडी वाला है, ये जो कुछ है, तो वो राज्य मंत्री और रामनाथ जी ठाकुर है।
8: फिलहाल इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। विपक्ष जहाँ इसे पद के दुरुपयोग का मामला बता रहा है, वहीं सरकार इसे नियमों के तहत हुई प्रक्रिया बता रही है। आज तक ब्यूरो।
7: रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
12: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
11: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

चढ़ावा चोरी को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी को फिर घेरा, कहा इनके लिए नेशन नहीं डोनेशन। पर सीएम योगी ने दी चुनौती, बोले कृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर बोले सपा। पेपर लीक के विरोध में दिल्ली में यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट, मांगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। मुंबई में भी शिक्षा मंत्री के घर के बाहर हल्ला बोल। केतन अग्रवाल हत्याकांड में क्राइम सीन रिक्रिएट, मुख्य आरोपी सिया और चेतन को लेकर लोहागढ़ के लिए पहुंची पुलिस, जानबूझकर केतन का पासपोर्ट गायब करने की भी जानकारी।

पर्यावरण संरक्षण का खास सम्मान। आयरलैंड से दूसरे टी20 में भी शिकस्त के बाद 0-2 से सीरीज हारा वर्ल्ड चैंपियन भारत। 155 रन के लक्ष्य से एक रन पीछे रह गई टीम इंडिया।

सेशेल्स के संसद में पीएम मोदी का संबोधन का हिंद महासागर हमें बांटता नहीं जोड़ता है, यह हमारा साझा घर। आजादी के 50 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने सेशेल्स को दी बधाई, कहा कि दोनों देशों में सम्मान का रिश्ता लगातार मजबूत हो रहे हैं। संबंध राष्ट्रपति पेट्रो के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय बातचीत, यूपीआई लागू करने के लिए दोनों ही देशों में समझौता। सेशेल्स ने पर्यावरण संरक्षण के लिए पीएम मोदी को एक खास सम्मान दिया, गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन अवार्ड मिलने पर जताया गया। पीएम मोदी को खास सम्मान मिलने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई दी, गृहमंत्री अमित शाह ने भी कहा कि सतत विकास में भारत रोल मॉडल के तौर पर आगे बढ़ रहा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक्शन तेज, गिरफ्तार सभी आरोपियों के घर पर छापेमारी, टिन्नू यादव और अविनाश शुक्ला के घरों की तलाशी ली गई। आरोपियों के घर छापे में मिले संपत्ति के पेपर्स दस्तावेजों का सत्यापन कराएगी पुलिस, कुछ लोगों के घरों से जेवरात मिलने की भी जानकारी। चढ़ावा चोरी पर अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को फिर घेरा, कहा सीसीटीवी बंद करके की गई चोरी, इनके लिए नेशन नहीं डोनेशन फर्स्ट। अखिलेश के बयान पर सीएम योगी का पलटवार, कहा कि एसपी सरकार में राम भक्तों पर तो गोलियां चलाएगी, इनके पास विकास का एजेंडा नहीं है। अखिलेश को मुख्यमंत्री योगी ने चुनौती दी, कहा कि अगर हिम्मत है तो श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर बोलकर दिखाएं। राम मंदिर चोरी मामले में सीसीटीवी से बड़ा खुलासा, 5 जून को आरोपी अविनाश के हाथ में काला बैग दिखाई दे रहा। योगी आदित्यनाथ का समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार पर निशाना, कहा कि पहले दंगे होते थे, अब मुहर्रम में सड़कों पर बवाल नहीं होता। पेपर लीक को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा, कहा कि बीजेपी के राज में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़। पेपर लीक के विरोध में दिल्ली में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, बीजेपी मुख्यालय के घेराव की कोशिश, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। मुंबई में भी स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भूसे के घर के बाहर यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल, महाराष्ट्र में टीटी पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी पर तेजस्वी यादव का हमला बताया कठपुतली मुख्यमंत्री, कहा कि दिल्ली से जो कहा जाता है वही करते हैं। आज अकाल तख्त के सामने पेश होंगे पंजाब के सीएम भगवंत मान, कहा कि हमारे लिए अकाल तख्त सर्वोपरि, सभी मंत्री विधायक साथ रहेंगे। ये मोदी के मन की बात का 135वां एपिसोड, लोगों से वोकल फॉर लोकल मुहिम में शामिल होने की अपील, देश के लोगों को बताया देश की शक्ति। मन की बात में पीएम मोदी ने योग दिवस का भी जिक्र किया, कहा कि 2500 से ज्यादा जगहों पर योग का कार्यक्रम। गाजियाबाद के ट्रॉनिकल सिटी में प्रशासन का एक्शन, अवैध मजार पर चला बुलडोजर, मुक्त कराए गए सरकारी सभी। अमरनाथ यात्रा को लेकर एलजी मनोज सिन्हा ने बालटाल यात्री कैंप का किया दौरा, सुरक्षा पर समीक्षा बैठक। पटना में साइंस कॉलेज में सीएम सम्राट चौधरी के काफिले के सामने खड़ा हुआ एक छात्र, मुख्यमंत्री ने गाड़ी रोककर स्टूडेंट से बात की। केतन अग्रवाल हत्याकांड में जांच तेज, लोहगढ़ में घटनास्थल पर आरोपियों के साथ क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। कैलाश मानसरोवर यात्रियों को विदेश मंत्रालय की तरफ से सलाह, बिना चीन के परमिट की यात्रा नहीं करने के निर्देश। पटना में भीषण गर्मी से 30 जून तक 8वीं तक के स्कूल बंद, डीएम ने जारी किया आदेश। दूसरे T20 में आयरलैंड ने वर्ल्ड चैंपियन भारत को हरा दिया, मेजबान टीम का सीरीज पर 2-0 से कब्जा। पहले खेलते हुए आयरलैंड ने 8 विकेट पर 154 रन ही बनाए थे, भारत 9 विकेट खोकर सिर्फ 153 रन बना सका। भारत के दोनों सलामी बल्लेबाज अभिषेक और संजू 0 पर आउट हुए और बेकार गए तिलक वर्मा की अर्धशतकीय टुक टुक पारी। महिला T20 वर्ल्ड कप से भी बाहर हुई टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से हराया। भारत की महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया के सामने दिया था 171 रनों का लक्ष्य, कप्तान हरमनप्रीत ने 56 रन बनाए। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में बैंकेट हॉल में बच्चे से लाखों के शगुन और गहनों से भरे हुए बैग की चोरी करवाई गई, घटना सीसीटीवी में कैद हुई। गाजियाबाद में अवैध मजार पर बुलडोजर चला, 1 करोड़ की सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। झांसी में शादी के 4 महीनों के बाद ही नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिवार वालों ने ससुराल वालों पर मारने का आरोप लगाया। फरीदाबाद में कारोबारी ने दुकान में खुदकुशी की, वीडियो में पत्नी ससुराल पक्ष पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप। सहारनपुर में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को रौंदा और मौके पर ही शख्स की मौत। पटना में ज्वेलरी शॉप में मालिक से लूटपाट, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बगहा में देर रात बवाल, 2 पक्षों में पथराव, 2 पुलिसकर्मी समेत 6 लोग घायल। जालना में देव दर्शन के लिए निकले दोस्तों की कार का भीषण हादसा हुआ, 2 लोगों की मौत, 1 घायल। मुंबई के माही में मामूली धक्का लगने पर रेलवे स्टेशन के पास में युवक को मारा गया चाकू, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। सहारनपुर में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर 2 दिन पहले हुए हादसे का वीडियो आया सामने, रिवर्स लेते ही कार को पीछे से आ रही कार ने जोरदार टक्कर मारी, 4 लोगों की मौत।
अहमदाबाद में तेज रफ्तार कार और बाइक सवार की टक्कर, 3 युवक इसमें घायल है, मौके से चालक फरार। जालना में नशे की गोलियों की बिक्री करने वाले रैकेट का पर्दाफाश, आतंकवादी विरोधी दस्ते ने 1080 बटन गोलियों के साथ 2 आरोपियों को पकड़ा। गोंडा में लड़की से मिलने के लिए पहुंचे युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें गठित की गई। वाराणसी में पुलिस पर फायरिंग करने वाला अपराधी गिरफ्तार, घटना का वीडियो वायरल। हटिया आनंद विहार एक्सप्रेस में यात्रियों को पिस्टल दिखाकर धमका रहे युवक को जेआरपी और आरपीएफ ने दबोच लिया, लोडेड पिस्टल और 24 जिंदा कारतूस बरामद। ईरानी सेना की अमेरिका को खुली चेतावनी, कहा कि दोबारा हमला हुआ तो अंजाम बुरा होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने इराक के विदेश मंत्री से मुलाकात की, इराक के विदेश मंत्री ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलने की अपील की। यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या में रूसी सेना का भीषण हमला, गाइडेड बमों से रिहायशी इलाकों को बनाया निशाना, घरों पर मिसाइल गिरी, इसमें 1 की मौत, 14 घायल। रूसी हमले के जवाब में यूक्रेन ने पलटवार किया, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने किया दावा, रूस के 2 तेल रिफाइनरी को हमने उड़ाया। स्लोवाकिया ने यूक्रेन को सैन्य मदद देने से किया इनकार, स्लोवाकिया के पीएम ने यह ऐलान किया। सुरक्षा के मोर्चे पर साथ है दक्षिण कोरिया और जापान, राजधानी सोल में दक्षिण कोरिया और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक। डिजिटल टैक्स को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर यूरोपीय संघ का जवाब, कहा हम दबाव में नहीं आएंगे। पीएम मोदी को सशल्स का पर्यावरण संरक्षण सर्वोच्च सम्मान मिला, पीएम मोदी ने सशल्स की संसद को भी संबोधित किया। फ्रांस के टॉमलिन शहर में बड़ा विमान हादसा, पैराशूटिंग स्कूल का प्लेन क्रैश, हादसे में पायलट समेत 11 लोगों की मौत, मृतकों में 5 छात्र भी शामिल। वेनेजुएला में भूकंप से बड़ी तबाही, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज, मलबे में फंसे लोगों और शवों को निकालने का काम जारी।

नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बीमार होने पर डॉक्टर की लिखी दवाई, दवाई खा ली, सोते हैं कि ठीक हो जाएंगे, लेकिन ठीक कैसे होंगे जब क्वालिटी टेस्ट में ब्रांडेड कंपनीज की 157 दवाएं फेल हो गई। नकली दवाएं तो नुकसान कर ही रही हैं, असली के नाम पर भी धोखा बेचा जा रहा है। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट की एक ऐसी खबर से जिसकी चर्चा शायद ही कहीं हो रही है और होगी भी कैसे। हमने इस देश में हर चीज पर मिलावट का दौर देखा है, दूध, पनीर, सब्जी, खाने, मिठाई की चीजें, जितनी भी चीजें, सब में मिलावट का दौर देखा। और अब तो अभ्यस्त भी हो गए हैं, हम चर्चा भी कर लेते हैं कि पता नहीं मिलावटी है क्या है, चलो खा लेते हैं। हमारे देश में राजनीति की खबरें, नेताओं के बयान, आरोप प्रत्यारोप, सियासी बयानबाजी अक्सर बड़ी खबर मानी जाती है, लेकिन जो खबर सीधे आपके घर, आपकी जेब, आपकी सेहत, आपकी जिंदगी से जुड़ी होती है वो अक्सर सुर्खियों से बाहर रह जाती है। लेकिन आज आप ब्लैक एंड व्हाइट में रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हम आपकी बात आज करने वाले हैं। हम अपने विश्लेषण की शुरुआत करने जा रहे हैं जिस खबर से, वो देश के करोड़ों परिवारों से जुड़ी हुई खबर है। ये खबर उन ब्रांडेड दवाइयों के बारे में है जिन्हें लोग डॉक्टर की सलाह पर और पूरे भरोसे के साथ मेडिकल स्टोर से खरीदते हैं। ये सोचकर खरीदते हैं कि कम से कम दवा की गुणवत्ता पर तो कोई सवाल नहीं होगा, लेकिन अब उसी भरोसे पर सवाल खड़े हो गए। भारत सरकार की संस्था है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसने अपनी ताजा रिपोर्ट में खुलासा किया है कि मई महीने में 157 दवाइयां क्वालिटी टेस्ट यानी गुणवत्ता के मामले में फेल हो गई। क्वालिटी टेस्ट में फेल होने का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये दवाइयां तय मानकों पर खरी नहीं उतरती। कई मामलों में पाया गया कि इन दवाओं में मौजूद ड्रग सॉल्ट की मात्रा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है, इनमें सॉल्ट कॉम्बिनेशन भी सही नहीं था। कल्पना कीजिए, यानी लोग जिन दवाइयों को इलाज समझकर खा रहे थे उन दवाइयों की गुणवत्ता ही सवालों के घेरे में थी। सबसे चिंता की बात तो यह है कि सूची में ऐसी दवाइयां भी शामिल हैं जो लगभग हर घर में इस्तेमाल होती हैं। और आज इन दवाइयों को मैं साथ भी लेकर आई हूं और मैं चाहती हूं कि आप भी जरा एक बार देख लें कि कहीं ये दवाइयां जो मेरे साथ यहां पर मौजूद है, हम एक एक करके आपको दिखाएंगे, ये दवाइयां आपके घर में भी तो नहीं है। तीन दवाएं हम लेकर आए हैं जिसमें भारत सरकार की एजेंसी बता रही है कि इसमें जो सॉल्ट्स का इस्तेमाल हो रहा है, जो मानक है, जो मापदंड है क्वालिटी के, वो सही नहीं पाए गए हैं। और ये जानते हैं, ये जो तीन दवाएं मैं लाई हूं आपको दिखाने वाली हूं, ये प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक है। ये बैक्टीरियल इंफेक्शन के लिए फटाफट डॉक्टर्स दिखते हैं बहुत सारे लोगों को, और ऐसा मुमकिन है कि आपने भी ये दवा खाई हो। पहली बार जो दवा हम आपको दिखा रहे हैं ये है ऑगमेंटिन 625। ऑगमेंटिन 625 जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कई बार हो सकता है डॉक्टर ने आपको दी है हो, आपके बच्चे के लिए प्रिस्क्राइब की हो, तो ये है ऑगमेंटिन 625 पहली दवा बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, डॉक्टर्स फौरन इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। दूसरी दवा है, ये है मॉक्सक्लैव 625। दवा वही है जिसमें अगर आप देखेंगे जो सॉल्ट है तो इसमें एक्टिव इंग्रीडियंट्स है अमोक्सिसिलीन और क्लैव्युलैनिक एसिड। ये देखिए अगली दवा जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये भी, ये दूसरी कंपनी की है, सॉल्ट वही है लेकिन कंपनी दूसरी है, और ये है क्लैवन 625। ये दवा भी आपको कई डॉक्टर्स ने हो सकता है कभी प्रिस्क्राइब की हो। तीनों में ही सॉल्ट एक है जिसमें अमोक्सिसिलीन एंड पोटेशियम क्लोवेट, इसमें सॉल्ट बताया जा रहा है और ऐसे ही क्लैव्युलैनिक जो एसिड है वो सब में डाला जाता है। तो सॉल्ट वही है, कंपनियां तीन है, तीन अलग अलग दवाएं हैं, लेकिन भारत सरकार की रिपोर्ट बता रही है कि इनमें बड़ी बड़ी खामियां हैं, बड़ी बड़ी कमियां हैं। आपने कभी सोचा है कि पहले आप बुखार की एक गोली खाने से ठीक हो जाते थे, लेकिन अब दो तीन खुराक के बाद भी इन दवाइयों का कोई असर नहीं होता? और इसका कारण यही है कि ये दवाइयां असली होते हुए भी क्वालिटी के मामले में खराब होती हैं। इसमें पैरासिटामोल जैसी बुखार की दवा भी शामिल है जिसे लोग बिना डॉक्टर की सलाह के भी खरीद लेते हैं। इसके अलावा डाइक्लोफेनाक जैसी दर्द की दवा, मांसपेशियों के दर्द में इस्तेमाल होने वाला डाइक्लोफेनाक जेल इसी लिस्ट में शामिल है, और ये भारत सरकार की एजेंसी है जिसने ये बताया है। इसके बाद खांसी, जुकाम, एलर्जी में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां भी जांच में फेल हो गई हैं।
इनमें भी डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन सिरप जो है वो देश के लाखों घरों में खांसी के लिए इस्तेमाल होता है, वो भी सूची में शामिल है। और सांस से जुड़ी गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले टाइट्रोपियम इनहेलर भी क्वालिटी टेस्ट में निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरा। अरे सवाल सिर्फ एक गोली या एक सिरप का नहीं है, सवाल उस पूरे भरोसे का है जिस पर मरीज, उसका परिवार, अपना जीवन निर्भर करता है। उदाहरण के लिए इस जांच में पेट और एसिडिटी की दवाइयां फेल हो गई, रेबेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल, ये तमाम दवाइयां जिन्हें देश में लाखों लोग रोजाना खाते हैं, उनके अलग अलग बैचेस के नमूनों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और ये सूची यहीं पर समाप्त नहीं होती, डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कई दवाइयों पर भी इसमें सवाल खड़े हुए हैं। और इनमें मेटफॉर्मिन और ग्लाइम्पेराइड, ये तमाम दवाइयों को क्वालिटी टेस्ट में सही नहीं पाया गया। यानी जिन लोगों को रोजाना अपना ब्लड शुगर कंट्रोल रखने के लिए इन दवाओं पर निर्भर करना रहना पड़ता है, और आप भी जानते हैं शुगर बढ़ना कितना बड़ा रिस्क है, शुगर गिर जाना कितना बड़ा रिस्क है, सीधे जिंदगी पर आ सकती है, जानलेवा हो सकता है, ये सही दवाइयां नहीं खा पा रहे हैं लोग और उनकी दवाइयों में भी मिलावट है। डायबिटीज के बाद ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां भी इस जांच में फेल पाई गई हैं। इनमें टेलमिसार्टन,

परिस्थिति में इतनी गंभीर बीमारी से जो लोग जूझ रहे हैं और जो इस्तेमाल होने वाली जो एस्पिरिन 75 mg है, क्लोपिडोग्रेल है, वो भी इस सूची में शामिल है। और हम बार बार आपको बता रहे हैं, ये भारत सरकार की रिपोर्ट है, भारत सरकार की एजेंसी की रिपोर्ट है जिसने इन तमाम दवाइयों में कमियां पाई हैं। इतना ही नहीं, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रेसुवास्टैटिन, ये भी टेस्ट में फेल हो गई। अब सोचिए, ये कोई अनजान या गली मोहल्ले में बिकने वाली दवाइयां तो है नहीं जो हम आपको यहां दिखा रहे हैं। ये वो दवाइयां हैं जिन्हें बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियां बनाती हैं, ये वो दवाइयां हैं जिन्हें लोग भरोसे के साथ खरीदते हैं, ये वो दवाइयां हैं जिन पर मरीज अपनी सेहत, अपना इलाज, कई बार अपनी जिंदगी तक भरोसे के साथ छोड़ देता है। लेकिन अगर वही दवाइयां गुणवत्ता परीक्षण में फेल होने लगे, अगर वही दवाइयां तय मानकों पर खरी ना उतरे, अगर मरीज को यह भरोसा ही ना रहे कि जो दवा वो खा रहे हैं उसमें सही मात्रा में दवा मौजूद भी है या नहीं है, फिर सवाल सिर्फ दवा का नहीं रह जाता, सवाल पूरे सिस्टम सरकारों का हो जाता है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब मरीज दवा खरीदते समय ब्रांड पर भरोसा नहीं कर पाएगा तो आखिर वो भरोसा कैसा करेगा। ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनकी दवाएं हमने आपको दिखाई हैं, और अगर सरकार की ही एजेंसी इसको गलत पा रही है मापदंड पर, तो इन दवाओं को रोकने वाला कौन है, इनकी बिक्री कौन रोकेगा, या बस बताकर वो किनारा कर लेंगे। भारत के लोग हर साल एसिडिटी की 2500 करोड़ गोलियां खाते हैं, 2500 करोड़ गोलियां। रेबेप्रोजोल, पेंटोप्रोजोल नाम की ये दवाई सबसे ज्यादा खाई जाती है, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि ये दवाई भी निर्धारित मानकों पर खरी नहीं उतरती। इसके अलावा भारत में हर दिन 60 से ज्यादा कंपनियां पैरासिटामोल की 400 करोड़ गोलियां बनाती हैं, और आप इन गोलियों को ये सोचकर खाते हैं कि इनसे आपका बुखार ठीक होगा, लेकिन असली दवाइयां भी सॉल्ट के मामले में मिलावटी निकलती हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैरासिटामोल की दवाई इस टेस्ट में फेल हुई, खून की कमी, विटामिन और जितने सप्लीमेंट्स हम लोग खाते हैं, पेट के लिए जो दवाएं हैं, फूड डाइजेशन के लिए जो दवाइयां डॉक्टर आपको लिखते हैं, वो दवाइयां भी क्वालिटी टेस्ट में सही नहीं पाई गई। इनमें भी डिहाइड्रेशन के लिए इस्तेमाल होने वाला ORS, सोचिए ORS, कहते हैं कि जिंदगी बचानी हो, डिहाइड्रेशन में किसी की हालत बहुत खराब है, ORS घोल पिला दो, ORS भी इस जांच में फेल हो गया, जबकि हमारे देश में हर साल 80 करोड़ रुपए के ORS की बिक्री होती है। इसका मतलब यह है कि आप पैसा देकर दवाइयां भी खरीद रहे हैं और ये दवाइयां भी आपको नकली मिल रही हैं, या फिर इनकी क्वालिटी में कमी पाई जा रही है। और बात सिर्फ दवाइयों की नहीं, इस रिपोर्ट में तो यह भी बताया गया है कि चोट लगने के बाद स्किन पर जो हम लोग सर्जिकल स्पिरिट लगाते हैं वो भी गुणवत्ता के मामले में खराब है। हैंड सैनिटाइजर, घाव पर जो हम लोग गॉज बैंडेज लगाते हैं, जो कॉटन वुल की पट्टी बांधी जाती है, वो भी क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई, और ये बहुत बड़ी बात है। अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फार्मा इंडस्ट्री भारत में है, जहां कुल 3000 कंपनियां काम करती हैं। मौजूदा वक्त में ये इंडस्ट्री 5,67,000 करोड़ रुपए की है, जो साल 2030 में 12,30,000 करोड़ रुपए की हो जाएगी। और हम दुनिया के 200 देशों को भी दवाइयों का निर्यात करते हैं, और ये निर्यात भी लगभग 5,00,000 करोड़ रुपए का है। और ये बात सब जानते हैं कि जो फार्मा इंडस्ट्री होती है इसमें भरोसा बहुत जरूरी है। जब कोई व्यक्ति कोई दवाई खाता है तो उसे ये पता नहीं होता कि वो दवाई कहां बनी है, उसमें कौन से ड्रग सॉल्ट इस्तेमाल हुए हैं। लोग सिर्फ सरकारों पर भरोसा रखकर डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाइयों को बाजार से खरीद लेते हैं। भाई डॉक्टर साहब ने नाम बता दिया, ये दवा मंगाओ। कोई भी व्यक्ति यही सुनिश्चित कर सकता है कि वो जो दवाई खा रहा है वो असली है, नकली है, हमारे पास सुनिश्चित करने का तो कोई तरीका ही नहीं है। लेकिन सोचिए, अगर असली दवाइयां भी क्वालिटी टेस्ट में फेल होने लगे, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों की दवाइयों की हम बात कर रहे हैं, तो इस देश के करोड़ों लोगों का विश्वास क्या होगा, उनकी सेहत का क्या होगा, बीमार होने पर उनका इलाज होगा या उनको और बीमार बनाया जाएगा। आपको यकीन नहीं होगा, जनवरी 2026 में 218, फरवरी 2017 मार्च में 190, अप्रैल में 121 और अब मई में 157 दवाइयां क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई है। और ऐसा नहीं है कि जो कंपनियां ये दवाइयां बना रही हैं वो कोई छोटी मोटी कंपनियां हैं। इनमें सिप्ला कंपनी का भी नाम है, जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स में 39,20,00,000 रुपए का चंदा दिया था, जिनमें से 37 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को मिला था और 2,20,00,000 रुपए का चंदा कांग्रेस को। भारत के दवा बाजार में इस कंपनी की 5% की हिस्सेदारी है, यानी हर 100 में से 5 दवाइयां इस कंपनी की होती है। क्वालिटी टेस्ट में इसकी कई दवाएं फेल हुई। सिप्ला के अलावा

में सन फार्मा कंपनी भी है जो दवाइयां क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई, जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स में 31.5 करोड़ का चंदा दिया था और ये सारा चंदा बीजेपी को मिला था। और भारत के दवा बाजार में इस कंपनी की 1% की हिस्सेदारी है, यानी हर 100 में से एक दवाई इस कंपनी की होती है। ये खबर आज सबसे पहले हमने आपको इसलिए दिखाई क्योंकि भारत में हर रोज 30 से 40 करोड़ लोग कोई ना कोई दवाई खाते हैं। इसके लिए ज्यादातर लोग ब्रांडेड दवाइयों पर भरोसा करते हैं और जब सरकार की ही तरफ से सरकारी एजेंसी बता रही है कि कंपनी की दवाइयों की क्वालिटी में खामी है तो फिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। शहरों में लोगों का दवाइयों और इलाज पर औसत सालाना खर्च 12,400 रुपए है, गांव में 10,500 रुपए। और बड़ी बात सबसे यह है कि पहले हमारे देश में हर दिन 15 दिन में 7.5% लोग बीमार होते थे, 7.5%, जबकि आज 13% से ज्यादा लोग हर 15 दिन में बीमार होते हैं। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। आपको ये बताते हैं कि अयोध्या के राम मंदिर के बाद मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में भी चोरी और बेईमानी के आरोप लग रहे हैं और अब ये मामला बहुत गंभीर रूप लेता जा रहा है। ये आरोप संत दिनेश शर्मा उर्फ दिनेश फलाहारी महाराज की तरफ से लगाए गए हैं जो श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने खून से एक चिट्ठी लिखी है जिसमें कुल 3 बड़ी बातों का जिक्र है। इनमें पहला आरोप यह है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के तोशाखाने में से 1,000 करोड़ रुपए के आभूषण, सोने चांदी और भक्तों द्वारा चढ़ाए गए दान की चोरी की जा रही है। दूसरा आरोप यह है कि जब भी मंदिर की दान पेटियां खोली जाती हैं तब सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते हैं ताकि रुपयों और जेवरातों की बंदर बांट की जा सके। और तीसरी मांग यह है कि राम मंदिर की तरह इस मामले की भी जांच होनी चाहिए और जांच भी सीबीआई से करानी चाहिए। यह मामला इसलिए भी बड़ा हो सकता है क्योंकि मथुरा के इस मंदिर को हर महीने 1 करोड़ रुपए हर महीने और हर दिन लगभग 8 लाख रुपए का चढ़ावा मिलता है। और ऐसे में अगर यहां भी चढ़ावे की चोरी की बात सही निकलती है तो बड़ा सवाल यह पैदा होगा कि आखिर और कितने मंदिर है जहां इस तरह से लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ चल रहा है। हालांकि इन आरोपों को लेकर श्री कृष्ण स्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है और इसमें चढ़ावे की चोरी के आरोपों को बेबुनियाद बताया गया है और शिकायत करने वाले लोगों की मंशा पर सवाल उठाए गए हैं। अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नियमों के मुताबिक रामलला के चढ़ावे और नकदी को गिनने वाले कर्मचारियों की हॉल में आने और काम खत्म करके बाहर जाने के समय बेहद सख्त चेकिंग होती थी। कोई भी कर्मचारी ड्यूटी के बीच में मुख्य परिसर से बाहर नहीं जा सकता था, लेकिन दावा है कि चोरों ने इस कड़े पहरे के बीच एक सुरक्षा चूक यानी लूप होल का फायदा उठाया और कैसे उठाया अब वो देखिए। सबसे पहले चढ़ावा गिनने वाले कुछ कर्मचारी गिनती के दौरान नोटों के बंडल, गुप्त दान में आए सोने चांदी के सिक्के और आभूषण चुपके से अपने कपड़े में छिपा लेते थे। इसके बाद भाई एक ही बात की, जब तक आप गिनती कर रहे हैं आप बाहर नहीं जा सकते थे, लेकिन उस दौरान बाथरूम जाने की इजाजत थी। तो इसके बाद जब वो बाथरूम जाने के लिए हॉल से निकलते थे तो बीच में उनकी कोई तलाशी नहीं ली जाती थी और उन्हें बाथरूम में जाने दिया जाता था। ये बाथरूम इस कमरे से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर था और दावा है कि इन कर्मचारियों को पहले से यह पता था कि उन्हें बाथरूम जाने से कभी रोका नहीं जाएगा। इसी लूप होल का फायदा उठाकर इन लोगों ने इस बाथरूम में कुछ गुप्त स्थान बना लिए थे जहां चुराए गए पैसे या जेवरातों को छिपाया जाता था और बाद में ये कर्मचारी वापस से इस कमरे में लौट आते थे लेकर भाग गए। ये भी आरोप है कि जब इनकी ड्यूटी खत्म हो जाती थी तब ये खुद दोबारा सामान्य रूप से बाथरूम जाकर वो रकम उठा लेते थे या फिर मंदिर प्रबंधन और वीआईपी व्यवस्था से जुड़े अपने मददगारों के जरिए उस नकदी को मंदिर परिसर से बाहर भिजवा देते थे। पूरी साठगांठ सामने आ रही है और सबका हिस्सा, मतलब ये जो पैसा निकलता था ना चढ़ावा चोरी का, उसमें सबका हिस्सा फिक्स होता था। ये सारे आरोप एसआईटी के सामने भी आए हैं लेकिन एसआईटी ने खुद इनकी अब तक पुष्टि नहीं की है। लेकिन चढ़ावे की चोरी से जुड़ी जो कहानियां सामने आ रही हैं और जिस तरह के आरोप मथुरा में भी लग रहे हैं उससे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हमारे देश में इतनी बेईमानी क्यों है। परीक्षाओं में बेईमानी, भर्ती में बेईमानी, ठेकों में बेईमानी, दस्तावेजों में बेईमानी, सरकारी निर्माण में बेईमानी, सरकारी मंजूरी में बेईमानी, विज्ञापनों में बेईमानी, दावों में बेईमानी और अब लोग ये देखकर स्तब्ध हैं कि भगवान के नाम पर चढ़ाए गए दान में भी बेईमानी।
और लखनऊ में जो अग्निकांड हुआ वो भी तो इसी बेईमानी का नतीजा है। यानी आज ये मामला सिर्फ किसी एक घटना का नहीं रह जाता, ये एक बहुत बड़े सामाजिक प्रश्न का रूप ले लेता है। बड़ा सवाल यह कि हमारे देश में आखिर कुछ लोग बेईमानी का शॉर्टकट क्यों लेना चाहते हैं। आप सोचिए, 19 जून को हमने आपको बताया था कि राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी हुई, उसमें हर कर्मचारी पदाधिकारी शक के घेरे में है और ऐसा लग रहा है कि सब के सब मिले हुए हैं। और जानते हैं इस घटना के ने लोगों की आस्था को कितनी बड़ी चोट पहुंचाई है। आइए मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि आस्था की जब बात आती है तो राम मंदिर में जो रोजाना चढ़ावा है उसमें देखिए कैसी कमी आई है। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं 19 जून का, नीचे से शुरू करते हैं। तो जब आप 19 जून का देखेंगे तो ये देखिए 85,980 ये है, 85,980 जो आप देख रहे हैं। उसके बाद से 18 जून को 82,000, फिर 17 जून को बढ़ता है 95, लेकिन उसके बाद से 85 और फिर 84,000। तो कुल मिलाकर पहले आप सोचिए कितना पैसा मिलता था, लगभग 8,12,000 और अब वो कुछ हजार में आ गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कुल मिलाकर क्या स्थिति बन रही है। जो रोजाना चढ़ावा है उसमें कितना बदलाव आया है। पहले अगर 8 से 12 लाख पहले चढ़ता था रोजाना, तो अब ये आ गया है नंबर 85,000, 95,000, 84,000। तो ये कुल मिलाकर बताता है कि किस तरह से अब स्थिति बदल रही है और लोगों का जो विश्वास था, जिस विश्वास के साथ वो पैसे चढ़ाते थे, वो अब नहीं हो रहा है। ये चंदा भी तब है जब राम मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कम नहीं हुई है। लोग तो अब भी आ रहे हैं लेकिन वो मंदिर में दान नहीं दे रहे। और यहां ये भी सोचिए कि इस मामले में भगवान का चढ़ावा चुराने वाले लोगों ने राम भक्तों के साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया। सुनिए,

0: हम यात्री सुविधा केंद्र पे हैं राम मंदिर के, और यहाँ पे जो डाउन काउंटर अगर हम आपको दिखाएंगे तो ये कहीं ना कहीं खाली भी नजर आ रहे हैं। जो श्रद्धालु हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे भटक नहीं रहे हैं, जिसको लेकर अभी आप देखेंगे जिस प्रकार सारे काउंटर भी खाली हैं, डाउन काउंटर भी आपके सामने लिखा है।
1: SIT जांच कर रही, उसकी जांच की एक प्रक्रिया है, लेकिन श्रद्धालुओं में किसी प्रकार का कोई जो है न श्रद्धा में कमी आया है न चढ़ोतरी में कमी आया है। जो भी श्रद्धा है, जो भाव है, वह समर्पण कर रहे हैं और समर्पण करते रहेंगे।
0: डाउन काउंटर पे लोग यहाँ पे दान भी करते नजर आ रहे हैं। कहाँ कहाँ से आ रहे हैं आप, कहाँ से आ रहे हैं? दर्शन किया कि नहीं? दर्शन किया, दान दक्षिणा भी चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है?
2: अब भैया जब आए हैं तो कुछ चढ़ाएंगे।
3: अरे अफवाह तो उड़ रही, सुन तो रहे हैं, अब ध्यान दिया जाए। आप तीर्थ स्थल आए तो कुछ न कुछ।
0: कितने दान दिया आपने?
4: 100 रुपए।
0: 100 रुपए जी आपका है, चढ़ा रहे हैं, अफवाह पे ध्यान नहीं दे रहे। एक बार ये पर्चा हमें दिखाएंगे, एक बार ये पर्चा ये देखिए, ये स्लिप है, इन्होंने भी डोनेट किया है राम मंदिर के, और 100 रुपए इन खिलाफ श्रद्धा के और इनको
5: अयोध्या में इसका फर्क तो है, यात्रियों का आना भी कम हो गया है और जो ये चोरी हुई मुख्यमंत्री जी पे हमें भरोसा है। थोड़े मोड़े परिवर्तन से ऐसा कुछ लगता है कि अयोध्या में श्रद्धा कम हो गई है, श्रद्धा नहीं टूटी है। हाँ, निश्चित रूप से लोगों की के मन में जरूर ठेस हुआ है कि भाई राम जी की इतनी पावन भूमि पे निष्पक्ष लोग बैठने चाहिए।
6: ये बात बार बार पूछी जा रही है कि जब चढ़ावा गिनने का काम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सौंपा गया था तो ये चोरी कैसे हुई? तो यहाँ परिवारों और रिश्तेदारों वाला खेल चल रहा था। हमने आपको कहा था ना, बताएंगे आप चढ़ावे की चोरी का भाई भतीजावाद मॉडल भी से कह सकते हैं। अब तक राजनीति, सियासत, नौकरियों की बंदरबांट, कारोबार में भाई भतीजावाद देखा गया, लेकिन पहली बार मंदिर के चढ़ावे की चोरी में भाई भतीजावाद का मॉडल आ रहा है, जिसे पूरे देश को देखना चाहिए। हमारे पास जो खबर आई है उसके मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चढ़ावा गिनने का काम वाराणसी की एक सिक्योरिटी एजेंसी को सौंपा था। तय हुआ था कि इस एजेंसी के 24 कर्मचारी हर दिन चढ़ावे की गिनती करेंगे और इन 24 कर्मचारियों पर मंदिर ट्रस्ट के 12, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और TCS के 14 कर्मचारी तैनात रहेंगे। अब इसके बाद हुआ ये कि वाराणसी की जिस एजेंसी को बैंक की तरफ से ठेका मिला उससे मंदिर ट्रस्ट के कुछ लोगों ने संपर्क किया। उन्हें यह कहा कि अगर वो चढ़ावे की गिनती के लिए उनके बताए लोगों को नौकरी दे देंगे तो वो फायदे में रहेंगे। यहीं से सांठगांठ की शुरुआत हुई। इसके बाद वाराणसी की इस एजेंसी ने अयोध्या में ऐसे लोगों को नौकरी पर रखा जो मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कर्मचारियों के परिवार और रिश्तेदारी में परिचित थे। इससे चढ़ावे की गिनती में शामिल लोगों का एक गुट बन गया, ऐसा गुट जो एक दूसरे को जानता था। आरोप है कि ट्रस्ट से जुड़े लोगों के कहने पर ये कर्मचारी चढ़ावा छिपाकर बाथरूम में ले जाते थे, बाद में यही चढ़ावा ट्रस्ट से जुड़े लोग आसानी से बाहर ले जाते थे और उनकी चेकिंग नहीं होती थी। यानी दावा है कि सब के सब इस चोरी के लिए इकट्ठा होकर काम कर रहे थे। यही नहीं, सूत्रों के हवाले से हमारे पास ये खबर भी आई है कि SIT को अपनी जांच में ये पता चला है कि सुरक्षा जांच में भारी चूक होती थी। ड्यूटी खत्म होने के बाद कर्मचारियों की तलाशी नहीं ली जाती थी और कौन क्या सामान लेकर अंदर आ रहा है, बाहर लेकर जा रहा है, इसकी प्रभावी निगरानी को भी छोड़ दिया जाता था। इसके अलावा CCTV कैमरों की निगरानी, ड्रेस कोड भी बेअसर होते थे। कर्मचारी सामान्य कपड़ों में ही नोट गिनने वाले कमरे में पहुंच जाते थे, निर्धारित ड्रेस कोड का पालन नहीं कराया जा रहा था जबकि सभी को यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई गई थी। फिर CCTV कैमरों की निगरानी की भी ठीक से समीक्षा नहीं होती थी। SIT के मुताबिक कुछ कर्मचारी कैमरों के सामने खड़े होकर निगरानी को बाधित करते थे और चोरी की घटनाओं को पीछे अंजाम दिया जाता था। ये भी आरोप है कि मंदिर परिसर से दान पेटी ट्रस्ट कार्यालय तक लाने, नोटों की गिनती और बैंक में जमा कराने की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें कई गंभीर खामियां थी। और देखिए ना, जिन लोगों को CCTV कैमरों की निगरानी करनी थी, CCTV फुटेज पर उनको नजर रखनी थी, अगर कुछ गड़बड़ी दिख रही है तो वो फौरन कार्रवाई करें, बताया जा रहा है कि वो भी मिले हुए थे, यानी उनकी भी मिली भगत थी। तो सोचिए किस तरह की सांठगांठ के साथ ये सब कुछ हो रहा था। यहां इन बातों को जानकर वो कथन सही लगता है कि इस दुनिया में वही इंसान ईमानदार है जिसे अब तक बेईमानी करने का मौका नहीं मिला। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि दुनिया में शायद ही ऐसी कोई जगह होगी जिसे इंसानों ने अपनी बेईमानी का शिकार नहीं बनाया। राम मंदिर की तरह ईसाई धर्म के सबसे पवित्र धार्मिक स्थान वैटिकन सिटी में भी धार्मिक चढ़ावे और चंदे की चोरी का आरोप लग चुका है। मामला साल 2013 का है जब वैटिकन सिटी और सचिवालय से जुड़े लोगों ने लंदन में एक रियल एस्टेट डील की थी और जब जांच हुई तो पता चला कि इसमें वैटिकन के पादरी और कर्मचारी शामिल हैं जिन्होंने वैटिकन में चढ़ावे और चंदे के पैसे का गबन कर दिया। इस पैसे से लंदन में प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश की और यहां बात सिर्फ वैटिकन सिटी की नहीं है। हाल ही में जब एप्स्टीन फाइल्स के तहत नए दस्तावेज जारी हुए तो उनमें यह खुलासा हुआ कि जेफरी एप्स्टीन को 2017 में काबा की किस्वा के कुछ टुकड़े भेजे गए थे और इससे जुड़े एक ईमेल में बताया गया था कि इनमें एक इस्तेमाल की गई किस्वा का हिस्सा भी शामिल था। किस्वा वो पवित्र काला कपड़ा होता है जो इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र स्थल काबा को चारों ओर से ढकता है। जब ये जानकारी सामने आई तो सोशल मीडिया पर काफी विवाद हुआ। ये पूछा गया कि इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल से जुड़ा पवित्र किस्वा एप्स्टीन जैसे व्यक्ति तक कैसे पहुंचा और क्या वहां भी मक्का से जुड़ी पवित्र चीजें गायब हैं। हालांकि इन आरोपों को खारिज किया गया लेकिन सवाल यही उठा कि फिर एप्स्टीन फाइल्स में इसका जिक्र तस्वीरें कैसे आई और क्या जानबूझकर ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया गया। और अब राम मंदिर को लेकर यह कहा जा रहा है कि वहां चढ़ावे के पैसों और जेवरातों को चुरा लिया गया जिसकी जांच अभी चल रही है। आज इस मामले को लेकर हम आपसे एक और बात कहना चाहते हैं। जब से राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी के आरोप लगे हैं तब से इस खबर का खूब राजनीतिक विश्लेषण भी और इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। कोई कह रहा है कि इससे अखिलेश यादव उनकी समाजवादी पार्टी को 2027 के विधानसभा चुनाव में फायदा हो सकता है। कोई कह रहा है इस घटना से बीजेपी के हिंदुत्व के को डेंट लगता है। कोई कह रहा है इससे हिंदू वोटर्स राम भक्त वोटर्स बीजेपी से छिटक जाएंगे। ये सारी बातें अपनी जगह हैं लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि इस मामले को सिर्फ राजनीति तक बांधना कितना उचित है। सच तो यह है कि यह मामला किसी भी राजनीति और चुनाव से कहीं ज्यादा गंभीर है। यह मामला किसी पार्टी को फायदा नुकसान का नहीं, यह मामला लोगों की आस्था का है, उनकी श्रद्धा का है। जो हर तरह की महिलाएं वहां पर आती हैं और स्वतः ही अपने गले की सोने की चेन निकालकर प्रभु राम के लिए दान कर देती हैं, आस्था की वजह से करती हैं ना, विश्वास है, प्रभु राम के लिए भक्ति है, ये उसके साथ खिलवाड़ है। ये मामला 116 करोड़ उन हिंदुओं का है जिनके आराध्य भगवान राम की दान पेटियों से चढ़ावा चुरा लिया गया और ये मामला भरोसा का है, वो भरोसा जो इस चोरी से चकनाचूर होता हुआ दिख रहा है। और अगर ये बेईमानी हमारे पवित्र धार्मिक स्थानों भगवान श्री राम की जन्मभूमि तक पहुंच गई इससे बड़ा पाप क्या होगा। ऐसा पाप जो सारी मर्यादाओं को तोड़कर हमारे देवी देवता, हमारी आस्था, हमारे धर्म का अपमान करता है। इस देश के करोड़ों राम भक्तों के साथ घिनौना छल है ये पूरा मामला। एक तरफ ये लोग हैं जो आस्था के साथ दगा कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके लिए उनके आराध्य उनके ईश्वर का कोई मोल नहीं, जिसके लिए वो सब कुछ समर्पित कर सकते हैं। ये कहानी छत्तीसगढ़ की बिहुला बाई की है। सोचिए एक महिला जो दिन भर कड़कती धूप धूल गंदगी के बीच कचरा बीनती है, दिन भर की कमर तोड़ मेहनत के बाद उसकी हथेली पर क्या आता है, सिर्फ 40 से 50 रुपए। लेकिन जब बात प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण की आई तो इस महिला ने अपने भूखे पेट की चिंता नहीं की, इस महिला ने अपनी सोने से अपने सीने से लगाकर रखे वो चंद सिक्के जो उनकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी थी वो रामलला के चरणों में सौंप दी। ये वो देश है जहां आस्था पैसों से नहीं आंसुओं भावों से तौली जाती है। राम भक्ति में लीन इन भक्तों ने मंदिर के लिए अपना सारा धन अटूट भरोसे के साथ समर्पित कर दिया था। सदियों बाद उनके आराध्य अपने घर लौट रहे और उसके साथ खिलवाड़। एक तरफ भगवान राम में आस्था रखने वाले भक्त हैं, दूसरी तरफ भाई भतीजावाद मॉडल था चढ़ावा चोरी का जिसने चंद रुपयों के लालच में देश के करोड़ों राम भक्तों का पवित्र भरोसा पल भर में तोड़ दिया। आंध्र प्रदेश की इस 80 साल की बुजुर्ग मां को अब देखिए, उनके पास सिर्फ 20 रुपए थे। वहां मौजूद वॉलंटियर्स ने उनसे गुजारिश की कि मां आप सिर्फ 10 रुपए दे दीजिए दान में, बाकी का 10 रुपए आप रखिए, आपको अभी जरूरत पड़ेगी। लेकिन वो मां अड़ गई, रोते रोते कहा कि मैं 20 रुपए ही दूंगी, 10 रुपए अपने नाम से, 10 रुपए अपने उस बेटे के नाम से जो अब इस दुनिया में नहीं है। सोचे उस मां ने अपने दिवंगत बेटे की स्मृति को प्रभु श्री राम के चरणों से जोड़ दिया। नासिक के एक छोटे से गांव की सुंदरबाई जिन्होंने अपनी तंगहाली के बावजूद 1,00,000 रुपए सौंप दिए। तेलंगाना की वो पेंशन भोगी दादी जिनसे पूछा गया कि इतनी कम पेंशन में से 500 रुपए दान दे दोगी तो गुजारा कैसे होगा, मुस्कुराकर कहा, मेरे राम मेरे साथ है, मुझे कोई फिक्र नहीं। विजयनगरम की वो दिहाड़ी मजदूरी करने वाली महिला जिसने अपने पति और बेटे को खोने के बाद भी मेहनत की गाड़ी कमाई से 1,00,000 रुपए जोड़े। और विदिशा की मुन्नी बाई जो बेर बेचकर गुजारा करती हैं और उन्होंने अपनी टोकरी से निकले 100 रुपए का जो पैसा है वो रामलला के चरणों में दान कर दिया।
4: सर 10 रुपए इसको 10 रुपए ही
7: वद्दो वद्दो अन्ना पड़ंदु
8: कल 10 रुपए टिकट ఉందమ్మ అట్లానే
7: టికెట్ ఇస్తాను
9: లైక్ వాళ్ళని ఆదర్శంగా తీసుకొని ప్రతి ఒక్కరు తమ సమర్పణ
7: నా పెద్ద కొడుకు రాసిపోయిండు వాళ్ళకి 10 రూపాయలు నాకు 10 రూపాయలు రెండు కల్పిస్తా
6: एक तरफ आस्था का ये समंदर था जहाँ लोग अपनी अपनी आत्मा भी दान कर रहे थे और दूसरी तरफ वो लोग जो चढ़ावे की इस पवित्र नदी में भी अपनी तिजोरियां भरने का रास्ता ढूंढ रहे थे। इतिहास गवाह रहेगा, रामलला के मंदिर की एक एक ईंट इन गरीबों के आंसुओं और त्याग से सींची गई है। ये मंदिर किसी ट्रस्ट किसी सरकार के पैसे से नहीं बनी है, ये आम हिंदुओं के पैसे से बनी है, ये भक्तों के पैसे से बनी है जिन्होंने स्वतः दान किया, जिन्होंने भी इस पवित्र चढ़ावे के साथ छल किया है। उन्होंने किसी इंसान को नहीं बल्कि उस कचरा बिनने वाली माँ की आस्था को धोखा दिया है। और ऐसे ही अनेकों विश्वास और आस्था रखने वाले भक्तों को। अब आइए आपको ये बताते हैं कि अगर पासपोर्ट भी आपकी नागरिकता का प्रमाण नहीं है तो आपकी भारतीय नागरिकता आखिर साबित कैसे होगी और ये कैसा पता चलेगा कि आप इसी देश के नागरिक हैं। 24 जून को भारतीय पासपोर्ट दिवस के मौके पर विदेश मंत्रालय ने यह बताया कि पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, यानी यात्रा का एक दस्तावेज है जिसे किसी भी रूप में नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। विदेश मंत्रालय का यह बयान सुनकर कई लोग हैरान हुए। इस हैरानी का कारण यह था कि अब तक आम धारणा यही रही है कि अगर किसी के पास भारतीय पासपोर्ट है तो वो निश्चित रूप से भारतीय नागरिक होगा। अब यह धारणा इसलिए भी है क्योंकि पासपोर्ट बनवाना आसान नहीं होता। जब कोई भी व्यक्ति पासपोर्ट के लिए आवेदन करता है तो उसे अपना जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, पैन कार्ड जैसे कई सारे दस्तावेज दिखाने होते हैं। और ऐसा नहीं है कि इन दस्तावेजों के जमा कराने के बाद पासपोर्ट जारी हो जाता है। पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले जो भी व्यक्ति हैं, उनका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, सारे रिकॉर्ड्स चेक होने के बाद पासपोर्ट जारी किया जाता है। और यही कारण है कि जब विदेश मंत्रालय ने यह कहा कि पासपोर्ट भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं तो उस पर कई नई बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों ने तो यह दावा किया कि मोदी सरकार में भारतीय नागरिकता साबित करने के तरीकों को सीमित किया जा रहा है, जबकि असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहा कि अब वही भारतीय नागरिक कहलाएगा जिसने बीजेपी की सदस्यता ली होगी। ये सारी बातें राजनीति करने के लिए ठीक हो सकती हैं, लेकिन तथ्य बताते हैं कि इस नियम में मौजूदा सरकार ने क्या कोई बदलाव किया है। पिछली सरकार ने पासपोर्ट को भारतीय नागरिकता का प्रमाण या आधार नहीं माना गया। सरकार ही नहीं, अलग अलग हाई कोर्ट्स और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे फैसले सुनाए जिनमें किसी एक दस्तावेज या पहचान पत्र को भारतीय नागरिकता का सबूत नहीं माना गया। और इसीलिए यह सामने आ रहा है कि यह पहले से चल रहा था। यह कंफ्यूजन सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि पासपोर्ट्स एक्ट 1967 के सेक्शन 6(2)(a) के तहत पासपोर्ट अथॉरिटी ऐसे व्यक्ति को पासपोर्ट जारी करने से इनकार कर सकती है जो भारत का नागरिक ना हो या जिसकी नागरिकता संदिग्ध हो। अब इसी आधार पर बार बार ये पूछा जाता है कि जब पासपोर्ट जारी ही नागरिकता के आधार पर होता है तो फिर क्यों इसे नागरिकता का सबूत क्यों ना माना जाए। हालांकि यहां सरकार का पक्ष क्या है आपको बताते हैं। सरकार कहती है कि पासपोर्ट कई बार गलत जानकारी के आधार पर जारी हो सकता है जिसके कारण से नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। उदाहरण के लिए पिछले साल कुल 1,39,00,000 पासपोर्ट जारी हुए, करीब 1.5 करोड़ लोगों को पासपोर्ट सेवाएं मिली। यह संख्या इतनी विशाल है कि इतने लोगों की नागरिकता की पूर्ण और अंतिम जांच करना पासपोर्ट अथॉरिटी के लिए व्यवहारिक नहीं है, जिसके कारण वो पासपोर्ट को नागरिकता का सबूत नहीं मानती। दूसरा, पासपोर्ट अधिकारी कभी भी नागरिकता पर अंतिम फैसला नहीं लेते। नागरिकता तय करने का अधिकार गृह मंत्रालय को होता है, अदालतों के पास होता है, और ऐसे में पासपोर्ट अथॉरिटी खुद किसी की नागरिकता तय नहीं कर सकती। और यही कारण भी है कि सरकार का जो पासपोर्ट मैनुअल होता है उसमें साफ साफ लिखा होता है कि पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, यानी अगर आप कहीं सफर कर रहे हैं तो ये उस सफर के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला दस्तावेज है। इसके अलावा पासपोर्ट्स एक्ट 1967 की धारा 20 कहती है कि केंद्र सरकार विशेष परिस्थितियों में गैर नागरिकों को भी भारतीय पासपोर्ट जारी कर सकती है। इसलिए अगर गैर नागरिक को भी पासपोर्ट मिल सकता है तो पासपोर्ट अपने आप में नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं हो सकता। अब इससे ये सवाल भी पैदा होता है कि हम आखिर किस दस्तावेज को भारतीय नागरिकता का सबूत माने। उदाहरण के लिए, अगर कल को आपसे कोई ये पूछ ले कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं, तो आप क्या सबूत दिखाएंगे? आप आधार कार्ड दिखाएंगे तो ये सिर्फ पहचान है, निवास का सबूत है, इसे नागरिकता का सबूत नहीं मान रही है सरकार। अगर वोटर आईडी कार्ड दिखाएंगे तो इसे आपके वोटर यानी मतदाता होने का सबूत माना गया है, लेकिन ये भी आपकी नागरिकता साबित नहीं करता। अगर आप पैन कार्ड दिखाएंगे तो कहेंगे राशन कार्ड दिखाएंगे तो ये भी नागरिकता का सबूत नहीं है। यहां तक कि अगर आप अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखाते हैं तो इसे भी आपकी भारतीय नागरिकता का सबूत नहीं माना जाएगा। आपको यह सुनकर थोड़ी हैरानी होगी, लेकिन सच यही है कि पासपोर्ट तो छोड़िए, आपका जन्म प्रमाण पत्र नागरिकता का सबूत नहीं है। जब साल 2019-20 में सीएए कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए थे, तब एक नारा प्रदर्शनकारियों के लिए खूब इस्तेमाल हुआ था। वो नारा था, कागज नहीं दिखाएंगे। लेकिन सोचिए, आज अगर कागज दिखाना भी पड़ा तो नागरिकता के लिए कौन सा कागज दिखाना है? क्योंकि कोई एक कागज हमारे देश में ऐसा है ही नहीं जो हमारी नागरिकता को साबित कर दे। आप जरा आप ये देखिए कि इस देश में भारतीय नागरिक माना किसे गया है और कानून इस पर क्या कहता है। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, तब आर्टिकल 5, 6, 7 भारतीय नागरिकता का उल्लेख करते थे। इनके तहत अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ या फिर माता पिता में से कोई भारत में जन्मा हो या 5 साल से भारत में रह रहा हो तो उसे भारत का नागरिक मान लिया जाता। इसके बाद सिटीजनशिप एक्ट 1955 आया और साल 1987 तक 1987 तक नागरिकता के मामले में यही व्यवस्था जारी रही। इसका सरल मतलब यह था कि आपके माता पिता कौन है, विदेशी है या नहीं, ये नागरिकता के लिए मायने नहीं रखता था। अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो फिर जन्म के आधार पर लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाती थी और इसे जसोली का कानूनी सिद्धांत कहते थे। अब यह व्यवस्था आपके दादा दादी या नानी के जमाने की थी, लेकिन साल 1986 में इसमें दूसरा बड़ा संशोधन हुआ, बदलाव हुआ। इसमें यह तय हुआ कि नागरिकता के लिए सिर्फ भारत में जन्म लेना काफी नहीं होगा, इसके लिए यह भी जरूरी होगा कि आपके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। यह संशोधन इसलिए हुआ क्योंकि बांग्लादेश से अवैध प्रवासी बड़ी संख्या में भारत आते थे और कई बार ऐसा होता था कि अवैध प्रवासी यहां जिस बच्चे को जन्म देते थे वो भारत का नागरिक बन जाता था। यही देखते हुए सरकार ने तय किया कि माता पिता में से किसी एक का इस देश में जन्म लेना जरूरी है। अब यह व्यवस्था साल 2004 तक चली, लेकिन दिसंबर 2004 में इसमें एक और संशोधन हुआ और यह आज तक जारी है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिकता तभी उसकी मानी जाएगी जब ना सिर्फ उसका नाम जन्म भारत में हुआ हो बल्कि उसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हो, या एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। अब देखिए, यानी अगर आप नागरिकता साबित करने के लिए अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखाएंगे तो इसे पर्याप्त नहीं माना जाएगा। आपको यह दिखाना होगा कि आपके माता पिता भी इसी देश के नागरिक हैं और आपके माता पिता में से कोई एक अवैध प्रवासी होता है तो आपको नागरिक नहीं माना जाएगा। इस सिद्धांत को जस सेंग्विनिस भी कहा जाता है, जिसमें बच्चों को की नागरिकता उनके माता पिता की नागरिकता से तय की जाती है। वैसे यहाँ पासपोर्ट को लेकर जो इस वक्त चर्चा चल रही है, सच यह है कि साल 2023 तक हमारे देश में 9 करोड़ 26 लाख लोगों के पास ही पासपोर्ट था, यानी देश की सिर्फ 6.61 लगभग 6.5% आबादी के पास ही पासपोर्ट है। 93% आबादी के पास आज भी पासपोर्ट नहीं है। इनमें भी पासपोर्ट वाले केवल 35% लोग ऐसे हैं जिन्होंने उसका इस्तेमाल किया जो विदेश यात्राओं पर गए। 9 करोड़ 26 लाख लोगों में से करीब 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो आज तक विदेश यात्रा पर नहीं गए और उन्होंने सिर्फ पासपोर्ट बनाकर अपने घर पर रखा है। यहाँ आपको दुनिया में भारतीय पासपोर्ट की ये रैंकिंग भी देखनी चाहिए जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा जारी की जाती है। इसमें भारत 80वें स्थान पर है क्योंकि भारत के लोगों को सिर्फ 56 देशों में वीजा मुक्त या वीजा ऑन अराइवल प्रवेश की सुविधा मिलती है। मोदी सरकार से पहले इस रैंकिंग में भारत 74वें स्थान पर होता था, यानी उस वक्त की रैंकिंग में और मौजूदा रैंकिंग में आप देख रहे हैं 6 अंकों की गिरावट है। अब हमारे देश में यह पूरा मुद्दा ऐसे उठाया जा रहा है कि सिर्फ भारत ही इकलौता ऐसा देश है जहां पासपोर्ट को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना गया, जबकि यह बात पूरी तरह गलत है। दुनिया में ज्यादातर देश ऐसे हैं जहां पासपोर्ट को सामान्य रूप से नागरिकता का कार्ड मान लिया जाता है, लेकिन हकीकत में कानूनी रूप से ज्यादातर देश कभी भी पासपोर्ट को नागरिकता का प्रमाण नहीं मानते। मुख्य रूप से दुनिया में सिर्फ 3 देश ऐसे हैं जहां पासपोर्ट को सिटीजनशिप कार्ड माना गया है, अमेरिका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इन 3 देशों में पासपोर्ट को नागरिकता कार्ड के बराबर माना गया है, लेकिन बाकी देशों में, ज्यादातर देशों में पासपोर्ट को नागरिकता का डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता है। यहां तक कि जो सिंगापुर पासपोर्ट रैंकिंग में पूरी दुनिया में पहले स्थान पर है, सिंगापुर, वहां भी पासपोर्ट को नागरिकता का कार्ड नहीं माना गया है। और अब बात पंजाब की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिस विवादित और आपत्तिजनक वीडियो के मामले में सीएम भगवंत मान ने अकाल तख्त साहिब के सामने खुद को बेकसूर बताया था, जिस फोरेंसिक रिपोर्ट को अपनी बेगुनाही की सबसे बड़ी ढाल बनाया था, अब वही फोरेंसिक रिपोर्ट पूरी तरह फर्जी और फिक्स्ड बताई जा रही है।
10: हरियाणा पुलिस के खुलासों ने न सिर्फ भगवंत मान की राजनीतिक साख बल्कि पंजाब पुलिस के आला अफसरों को भी सीधे सीधे सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। मामला सिख गुरुओं के प्रति आपत्तिजनक और अपमानजनक व्यवहार वाले एक वायरल वीडियो से जुड़ा हुआ है। इस वीडियो को लेकर सीएम भगवंत मान अकाल तख्त साहिब के सामने पेश हुए थे और खुद को पूरी तरह पाक साफ बताया था।
11: ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਗਮਨ ਜਗਮਨ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਡਰੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੰਗਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ।
10: बाद में अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उन्होंने एक फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट पेश की थी जिसमें दावा किया गया कि वीडियो में दिख रहा शख्स भगवंत मान नहीं है। मुख्यमंत्री भगवंत मान को बेअदबी वाले इस वीडियो से अलग साबित करने के लिए जिस लैब रिपोर्ट का सहारा लिया गया उसे हर तरह से गलत, भ्रामक और मनगढ़ंत बताया जा रहा है।
12: कुछ अधिकारी थे पड़ोसी राज्य के, तो उन्होंने कुछ ऐसी बात आई है सामने, तो इसने 2.5 लाख रुपए अपने एक अकाउंट में जमा कराए हैं, बाकी 7.5 लाख रुपए दूसरे अकाउंट में जमा कराए हैं।
10: आरोप है कि पंजाब पुलिस के बड़े अफसरों ने गुरुग्राम के एक 5-स्टार होटल में इस फर्जी रिपोर्ट को बनवाने के लिए बाकायदा एक सीक्रेट डील की थी। इसके लिए कथित तौर पर 10 लाख रुपए का भुगतान किया गया था। इस पूरी साजिश का भंडाफोड़ किसी और ने नहीं बल्कि उस फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने किया है जिसका नाम इस रिपोर्ट को तैयार करने में सामने आया था। जसप्रीत सिंह जस्सी नाम का यह फॉरेंसिक एक्सपर्ट अब इस पूरे मामले में मुख्य शिकायतकर्ता बन गया है। जसप्रीत का दावा है कि 15 जून को उसे एक व्हाट्सएप कॉल आई जिसमें सामने वाले ने खुद को पंजाब का एसपी बताते हुए एक वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार करने का दबाव बनाया। इस पर जस्सी ने कहा कि वो ऑडियो वीडियो का नहीं बल्कि लिखित दस्तावेजों का फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, लेकिन उससे कहा गया कि उसे बस काम करना है और इसके बदले उसे अच्छी रकम मिली।
13: 15 जून 2026 को मेरे पास एक व्हाट्सएप कॉल आई, मैंने फोन खाया तो उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा कि मैं एसपी जशन बिल बोल रहा हूँ, तो कृपया ऐसे करके रिपोर्ट बनानी है भगवान जी के फेवर में। हमने पहले कन्वे करा था कि जो एक्सपर्ट है वो साइबर सिक्योरिटी के हैं, ऑडियो वीडियो के डिजिटल के एक्सपर्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने को सिर्फ दिखाना है कि आप एक रिपोर्ट दे दो, हम कोई पब्लिकली भी यूज कर रहे, कोई पॉलिटिकली यूज नहीं कर रहे, कोई पुलिस उसमें भी यूज नहीं कर रहे।
10: जसप्रीत का दावा है कि पंजाब पुलिस के बड़े अफसरों ने गुरुग्राम के पॉश इलाके में स्थित 5-स्टार होटल क्राउन प्लाजा में उसके साथ एक सीक्रेट मीटिंग की। दावा किया जा रहा है कि इस मीटिंग में लुधियाना के पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा और एसपी जशनदीप गिल भी शामिल थे। जसप्रीत ने साफ कहा कि उस पर भारी दबाव बनाया गया और धमकी दी गई ताकि वो मुख्यमंत्री के वीडियो को लेकर उनके मन मुताबिक एक खास रिपोर्ट तैयार कर। उसे ये अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि इस फर्जी रिपोर्ट का इस्तेमाल अकाल तख्त साहिब जैसी धार्मिक संस्था के खिलाफ किया जाएगा। हरियाणा पुलिस ने इस होटल के सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है, जिसका बारीकी से विश्लेषण किया जा रहा है। अब हरियाणा पुलिस की जांच और पूछताछ में जो बातें सामने आई हैं, वो बेहद चौंकाने वाली है। पंजाब पुलिस के दबाव में आने के बाद जसप्रीत ने अरुण और अंकित नाम के दो साइबर एक्सपर्ट से संपर्क किया। इन दोनों ने मिलकर साइबर यान और साइबर सेंटिनल नाम की दो कथित साइबर लैब्स के लेटर हेड पर जाली रिपोर्ट तैयार कर दी। दिल्ली और जींद के पते पर दिखाई गई ये लैब्स पूरी तरह अवैध थी, जिनके पास ना तो कोई लाइसेंस था और ना ही ये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त थी। फिलहाल हरियाणा पुलिस ने अंकित और अरुण को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट ने उन्हें 8 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।
14: अरुण नाम के व्यक्ति ने साइबर यान के नाम से फेक रिपोर्ट बना के दी और अंकित नाम के व्यक्ति ने साइबर सेंटिनल नाम से रिपोर्ट जो कि फेक थी वो बना के दी, जो कि इसमें अंकित और अरुण को हमने 8 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया है।
10: 10 लाख रुपए में फर्जी रिपोर्ट तैयार करवाने और पुलिस अफसरों की संलिप्तता के इन गंभीर दावों के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद सामने आए। उन्होंने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे अपने खिलाफ एक बड़ी राजनीतिक साजिश करार दिया है।
11: तो बिल्कुल लाइन बन रही है, मास्क लगा है नंबर 3 ते, क्योंकि ये अखा नहीं लग सकती, मास्क तो बन जाता है, अखा नहीं बन गई तो फिर उन्हें ऐनक लाई है काली ताकि अखा लुक जान, होटल का कमरा है।
10: अब बीजेपी और कांग्रेस सीएम भगवंत मान पर हमलावर हैं और उनका इस्तीफा मांग रहे हैं।
15: ये बंदा किसी तरह भी बख्शन योग नहीं है, इनके ऐसी इस्तीफे की मांग करते हैं।
16: क्या भगवंत मान ये सब कुछ सामने आने के बाद पंजाब पुलिस अरविंद केजरीवाल अभी भी मुंह में फेविकॉल डालकर बैठे रहेंगे?
10: एक तरफ मुख्यमंत्री भगवंत मान इसे खुद को बदनाम करने की साजिश बता रहे हैं और दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस के पास मौजूद सीसीटीवी फुटेज, दो गिरफ्तार आरोपी और खुद मुख्य गवाह का बयान पंजाब पुलिस के अधिकारी और भगवंत मान की मुश्किलें बढ़ा रहा है। सवाल ये है कि सिख गुरुओं के अपमान से जुड़ा कथित वीडियो वाकई नकली था तो उसके लिए एक अवैध लैब से फर्जी रिपोर्ट बनवाने की जरूरत क्यों पड़ी? ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
6: अब हम पारंपरिक भारतीय थाली की बात करेंगे जिसकी आत्मनिर्भरता अब खत्म हो रही है। भारतीय थाली अब धीरे धीरे विदेशी थाली बनती जा रही है। ऐसा नहीं है कि आपकी थाली में विदेशी व्यंजन बढ़ रहे हैं, बल्कि बात यह है कि भारतीय व्यंजन कहीं जाने वाली चीजें अब विदेशी आयात पर निर्भर होती जा रही हैं। एक सामान्य भारतीय थाली में रोटी, चावल, दाल, सब्जी, सलाद, दही जैसी चीजें होती हैं। कहने के लिए ये सभी चीजें पारंपरिक थाली से जुड़ी हैं, लेकिन सच ये है कि धीरे धीरे इन चीजों को आपकी थाली तक पहुंचाने के लिए विदेशी आयात पर निर्भरता बढ़ानी पड़ रही है। गेहूं, धान, सब्जियों की पैदावार अच्छी हो इसके लिए खाद जरूरी है और खाद के लिए विदेशी आयात पर निर्भर हो रहे हैं। वैश्विक कारणों से खाद या खाद बनाने से जुड़े कच्चे माल का आयात रुकते ही स्थिति बिगड़ने लगती है। आपकी थाली में जो दाल है वो बनी रहे इसके लिए उसका भी विदेशी आयात बढ़ता जा रहा है, यानी हम दालों के लिए दुनिया के अन्य देशों पर निर्भर हो रहे हैं। निर्भरता बढ़ रही है, हमारा उत्पादन हमारी जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहा। सब्जियां जिस तेल में पक रही हैं वो भी ज्यादातर विदेशों से आ रही हैं। तेल देश में इस्तेमाल होने वाले खाद्य तेल का 56% हिस्सा विदेशों से आयात कर रहे हैं।
10: भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक देश है, लेकिन सबसे बड़े उपभोक्ता भी हम ही हैं और हमारी जरूरत इतनी ज्यादा है कि हमें दाल आयात करनी पड़ती है। अब हम आपको साल 2020-21 से 2024-25 के बीच दालों की मांग, उसका उत्पादन और आयात पर बढ़ रही हमारी निर्भरता का एक ग्राफ दिखाते हैं। 2020-21 में दालों की घरेलू मांग 277 लाख टन थी और उस वक्त हमारा उत्पादन 254 लाख टन था। घरेलू जरूरत पूरा करने के लिए करीब 25 लाख टन दाल आयात की गई थी और इसके अगले 5 वर्षों में यानी 2024-25 तक दालों का आयात 73 लाख टन तक पहुंच गया। आयात बढ़ने का सीधा अर्थ है कि हमें अपने विदेशी मुद्रा भंडार पर बोझ भी बढ़ाना पड़ा। दालों के आयात पर साल 2020-21 में भारत ने 11,937 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जो अगले पाँच वर्षों में करीब चार गुना बढ़कर 46,428 करोड़ रुपए तक पहुँच गया। चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर और अन्य दालों के हिसाब से हमारी निर्भरता अलग अलग देशों पर हो गई है, जिनमें रशिया, कनाडा, अमेरिका, तंजानिया, मोजाम्बिक, ऑस्ट्रेलिया और म्यांमार शामिल हैं। यानी दाल की जरूरत को पूरा करने के लिए हम मजबूरन दूसरे देशों पर निर्भर हैं, बावजूद इसके कि हम दुनिया के सबसे बड़े दाल उत्पादक देश हैं।
6: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ।
17: अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के चढ़ावे में चोरी का मामला लगातार गहराता जा रहा है। जांच के दायरे में अब सिर्फ आरोपी नहीं बल्कि उनसे जुड़े हुए लोग, उनकी आर्थिक गतिविधियां भी आ गई हैं। अयोध्या पुलिस ने इस मामले में नामजद कई आरोपियों के घर पर पहुंचकर उनके परिजनों से पूछताछ की है।

0: रामलला के चढ़ावे से चोरी के मामले में जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एसआईटी की जांच के बाद जहां राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कुछ लोगों के इस्तीफे सामने आए, वहीं अब पुलिस भी कार्रवाई तेज करती नजर आ रही है। अयोध्या पुलिस ने मामले में नामजद आरोपियों के घर पहुंचकर उनके परिजनों से पूछताछ की।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों के घर पर, जो अयोध्या के रहने वाले हैं, उनके घरों पर छापेमारी की जा रही है। मैं इस समय पर अयोध्या में ही रह रहे रमाशंकर मिश्रा, जो आरोपी थे जिनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, रमाशंकर मिश्रा के घर पर मौजूद हूँ। उनके परिजनों से, उसकी भाभी, बहन, उनके पिता से पूछताछ की जा रही है। ये रमाशंकर मिश्रा का घर है जो राम मंदिर में नोट गिनने के काम में जुड़ा हुआ था। बता दें कि अयोध्या पुलिस ने इन सभी आरोपियों के घर से लगभग 80 लाख रुपए बरामद किए थे और इनको जुडिशियल कस्टडी में सोमवार तक के लिए भेज दिया गया था, लेकिन अब कल सोमवार को दोबारा जुडिशियल कस्टडी पर सुनवाई होनी है। उससे पहले पुलिस के द्वारा ये जांच की जा रही है, पड़ताल की जा रही है, इन सभी जो आरोपी हैं उनके घर वालों से पूछताछ की जा रही है कि ये लोग कब आते थे, कैसे आते थे, क्या क्या खरीदा गया।
0: अयोध्या पुलिस ने टिन्नू यादव, मनीष यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा के घरों पर पहुंचकर उनके परिवार के लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने आरोपियों के घर आने जाने, उनके संपर्कों और गतिविधियों से जुड़ी जानकारी जुटाई। आरोपी रमाशंकर मिश्रा के पिता अयोध्या के एक मंदिर में पुजारी हैं। पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की
2: जांच के लिए, और वो यहाँ रहते हैं कि नहीं रहते हैं, कहाँ वो हैं, तो हम बताए कि कमरा पे अलग लिए रहते हैं, दो ढाई साल से यहाँ रहते नहीं हैं, आना जाना भी यहाँ का नहीं है, एक दिन कभी इस मंदिर के अंदर पाँव नहीं रखते हैं।
1: कब से नहीं आया?
2: दो ढाई साल हो गए यहाँ नहीं आया। हाँ, दो साल।
1: तो राम मंदिर में कब से काम कर रहा था, क्या काम करता था रमाशंकर?
2: 5-6 साल हो गए, तब वहाँ पैसा गाने में बताओ था, गाना कर्मचारी।
1: अच्छा, हाँ। कभी पैसा वैसा ज्यादा देखा आपने रमाशंकर के पास? बहुत
2: कभी नहीं, पैसा तो मांगा रहा तो पैसा पाई नहीं है? पैसा मांग लेता है कि देंगे, कहीं जरूरत लगे।
1: पुलिस तो कह रही है कि सब मिलके 80 लाख रुपया चोरी कर लिए चढ़ावे से।
2: कुछ छोड़िए कि नया पैसा यहाँ कहूँ देखे न आया हुआ।
0: रमाशंकर मिश्रा के परिजनों का कहना है कि वो लंबे समय से घर नहीं आया है और किराए के मकान में रह रहा था।
3: हमको ना वो करे हैं ना हमको दिया है, कभी हमसे उनसे बनता ही नहीं था, कभी वो 10 रुपया हमको दिए ही नहीं थे। मुझको मेरे पति का सहारा है, बस कोई का सहारा नहीं है।
1: तो यहाँ रमाशंकर के बारे में और क्या, घर से कुछ पैसा वैसा ले गए, कुछ बरामदगी दिखाई है, घर से मिला है?
3: कुछ नहीं मिला है सर, केवल कागजात मिला है, वही लेकर गए हैं, आधार नंबर, खाता नंबर।
0: पुलिस के मुताबिक अब तक इस मामले में करीब 80 लाख रुपए की बरामदगी की जा चुकी है, इनमें से करीब 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से मिलने की बात सामने आई है।
1: टिन्नू यादव के इस हॉस्टल से ही, दुर्गापुरी कॉलोनी का ये, अयोध्या में ही दुर्गापुरी कॉलोनी ये हॉस्टल है, और इस हॉस्टल में यूं तो यहाँ अयोध्या विश्वविद्यालय के आसपास के कॉलेज के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर दो कमरे हैं जो टिन्नू यादव ने अपने निजी यूज के लिए रखे हैं। कहने को तो दोनों कमरे पूजा घर हैं, उसका अपना कमरे उनके कब्जे में है, लेकिन कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद, जब गुरुवार देर रात टिन्नू यादव को अयोध्या पुलिस ने FIR दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया, तो शुक्रवार की सुबह उसको यहां लाया गया, और पुलिस के अनुसार जो दस्तावेज जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है कि लगभग 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से बरामद हुए।
0: इस मामले में गिरफ्तार किए गए अनुकल्प मिश्रा पर भी जांच एजेंसियों की नजर है। पुलिस के अनुसार वो नोटों की गिनती की व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। जांच के दौरान उसकी संपत्तियों और वित्तीय लेनदेन की भी पड़ताल की जा रही है। 2 साल पहले खरीदे गए उसके मकान पर भी आज तक की टीम पहुंची।
4: मेरे भाई को फंसाया जा रहा है, मेरी मुझ में ही है, वही से शादी हुई थी, चाचा की 10 साल से इनका केस चल रहा है, उनका मैटर चाचा चाची का है, वो अलग जाने।
0: उधर राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर CCTV कंट्रोल रूम की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार और BJP पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि CCTV बंद करके चोरी को अंजाम दिया गया, साथ ही ये भी कहा कि BJP की प्राथमिकता देश नहीं बल्कि चंदा है।
5: अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे, आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आज जब राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है, तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है।
6: इनकी निगाहें नेशन पे नहीं है, डोनेशन पर हैं। जो लोग ये कहते थे नेशन फर्स्ट, उनके लिए लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट है।
0: रामलला के चढ़ावे में गबन के इस मामले में पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, बड़ी रकम बरामद होने का दावा किया गया है और आरोपियों से जुड़े आर्थिक पहलुओं की भी जांच की जा रही है। साथ ही मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। ऐसे में सभी की नज़र अब पुलिस जाँच पर, आगे होने वाली कानूनी कार्रवाई पर टिकी हुई है। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।
7: खबर राजस्थान से, जहां पर बीजेपी सरकार के एक मंत्री सरकारी सब्सिडी को लेकर चर्चा में है। अब विपक्ष मंत्री पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मंत्री भागीरथ चौधरी इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो प्रक्रिया निर्धारित मापदंडों और सरकारी नियमों के तहत ही की गई है।
8: क्या एक मंत्री अपनी ही मंत्रालय की योजना से सब्सिडी ले सकता है? क्या नियम सभी के लिए बराबर हैं या पद और प्रभाव से बदल जाते हैं? केंद्र सरकार की कृषि योजनाओं को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। भारत सरकार के एक मंत्री ने सरकार से करीब 99 लाख की सब्सिडी प्राप्त की है। खीरे, टमाटर, शिमला मिर्च की खेती के लिए मंत्री जी ने अपने ही कृषि मंत्रालय से सब्सिडी ले ली। मामला सामने आने के बाद विपक्ष ने इसे लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं और निष्पक्ष जांच की मांग की है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस पर सत्ता का गलत प्रयोग बताया है। सचिन पायलट ने लिखा, कृषि मंत्री पर 99 लाख सब्सिडी का आरोप, अपनी ही योजना से लाभ लेने का मामला, पद के दुरुपयोग पर विवाद, पारदर्शिता और जांच की मांग। इस बीच आप नेता मनीष सिसोदिया ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।
9: मोदी सरकार के मंत्री खुद अपने ही विभाग में खीरा किसानों की सब्सिडी खा गए, तो चारों तरफ लूट पे लूट चली जा रही है। तो इस लूट वाली सरकार को हटाना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा कि ये लूट सरकार अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी।
8: वहीं मंत्री भागीरथ चौधरी ने विपक्ष के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि पूरी प्रक्रिया सरकारी नियमों और निर्धारित मापदंडों के तहत की गई है।
10: और 2018 से मैं इस आवेदन के लिए मैं लगा हुआ हूँ इसमें, तो कोई मैंने कोई प्रक्रिया के तहत मैंने काम किया। दूसरा, हम दो एमओएस हैं हम, और उसमें एक रामनाथ जी ठाकुर है और एक मैं हूँ। ये जो सब्सिडी वाला है, ये जो कुछ है, तो वो राज्य मंत्री और रामनाथ जी ठाकुर है।
8: फिलहाल इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। विपक्ष जहां इसे पद के दुरुपयोग का मामला बता रहा है, वहीं सरकार इसे नियमों के तहत हुई प्रक्रिया बता रही है। आज तक ब्यूरो।
7: पुणे में केतन अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी जांच की है। आरोपी नंबर एक और केतन के मंगेतर सिया को लेकर लोहगढ़ किले में लेकर पुलिस पहुंची, जांच पड़ताल की। लेकिन जहां से केतन को धक्का दिया गया और किन परिस्थितियों में दिया गया, उस पूरे के पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया।
0: सिया ने कैसे चेतन के साथ मिलकर केतन को मारा, कैसे उसने कत्ल के लिए लोहगढ़ का किला चुना, कैसे वो केतन को लेकर लोहगढ़ के किले तक पहुंची, कैसे उसने चेतन को कत्ल का इशारा किया, कैसे केतन चेतन और सिया की साजिश नहीं समझ पाया, कैसे इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया, इन सारे सवालों के जवाब तलाशने के लिए ये कवायद हो रही है। जिसका चेहरा ढका हुआ है वो है सिया, और ये वही लोहगढ़ का किला है जहां सिया को लेकर पुलिस पहुंची है।

0: लोहगढ़ किले में 18 जून को जो कुछ हुआ था उसी को दोहराने की कोशिश आज पुणे पुलिस ने की है। पहाड़ी पर स्थित किले के उसी जगह पर पुलिस की पड़ताल चल रही है। ये तस्वीरें धुंधली हैं, लेकिन देश को सन्न कर देने वाली साजिश की तस्वीर साफ करने के लिए पुलिस ने ये अहम कदम उठाया है। इन धुंधली तस्वीरों में सिया गोयल है, पुणे पुलिस की टीम है और साथ में है क्राइम सीन को रिक्रिएट करने वाले एक्सपर्ट। केतन अग्रवाल हत्याकांड की पड़ताल का ये अहम पड़ाव था। कई दिनों से माना जा रहा था कि पुणे पुलिस लोहगढ़ के किले में पहुंचकर क्राइम सीन को रिक्रिएट कर सकती है। तमाम कयासबाजी के बाद पुणे पुलिस की टीम सुबह 6:30 बजे ही लोहगढ़ किले में आज दस्तक दे दिया। पुलिस सिया को लेकर किले पहुंची। किला का गेट बंद कर दिया गया, पर्यटकों को रोक दिया गया, हर किसी के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई। सुबह 6:30 बजे सिया को लेकर पुलिस ने किले में चढ़ाई शुरू की। करीब घंटे भर बाद पुलिस क्राइम सीन पर पहुंच गई। जांच दल के साथ चेतन की कदकाठी का एक डमी भी था। क्राइम सीन पर पहुंचने के बाद पुलिस ने सिया से कई सवाल किए। 18 जून को क्या क्या हुआ था, केतन और चेतन कहां थे, किसने धक्का दिया, कैसे तीनों यहां तक पहुंचे? ऐसे एक एक सवाल के जवाब पुलिस ने सिया से पूछे और उसके जवाबों के मुताबिक ही क्राइम सीन की बारीकी से जांच पड़ताल की। फिर जिस जगह से केतन को धक्का दिया गया था पुलिस ने उस जगह से सिया के बयानों के हिसाब से क्राइम सीन रिक्रिएट किया। रिक्रिएशन के दौरान पुलिस ने उसी स्थान से डमी को नीचे धक्का देकर पूरी घटना को दोहराया जहां से कथित तौर पर केतन अग्रवाल को खाई में धक्का दिया गया था। इस प्रक्रिया का मकसद घटना के क्रम, हालात और उपलब्ध साक्ष्यों का मिलान करना था ताकि जांच को और मजबूत किया जा सके।
1: ये लोहगढ़ किले के ऊपर जहाँ पे वो घटना हुई थी उस घटना पे एक डमी सीन क्रिएट करके वहाँ पे एक्यूज को ले जाया गया है, किस रूट से जाके कहाँ बैठे और क्या क्या प्रोसेस घड़ी और घटना कैसे घड़ी उसको रिक्रिएट जा रहा किया गया है, उसमें एक्यूज ने बता दिया है।
0: केतन हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस आज के रिक्रिएशन को काफी अहम मान रही है।
2: सर, सीन को रिक्रिएट किया गया, एग्जैक्टली किस तरीके से ये पूरा हुआ?
3: आज सिया ने बताया कि उसने इन्फॉर्मेशन दी जैसे हुआ था, वो जो भी डिस्कवरी ऑफ फैक्ट है उस हिसाब से हमने सीन रिक्रिएट किया है।
2: दोनों आरोपियों को आप लेके आए थे?
3: सिया थी,
2: चेतन चौधरी जो है उसका भी अभी फॉरेंसिक करना है हमें, क्योंकि जिस मतलब जहां से उसने एंट्री की थी उसी तरीके का वॉक करना और वो सीसीटीवी में फॉरेंसिक एविडेंसेस लेना वो भी बाकी।
3: अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, आज सिया का रिक्रिएशन हुआ है, वो सीन रिक्रिएशन हमने, क्योंकि आज तो हमने सीन रिक्रिएट किया गया, उसने अभी जो इन्वेस्टिगेशन में सारी बातें सामने आएगी उस हिसाब से अभी आगे भी इन्वेस्टिगेशन करना है।
0: इस जांच पड़ताल के बीच दावा ये भी किया जा रहा है कि सिया और चेतन ने केतन को मारने का रिहर्सल भी किया था।
2: रिक्रिएशन वो सिर्फ सिया को लाए थे, अभी चेतन चौधरी का रिक्रिएशन होना बाकी है। लोहगढ़ किले के यहाँ हम बाहर खड़े हैं जहाँ थोड़ी देर पहले ही सीन रिक्रिएशन पूरा हुआ, फॉरेंसिक की टीम यहाँ मौजूद थी। सबसे अहम बात यह है कि सिया और चेतन ने दोनों ने मिलकर इसकी रिहर्सल की थी, इससे पहले प्रैक्टिस हुई थी और प्रैक्टिस के बाद इसको अंजाम दिया गया था और उसी के बाद आप देख सकते हो कि सीन रिक्रिएशन ये लोहगढ़ किले पे अक्सर संडे को किला शुरू रहता है, लेकिन आज पर्यटकों के लिए और जितने विजिटर्स हैं उन सभी के लिए इसे बंद किया गया था। लेकिन यही सीढ़ियां हैं, इसी सीढ़ियों से तीनों ऊपर गए थे, चेतन चौधरी गया था, उसके बाद सिया और केतन अग्रवाल भी गया था और उसी के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया।
0: हालांकि ऐसे तमाम दावों पर पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, सभी तथ्यों को वेरीफाई किया जा रहा है।
2: किसने किया था, चेतन ने किया था, फिजिया ने?
3: देखिए, आज तो हमने सीन रिक्रिएट किया गया, उसने अभी जो इन्वेस्टिगेशन में सारी बातें सामने आएगी उस हिसाब से अभी आगे भी इन्वेस्टिगेशन करना है।
2: देखो, इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि दोनों ने रिहर्सल की थी, इससे पहले प्रैक्टिस हुई थी कहीं ना कहीं और फिर आके इसे अंजाम दिया गया। तो क्या या ये अभी कह रही है कि वो प्रैक्टिस किस तरीके से हुई थी और कैसे उसने एग्जीक्यूट किया,
3: वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आज का तो सीन रिक्रिएशन होगा।
0: इस हत्याकांड में सिया और चेतन के सामने आए नए नए वीडियो और केतन के परिजनों के आरोपों के बाद ट्विस्ट और बढ़ गया है। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार वाबले, लोहगढ़ आज तक।
4: फिर सिया ने केतन का कत्ल क्यों किया? क्या वो शादी से मना नहीं कर सकती थी? बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों को पच नहीं रहे, लिहाजा पुणे पुलिस सिया के साथ साथ उसके घर वालों से भी लगातार पूछताछ कर रही है।

0: प्रिया और केतन बस कुछ ही महीने बाद दोनों साथ फेरे लेने वाले थे। दोनों एक रिश्ते की डोर में बंधने वाले थे, लेकिन 18 जून को एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। लोहगढ़ के किले में ठीक किसी जगह पर केतन करीब 340 फीट गहरी खाई में जा गिरा और उसकी मौत हो गई। उस घटना के 5 दिन बाद यानी 23 जून को सिया की गिरफ्तारी हो जाती है और वहां से तब तक हादसा लगने वाला मामला पूरी तरह से अलग ट्रैक पर चला जाता है। कत्ल का आरोप लगता है। आरोप ये कि सिया ने अपने मंगेतर को मार डाला। इस गुनाह में सिया का साथ दिया उसके दोस्त चेतन चौधरी ने। वही चेतन जिसका सिया के साथ कई वीडियो सामने आ चुके हैं। एक वीडियो में दोनों क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखते दिखे हैं और सबसे अहम तो ये कि सिया और चेतन ने केतन की हत्या से ठीक एक दिन पहले यानी 17 जून को ही पुणे के कैफे में मुलाकात की थी। दोनों शाम करीब 4:30 बजे मिले थे। माना जा रहा है कि दोनों ने उसी कैफे में हत्या की फाइनल साजिश रची और उसे अंजाम देने पर करीब घंटे भर बात की थी। खुलासा ये भी हुआ है कि हत्या के पहले सिया ने लोहगढ़ किले का वीडियो यूट्यूब पर सर्च किया था और वहां के लोकेशन को कैफे में मुलाकात के दौरान चेतन के साथ साझा किया था। बात यहीं तक नहीं रुकी। सिया का बड़ा भाई साहिल गोयल भी चेतन को जानता था। दोनों ने साथ साथ क्रिकेट खेले थे। उससे जुड़ा वीडियो भी सामने आया है।
1: इस मामले में जो भी लोग जुड़े हुए उन सबसे हम पूछताछ कर रहे हैं।
2: कल साहिल से जो है 10 घंटे तक पूछताछ की गई है, लेकिन जो चेतन था और साहिल है, इन दोनों की दोस्ती कैसे हुई और कहां से शुरू हो गई, कहां से मुलाकात हुई और उनके बीच बातचीत शुरू हो गई थी?
1: चेतन और साहिल एक दूसरे को जानते थे और साथ में क्रिकेट भी खेलते थे और वो दोनों

0: अभी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, हम हर तरीके से ये जारी है, उस हिसाब से हम आगे बताएंगे।
1: चेतन के साथ तमाम वीडियो और कनेक्शन सामने आने के बाद पुणे पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया। सिया के परिजनों को रडार पर लिया और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। 27 जून को पुलिस ने सिया के माता पिता को पूछताछ के लिए बुलाया। दोनों से करीब 12 घंटे तक सवाल जवाब किए। पुलिस ने परिवार से कई अहम सवाल पूछे जिनके जवाब अब जांच का अहम हिस्सा बन गए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान सिया के पिता प्रवीण गोयल और मां पूजा गोयल से पुलिस ने पूछा कि क्या सिया ने आपको चेतन के साथ अपने प्रेम संबंध के बारे में बताया था, क्या आपको इसकी जानकारी थी। परिजनों ने जवाब दिया कि सिया ने हमें अपने प्रेम संबंध के बारे में कभी नहीं बताया था, हमें इसकी जानकारी अब हुई है। पुलिस ने पूछा कि क्या आपने सिया पर चेतन के साथ शादी करने का दबाव बनाया था, तो उन्होंने कहा कि हमने सिया पर शादी के लिए किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला था। 27 जून को हुई पूछताछ के दौरान अपने माता पिता के साथ सिया का भाई साहिल भी मौजूद था। साहिल से 26 जून को ही पुलिस ने केतन हत्याकांड को लेकर सवाल जवाब किए थे। शुक्रवार को साहिल गोयल से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उस पूछताछ में जांच से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई थी। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और आने वाले दिनों में कुछ और लोगों से पूछताछ की जा सकती है। जांच एजेंसियां पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। इतना ही नहीं, पुलिस ने आज सिर्फ सिया का सीन रिक्रिएट किया, अभी चेतन का सीन भी रिक्रिएट किया जा सकता है। जानकारी जुटाई जाएगी कि इतने बड़े अपराध को इन दोनों ने इतना सरल कैसे समझ लिया, कैसे इनके दिमाग में ये बात नहीं आई कि केतन को मार डालना विकल्प नहीं था, कैसे ये नहीं समझ पाए कि केतन के कत्ल के बाद इनका अंजाम क्या होगा। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार बावले, लोहगढ़, पुणे, आज तक।
2: केतन अग्रवाल का परिवार लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। उसके माता पिता की मांग पर फडणवीस सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई करने की मांग उठा ली है। उज्जवल निकम को विशेष सरकारी वकील नियुक्त किया गया, लेकिन इंसाफ की यह लड़ाई अभी लंबे चलने वाली है।
3: सिया ने जो किया है वो बहुत ही शॉकिंग है और मेरे लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था।
1: केतन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी यादें हैं। उसकी यादों में आंसू हैं, गम है, गुस्सा है। नाराजगी सिर्फ अग्रवाल परिवार में ही नहीं है, पुणे शहर में हर कोई सवाल हत्याकांड को लेकर उठा रहा है और कह रहा है कि दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए।
3: केतन की चाची लगती हूँ और सिया ने जो किया है वो बहुत ही शॉकिंग है और मेरे लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था। वो मुझे इतना ट्रस्ट था वो लड़की पे, उसने जो किया है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। और इसके आगे उसके एज की या फिर कोई भी एज की लड़की ये सब चीजें करने से पहले 100 बार डरनी चाहिए। ऐसा जस्टिस मिलना चाहिए हमारे केतन को। दिस इज ओनली ऑल आई वॉन्ट।
4: आप चाहती हो किशन की बचपन से उसे देखा होगा, कुछ यादें साझा करना चाहिए।
3: सेकंड स्टैंडर्ड से ही देख रही हूँ मैं वो बच्चे को, इतना मासूम, इतना प्यारा लड़का। मतलब आई वॉज वेरी हैप्पी कि उसका मतलब रिश्ता पक्का हो गया, बट वो लड़की ने जो किया दैट वॉज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। और जो स्टूपिड रीजंस उसने दिए है कि बाल्ड है और तोतला बोलता है, वो सब बातें तो जब रिश्ता पक्का हुआ था तो वो सब क्लियर हो गई थी। और वो ये सब हरकतें कर रही है, ये सब झूठ बोल रही है। दिस इज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग फॉर एवरीबडी इन द फैमिली।
1: केतन के पिता विशाल अग्रवाल अपील कर रहे हैं कि उनके बेटे के इंसाफ के लिए 18 जून को जो लोग लोहगढ़ किले में मौजूद थे वो गवाही के लिए आगे आए। विशाल अग्रवाल बता रहे हैं कि वारदात वाले दिन कई लोगों ने उन्हें फोन किया था।
5: सिर्फ एक ही अपील करूंगा, मेरा 26 साल का बेटा आज जिस भी वजह से उन्होंने बिना कारण से मार डाला, जिसको कारण पता नहीं चला, मेरे बच्चे की कहीं पे भी एक गलती नहीं थी। मैं तो शादी करने चला था, उसकी घर में बेटी बहू लाने चला था, मुझे नहीं पता था कि मेरा बच्चा ही खो दूंगा मैं। तो मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि उसको जस्टिस मिले, उसके अपराधियों को फांसी की सजा मिले, यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है।
1: अभी कई सवाल हैं जो सिया और चेतन के अंदर दबे हुए हैं, जिन्हें पुलिस को पता लगाना है। इस मामले में सबसे अहम कड़ी है दोनों का मोबाइल, जिससे कई जानकारी सामने आ सकती है। जैसे सिया और चेतन के बीच कब से बातचीत चल रही थी, दोनों के बीच किस तरह की बातचीत हो रही थी, क्या मर्डर की प्लानिंग की बात भी फोन के जरिए की गई, जांच ने तब नया

0: मोड़ लिया जब जांच कर्ताओं को पता चला कि आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी ने कथित तौर पर अपने फोन से अपनी डिजिटल बातचीत मिटा दी थी। पुलिस के मुताबिक दोनों डिवाइस से व्हाट्सएप चैट, इंस्टाग्राम एक्टिविटी और अन्य डिलीट किए गए डेटा की अब फॉरेंसिक एनालिसिस के जरिए जांच की जा रही है। शक है कि चैट को लोहगढ़ की घटना से पहले और बाद में डिलीट किया गया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपियों ने न केवल बातचीत हटाई बल्कि उसे अपने डिवाइस के रिसाइकल बिन से भी साफ कर दिया, जिससे फॉरेंसिक रिकवरी जरूरी हो गई है।
1: जो उसका मोबाइल हमने ताबे में लिया पंचनामे से, और अभी हम उसका एफएसएल को भेजेंगे और उसका जो भी डाटा है उसमें हम एनालिसिस करेंगे।
2: बताया जा रहा है कि उसकी जो चैटिंग है वो डिलीट की गई है, कुछ इस सामने आया ऐसा कुछ?
1: अभी तक तो हमारे अभी पंचनामे से क्या है, हम एफएसएल में वो क्यूरी वो पूछेंगे।
0: कॉल डिटेल रिकॉर्ड से दोनों के बीच लगातार संपर्क का पता चला है। सिया गोयल और चेतन चौधरी ने जनवरी से लेकर अब तक 2004 कॉल किए, जिनकी कुल अवधि लगभग 238 घंटे थी। ऐसे में मोबाइल की जांच से कई राज सामने आ सकते हैं। वैसे सिया के पिता प्रवीण गोयल और मां पूजा गोयल का दावा है कि 18 जून को लोहगढ़ जाने का प्लान सिया का नहीं था। केतन ने ही वीडियो कॉल करके सिया को लोहगढ़ बुलाया था। सिया के परिजन यहां तक दावा कर रहे हैं कि अगर सिया ने कुछ गलत किया है तो उसे भी लोहगढ़ किले से धक्का दे दो।
3: मैं तो कहता हूँ अगर इसमें जो भी आरोपी हो, जो भी, जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है, अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूँगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहाँ से धक्का दे के उसे भी ख़त्म कर दिया जाए। अब इससे ज़्यादा एक बाप और कुछ नहीं बोल सकता।
4: अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहाँ से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहाँ से ही उस दोषी को गिराया जाए। जो भी दोषी निकले, मेरी बेटी चाहे उसमें दोषी हो, ठीक है, उसे फांसी की सजा दो या लोहगढ़ जाके वहीं से ही गिरा दे।
0: पहले चेतन चौधरी ने दावा किया था कि वो वारदात के समय चट्टान के पास मौजूद नहीं था, लेकिन पूछताछ के दौरान उसके बयान में लगातार विरोधाभास सामने आए। जब पुलिस ने सख्ती बरती तो सिया और चेतन ने अपने अपराध स्वीकार कर लिया। एक थ्योरी ये भी आ रही है कि केतन विग लगाता था, और ये भी पता चला है कि सिया केतन के विग लगाने को पसंद नहीं करती थी। हालांकि इस थ्योरी को पुलिस खारिज कर रही है।
1: अभी जो है इन्वेस्टिगेशन का जो मोटिव है वो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम जो भी कंक्लूजन पे आएंगे तो अब हम बताएंगे।
2: जो विक का मामला बोल रहे हैं वो सच है या झूठ है?
1: अभी तक इन्वेस्टिगेशन में हमें ये मामला अभी तक आपसे ही अभी पता चल रहा है।
0: सवाल कई हैं, ऐसे में पूरी संभावना है कि सच तक पहुंचने के लिए अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। कृष्णा पांचाल के साथ ओमकार वाबले, पुणे आज तक।
5: अब खबर मुहर्रम जुलूस से जुड़े हुए हैं। मुंबई में जुलूस के दौरान एक खौफनाक मामला सामने आया। एक आरोपी द्वारा जहरीले पदार्थ को पेन किलर बताकर बांटने की कोशिश की गई। पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और अब एक्शन लिया जा रहा है।
6: मुंबई में मुहर्रम पर बड़ी साजिश रची गई थी, लेकिन मुहर्रम के जुलूस से ठीक पहले उस साजिश का खुलासा हो गया। एक ऐसी साजिश जिसे सुनकर मुंबई सहम गई है, पूरा महाराष्ट्र भी सहमा है और देश भी हैरान है। ये साजिश थी हजारों लोगों की जान लेने की, जहर देकर उन्हें मारने की। मुंबई में मुहर्रम के जुलूस में शामिल लोगों को वो जहरीला कैप्सूल बांटा जा रहा था, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने इस बड़ी और खौफनाक साजिश का राज फाश कर दिया। एक आरोपी फैयाज प्रेमजी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया और उससे 14,900 कैप्सूल बरामद किए। जांच में सामने आया है कि आरोपी फैयाज बीबीए कर चुका है और वो पुणे में पेंट का बिजनेस करता है। उसने 30,000 खाली कैप्सूल के ऑर्डर किए थे, साथ ही 50 किलो फास्फोरस भी मंगवाए थे।
7: एक संशयित व्यक्ति मुंबई पुलिस की टीम को मिला जो कि वहां पे कैप्सूल बांट रहा था। उसके पास कोई परमिशन नहीं थी तो मुंबई पुलिस ने उसको टोक के पूछताछ शुरू करी तो और डाउट बढ़ा। तो उसके बाद उसके पास से जितनी भी कैप्सूल्स का जो स्टॉक था वो जब्त किया गया।
6: पुलिस की माने तो गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने कबूला कि वो पेनकिलर कैप्सूल बताकर मुहर्रम के जुलूस में उसे बांट रहा था। आरोपी से जो कैप्सूल बरामद हुए उसमें जिंक फॉस्फाइड पाया गया। गिरफ्तार फैयाज प्रेमजी ने कई लोगों को उसने कैप्सूल दिए थे। कैप्सूल खाने से एक युवक की तबीयत भी बिगड़ी। जिंक फॉस्फाइड ऐसा केमिकल है जिसकी वजह से तेज उल्टी और पेट में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, चक्कर आना और बेहोशी, ब्लड प्रेशर तेजी से गिरना, दिल की धड़कन अनियमित होना, लीवर और किडनी फेल होने का खतरा रहता है। पुलिस अब जांच में जुटी है कि कहीं इस वारदात का आतंकी कनेक्शन तो नहीं, क्योंकि आरोपी फैयाज पहले ईरान और इराक जा चुका है। आरोपी के विदेशी संपर्कों की पड़ताल भी जारी है। दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
5: आज सड़क हादसों के सहारनपुर में सड़क हादसे का दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है। इस हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दूसरा मामला हिट एंड रन का है, जहां अहमदाबाद में एक कार सवार को कार सवार ने बाइक को टक्कर मार दी।
0: ये तस्वीरें दहला देने वाली है। एक कार को पीछे से दूसरी कार ने भयानक टक्कर मारी। तस्वीरें सहारनपुर में दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर रामपुर मनिहारन थाना क्षेत्र की हैं। बताया जा रहा है कि ड्राइवर कट पार कर आगे निकल गया था और निर्माणाधीन हाईवे की ओर लौटने के लिए कार बैक कर रहा था। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रही स्कॉर्पियो ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर कई मीटर तक घिसटती चली गई, जबकि स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में चार लोगों की जान चली गई, जबकि तीन बुरी तरह घायल। अब दूसरी तस्वीर देखिए, यह अहमदाबाद की तस्वीरें हैं। तेज रफ्तार कार ने यहां बाइक सवार को टक्कर मार दी। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि शहर के व्यास वाड़ी चार रास्ता पर यह तेज रफ्तार सफेद कार इधर से आती है, सामने से एक बाइक पर तीन युवक आ रहे हैं। अचानक कार ने बाइक को टक्कर मारी। टक्कर मारकर कार सवार फरार हो गया, जबकि तीनों युवकों की हालत गंभीर है। आज तक ब्यूरो।
5: महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग से एक भयानक हादसे की तस्वीर सामने आई, जिसमें एक शख्स की जान चली गई। कुछ दोस्त मौसम का मजा लेते हुए पूल पार्टी कर रहे थे, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि यह जश्न मातम में बदल गया।
0: इन तस्वीरों को देखकर पहली नजर में यही लगेगा कि कुछ दोस्त मौसम का मजा ले रहे हैं। ये शानदार म्यूजिक में पूल पार्टी कर रहे हैं, पानी में डुबकी लगा रहे हैं और गाने की धुन पर थिरक रहे हैं। इन्हीं दोस्तों में से एक ये शख्स यहाँ ऊंचाई से सिर के बल पूल में छलांग लगाता है, बाकी के दोस्त इस छलांग पर जश्न मनाते हैं। ये आदमी पानी में सिर के बल कूदा। अब तक इसके दोस्तों को नहीं पता कि कितना बड़ा हादसा हो गया। ये अभी भी नाच रहे हैं, लेकिन पानी में कूदने के बाद ये शख्स पानी से बाहर नहीं आया, बल्कि इसका शव उतराने लगा। तस्वीरें सिंधुदुर्ग के मालवण के वायरी में मालवणी पाहुड़ चार रिसोर्ट की हैं। दरअसल ये पूल 4 फीट गहरा था और ऊंचाई से छलांग लगाने की वजह से इस शख्स का सिर पूल के फ्लोर से टकराया और इसकी जान चली गई। मृतक का नाम श्रेणी मिलिंद टाकले है, ये कोल्हापुर का रहने वाला था। इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि हादसे बता के नहीं होते। किसे पता था कि चंद मिनट पहले जो दोस्त एंजॉय कर रहे थे, चंद मिनट में ही एक हादसे ने जश्न को मातम में बदल दिया। भरत केसरकर, सिंधुदुर्ग आज तक।
5: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

चोरी को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी को फिर घेरा, कहा इनके लिए नेशन नहीं डोनेशन। पर सीएम योगी ने दी चुनौती, बोले कृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर बोले सपा। देवली के विरोध में दिल्ली में यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट, मांगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। मुंबई में भी शिक्षा मंत्री के घर के बाहर हल्ला बोल। केतन अग्रवाल हत्याकांड में क्राइम सीन रिक्रिएट, मुख्य आरोपी सिया और चेतन को लेकर लोहागढ़ के लिए पहुंची पुलिस, जानबूझकर केतन का पासपोर्ट गायब करने की भी जानकारी।

पर्यावरण संरक्षण का खास सम्मान। आयरलैंड से दूसरे टी20 में भी शिकस्त के बाद 0-2 से सीरीज हारा वर्ल्ड चैंपियन भारत। 155 रन के लक्ष्य से एक रन पीछे रह गई टीम इंडिया। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के चढ़ावे में चोरी का मामला लगातार गहराता जा रहा है। जांच के दायरे में अब सिर्फ आरोपी नहीं बल्कि उनसे जुड़े हुए लोग, उनकी आर्थिक गतिविधियां भी आ गई हैं। अयोध्या पुलिस ने इस मामले में नामजद कई आरोपियों के घर पर पहुंचकर उनके परिजनों से पूछताछ की है।

0: रामलला के चढ़ावे से चोरी के मामले में जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एसआईटी की जांच के बाद जहां राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कुछ लोगों के इस्तीफे सामने आए, वहीं अब पुलिस भी कार्रवाई तेज करती नजर आ रही है। अयोध्या पुलिस ने मामले में नामजद आरोपियों के घर पहुंचकर उनके परिजनों से पूछताछ की।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों के घर पर, जो अयोध्या के रहने वाले हैं, उनके घरों पर छापेमारी की जा रही है। मैं इस समय पर अयोध्या में ही रह रहे रमाशंकर मिश्रा, जो आरोपी थे जिनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, रमाशंकर मिश्रा के घर पर मौजूद हूँ। उनके परिजनों से, उसकी भाभी, बहन, उनके पिता से पूछताछ की जा रही है। ये रमाशंकर मिश्रा घर है जो राम मंदिर में नोट गिनने के काम में जुड़ा हुआ था। बता दें कि अयोध्या पुलिस ने इन सभी आरोपियों के घर से लगभग 80 लाख रुपए बरामद किए थे और इनको जुडिशियल कस्टडी में सोमवार तक के लिए भेज दिया गया था, लेकिन अब कल सोमवार को दोबारा जुडिशियल कस्टडी पर सुनवाई होनी है। उससे पहले पुलिस के द्वारा ये जांच की जा रही है, पड़ताल की जा रही है, इन सभी जो आरोपी हैं उनके घर वालों से पूछताछ की जा रही है कि ये लोग कब आते थे, कैसे आते थे, क्या क्या खरीदा गया।
0: अयोध्या पुलिस ने टिन्नू यादव, मनीष यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा के घरों पर पहुंचकर उनके परिवार के लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने आरोपियों के घर आने जाने, उनके संपर्कों और गतिविधियों से जुड़ी जानकारी जुटाई। आरोपी रमाशंकर मिश्रा के पिता अयोध्या के एक मंदिर में पुजारी हैं। पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की
2: जांच के लिए, और वो यहाँ रहते हैं कि नहीं रहते हैं, कहाँ वो है, तो हम बताए कि कमरा पे अलग लिए रहते हैं, दो ढाई साल से यहाँ रहते नहीं हैं, आना जाना भी यहाँ का नहीं है, एक दिन कभी इस मंदिर के अंदर पाँव नहीं रखते हैं।
1: कब से नहीं आया?
2: दो ढाई साल हो गए यहाँ नहीं आया। हाँ, दो साल।
1: राम मंदिर में कब से काम कर रहा था, क्या काम करता था रमाशंकर?
2: 5-6 साल हो गए, तब वहाँ पैसा गाने में बताओ था गाना कर्मचारी।
1: अच्छा, हाँ। कभी पैसा ऐसा ज्यादा देखा आपने रमाशंकर के पास? बहुत
2: कभी नहीं, पैसा तो मांगा तो रहा था, पैसा पाई नहीं, पैसा मांग लेते हैं कि दे दो कहीं जरूरत लगे।
1: पुलिस तो कह रही है कि सब मिलके 80 लाख रुपया चोरी कर लिए चढ़ावे से।
2: कुछ हो कि नया पैसा यहाँ कहूँ देखे ना आया हुआ।
0: रमाशंकर मिश्रा के परिजनों का कहना है कि वो लंबे समय से घर नहीं आया है और किराए के मकान में रह रहा था।
3: हमको ना वो करे हैं ना हमको दिया है, कभी हमसे उनसे बनता ही नहीं था, कभी वो 10 रुपया हमको दिए ही नहीं थे। मुझको मेरे पति का सहारा है, बस कोई का सहारा नहीं है।
1: तो यहाँ रमाशंकर के बारे में और क्या, घर से कुछ पैसा वैसा ले गए, कुछ बरामदगी दिखाई है, घर से मिला है
3: कुछ? कुछ नहीं मिला है सर, केवल कागजात मिला है, वही लेकर गए हैं, आधार नंबर, खाता नंबर।
0: पुलिस के मुताबिक अब तक इस मामले में करीब 80 लाख रुपए की बरामदगी की जा चुकी है, इनमें से करीब 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से मिलने की बात सामने आई है।
1: टिन्नू यादव के इस हॉस्टल से ही, दुर्गापुरी कॉलोनी का ये, अयोध्या में ही दुर्गापुरी कॉलोनी ये हॉस्टल है, और इस हॉस्टल में यूं तो यहाँ अयोध्या विश्वविद्यालय के आसपास के कॉलेज के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर 2 कमरे हैं जो टिन्नू यादव ने अपने निजी यूज के लिए रखे हैं। कहने को तो दोनों कमरे पूजा घर हैं, उसका अपना कमरे उनके कब्जे में है, लेकिन कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद, जब गुरुवार देर रात टिन्नू यादव को अयोध्या पुलिस ने FIR दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया, तो शुक्रवार की सुबह उसको यहां लाया गया, और पुलिस के अनुसार जो दस्तावेज, जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है, कि लगभग 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से बरामद हुए।
0: इस मामले में गिरफ्तार किए गए अनुकल्प मिश्रा पर भी जांच एजेंसियों की नजर है। पुलिस के अनुसार वो नोटों की गिनती की व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। जांच के दौरान उसकी संपत्तियों और वित्तीय लेनदेन की भी पड़ताल की जा रही है। 2 साल पहले खरीदे गए उसके मकान पर भी आज तक की टीम पहुंची।
4: मेरे भाई को फंसाया जा रहा है, मेरी मुझ में ही है, शादी हुई थी चाचा की 10 साल से, तेज चल रहा है उनका मैटर, चाचा चाची का है वो अलग जाने।
0: उधर राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर CCTV कंट्रोल रूम की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार और BJP पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि CCTV बंद करके चोरी को अंजाम दिया गया, साथ ही ये भी कहा कि BJP की प्राथमिकता देश नहीं बल्कि चंदा है।
5: अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे, आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आज जब राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है, तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है।
6: इनकी निगाहें नेशन पे नहीं है, डोनेशन पर हैं। जो लोग ये कहते थे नेशन फर्स्ट, उनके लिए लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट है।
0: रामलला के चढ़ावे में गबन के इस मामले में पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, बड़ी रकम बरामद होने का दावा किया गया है और आरोपियों से जुड़े आर्थिक पहलुओं की भी जांच की जा रही है। साथ ही मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। ऐसे में सभी की नजर अब पुलिस जांच पर, आगे होने वाली कानूनी कार्रवाई पर टिकी हुई है। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।
7: पुणे में केतन अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी जांच की है। आरोपी नंबर एक और केतन के मंगेतर सिया को लेकर लोहगढ़ किले में लेकर पुलिस पहुंची, जांच पड़ताल की। लेकिन जहां से केतन को धक्का दिया गया और किन परिस्थितियों में दिया गया, उस पूरे के पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया।
0: सिया ने कैसे चेतन के साथ मिलकर केतन को मारा, कैसे उसने कत्ल के लिए लोहगढ़ का किला चुना, कैसे वो केतन को लेकर लोहगढ़ के किले तक पहुंची, कैसे उसने चेतन को कत्ल का इशारा किया, कैसे केतन चेतन और सिया की साजिश नहीं समझ पाया, कैसे इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया, इन सारे सवालों के जवाब तलाशने के लिए ये कवायद हो रही है। जिसका चेहरा ढका हुआ है वो है सिया, और ये वही लोहगढ़ का किला है जहां सिया को लेकर पुलिस पहुंची है।

0: लोहगढ़ किले में 18 जून को जो कुछ हुआ था उसी को दोहराने की कोशिश आज पुणे पुलिस ने की है। पहाड़ी पर स्थित किले के उसी जगह पर पुलिस की पड़ताल चल रही है। ये तस्वीरें धुंधली हैं, लेकिन देश को सन्न कर देने वाली साजिश की तस्वीर साफ करने के लिए पुलिस ने यह अहम कदम उठाया है। इन धुंधली तस्वीरों में सिया गोयल है, पुणे पुलिस की टीम है और साथ में है क्राइम सीन को रिक्रिएट करने वाले एक्सपर्ट। केतन अग्रवाल हत्याकांड की पड़ताल का ये अहम पड़ाव था। कई दिनों से माना जा रहा था कि पुणे पुलिस लोहगढ़ के किले में पहुंचकर क्राइम सीन को रिक्रिएट कर सकती है। तमाम कयासबाजी के बाद पुणे पुलिस की टीम सुबह 6:30 बजे ही लोहगढ़ किले में आज दस्तक दे दिया। पुलिस सिया को लेकर किले पहुंची। किला का गेट बंद कर दिया गया, पर्यटकों को रोक दिया गया, हर किसी के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई। सुबह 6:30 बजे सिया को लेकर पुलिस ने किले में चढ़ाई शुरू की। करीब घंटे भर बाद पुलिस क्राइम सीन पर पहुंच गई। जांच दल के साथ चेतन की कदकाठी का एक डमी भी था। क्राइम सीन पर पहुंचने के बाद पुलिस ने सिया से कई सवाल किए। 18 जून को क्या क्या हुआ था, केतन और चेतन कहां थे, किसने धक्का दिया, कैसे तीनों यहां तक पहुंचे? ऐसे एक एक सवाल के जवाब पुलिस ने सिया से पूछे और उसके जवाबों के मुताबिक ही क्राइम सीन की बारीकी से जांच पड़ताल की। फिर जिस जगह से केतन को धक्का दिया गया था पुलिस ने उस जगह से सिया के बयानों के हिसाब से क्राइम सीन रिक्रिएट किया। रिक्रिएशन के दौरान पुलिस ने उसी स्थान से डमी को नीचे धक्का देकर पूरी घटना को दोहराया जहां से कथित तौर पर केतन अग्रवाल को खाई में धक्का दिया गया था। इस प्रक्रिया का मकसद घटना के क्रम, हालात और उपलब्ध साक्ष्यों का मिलान करना था ताकि जांच को और मजबूत किया जा सके।
1: ये लोहगढ़ किले के ऊपर जहाँ पे वो घटना हुई थी उस घटना पे एक डमी सीन क्रिएट करके वहाँ पे एक्यूज को ले जाया गया है, किस रूट से जाके कहाँ बैठे और क्या क्या प्रोसेस घड़ी और घटना कैसे घड़ी उसको रिक्रिएट जा रहा किया गया है, उसमें एक्यूज ने बता दिया है।
0: केतन हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस आज के रिक्रिएशन को काफी अहम मान रही है।
2: सर, सीन को रिक्रिएट किया गया, एग्जैक्टली किस तरीके से ये पूरा हुआ?
3: आज सिया ने बताया कि उसने इन्फॉर्मेशन दी जैसे हुआ था, वो जो भी डिस्कवरी ऑफ फैक्ट है उस हिसाब से हमने सीन रिक्रिएट किया है।
2: दोनों आरोपियों को आप लेके आए थे?
3: सिया थी,
2: चेतन चौधरी जो है उसका भी अभी फॉरेंसिक करना अहम है क्योंकि जिस मतलब जहां से उसने एंट्री की थी उसी तरीके का वॉक करना और वो सीसीटीवी में फॉरेंसिक एविडेंसेस लेना वो भी बाकी।
3: अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, आज सिया का रिक्रिएशन हुआ है, वो सीन रिक्रिएशन हमने क्योंकि आज तो हमने सीन रिक्रिएट किया गया है। उसने अभी जो इन्वेस्टिगेशन में सारी बातें सामने आएगी उस हिसाब से अभी आगे भी इन्वेस्टिगेशन करना है।
0: इस जांच पड़ताल के बीच दावा ये भी किया जा रहा है कि सिया और चेतन ने केतन को मारने का रिहर्सल भी किया था।
2: रिक्रिएशन वो सिर्फ सिया को लाए थे, अभी चेतन चौधरी का रिक्रिएशन होना बाकी है। लोहगढ़ किले के यहाँ हम बाहर खड़े हैं जहाँ थोड़ी देर पहले ही सीन रिक्रिएशन पूरा हुआ, फॉरेंसिक की टीम यहाँ मौजूद थी। सबसे अहम बात यह है कि सिया और चेतन ने दोनों ने मिलकर इसकी रिहर्सल की थी, इससे पहले प्रैक्टिस हुई थी और प्रैक्टिस के बाद इसको अंजाम दिया गया था और उसी के बाद आप देख सकते हो कि सीन रिक्रिएशन ये लोहगढ़ किले पे अक्सर संडे को किला शुरू रहता है लेकिन आज पर्यटकों के लिए और जितने विजिटर्स हैं उन सभी के लिए इसे बंद किया गया था। लेकिन यही सीढ़ियां हैं, इसी सीढ़ियों से तीनों ऊपर गए थे, चेतन चौधरी गया था, उसके बाद सिया और केतन अग्रवाल भी गया था और उसी के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया।
0: हालांकि ऐसे तमाम दावों पर पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, सभी तथ्यों को वेरीफाई किया जा रहा है।
2: किसने किया था, चेतन ने किया था, फिसिया ने?
3: देखिए आज तो हमने सीन रिक्रिएट किया गया, उसने अभी जो इन्वेस्टिगेशन में सारी बातें सामने आएगी उस हिसाब से अभी आगे भी इन्वेस्टिगेशन करना है।
2: देखो इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि दोनों ने रिहर्सल की थी, इससे पहले प्रैक्टिस हुई थी कहीं ना कहीं और फिर आके इसे अंजाम दिया गया। तो क्या सिया ये अभी कह रही है कि वो प्रैक्टिस किस तरीके से हुई थी और कैसे उसने एग्जीक्यूट किया,
3: वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आज का तो सीन रिक्रिएशन हो गया।
0: इस हत्याकांड में सिया और चेतन के सामने आए नए नए वीडियो और केतन के परिजनों के आरोपों के बाद ट्विस्ट और बढ़ गया है। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार वाबले, लोहगढ़ आज तक।
4: फिर सिया ने केतन का कत्ल क्यों किया? क्या वो शादी से मना नहीं कर सकती थी? बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों को पच नहीं रहे। लिहाजा पुणे पुलिस सिया के साथ साथ उसके घर वालों से भी लगातार पूछताछ कर रही है।

0: सिया और केतन बस कुछ ही महीने बाद दोनों साथ फेरे लेने वाले थे, दोनों एक रिश्ते की डोर में बंधने वाले थे, लेकिन 18 जून को एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। लोहगढ़ के किले में ठीक इसी जगह पर केतन करीब 340 फीट गहरी खाई में जा गिरा और उसकी मौत हो गई। उस घटना के 5 दिन बाद यानी 23 जून को सिया की गिरफ्तारी हो जाती है और वहां से तब तक हादसा लगने वाला मामला पूरी तरह से अलग ट्रैक पर चला जाता है। कत्ल का आरोप लगता है, आरोप ये कि सिया ने अपने मंगेतर को मार डाला। इस गुनाह में सिया का साथ दिया उसके दोस्त चेतन चौधरी ने। वही चेतन जिसका सिया के साथ कई वीडियो सामने आ चुके हैं। एक वीडियो में दोनों क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखते दिखे हैं और सबसे अहम तो ये कि सिया और चेतन ने केतन की हत्या से ठीक एक दिन पहले यानी 17 जून को ही पुणे के कैफे में मुलाकात की थी। दोनों शाम करीब 4:30 बजे मिले थे। माना जा रहा है कि दोनों ने उसी कैफे में हत्या की फाइनल साजिश रची और उसे अंजाम देने पर करीब घंटे भर बात की थी। खुलासा ये भी हुआ है कि हत्या के पहले सिया ने लोहगढ़ किले का वीडियो यूट्यूब पर सर्च किया था और वहां के लोकेशन को कैफे में मुलाकात के दौरान चेतन के साथ साझा किया था। बात यहीं तक नहीं रुकी, सिया का बड़ा भाई साहिल गोयल भी चेतन को जानता था, दोनों ने साथ साथ क्रिकेट खेले थे, उससे जुड़ा वीडियो भी सामने आया है।
1: इस मामले में जो भी लोग जुड़े हुए उन सबसे हम पूछताछ कर रहे हैं।
2: कल साहिल से जो है 10 घंटे तक पूछताछ की गई है, लेकिन जो चेतन था और साहिल है इन दोनों की दोस्ती कैसे हुई और कहां से शुरू हो गई, कहां से मुलाकात हुई और उनके बीच बातचीत शुरू हो गई थी?
1: चेतन और साहिल एक दूसरे को जानते थे, वो साथ में क्रिकेट भी खेलते थे और वो दोनों दोस्त भी थे
2: और इसी क्रिकेट ग्राउंड में सिया भी आती थी और उसकी वजह से जो है चेतन और सिया एक दूसरे को पहचानने लगे थे।
1: यह भी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, हम हर तरीके से ये जारी है, उस हिसाब से हम आगे बताएंगे।
0: चेतन के साथ तमाम वीडियो और कनेक्शन सामने आने के बाद पुणे पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया, सिया के परिजनों को रडार पर लिया और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। 27 जून को पुलिस ने सिया के माता पिता को पूछताछ के लिए बुलाया, दोनों से करीब 12 घंटे तक सवाल जवाब किए। पुलिस ने परिवार से कई अहम सवाल पूछे जिनके जवाब अब जांच का अहम हिस्सा बन गए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान सिया के पिता प्रवीण गोयल और मां पूजा गोयल से पुलिस ने पूछा कि क्या सिया ने आपको चेतन के साथ अपने प्रेम संबंध के बारे में बताया था, क्या आपको इसकी जानकारी थी? परिजनों ने जवाब दिया कि सिया ने हमें अपने प्रेम संबंध के बारे में कभी नहीं बताया था, हमें इसकी जानकारी अब हुई है। पुलिस ने पूछा कि क्या आपने सिया पर केतन के साथ शादी करने का दबाव बनाया था, तो उन्होंने कहा कि हमने सिया पर शादी के लिए किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला था। 27 जून को हुई पूछताछ के दौरान अपने माता पिता के साथ सिया का भाई साहिल भी मौजूद था। साहिल से 26 जून को ही पुलिस ने केतन हत्याकांड को लेकर सवाल जवाब किए थे। शुक्रवार को साहिल गोयल से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उस पूछताछ में जांच से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई थी। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और आने वाले दिनों में कुछ और लोगों से पूछताछ की जा सकती है। जांच एजेंसियां पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। इतना ही नहीं, पुलिस ने आज सिर्फ सिया का सीन रिक्रिएट किया, अभी चेतन का सीन भी रिक्रिएट किया जा सकता है। जानकारी जुटाई जाएगी कि इतने बड़े अपराध को इन दोनों ने इतना सरल कैसे समझ लिया, कैसे इनके दिमाग में ये बात नहीं आई कि केतन को मार डालना विकल्प नहीं था, कैसे ये नहीं समझ पाए कि केतन के कत्ल के बाद इनका अंजाम क्या होगा। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार भावले, लोहगढ़, पुणे, आज तक।
3: केतन अग्रवाल का परिवार लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। उसके माता पिता की मांग पर फडणवीस सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई करने की मांग उठा ली है। उज्जवल निगम को विशेष सरकारी वकील नियुक्त किया गया, लेकिन इंसाफ की यह लड़ाई अभी लंबे चलने वाली है।
4: किया है वो बहुत ही शॉकिंग है और मेरे लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था।
0: केतन अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन उसकी यादें हैं। उसकी यादों में आंसू हैं, गम है, गुस्सा है। नाराजगी सिर्फ अग्रवाल परिवार में ही नहीं है, पुणे शहर में हर कोई सवाल हत्याकांड को लेकर उठा रहा है और कह रहा है कि दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए।
4: केतन की चाची लगती हूँ और सिया ने जो किया है वो बहुत ही शॉकिंग है और मेरे लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था। वो मुझे इतना ट्रस्ट था वो लड़की पे, उसने जो किया है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। और इसके आगे उसके एज की या फिर कोई भी एज की लड़की ये सब चीजें करने से पहले 100 बार डरनी चाहिए। ऐसा जस्टिस मिलना चाहिए हमारे केतन को। दिस इज ओनली ऑल आई वॉन्ट।
5: आप चाहती हो किशन की बचपन से उसे देखा होगा, कुछ यादें साझा करना चाहिए?
4: सेकंड स्टैंडर्ड से ही देख रही हूँ मैं वो बच्चे को, इतना मासूम, इतना प्यारा लड़का। मतलब आई वॉज वेरी हैप्पी कि उसका मतलब रिश्ता पक्का हो गया, बट वो लड़की ने जो किया दैट वॉज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। और जो स्टूपिड रीजंस उसने दिए है कि बाल्ड है और तोतला बोलता है, वो सब बातें तो जब रिश्ता पक्का हुआ था तो वो सब क्लियर हो गई थी। और वो ये सब हरकतें कर रही है, ये सब झूठ बोल रही है, दिस इज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग फॉर एवरीबडी इन द फैमिली।
0: केतन के पिता विशाल अग्रवाल अपील कर रहे हैं कि उनके बेटे के इंसाफ के लिए 18 जून को जो लोग लोहगढ़ किले में मौजूद थे वो गवाही के लिए आगे आए। विशाल अग्रवाल बता रहे हैं कि वारदात वाले दिन कई लोगों ने उन्हें फोन किया था।
6: सिर्फ एक ही अपील करूंगा, मेरा 26 साल का बेटा आज जिस भी वजह से उन्होंने बिना कारण से मार डाला, जिसको कारण पता नहीं चला, मेरे बच्चे की कहीं पे भी एक गलती नहीं थी। मैं तो शादी करने चला था, उसकी घर में बेटी बहू लाने चला था, मुझे नहीं पता था कि मेरा बच्चा ही खो दूंगा मैं। तो मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि उसको जस्टिस मिले, उसके अपराधियों को फांसी की सजा मिले, यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है।
0: अभी कई सवाल हैं जो सिया और चेतन के अंदर दबे हुए हैं, जिन्हें पुलिस को पता लगाना है। इस मामले में सबसे अहम कड़ी है दोनों का मोबाइल, जिससे कई जानकारी सामने आ सकती है। जैसे सिया और चेतन के बीच कब से बातचीत चल रही थी, दोनों के बीच किस तरह की बातचीत हो रही थी, क्या मर्डर की प्लानिंग की बात भी फोन के जरिए की गई। जांच ने तब नया मोड़ लिया जब जांचकर्ताओं को पता चला कि आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी ने कथित तौर पर अपने फोन से अपनी डिजिटल बातचीत मिटा दी थी। पुलिस के मुताबिक दोनों डिवाइस से व्हाट्सएप चैट, इंस्टाग्राम एक्टिविटी और अन्य डिलीट किए गए डेटा की अब फॉरेंसिक एनालिसिस के जरिए जाँच की जा रही है। शक है कि चैट को लोहगढ़ की घटना से पहले और बाद में डिलीट किया गया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपियों ने न केवल बातचीत हटाई बल्कि उसे अपने डिवाइस के रिसाइकल बिन से भी साफ कर दिया, जिससे फोरेंसिक रिकवरी जरूरी हो गई है।
1: जो उसका मोबाइल हमने ताबे में लिया पंचनामे से, और अभी हम उसका एफएसएल को भेजेंगे और उसका जो भी डाटा है उसमें हम एनालिसिस करेंगे।
2: बताया जा रहा है कि उसकी जो चैटिंग है वो डिलीट की गई है, कुछ इस सामने आया है ऐसा कुछ?
1: अभी तक तो हमारे अभी पंचनामे से क्या है, हम एफएसएल में वो क्यूरी वो पूछेंगे।
0: कॉल डिटेल रिकॉर्ड से दोनों के बीच लगातार संपर्क का पता चला है। सिया गोयल और चेतन चौधरी ने जनवरी से लेकर अब तक 2004 कॉल किए, जिनकी कुल अवधि लगभग 238 घंटे थी। ऐसे में मोबाइल की जांच से कई राज सामने आ सकते हैं। वैसे सिया के पिता प्रवीण गोयल और मां पूजा गोयल का दावा है कि 18 जून को लोहगढ़ जाने का प्लान सिया का नहीं था। केतन ने ही वीडियो कॉल करके सिया को लोहगढ़ बुलाया था। सिया के परिजन यहां तक दावा कर रहे हैं कि अगर सिया ने कुछ गलत किया है तो उसे भी लोहगढ़ किले से धक्का दे दो।
7: मैं तो कहता हूँ अगर इसमें जो भी आरोपी हो, जो भी, जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है, अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूँगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहाँ से धक्का दे के उसे भी ख़त्म कर दिया जाए। अब इससे ज़्यादा एक बाप और कुछ नहीं बोल सकता।
8: अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहाँ से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहाँ से ही उस दोषी को गिराया जाए। जो भी दोषी निकले, मेरी बेटी चाहे उसमें दोषी हो, ठीक है, उसे फांसी की सजा दो या लोहगढ़ जाके वहीं से ही गिरा दे।
0: पहले चेतन चौधरी ने दावा किया था कि वो वारदात के समय चट्टान के पास मौजूद नहीं था, लेकिन पूछताछ के दौरान उसके बयान में लगातार विरोधाभास सामने आए। जब पुलिस ने सख्ती बरती तो सिया और चेतन ने अपने अपराध स्वीकार कर लिया। एक थ्योरी ये भी आ रही है कि केतन विग लगाता था, और ये भी पता चला है कि सिया केतन के विग लगाने को पसंद नहीं करती थी। हालांकि इस थ्योरी को पुलिस खारिज कर रही है।
1: अभी जो है इन्वेस्टिगेशन का जो मोटिव है वो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम जो भी कंक्लूजन पे आएंगे तो अब हम बताएंगे।
2: जो विक का मामला बोल रहे हैं वो सच है या झूठ है?
1: अभी तक इन्वेस्टिगेशन में हमें ये मामला अभी तक आपसे ही अभी पता चल रहा है।
0: सवाल कई हैं, ऐसे में पूरी संभावना है कि सच तक पहुंचने के लिए अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। कृष्णा पांचाल के साथ ओमकार वाबले, पुणे आज तक।
3: अब खबर मुहर्रम जुलूस से जुड़े हुए हैं। मुंबई में जुलूस के दौरान एक खौफनाक मामला सामने आया। एक आरोपी द्वारा जहरीले पदार्थ को पेन किलर बताकर बांटने की कोशिश की गई। पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और अब एक्शन लिया जा रहा है।
9: मुंबई में मुहर्रम पर बड़ी साजिश रची गई थी, लेकिन मुहर्रम के जुलूस से ठीक पहले उस साजिश का खुलासा हो गया। एक ऐसी साजिश जिसे सुनकर मुंबई सहम गई है, पूरा महाराष्ट्र भी सहमा है और देश भी हैरान है। यह साजिश थी हजारों लोगों की जान लेने की, जहर देकर उन्हें मारने की। मुंबई में मुहर्रम के जुलूस में शामिल लोगों को वो जहरीला कैप्सूल बांटा जा रहा था, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने इस बड़ी और खौफनाक साजिश का राज फाश कर दिया। एक आरोपी फैयाज प्रेमजी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया और उससे 14,900 कैप्सूल बरामद किए। जांच में सामने आया है कि आरोपी फैयाज बीबीए कर चुका है और वो पुणे में पेंट का बिजनेस करता है। उसने 30,000 खाली कैप्सूल के ऑर्डर किए थे, साथ ही 50 किलो फॉस्फोरस भी मंगवाए थे।
10: एक संशयित व्यक्ति मुंबई पुलिस की टीम को मिला जो कि वहाँ पे कैप्सूल बांट रहा था। उसके पास कोई परमिशन नहीं थी, तो मुंबई पुलिस ने उसको टोक के पूछताछ शुरू करी तो और डाउट बढ़ा। तो उसके बाद उसके पास से जितनी भी कैप्सूल्स का जो स्टॉक था वो जब्त किया गया।
9: पुलिस की माने तो गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने कबूला कि वो पेनकिलर कैप्सूल बताकर मुहर्रम के जुलूस में उसे बांट रहा था। आरोपी से जो कैप्सूल बरामद हुए उसमें जिंक फॉस्फाइड पाया गया। गिरफ्तार फैयाज प्रेमजी ने कई लोगों को उसने कैप्सूल दिए थे। कैप्सूल खाने से एक युवक की तबीयत भी बिगड़ी। जिंक फॉस्फाइड ऐसा केमिकल है जिसकी वजह से तेज उल्टी और पेट में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, चक्कर आना और बेहोशी, ब्लड प्रेशर तेजी से गिरना, दिल की धड़कन अनियमित होना, लीवर और किडनी फेल होने का खतरा रहता है। पुलिस अब जांच में जुटी है कि कहीं इस वारदात का आतंकी कनेक्शन तो नहीं, क्योंकि आरोपी फैयाज पहले ईरान और इराक जा चुका है। आरोपी के विदेशी संपर्कों की पड़ताल भी जारी है। दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
3: महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग से एक भयानक हादसे की तस्वीर सामने आई, जिसमें एक शख्स की जान चले गई। कुछ दोस्त मौसम का मजा लेते हुए पूल पार्टी कर रहे थे, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि यह जश्न मातम में बदल गया।
0: इन तस्वीरों को देखकर पहली नजर में यही लगेगा कि कुछ दोस्त मौसम का मजा ले रहे हैं। ये शानदार म्यूजिक में पूल पार्टी कर रहे हैं, पानी में डुबकी लगा रहे हैं और गाने की धुन पर थिरक रहे हैं। इन्हीं दोस्तों में से एक ये शख्स यहाँ ऊंचाई से सिर के बल पूल में छलांग लगाता है, बाकी के दोस्त इस छलांग पर जश्न मनाते हैं। ये आदमी पानी में सिर के बल कूदा, अब तक इसके दोस्तों को नहीं पता कि कितना बड़ा हादसा हो गया। ये अभी भी नाच रहे हैं, लेकिन पानी में कूदने के बाद ये शख्स पानी से बाहर नहीं आया, बल्कि इसका शव उतराने लगा। तस्वीरें सिंधुदुर्ग के मालवण के वायरी में मालवणी पाहुण चार रिसोर्ट की हैं। दरअसल ये पूल 4 फीट गहरा था और ऊंचाई से छलांग लगाने की वजह से इस शख्स का सिर पूल के फ्लोर से टकराया और इसकी जान चली गई। मृतक का नाम श्रेणी मिलिंद टाकले है, ये कोल्हापुर का रहने वाला था। इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि हादसे बता के नहीं होते। किसे पता था कि चंद मिनट पहले जो दोस्त एंजॉय कर रहे थे, चंद मिनट में ही एक हादसे ने जश्न को मातम में बदल दिया। भरत केसरकर, सिंधुदुर्ग आज तक।
3: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

महा चोरी को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी को फिर घेरा, कहा इनके लिए नेशन नहीं डोनेशन। फॉर सीएम योगी ने दी चुनौती, बोले कृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर बोले सपा। पेपर लीक के विरोध में दिल्ली में यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट, मांगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। मुंबई में भी शिक्षा मंत्री के घर के बाहर हल्ला बोल। केतन अग्रवाल हत्याकांड में क्राइम सीन रिक्रिएट, मुख्य आरोपी सिया और चेतन को लेकर लोहागढ़ के लिए पहुंची पुलिस, जानबूझकर केतन का पासपोर्ट गायब करने की भी जानकारी।

संरक्षण का खास सम्मान। आयरलैंड से दूसरे टी20 में भी शिकस्त के बाद 0-2 से सीरीज हारा वर्ल्ड चैंपियन भारत 155 रन के लक्ष्य से एक रन पीछे रह गई टीम इंडिया। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के चढ़ावे में चोरी का मामला लगातार गहरा था जा रहा है। जांच के दायरे में अब सिर्फ आरोपी नहीं बल्कि उनसे जुड़े हुए लोग, उनकी आर्थिक गतिविधियां भी आ गई हैं। अयोध्या पुलिस ने इस मामले में नामजद कई आरोपियों के घर पर पहुंचकर उनके परिजनों से पूछताछ की है।

0: रामलला के चढ़ावे से चोरी के मामले में जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एसआईटी की जांच के बाद जहां राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कुछ लोगों के इस्तीफे सामने आए, वहीं अब पुलिस भी कार्रवाई तेज करती नजर आ रही है। अयोध्या पुलिस ने मामले में नामजद आरोपियों के घर पहुंचकर उनके परिजनों से पूछताछ की।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों के घर पर, जो अयोध्या के रहने वाले हैं, उनके घरों पर छापेमारी की जा रही है। मैं इस समय पर अयोध्या में ही रह रहे रमाशंकर मिश्रा, जो आरोपी थे जिनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, रमाशंकर मिश्रा के घर पर मौजूद हूँ। उनके परिजनों से, उसकी भाभी, बहन, उनके पिता से पूछताछ की जा रही है। ये रमाशंकर मिश्रा का घर है जो राम मंदिर में नोट गिनने के काम में जुड़ा हुआ था। बता दें कि अयोध्या पुलिस ने इन सभी आरोपियों के घर से लगभग 80 लाख रुपए बरामद किए थे और उनको जुडिशियल कस्टडी में सोमवार तक के लिए भेज दिया गया था, लेकिन अब कल सोमवार को दोबारा जुडिशियल कस्टडी पर सुनवाई होनी है। उससे पहले पुलिस के द्वारा ये जांच की जा रही है, पड़ताल की जा रही है, इन सभी जो आरोपी हैं उनके घर वालों से पूछताछ की जा रही है कि ये लोग कब आते थे, कैसे आते थे, क्या क्या खरीदा गया।
0: अयोध्या पुलिस ने टिन्नू यादव, मनीष यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा के घरों पर पहुंचकर उनके परिवार के लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने आरोपियों के घर आने जाने, उनके संपर्कों और गतिविधियों से जुड़ी जानकारी जुटाई। आरोपी रमाशंकर मिश्रा के पिता अयोध्या के एक मंदिर में पुजारी हैं, पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की
2: जाँच के लिए। और वो यहाँ रहते हैं कि नहीं रहते हैं, कहाँ वो है तो हम बताए कि कमरा पे अलग लिए रहते हैं, दो ढाई साल से यहाँ रहते नहीं हैं, आना जाना भी यहाँ का नहीं है, एक दिन कभी इस मंदिर के अंदर पाँव नहीं रखते हैं।
1: कब से नहीं आया?
2: दो ढाई साल हो गए यहाँ नहीं आया। हाँ, दो साल।
1: राम मंदिर में कब से काम कर रहा था, क्या काम करता था रमाशंकर?
2: 5-6 साल हो गए, तब वहाँ पैसा गाने में बताओ गाना कर्मचारी।
1: अच्छा, हाँ। अभी पैसा ऐसा ज्यादा देखा आपने रमाशंकर के पास? बहुत
2: कभी नहीं, पैसा तो मांगा तो रहा, तो पैसा पाई नहीं है? पैसा मांग लिया तो देंगे, कहीं जरूरत लगे।
1: पुलिस तो कह रही है कि सब मिलके 80 लाख रुपया चोरी कर लिए चढ़ावे से।
2: कुछ ये कि नया पैसा यहाँ कहूँ देखबे नहीं आया हुआ।
0: रमाशंकर मिश्रा के परिजनों का कहना है कि वो लंबे समय से घर नहीं आया है और किराए के मकान में रह रहा था।
3: हमको ना वो करे हैं ना हमको दिया है, कभी हमसे उनसे बनता ही नहीं था, कभी वो 10 रुपया हमको दिए ही नहीं थे। मुझको मेरे पति का सहारा है, बस कोई का सहारा नहीं है।
1: तो यहाँ रमाशंकर के बारे में और क्या, घर से कुछ पैसा वैसा ले गए, कुछ बरामदगी दिखाई है, घर से मिला है?
3: कुछ नहीं मिला है सर, केवल कागजात मिला है, वही लेकर गए हैं, आधार नंबर, खाता नंबर।
0: पुलिस के मुताबिक अब तक इस मामले में करीब 80 लाख रुपए की बरामदगी की जा चुकी है, इनमें से करीब 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से मिलने की बात सामने आई है।
1: टिन्नू यादव के इस हॉस्टल से ही, दुर्गापुरी कॉलोनी का ये अयोध्या में ही दुर्गापुरी कॉलोनी ये हॉस्टल है, और इस हॉस्टल में यूं तो यहाँ अयोध्या विश्वविद्यालय के आसपास के कॉलेज के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर दो कमरे हैं जो टिन्नू यादव ने अपने निजी यूज के लिए रखे हैं। कहने को तो दोनों कमरे पूजा घर है, उसका अपना कमरे उनके कब्जे में है, लेकिन कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद, जब गुरुवार देर रात टिन्नू यादव को अयोध्या पुलिस ने एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया, तो शुक्रवार की सुबह उसको यहां लाया गया, और पुलिस के अनुसार जो दस्तावेज जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है कि लगभग 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से बरामद हुए।
0: इस मामले में गिरफ्तार किए गए अनुकल्प मिश्रा पर भी जांच एजेंसियों की नजर है। पुलिस के अनुसार वो नोटों की गिनती की व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। जांच के दौरान उसकी संपत्तियों और वित्तीय लेनदेन की भी पड़ताल की जा रही है। 2 साल पहले खरीदे गए उसके मकान पर भी आज तक की टीम पहुंची।
4: मेरे भाई को फंसाया जा रहा है, मेरी मुझ में ही है, वही से शादी हुई थी, चाचा की 10 साल से इनका केस चल रहा है, उनका मैटर चाचा चाची का है, वो अलग जाने।
0: उधर राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर सीसीटीवी कंट्रोल रूम की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सीसीटीवी बंद करके चोरी को अंजाम दिया गया, साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी की प्राथमिकता देश नहीं बल्कि चंदा है।
5: अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे, आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आज जब राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है, तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है।
6: इनकी निगाहें नेशन पे नहीं है, डोनेशन पर हैं। जो लोग ये कहते थे नेशन फर्स्ट, उनके लिए लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट है।
0: रामलला के चढ़ावे में गबन के इस मामले में पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, बड़ी रकम बरामद होने का दावा किया गया है और आरोपियों से जुड़े आर्थिक पहलुओं की भी जांच की जा रही है। साथ ही मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। ऐसे में सभी की नजर अब पुलिस जाँच और आगे होने वाली कानूनी कार्रवाई पर टिकी हुई है। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।
7: खबर राजस्थान से, जहां पर बीजेपी सरकार के एक मंत्री सरकारी सब्सिडी को लेकर चर्चा में है। अब विपक्ष मंत्री पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मंत्री भागीरथ चौधरी इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो प्रक्रिया निर्धारित मापदंडों और सरकारी नियमों के तहत ही की गई है।
8: क्या एक मंत्री अपनी ही मंत्रालय की योजना से सब्सिडी ले सकता है? क्या नियम सभी के लिए बराबर हैं या पद और प्रभाव से बदल जाते हैं? केंद्र सरकार की कृषि योजनाओं को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। भारत सरकार के एक मंत्री ने सरकार से करीब 99 लाख की सब्सिडी प्राप्त की है। खीरे, टमाटर, शिमला मिर्च की खेती के लिए मंत्री जी ने अपने ही कृषि मंत्रालय से सब्सिडी ले ली। मामला सामने आने के बाद विपक्ष ने इसे लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं और निष्पक्ष जांच की मांग की है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस पर सत्ता का गलत प्रयोग बताया है। सचिन पायलट ने लिखा, कृषि मंत्री पर 99 लाख सब्सिडी का आरोप, अपनी ही योजना से लाभ लेने का मामला, पद के दुरुपयोग पर विवाद, पारदर्शिता और जांच की मांग। इस बीच आप नेता मनीष सिसोदिया ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।
9: मोदी सरकार के मंत्री खुद अपने ही विभाग में खीरा किसानों की सब्सिडी खा गए, तो चारों तरफ लूट पे लूट चली जा रही है। तो इस लूट वाली सरकार को हटाना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा कि ये लूट सरकार अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी।
8: वहीं मंत्री भागीरथ चौधरी ने विपक्ष के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि पूरी प्रक्रिया सरकारी नियमों और निर्धारित मापदंडों के तहत की गई है।
10: और 2018 से मैं इस आवेदन के लिए मैं लगा हुआ हूँ उसमें, तो कोई मैंने कोई प्रक्रिया के तहत मैंने काम किया। दूसरा, हम 2 MS हैं, MOSM है हम, और उसमें एक रामनाथ जी ठाकुर है और एक मैं हूँ। ये जो सब्सिडी वाला है, ये जो कुछ है, तो वो राज्य मंत्री और रामनाथ जी ठाकुर है।
8: फिलहाल इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। विपक्ष जहां इसे पद के दुरुपयोग का मामला बता रहा है, वहीं सरकार इसे नियमों के तहत हुई प्रक्रिया बता रही है। आज तक ब्यूरो।
7: पुणे में केतन अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी जांच की है। आरोपी नंबर 1 और केतन की मंगेतर सिया को लेकर लोहगढ़ किले में लेकर पुलिस पहुंची जांच पड़ताल की, लेकिन जहां से केतन को धक्का दिया गया और किन परिस्थितियों में दिया गया, उस पूरे के पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया।
0: सिया ने कैसे चेतन के साथ मिलकर केतन को मारा, कैसे उसने कत्ल के लिए लोहगढ़ का किला चुना, कैसे वो केतन को लेकर लोहगढ़ के किले तक पहुंची, कैसे उसने चेतन को कत्ल का इशारा किया, कैसे केतन चेतन और सिया की साजिश नहीं समझ पाया, कैसे इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया, इन सारे सवालों के जवाब तलाशने के लिए ये कवायद हो रही है। जिसका चेहरा ढका हुआ है वो है सिया, और ये वही लोहगढ़ का किला है जहां सिया को लेकर पुलिस पहुंची है।

0: लोहगढ़ किले में 18 जून को जो कुछ हुआ था उसी को दोहराने की कोशिश आज पुणे पुलिस ने की है। पहाड़ी पर स्थित किले के उसी जगह पर पुलिस की पड़ताल चल रही है। ये तस्वीरें धुंधली हैं, लेकिन देश को सन्न कर देने वाली साजिश की तस्वीर साफ करने के लिए पुलिस ने ये अहम कदम उठाया है। इन धुंधली तस्वीरों में सिया गोयल है, पुणे पुलिस की टीम है और साथ में है क्राइम सीन को रिक्रिएट करने वाले एक्सपर्ट। केतन अग्रवाल हत्याकांड की पड़ताल का ये अहम पड़ाव था। कई दिनों से माना जा रहा था कि पुणे पुलिस लोहगढ़ के किले में पहुंचकर क्राइम सीन को रिक्रिएट कर सकती है। तमाम कयासबाजी के बाद पुणे पुलिस की टीम सुबह 6:30 बजे ही लोहगढ़ किले में आज दस्तक दे दिया। पुलिस सिया को लेकर किले पहुंची। किला का गेट बंद कर दिया गया, पर्यटकों को रोक दिया गया, हर किसी के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई। सुबह 6:30 बजे सिया को लेकर पुलिस ने किले में चढ़ाई शुरू की। करीब घंटे भर बाद पुलिस क्राइम सीन पर पहुंच गई। जांच दल के साथ चेतन की कदकाठी का एक डमी भी था। क्राइम सीन पर पहुंचने के बाद पुलिस ने सिया से कई सवाल किए। 18 जून को क्या क्या हुआ था, केतन और चेतन कहां थे, किसने धक्का दिया, कैसे तीनों यहां तक पहुंचे, ऐसे एक एक सवाल के जवाब पुलिस ने सिया से पूछे और उसके जवाबों के मुताबिक ही क्राइम सीन की बारीकी से जांच पड़ताल की। फिर जिस जगह से केतन को धक्का दिया गया था पुलिस ने उस जगह से सिया के बयानों के हिसाब से क्राइम सीन रिक्रिएट किया। रिक्रिएशन के दौरान पुलिस ने उसी स्थान से डमी को नीचे धक्का देकर पूरी घटना को दोहराया जहां से कथित तौर पर केतन अग्रवाल को खाई में धक्का दिया गया था। इस प्रक्रिया का मकसद घटना के क्रम, हालात और उपलब्ध साक्ष्यों का मिलान करना था ताकि जांच को और मजबूत किया जा सके।
1: ये लोहगढ़ किले के ऊपर जहाँ पे वो घटना हुई थी उस घटना पे एक डमी सीन क्रिएट करके वहाँ पे एक्यूज को ले जाया गया है, किस रूट से जाके कहाँ बैठे और क्या क्या प्रोसेस घड़ी और घटना कैसे घड़ी उसको रिक्रिएट जा रहा किया गया है, उसमें एक्यूज ने बता दिया है।
0: केतन हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस आज के रिक्रिएशन को काफी अहम मान रही है।
2: सर, सीन को रिक्रिएट किया गया, एग्जैक्टली किस तरीके से ये पूरा हुआ?
3: आज सिया ने बताया कि उसने इन्फॉर्मेशन दी जैसे हुआ था, वो जो भी डिस्कवरी ऑफ फैक्ट है उस हिसाब से हमने सीन रिक्रिएट किया है।
2: दोनों आरोपियों को आप लेके आए थे?
3: सिया थी,
2: चेतन चौधरी जो है उसका भी अभी फॉरेंसिक करना अहम है क्योंकि जिस मतलब जहां से उसने एंट्री की थी उसी तरीके का वॉक करना और वो सीसीटीवी में फॉरेंसिक एविडेंसेस लेना वो भी बाकी।
3: अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, आज सिया का रिक्रिएशन हुआ है, वो सीन रिक्रिएशन हमने क्योंकि आज तो हमने सीन रिक्रिएट किया गया है, उसने अभी जो इन्वेस्टिगेशन में सारी बातें सामने आएगी उस हिसाब से अभी आगे भी इन्वेस्टिगेशन करना है।
0: इस जांच पड़ताल के बीच दावा ये भी किया जा रहा है कि सिया और चेतन ने केतन को मारने का रिहर्सल भी किया था।
2: रिक्रिएशन वो सिर्फ सिया को लाए थे, अभी चेतन चौधरी का रिक्रिएशन होना बाकी है। लोहगढ़ किले के यहाँ हम बाहर खड़े हैं जहाँ थोड़ी देर पहले ही सीन रिक्रिएशन पूरा हुआ, फॉरेंसिक की टीम यहाँ मौजूद थी। सबसे अहम बात यह है कि सिया और चेतन ने दोनों ने मिलकर इसकी रिहर्सल की थी, इससे पहले प्रैक्टिस हुई थी और प्रैक्टिस के बाद इसको अंजाम दिया गया था और उसी के बाद आप देख सकते हो कि सीन रिक्रिएशन ये लोहगढ़ किले पे अक्सर संडे को किला शुरू रहता है लेकिन आज पर्यटकों के लिए और जितने विजिटर्स हैं उन सभी के लिए इसे बंद किया गया था। लेकिन यही सीढ़ियां हैं, इसी सीढ़ियों से तीनों ऊपर गए थे, चेतन चौधरी गया था, उसके बाद सिया और केतन अग्रवाल भी गया था और उसी के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया।
0: हालांकि ऐसे तमाम दावों पर पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, सभी तथ्यों को वेरीफाई किया जा रहा है।
2: किसने किया था, चेतन ने किया था या सिया ने?
3: देखिए आज तो हमने सीन रिक्रिएट किया गया, उसने अभी जो इन्वेस्टिगेशन में सारी बातें सामने आएगी उस हिसाब से अभी आगे भी इन्वेस्टिगेशन करना है।
2: देखो इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि दोनों ने रिहर्सल की थी, इससे पहले प्रैक्टिस हुई थी कहीं ना कहीं और फिर आके इसे अंजाम दिया गया।

0: तरीके से हुई थी और कैसे उसने एग्जीक्यूट किया?
1: वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आज का तो सीन रिक्रिएशन हो गया।
2: इस हत्याकांड में सिया और चेतन के सामने आए नए नए वीडियो और चेतन के परिजनों के आरोपों के बाद ट्विस्ट और बढ़ गया है। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार वाबले, लोहगढ़ आज तक।
3: फिर सिया ने केतन का कत्ल क्यों किया? क्या वो शादी से मना नहीं कर सकती थी? बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों को पच नहीं रहे। लिहाजा पुणे पुलिस सिया के साथ साथ उसके घर वालों से भी लगातार पूछताछ कर रही है।

0: सिया और केतन बस कुछ ही महीने बाद दोनों साथ फेरे लेने वाले थे। दोनों एक रिश्ते की डोर में बंधने वाले थे, लेकिन 18 जून को एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। लोहगढ़ के किले में ठीक किसी जगह पर केतन करीब 340 फीट गहरी खाई में जा गिरा और उसकी मौत हो गई। उस घटना के 5 दिन बाद यानी 23 जून को सिया की गिरफ्तारी हो जाती है और वहां से तब तक हादसा लगने वाला मामला पूरी तरह से अलग ट्रैक पर चला जाता है। कत्ल का आरोप लगता है। आरोप ये कि सिया ने अपने मंगेतर को मार डाला। इस गुनाह में सिया का साथ दिया उसके दोस्त चेतन चौधरी ने। वही चेतन जिसका सिया के साथ कई वीडियो सामने आ चुके हैं। एक वीडियो में दोनों क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखते दिखे हैं और सबसे अहम तो ये कि सिया और चेतन ने केतन की हत्या से ठीक एक दिन पहले यानी 17 जून को ही पुणे के कैफे में मुलाकात की थी। दोनों शाम करीब 4:30 बजे मिले थे। माना जा रहा है कि दोनों ने उसी कैफे में हत्या की फाइनल साजिश रची और उसे अंजाम देने पर करीब घंटे भर बात की थी। खुलासा ये भी हुआ है कि हत्या के पहले सिया ने लोहगढ़ किले का वीडियो यूट्यूब पर सर्च किया था और वहां के लोकेशन को कैफे में मुलाकात के दौरान चेतन के साथ साझा किया था। बात यहीं तक नहीं रुकी। सिया का बड़ा भाई साहिल गोयल भी चेतन को जानता था। दोनों ने साथ साथ क्रिकेट खेले थे। उससे जुड़ा वीडियो भी सामने आया है।
1: इस मामले में जो भी लोग जुड़े हुए उन सबसे हम पूछताछ कर रहे हैं।
2: कल साहिल से जो है 10 घंटे तक पूछताछ की गई है, लेकिन जो चेतन था और साहिल है, इन दोनों की दोस्ती कैसे हुई और कहां से शुरू हो गई, कहां से मुलाकात हुई और उनके बीच बातचीत शुरू हो गई थी?
1: चेतन और साहिल एक दूसरे को जानते थे और साथ में क्रिकेट भी खेलते थे और वो दोनों दोस्त भी थे
2: और इसी क्रिकेट ग्राउंड में सिया भी आती थी और उसकी वजह से जो है चेतन और सिया एक दूसरे को पहचानने लगे थे।
1: ये अभी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, हम हर तरीके से ये जारी है, उस हिसाब से हम आगे बताएंगे।
0: चेतन के साथ तमाम वीडियो और कनेक्शन सामने आने के बाद पुणे पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया। सिया के परिजनों को रडार पर लिया और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। 27 जून को पुलिस ने सिया के माता पिता को पूछताछ के लिए बुलाया। दोनों से करीब 12 घंटे तक सवाल जवाब किए। पुलिस ने परिवार से कई अहम सवाल पूछे जिनके जवाब अब जांच का अहम हिस्सा बन गए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान सिया के पिता प्रवीण गोयल और मां पूजा गोयल से पुलिस ने पूछा कि क्या सिया ने आपको चेतन के साथ अपने प्रेम संबंध के बारे में बताया था, क्या आपको इसकी जानकारी थी? परिजनों ने जवाब दिया कि सिया ने हमें अपने प्रेम संबंध के बारे में कभी नहीं बताया था, हमें इसकी जानकारी अब हुई है। पुलिस ने पूछा कि क्या आपने सिया पर केतन के साथ शादी करने का दबाव बनाया था, तो उन्होंने कहा कि हमने सिया पर शादी के लिए किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला था। 27 जून को हुई पूछताछ के दौरान अपने माता पिता के साथ सिया का भाई साहिल भी मौजूद था। साहिल से 26 जून को ही पुलिस ने केतन हत्याकांड को लेकर सवाल जवाब किए थे। शुक्रवार को साहिल गोयल से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उस पूछताछ में जांच से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई थी। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और आने वाले दिनों में कुछ और लोगों से पूछताछ की जा सकती है। जांच एजेंसियां पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। इतना ही नहीं

0: पुलिस ने आज सिर्फ सिया का सीन रिक्रिएट किया, अभी चेतन का सीन भी रिक्रिएट किया जा सकता है। जानकारी जुटाई जाएगी कि इतने बड़े अपराध को इन दोनों ने इतना सरल कैसे समझ लिया, कैसे इनके दिमाग में ये बात नहीं आई कि केतन को मार डालना विकल्प नहीं था, कैसे ये नहीं समझ पाए कि केतन के कत्ल के बाद इनका अंजाम क्या होगा। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार भावले, लोहगढ़, पुणे, आज तक।
1: केतन अग्रवाल का परिवार लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। उसके माता पिता की मांग पर फडणवीस सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई करने की मांग उठा ली है। उज्जवल निकम को विशेष सरकारी वकील नियुक्त किया गया, लेकिन इंसाफ की यह लड़ाई अभी लंबे चलने वाली है।
2: सिया ने जो किया है वो बहुत ही शॉकिंग है और मेरे लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था।
0: केतन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी यादें हैं। उसकी यादों में आंसू हैं, गम है, गुस्सा है। नाराजगी सिर्फ अग्रवाल परिवार में ही नहीं है, पुणे शहर में हर कोई सवाल हत्याकांड को लेकर उठा रहा है और कह रहा है कि दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए।
2: केतन की चाची लगती हूँ और सिया ने जो किया है वो बहुत ही शॉकिंग है और मेरे लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था। वो मुझे इतना ट्रस्ट था वो लड़की पे, उसने जो किया है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। और इसके आगे उसके एज की या फिर कोई भी एज की लड़की ये सब चीजें करने से पहले 100 बार डरनी चाहिए। ऐसा जस्टिस मिलना चाहिए हमारे केतन को। दिस इज ओनली व्हाट ऑल आई वांट।
3: आप चाहती हो किशन की बचपन से उसे देखा होगा, कुछ यादें साझा करना चाहिए?
2: सेकंड स्टैंडर्ड से ही देख रही हूँ मैं वो बच्चे को, इतना मासूम, इतना प्यारा लड़का। मतलब आई वॉज वेरी हैप्पी कि उसका मतलब रिश्ता पक्का हो गया, बट वो लड़की ने जो किया दैट वॉज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। और जो स्टूपिड रीजंस उसने दिए है कि बाल्ड है और तोतला बोलता है, वो सब बातें तो जब रिश्ता पक्का हुआ था तो वो सब क्लियर हो गई थी। और वो ये सब हरकतें कर रही है, ये सब झूठ बोल रही है, दिस इज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग फॉर एवरीबडी इन द फैमिली।
0: केतन के पिता विशाल अग्रवाल अपील कर रहे हैं कि उनके बेटे के इंसाफ के लिए 18 जून को जो लोग लोहगढ़ किले में मौजूद थे वो गवाही के लिए आगे आएं। विशाल अग्रवाल बता रहे हैं कि वारदात वाले दिन कई लोगों ने उन्हें फोन किया था।
4: सिर्फ एक ही अपील करूंगा, मेरा 26 साल का बेटा आज जिस भी वजह से उन्होंने बिना कारण से मार डाला, जिसको कारण पता नहीं चला, मेरे बच्चे की कहीं पे भी एक गलती नहीं थी। मैं तो शादी करने चला था, उसकी घर में बेटी बहू लाने चला था, मुझे नहीं पता था कि मेरा बच्चा ही खो दूंगा मैं। तो मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि उसको जस्टिस मिले, उसके अपराधियों को फांसी की सजा मिले, यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है।
0: अभी कई सवाल हैं जो सिया और चेतन के अंदर दबे हुए हैं, जिन्हें पुलिस को पता लगाना है। इस मामले में सबसे अहम कड़ी है दोनों का मोबाइल, जिससे कई जानकारी सामने आ सकती है। जैसे सिया और चेतन के बीच कब से बातचीत चल रही थी, दोनों के बीच किस तरह की बातचीत हो रही थी, क्या मर्डर की प्लानिंग की बात भी फोन के जरिए की गई? जांच ने तब नया मोड़ लिया जब जांचकर्ताओं को पता चला कि आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी ने कथित तौर पर अपने फोन से अपनी डिजिटल बातचीत मिटा दी थी। पुलिस के मुताबिक दोनों डिवाइस से व्हाट्सएप चैट, इंस्टाग्राम एक्टिविटी और अन्य डिलीट किए गए डेटा की अब फॉरेंसिक एनालिसिस के जरिए जाँच की जा रही है। शक है कि चैट को लोहगढ़ की घटना से पहले और बाद में डिलीट किया गया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपियों ने न केवल बातचीत हटाई बल्कि उसे अपने डिवाइस के रिसाइकल बिन से भी साफ कर दिया, जिससे फोरेंसिक रिकवरी जरूरी हो गई है।
5: जो उसका मोबाइल हमने ताबे में लिया पंचनामे से, और अभी हम उसका FSL को भेजेंगे और उसका जो भी डाटा है उसमें हम एनालिसिस करेंगे।
6: बताया जा रहा है कि उसकी जो चैटिंग है वो डिलीट की गई है, कुछ इस सामने आया है ऐसा कुछ?
5: अभी तक तो हमारे अभी पंचनामा से क्या है, हम FSL में वो क्यूरी वो पूछेंगे।
0: कॉल डिटेल रिकॉर्ड से दोनों के बीच लगातार संपर्क का पता चला है। सिया गोयल और चेतन चौधरी ने जनवरी से लेकर अब तक 2004 कॉल किए, जिनकी कुल अवधि लगभग 238 घंटे थी। ऐसे में मोबाइल की जांच से कई राज सामने आ सकते हैं। वैसे सिया के पिता प्रवीण गोयल और मां पूजा गोयल का दावा है कि 18 जून को लोहगढ़ जाने का प्लान सिया का नहीं था। केतन ने ही वीडियो कॉल करके सिया को लोहगढ़ बुलाया था। सिया के परिजन यहां तक दावा कर रहे हैं कि अगर सिया ने कुछ गलत किया है तो उसे भी लोहगढ़ किले से धक्का दे दो।
7: मैं तो कहता हूँ अगर इसमें जो भी आरोपी हो, जो भी, जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है, अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूँगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहाँ से धक्का देके उसे भी ख़त्म कर दिया जाए। अब इससे ज़्यादा एक बाप और कुछ नहीं बोल सकता।
8: अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहाँ से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहाँ से ही उस दोषी को गिराया जाए, जो भी दोषी निकले, मेरी बेटी चाहे उसमें दोषी हो, ठीक है उसे फांसी की सजा दो या लोहगढ़ जाके वहीं से ही गिरा दे।
0: पहले चेतन चौधरी ने दावा किया था कि वो वारदात के समय चट्टान के पास मौजूद नहीं था, लेकिन पूछताछ के दौरान उसके बयान में लगातार विरोधाभास सामने आए। जब पुलिस ने सख्ती बरती तो सिया और चेतन ने अपने अपराध स्वीकार कर लिया। एक थ्योरी ये भी आ रही है कि केतन विग लगाता था, और ये भी पता चला है कि सिया केतन के विग लगाने को पसंद नहीं करती थी। हालांकि इस थ्योरी को पुलिस खारिज कर रही है।
5: अभी जो है इन्वेस्टिगेशन का जो मोटिव है वो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम जो भी कंक्लूजन पे आएंगे तो अब हम बताएंगे।
6: जो विक का मामला बोल रहे हैं वो सच है या झूठ है?
5: अभी तक इन्वेस्टिगेशन में हमें ये मामला अभी तक आपसे ही अभी पता चल रहा है।
0: सवाल कई हैं, ऐसे में पूरी संभावना है कि सच तक पहुंचने के लिए अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। कृष्णा पांचाल के साथ ओमकार वाबले, पुणे आज तक।
1: आज सड़क हादसों के सहारनपुर में सड़क हादसे का दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है। इस हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दूसरा मामला हिट एंड रन का है, जहां अहमदाबाद में एक कार सवार को कार सवार ने बाइक को टक्कर मार दी।
0: ये तस्वीरें दहला देने वाली है। एक कार को पीछे से दूसरी कार ने भयानक टक्कर मारी। तस्वीरें सहारनपुर में दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर रामपुर मनिहारन थाना क्षेत्र की हैं। बताया जा रहा है कि ड्राइवर कट पार कर आगे निकल गया था और निर्माणाधीन हाईवे की ओर लौटने के लिए कार बैक कर रहा था। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रही स्कॉर्पियो ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर कई मीटर तक घिसटती चली गई, जबकि स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में चार लोगों की जान चली गई, जबकि तीन बुरी तरह घायल। अब दूसरी तस्वीर देखिए, यह अहमदाबाद की तस्वीरें हैं। तेज रफ्तार कार ने यहां बाइक सवार को टक्कर मार दी। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि शहर के व्यास वाड़ी चार रास्ता पर यह तेज रफ्तार सफेद कार इधर से आती है, सामने से एक बाइक पर तीन युवा आ रहे हैं। अचानक कार ने बाइक को टक्कर मारी, टक्कर मारकर कार सवार फरार हो गया, जबकि तीनों युवकों की हालत गंभीर है। आज तक ब्यूरो।
1: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

अलावा चोरी को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी को फिर घेरा, कहा इनके लिए नेशन नहीं डोनेशन। पर सीएम योगी ने दी चुनौती, बोले कृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर बोले सपा। पेपर लीक के विरोध में दिल्ली में यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट, मांगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। मुंबई में भी शिक्षा मंत्री के घर के बाहर हल्ला बोल। केतन अग्रवाल हत्याकांड में क्राइम सीन रिक्रिएट, मुख्य आरोपी सिया और चेतन को लेकर लोहागढ़ के लिए पहुंची पुलिस, जानबूझकर केतन का पासपोर्ट गायब करने की भी जानकारी।

खास सम्मान। आयरलैंड से दूसरे टी20 में भी शिकस्त के बाद 0-2 से सीरीज हारा वर्ल्ड चैंपियन भारत। 155 रन के लक्ष्य से एक रन पीछे रह गई टीम इंडिया। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के चढ़ावे में चोरी का मामला लगातार गहरा था जा रहा है। जांच के दायरे में अब सिर्फ आरोपी नहीं बल्कि उनसे जुड़े हुए लोग, उनकी आर्थिक गतिविधियां भी आ गई हैं। अयोध्या पुलिस ने इस मामले में नामजद कई आरोपियों के घर पर पहुंचकर उनके परिजनों से पूछताछ की है।

0: रामलला के चढ़ावे से चोरी के मामले में जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एसआईटी की जांच के बाद जहां राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कुछ लोगों के इस्तीफे सामने आए, वहीं अब पुलिस भी कार्रवाई तेज करती नजर आ रही है। अयोध्या पुलिस ने मामले में नामजद आरोपियों के घर पहुंचकर उनके परिजनों से पूछताछ की।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों के घर पर, जो अयोध्या के रहने वाले हैं, उनके घरों पर छापेमारी की जा रही है। मैं इस समय पर अयोध्या में ही रह रहे रमाशंकर मिश्रा, जो आरोपी थे जिनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, रमाशंकर मिश्रा के घर पर मौजूद हूँ। उनके परिजनों से, उसकी भाभी, बहन, उनके पिता से पूछताछ की जा रही है। ये रमाशंकर मिश्रा घर है जो राम मंदिर में नोट गिनने के काम में जुड़ा हुआ था। बता दें कि अयोध्या पुलिस ने इन सभी आरोपियों के घर से लगभग 80 लाख रुपए बरामद किए थे और इनको जुडिशियल कस्टडी में सोमवार तक के लिए भेज दिया गया था, लेकिन अब कल सोमवार को दोबारा जुडिशियल कस्टडी पर सुनवाई होनी है। उससे पहले पुलिस के द्वारा ये जांच की जा रही है, पड़ताल की जा रही है, इन सभी जो आरोपी हैं उनके घर वालों से पूछताछ की जा रही है कि ये लोग कब आते थे, कैसे आते थे, क्या क्या खरीदा गया।
0: अयोध्या पुलिस ने टिन्नू यादव, मनीष यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा के घरों पर पहुंचकर उनके परिवार के लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने आरोपियों के घर आने जाने, उनके संपर्कों और गतिविधियों से जुड़ी जानकारी जुटाई। आरोपी रमाशंकर मिश्रा के पिता अयोध्या के एक मंदिर में पुजारी हैं। पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की
2: जांच के लिए, और वो यहाँ रहते हैं कि नहीं रहते हैं, कहाँ वो हैं, तो हम बताए कि कमरा पे अलग लिए रहते हैं, दो ढाई साल से यहाँ रहते नहीं हैं, आना जाना भी यहाँ का नहीं है, एक दिन कभी इस मंदिर के अंदर पाँव नहीं रखते हैं।
1: कब से नहीं आया?
2: दो ढाई साल हो गए यहाँ नहीं आया। हाँ, दो साल।
1: तो राम मंदिर में कब से काम कर रहा था, क्या काम करता था रमाशंकर?
2: 5-6 साल हो गए, तब वहाँ पैसा गाने में बताओ था गाना कर्मचारी।
1: अच्छा, हाँ। कभी पैसा वैसा ज्यादा देखा आपने रमाशंकर के पास? बहुत
2: कभी नहीं, पैसा तो मांगा रहा तो पैसा पाई नहीं है? पैसा मांग लेता है कि दे दो कहीं जरूरत लगे।
1: पुलिस तो कह रही है कि सब मिलके 80 लाख रुपया चोरी कर लिए चढ़ावे से।
2: कुछ छोड़िए कि नया पैसा यहाँ कहूँ देखे ना आया हुआ।
0: रमाशंकर मिश्रा के परिजनों का कहना है कि वो लंबे समय से घर नहीं आया है और किराए के मकान में रह रहा था।
3: हमको ना वो करे हैं ना हमको दिया है, कभी हमसे उनसे बनता ही नहीं था, कभी वो 10 रुपया हमको दिए ही नहीं थे। मुझको मेरे पति का सहारा है, बस कोई का सहारा नहीं है।
1: तो यहाँ रमाशंकर के बारे में और क्या, घर से कुछ पैसा वैसा ले गए, कुछ बरामदगी दिखाई है, घर से मिला है?
3: कुछ नहीं मिला है सर, केवल कागजात मिला है, वही लेकर गए हैं, आधार नंबर, खाता नंबर।
0: पुलिस के मुताबिक अब तक इस मामले में करीब 80 लाख रुपए की बरामदगी की जा चुकी है, इनमें से करीब 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से मिलने की बात सामने आई है।
1: टिन्नू यादव के इस हॉस्टल से ही, दुर्गापुरी कॉलोनी का ये अयोध्या में ही दुर्गापुरी कॉलोनी ये हॉस्टल है, और इस हॉस्टल में यूं तो यहाँ अयोध्या विश्वविद्यालय के आसपास के कॉलेज के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर दो कमरे हैं जो टिन्नू यादव ने अपने निजी यूज के लिए रखे हैं। कहने को तो दोनों कमरे पूजा घर हैं, उसका अपना कमरे उनके कब्जे में है, लेकिन कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद, जब गुरुवार देर रात टिन्नू यादव को अयोध्या पुलिस ने FIR दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया, तो शुक्रवार की सुबह उसको यहां लाया गया, और पुलिस के अनुसार जो दस्तावेज जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है कि लगभग 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से बरामद हुए।
0: इस मामले में गिरफ्तार किए गए अनुकल्प मिश्रा पर भी जांच एजेंसियों की नजर है। पुलिस के अनुसार वो नोटों की गिनती की व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। जांच के दौरान उसकी संपत्तियों और वित्तीय लेनदेन की भी पड़ताल की जा रही है। 2 साल पहले खरीदे गए उसके मकान पर भी आज तक की टीम पहुंची।
4: मेरे भाई को फंसाया जा रहा है, मेरी मुझ में ही है, उनसे शादी हुई थी चाचा की 10 साल से, इनका तेज चल रहा है, उनका मैटर चाचा चाची का है, वो अलग जाने।
0: उधर राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर CCTV कंट्रोल रूम की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार और BJP पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि CCTV बंद करके चोरी को अंजाम दिया गया, साथ ही ये भी कहा कि BJP की प्राथमिकता देश नहीं बल्कि चंदा है।
5: अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे, आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आज जब राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है, तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है।
6: इनकी निगाहें नेशन पे नहीं है, डोनेशन पर हैं। जो लोग ये कहते थे नेशन फर्स्ट, उनके लिए लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट है।
0: रामलला के चढ़ावे में गबन के इस मामले में पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, बड़ी रकम बरामद होने का दावा किया गया है और आरोपियों से जुड़े आर्थिक पहलुओं की भी जांच की जा रही है। साथ ही मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। ऐसे में सभी की नज़र अब पुलिस जाँच पर, आगे होने वाली कानूनी कार्रवाई पर टिकी हुई है। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।
7: पुणे में केतन अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी जांच की है। आरोपी नंबर एक और केतन के मंगेतर सिया को लेकर लोहगढ़ किले में लेकर पुलिस पहुंची जांच पड़ताल की, लेकिन जहां से केतन को धक्का दिया गया और किन परिस्थितियों में दिया गया, उस पूरे के पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया।
0: सिया ने कैसे चेतन के साथ मिलकर केतन को मारा, कैसे उसने कत्ल के लिए लोहगढ़ का किला चुना, कैसे वो केतन को लेकर लोहगढ़ के किले तक पहुंची, कैसे उसने चेतन को कत्ल का इशारा किया, कैसे केतन चेतन और सिया की साजिश नहीं समझ पाया, कैसे इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया, इन सारे सवालों के जवाब तलाशने के लिए ये कवायद हो रही है। जिसका चेहरा ढका हुआ है वो है सिया, और ये वही लोहगढ़ का किला है जहां सिया को लेकर पुलिस पहुंची है।

0: लोहगढ़ किले में 18 जून को जो कुछ हुआ था उसी को दोहराने की कोशिश आज पुणे पुलिस ने की है। पहाड़ी पर स्थित किले के उसी जगह पर पुलिस की पड़ताल चल रही है। ये तस्वीरें धुंधली हैं, लेकिन देश को सन्न कर देने वाली साजिश की तस्वीर साफ करने के लिए पुलिस ने यह अहम कदम उठाया है। इन धुंधली तस्वीरों में सिया गोयल है, पुणे पुलिस की टीम है और साथ में है क्राइम सीन को रिक्रिएट करने वाले एक्सपर्ट। केतन अग्रवाल हत्याकांड की पड़ताल का ये अहम पड़ाव था। कई दिनों से माना जा रहा था कि पुणे पुलिस लोहगढ़ के किले में पहुंचकर क्राइम सीन को रिक्रिएट कर सकती है। तमाम कयासबाजी के बाद पुणे पुलिस की टीम सुबह 6:30 बजे ही लोहगढ़ किले में आज दस्तक दे दिया। पुलिस सिया को लेकर किले पहुंची। किला का गेट बंद कर दिया गया, पर्यटकों को रोक दिया गया, हर किसी के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई। सुबह 6:30 बजे सिया को लेकर पुलिस ने किले में चढ़ाई शुरू की। करीब घंटे भर बाद पुलिस क्राइम सीन पर पहुंच गई। जांच दल के साथ चेतन की कदकाठी का एक डमी भी था। क्राइम सीन पर पहुंचने के बाद पुलिस ने सिया से कई सवाल किए। 18 जून को क्या क्या हुआ था, केतन और चेतन कहां थे, किसने धक्का दिया, कैसे तीनों यहां तक पहुंचे, ऐसे एक एक सवाल के जवाब पुलिस ने सिया से पूछे और उसके जवाबों के मुताबिक ही क्राइम सीन की बारीकी से जांच पड़ताल की। फिर जिस जगह से केतन को धक्का दिया गया था पुलिस ने उस जगह से सिया के बयानों के हिसाब से क्राइम सीन रिक्रिएट किया। रिक्रिएशन के दौरान पुलिस ने उसी स्थान से डमी को नीचे धक्का देकर पूरी घटना को दोहराया जहां से कथित तौर पर केतन अग्रवाल को खाई में धक्का दिया गया था। इस प्रक्रिया का मकसद घटना के क्रम, हालात और उपलब्ध साक्ष्यों का मिलान करना था ताकि जांच को और मजबूत किया जा सके।
1: ये लोहगढ़ किले के ऊपर जहाँ पे वो घटना हुई थी उस घटना पे एक डमी सीन क्रिएट करके वहाँ पे एक्यूज को ले जाया गया है, किस रूट से जाके कहाँ बैठे और क्या क्या प्रोसेस घड़ी और घटना कैसे घड़ी उसको रिक्रिएट जा रहा किया गया है, उसमें एक्यूज ने बता दिया है।
0: केतन हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस आज के रिक्रिएशन को काफी अहम मान रही है।
2: सर, सीन को रिक्रिएट किया गया, एग्जैक्टली किस तरीके से ये पूरा हुआ?
3: आज सिया ने बताया कि उसने इन्फॉर्मेशन दी जैसे हुआ था, वो जो भी डिस्कवरी ऑफ फैक्ट है उस हिसाब से हमने सीन रिक्रिएट किया है।
2: दोनों आरोपियों को आप लेके आए थे?
3: सिया थी,
2: चेतन चौधरी जो है उसका भी अभी फॉरेंसिक करना अहम है क्योंकि जिस मतलब जहां से उसने एंट्री की थी उसी तरीके का वॉक करना और वो सीसीटीवी में फॉरेंसिक एविडेंसेस लेना वो भी बाकी।
3: अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, आज सिया का रिक्रिएशन हुआ है, वो सीन रिक्रिएशन हमने क्योंकि आज तो हमने सीन रिक्रिएट किया गया, उसने अभी जो इन्वेस्टिगेशन में सारी बातें सामने आएगी उस हिसाब से अभी आगे भी इन्वेस्टिगेशन करना है।
0: इस जांच पड़ताल के बीच दावा ये भी किया जा रहा है कि सिया और चेतन ने केतन को मारने का रिहर्सल भी किया था।
2: रिक्रिएशन वो सिर्फ सिया को लाए थे, अभी चेतन चौधरी का रिक्रिएशन होना बाकी है। लोहगढ़ किले के यहाँ हम बाहर खड़े हैं जहाँ थोड़ी देर पहले ही सीन रिक्रिएशन पूरा हुआ, फॉरेंसिक की टीम यहाँ मौजूद थी। सबसे अहम बात यह है कि सिया और चेतन ने दोनों ने मिलकर इसकी रिहर्सल की थी, इससे पहले प्रैक्टिस हुई थी और प्रैक्टिस के बाद इसको अंजाम दिया गया था और उसी के बाद आप देख सकते हो कि सीन रिक्रिएशन ये लोहगढ़ किले पे अक्सर संडे को किला शुरू रहता है लेकिन आज पर्यटकों के लिए और जितने विजिटर्स हैं उन सभी के लिए इसे बंद किया गया था। लेकिन यही सीढ़ियां हैं, इसी सीढ़ियों से तीनों ऊपर गए थे, चेतन चौधरी गया था, उसके बाद सिया और केतन अग्रवाल भी गया था और उसी के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया।
0: हालांकि ऐसे तमाम दावों पर पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, सभी तथ्यों को वेरीफाई किया जा रहा है।
2: किसने किया था, चेतन ने किया था, फिजिया ने?
3: देखिए आज तो हमने सीन रिक्रिएट किया गया, उसने अभी जो इन्वेस्टिगेशन में सारी बातें सामने आएगी उस हिसाब से अभी आगे भी इन्वेस्टिगेशन करना है।
2: देखो इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि दोनों ने रिहर्सल की थी, इससे पहले प्रैक्टिस हुई थी कहीं ना कहीं और फिर आके इसे अंजाम दिया गया। तो क्या या ये अभी कह रही है कि वो प्रैक्टिस किस तरीके से हुई थी और कैसे उसने एग्जीक्यूट किया,
3: वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आज का तो सीन रिक्रिएशन हो गया।
0: इस हत्याकांड में सिया और चेतन के सामने आए नए नए वीडियो और केतन के परिजनों के आरोपों के बाद ट्विस्ट और बढ़ गया है। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार वाबले, लोहगढ़ आज तक।
4: फिर सिया ने केतन का कत्ल क्यों किया? क्या वो शादी से मना नहीं कर सकती थी? बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों को पच नहीं रहे, लिहाजा पुणे पुलिस सिया के साथ साथ उसके घर वालों से भी लगातार पूछताछ कर रही है।

0: सिया और केतन बस कुछ ही महीने बाद दोनों साथ फेरे लेने वाले थे। दोनों एक रिश्ते की डोर में बंधने वाले थे, लेकिन 18 जून को एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। लोहगढ़ के किले में ठीक किसी जगह पर केतन करीब 340 फीट गहरी खाई में जा गिरा और उसकी मौत हो गई। उस घटना के 5 दिन बाद यानी 23 जून को सिया की गिरफ्तारी हो जाती है और वहां से तब तक हादसा लगने वाला मामला पूरी तरह से अलग ट्रैक पर चला जाता है। कत्ल का आरोप लगता है। आरोप ये कि सिया ने अपने मंगेतर को मार डाला। इस गुनाह में सिया का साथ दिया उसके दोस्त चेतन चौधरी ने। वही चेतन जिसका सिया के साथ कई वीडियो सामने आ चुके हैं। एक वीडियो में दोनों क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखते दिखे हैं और सबसे अहम तो ये कि सिया और चेतन ने केतन की हत्या से ठीक एक दिन पहले यानी 17 जून को ही पुणे के कैफे में मुलाकात की थी। दोनों शाम करीब 4:30 बजे मिले थे। माना जा रहा है कि दोनों ने उसी कैफे में हत्या की फाइनल साजिश रची और उसे अंजाम देने पर करीब घंटे भर बात की थी। खुलासा ये भी हुआ है कि हत्या के पहले सिया ने लोहगढ़ किले का वीडियो यूट्यूब पर सर्च किया था और वहां के लोकेशन को कैफे में मुलाकात के दौरान चेतन के साथ साझा किया था। बात यहीं तक नहीं रुकी। सिया का बड़ा भाई साहिल गोयल भी चेतन को जानता था। दोनों ने साथ साथ क्रिकेट खेले थे। उससे जुड़ा वीडियो भी सामने आया है।
1: इस मामले में जो भी लोग जुड़े हुए उन सबसे हम पूछताछ कर रहे हैं।
2: कल साहिल से जो है 10 घंटे तक पूछताछ की गई है, लेकिन जो चेतन था और साहिल है, इन दोनों की दोस्ती कैसे हुई और कहां से शुरू हो गई, कहां से मुलाकात हुई और उनके बीच बातचीत शुरू हो गई थी?
1: चेतन और साहिल एक दूसरे को जानते थे, वो साथ में क्रिकेट भी खेलते थे और वो दोनों दोस्त भी थे
2: और इसी क्रिकेट ग्राउंड में सिया भी आती थी और उसकी वजह से जो है चेतन और सिया एक दूसरे को पहचानने लगे थे।
1: यह भी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, हम हर तरीके से ये जारी है, उस हिसाब से हम आगे बताएंगे।
0: चेतन के साथ तमाम वीडियो और कनेक्शन सामने आने के बाद पुणे पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया। सिया के परिजनों को रडार पर लिया और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। 27 जून को पुलिस ने सिया के माता पिता को पूछताछ के लिए बुलाया। दोनों से करीब 12 घंटे तक सवाल जवाब किए। पुलिस ने परिवार से कई अहम सवाल पूछे जिनके जवाब अब जांच का अहम हिस्सा बन गए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान सिया के पिता प्रवीण गोयल और मां पूजा गोयल से पुलिस ने पूछा कि क्या सिया ने आपको चेतन के साथ अपने प्रेम संबंध के बारे में बताया था, क्या आपको इसकी जानकारी थी? परिजनों ने जवाब दिया कि सिया ने हमें अपने प्रेम संबंध के बारे में कभी नहीं बताया था, हमें इसकी जानकारी अब हुई है। पुलिस ने पूछा कि क्या आपने सिया पर केतन के साथ शादी करने का दबाव बनाया था, तो उन्होंने कहा कि हमने सिया पर शादी के लिए किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला था। 27 जून को हुई पूछताछ के दौरान अपने माता पिता के साथ सिया का भाई साहिल भी मौजूद था। साहिल से 26 जून को ही पुलिस ने केतन हत्याकांड को लेकर सवाल जवाब किए थे। शुक्रवार को साहिल गोयल से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उस पूछताछ में जांच से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई थी। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और आने वाले दिनों में कुछ और लोगों से पूछताछ की जा सकती है। जांच एजेंसियां पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। इतना ही नहीं, पुलिस ने आज सिर्फ सिया का सीन रिक्रिएट किया, अभी चेतन का सीन भी रिक्रिएट किया जा सकता है। जानकारी जुटाई जाएगी कि इतने बड़े अपराध को इन दोनों ने इतना सरल कैसे समझ लिया, कैसे इनके दिमाग में ये बात नहीं आई कि केतन को मार डालना विकल्प नहीं था, कैसे ये नहीं समझ पाए कि केतन के कत्ल के बाद इनका अंजाम क्या होगा। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार भावले, लोहगढ़, पुणे, आज तक।
3: केतन अग्रवाल का परिवार लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। उसके माता पिता की मांग पर फडणवीस सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई करने की मांग उठा ली है। उज्जवल निकम को विशेष सरकारी वकील नियुक्त किया गया, लेकिन इंसाफ की यह लड़ाई अभी लंबे चलने वाली है।
4: जो किया है वो बहुत ही शॉकिंग है और मेरे लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था।
0: केतन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी यादें हैं। उसकी यादों में आंसू हैं, गम है, गुस्सा है। नाराजगी सिर्फ अग्रवाल परिवार में ही नहीं है, पुणे शहर में हर कोई सवाल हत्याकांड को लेकर उठा रहा है और कह रहा है कि दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए।
4: केतन की चाची लगती हूँ और सिया ने जो किया है वो बहुत ही शॉकिंग है और मेरे लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था। वो मुझे इतना ट्रस्ट था वो लड़की पे, उसने जो किया है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। और इसके आगे उसके एज की या फिर कोई भी एज की लड़की ये सब चीजें करने से पहले 100 बार डरनी चाहिए। ऐसा जस्टिस मिलना चाहिए हमारे केतन को। दिस इज ओनली ऑल आई वॉन्ट।
5: आप चाहती हो किशन की बचपन से उसे देखा होगा, कुछ यादें साझा करना चाहिए?
4: सेकंड स्टैंडर्ड से ही देख रही हूँ मैं वो बच्चे को, इतना मासूम, इतना प्यारा लड़का। मतलब आई वॉज वेरी हैप्पी कि उसका मतलब रिश्ता पक्का हो गया, बट वो लड़की ने जो किया दैट वॉज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। और जो स्टूपिड रीजंस उसने दिए है कि बाल्ड है और तोतला बोलता है, वो सब बातें तो जब रिश्ता पक्का हुआ था तो सब क्लियर हो गई थी। और वो ये सब हरकतें कर रही है, ये सब झूठ बोल रही है, दिस इज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग फॉर एवरीबॉडी इन द फैमिली।
0: केतन के पिता विशाल अग्रवाल अपील कर रहे हैं कि उनके बेटे के इंसाफ के लिए 18 जून को जो लोग लोहगढ़ किले में मौजूद थे वो गवाही के लिए आगे आए। विशाल अग्रवाल बता रहे हैं कि वारदात वाले दिन कई लोगों ने उन्हें फोन किया था।
6: सिर्फ एक ही अपील करूंगा, मेरा 26 साल का बेटा आज जिस भी वजह से उन्होंने बिना कारण से मार डाला, जिसको कारण पता नहीं चला, मेरे बच्चे की कहीं पे भी एक गलती नहीं थी। मैं तो शादी करने चला था, उसकी घर में बेटी बहू लाने चला था, मुझे नहीं पता था कि मेरा बच्चा ही खो दूंगा मैं। तो मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि उसको जस्टिस मिले, उसके अपराधियों को फांसी की सजा मिले, यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है।
0: अभी कई सवाल हैं जो सिया और चेतन के अंदर दबे हुए हैं, जिन्हें पुलिस को पता लगाना है। इस मामले में सबसे अहम कड़ी है दोनों का मोबाइल, जिससे कई जानकारी सामने आ सकती है। जैसे सिया और चेतन के बीच कब से बातचीत चल रही थी, दोनों के बीच किस तरह की बातचीत हो रही थी, क्या मर्डर की प्लानिंग की बात भी फोन के जरिए की गई। जांच ने तब नया मोड़ लिया जब जांचकर्ताओं को पता चला कि आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी ने कथित तौर पर अपने फोन से अपनी डिजिटल बातचीत मिटा दी थी। पुलिस के मुताबिक दोनों डिवाइस से व्हाट्सएप चैट, इंस्टाग्राम एक्टिविटी और अन्य डिलीट किए गए डेटा की अब फोरेंसिक एनालिसिस के जरिए जाँच की जा रही है। शक है कि चैट को लोहगढ़ की घटना से पहले और बाद में डिलीट किया गया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपियों ने न केवल बातचीत हटाई बल्कि उसे अपने डिवाइस के रिसाइकल बिन से भी साफ कर दिया, जिससे फोरेंसिक रिकवरी जरूरी हो गई है।
1: जो उसका मोबाइल हमने ताबे में लिया पंचनामे से, और अभी हम उसका एफएसएल को भेजेंगे और उसका जो भी डाटा है उसमें हम एनालिसिस करेंगे।
2: बताया जा रहा है कि उसकी जो चैटिंग है वो डिलीट की गई है, कुछ इस सामने आया है ऐसा कुछ?
1: अभी तक तो हमारे अभी पंचनामे से क्या है, हम एफएसएल में वो क्यूरी वो पूछेंगे।
0: कॉल डिटेल रिकॉर्ड से दोनों के बीच लगातार संपर्क का पता चला है। सिया गोयल और चेतन चौधरी ने जनवरी से लेकर अब तक 2004 कॉल किए, जिनकी कुल अवधि लगभग 238 घंटे थी। ऐसे में मोबाइल की जांच से कई राज सामने आ सकते हैं। वैसे सिया के पिता प्रवीण गोयल और मां पूजा गोयल का दावा है कि 18 जून को लोहगढ़ जाने का प्लान सिया का नहीं था। केतन ने ही वीडियो कॉल करके सिया को लोहगढ़ बुलाया था। सिया के परिजन यहां तक दावा कर रहे हैं कि अगर सिया ने कुछ गलत किया है तो उसे भी लोहगढ़ किले से धक्का दे दो।
7: मैं तो कहता हूँ अगर इसमें जो भी आरोपी हो, जो भी, जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है, अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूँगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहाँ से धक्का दे के उसे भी ख़त्म कर दिया जाए। अब इससे ज़्यादा एक बाप और कुछ नहीं बोल सकता।
8: अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहाँ से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे है वहाँ से ही उस दोषी को गिराया जाए। जो भी दोषी निकले, मेरी बेटी चाहे उसमें दोषी हो, ठीक है, उसे फांसी की सजा दो या लोहगढ़ जाके वहीं से ही गिरा दे।
0: पहले चेतन चौधरी ने दावा किया था कि वो वारदात के समय चट्टान के पास मौजूद नहीं था, लेकिन पूछताछ के दौरान उसके बयान में लगातार विरोधाभास सामने आए। जब पुलिस ने सख्ती बरती तो सिया और चेतन ने अपने अपराध स्वीकार कर लिया। एक थ्योरी ये भी आ रही है कि केतन विग लगाता था, और ये भी पता चला है कि सिया केतन के विग लगाने को पसंद नहीं करती थी। हालांकि इस थ्योरी को पुलिस खारिज कर रही है।
1: अभी जो है इन्वेस्टिगेशन का जो मोटिव है वो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम जो भी कंक्लूजन पे आएंगे तो अब हम बताएंगे।
2: जो विक का मामला बोल रहे हैं वो सच है या झूठ है?
1: अभी तक इन्वेस्टिगेशन में हमें ये मामला अभी तक आपसे ही अभी पता चल रहा है।
0: सवाल कई हैं, ऐसे में पूरी संभावना है कि सच तक पहुंचने के लिए अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। कृष्णा पांचाल के साथ ओमकार वाबले, पुणे आज तक।
3: अब खबर मुहर्रम जुलूस से जुड़े हुए हैं। मुंबई में जुलूस के दौरान एक खौफनाक मामला सामने आया। एक आरोपी द्वारा जहरीले पदार्थ को पेन किलर बताकर बांटने की कोशिश की गई। पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और अब एक्शन लिया जा रहा है।
9: मुंबई में मुहर्रम पर बड़ी साजिश रची गई थी, लेकिन मुहर्रम के जुलूस से ठीक पहले उस साजिश का खुलासा हो गया। एक ऐसी साजिश जिसे सुनकर मुंबई सहम गई है, पूरा महाराष्ट्र भी सहमा है और देश भी हैरान है। यह साजिश थी हजारों लोगों की जान लेने की, जहर देकर उन्हें मारने की। मुंबई में मुहर्रम के जुलूस में शामिल लोगों को वो जहरीला कैप्सूल बांटा जा रहा था, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने इस बड़ी और खौफनाक साजिश का राज फाश कर दिया। एक आरोपी फैयाज प्रेमजी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया और उससे 14,900 कैप्सूल बरामद किए। जांच में सामने आया है कि आरोपी फैयाज बीबीए कर चुका है और वो पुणे में पेंट का बिजनेस करता है। उसने 30,000 खाली कैप्सूल के ऑर्डर किए थे, साथ ही 50 किलो फास्फोरस भी मंगवाए थे।
10: एक संशयित व्यक्ति मुंबई पुलिस की टीम को मिला जो कि वहां पे कैप्सूल बांट रहा था। उसके पास कोई परमिशन नहीं थी, तो मुंबई पुलिस ने उसको टोक के पूछताछ शुरू करी तो और डाउट बढ़ा। तो उसके बाद उसके पास से जितनी भी कैप्सूल्स का जो स्टॉक था वो जब्त किया गया।
9: पुलिस की माने तो गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने कबूला कि वो पेनकिलर कैप्सूल बताकर मुहर्रम के जुलूस में उसे बांट रहा था। आरोपी से जो कैप्सूल बरामद हुए उसमें जिंक फॉस्फाइड पाया गया। गिरफ्तार फैयाज प्रेमजी ने कई लोगों को उसने कैप्सूल दिए थे। कैप्सूल खाने से एक युवक की तबीयत भी बिगड़ी। जिंक फॉस्फाइड ऐसा केमिकल है जिसकी वजह से तेज उल्टी और पेट में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, चक्कर आना और बेहोशी, ब्लड प्रेशर तेजी से गिरना, दिल की धड़कन अनियमित होना, लीवर और किडनी फेल होने का खतरा रहता है। पुलिस अब जांच में जुटी है कि कहीं इस वारदात का आतंकी कनेक्शन तो नहीं, क्योंकि आरोपी फैयाज पहले ईरान और इराक जा चुका है। आरोपी के विदेशी संपर्कों की पड़ताल भी जारी है। दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
3: सड़क हादसों के सहारनपुर में सड़क हादसे का दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है। इस हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दूसरा मामला हिट एंड रन का है, जहां अहमदाबाद में एक कार सवार को कार सवार ने बाइक को टक्कर मार दी।
0: ये तस्वीरें दहला देने वाली है। एक कार को पीछे से दूसरी कार ने भयानक टक्कर मारी। तस्वीरें सहारनपुर में दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर रामपुर मनिहारन थाना क्षेत्र की हैं। बताया जा रहा है कि ड्राइवर कट पार कर आगे निकल गया था और निर्माणाधीन हाईवे की ओर लौटने के लिए कार बैक कर रहा था। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रही स्कॉर्पियो ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर कई मीटर तक घिसटते चली गई, जबकि स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में चार लोगों की जान चली गई, जबकि तीन बुरी तरह घायल। अब दूसरी तस्वीर देखिए, यह अहमदाबाद की तस्वीरें हैं। तेज रफ्तार कार ने यहां बाइक सवार को टक्कर मार दी। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि शहर के व्यास वाड़ी चार रास्ता पर यह तेज रफ्तार सफेद कार इधर से आती है, सामने से एक बाइक पर तीन युवक आ रहे हैं। अचानक कार ने बाइक को टक्कर मारी। टक्कर मारकर कार सवार फरार हो गया, जबकि तीनों युवकों की हालत गंभीर है। आज तक ब्यूरो।
3: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

चोरी को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी को फिर घेरा, कहा इनके लिए नेशन नहीं डोनेशन। फॉर सीएम योगी ने दी चुनौती, बोले कृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर बोले सपा। पेपर लीक के विरोध में दिल्ली में यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट, मांगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। मुंबई में भी शिक्षा मंत्री के घर के बाहर हल्ला बोल। चेतन अग्रवाल हत्याकांड में क्राइम सीन रिक्रिएट, मुख्य आरोपी सिया और चेतन को लेकर लोहागढ़ के लिए पहुंची पुलिस, जानबूझकर चेतन का पासपोर्ट गायब करने की भी जानकारी।

पर्यावरण संरक्षण का खास सम्मान। आयरलैंड से दूसरे टी20 में भी शिकस्त के बाद 0-2 से सीरीज हारा वर्ल्ड चैंपियन भारत। 155 रन के लक्ष्य से एक रन पीछे रह गई टीम इंडिया। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के चढ़ावे में चोरी का मामला लगातार गहराता जा रहा है। जांच के दायरे में अब सिर्फ आरोपी नहीं बल्कि उनसे जुड़े हुए लोग, उनकी आर्थिक गतिविधियां भी आ गई हैं। अयोध्या पुलिस ने इस मामले में नामजद कई आरोपियों के घर पर पहुंचकर उनके परिजनों से पूछताछ की है।

0: रामलला के चढ़ावे से चोरी के मामले में जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एसआईटी की जांच के बाद जहां राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कुछ लोगों के इस्तीफे सामने आए, वहीं अब पुलिस भी कार्रवाई तेज करती नजर आ रही है। अयोध्या पुलिस ने मामले में नामजद आरोपियों के घर पहुंचकर उनके परिजनों से पूछताछ की।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों के घर पर, जो अयोध्या के रहने वाले हैं, उनके घरों पर छापेमारी की जा रही है। मैं इस समय पर अयोध्या में ही रह रहे रमाशंकर मिश्रा, जो आरोपी थे जिनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, रमाशंकर मिश्रा के घर पर मौजूद हूँ। उनके परिजनों से, उसकी भाभी, बहन, उनके पिता से पूछताछ की जा रही है। ये रमाशंकर मिश्रा का घर है जो आरोपियों के घर से लगभग 80 लाख रुपए बरामद किए थे और उनको जुडिशियल कस्टडी में सोमवार तक के लिए भेज दिया गया था, लेकिन अब कल सोमवार को दोबारा जुडिशियल कस्टडी पर सुनवाई होनी है। उससे पहले पुलिस के द्वारा ये जांच की जा रही है, पड़ताल की जा रही है, इन सभी जो आरोपी हैं उनके घर वालों से पूछताछ की जा रही है कि ये लोग कब आते थे, कैसे आते थे, क्या क्या खरीदा गया।
0: अयोध्या पुलिस ने टिन्नू यादव, मनीष यादव, अनुकल मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा के घरों पर पहुंचकर उनके परिवार के लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने आरोपियों के घर आने जाने, उनके संपर्कों और गतिविधियों से जुड़ी जानकारी जुटाई। आरोपी रमाशंकर मिश्रा के पिता अयोध्या के एक मंदिर में पुजारी हैं। पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की
2: जांच के लिए, और वो यहाँ रहते हैं कि नहीं रहते हैं, कहाँ वो हैं, तो हम बताए कि कमरा पे अलग लिए रहते हैं, दो ढाई साल से यहाँ रहते नहीं हैं, आना जाना भी यहाँ का नहीं है, एक दिन कभी इस मंदिर के अंदर पाँव नहीं रखते हैं।
1: कब से नहीं आया?
2: दो ढाई साल हो गए यहाँ नहीं आया। हाँ, 2 साल।
1: तो राम मंदिर में कब से काम कर रहा था, क्या काम करता था रमाशंकर?
2: 5-6 साल हो गए, तब वहाँ पैसा गाने में बताता है, गाना कर्मचारी।
1: अच्छा, हाँ। अभी पैसा वैसा ज्यादा देखा आपने रमाशंकर के पास? बहुत
2: कभी नहीं, पैसा तो मांगा रहा तो पैसा पाई नहीं है? पैसा मांग लेता है कि देंगे, कहीं जरूरत लगे।
1: पुलिस तो कह रही है कि सब मिलके 80 लाख रुपया चोरी कर लिए चढ़ावे से।
2: कुछ हो कि नया पैसा यहाँ कहूँ देखे ना आया हुआ।
0: रमाशंकर मिश्रा के परिजनों का कहना है कि वो लंबे समय से घर नहीं आया है और किराए के मकान में रह रहा था।
3: हमको ना वो करे हैं ना हमको दिया है, कभी हमसे उनसे बनता ही नहीं था, कभी वो 10 रुपया हमको दिए ही नहीं थे। मुझको मेरे पति का सहारा है, बस कोई का सहारा नहीं है।
1: तो यहाँ रमाशंकर के बारे में और क्या, घर से कुछ पैसा वैसा ले गए, कुछ बरामदगी दिखाई है, घर से मिला है?
3: कुछ नहीं मिला है सर, केवल कागजात मिला है, वही लेकर गए हैं, आधार नंबर, खाता नंबर।
0: पुलिस के मुताबिक अब तक इस मामले में करीब 80 लाख रुपए की बरामदगी की जा चुकी है। इनमें से करीब 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से मिलने की बात सामने आई है।
1: टिन्नू यादव के इस हॉस्टल से ही, दुर्गापुरी कॉलोनी का ये, अयोध्या में ही दुर्गापुरी कॉलोनी ये हॉस्टल है, और इस हॉस्टल में यूं तो यहाँ अयोध्या विश्वविद्यालय के आसपास के कॉलेज के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर 2 कमरे हैं जो टिन्नू यादव ने अपने निजी यूज के लिए रखे हैं। कहने को तो दोनों कमरे पूजा घर हैं, उसका अपना कमरे उनके कब्जे में है, लेकिन कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद, जब गुरुवार देर रात टिन्नू यादव को अयोध्या पुलिस ने FIR दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया, तो शुक्रवार की सुबह उसको यहां लाया गया, और पुलिस के अनुसार जो दस्तावेज जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है कि लगभग 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से बरामद हुए।
0: इस मामले में गिरफ्तार किए गए अनुकल्प मिश्रा पर भी जांच एजेंसियों की नजर है। पुलिस के अनुसार वो नोटों की गिनती की व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। जांच के दौरान उसकी संपत्तियों और वित्तीय लेनदेन की भी पड़ताल की जा रही है। 2 साल पहले खरीदे गए उसके मकान पर भी आज तक की टीम पहुंची।
4: मेरे भाई को फंसाया जा रहा है, मेरी मुझ में ही है, वही से शादी हुई थी, चाचा की 10 साल से इनका केस चल रहा है, उनका मैटर चाचा चाची का है, वो अलग जाने।
0: उधर राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर CCTV कंट्रोल रूम की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार और BJP पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि CCTV बंद करके चोरी को अंजाम दिया गया, साथ ही ये भी कहा कि BJP की प्राथमिकता देश नहीं बल्कि चंदा है।
5: अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे, आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आज जब राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है, तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है।
6: इनकी निगाहें नेशन पे नहीं है, डोनेशन पर हैं। जो लोग ये कहते थे नेशन फर्स्ट, उनके लिए लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट है।
0: रामलला के चढ़ावे में गबन के इस मामले में पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, बड़ी रकम बरामद होने का दावा किया गया है और आरोपियों से जुड़े आर्थिक पहलुओं की भी जांच की जा रही है। साथ ही मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। ऐसे में सभी की नज़र अब पुलिस जाँच पर, आगे होने वाली कानूनी कार्रवाई पर टिकी हुई है। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।
7: पुणे में कीर्तन अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी जांच की है। आरोपी नंबर एक और कीर्तन की मंगेतर सिया को लेकर लोहगढ़ किले में लेकर पुलिस पहुंची, जांच पड़ताल की। लेकिन जहां से कीर्तन को धक्का दिया गया और किन परिस्थितियों में दिया गया, उस पूरे के पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया।
0: सिया ने कैसे चेतन के साथ मिलकर कीर्तन को मारा, कैसे उसने कत्ल के लिए लोहगढ़ का किला चुना, कैसे वो केतन को लेकर लोहगढ़ के किले तक पहुंची, कैसे उसने चेतन को कत्ल का इशारा किया, कैसे केतन चेतन और सिया की साजिश नहीं समझ पाया, कैसे इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया, इन सारे सवालों के जवाब तलाशने के लिए ये कवायद हो रही है। जिसका चेहरा ढका हुआ है वो है सिया, और ये वही लोहगढ़ का किला है जहां सिया को लेकर पुलिस पहुंची है।

0: लोहगढ़ किले में 18 जून को जो कुछ हुआ था उसी को दोहराने की कोशिश आज पुणे पुलिस ने की है। पहाड़ी पर स्थित किले के उसी जगह पर पुलिस की पड़ताल चल रही है। ये तस्वीरें धुंधली हैं, लेकिन देश को सन्न कर देने वाली साजिश की तस्वीर साफ करने के लिए पुलिस ने यह अहम कदम उठाया है। इन धुंधली तस्वीरों में सिया गोयल है, पुणे पुलिस की टीम है और साथ में है क्राइम सीन को रिक्रिएट करने वाले एक्सपर्ट। केतन अग्रवाल हत्याकांड की पड़ताल का ये अहम पड़ाव था। कई दिनों से माना जा रहा था कि पुणे पुलिस लोहगढ़ के किले में पहुंचकर क्राइम सीन को रिक्रिएट कर सकती है। तमाम कयासबाजी के बाद पुणे पुलिस की टीम सुबह 6:30 बजे ही लोहगढ़ किले में आज दस्तक दे दिया। पुलिस सिया को लेकर किले पहुंची। किला का गेट बंद कर दिया गया, पर्यटकों को रोक दिया गया, हर किसी के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई। सुबह 6:30 बजे सिया को लेकर पुलिस ने किले में चढ़ाई शुरू की। करीब घंटे भर बाद पुलिस क्राइम सीन पर पहुंच गई। जांच दल के साथ चेतन की कदकाठी का एक डमी भी था। क्राइम सीन पर पहुंचने के बाद पुलिस ने सिया से कई सवाल किए। 18 जून को क्या क्या हुआ था, केतन और चेतन कहां थे, किसने धक्का दिया, कैसे तीनों यहां तक पहुंचे? ऐसे एक एक सवाल के जवाब पुलिस ने सिया से पूछे और उसके जवाबों के मुताबिक ही क्राइम सीन की बारीकी से जांच पड़ताल की। फिर जिस जगह से केतन को धक्का दिया गया था पुलिस ने उस जगह से सिया के बयानों के हिसाब से क्राइम सीन रिक्रिएट किया। रिक्रिएशन के दौरान पुलिस ने उसी स्थान से डमी को नीचे धक्का देकर पूरी घटना को दोहराया जहां से कथित तौर पर केतन अग्रवाल को खाई में धक्का दिया गया था। इस प्रक्रिया का मकसद घटना के क्रम, हालात और उपलब्ध साक्ष्यों का मिलान करना था ताकि जांच को और मजबूत किया जा सके।
1: लोहगढ़ किले के ऊपर जहाँ पे वो घटना हुई थी उस घटना पे एक डमी सीन क्रिएट करके वहाँ पे एक्यूज को ले जाया गया है। किस रूट से जाके कहाँ बैठे और क्या क्या प्रोसेस घड़ी और घटना कैसे घड़ी उसको रिक्रिएट जा रहा है किया गया है, उसमें एक्यूज ने बता दिया है।
0: केतन हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस आज के रिक्रिएशन को काफी अहम मान रही है।
2: सर, सीन को रिक्रिएट किया गया, एग्जैक्टली किस तरीके से ये पूरा हुआ?
3: आज सिया ने बताया कि उसने इन्फॉर्मेशन दी जैसे हुआ था, वो जो भी डिस्कवरी ऑफ फैक्ट है उस हिसाब से हमने सीन रिक्रिएट किया है।
2: दोनों आरोपियों को आप लेके आए थे?
3: सिया थी,
2: चेतन चौधरी जो है उसका भी अभी फॉरेंसिक करना अहम है क्योंकि जिस मतलब जहां से उसने एंट्री की थी उसी तरीके का वॉक करना और वो सीसीटीवी में फॉरेंसिक एविडेंसेस लेना वो भी बाकी।
3: अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, आज सिया का रिक्रिएशन हुआ है, वो सीन रिक्रिएशन हमने क्योंकि आज तो हमने सीन रिक्रिएट किया गया, उसने अभी जो इन्वेस्टिगेशन में सारी बातें सामने आएगी उस हिसाब से अभी आगे भी इन्वेस्टिगेशन करना है।
0: इस जांच पड़ताल के बीच दावा ये भी किया जा रहा है कि सिया और चेतन ने केतन को मारने का रिहर्सल भी किया था।
2: रिक्रिएशन वो सिर्फ सिया को लाए थे, अभी चेतन चौधरी का रिक्रिएशन होना बाकी है। लोहगढ़ किले के यहाँ हम बाहर खड़े हैं जहाँ थोड़ी देर पहले ही सीन रिक्रिएशन पूरा हुआ, फॉरेंसिक की टीम यहाँ मौजूद थी। सबसे अहम बात यह है कि सिया और चेतन ने दोनों ने मिलकर इसकी रिहर्सल की थी, इससे पहले प्रैक्टिस हुई थी और प्रैक्टिस के बाद इसको अंजाम दिया गया था और उसी के बाद आप देख सकते हो कि सीन रिक्रिएशन ये लोहगढ़ किले पे अक्सर संडे को किला शुरू रहता है लेकिन आज पर्यटकों के लिए और जितने विजिटर्स हैं उन सभी के लिए इसे बंद किया गया था। लेकिन यही सीढ़ियां है, इसी सीढ़ियों से तीनों ऊपर गए थे, चेतन चौधरी गया था, उसके बाद सिया और केतन अग्रवाल भी गया था और उसी के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया।
0: हालांकि ऐसे तमाम दावों पर पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, सभी तथ्यों को वेरीफाई किया जा रहा है।
3: देखिए आज तो हमने सीन रिक्रिएट किया गया, उसने अभी जो इन्वेस्टिगेशन में सारी बातें सामने आएगी उस हिसाब से अभी आगे भी इन्वेस्टिगेशन करना है।
2: देखो इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि दोनों ने रिहर्सल की थी, इससे पहले प्रैक्टिस हुई थी कहीं ना कहीं और फिर आके इसे अंजाम दिया गया। तो क्या सिया ये अभी कह रही है कि वो प्रैक्टिस किस तरीके से हुई थी और कैसे उसने एग्जीक्यूट किया,
3: वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आज का तो सीन रिक्रिएशन होगा।
0: इस हत्याकांड में सिया और चेतन के सामने आए नए नए वीडियो और केतन के परिजनों के आरोपों के बाद ट्विस्ट और बढ़ गया है। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार वाबले, लोहगढ़ आज तक।
4: फिर सिया ने केतन का कत्ल क्यों किया? क्या वो शादी से मना नहीं कर सकती थी? बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों को पच नहीं रहे। लिहाजा पुणे पुलिस सिया के साथ साथ उसके घर वालों से भी लगातार पूछताछ कर रही है।

0: सिया और केतन बस कुछ ही महीने बाद दोनों साथ फेरे लेने वाले थे। दोनों एक रिश्ते की डोर में बंधने वाले थे, लेकिन 18 जून को एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। लोहगढ़ के किले में ठीक इसी जगह पर केतन करीब 340 फीट गहरी खाई में जा गिरा और उसकी मौत हो गई। उस घटना के 5 दिन बाद यानी 23 जून को सिया की गिरफ्तारी हो जाती है और वहां से तब तक हादसा लगने वाला मामला पूरी तरह से अलग ट्रैक पर चला जाता है। कत्ल का आरोप लगता है। आरोप ये कि सिया ने अपने मंगेतर को मार डाला। इस गुनाह में सिया का साथ दिया उसके दोस्त चेतन चौधरी ने। वही चेतन जिसका सिया के साथ कई वीडियो सामने आ चुके हैं। एक वीडियो में दोनों क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखते दिखे हैं और सबसे अहम तो ये कि सिया और चेतन ने केतन की हत्या से ठीक एक दिन पहले यानी 17 जून को ही पुणे के कैफे में मुलाकात की थी। दोनों शाम करीब 4:30 बजे मिले थे। माना जा रहा है कि दोनों ने उसी कैफे में हत्या की फाइनल साजिश रची और उसे अंजाम देने पर करीब घंटे भर बात की थी। खुलासा ये भी हुआ है कि हत्या के पहले सिया ने लोहगढ़ किले का वीडियो यूट्यूब पर सर्च किया था और वहां के लोकेशन को कैफे में मुलाकात के दौरान चेतन के साथ साझा किया था। बात यहीं तक नहीं रुकी। सिया का बड़ा भाई साहिल गोयल भी चेतन को जानता था। दोनों ने साथ साथ क्रिकेट खेले थे। उससे जुड़ा वीडियो भी सामने आया है।
1: इस मामले में जो भी लोग जुड़े हुए उन सबसे हम पूछताछ कर रहे हैं।
2: कल साहिल से जो है 10 घंटे तक पूछताछ की गई है, लेकिन जो चेतन था और साहिल है, इन दोनों की दोस्ती कैसे हुई और कहां से शुरू हो गई, कहां से मुलाकात हुई और उनके बीच बातचीत शुरू हो गई थी?
1: चेतन और साहिल एक दूसरे को जानते थे, वो साथ में क्रिकेट भी खेलते थे और वो दोनों दोस्त भी थे
2: और इसी क्रिकेट ग्राउंड में सिया भी आती थी और उसकी वजह से जो है

0: को पहचानने लगे थे?
1: यह भी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, हम हर तरीके से ये जारी है, उस हिसाब से हम आगे बताएंगे।
2: चेतन के साथ तमाम वीडियो और कनेक्शन सामने आने के बाद पुणे पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया। सिया के परिजनों को रडार पर लिया और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। 27 जून को पुलिस ने सिया के माता पिता को पूछताछ के लिए बुलाया। दोनों से करीब 12 घंटे तक सवाल जवाब किए। पुलिस ने परिवार से कई अहम सवाल पूछे जिनके जवाब अब जांच का अहम हिस्सा बन गए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान सिया के पिता प्रवीण गोयल और मां पूजा गोयल से पुलिस ने पूछा कि क्या सिया ने आपको चेतन के साथ अपने प्रेम संबंध के बारे में बताया था, क्या आपको इसकी जानकारी थी? परिजनों ने जवाब दिया कि सिया ने हमें अपने प्रेम संबंध के बारे में कभी नहीं बताया था, हमें इसकी जानकारी अब हुई है। पुलिस ने पूछा कि क्या आपने सिया पर केतन के साथ शादी करने का दबाव बनाया था, तो उन्होंने कहा कि हमने सिया पर शादी के लिए किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला था। 27 जून को हुई पूछताछ के दौरान अपने माता पिता के साथ सिया का भाई साहिल भी मौजूद था। साहिल से 26 जून को ही पुलिस ने केतन हत्याकांड को लेकर सवाल जवाब किए थे। शुक्रवार को साहिल गोयल से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उस पूछताछ में जांच से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई थी। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और आने वाले दिनों में कुछ और लोगों से पूछताछ की जा सकती है। जांच एजेंसियां पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। इतना ही नहीं, पुलिस ने आज सिर्फ सिया का सीन रिक्रिएट किया, अभी चेतन का सीन भी रिक्रिएट किया जा सकता है। जानकारी जुटाई जाएगी कि इतने बड़े अपराध को इन दोनों ने इतना सरल कैसे समझ लिया, कैसे इनके दिमाग में ये बात नहीं आई कि केतन को मार डालना विकल्प नहीं था, कैसे ये नहीं समझ पाए कि केतन के कत्ल के बाद इनका अंजाम क्या होगा। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार बावले, लोहगढ़, पुणे, आज तक।
3: केतन अग्रवाल का परिवार लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। उसके माता पिता की मांग पर फडणवीस सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई करने की मांग उठा ली है। उज्जवल निकम को विशेष सरकारी वकील नियुक्त किया गया, लेकिन इंसाफ की यह लड़ाई अभी लंबे चलने वाली है।
4: सिया ने जो किया है वो बहुत ही शॉकिंग है और मेरे लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था।
2: केतन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी यादें हैं। उसकी यादों में आंसू हैं, गम है, गुस्सा है। नाराजगी सिर्फ अग्रवाल परिवार में ही नहीं है, पुणे शहर में हर कोई सवाल हत्याकांड को लेकर उठा रहा है और कह रहा है कि दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए।
4: केतन की चाची लगती हूँ और सिया ने जो किया है वो बहुत ही शॉकिंग है और मेरे लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था। वो मुझे इतना ट्रस्ट था वो लड़की पे, उसने जो किया है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। और इसके आगे उसके एज की या फिर कोई भी एज की लड़की ये सब चीजें करने से पहले 100 बार डरनी चाहिए। ऐसा जस्टिस मिलना चाहिए हमारे केतन को। दिस इज ओनली ऑल आई वॉन्ट।
5: आप चाहती हो किशन की बचपन से उसे देखा होगा, कुछ यादें साझा करना चाहिए?
4: सेकंड स्टैंडर्ड से ही देख रही हूँ मैं वो बच्चे को, इतना मासूम, इतना प्यारा लड़का। मतलब आई वॉज वेरी हैप्पी कि उसका मतलब रिश्ता पक्का हो गया, बट वो लड़की ने जो किया दैट वॉज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। और जो स्टूपिड रीजंस उसने दिए है कि बाल्ड है और तोतला बोलता है, वो सब बातें तो जब रिश्ता पक्का हुआ था तो वो सब क्लियर हो गई थी। और वो ये सब हरकतें कर रही है, ये सब झूठ बोल रही है। दिस इज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग फॉर एवरीबडी इन द फैमिली।
2: केतन के पिता विशाल अग्रवाल अपील कर रहे हैं कि उनके बेटे के इंसाफ के लिए 18 जून को जो लोग लोहगढ़ किले में मौजूद थे वो गवाही के लिए आगे आए। विशाल अग्रवाल बता रहे हैं कि वारदात वाले दिन कई लोगों ने उन्हें फोन किया था।
6: सिर्फ एक ही अपील करूंगा, मेरा 26 साल का बेटा आज जिस भी वजह से उन्होंने बिना कारण से मार डाला, जिसको कारण पता नहीं चला, मेरे बच्चे की कहीं पे भी एक गलती नहीं थी। मैं तो शादी करने चला था, उसकी घर में बेटी बहू लाने चला था, मुझे नहीं पता था कि मेरा बच्चा ही खो दूंगा मैं। तो मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि उसको जस्टिस मिले, उसके अपराधियों को फांसी की सजा मिले, यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है।
2: अभी कई सवाल हैं जो सिया और चेतन के अंदर दबे हुए हैं, जिन्हें पुलिस को पता लगाना है। इस मामले में सबसे अहम कड़ी है दोनों का मोबाइल, जिससे कई जानकारी सामने आ सकती है। जैसे सिया और चेतन के बीच कब से बातचीत चल रही थी, दोनों के बीच किस तरह की बातचीत हो रही थी, क्या मर्डर की प्लानिंग की बात भी फोन के जरिए की गई?

0: जांच ने तब नया मोड़ लिया जब जांचकर्ताओं को पता चला कि आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी ने कथित तौर पर अपने फोन से अपनी डिजिटल बातचीत मिटा दी थी। पुलिस के मुताबिक दोनों डिवाइस से व्हाट्सएप चैट, इंस्टाग्राम एक्टिविटी और अन्य डिलीट किए गए डेटा की अब फॉरेंसिक एनालिसिस के जरिए जांच की जा रही है। शक है कि चैट को लोहगढ़ की घटना से पहले और बाद में डिलीट किया गया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपियों ने न केवल बातचीत हटाई बल्कि उसे अपने डिवाइस के रिसाइकल बिन से भी साफ कर दिया, जिससे फॉरेंसिक रिकवरी जरूरी हो गई है।
1: जो उसका मोबाइल हमने ताबे में लिया पंचनामे से, और अभी हम उसका एफएसएल को भेजेंगे और उसका जो भी डाटा है उसमें हम एनालिसिस करेंगे।
2: बताया जा रहा है कि उसकी जो चैटिंग है वो डिलीट की गई है, कुछ इस सामने आया है ऐसा कुछ?
1: अभी तक तो हमारे अभी पंचनामे से क्या है, हम एफएसएल में वो पूछेंगे।
0: कॉल डिटेल रिकॉर्ड से दोनों के बीच लगातार संपर्क का पता चला है। सिया गोयल और चेतन चौधरी ने जनवरी से लेकर अब तक 2004 कॉल किए, जिनकी कुल अवधि लगभग 238 घंटे थी। ऐसे में मोबाइल की जांच से कई राज सामने आ सकते हैं। वैसे सिया के पिता प्रवीण गोयल और मां पूजा गोयल का दावा है कि 18 जून को लोहगढ़ जाने का प्लान सिया का नहीं था। केतन ने ही वीडियो कॉल करके सिया को लोहगढ़ बुलाया था। सिया के परिजन यहां तक दावा कर रहे हैं कि अगर सिया ने कुछ गलत किया है तो उसे भी लोहगढ़ किले से धक्का दे दो।
3: मैं तो कहता हूँ अगर इसमें जो भी आरोपी हो, जो भी, जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है, अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूँगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहाँ से धक्का दे के उसे भी ख़त्म कर दिया जाए। अब इससे ज़्यादा एक बाप और कुछ नहीं बोल सकता।
4: अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहाँ से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहाँ से ही उस दोषी को गिराया जाए। जो भी दोषी निकले, मेरी बेटी चाहे उसमें दोषी हो, ठीक है, उसे फांसी की सजा दो या लोहगढ़ जाके वहीं से ही गिरा दे।
0: पहले चेतन चौधरी ने दावा किया था कि वो वारदात के समय चट्टान के पास मौजूद नहीं था, लेकिन पूछताछ के दौरान उसके बयान में लगातार विरोधाभास सामने आए। जब पुलिस ने सख्ती बरती तो सिया और चेतन ने अपने अपराध स्वीकार कर लिया। एक थ्योरी ये भी आ रही है कि केतन विग लगाता था, और ये भी पता चला है कि सिया केतन के विग लगाने को पसंद नहीं करती थी। हालांकि इस थ्योरी को पुलिस खारिज कर रही है।
1: अभी जो है इन्वेस्टिगेशन का जो मोटिव है वो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम जो भी कंक्लूजन पे आएंगे तो आप हम बताएंगे।
2: जो विक का मामला बोल रहे हैं वो सच है या झूठ है?
1: अभी तक इन्वेस्टिगेशन में हमें ये मामला अभी तक आपसे ही अभी पता चल रहा है।
0: सवाल कई हैं, ऐसे में पूरी संभावना है कि सच तक पहुंचने के लिए अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। कृष्णा पांचाल के साथ ओमकार वाबले, पुणे आज तक।
5: अब खबर मुहर्रम जुलूस से जुड़े हुए हैं। मुंबई में जुलूस के दौरान एक खौफनाक मामला सामने आया। एक आरोपी द्वारा जहरीले पदार्थ को पेन किलर बताकर बांटने की कोशिश की गई। पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और अब एक्शन लिया जा रहा है।
6: मुंबई में मुहर्रम पर बड़ी साजिश रची गई थी, लेकिन मुहर्रम के जुलूस से ठीक पहले उस साजिश का खुलासा हो गया। एक ऐसी साजिश जिसे सुनकर मुंबई सहम गई है, पूरा महाराष्ट्र भी सहमा है और देश भी हैरान है। यह साजिश थी हजारों लोगों की जान लेने की, जहर देकर उन्हें मारने की। मुंबई में मुहर्रम के जुलूस में शामिल लोगों को वो जहरीला कैप्सूल बांटा जा रहा था, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने इस बड़ी और खौफनाक साजिश का राज फाश कर दिया। एक आरोपी फैयाज प्रेमजी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया और उससे 14,900 कैप्सूल बरामद किए। जांच में सामने आया है कि आरोपी फैयाज बीबीए कर चुका है और वो पुणे में पेंट का बिजनेस करता है। उसने 30,000 खाली कैप्सूल के ऑर्डर किए थे, साथ ही 50 किलो फास्फोरस भी मंगवाए थे।
7: एक संशयित व्यक्ति मुंबई पुलिस की टीम को मिला जो कि वहां पे कैप्सूल बांट रहा था। उसके पास कोई परमिशन नहीं थी, तो मुंबई पुलिस ने उसको टोक के पूछताछ शुरू करी तो और डाउट बढ़ा। तो उसके बाद उसके पास से जितनी भी कैप्सूल्स का जो स्टॉक था वो जब्त किया गया।
6: पुलिस की माने तो गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने कबूला कि वो पेन किलर कैप्सूल बताकर मुहर्रम के जुलूस में उसे बांट रहा था। आरोपी से जो कैप्सूल बरामद हुए उसमें जिंक फॉस्फाइड पाया गया। गिरफ्तार फैयाज प्रेमजी ने कई लोगों को उसने कैप्सूल दिए थे। कैप्सूल खाने से एक युवक की तबीयत भी बिगड़ी। जिंक फॉस्फाइड ऐसा केमिकल है जिसकी वजह से तेज उल्टी और पेट में दर्द, सांस अनियमित होना, लीवर और किडनी फेल होने का खतरा रहता है। पुलिस अब जांच में जुटी है कि कहीं इस वारदात का आतंकी कनेक्शन तो नहीं, क्योंकि आरोपी फैयाज पहले ईरान और इराक जा चुका है। आरोपी के विदेशी संपर्कों की पड़ताल भी जारी है। दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
5: आज सड़क हादसों की सहारनपुर में सड़क हादसे का दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है। इस हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दूसरा मामला हिट एंड रन का है, जहां अहमदाबाद में एक कार सवार को कार सवार ने बाइक को टक्कर मार दी।
0: ये तस्वीरें दहला देने वाली है। एक कार को पीछे से दूसरी कार ने भयानक टक्कर मारी। तस्वीरें सहारनपुर में दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर रामपुर मनिहारन थाना क्षेत्र की हैं। बताया जा रहा है कि ड्राइवर कट पार कर आगे निकल गया था और निर्माणाधीन हाईवे की ओर लौटने के लिए कार बैक कर रहा था। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रही स्कॉर्पियो ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर कई मीटर तक घिसटते चली गई, जबकि स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में चार लोगों की जान चली गई, जबकि तीन बुरी तरह घायल। अब दूसरी तस्वीर देखिए, यह अहमदाबाद की तस्वीरें हैं। तेज रफ्तार कार ने यहां बाइक सवार को टक्कर मार दी। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि शहर के व्यास वाड़ी चार रास्ता पर यह तेज रफ्तार सफेद कार इधर से आती है। सामने से एक बाइक पर तीन युवक आ रहे हैं। अचानक कार ने बाइक को टक्कर मारी। टक्कर मारकर कार सवार फरार हो गया, जबकि तीनों युवकों की हालत गंभीर है। आज तक ब्यूरो।
5: रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

चोरी को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी को फिर घेरा, कहा इनके लिए नेशन नहीं डोनेशन। फॉर सीएम योगी ने दी चुनौती, बोले कृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर बोले सपा। पेपर लीक के विरोध में दिल्ली में यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट, मांगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। मुंबई में भी शिक्षा मंत्री के घर के बाहर हल्ला बोल। केतन अग्रवाल हत्याकांड में क्राइम सीन रिक्रिएट, मुख्य आरोपी सिया और चेतन को लेकर लोहागढ़ के लिए पहुंची पुलिस, जानबूझकर केतन का पासपोर्ट गायब करने की भी जानकारी। सेशेल्स के संसद में गूंजा नमो मंत्र संबोधन में पीएम मोदी ने कहा हिंद महासागर हमें बांटता नहीं जोड़ता है। प्रधानमंत्री को मिला पर्यावरण संरक्षण का खास सम्मान। आयरलैंड से दूसरे T20 में भी शिकस्त के बाद 0-2 से सीरीज हारा वर्ल्ड चैंपियन भारत। 155 रन के लक्ष्य से एक रन पीछे रह गई टीम इंडिया। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के चढ़ावे में चोरी का मामला लगातार गहरा था जा रहा है। जांच के दायरे में अब सिर्फ आरोपी नहीं बल्कि उनसे जुड़े हुए लोग, उनकी आर्थिक गतिविधियां भी आ गई हैं। अयोध्या पुलिस ने इस मामले में नामजद कई आरोपियों के घर पर पहुंचकर उनके परिजनों से पूछताछ की है।

0: रामलला के चढ़ावे से चोरी के मामले में जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एसआईटी की जांच के बाद जहां राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कुछ लोगों के इस्तीफे सामने आए, वहीं अब पुलिस भी कार्रवाई तेज करती नजर आ रही है। अयोध्या पुलिस ने मामले में नामजद आरोपियों के घर पहुंचकर उनके परिजनों से पूछताछ की।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों के घर पर, जो अयोध्या के रहने वाले हैं, उनके घरों पर छापेमारी की जा रही है। मैं इस समय पर अयोध्या में ही रह रहे रमाशंकर मिश्रा, जो आरोपी थे जिनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, रमाशंकर मिश्रा के घर पर मौजूद हूँ। उनके परिजनों से, उसकी भाभी, बहन, उनके पिता से पूछताछ की जा रही है। ये रमाशंकर मिश्रा घर है जो राम मंदिर में नोट गिनने के काम में जुड़ा हुआ था। बता दें कि अयोध्या पुलिस ने इन सभी आरोपियों के घर से लगभग 80 लाख रुपए बरामद किए थे और इनको जुडिशियल कस्टडी में सोमवार तक के लिए भेज दिया गया था, लेकिन अब कल सोमवार को दोबारा जुडिशियल कस्टडी पर सुनवाई होनी है। उससे पहले पुलिस के द्वारा ये जांच की जा रही है, पड़ताल की जा रही है, इन सभी जो आरोपी हैं उनके घर वालों से पूछताछ की जा रही है कि ये लोग कब आते थे, कैसे आते थे, क्या क्या खरीदा गया।
0: अयोध्या पुलिस ने टिन्नू यादव, मनीष यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा के घरों पर पहुंचकर उनके परिवार के लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने आरोपियों के घर आने जाने, उनके संपर्कों और गतिविधियों से जुड़ी जानकारी जुटाई। आरोपी रमाशंकर मिश्रा के पिता अयोध्या के एक मंदिर में पुजारी हैं। पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की
2: जांच के लिए, और वो यहाँ रहते हैं कि नहीं रहते हैं, कहाँ वो है तो हम बताए कि कमरा पे अलग लिए रहते हैं, दो ढाई साल से यहाँ रहते नहीं हैं, आना जाना भी यहाँ का नहीं है, एक दिन कभी इस मंदिर के अंदर पांव नहीं रखते हैं।
1: कब से नहीं आया?
2: दो ढाई साल हो गए यहाँ नहीं आया। हाँ, दो साल।
1: राम मंदिर में कब से काम कर रहा था, क्या काम करता था रमाशंकर?
2: 5-6 साल हो गए, तब वहाँ पैसा गाने में बताओ था गाना कर्मचारी।
1: अच्छा, हाँ। अभी पैसा ऐसा ज्यादा देखा आपने रमाशंकर के पास? बहुत
2: कभी नहीं, पैसा तो मांगा तो रहा था, पैसा पाई नहीं है? पैसा मांग लेते हैं कि दे दो, कहीं जरूरत लगे।
1: पुलिस तो कह रही है कि सब मिलके 80 लाख रुपया चोरी कर लिए चढ़ावे से।
2: कुछ हो कि नया पैसा यहाँ कहूँ देखे न आया हुआ।
0: रमाशंकर मिश्रा के परिजनों का कहना है कि वो लंबे समय से घर नहीं आया है और किराए के मकान में रह रहा था।
3: हमको ना वो करे हैं ना हमको दिया है, कभी हमसे उनसे बनता ही नहीं था, कभी वो 10 रुपया हमको दिए ही नहीं थे। मुझको मेरे पति का सहारा है, बस कोई का सहारा नहीं है।
1: तो यहाँ रमाशंकर के बारे में और क्या, घर से कुछ पैसा वैसा ले गए, कुछ बरामदगी दिखाई है, घर से मिला है?
3: कुछ नहीं मिला है सर, केवल कागजात मिला है, वही लेकर गए हैं, आधार नंबर, खाता नंबर।
0: पुलिस के मुताबिक अब तक इस मामले में करीब 80 लाख रुपए की बरामदगी की जा चुकी है, इनमें से करीब 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से मिलने की बात सामने आई है।
1: टिन्नू यादव के इस हॉस्टल से ही, दुर्गापुरी कॉलोनी का ये अयोध्या में ही दुर्गापुरी कॉलोनी ये हॉस्टल है, और इस हॉस्टल में यूं तो यहाँ अयोध्या विश्वविद्यालय के आसपास के कॉलेज के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर दो कमरे हैं जो टिन्नू यादव ने अपने निजी यूज के लिए रखे हैं। कहने को तो दोनों कमरे पूजा घर हैं, उसका अपना कमरे उनके कब्जे में है, लेकिन कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद, जब गुरुवार देर रात टिन्नू यादव को अयोध्या पुलिस ने FIR दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया, तो शुक्रवार की सुबह उसको यहां लाया गया, और पुलिस के अनुसार जो दस्तावेज, जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है कि लगभग 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से बरामद हुए।
0: इस मामले में गिरफ्तार किए गए अनुकल्प मिश्रा पर भी जांच एजेंसियों की नजर है। पुलिस के अनुसार वो नोटों की गिनती की व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। जांच के दौरान उसकी संपत्तियों और वित्तीय लेनदेन की भी पड़ताल की जा रही है। 2 साल पहले खरीदे गए उसके मकान पर भी आज तक की टीम पहुंची।
4: मेरे भाई को फंसाया जा रहा है, मेरी मुझ में ही है, शादी हुई थी चाचा की 10 साल से, इनका केस चल रहा है, उनका मैटर चाचा चाची का है, वो अलग जाने।
0: उधर राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर CCTV कंट्रोल रूम की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार और BJP पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि CCTV बंद करके चोरी को अंजाम दिया गया, साथ ही ये भी कहा कि BJP की प्राथमिकता देश नहीं बल्कि चंदा है।
5: अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आज जब राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है, तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है।
6: इनकी निगाहें नेशन पे नहीं है, डोनेशन पर हैं। जो लोग ये कहते थे नेशन फर्स्ट, उनके लिए लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट है।
0: रामलला के चढ़ावे में गबन के इस मामले में पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, बड़ी रकम बरामद होने का दावा किया गया है और आरोपियों से जुड़े आर्थिक पहलुओं की भी जांच की जा रही है। साथ ही मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। ऐसे में सभी की नज़र अब पुलिस जाँच पर, आगे होने वाली कानूनी कार्रवाई पर टिकी हुई है। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।
7: खबर राजस्थान से, जहां पर बीजेपी सरकार के एक मंत्री सरकारी सब्सिडी को लेकर चर्चा में है। अब विपक्ष मंत्री पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मंत्री भागीरथ चौधरी इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो प्रक्रिया निर्धारित मापदंडों और सरकारी नियमों के तहत ही की गई है।
8: क्या एक मंत्री अपनी ही मंत्रालय की योजना से सब्सिडी ले सकता है? क्या नियम सभी के लिए बराबर हैं या पद और प्रभाव से बदल जाते हैं? केंद्र सरकार की कृषि योजनाओं को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। भारत सरकार के एक मंत्री ने सरकार से करीब 99 लाख की सब्सिडी प्राप्त की है। खीरे, टमाटर, शिमला मिर्च की खेती के लिए मंत्री जी ने अपने ही कृषि मंत्रालय से सब्सिडी ले ली। मामला सामने आने के बाद विपक्ष ने इसे लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं और निष्पक्ष जांच की मांग की है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस पर सत्ता का गलत प्रयोग बताया है। सचिन पायलट ने लिखा, कृषि मंत्री पर 99 लाख सब्सिडी का आरोप, अपनी ही योजना से लाभ लेने का मामला, पद के दुरुपयोग पर विवाद, पारदर्शिता और जांच की मांग। इस बीच आप नेता मनीष सिसोदिया ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।
9: मोदी सरकार के मंत्री खुद अपने ही विभाग में खीरा किसानों की सब्सिडी खा गए, तो चारों तरफ लूट पे लूट चली जा रही है। तो इस लूट वाली सरकार को हटाना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा कि ये लूट सरकार अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी।
8: वहीं मंत्री भागीरथ चौधरी ने विपक्ष के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि पूरी प्रक्रिया सरकारी नियमों और निर्धारित मापदंडों के तहत की गई है।
10: और 2018 से मैं इस आवेदन के लिए मैं लगा हुआ हूँ, उसमें तो कोई मैंने कोई प्रक्रिया के तहत मैंने काम किया। दूसरा, हम दो MS हैं, MOSM है हम, और उसमें एक रामनाथ जी ठाकुर है और एक मैं हूँ। ये जो सब्सिडी वाला है, ये जो कुछ है, तो वो राज्य मंत्री और रामनाथ जी ठाकुर है।
8: फिलहाल इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। विपक्ष जहाँ इसे पद के दुरुपयोग का मामला बता रहा है, वहीं सरकार इसे नियमों के तहत हुई प्रक्रिया बता रही है। आज तक ब्यूरो।
7: पुणे में केतन अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी जांच की है। आरोपी नंबर एक और केतन की मंगेतर सिया को लेकर लोहगढ़ किले में लेकर पुलिस पहुंची जांच पड़ताल की। लेकिन जहां से केतन को धक्का दिया गया और किन परिस्थितियों में दिया गया, उस पूरे के पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया।
0: सिया ने कैसे चेतन के साथ मिलकर केतन को मारा, कैसे उसने कत्ल के लिए लोहगढ़ का किला चुना, कैसे वो केतन को लेकर लोहगढ़ के किले तक पहुंची, कैसे उसने चेतन को कत्ल का इशारा किया, कैसे केतन चेतन और सिया की साजिश नहीं समझ पाया, कैसे इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया, इन सारे सवालों के जवाब तलाशने के लिए ये कवायद हो रही है। जिसका चेहरा ढका हुआ है वो है सिया, और ये वही लोहगढ़ का किला है जहां सिया को लेकर पुलिस पहुंची है।

0: लोहगढ़ किले में 18 जून को जो कुछ हुआ था उसी को दोहराने की कोशिश आज पुणे पुलिस ने की है। पहाड़ी पर स्थित किले के उसी जगह पर पुलिस की पड़ताल चल रही है। ये तस्वीरें धुंधली हैं, लेकिन देश को सन्न कर देने वाली साजिश की तस्वीर साफ करने के लिए पुलिस ने ये अहम कदम उठाया है। इन धुंधली तस्वीरों में सिया गोयल है, पुणे पुलिस की टीम है और साथ में है क्राइम सीन को रिक्रिएट करने वाले एक्सपर्ट। केतन अग्रवाल हत्याकांड की पड़ताल का ये अहम पड़ाव था। कई दिनों से माना जा रहा था कि पुणे पुलिस लोहगढ़ के किले में पहुंचकर क्राइम सीन को रिक्रिएट कर सकती है। तमाम कयासबाजी के बाद पुणे पुलिस की टीम सुबह 6:30 बजे ही लोहगढ़ किले में आज दस्तक दे दिया। पुलिस सिया को लेकर किले पहुंची। किला का गेट बंद कर दिया गया, पर्यटकों को रोक दिया गया, हर किसी के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई। सुबह 6:30 बजे सिया को लेकर पुलिस ने किले में चढ़ाई शुरू की। करीब घंटे भर बाद पुलिस क्राइम सीन पर पहुंच गई। जांच दल के साथ चेतन की कदकाठी का एक डमी भी था। क्राइम सीन पर पहुंचने के बाद पुलिस ने सिया से कई सवाल किए। 18 जून को क्या क्या हुआ था, केतन और चेतन कहां थे, किसने धक्का दिया, कैसे तीनों यहां तक पहुंचे? ऐसे एक एक सवाल के जवाब पुलिस ने सिया से पूछे और उसके जवाबों के मुताबिक ही क्राइम सीन की बारीकी से जांच पड़ताल की। फिर जिस जगह से केतन को धक्का दिया गया था पुलिस ने उस जगह से सिया के बयानों के हिसाब से क्राइम सीन रिक्रिएट किया। रिक्रिएशन के दौरान पुलिस ने उसी स्थान से एक डमी को नीचे धक्का देकर पूरी घटना को दोहराया जहां से कथित तौर पर केतन अग्रवाल को खाई में धक्का दिया गया था। इस प्रक्रिया का मकसद घटना के क्रम, हालात और उपलब्ध साक्ष्यों का मिलान करना था ताकि जांच को और मजबूत किया जा सके।
1: ये लोहगढ़ किले के ऊपर जहाँ पे वो घटना हुई थी उस घटना पे एक डमी सीन क्रिएट करके वहाँ पे एक्यूज को ले जाया गया है। किस रूट से जाके कहाँ बैठे और क्या क्या प्रोसेस घड़ी और घटना कैसे घड़ी उसको रिक्रिएट जा रहा है किया गया है, उसमें एक्यूज ने बता दिया है।
0: केतन हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस आज के रिक्रिएशन को काफी अहम मान रही है।
2: सर, सीन को रिक्रिएट किया गया, एग्जैक्टली किस तरीके से ये पूरा हुआ?
3: आज सिया ने बताया कि उसने इन्फॉर्मेशन दी जैसे हुआ था, वो जो भी डिस्कवरी ऑफ फैक्ट है उस हिसाब से हमने सीन रिक्रिएट किया है।
2: दोनों आरोपियों को आप लेके आए थे?
3: सिया थी,
2: चेतन चौधरी जो है उसका भी अभी फॉरेंसिक करना अहम है क्योंकि जिस मतलब जहां से उसने एंट्री की थी उसी तरीके का वॉक करना और वो सीसीटीवी में फॉरेंसिक एविडेंसेस लेना वो भी बाकी।
3: अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, आज सिया का रिक्रिएशन हुआ है, वो सीन रिक्रिएशन हमने क्योंकि आज तो हमने सीन रिक्रिएट किया गया। उसने अभी जो इन्वेस्टिगेशन में सारी बातें सामने आएगी उस हिसाब से अभी आगे भी इन्वेस्टिगेशन करना है।
0: इस जांच पड़ताल के बीच दावा ये भी किया जा रहा है कि सिया और चेतन ने केतन को मारने का रिहर्सल भी किया था।
2: रिक्रिएशन वो सिर्फ सिया को लाए थे, अभी चेतन चौधरी का रिक्रिएशन होना बाकी है। लोहगढ़ किले के यहाँ हम बाहर खड़े हैं जहाँ थोड़ी देर पहले ही सीन रिक्रिएशन पूरा हुआ, फॉरेंसिक की टीम यहाँ मौजूद थी। सबसे अहम बात यह है कि सिया और चेतन ने दोनों ने मिलकर इसकी रिहर्सल की थी, इससे पहले प्रैक्टिस हुई थी और प्रैक्टिस के बाद इसको अंजाम दिया गया था और उसी के बाद आप देख सकते हो कि सीन रिक्रिएशन ये लोहगढ़ किले पे अक्सर संडे को किला शुरू रहता है लेकिन आज पर्यटकों के लिए और जितने विजिटर्स हैं उन सभी के लिए इसे बंद किया गया था। लेकिन यही सीढ़ियां है, इसी सीढ़ियों से तीनों ऊपर गए थे, चेतन चौधरी गया था, उसके बाद सिया और केतन अग्रवाल भी गया था और उसी के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया।
0: हालांकि ऐसे तमाम दावों पर पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, सभी तथ्यों को वेरीफाई किया जा रहा है।
2: किसने किया था, चेतन ने किया था या सिया ने?
3: देखिए, आज तो हमने सीन रिक्रिएट किया गया, उसने अभी जो इन्वेस्टिगेशन में सारी बातें सामने आएगी उस हिसाब से अभी आगे भी इन्वेस्टिगेशन करना है।
2: देखो, इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि दोनों ने रिहर्सल की थी, इससे पहले प्रैक्टिस हुई थी कहीं ना कहीं और फिर आके इसे अंजाम दिया गया। तो क्या सिया ये अभी कह रही है कि वो प्रैक्टिस किस तरीके से हुई थी और कैसे उसने एग्जीक्यूट किया,
3: वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आज का तो सीन रिक्रिएशन होगा।
0: इस हत्याकांड में सिया और चेतन के सामने आए नए नए वीडियो और केतन के परिजनों के आरोपों के बाद ट्विस्ट और बढ़ गया है। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार वाबले, लोहगढ़ आज तक।
4: फिर सिया ने केतन का कत्ल क्यों किया? क्या वो शादी से मना नहीं कर सकती थी? बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों को पच नहीं रहे। लिहाजा पुणे पुलिस सिया के साथ साथ उसके घर वालों से भी लगातार पूछताछ कर रही है।

0: सिया और केतन बस कुछ ही महीने बाद दोनों साथ फेरे लेने वाले थे, दोनों एक रिश्ते की डोर में बंधने वाले थे, लेकिन 18 जून को एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। लोहगढ़ के किले में ठीक इसी जगह पर केतन करीब 340 फीट गहरी खाई में जा गिरा और उसकी मौत हो गई। उस घटना के 5 दिन बाद यानी 23 जून को सिया की गिरफ्तारी हो जाती है और वहां से तब तक हादसा लगने वाला मामला पूरी तरह से अलग ट्रैक पर चला जाता है। कत्ल का आरोप लगता है, आरोप ये कि सिया ने अपने मंगेतर को मार डाला। इस गुनाह में सिया का साथ दिया उसके दोस्त चेतन चौधरी ने। वही चेतन जिसका सिया के साथ कई वीडियो सामने आ चुके हैं। एक वीडियो में दोनों क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखते दिखे हैं और सबसे अहम तो ये कि सिया और चेतन ने केतन की हत्या से ठीक एक दिन पहले यानी 17 जून को ही पुणे के कैफे में मुलाकात की थी। दोनों शाम करीब 4:30 बजे मिले थे। माना जा रहा है कि दोनों ने उसी कैफे में हत्या की फाइनल साजिश रची और उसे अंजाम देने पर करीब घंटे भर बात की थी। खुलासा ये भी हुआ है कि हत्या के पहले सिया ने लोहगढ़ किले का वीडियो यूट्यूब पर सर्च किया था और वहां के लोकेशन को कैफे में मुलाकात के दौरान चेतन के साथ साझा किया था। बात यहीं तक नहीं रुकी, सिया का बड़ा भाई साहिल गोयल भी चेतन को जानता था, दोनों ने साथ साथ क्रिकेट खेले थे, उससे जुड़ा वीडियो भी सामने आया है।
1: इस मामले में जो भी लोग जुड़े हुए उन सबसे हम पूछताछ कर रहे हैं।
2: कल साहिल से जो है 10 घंटे तक पूछताछ की गई है, लेकिन जो चेतन था और साहिल है, इन दोनों की दोस्ती कैसे हुई और कहां से शुरू हो गई, कहां से मुलाकात हुई और उनके बीच बातचीत शुरू हो गई थी?
1: चेतन और साहिल एक दूसरे को जानते थे, वो साथ में क्रिकेट भी खेलते थे और वो दोनों दोस्त भी थे
2: और इसी क्रिकेट ग्राउंड में सिया भी आती थी और उसकी वजह से जो है चेतन और सिया एक दूसरे को पहचानने लगे थे।
1: ये अभी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, हम हर तरीके से ये जारी है, उस हिसाब से हम आगे बताएंगे।
0: चेतन के साथ तमाम वीडियो और कनेक्शन सामने आने के बाद पुणे पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया, सिया के परिजनों को रडार पर लिया और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। 27 जून को पुलिस ने सिया के माता पिता को पूछताछ के लिए बुलाया, दोनों से करीब 12 घंटे तक सवाल जवाब किए। पुलिस ने परिवार से कई अहम सवाल पूछे जिनके जवाब अब जांच का अहम हिस्सा बन गए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान सिया के पिता प्रवीण गोयल और मां पूजा गोयल से पुलिस ने पूछा कि क्या सिया ने आपको चेतन के साथ अपने प्रेम संबंध के बारे में बताया था, क्या आपको इसकी जानकारी थी? परिजनों ने जवाब दिया कि सिया ने हमें अपने प्रेम संबंध के बारे में कभी नहीं बताया था, हमें इसकी जानकारी अब हुई है। पुलिस ने पूछा कि क्या आपने सिया पर केतन के साथ शादी करने का दबाव बनाया था, तो उन्होंने कहा कि हमने सिया पर शादी के लिए किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला था। 27 जून को हुई पूछताछ के दौरान अपने माता पिता के साथ सिया का भाई साहिल भी मौजूद था। साहिल से 26 जून को ही पुलिस ने केतन हत्याकांड को लेकर सवाल जवाब किए थे। शुक्रवार को साहिल गोयल से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उस पूछताछ में जांच से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई थी। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और आने वाले दिनों में कुछ और लोगों से पूछताछ की जा सकती है। जांच एजेंसियां पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। इतना ही नहीं, पुलिस ने आज सिर्फ सिया का सीन रिक्रिएट किया, अभी चेतन का सीन भी रिक्रिएट किया जा सकता है। जानकारी जुटाई जाएगी कि इतने बड़े अपराध को इन दोनों ने इतना सरल कैसे समझ लिया, कैसे इनके दिमाग में ये बात नहीं आई कि केतन को मार डालना विकल्प नहीं था, कैसे ये नहीं समझ पाए कि केतन के कत्ल के बाद इनका अंजाम क्या होगा। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार भावले, लोहगढ़, पुणे, आज तक।
3: केतन अग्रवाल का परिवार लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। उसके माता पिता की मांग पर फडणवीस सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई करने की मांग उठा ली है। उज्जवल निगम को विशेष सरकारी वकील नियुक्त किया गया, लेकिन इंसाफ की यह लड़ाई अभी लंबे चलने वाली है।
4: जो किया है वो बहुत ही शॉकिंग है और मेरे लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था।
0: केतन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी यादें हैं। उसकी यादों में आंसू हैं, गम है, गुस्सा है। नाराजगी सिर्फ अग्रवाल परिवार में ही नहीं है, पुणे शहर में हर कोई सवाल हत्याकांड को लेकर उठा रहा है और कह रहा है कि दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए।
4: केतन की चाची लगती हूँ और सिया ने जो किया है वो बहुत ही शॉकिंग है और मेरे लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था। वो मुझे इतना ट्रस्ट था वो लड़की पे, उसने जो किया है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए और इसके आगे उसके एज की या फिर कोई भी एज की लड़की ये सब चीजें करने से पहले 100 बार डरनी चाहिए। ऐसा जस्टिस मिलना चाहिए हमारे केतन को। दिस इज ओनली ऑल आई वॉन्ट।
5: आप चाहती हो किशन की बचपन से उसे देखा होगा, कुछ यादें साझा करना चाहेगी?
4: सेकंड स्टैंडर्ड से ही देख रही हूँ मैं वो बच्चे को, इतना मासूम, इतना प्यारा लड़का। मतलब आई वॉज वेरी हैप्पी कि उसका मतलब रिश्ता पक्का हो गया, बट वो लड़की ने जो किया दैट वॉज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। और जो स्टूपिड रीजंस उसने दिए है कि बाल्ड है और तोतला बोलता है, वो सब बातें तो जब रिश्ता पक्का हुआ था तो वो सब क्लियर हो गई थी, और वो ये सब हरकतें कर रही है, ये सब झूठ बोल रही है। दिस इज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग फॉर एवरीबडी इन द फैमिली।
0: केतन के पिता विशाल अग्रवाल अपील कर रहे हैं कि उनके बेटे के इंसाफ के लिए 18 जून को जो लोग लोहगढ़ किले में मौजूद थे वो गवाही के लिए आगे आएं। विशाल अग्रवाल बता रहे हैं कि वारदात वाले दिन कई लोगों ने उन्हें फोन किया था।
6: सिर्फ एक ही अपील करूंगा, मेरा 26 साल का बेटा आज जिस भी वजह से उन्होंने बिना कारण से मार डाला, जिसको कारण पता नहीं चला, मेरे बच्चे की कहीं पे भी एक गलती नहीं थी। मैं तो शादी करने चला था, उसकी घर में बेटी बहू लाने चला था, मुझे नहीं पता था कि मेरा बच्चा ही खो दूंगा मैं। तो मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि उसको जस्टिस मिले, उसके अपराधियों को फांसी की सजा मिले, यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है।
0: अभी कई सवाल हैं जो सिया और चेतन के अंदर दबे हुए हैं, जिन्हें पुलिस को पता लगाना है। इस मामले में सबसे अहम कड़ी है दोनों का मोबाइल, जिससे कई जानकारी सामने आ सकती है। जैसे सिया और चेतन के बीच कब से बातचीत चल रही थी, दोनों के बीच किस तरह की बातचीत हो रही थी, क्या मर्डर की प्लानिंग की बात भी फोन के जरिए की गई। जांच ने तब नया मोड़ लिया जब जांचकर्ताओं को पता चला कि आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी ने कथित तौर पर अपने फोन से अपनी डिजिटल बातचीत मिटा दी थी। पुलिस के मुताबिक दोनों डिवाइस से व्हाट्सएप चैट, इंस्टाग्राम एक्टिविटी और अन्य डिलीट किए गए डेटा की अब फोरेंसिक एनालिसिस के जरिए जाँच की जा रही है। शक है कि चैट को लोहगढ़ की घटना से पहले और बाद में डिलीट किया गया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपियों ने न केवल बातचीत हटाई बल्कि उसे अपने डिवाइस के रिसाइकल बिन से भी साफ कर दिया, जिससे फोरेंसिक रिकवरी जरूरी हो गई है।
1: जो उसका मोबाइल हमने ताबे में लिया पंचनामे से, और अभी हम उसका एफएसएल को भेजेंगे और उसका जो भी डाटा है उसमें हम एनालिसिस करेंगे।
2: बताया जा रहा है कि उसकी जो चैटिंग है वो डिलीट की गई है, कुछ इस सामने आया है ऐसा कुछ?
1: अभी तक तो हमारे अभी पंचनामा से क्या है, हम एफएसएल में वो क्यूरी वो पूछेंगे।
0: कॉल डिटेल रिकॉर्ड से दोनों के बीच लगातार संपर्क का पता चला है। सिया गोयल और चेतन चौधरी ने जनवरी से लेकर अब तक 2004 कॉल किए, जिनकी कुल अवधि लगभग 238 घंटे थी। ऐसे में मोबाइल की जांच से कई राज सामने आ सकते हैं। वैसे सिया के पिता प्रवीण गोयल और मां पूजा गोयल का दावा है कि 18 जून को लोहगढ़ जाने का प्लान सिया का नहीं था। केतन ने ही वीडियो कॉल करके सिया को लोहगढ़ बुलाया था। सिया के परिजन यहां तक दावा कर रहे हैं कि अगर सिया ने कुछ गलत किया है तो उसे भी लोहगढ़ किले से धक्का दे दो।
7: मैं तो कहता हूँ अगर इसमें जो भी आरोपी हो, जो भी, जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है, अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूँगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहाँ से धक्का दे के उसे भी ख़त्म कर दिया जाए। अब इससे ज़्यादा एक बाप और कुछ नहीं बोल सकता।
8: अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहाँ से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहाँ से ही उस दोषी को गिराया जाए। जो भी दोषी निकले, मेरी बेटी चाहे उसमें दोषी हो, ठीक है, उसे फांसी की सजा दो या लोहगढ़ जाके वहीं से ही गिरा दे।
0: पहले चेतन चौधरी ने दावा किया था कि वो वारदात के समय चट्टान के पास मौजूद नहीं था, लेकिन पूछताछ के दौरान उसके बयान में लगातार विरोधाभास सामने आए। जब पुलिस ने सख्ती बरती तो सिया और चेतन ने अपने अपराध स्वीकार कर लिया। एक थ्योरी ये भी आ रही है कि केतन विग लगाता था, और ये भी पता चला है कि सिया केतन के विग लगाने को पसंद नहीं करती थी। हालांकि इस थ्योरी को पुलिस खारिज कर रही है।
1: अभी जो है इन्वेस्टिगेशन का जो मोटिव है वो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हम जो भी कंक्लूजन पे आएंगे तो अब हम बताएंगे।
2: जो विग का मामला बोल रहे हैं वो सच है या झूठ है?
1: अभी तक इन्वेस्टिगेशन में हमें ये मामला अभी तक आपसे ही अभी पता चल रहा है।
0: सवाल कई हैं, ऐसे में पूरी संभावना है कि सच तक पहुंचने के लिए अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। कृष्णा पांचाल के साथ ओमकार वाबले, पुणे आज तक।
3: आज सड़क हादसों की सहारनपुर में सड़क हादसे का दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है। इस हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दूसरा मामला हिट एंड रन का है, जहां अहमदाबाद में एक कार सवार को कार सवार ने बाइक को टक्कर मार दी।
0: ये तस्वीरें दहला देने वाली हैं। एक कार को पीछे से दूसरी कार ने भयानक टक्कर मारी। तस्वीरें सहारनपुर में दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर रामपुर मनिहारन थाना क्षेत्र की हैं। बताया जा रहा है कि ड्राइवर कट पार कर आगे निकल गया था और निर्माणाधीन हाईवे की ओर लौटने के लिए कार बैक कर रहा था। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे स्कॉर्पियो ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर कई मीटर तक घिसटती चली गई, जबकि स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में चार लोगों की जान चली गई, जबकि तीन बुरी तरह घायल। अब दूसरी तस्वीर देखिए, यह अहमदाबाद की तस्वीरें हैं। तेज रफ्तार कार ने यहां बाइक सवार को टक्कर मार दी। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि शहर के व्यास वाड़ी चार रास्ता पर यह तेज रफ्तार सफेद कार इधर से आती है, सामने से एक बाइक पर तीन युवक आ रहे हैं। अचानक कार ने बाइक को टक्कर मारी। टक्कर मारकर कार सवार फरार हो गया, जबकि तीनों युवकों की हालत गंभीर है। आज तक ब्यूरो।
3: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

चढ़ावा चोरी को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी को फिर घेरा, कहा इनके लिए नेशन नहीं डोनेशन। पर सीएम योगी ने दी चुनौती, बोले कृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर बोले सपा। पेपर लीक के विरोध में दिल्ली में यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट, मांगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। मुंबई में भी शिक्षा मंत्री के घर के बाहर हल्ला बोल। केतन अग्रवाल हत्याकांड में क्राइम सीन रिक्रिएट, मुख्य आरोपी सिया और चेतन को लेकर लोहागढ़ के लिए पहुंची पुलिस, जानबूझकर केतन का पासपोर्ट गायब करने की भी जानकारी।

पर्यावरण संरक्षण का खास सम्मान। आयरलैंड से दूसरे टी20 में भी शिकस्त के बाद 0-2 से सीरीज हारा वर्ल्ड चैंपियन भारत। 155 रन के लक्ष्य से एक रन पीछे रह गई टीम इंडिया। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के चढ़ावे में चोरी का मामला लगातार गहरा था जा रहा है। जांच के दायरे में अब सिर्फ आरोपी ही नहीं बल्कि उनसे जुड़े हुए लोग, उनकी आर्थिक गतिविधियां भी आ गई हैं। अयोध्या पुलिस ने इस मामले में नामजद कई आरोपियों के घर पर पहुंचकर उनके परिजनों से पूछताछ की है।

0: रामलला के चढ़ावे से चोरी के मामले में जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एसआईटी की जांच के बाद जहां राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कुछ लोगों के इस्तीफे सामने आए, वहीं अब पुलिस भी कार्रवाई तेज करती नजर आ रही है। अयोध्या पुलिस ने मामले में नामजद आरोपियों के घर पहुंचकर उनके परिजनों से पूछताछ की।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों के घर पर, जो अयोध्या के रहने वाले हैं, उनके घरों पर छापेमारी की जा रही है। मैं इस समय पर अयोध्या में ही रह रहे रमाशंकर मिश्रा, जो आरोपी थे जिनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, रमाशंकर मिश्रा के घर पर मौजूद हूँ। उनके परिजनों से, उसकी भाभी, बहन, उनके पिता से पूछताछ की जा रही है। ये रमाशंकर मिश्रा घर है जो राम मंदिर में नोट गिनने के काम में जुड़ा हुआ था। बता दें कि अयोध्या पुलिस ने इन सभी आरोपियों के घर से लगभग 80 लाख रुपए बरामद किए थे और इनको जुडिशियल कस्टडी में सोमवार तक के लिए भेज दिया गया था, लेकिन अब कल सोमवार को दोबारा जुडिशियल कस्टडी पर सुनवाई होनी है। उससे पहले पुलिस के द्वारा ये जांच की जा रही है, पड़ताल की जा रही है, इन सभी जो आरोपी हैं उनके घर वालों से पूछताछ की जा रही है कि ये लोग कब आते थे, कैसे आते थे, क्या क्या खरीदा गया।
0: अयोध्या पुलिस ने टिन्नू यादव, मनीष यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा के घरों पर पहुंचकर उनके परिवार के लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने आरोपियों के घर आने जाने, उनके संपर्कों और गतिविधियों से जुड़ी जानकारी जुटाई। आरोपी रमाशंकर मिश्रा के पिता अयोध्या के एक मंदिर में पुजारी हैं। पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की
2: जांच के लिए, और वो यहाँ रहते हैं कि नहीं रहते हैं, कहाँ वो है तो हम बताए कि कमरा पे अलग लिए रहते हैं, दो ढाई साल से यहाँ रहते नहीं हैं, आना जाना भी यहाँ का नहीं है, एक दिन कभी इस मंदिर के अंदर पाँव नहीं रखते हैं।
1: कब से नहीं आया?
2: दो ढाई साल हो गए यहाँ नहीं आया। हाँ, दो साल।
1: तो राम मंदिर में कब से काम कर रहा था, क्या काम करता था रमाशंकर?
2: 5-6 साल हो गए, तब वहाँ पैसा गाने में बताओ था, गाना कर्मचारी।
1: अच्छा, हाँ। कभी पैसा वैसा ज्यादा देखा आपने रमाशंकर के पास? बहुत
2: कभी नहीं, पैसा तो मांगा रहा तो पैसा पाई नहीं है? पैसा मांग लेता है कि देंगे, कहीं जरूरत लगे।
1: पुलिस तो कह रही है कि सब मिलके 80 लाख रुपए चोरी कर लिए चढ़ावे से।
2: कुछ छोड़िए कि नया पैसा यहाँ कहूँ देखे न आया हुआ।
0: रमाशंकर मिश्रा के परिजनों का कहना है कि वो लंबे समय से घर नहीं आया है और किराए के मकान में रह रहा था।
3: हमको ना वो करे हैं ना हमको दिया है, कभी हमसे उनसे बनता ही नहीं था, कभी वो 10 रुपया हमको दिए ही नहीं थे। मुझको मेरे पति का सहारा है, बस कोई का सहारा नहीं है।
1: तो यहाँ रमाशंकर के बारे में और क्या, घर से कुछ पैसा वैसा ले गए, कुछ बरामदगी दिखाई है, घर से मिला है?
3: कुछ नहीं मिला है सर, केवल कागजात मिला है, वही लेकर गए हैं, आधार नंबर, खाता नंबर।
0: पुलिस के मुताबिक अब तक इस मामले में करीब 80 लाख रुपए की बरामदगी की जा चुकी है, इनमें से करीब 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से मिलने की बात सामने आई है।
1: टिन्नू यादव के इस हॉस्टल से ही, दुर्गापुरी कॉलोनी का ये अयोध्या में ही दुर्गापुरी कॉलोनी ये हॉस्टल है, और इस हॉस्टल में यूं तो यहाँ अयोध्या विश्वविद्यालय के आसपास के कॉलेज के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर दो कमरे हैं जो टिन्नू यादव ने अपने निजी यूज के लिए रखे हैं। कहने को तो दोनों कमरे पूजा घर हैं, उसका अपना कमरे उनके कब्जे में है, लेकिन कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद, जब गुरुवार देर रात टिन्नू यादव को अयोध्या पुलिस ने FIR दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया, तो शुक्रवार की सुबह उसको यहां लाया गया, और पुलिस के अनुसार जो दस्तावेज जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है कि लगभग 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से बरामद हुए।
0: इस मामले में गिरफ्तार किए गए अनुकल्प मिश्रा पर भी जांच एजेंसियों की नजर है। पुलिस के अनुसार वो नोटों की गिनती की व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। जांच के दौरान उसकी संपत्तियों और वित्तीय लेनदेन की भी पड़ताल की जा रही है। 2 साल पहले खरीदे गए उसके मकान पर भी आज तक की टीम पहुंची।
4: मेरे भाई को फंसाया जा रहा है, मेरी मुझ में ही है, वही से शादी हुई थी, चाचा की 10 साल से इनका तेज चल रहा है, उनका मैटर चाचा चाची का है, वो अलग जाने।
0: उधर राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर CCTV कंट्रोल रूम की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार और BJP पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि CCTV बंद करके चोरी को अंजाम दिया गया, साथ ही ये भी कहा कि BJP की प्राथमिकता देश नहीं बल्कि चंदा है।
5: अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे, आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आज जब राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है, तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है।
6: इनकी निगाहें नेशन पे नहीं है, डोनेशन पर हैं। जो लोग ये कहते थे नेशन फर्स्ट, उनके लिए लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट है।
0: रामलला के चढ़ावे में गबन के इस मामले में पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, बड़ी रकम बरामद होने का दावा किया गया है और आरोपियों से जुड़े आर्थिक पहलुओं की भी जांच की जा रही है। साथ ही मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। ऐसे में सभी की नज़र अब पुलिस जाँच पर, आगे होने वाली कानूनी कार्रवाई पर टिकी हुई है। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।
7: पुणे में केतन अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी जांच की है। आरोपी नंबर एक और केतन की मंगेतर सिया को लेकर लोहगढ़ किले में लेकर पुलिस पहुंची, जांच पड़ताल की। लेकिन जहां से केतन को धक्का दिया गया और किन परिस्थितियों में दिया गया, उस पूरे के पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया।
0: सिया ने कैसे चेतन के साथ मिलकर केतन को मारा, कैसे उसने कत्ल के लिए लोहगढ़ का किला चुना, कैसे वो केतन को लेकर लोहगढ़ के किले तक पहुंची, कैसे उसने चेतन को कत्ल का इशारा किया, कैसे केतन चेतन और सिया की साजिश नहीं समझ पाया, कैसे इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया, इन सारे सवालों के जवाब तलाशने के लिए ये कवायद हो रही है। जिसका चेहरा ढका हुआ है वो है सिया, और ये वही लोहगढ़ का किला है जहां सिया को लेकर पुलिस पहुंची है।

0: लोहगढ़ किले में 18 जून को जो कुछ हुआ था उसी को दोहराने की कोशिश आज पुणे पुलिस ने की है। पहाड़ी पर स्थित किले के उसी जगह पर पुलिस की पड़ताल चल रही है। ये तस्वीरें धुंधली हैं, लेकिन देश को सन्न कर देने वाली साजिश की तस्वीर साफ करने के लिए पुलिस ने यह अहम कदम उठाया है। इन धुंधली तस्वीरों में सिया गोयल है, पुणे पुलिस की टीम है और साथ में है क्राइम सीन को रिक्रिएट करने वाले एक्सपर्ट। केतन अग्रवाल हत्याकांड की पड़ताल का ये अहम पड़ाव था। कई दिनों से माना जा रहा था कि पुणे पुलिस लोहगढ़ के किले में पहुंचकर क्राइम सीन को रिक्रिएट कर सकती है। तमाम कयासबाजी के बाद पुणे पुलिस की टीम सुबह 6:30 बजे ही लोहगढ़ किले में आज दस्तक दे दिया। पुलिस सिया को लेकर किले पहुंची। किला का गेट बंद कर दिया गया, पर्यटकों को रोक दिया गया, हर किसी के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई। सुबह 6:30 बजे सिया को लेकर पुलिस ने किले में चढ़ाई शुरू की। करीब घंटे भर बाद पुलिस क्राइम सीन पर पहुंच गई। जांच दल के साथ चेतन की कदकाठी का एक डमी भी था। क्राइम सीन पर पहुंचने के बाद पुलिस ने सिया से कई सवाल किए। 18 जून को क्या क्या हुआ था, केतन और चेतन कहां थे, किसने धक्का दिया, कैसे तीनों यहां तक पहुंचे, ऐसे एक एक सवाल के जवाब पुलिस ने सिया से पूछे और उसके जवाबों के मुताबिक ही क्राइम सीन की बारीकी से जांच पड़ताल की। फिर जिस जगह से केतन को धक्का दिया गया था पुलिस ने उस जगह से सिया के बयानों के हिसाब से क्राइम सीन रिक्रिएट किया। रिक्रिएशन के दौरान पुलिस ने उसी स्थान से डमी को नीचे धक्का देकर पूरी घटना को दोहराया जहां से कथित तौर पर केतन अग्रवाल को खाई में धक्का दिया गया था। इस प्रक्रिया का मकसद घटना के क्रम, हालात और उपलब्ध साक्ष्यों का मिलान करना था ताकि जांच को और मजबूत किया जा सके।
1: ये लोहगढ़ किले के ऊपर जहाँ पे वो घटना हुई थी उस घटना पे एक डमी सीन क्रिएट करके वहाँ पे एक्यूज को ले जाया गया है। किस रूट से जाके कहाँ बैठे और क्या क्या प्रोसेस घड़ी और घटना कैसे घड़ी उसको रिक्रिएट जा रहा है किया गया है, उसमें एक्यूज ने बता दिया है।
0: केतन हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस आज के रिक्रिएशन को काफी अहम मान रही है।
2: सर, सीन को रिक्रिएट किया गया, एग्जैक्टली किस तरीके से ये पूरा हुआ?
3: आज सिया ने बताया कि उसने इन्फॉर्मेशन दी जैसे हुआ था, वो जो भी डिस्कवरी ऑफ फैक्ट है उस हिसाब से हमने सीन रिक्रिएट किया है।
2: दोनों आरोपियों को आप लेके आए थे?
3: सिया थी,
2: चेतन चौधरी जो है उसका भी अभी फॉरेंसिक करना अहम है क्योंकि जिस मतलब जहां से उसने एंट्री की थी उसी तरीके का वॉक करना और वो सीसीटीवी में फॉरेंसिक एविडेंसेस लेना वो भी बाकी।
3: अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, आज सिया का रिक्रिएशन हुआ है, वो सीन रिक्रिएशन हमने क्योंकि आज तो हमने सीन रिक्रिएट किया गया, उसने अभी जो इन्वेस्टिगेशन में सारी बातें सामने आएगी उस हिसाब से अभी आगे भी इन्वेस्टिगेशन करना है।
0: इस जांच पड़ताल के बीच दावा ये भी किया जा रहा है कि सिया और चेतन ने केतन को मारने का रिहर्सल भी किया था।
2: रिक्रिएशन वो सिर्फ सिया को लाए थे, अभी चेतन चौधरी का रिक्रिएशन होना बाकी है। लोहगढ़ किले के यहाँ हम बाहर खड़े हैं जहाँ थोड़ी देर पहले ही सीन रिक्रिएशन पूरा हुआ, फॉरेंसिक की टीम यहाँ मौजूद थी। सबसे अहम बात यह है कि सिया और चेतन ने दोनों ने मिलकर इसकी रिहर्सल की थी, इससे पहले प्रैक्टिस हुई थी और प्रैक्टिस के बाद इसको अंजाम दिया गया था और उसी के बाद आप देख सकते हो कि सीन रिक्रिएशन ये लोहगढ़ किले पे अक्सर संडे को किला शुरू रहता है लेकिन आज पर्यटकों के लिए और जितने विजिटर्स हैं उन सभी के लिए इसे बंद किया गया था। लेकिन यही सीढ़ियां है, इसी सीढ़ियों से तीनों ऊपर गए थे, चेतन चौधरी गया था, उसके बाद सिया और केतन अग्रवाल भी गया था और उसी के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया।
0: हालांकि ऐसे तमाम दावों पर पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, सभी तथ्यों को वेरीफाई किया जा रहा है।
3: देखिए आज तो हमने सीन रिक्रिएट किया गया, उसने अभी जो इन्वेस्टिगेशन में सारी बातें सामने आएगी उस हिसाब से अभी आगे भी इन्वेस्टिगेशन करना है।
2: देखो इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि दोनों ने रिहर्सल की थी, इससे पहले प्रैक्टिस हुई थी कहीं ना कहीं और फिर आके इसे अंजाम दिया गया। तो क्या सिया ये अभी कह रही है कि वो प्रैक्टिस किस तरीके से हुई थी और कैसे उसने एग्जीक्यूट किया,
3: वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आज का तो सीन रिक्रिएशन होगा।
0: इस हत्याकांड में सिया और चेतन के सामने आए नए नए वीडियो और केतन के परिजनों के आरोपों के बाद ट्विस्ट और बढ़ गया है। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार वाबले, लोहगढ़ आज तक।
4: फिर सिया ने केतन का कत्ल क्यों किया? क्या वो शादी से मना नहीं कर सकती थी? बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों को पच नहीं रहे। लिहाजा पुणे पुलिस सिया के साथ साथ उसके घर वालों से भी लगातार पूछताछ कर रही है।

0: सिया और केतन बस कुछ ही महीने बाद दोनों साथ फेरे लेने वाले थे, दोनों एक रिश्ते की डोर में बंधने वाले थे, लेकिन 18 जून को एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। लोहगढ़ के किले में ठीक इसी जगह पर केतन करीब 340 फीट गहरी खाई में जा गिरा और उसकी मौत हो गई। उस घटना के 5 दिन बाद यानी 23 जून को सिया की गिरफ्तारी हो जाती है और वहां से तब तक हादसा लगने वाला मामला पूरी तरह से अलग ट्रैक पर चला जाता है। कत्ल का आरोप लगता है, आरोप ये कि सिया ने अपने मंगेतर को मार डाला। इस गुनाह में सिया का साथ दिया उसके दोस्त चेतन चौधरी ने, वही चेतन जिसका सिया के साथ कई वीडियो सामने आ चुके हैं। एक वीडियो में दोनों क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखते दिखे हैं और सबसे अहम तो ये कि सिया और चेतन ने केतन की हत्या से ठीक एक दिन पहले यानी 17 जून को ही पुणे के कैफे में मुलाकात की थी। दोनों शाम करीब 4:30 बजे मिले थे। माना जा रहा है कि दोनों ने उसी कैफे में हत्या की फाइनल साजिश रची और उसे अंजाम देने पर करीब घंटे भर बात की थी। खुलासा ये भी हुआ है कि हत्या के पहले सिया ने लोहगढ़ किले का वीडियो यूट्यूब पर सर्च किया था और वहां के लोकेशन को कैफे में मुलाकात के दौरान चेतन के साथ साझा किया था। बात यहीं तक नहीं रुकी, सिया का बड़ा भाई साहिल गोयल भी चेतन को जानता था, दोनों ने साथ साथ क्रिकेट खेले थे, उससे जुड़ा वीडियो भी सामने आया है।
1: इस मामले में जो भी लोग जुड़े हुए उन सबसे हम पूछताछ कर रहे हैं।
2: कल साहिल से जो है 10 घंटे तक पूछताछ की गई है, लेकिन जो चेतन था और साहिल है, इन दोनों की दोस्ती कैसे हुई और कहां से शुरू हो गई, कहां से मुलाकात हुई और उनके बीच बातचीत शुरू हो गई थी?
1: चेतन और साहिल एक दूसरे को जानते थे, वो साथ में क्रिकेट भी खेलते थे और वो दोनों दोस्त भी थे
2: और इसी क्रिकेट ग्राउंड में सिया भी आती थी और उसकी वजह से जो है चेतन और सिया एक दूसरे को पहचानने लगे थे।
1: ये अभी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, हम हर तरीके से ये जारी है, उस हिसाब से हम आगे बताएंगे।
0: चेतन के साथ तमाम वीडियो और कनेक्शन सामने आने के बाद पुणे पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया, सिया के परिजनों को रडार पर लिया और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। 27 जून को पुलिस ने सिया के माता पिता को पूछताछ के लिए बुलाया, दोनों से करीब 12 घंटे तक सवाल जवाब किए। पुलिस ने परिवार से कई अहम सवाल पूछे जिनके जवाब अब जांच का अहम हिस्सा बन गए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार पूछताछ

0: अब हुई है। पुलिस ने पूछा कि क्या आपने सिया पर केतन के साथ शादी करने का दबाव बनाया था, तो उन्होंने कहा कि हमने सिया पर शादी के लिए किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला था। 27 जून को हुई पूछताछ के दौरान अपने माता पिता के साथ सिया का भाई साहिल भी मौजूद था। साहिल से 26 जून को ही पुलिस ने केतन हत्याकांड को लेकर सवाल जवाब किए थे। शुक्रवार को साहिल गोयल से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उस पूछताछ में जांच से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई थी। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और आने वाले दिनों में कुछ और लोगों से पूछताछ की जा सकती है। जांच एजेंसियां पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। इतना ही नहीं, पुलिस ने आज सिर्फ सिया का सीन रिक्रिएट किया, अभी चेतन का सीन भी रिक्रिएट किया जा सकता है। जानकारी जुटाई जाएगी कि इतने बड़े अपराध को इन दोनों ने इतना सरल कैसे समझ लिया, कैसे इनके दिमाग में ये बात नहीं आई कि केतन को मार डालना विकल्प नहीं था, कैसे ये नहीं समझ पाए कि केतन के कत्ल के बाद इनका अंजाम क्या होगा। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार भावले, लोहगढ़, पुणे, आज तक।
1: केतन अग्रवाल का परिवार लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। उसके माता पिता की मांग पर फडणवीस सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई करने की मांग उठा ली है। उज्जवल निगम को विशेष सरकारी वकील नियुक्त किया गया, लेकिन इंसाफ की यह लड़ाई अभी लंबे चलने वाली है।
2: सिया ने जो किया है वो बहुत ही शॉकिंग है और मेरे लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था।
0: केतन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी यादें हैं। उसकी यादों में आंसू हैं, गम है, गुस्सा है। नाराजगी सिर्फ अग्रवाल परिवार में ही नहीं है, पुणे शहर में हर कोई सवाल हत्याकांड को लेकर उठा रहा है और कह रहा है कि दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए।
2: केतन की चाची लगती हूँ और सिया ने जो किया है वो बहुत ही शॉकिंग है और मेरे लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था। वो मुझे इतना ट्रस्ट था वो लड़की पे, उसने जो किया है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए और इसके आगे उसके एज की या फिर कोई भी एज की लड़की ये सब चीजें करने से पहले 100 बार डरनी चाहिए। ऐसा जस्टिस मिलना चाहिए हमारे केतन को। दिस इज ओनली ऑल आई वॉन्ट।
3: आप चाहती हो किशन की बचपन से उसे देखा होगा, कुछ यादें साझा करना चाहिए।
2: सेकंड स्टैंडर्ड से ही देख रही हूँ मैं वो बच्चे को, इतना मासूम, इतना प्यारा लड़का। मतलब आई वॉज वेरी हैप्पी कि उसका मतलब रिश्ता पक्का हो गया, बट वो लड़की ने जो किया दैट वॉज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। और जो स्टूपिड रीजंस उसने दिए है कि बाल्ड है और तोतला बोलता है, वो सब बातें तो जब रिश्ता पक्का हुआ था तो वो सब क्लियर हो गई थी, और वो ये सब हरकतें कर रही है, ये सब झूठ बोल रही है। दिस इज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग फॉर एवरीबडी इन द फैमिली।
0: केतन के पिता विशाल अग्रवाल अपील कर रहे हैं कि उनके बेटे के इंसाफ के लिए 18 जून को जो लोग लोहगढ़ किले में मौजूद थे वो गवाही के लिए आगे आएं। विशाल अग्रवाल बता रहे हैं कि वारदात वाले दिन कई लोगों ने उन्हें फोन किया था।
4: सिर्फ एक ही अपील करूंगा, मेरा 26 साल का बेटा आज जिस भी वजह से उन्होंने बिना कारण से मार डाला, जिसको कारण पता नहीं चला, मेरे बच्चे की कहीं पे भी एक गलती नहीं थी। मैं तो शादी करने चला था, उसकी घर में बेटी बहू लाने चला था, मुझे नहीं पता था कि मेरा बच्चा ही खो दूंगा मैं। तो मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि उसको जस्टिस मिले, उसके अपराधियों को फांसी की सजा मिले, यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है।
0: अभी कई सवाल हैं जो सिया और चेतन के अंदर दबे हुए हैं, जिन्हें पुलिस को पता लगाना है। इस मामले में सबसे अहम कड़ी है दोनों का मोबाइल, जिससे कई जानकारी सामने आ सकती है। जैसे सिया और चेतन के बीच कब से बातचीत चल रही थी, दोनों के बीच किस तरह की बातचीत हो रही थी, क्या मर्डर की प्लानिंग की बात भी फोन के जरिए की गई? जांच ने तब नया मोड़ लिया जब जांचकर्ताओं को पता चला कि आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी ने कथित तौर पर अपने फोन से अपनी डिजिटल बातचीत मिटा दी थी। पुलिस के मुताबिक दोनों डिवाइस से व्हाट्सएप चैट, इंस्टाग्राम एक्टिविटी और अन्य डिलीट किए गए डेटा की अब फॉरेंसिक एनालिसिस के जरिए जाँच की जा रही है। शक है कि चैट को लोहगढ़ की घटना से पहले और बाद में डिलीट किया गया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपियों ने न केवल बातचीत हटाई बल्कि उसे अपने डिवाइस के रिसाइकल बिन से भी साफ कर दिया, जिससे फोरेंसिक रिकवरी जरूरी हो गई है।
5: जो उसका मोबाइल हमने ताबे में लिया पंचनामे से, और अभी हम उसका एफएसएल को भेजेंगे और उसका जो भी डाटा है उसमें हम एनालिसिस करेंगे।
6: बताया जा रहा है कि उसकी जो चैटिंग है वो डिलीट की गई है, कुछ इस सामने आया है ऐसा कुछ?

0: अभी तक तो हमारे अभी पंचनामा से क्या है, हम एपिसोड में वो क्यों वो पूछेंगे।
1: कॉल डिटेल रिकॉर्ड से दोनों के बीच लगातार संपर्क का पता चला है। सिया गोयल और चेतन चौधरी ने जनवरी से लेकर अब तक 2004 कॉल किए, जिनकी कुल अवधि लगभग 238 घंटे थी। ऐसे में मोबाइल की जांच से कई राज सामने आ सकते हैं। वैसे सिया के पिता प्रवीण गोयल और मां पूजा गोयल का दावा है कि 18 जून को लोहगढ़ जाने का प्लान सिया का नहीं था। केतन ने ही वीडियो कॉल करके सिया को लोहगढ़ बुलाया था। सिया के परिजन यहां तक दावा कर रहे हैं कि अगर सिया ने कुछ गलत किया है तो उसे भी लोहगढ़ किले से धक्का दे दो।
2: मैं तो कहता हूं अगर इसमें जो भी आरोपी हो, जो भी, जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है, अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूँगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहाँ से धक्का देके उसे भी ख़त्म कर दिया जाए। अब इससे ज़्यादा एक बाप और कुछ नहीं बोल सकता।
3: अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहाँ से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहाँ से ही उस दोषी को गिराया जाए। जो भी दोषी निकले, मेरी बेटी चाहे उसमें दोषी हो, ठीक है, उसे फांसी की सजा दो या लोहगढ़ जाके वहीं से ही गिरा दे।
1: पहले चेतन चौधरी ने दावा किया था कि वो वारदात के समय चट्टान के पास मौजूद नहीं था, लेकिन पूछताछ के दौरान उसके बयान में लगातार विरोधाभास सामने आए। जब पुलिस ने सख्ती बरती तो सिया और चेतन ने अपने अपराध स्वीकार कर लिया। एक थ्योरी ये भी आ रही है कि केतन विग लगाता था, और ये भी पता चला है कि सिया केतन के विग लगाने को पसंद नहीं करती थी। हालांकि इस थ्योरी को पुलिस खारिज कर रही है।
0: अभी जो है इन्वेस्टिगेशन का जो मोटिव है वो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम जो भी कंक्लूजन पे आएंगे तो अब हम बताएंगे।
4: जो विक का मामला बोल रहे हैं वो सच है या झूठ है?
0: अभी तक इन्वेस्टिगेशन में हमें ये मामला अभी तक आपसे ही अभी पता चल रहा है।
1: सवाल कई हैं, ऐसे में पूरी संभावना है कि सच तक पहुंचने के लिए अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। कृष्णा पांचाल के साथ ओमकार वाबले, पुणे आज तक।
5: अब खबर मुहर्रम जुलूस से जुड़े हुए हैं। मुंबई में जुलूस के दौरान एक खौफनाक मामला सामने आया। एक आरोपी द्वारा जहरीले पदार्थ को पेन किलर बताकर बांटने की कोशिश की गई। पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और अब एक्शन लिया जा रहा है।
6: मुंबई में मुहर्रम पर बड़ी साजिश रची गई थी, लेकिन मुहर्रम के जुलूस से ठीक पहले उस साजिश का खुलासा हो गया। एक ऐसी साजिश जिसे सुनकर मुंबई सहम गई है, पूरा महाराष्ट्र भी सहमा है और देश भी हैरान है। ये साजिश थी हजारों लोगों की जान लेने की, जहर देकर उन्हें मारने की। मुंबई में मुहर्रम के जुलूस में शामिल लोगों को वो जहरीला कैप्सूल बांटा जा रहा था, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने इस बड़ी और खौफनाक साजिश का राज फाश कर दिया। एक आरोपी फैयाज प्रेमजी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया और उससे 14,900 कैप्सूल बरामद किए। जांच में सामने आया है कि आरोपी फैयाज बीबीए कर चुका है और वो पुणे में पेंट का बिजनेस करता है। उसने 30,000 खाली कैप्सूल के ऑन ऑर्डर किए थे, साथ ही 50 किलो फास्फोरस भी मंगवाए थे।
7: एक संशयित व्यक्ति मुंबई पुलिस की टीम को मिला जो कि वहां पे कैप्सूल बांट रहा था। उसके पास कोई परमिशन नहीं थी तो मुंबई पुलिस ने उसको टोक के पूछताछ शुरू करी तो और डाउट बढ़ा। तो उसके बाद उसके पास से जितनी भी कैप्सूल्स का जो स्टॉक था वो जब्त किया गया।
6: पुलिस की माने तो गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने कबूला कि वो पेनकिलर कैप्सूल बताकर मुहर्रम के जुलूस में उसे बांट रहा था। आरोपी से जो कैप्सूल बरामद हुए उसमें जिंक फॉस्फाइड पाया गया। गिरफ्तार फैयाज प्रेमजी ने कई लोगों को उसने कैप्सूल दिए थे। कैप्सूल खाने से एक युवक की तबीयत भी बिगड़ी। जिंक फॉस्फाइड ऐसा केमिकल है जिसकी वजह से तेज उल्टी और पेट में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, चक्कर आना और बेहोशी, ब्लड प्रेशर तेजी से गिरना, दिल की धड़कन अनियमित होना, लीवर और किडनी फेल होने का खतरा रहता है। पुलिस अब जांच में जुटी है कि कहीं इस वारदात का आतंकी कनेक्शन तो नहीं, क्योंकि आरोपी फैयाज पहले ईरान और इराक जा चुका है। आरोपी के विदेशी संपर्कों की पड़ताल भी जारी है। दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
5: आज सड़क हादसों की सहारनपुर में सड़क हादसे का दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है। इस हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दूसरा मामला हिट एंड रन का है, जहां अहमदाबाद में एक कार सवार को कार सवार ने बाइक को टक्कर मार दी।
1: ये तस्वीरें दहला देने वाली है। एक कार को पीछे से दूसरी कार ने भयानक टक्कर मारी। तस्वीरें सहारनपुर में दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर रामपुर मनिहारन थाना क्षेत्र की हैं। बताया जा रहा है कि ड्राइवर कट पार कर आगे निकल गया था और निर्माणाधीन हाईवे की ओर लौटने के लिए कार बैक कर रहा था। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रही स्कॉर्पियो ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर कई मीटर तक घिसटती चली गई, जबकि स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में चार लोगों की जान चली गई, जबकि तीन बुरी तरह घायल। अब दूसरी तस्वीर देखिए, यह अहमदाबाद की तस्वीरें हैं। तेज रफ्तार कार ने यहां बाइक सवार को टक्कर मार दी। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि शहर के व्यास वाड़ी चार रास्ता पर यह तेज रफ्तार सफेद कार इधर से आती है, सामने से एक बाइक पर तीन युवक आ रहे हैं। अचानक कार ने बाइक को टक्कर मारी। टक्कर मारकर कार सवार फरार हो गया, जबकि तीनों युवकों की हालत गंभीर है। आज तक ब्यूरो।
5: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

चढ़ावा चोरी को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी को फिर घेरा, कहा इनके लिए नेशन नहीं डोनेशन। पर सीएम योगी ने दी चुनौती, बोले कृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर बोले सपा। पेपरली के विरोध में दिल्ली में यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट, मांगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। मुंबई में भी शिक्षा मंत्री के घर के बाहर हल्ला बोल। केतन अग्रवाल हत्याकांड में क्राइम सीन रिक्रिएट, मुख्य आरोपी सिया और चेतन को लेकर लोहागढ़ के लिए पहुंची पुलिस, जानबूझकर केतन का पासपोर्ट गायब करने की भी जानकारी।

पर्यावरण संरक्षण का खास सम्मान। आयरलैंड से दूसरे टी20 में भी शिकस्त के बाद 0-2 से सीरीज हारा वर्ल्ड चैंपियन भारत। 155 रन के लक्ष्य से एक रन पीछे रह गई टीम इंडिया। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के चढ़ावे में चोरी का मामला लगातार गहरा था जा रहा है। जांच के दायरे में अब सिर्फ आरोपी नहीं बल्कि उनसे जुड़े हुए लोग, उनकी आर्थिक गतिविधियां भी आ गई हैं। अयोध्या पुलिस ने इस मामले में नामजद कई आरोपियों के घर पर पहुंचकर उनके परिजनों से पूछताछ की है।

0: रामलला के चढ़ावे से चोरी के मामले में जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एसआईटी की जांच के बाद जहां राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कुछ लोगों के इस्तीफे सामने आए, वहीं अब पुलिस भी कार्रवाई तेज करती नजर आ रही है। अयोध्या पुलिस ने मामले में नामजद आरोपियों के घर पहुंचकर उनके परिजनों से पूछताछ की।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों के घर पर, जो अयोध्या के रहने वाले हैं, उनके घरों पर छापेमारी की जा रही है। मैं इस समय पर अयोध्या में ही रह रहे रमाशंकर मिश्रा, जो आरोपी थे जिनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, रमाशंकर मिश्रा के घर पर मौजूद हूँ। उनके परिजनों से, उसकी भाभी, बहन, उनके पिता से पूछताछ की जा रही है। ये रमाशंकर मिश्रा घर है जो राम मंदिर में नोट गिनने के काम में जुड़ा हुआ था। बता दें कि अयोध्या पुलिस ने इन सभी आरोपियों के घर से लगभग 80 लाख रुपए बरामद किए थे और उनको जुडिशियल कस्टडी में सोमवार तक के लिए भेज दिया गया था, लेकिन अब कल सोमवार को दोबारा जुडिशियल कस्टडी पर सुनवाई होनी है। उससे पहले पुलिस के द्वारा ये जांच की जा रही है, पड़ताल की जा रही है, इन सभी जो आरोपी हैं उनके घर वालों से पूछताछ की जा रही है कि ये लोग कब आते थे, कैसे आते थे, क्या क्या खरीदा गया।
0: अयोध्या पुलिस ने टिन्नू यादव, मनीष यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा के घरों पर पहुंचकर उनके परिवार के लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने आरोपियों के घर आने जाने, उनके संपर्कों और गतिविधियों से जुड़ी जानकारी जुटाई। आरोपी रमाशंकर मिश्रा के पिता अयोध्या के एक मंदिर में पुजारी हैं, पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की
2: जांच के लिए। और वो यहाँ रहते हैं कि नहीं रहते हैं, कहाँ वो है तो हम बताए कि कमरा पे अलग लिए रहते हैं, दो ढाई साल से यहाँ रहते नहीं हैं, आना जाना भी यहाँ का नहीं है, एक दिन कभी इस मंदिर के अंदर पांव नहीं रखते हैं।
1: कब से नहीं आया?
2: दो ढाई साल हो गए यहाँ नहीं आया। हाँ, दो साल।
1: राम मंदिर में कब से काम कर रहा था, क्या काम करता था रमाशंकर?
2: 5-6 साल हो गए, तब वहाँ पैसा गाने में बताओ था गाना कर्मचारी।
1: अच्छा, हाँ। कभी पैसा वैसा ज्यादा देखा आपने रमाशंकर के पास? बहुत
2: कभी नहीं, पैसा तो मांगा तो रहा था, पैसा पाई नहीं है? पैसा मांग लेते हैं कि दे दो कहीं जरूरत लगे।
1: पुलिस तो कह रही है कि सब मिलके 80 लाख रुपया चोरी कर लिए चढ़ावे से।
2: कुछ हो कि नया पैसा यहाँ कहूँ देखे न आया हुआ।
0: रमाशंकर मिश्रा के परिजनों का कहना है कि वो लंबे समय से घर नहीं आया है और किराए के मकान में रह रहा था।
3: हमको ना वो करे हैं ना हमको दिया है, कभी हमसे उनसे बनता ही नहीं था, कभी वो 10 रुपया हमको दिए ही नहीं थे। मुझको मेरे पति का सहारा है, बस कोई का सहारा नहीं है।
1: तो यहाँ रमाशंकर के बारे में और क्या, घर से कुछ पैसा वैसा ले गए, कुछ बरामदगी दिखाई है घर से? मिला है
3: कुछ नहीं मिला है सर, केवल कागजात मिला है वही लेकर गए हैं, आधार नंबर, खाता नंबर।
0: पुलिस के मुताबिक अब तक इस मामले में करीब 80 लाख रुपए की बरामदगी की जा चुकी है, इनमें से करीब 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से मिलने की बात सामने आई है।
1: टिन्नू यादव के इस हॉस्टल से ही, दुर्गापुरी कॉलोनी का ये अयोध्या में ही दुर्गापुरी कॉलोनी ये हॉस्टल है, और इस हॉस्टल में यूं तो यहाँ अयोध्या विश्वविद्यालय के आसपास के कॉलेज के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर दो कमरे हैं जो टिन्नू यादव ने अपने निजी यूज के लिए रखे हैं। कहने को तो दोनों कमरे पूजा घर हैं, उसका अपना कमरे उनके कब्जे में है, लेकिन कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद, जब गुरुवार देर रात टिन्नू यादव को अयोध्या पुलिस ने FIR दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया, तो शुक्रवार की सुबह उसको यहां लाया गया, और पुलिस के अनुसार जो दस्तावेज, जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है कि लगभग 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से बरामद हुए।
0: इस मामले में गिरफ्तार किए गए अनुकल्प मिश्रा पर भी जांच एजेंसियों की नजर है। पुलिस के अनुसार वो नोटों की गिनती की व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। जांच के दौरान उसकी संपत्तियों और वित्तीय लेनदेन की भी पड़ताल की जा रही है। 2 साल पहले खरीदे गए उसके मकान पर भी आज तक की टीम पहुंची।
4: मेरे भाई को फंसाया जा रहा है, मेरी मुझ में ही है, उनसे शादी हुई थी चाचा की, 10 साल से इनका केस चल रहा है, उनका मैटर चाचा चाची का है, वो अलग जाने।
0: उधर राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर CCTV कंट्रोल रूम की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार और BJP पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि CCTV बंद करके चोरी को अंजाम दिया गया, साथ ही ये भी कहा कि BJP की प्राथमिकता देश नहीं बल्कि चंदा है।
5: अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे, आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आज जब राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है, तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है।
6: इनकी निगाहें नेशन पे नहीं है, डोनेशन पर हैं। जो लोग ये कहते थे नेशन फर्स्ट, उनके लिए लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट है।
0: रामलला के चढ़ावे में गबन के इस मामले में पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, बड़ी रकम बरामद होने का दावा किया गया है और आरोपियों से जुड़े आर्थिक पहलुओं की भी जांच की जा रही है। साथ ही मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। ऐसे में सभी की नजर अब पुलिस जांच पर, आगे होने वाली कानूनी कार्रवाई पर टिकी हुई है। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।
7: खबर राजस्थान से, जहां पर बीजेपी सरकार के एक मंत्री सरकारी सब्सिडी को लेकर चर्चा में है। अब विपक्ष मंत्री पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मंत्री भागीरथ चौधरी इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो प्रक्रिया निर्धारित मापदंडों और सरकारी नियमों के तहत ही की गई है।
8: क्या एक मंत्री अपनी ही मंत्रालय की योजना से सब्सिडी ले सकता है? क्या नियम सभी के लिए बराबर हैं या पद और प्रभाव से बदल जाते हैं? केंद्र सरकार की कृषि योजनाओं को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। भारत सरकार के एक मंत्री ने सरकार से करीब 99 लाख की सब्सिडी प्राप्त की है। खीरे, टमाटर, शिमला मिर्च की खेती के लिए मंत्री जी ने अपने ही कृषि मंत्रालय से सब्सिडी ले ली। मामला सामने आने के बाद विपक्ष ने इसे लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं और निष्पक्ष जांच की मांग की है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस पर सत्ता का गलत प्रयोग बताया है। सचिन पायलट ने लिखा, कृषि मंत्री पर 99 लाख सब्सिडी का आरोप, अपनी ही योजना से लाभ लेने का मामला, पद के दुरुपयोग पर विवाद, पारदर्शिता और जांच की मांग। इस बीच आप नेता मनीष सिसोदिया ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।
9: मोदी सरकार के मंत्री खुद अपने ही विभाग में खीरा किसानों की सब्सिडी खा गए, तो चारों तरफ लूट पे लूट चली जा रही है। तो इस लूट वाली सरकार को हटाना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा कि ये लूट सरकार अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी।
8: वहीं मंत्री भागीरथ चौधरी ने विपक्ष के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि पूरी प्रक्रिया सरकारी नियमों और निर्धारित मापदंडों के तहत की गई है।
10: और 2018 से मैं इस आवेदन के लिए मैं लगा हुआ हूँ इसमें, तो कोई मैंने कोई प्रक्रिया के तहत मैंने काम किया। दूसरा, हम दो एमओएस हैं हम, और उसमें एक रामनाथ जी ठाकुर है और एक मैं हूँ। ये जो सब्सिडी वाला है, ये जो कुछ है, तो वो राज्य मंत्री और रामनाथ जी ठाकुर है।
8: फिलहाल इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। विपक्ष जहाँ इसे पद के दुरुपयोग का मामला बता रहा है, वहीं सरकार इसे नियमों के तहत हुई प्रक्रिया बता रही है। आज तक ब्यूरो।
7: पुणे में केतन अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी जांच की है। आरोपी नंबर एक और केतन के मंगेतर सिया को लेकर लोहगढ़ किले में लेकर पुलिस पहुंची, जांच पड़ताल की। लेकिन जहां से केतन को धक्का दिया गया और किन परिस्थितियों में दिया गया, उस पूरे के पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया।
0: सिया ने कैसे चेतन के साथ मिलकर केतन को मारा, कैसे उसने कत्ल के लिए लोहगढ़ का किला चुना, कैसे वो केतन को लेकर लोहगढ़ के किले तक पहुंची, कैसे उसने चेतन को कत्ल का इशारा किया, कैसे केतन चेतन और सिया की साजिश नहीं समझ पाया, कैसे इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया, इन सारे सवालों के जवाब तलाशने के लिए ये कवायद हो रही है। जिसका चेहरा ढका हुआ है वो है सिया, और ये वही लोहगढ़ का किला है जहां सिया को लेकर पुलिस पहुंची है।

0: लोहगढ़ किले में 18 जून को जो कुछ हुआ था उसी को दोहराने की कोशिश आज पुणे पुलिस ने की है। पहाड़ी पर स्थित किले के उसी जगह पर पुलिस की पड़ताल चल रही है। ये तस्वीरें धुंधली हैं, लेकिन देश को सन्न कर देने वाली साजिश की तस्वीर साफ करने के लिए पुलिस ने यह अहम कदम उठाया है। इन धुंधली तस्वीरों में सिया गोयल है, पुणे पुलिस की टीम है और साथ में है क्राइम सीन को रिक्रिएट करने वाले एक्सपर्ट। केतन अग्रवाल हत्याकांड की पड़ताल का ये अहम पड़ाव था। कई दिनों से माना जा रहा था कि पुणे पुलिस लोहगढ़ के किले में पहुंचकर क्राइम सीन को रिक्रिएट कर सकती है। तमाम कयासबाजी के बाद पुणे पुलिस की टीम सुबह 6:30 बजे ही लोहगढ़ किले में आज दस्तक दे दिया। पुलिस सिया को लेकर किले पहुंची। किला का गेट बंद कर दिया गया, पर्यटकों को रोक दिया गया, हर किसी के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई। सुबह 6:30 बजे सिया को लेकर पुलिस ने किले में चढ़ाई शुरू की। करीब घंटे भर बाद पुलिस क्राइम सीन पर पहुंच गई। जांच दल के साथ चेतन की कदकाठी का एक डमी भी था। क्राइम सीन पर पहुंचने के बाद पुलिस ने सिया से कई सवाल किए। 18 जून को क्या क्या हुआ था, केतन और चेतन कहां थे, किसने धक्का दिया, कैसे तीनों यहां तक पहुंचे, ऐसे एक एक सवाल के जवाब पुलिस ने सिया से पूछे और उसके जवाबों के मुताबिक ही क्राइम सीन की बारीकी से जांच पड़ताल की। फिर जिस जगह से केतन को धक्का दिया गया था पुलिस ने उस जगह से सिया के बयानों के हिसाब से क्राइम सीन रिक्रिएट किया। रिक्रिएशन के दौरान पुलिस ने उसी स्थान से डमी को नीचे धक्का देकर पूरी घटना को दोहराया जहां से कथित तौर पर केतन अग्रवाल को खाई में धक्का दिया गया था। इस प्रक्रिया का मकसद घटना के क्रम, हालात और उपलब्ध साक्ष्यों का मिलान करना था ताकि जाँच को और मजबूत किया जा सके।
1: ये लोहगढ़ किले के ऊपर जहाँ पे वो घटना हुई थी उस घटना पे एक डमी सीन क्रिएट करके वहाँ पे एक्यूज को ले जाया गया है, किस रूट से जाके कहाँ बैठे और क्या क्या प्रोसेस घड़ी और घटना कैसे घड़ी उसको रिक्रिएट जा रहा है किया गया है, उसमें एक्यूज ने बता दिया है।
0: केतन हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस आज के रिक्रिएशन को काफी अहम मान रही है।
2: सर, सीन को रिक्रिएट किया गया, एग्जैक्टली किस तरीके से ये पूरा हुआ?
3: आज सिया ने बताया कि उसने इन्फॉर्मेशन दी जैसे हुआ था, वो जो भी डिस्कवरी ऑफ फैक्ट है उस हिसाब से हमने सीन रिक्रिएट किया है।
2: दोनों आरोपियों को आप लेके आए थे?
3: सिया थी,
2: चेतन चौधरी जो है उसका भी अभी फॉरेंसिक करना अहम है क्योंकि जिस मतलब जहां से उसने एंट्री की थी उसी तरीके का वॉक करना और वो सीसीटीवी में फॉरेंसिक एविडेंसेस लेना वो भी बाकी।
3: अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, आज सिया का रिक्रिएशन हुआ है, वो सीन रिक्रिएशन हमने क्योंकि आज तो हमने सीन रिक्रिएट किया गया है, उसने अभी जो इन्वेस्टिगेशन में सारी बातें सामने आएगी उस हिसाब से अभी आगे भी इन्वेस्टिगेशन करना है।
0: इस जांच पड़ताल के बीच दावा ये भी किया जा रहा है कि सिया और चेतन ने केतन को मारने का रिहर्सल भी किया था।
2: रिक्रिएशन वो सिर्फ सिया को लाए थे, अभी चेतन चौधरी का रिक्रिएशन होना बाकी है। लोहगढ़ किले के यहाँ हम बाहर खड़े हैं जहाँ थोड़ी देर पहले ही सीन रिक्रिएशन पूरा हुआ, फॉरेंसिक की टीम यहाँ मौजूद थी। सबसे अहम बात यह है कि सिया और चेतन ने दोनों ने मिलकर इसकी रिहर्सल की थी, इससे पहले प्रैक्टिस हुई थी और प्रैक्टिस के बाद इसको अंजाम दिया गया था और उसी के बाद आप देख सकते हो कि सीन रिक्रिएशन ये लोहगढ़ किले पे अक्सर संडे को किला शुरू रहता है लेकिन आज पर्यटकों के लिए और जितने विजिटर्स हैं उन सभी के लिए इसे बंद किया गया था। लेकिन यही सीढ़ियां हैं, इसी सीढ़ियों से तीनों ऊपर गए थे, चेतन चौधरी गया था, उसके बाद सिया और केतन अग्रवाल भी गया था और उसी के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया।
0: हालांकि ऐसे तमाम दावों पर पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, सभी तथ्यों को वेरीफाई किया जा रहा है।
2: किसने किया था, चेतन ने किया था?
3: देखिए, आज तो हमने सीन रिक्रिएट किया गया, उसने अभी जो इन्वेस्टिगेशन में सारी बातें सामने आएगी उस हिसाब से अभी आगे भी इन्वेस्टिगेशन करना है।
2: देखो, इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि दोनों ने रिहर्सल की थी, इससे पहले प्रैक्टिस हुई थी कहीं ना कहीं और फिर आके इसे अंजाम दिया गया। तो क्या या ये अभी कह रही है कि वो प्रैक्टिस किस तरीके से हुई थी और कैसे उसने एग्जीक्यूट किया,
3: वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आज का तो सीन रिक्रिएशन हो।
0: इस हत्याकांड में सिया और चेतन के सामने आए नए नए वीडियो और केतन के परिजनों के आरोपों के बाद ट्विस्ट और बढ़ गया है। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार वाबले, लोहगढ़ आज तक।
4: फिर सिया ने केतन का कत्ल क्यों किया? क्या वो शादी से मना नहीं कर सकती थी? बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों को पच नहीं रहे। लिहाजा पुणे पुलिस सिया के साथ साथ उसके घर वालों से भी लगातार पूछताछ कर रही है।

0: सिया और केतन बस कुछ ही महीने बाद दोनों साथ फेरे लेने वाले थे। दोनों एक रिश्ते की डोर में बंधने वाले थे, लेकिन 18 जून को एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। लोहगढ़ के किले में ठीक इसी जगह पर केतन करीब 340 फीट गहरी खाई में जा गिरा और उसकी मौत हो गई। उस घटना के 5 दिन बाद यानी 23 जून को सिया की गिरफ्तारी हो जाती है और वहां से तब तक हादसा लगने वाला मामला पूरी तरह से अलग ट्रैक पर चला जाता है। कत्ल का आरोप लगता है। आरोप ये कि सिया ने अपने मंगेतर को मार डाला। इस गुनाह में सिया का साथ दिया उसके दोस्त चेतन चौधरी ने। वही चेतन जिसका सिया के साथ कई वीडियो सामने आ चुके हैं। एक वीडियो में दोनों क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखते दिखे हैं और सबसे अहम तो ये कि सिया और चेतन ने केतन की हत्या से ठीक एक दिन पहले यानी 17 जून को ही पुणे के कैफे में मुलाकात की थी। दोनों शाम करीब 4:30 बजे मिले थे। माना जा रहा है कि दोनों ने उसी कैफे में हत्या की फाइनल साजिश रची और उसे अंजाम देने पर करीब घंटे भर बात की थी। खुलासा ये भी हुआ है कि हत्या के पहले सिया ने लोहगढ़ किले का वीडियो यूट्यूब पर सर्च किया था और वहां के लोकेशन को कैफे में मुलाकात के दौरान चेतन के साथ साझा किया था। बात यहीं तक नहीं रुकी। सिया का बड़ा भाई साहिल गोयल भी चेतन को जानता था। दोनों ने साथ साथ क्रिकेट खेले थे। उससे जुड़ा वीडियो भी सामने आया है।
1: इस मामले में जो भी लोग जुड़े हुए उन सबसे हम पूछताछ कर रहे हैं।
2: कल साहिल से जो है 10 घंटे तक पूछताछ की गई है, लेकिन जो चेतन था और साहिल है, इन दोनों की दोस्ती कैसे हुई और कहां से शुरू हो गई, कहां से मुलाकात हुई और उनके बीच बातचीत शुरू हो गई थी?
1: चेतन और साहिल एक दूसरे को जानते थे, वो साथ में क्रिकेट भी खेलते थे और वो दोनों दोस्त भी थे।
2: और इसी क्रिकेट ग्राउंड में सिया भी आती थी और उसकी वजह से जो है चेतन और सिया एक दूसरे को पहचानने लगे थे।
1: यह भी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, हम हर तरीके से ये जारी है, उसी हिसाब से हम आगे बताएंगे।
0: चेतन के साथ तमाम वीडियो और कनेक्शन सामने आने के बाद पुणे पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया। सिया के परिजनों को रडार पर लिया और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। 27 जून को पुलिस ने सिया के माता पिता को पूछताछ के लिए बुलाया। दोनों से करीब 12 घंटे तक सवाल जवाब किए। पुलिस ने परिवार से कई अहम सवाल पूछे जिनके जवाब अब जांच का अहम हिस्सा बन गए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान सिया के पिता प्रवीण गोयल और मां पूजा गोयल से पुलिस ने पूछा कि क्या सिया ने आपको चेतन के साथ अपने प्रेम संबंध के बारे में बताया था, क्या आपको इसकी जानकारी थी? परिजनों ने जवाब दिया कि सिया ने हमें अपने प्रेम संबंध के बारे में कभी नहीं बताया था, हमें इसकी जानकारी अब हुई है। पुलिस ने पूछा कि क्या आपने सिया पर केतन के साथ शादी करने का दबाव बनाया था? तो उन्होंने कहा कि हमने सिया पर शादी के लिए किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला था। 27 जून को हुई पूछताछ के दौरान अपने माता पिता के साथ सिया का भाई साहिल भी मौजूद था। साहिल से 26 जून को ही पुलिस ने केतन हत्याकांड को लेकर सवाल जवाब किए थे। शुक्रवार को साहिल गोयल से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उस पूछताछ में जांच से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई थी। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और आने वाले दिनों में कुछ और लोगों से पूछताछ की जा सकती है। जांच एजेंसियां पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। इतना ही नहीं, पुलिस ने आज सिर्फ सिया का सीन रिक्रिएट किया, अभी चेतन का सीन भी रिक्रिएट किया जा सकता है। जानकारी जुटाई जाएगी कि इतने बड़े अपराध को इन दोनों ने इतना सरल कैसे समझ लिया, कैसे इनके दिमाग में ये बात नहीं आई कि केतन को मार डालना विकल्प नहीं था, कैसे ये नहीं समझ पाए कि केतन के कत्ल के बाद इनका अंजाम क्या होगा। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार बावले, लोहगढ़, पुणे, आज तक।
3: केतन अग्रवाल का परिवार लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। उसके माता पिता की मांग पर फडणवीस सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई करने की मांग उठा ली है। उज्जवल निकम को विशेष सरकारी वकील नियुक्त किया गया, लेकिन इंसाफ की यह लड़ाई अभी लंबे चलने वाली है।
4: किया है बहुत ही शॉकिंग है और मेरे लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था।
0: केतन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी यादें हैं। उसकी यादों में आंसू हैं, गम है, गुस्सा है। नाराजगी सिर्फ अग्रवाल परिवार में ही नहीं है, पुणे शहर में हर कोई सवाल हत्याकांड को लेकर उठा रहा है और कह रहा है कि दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए।
4: केतन की चाची लगती हूँ और सिया ने जो किया है वो बहुत ही शॉकिंग है और मेरे लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था। वो मुझे इतना ट्रस्ट था वो लड़की पे, उसने जो किया है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। और इसके आगे उसके एज की या फिर कोई भी एज की लड़की ये सब चीजें करने से पहले 100 बार डरनी चाहिए। ऐसा जस्टिस मिलना चाहिए हमारे केतन को। दिस इज ओनली ऑल आई वॉन्ट।
5: आप चाहती हो किशन की बचपन से उसे देखा होगा, कुछ यादें साझा करना चाहिए?
4: सेकंड स्टैंडर्ड से ही देख रही हूँ मैं वो बच्चे को, इतना मासूम, इतना प्यारा लड़का। मतलब आई वॉज वेरी हैप्पी कि उसका मतलब रिश्ता पक्का हो गया, बट वो लड़की ने जो किया दैट वॉज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। और जो स्टूपिड रीजंस उसने दिए है कि बाल्ड है और तोतला बोलता है, वो सब बातें तो जब रिश्ता पक्का हुआ था तो वो सब क्लियर हो गई थी। और वो ये सब हरकतें कर रही है, ये सब झूठ बोल रही है। दिस इज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग फॉर एवरीबडी इन द फैमिली।
0: केतन के पिता विशाल अग्रवाल अपील कर रहे हैं कि उनके बेटे के इंसाफ के लिए 18 जून को जो लोग लोहगढ़ किले में मौजूद थे वो गवाही के लिए आगे आए। विशाल अग्रवाल बता रहे हैं कि वारदात वाले दिन कई लोगों ने उन्हें फोन किया था।
6: सिर्फ एक ही अपील करूंगा, मेरा 26 साल का बेटा आज जिस भी वजह से उन्होंने बिना कारण से मार डाला, जिसको कारण पता नहीं चला, मेरे बच्चे की कहीं पे भी एक गलती नहीं थी। मैं तो शादी करने चला था, उसकी घर में बेटी बहू लाने चला था, मुझे नहीं पता था कि मेरा बच्चा ही खो दूंगा मैं। तो मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि उसको जस्टिस मिले, उसके अपराधियों को फांसी की सजा मिले, यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है।
0: अभी कई सवाल हैं जो सिया और चेतन के अंदर दबे हुए हैं, जिन्हें पुलिस को पता लगाना है। इस मामले में सबसे अहम कड़ी है दोनों का मोबाइल, जिससे कई जानकारी सामने आ सकती है। जैसे सिया और चेतन के बीच कब से बातचीत चल रही थी, दोनों के बीच किस तरह की बातचीत हो रही थी, क्या मर्डर की प्लानिंग की बात भी फोन के जरिए की गई। जांच ने तब नया मोड़ लिया जब जांचकर्ताओं को पता चला कि आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी ने कथित तौर पर अपने फोन से अपनी डिजिटल बातचीत मिटा दी थी। पुलिस के मुताबिक दोनों डिवाइस से व्हाट्सएप चैट, इंस्टाग्राम एक्टिविटी और अन्य डिलीट किए गए डेटा की अब फोरेंसिक एनालिसिस के जरिए जाँच की जा रही है। शक है कि चैट को लोहगढ़ की घटना से पहले और बाद में डिलीट किया गया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपियों ने न केवल बातचीत हटाई बल्कि उसे अपने डिवाइस के रिसाइकल बिन से भी साफ कर दिया, जिससे फोरेंसिक रिकवरी जरूरी हो गई है।
1: जो उसका मोबाइल हमने ताबे में लिया पंचनामे से, और अभी हम उसका एफएसएल को भेजेंगे और उसका जो भी डाटा है उसमें हम एनालिसिस करेंगे।
2: बताया जा रहा है कि उसकी जो चैटिंग है वो डिलीट की गई है, कुछ इस सामने आया है ऐसा कुछ?
1: अभी तक तो हमारे अभी पंचनामे से क्या है, हम एफएसएल में वो क्यूरी वो पूछेंगे।
0: कॉल डिटेल रिकॉर्ड से दोनों के बीच लगातार संपर्क का पता चला है। सिया गोयल और चेतन चौधरी ने जनवरी से लेकर अब तक 2004 कॉल किए, जिनकी कुल अवधि लगभग 238 घंटे थी। ऐसे में मोबाइल की जांच से कई राज सामने आ सकते हैं। वैसे सिया के पिता प्रवीण गोयल और मां पूजा गोयल का दावा है कि 18 जून को लोहगढ़ जाने का प्लान सिया का नहीं था। केतन ने ही वीडियो कॉल करके सिया को लोहगढ़ बुलाया था। सिया के परिजन यहां तक दावा कर रहे हैं कि अगर सिया ने कुछ गलत किया है तो उसे भी लोहगढ़ किले से धक्का दे दो।
7: मैं तो कहता हूँ अगर इसमें जो भी आरोपी हो, जो भी, जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है, अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूँगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहाँ से धक्का दे के उसे भी ख़त्म कर दिया जाए। अब इससे ज़्यादा एक बाप और कुछ नहीं बोल सकता।
8: अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहाँ से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे है वहाँ से ही उस दोषी को गिराया जाए। जो भी दोषी निकले, मेरी बेटी चाहे उसमें दोषी हो, ठीक है, उसे फांसी की सजा दो या लोहगढ़ जाके वहीं से ही गिरा दे।
0: पहले चेतन चौधरी ने दावा किया था कि वो वारदात के समय चट्टान के पास मौजूद नहीं था, लेकिन पूछताछ के दौरान उसके बयान में लगातार विरोधाभास सामने आए। जब पुलिस ने सख्ती बरती तो सी और चेतन ने अपने अपराध स्वीकार कर लिया। एक थ्योरी ये भी आ रही है कि केतन विग लगाता था, और ये भी पता चला है कि सिया केतन के विग लगाने को पसंद नहीं करती थी। हालांकि इस थ्योरी को पुलिस खारिज कर रही है।
1: अभी जो है इन्वेस्टिगेशन का जो मोटिव है वो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हम जो भी कंक्लूजन पे आएंगे तो अब हम बताएंगे।
2: जो विग का मामला बोल रहे हैं वो सच है या झूठ है?
1: अभी तक इन्वेस्टिगेशन में हमें ये मामला अभी तक आपसे ही अभी पता चल रहा है।
0: सवाल कई हैं, ऐसे में पूरी संभावना है कि सच तक पहुंचने के लिए अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। कृष्णा पांचाल के साथ ओमकार वाबले, पुणे आज तक।
3: आज सड़क हादसों के सहारनपुर में सड़क हादसे का दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है। इस हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दूसरा मामला हिट एंड रन का है, जहां अहमदाबाद में एक कार सवार को कार सवार ने बाइक को टक्कर मार दी।
0: ये तस्वीरें दहला देने वाली हैं। एक कार को पीछे से दूसरी कार ने भयानक टक्कर मारी। तस्वीरें सहारनपुर में दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर रामपुर मनिहारन थाना क्षेत्र की हैं। बताया जा रहा है कि ड्राइवर कट पार कर आगे निकल गया था और निर्माणाधीन हाईवे की ओर लौटने के लिए कार बैक कर रहा था। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रही स्कॉर्पियो ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर कई मीटर तक घिसटते चली गई, जबकि स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में चार लोगों की जान चली गई, जबकि तीन बुरी तरह घायल। अब दूसरी तस्वीर देखिए, यह अहमदाबाद की तस्वीरें हैं। तेज रफ्तार कार ने यहां बाइक सवार को टक्कर मार दी। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि शहर के व्यास वाड़ी चार रास्ता पर यह तेज रफ्तार सफेद कार इधर से आती है, सामने से एक बाइक पर तीन युवा आ रहे हैं। अचानक कार ने बाइक को टक्कर मारी। टक्कर मारकर कार सवार फरार हो गया, जबकि तीनों युवकों की हालत गंभीर है। आज तक ब्यूरो
3: रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

चढ़ावा चोरी को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी को फिर घेरा, कहा इनके लिए नेशन नहीं डोनेशन। पर सीएम योगी ने दी चुनौती, बोले कृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर बोले सपा। पेपर लीक के विरोध में दिल्ली में यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट, मांगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। मुंबई में भी शिक्षा मंत्री के घर के बाहर हल्ला बोल। केतन अग्रवाल हत्याकांड में क्राइम सीन रिक्रिएट, मुख्य आरोपी सिया और चेतन को लेकर लोहगढ़ के लिए पहुंची पुलिस, जानबूझकर केतन का पासपोर्ट गायब करने की भी जानकारी।

አሰማን። आयरलैंड से दूसरे टी20 में भी शिकस्त के बाद 0-2 से सीरीज हारा। वर्ल्ड चैंपियन भारत 155 रन के लक्ष्य से एक रन पीछे रह गई टीम इंडिया। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के चढ़ावे में चोरी का मामला लगातार गहराता जा रहा है। जांच के दायरे में अब सिर्फ आरोपी नहीं बल्कि उनसे जुड़े हुए लोग, उनकी आर्थिक गतिविधियां भी आ गए हैं। अयोध्या पुलिस ने इस मामले में नामजद कई आरोपियों के घर पर पहुंचकर उनके परिजनों से पूछताछ की है।

0: रामलला के चढ़ावे से चोरी के मामले में जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एसआईटी की जांच के बाद जहां राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कुछ लोगों के इस्तीफे सामने आए, वहीं अब पुलिस भी कार्रवाई तेज करती नजर आ रही है। अयोध्या पुलिस ने मामले में नामजद आरोपियों के घर पहुंचकर उनके परिजनों से पूछताछ की।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों के घर पर, जो अयोध्या के रहने वाले हैं, उनके घरों पर छापेमारी की जा रही है। मैं इस समय पर अयोध्या में ही रह रहे रमाशंकर मिश्रा, जो आरोपी थे जिनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, रमाशंकर मिश्रा के घर पर मौजूद हूँ। उनके परिजनों से, उसकी भाभी, बहन, उनके पिता से पूछताछ की जा रही है। ये रमाशंकर मिश्रा घर है जो राम मंदिर में नोट गिनने के काम में जुड़ा हुआ था। बता दें कि अयोध्या पुलिस ने इन सभी आरोपियों के घर से लगभग 80 लाख रुपए बरामद किए थे और इनको जुडिशियल कस्टडी में सोमवार तक के लिए भेज दिया गया था, लेकिन अब कल सोमवार को दोबारा जुडिशियल कस्टडी पर सुनवाई होनी है। उससे पहले पुलिस के द्वारा ये जांच की जा रही है, पड़ताल की जा रही है, इन सभी जो आरोपी हैं उनके घर वालों से पूछताछ की जा रही है कि ये लोग कब आते थे, कैसे आते थे, क्या क्या खरीदा गया।
0: अयोध्या पुलिस ने टिन्नू यादव, मनीष यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा के घरों पर पहुंचकर उनके परिवार के लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने आरोपियों के घर आने जाने, उनके संपर्कों और गतिविधियों से जुड़ी जानकारी जुटाई। आरोपी रमाशंकर मिश्रा के पिता अयोध्या के एक मंदिर में पुजारी हैं, पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की
2: जाँच के लिए। और वो यहाँ रहते हैं कि नहीं रहते हैं, कहाँ वो है, तो हम बताए कि कमरा पे अलग लिए रहते हैं, दो ढाई साल से यहाँ रहते नहीं हैं, आना जाना भी यहाँ का नहीं है, एक दिन कभी इस मंदिर के अंदर पाँव नहीं रखते हैं।
1: कब से नहीं आया?
2: दो ढाई साल हो गए यहाँ नहीं आया। हाँ, दो साल।
1: राम मंदिर में कब से काम कर रहा था, क्या काम करता था रमाशंकर?
2: 5-6 साल हो गए, तब वहाँ पैसा गाने में बताओ था गाना कर्मचारी।
1: अच्छा, हाँ। अभी पैसा ऐसा ज्यादा देखा आपने रमाशंकर के पास? बहुत
2: कभी नहीं, पैसा तो मांगा तो रहा, पैसा पाई नहीं है? पैसा मांग लेते हैं कि दे दो, कहीं जरूरत लगे।
1: पुलिस तो कह रही है कि सब मिलके 80 लाख रुपया चोरी कर लिए चढ़ावे से।
2: कुछ ये कि नया पैसा यहाँ कहूँ देखबे ना आया हुआ।
0: रमाशंकर मिश्रा के परिजनों का कहना है कि वो लंबे समय से घर नहीं आया है और किराए के मकान में रह रहा था।
3: हमको ना वो करे हैं ना हमको दिया है, कभी हमसे उनसे बनता ही नहीं था, कभी वो 10 रुपया हमको दिए ही नहीं थे। मुझको मेरे पति का सहारा है, बस कोई का सहारा नहीं है।
1: तो यहाँ रमाशंकर के बारे में और क्या, घर से कुछ पैसा वैसा ले गए, कुछ बरामदगी दिखाई है,
4: घर से मिला है?
3: कुछ नहीं मिला है सर, केवल कागजात मिला है, वही लेकर गए हैं, आधार नंबर, खाता नंबर।
0: पुलिस के मुताबिक अब तक इस मामले में करीब 80 लाख रुपए की बरामदगी की जा चुकी है, इनमें से करीब 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से मिलने की बात सामने आई है।
1: टिन्नू यादव के इस हॉस्टल से ही, दुर्गापुरी कॉलोनी का ये अयोध्या में ही दुर्गापुरी कॉलोनी ये हॉस्टल है, और इस हॉस्टल में यूं तो यहाँ अयोध्या विश्वविद्यालय के आसपास के कॉलेज के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर दो कमरे हैं जो टिन्नू यादव ने अपने निजी यूज के लिए रखे हैं। कहने को तो दोनों कमरे पूजा घर है, उसका अपना कमरे उनके कब्जे में है, लेकिन कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद, जब गुरुवार देर रात टिन्नू यादव को अयोध्या पुलिस ने एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया, तो शुक्रवार की सुबह उसको यहां लाया गया, और पुलिस के अनुसार जो दस्तावेज, जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है, कि लगभग 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से बरामद हुए।
0: इस मामले में गिरफ्तार किए गए अनुकल्प मिश्रा पर भी जांच एजेंसियों की नजर है। पुलिस के अनुसार वो नोटों की गिनती की व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। जांच के दौरान उसकी संपत्तियों और वित्तीय लेनदेन की भी पड़ताल की जा रही है। 2 साल पहले खरीदे गए उसके मकान पर भी आज तक की टीम पहुंची।
5: मेरे भाई को फंसाया जा रहा है, मेरी मुझ में ही है, उनसे शादी हुई थी चाचा की, 10 साल से इनका तेज चल रहा है, उनका मैटर चाचा चाची का है, वो अलग जाने।
0: उधर राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर सीसीटीवी कंट्रोल रूम की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सीसीटीवी बंद करके चोरी को अंजाम दिया गया, साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी की प्राथमिकता देश नहीं बल्कि चंदा है।
6: अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे, आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आज जब राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है, तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है।
4: इनकी निगाहें नेशन पे नहीं है, डोनेशन पर हैं। जो लोग ये कहते थे नेशन फर्स्ट, उनके लिए लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट है।
0: रामलला के चढ़ावे में गबन के इस मामले में पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, बड़ी रकम बरामद होने का दावा किया गया है और आरोपियों से जुड़े आर्थिक पहलुओं की भी जांच की जा रही है। साथ ही मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। ऐसे में सभी की नजर अब पुलिस जाँच पर, आगे होने वाली कानूनी कार्रवाई पर टिकी हुई है। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।
7: पुणे में कीर्तन अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी जांच की है। आरोपी नंबर एक और कीर्तन के मंगेतर सिया को लेकर लोहगढ़ किले में लेकर पुलिस पहुंची, जांच पड़ताल की। लेकिन जहां से कीर्तन को धक्का दिया गया और किन परिस्थितियों में दिया गया, उस पूरे के पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया।
0: सिया ने कैसे चेतन के साथ मिलकर कीर्तन को मारा, कैसे उसने कत्ल के लिए लोहगढ़ का किला चुना, कैसे वो केतन को लेकर लोहगढ़ के किले तक पहुंची, कैसे उसने चेतन को कत्ल का इशारा किया, कैसे केतन चेतन और सिया की साजिश नहीं समझ पाया, कैसे इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया, इन सारे सवालों के जवाब तलाशने के लिए ये कवायद हो रही है। जिसका चेहरा ढका हुआ है वो है सिया, और ये वही लोहगढ़ का किला है जहां सिया को लेकर पुलिस पहुंची है।

0: लोहगढ़ किले में 18 जून को जो कुछ हुआ था उसी को दोहराने की कोशिश आज पुणे पुलिस ने की है। पहाड़ी पर स्थित किले के उसी जगह पर पुलिस की पड़ताल चल रही है। ये तस्वीरें धुंधली हैं, लेकिन देश को सन्न कर देने वाली साजिश की तस्वीर साफ करने के लिए पुलिस ने ये अहम कदम उठाया है। इन धुंधली तस्वीरों में सिया गोयल है, पुणे पुलिस की टीम है और साथ में है क्राइम सीन को रिक्रिएट करने वाले एक्सपर्ट। केतन अग्रवाल हत्याकांड की पड़ताल का ये अहम पड़ाव था। कई दिनों से माना जा रहा था कि पुणे पुलिस लोहगढ़ के किले में पहुंचकर क्राइम सीन को रिक्रिएट कर सकती है। तमाम कयासबाजी के बाद पुणे पुलिस की टीम सुबह 6:30 बजे ही लोहगढ़ किले में आज दस्तक दे दिया। पुलिस सिया को लेकर किले पहुंची। किला का गेट बंद कर दिया गया, पर्यटकों को रोक दिया गया, हर किसी के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई। सुबह 6:30 बजे सिया को लेकर पुलिस ने किले में चढ़ाई शुरू की। करीब घंटे भर बाद पुलिस क्राइम सीन पर पहुंच गई। जांच दल के साथ चेतन की कदकाठी का एक डमी भी था। क्राइम सीन पर पहुंचने के बाद पुलिस ने सिया से कई सवाल किए। 18 जून को क्या क्या हुआ था, केतन और चेतन कहां थे, किसने धक्का दिया, कैसे तीनों यहां तक पहुंचे? ऐसे एक एक सवाल के जवाब पुलिस ने सिया से पूछे और उसके जवाबों के मुताबिक ही क्राइम सीन की बारीकी से जांच पड़ताल की। फिर जिस जगह से केतन को धक्का दिया गया था पुलिस ने उस जगह से सिया के बयानों के हिसाब से क्राइम सीन रिक्रिएट किया। रिक्रिएशन के दौरान पुलिस ने उसी स्थान से डमी को नीचे धक्का देकर पूरी घटना को दोहराया जहां से कथित तौर पर केतन अग्रवाल को खाई में धक्का दिया गया था। इस प्रक्रिया का मकसद घटना के क्रम, हालात और उपलब्ध साक्ष्यों का मिलान करना था ताकि जांच को और मजबूत किया जा सके।
1: ये लोहगढ़ किले के ऊपर जहाँ पे वो घटना हुई थी उस घटना पे एक डमी सीन क्रिएट करके वहाँ पे एक्यूज को ले जाया गया है, किस रूट से जाके कहाँ बैठे और क्या क्या प्रोसेस घड़ी और घटना कैसे घड़ी उसको रिक्रिएट जा रहा किया गया है, उसमें एक्यूज ने बता दिया है।
0: केतन हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस आज के रिक्रिएशन को काफी अहम मान रही है।
2: सर, सीन को रिक्रिएट किया गया, एग्जैक्टली किस तरीके से ये पूरा हुआ?
3: आज सिया ने बताया कि उसने इन्फॉर्मेशन दी जैसे हुआ था, वो जो भी डिस्कवरी ऑफ फैक्ट है उस हिसाब से हमने सीन रिक्रिएट किया है।
2: दोनों आरोपियों को आप लेके आए थे?
3: सिया थी,
2: चेतन चौधरी जो है उसका भी अभी फॉरेंसिक करना अहम है क्योंकि जिस मतलब जहां से उसने एंट्री की थी उसी तरीके का वॉक करना और वो सीसीटीवी में फॉरेंसिक एविडेंसेस लेना वो भी बाकी।
3: अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, आज सिया का रिक्रिएशन हुआ है, वो सीन रिक्रिएशन हमने क्योंकि आज तो हमने सीन रिक्रिएट किया गया, उसने अभी जो इन्वेस्टिगेशन में सारी बातें सामने आएगी उस हिसाब से अभी आगे भी इन्वेस्टिगेशन करना है।
0: इस जांच पड़ताल के बीच दावा ये भी किया जा रहा है कि सिया और चेतन ने केतन को मारने का रिहर्सल भी किया था।
2: रिक्रिएशन वो सिर्फ सिया को लाए थे, अभी चेतन चौधरी का रिक्रिएशन होना बाकी है। लोहगढ़ किले के यहाँ हम बाहर खड़े हैं जहाँ थोड़ी देर पहले ही सीन रिक्रिएशन पूरा हुआ, फॉरेंसिक की टीम यहाँ मौजूद थी। सबसे अहम बात यह है कि सिया और चेतन ने दोनों ने मिलकर इसकी रिहर्सल की थी, इससे पहले प्रैक्टिस हुई थी और प्रैक्टिस के बाद इसको अंजाम दिया गया था और उसी के बाद आप देख सकते हो कि सीन रिक्रिएशन ये लोहगढ़ किले पे अक्सर संडे को किला शुरू रहता है लेकिन आज पर्यटकों के लिए। और जितने
4: फिर सिया ने केतन का कत्ल क्यों किया, क्या वो शादी से मना नहीं कर सकती थी? बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों को पच नहीं रहे, लिहाजा पुणे पुलिस सिया के साथ साथ उसके घर वालों से भी लगातार पूछताछ कर रही है।

0: सिया और केतन बस कुछ ही महीने बाद दोनों साथ फेरे लेने वाले थे। दोनों एक रिश्ते की डोर में बंधने वाले थे, लेकिन 18 जून को एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। लोहगढ़ के किले में ठीक किसी जगह पर केतन करीब 340 फीट गहरी खाई में जा गिरा और उसकी मौत हो गई। उस घटना के 5 दिन बाद यानी 23 जून को सिया की गिरफ्तारी हो जाती है और वहां से तब तक हादसा लगने वाला मामला पूरी तरह से अलग ट्रैक पर चला जाता है। कत्ल का आरोप लगता है। आरोप ये कि सिया ने अपने मंगेतर को मार डाला। इस गुनाह में सिया का साथ दिया उसके दोस्त चेतन चौधरी ने। वही चेतन जिसका सिया के साथ कई वीडियो सामने आ चुके हैं। एक वीडियो में दोनों क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखते दिखे हैं और सबसे अहम तो ये कि सिया और चेतन ने केतन की हत्या से ठीक एक दिन पहले यानी 17 जून को ही पुणे के कैफे में मुलाकात की थी। दोनों शाम करीब 4:30 बजे मिले थे। माना जा रहा है कि दोनों ने उसी कैफे में हत्या की फाइनल साजिश रची और उसे अंजाम देने पर करीब घंटे भर बात की थी। खुलासा ये भी हुआ है कि हत्या के पहले सिया ने लोहगढ़ किले का वीडियो यूट्यूब पर सर्च किया था और वहां के लोकेशन को कैफे में मुलाकात के दौरान चेतन के साथ साझा किया था। बात यहीं तक नहीं रुकी। सिया का बड़ा भाई साहिल गोयल भी चेतन को जानता था। दोनों ने साथ साथ क्रिकेट खेले थे। उससे जुड़ा वीडियो भी सामने आया है।
1: इस मामले में जो भी लोग जुड़े हुए उन सबसे हम पूछताछ कर रहे हैं।
2: कल साहिल से जो है 10 घंटे तक पूछताछ की गई है, लेकिन जो चेतन था और साहिल है, इन दोनों की दोस्ती कैसे हुई और कहां से शुरू हो गई, कहां से मुलाकात हुई और उनके बीच बातचीत शुरू हो गई थी?
1: चेतन और साहिल एक दूसरे को जानते थे, वो साथ में क्रिकेट भी खेलते थे और वो दोनों दोस्त भी थे
2: और इसी क्रिकेट ग्राउंड में सिया भी आती थी और उसकी वजह से जो है चेतन और सिया एक दूसरे को पहचानने लगे थे।
1: ये अभी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, हम हर तरीके से ये जारी है, उस हिसाब से हम आगे बताएंगे।
0: चेतन के साथ तमाम वीडियो और कनेक्शन सामने आने के बाद पुणे पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया। सिया के परिजनों को रडार पर लिया और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। 27 जून को पुलिस ने सिया के माता पिता को पूछताछ के लिए बुलाया। दोनों से करीब 12 घंटे तक सवाल जवाब किए। पुलिस ने परिवार से कई अहम सवाल पूछे जिनके जवाब अब जांच का अहम हिस्सा बन गए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान सिया के पिता प्रवीण गोयल और मां पूजा गोयल से पुलिस ने पूछा कि क्या सिया ने आपको चेतन के साथ अपने प्रेम संबंध के बारे में बताया था, क्या आपको इसकी जानकारी थी? परिजनों ने जवाब दिया कि सिया ने हमें अपने प्रेम संबंध के बारे में कभी नहीं बताया था, हमें इसकी जानकारी अब हुई है। पुलिस ने पूछा कि क्या आपने सिया पर केतन के साथ शादी करने का दबाव बनाया था, तो उन्होंने कहा कि हमने सिया पर शादी के लिए किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला था। 27 जून को हुई पूछताछ के दौरान अपने माता पिता के साथ सिया का भाई साहिल भी मौजूद था। साहिल से 26 जून को ही पुलिस ने केतन हत्याकांड को लेकर सवाल जवाब किए थे। शुक्रवार को साहिल गोयल से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उस पूछताछ में जांच से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई थी। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और आने वाले दिनों में कुछ और लोगों से पूछताछ की जा सकती है। जांच एजेंसियां पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। इतना ही नहीं, पुलिस ने आज सिर्फ सिया का सीन रिक्रिएट किया, अभी चेतन का सीन भी रिक्रिएट किया जा सकता है। जानकारी जुटाई जाएगी कि इतने बड़े अपराध को इन दोनों ने इतना सरल कैसे समझ लिया, कैसे इनके दिमाग में ये बात नहीं आई कि केतन को मार डालना विकल्प नहीं था, कैसे ये नहीं समझ पाए कि केतन के कत्ल के बाद इनका अंजाम क्या होगा। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार भावले, लोहगढ़, पुणे, आज तक।
3: केतन अग्रवाल का परिवार लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। उसके माता पिता की मांग पर फडणवीस सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई करने की मांग उठा ली है। उज्जवल निगम को विशेष सरकारी वकील नियुक्त किया गया, लेकिन इंसाफ की यह लड़ाई अभी लंबे चलने वाली है।

0: डेफिनेटली हार्ट ब्रेकिंग था।
1: केतन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी यादें हैं। उसकी यादों में आंसू हैं, गम है, गुस्सा है। नाराजगी सिर्फ अग्रवाल परिवार में ही नहीं है, पुणे शहर में हर कोई सवाल हत्याकांड को लेकर उठा रहा है और कह रहा है कि दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए।
0: केतन की चाची लगती हूँ।
2: okay.
0: और सिया ने जो किया है वो बहुत ही शॉकिंग है और मेरे लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था। वो मुझे इतना ट्रस्ट था वो लड़की पे, उसने जो किया है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। और इसके आगे उसके एज की या फिर कोई भी एज की लड़की ये सब चीजें करने से पहले 100 बार डरनी चाहिए। ऐसा जस्टिस मिलना चाहिए हमारे केतन को। दिस इज ओनली व्हाट ऑल आई वांट।
2: आप चाहती हो किशन की बचपन से उसे देखा होगा, कुछ यादें साझा करना चाहिए।
0: सेकंड स्टैंडर्ड से ही देख रही हूँ मैं वो बच्चे को, इतना मासूम, इतना प्यारा लड़का। मतलब आई वॉज वेरी हैप्पी कि उसका मतलब रिश्ता पक्का हो गया, बट वो लड़की ने जो किया दैट वॉज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। और जो स्टूपिड रीजंस उसने दिए है कि बाल्ड है और तोतला बोलता है, वो सब बातें तो जब रिश्ता पक्का हुआ था तो वो सब क्लियर हो गई थी। और वो ये सब हरकतें कर रही है, ये सब झूठ बोल रही है। दिस इज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग फॉर एवरीबडी इन द फैमिली।
1: केतन के पिता विशाल अग्रवाल अपील कर रहे हैं कि उनके बेटे के इंसाफ के लिए 18 जून को जो लोग लोहगढ़ किले में मौजूद थे वो गवाही के लिए आगे आएं। विशाल अग्रवाल बता रहे हैं कि वारदात वाले दिन कई लोगों ने उन्हें फोन किया था।
3: सिर्फ एक ही अपील करूंगा, मेरा 26 साल का बेटा आज जिस भी वजह से उन्होंने बिना कारण से मार डाला, जिसको कारण पता नहीं चला, मेरे बच्चे की कहीं पे भी एक गलती नहीं थी। मैं तो शादी करने चला था, उसकी घर में बेटी बहू लाने चला था, मुझे नहीं पता था कि मेरा बच्चा ही खो दूंगा मैं। तो मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि उसको जस्टिस मिले, उसके अपराधियों को फांसी की सजा मिले, यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है।
1: अभी कई सवाल हैं जो सिया और चेतन के अंदर दबे हुए हैं, जिन्हें पुलिस को पता लगाना है। इस मामले में सबसे अहम कड़ी है दोनों का मोबाइल, जिससे कई जानकारी सामने आ सकती है। जैसे सिया और चेतन के बीच कब से बातचीत चल रही थी, दोनों के बीच किस तरह की बातचीत हो रही थी, क्या मर्डर की प्लानिंग की बात भी फोन के जरिए की गई। जांच ने तब नया मोड़ लिया जब जांचकर्ताओं को पता चला कि आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी ने कथित तौर पर अपने फोन से अपनी डिजिटल बातचीत मिटा दी थी। पुलिस के मुताबिक दोनों डिवाइस से व्हाट्सएप चैट, इंस्टाग्राम एक्टिविटी और अन्य डिलीट किए गए डेटा की अब फॉरेंसिक एनालिसिस के जरिए जाँच की जा रही है। शक है कि चैट को लोहगढ़ की घटना से पहले और बाद में डिलीट किया गया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपियों ने न केवल बातचीत हटाई बल्कि उसे अपने डिवाइस के रिसाइकल बिन से भी साफ कर दिया, जिससे फोरेंसिक रिकवरी जरूरी हो गई है।
4: जो उसका मोबाइल हमने ताबे में लिया पंचनामे से, और अभी हम उसका FSL को भेजेंगे और उसका जो भी डाटा है उसमें हम एनालिसिस करेंगे।
5: बताया जा रहा है कि उसकी जो चैटिंग है वो डिलीट की गई है, कुछ इस सामने आया है ऐसा कुछ?
4: अभी तक तो हमारे अभी पंचनामा से क्या है, हम एपिसोड में वो क्यों वो पूछेंगे।
1: कॉल डिटेल रिकॉर्ड से दोनों के बीच लगातार संपर्क का पता चला है। सिया गोयल और चेतन चौधरी ने जनवरी से लेकर अब तक 2004 कॉल किए, जिनकी कुल अवधि लगभग 238 घंटे थी। ऐसे में मोबाइल की जाँच से कई राज सामने आ सकते हैं। वैसे सिया के पिता प्रवीण गोयल और मां पूजा गोयल का दावा है कि 18 जून को लोहगढ़ जाने का प्लान सिया का नहीं था। केतन ने ही वीडियो कॉल करके सिया को लोहगढ़ बुलाया था। सिया के परिजन यहां तक दावा कर रहे हैं कि अगर सिया ने कुछ गलत किया है तो उसे भी लोहगढ़ किले से धक्का दे दो।
6: मैं तो कहता हूं अगर इसमें जो भी आरोपी हो, जो भी, जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है, अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूँगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहाँ से धक्का देके उसे भी ख़त्म कर दिया जाए। अब इससे ज़्यादा एक बाप और कुछ नहीं बोल सकता।
7: अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहाँ से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहाँ से ही उस दोषी को गिराया जाए। जो भी दोषी निकले, मेरी बेटी चाहे उसमें दोषी हो, ठीक है, उसे फांसी की सजा दो या लोहगढ़ जाके वहीं से ही गिरा दे।
1: पहले चेतन चौधरी ने दावा किया था कि वो वारदात के समय चट्टान के पास मौजूद नहीं था, लेकिन पूछताछ के दौरान उसके बयान में लगातार विरोधाभास सामने आए। जब पुलिस ने सख्ती बरती तो सिया और चेतन ने अपने अपराध स्वीकार कर लिया। एक

0: खबरी ये भी आ रही है कि केतन विग लगाता था और ये भी पता चला है कि सिया केतन के विग लगाने को पसंद नहीं करती थी। हालांकि इस थ्योरी को पुलिस खारिज कर रही है।
1: अभी जो है इन्वेस्टिगेशन का जो मोटिव है वो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम जो भी कंक्लूजन पे आएंगे तो अब हम बताएंगे।
2: जो विक का मामला बोल रहे हैं वो सच है या झूठ है?
1: अभी तक इन्वेस्टिगेशन में हमें ये मामला अभी तक आपसे ही अभी पता चल रहा है।
0: सवाल कई हैं, ऐसे में पूरी संभावना है कि सच तक पहुंचने के लिए अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। कृष्णा पांचाल के साथ ओमकार वाबले, पुणे आज तक।
3: अब खबर मुहर्रम जुलूस से जुड़े हुए हैं। मुंबई में जुलूस के दौरान एक खौफनाक मामला सामने आया। एक आरोपी द्वारा जहरीले पदार्थ को पेन किलर बताकर बांटने की कोशिश की गई। पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और अब एक्शन लिया जा रहा है।
4: मुंबई में मुहर्रम पर बड़ी साजिश रची गई थी, लेकिन मुहर्रम के जुलूस से ठीक पहले उस साजिश का खुलासा हो गया। एक ऐसी साजिश जिसे सुनकर मुंबई सहम गई है, पूरा महाराष्ट्र भी सहमा है और देश भी हैरान है। ये साजिश थी हजारों लोगों की जान लेने की, जहर देकर उन्हें मारने की। मुंबई में मुहर्रम के जुलूस में शामिल लोगों को वो जहरीला कैप्सूल बांटा जा रहा था, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने इस बड़ी और खौफनाक साजिश का राज फाश कर दिया। एक आरोपी फैयाज प्रेमजी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया और उससे 14,900 कैप्सूल बरामद किए। जांच में सामने आया है कि आरोपी फैयाज बीबीए कर चुका है और वो पुणे में पेंट का बिजनेस करता है। उसने 30,000 खाली कैप्सूल के ऑर्डर किए थे, साथ ही 50 किलो फास्फोरस भी मंगवाए थे।
5: एक संशयित व्यक्ति मुंबई पुलिस की टीम को मिला जो कि वहां पे कैप्सूल बांट रहा था। उसके पास कोई परमिशन नहीं थी तो मुंबई पुलिस ने उसको टोक के पूछताछ शुरू करी तो और डाउट बढ़ा। तो उसके बाद उसके पास से जितनी भी कैप्सूल्स का जो स्टॉक था वो जब्त किया गया।
4: पुलिस की माने तो गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने कबूला कि वो पेनकिलर कैप्सूल बताकर मुहर्रम के जुलूस में उसे बांट रहा था। आरोपी से जो कैप्सूल बरामद हुए उसमें जिंक फॉस्फाइड पाया गया। गिरफ्तार फैयाज प्रेमजी ने कई लोगों को उसने कैप्सूल दिए थे। कैप्सूल खाने से एक युवक की तबीयत भी बिगड़ी। जिंक फॉस्फाइड ऐसा केमिकल है जिसकी वजह से तेज उल्टी और पेट में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, चक्कर आना और बेहोशी, ब्लड प्रेशर तेजी से गिरना, दिल की धड़कन अनियमित होना, लीवर और किडनी फेल होने का खतरा रहता है। पुलिस अब जांच में जुटी है कि कहीं इस वारदात का आतंकी कनेक्शन तो नहीं, क्योंकि आरोपी फैयाज पहले ईरान और इराक जा चुका है। आरोपी के विदेशी संपर्कों की पड़ताल भी जारी है। दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
3: आज सड़क हादसों की सहारनपुर में सड़क हादसे का दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है। इस हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दूसरा मामला हिट एंड रन का है, जहां अहमदाबाद में एक कार सवार को कार सवार ने बाइक को टक्कर मार दी।
0: ये तस्वीरें दहला देने वाली है। एक कार को पीछे से दूसरी कार ने भयानक टक्कर मारी। तस्वीरें सहारनपुर में दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर रामपुर मनिहारन थाना क्षेत्र की हैं। बताया जा रहा है कि ड्राइवर कट पार कर आगे निकल गया था और निर्माणाधीन हाईवे की ओर लौटने के लिए कार बैक कर रहा था। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रही स्कॉर्पियो ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर कई मीटर तक घिसटती चली गई, जबकि स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में चार लोगों की जान चली गई, जबकि तीन बुरी तरह घायल। अब दूसरी तस्वीर देखिए, यह अहमदाबाद की तस्वीरें हैं। तेज रफ्तार कार ने यहां बाइक सवार को टक्कर मार दी। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि शहर के व्यास वाड़ी चार रास्ता पर यह तेज रफ्तार सफेद कार इधर से आती है, सामने से एक बाइक पर तीन युवक आ रहे हैं। अचानक कार ने बाइक को टक्कर मारी। टक्कर मारकर कार सवार फरार हो गया, जबकि तीनों युवकों की हालत गंभीर है। आज तक ब्यूरो।
3: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

अवा चोरी को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी को फिर घेरा, कहा इनके लिए नेशन नहीं डोनेशन। फॉर सीएम योगी ने दी चुनौती, बोले कृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर बोले सपा। पेपर लीक के विरोध में दिल्ली में यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट, मांगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। मुंबई में भी शिक्षा मंत्री के घर के बाहर हल्ला बोल। केतन अग्रवाल हत्याकांड में क्राइम सीन रिक्रिएट, मुख्य आरोपी सिया और चेतन को लेकर लोहगढ़ के लिए पहुंची पुलिस, जानबूझकर केतन का पासपोर्ट गायब करने की भी जानकारी।

पर्यावरण संरक्षण का खास सम्मान। आयरलैंड से दूसरे टी20 में भी शिकस्त के बाद 0-2 से सीरीज हारा वर्ल्ड चैंपियन भारत। 155 रन के लक्ष्य से एक रन पीछे रह गई टीम इंडिया। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के चढ़ावे में चोरी का मामला लगातार गहराता जा रहा है। जांच के दायरे में अब सिर्फ आरोपी नहीं बल्कि उनसे जुड़े हुए लोग, उनकी आर्थिक गतिविधियां भी आ गई हैं। अयोध्या पुलिस ने इस मामले में नामजद कई आरोपियों के घर पर पहुंचकर उनके परिजनों से पूछताछ की है।

0: रामलला के चढ़ावे से चोरी के मामले में जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एसआईटी की जांच के बाद जहां राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कुछ लोगों के इस्तीफे सामने आए, वहीं अब पुलिस भी कार्रवाई तेज करती नजर आ रही है। अयोध्या पुलिस ने मामले में नामजद आरोपियों के घर पहुंचकर उनके परिजनों से पूछताछ की।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों के घर पर, जो अयोध्या के रहने वाले हैं, उनके घरों पर छापेमारी की जा रही है। मैं इस समय पर अयोध्या में ही रह रहे रमाशंकर मिश्रा, जो आरोपी थे जिनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, रमाशंकर मिश्रा के घर पर मौजूद हूँ। उनके परिजनों से, उसकी भाभी, बहन, उनके पिता से पूछताछ की जा रही है। ये रमाशंकर मिश्रा घर है जो राम मंदिर में नोट गिनने के काम में जुड़ा हुआ था। बता दें कि अयोध्या पुलिस ने इन सभी आरोपियों के घर से लगभग 80 लाख रुपए बरामद किए थे और इनको जुडिशियल कस्टडी में सोमवार तक के लिए भेज दिया गया था, लेकिन अब कल सोमवार को दोबारा जुडिशियल कस्टडी पर सुनवाई होनी है। उससे पहले पुलिस के द्वारा ये जांच की जा रही है, पड़ताल की जा रही है, इन सभी जो आरोपी हैं उनके घर वालों से पूछताछ की जा रही है कि ये लोग कब आते थे, कैसे आते थे, क्या क्या खरीदा गया।
0: अयोध्या पुलिस ने टिन्नू यादव, मनीष यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा के घरों पर पहुंचकर उनके परिवार के लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने आरोपियों के घर आने जाने, उनके संपर्कों और गतिविधियों से जुड़ी जानकारी जुटाई। आरोपी रमाशंकर मिश्रा के पिता अयोध्या के एक मंदिर में पुजारी हैं। पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की
2: जांच के लिए, और वो यहाँ रहते हैं कि नहीं रहते हैं, कहाँ वो है तो हम बताए कि कमरा पे अलग लिए रहते हैं, दो ढाई साल से यहाँ रहते नहीं हैं, आना जाना भी यहाँ का नहीं है, एक दिन कभी इस मंदिर के अंदर पांव नहीं रखते हैं।
1: कब से नहीं आया?
2: दो ढाई साल हो गए यहाँ नहीं आया। हाँ, 2 साल।
1: तो राम मंदिर में कब से काम कर रहा था, क्या काम करता था रमाशंकर?
2: 5-6 साल हो गए, तब वहाँ पैसा गाने में बताता है, गाना कर्मचारी।
1: अच्छा, हाँ। कभी पैसा वैसा ज्यादा देखा आपने रमाशंकर के पास? बहुत
2: कभी नहीं, पैसा तो मांगा रहा तो पैसा पाई नहीं है? पैसा मांग लेता है कि दे दे, कहीं जरूरत लगे।
1: पुलिस तो कह रही है कि सब मिलके 80 लाख रुपए चोरी कर लिए चढ़ावे से।
2: कुछ छोड़िए कि नया पैसा यहाँ कहूँ देखे ना आया हुआ।
0: रमाशंकर मिश्रा के परिजनों का कहना है कि वो लंबे समय से घर नहीं आया है और किराए के मकान में रह रहा था।
3: हमको ना वो करे हैं ना हमको दिया है, कभी हमसे उनसे बनता ही नहीं था, कभी वो 10 रुपया हमको दिए ही नहीं थे। मुझको मेरे पति का सहारा है, बस कोई का सहारा नहीं है।
1: तो यहाँ रमाशंकर के बारे में और क्या, घर से कुछ पैसा